0: देश के स्टूडेंट से माफी मांगी और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दिस मॉर्निंग आई वेंट एंड मेट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड आई सेड टू हिम दैट
1: सर, आपने नेता विपक्ष के नाते उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा भारत की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिस पर काम करने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी ने इस्तीफा मांगा है सीधे सीधे। उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए सरकार को जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए, परीक्षा सिस्टम सुधरना चाहिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से।
0: और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम चलो डीजल धर्मेंद्र प्रधान। दूसरा की नथिंग रॉन्ग विद आस्किंग दीज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा की स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ।
1: तो जबरदस्त संसद के बाहर हंगामा और गहमागहमी पूरे दिन चली, और आपको बता दें कि उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर्स को, विपक्ष के बड़े लीडर्स को कहना चाहिए कि हिरासत में ले लिया गया था, उसके बाद उनकी रिहाई की गई। रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनिए।
2: जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी? वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है, वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट। नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट।
1: और अब बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास के पास से धरना प्रदर्शन हटवाने के लिए और बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल गांधी से मिलने जाते हैं और फिर बात नहीं बनती। जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो। राहुल गांधी की यह मांग मान ली गई थी, लेकिन राहुल अपनी बात से मुकर गए। और उसके बाद राहुल गांधी बोले कि अब उनकी दो मांगे हैं, पहली नीट पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, दूसरा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार कह रही है कि जब छात्रों के हर मुद्दे पर संसद में वो चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर कांग्रेस मुकर क्यों रही है?
3: प्रधानमंत्री आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 4:15 बजे शुरू हुए कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी नारे लगवाती हैं। तो इस बीच इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने तुरंत जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से बात करने भेजा तो राहुल क्यों नहीं माने? यहाँ पर आखिर क्या बात हुई? जवाब जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया है, उसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से देखिए। जितेंद्र सिंह ने लिखा कि कुछ समय पहले पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो अपना धरना खत्म कर दें, क्योंकि ये जगह धरने की नहीं है, यहाँ पर धरना देने से आम लोगों को काफी मुश्किल होगी। राहुल गांधी ने ये मांग रखी थी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर चर्चा के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे। कुछ ही देरी में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को ये भरोसा जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को जब ये सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर नहीं मानेंगे बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा चाहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी तब राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी मांगें बदल गईं। जब राहुल गांधी को विनम्रता से ये बताने की कोशिश की गई कि उनके जैसे सीनियर लीडर को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता तो जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की कि ये जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं तो जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये भी उनकी मर्जी है, वो जहां बैठे। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह साफ कहते हैं कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के साथ सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने अब तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है।
4: सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी हैं।
5: अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले।
6: मोदी एंटी यूथ है।
5: बिल्कुल एंटी यूथ है,
6: बीजेपी
5: देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है, बच्चे हैं। सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है? अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। और सबसे जरूरी तो ये है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।
7: आप इन विषयों पे जब भी डिस्कशन होता है आप मुंह की खाते हैं, लास्ट में आप जवाब सुन भी नहीं पाते हैं। मैं अभी भी बोलूंगा, ये नकारात्मक जो सोच है विपक्ष का उसको छोड़ना चाहिए। आपने कर लिया ना जो एक दो दिन है, लेकिन कल से सदन को चलने दिया जाए, सभी जो मुद्दे हैं उन पे बात करिए। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे संसद में बहस न हो सके, लेकिन इन लोगों को एक आदत लग गई है कि संसद के विषय को सड़क पे ले जाएंगे।
8: सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल गांधी से 2 बार बातचीत की लेकिन वो नहीं माने, तो पुलिस ने उन्हें धरना प्रदर्शन से उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की होती रही। आखिर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठा कर ले गए।
1: 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के खिलाफ चेंबूर में गुस्सा फूटा। छात्रों ने लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया। पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी उतना ही आंदोलन उग्र होगा।
9: पेपर लीक केस के बाद पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। चेंबूर में भी छात्रों ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।
10: दिल्ली में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ और उस पर लाठीचार्ज और आंसू गैस फेयर डाले गए, उसके विरोध में अब मुंबई के चेंबूर इलाके में प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप देख लीजिए, काफी सारे प्रोटेस्टर्स यहां पे आए थे, लेकिन जितने प्रोटेस्टर्स हैं उससे ज्यादा तादाद में यहां पुलिस के अधिकारी हैं। यहां पे आप देख लीजिए, पुलिसकर्मी इतने ज्यादा हैं। और बताया यही जा रहा है कि जितने प्रोटेस्टर्स थे उनको भी नोटिसेस दी गई। आप लोगों को भी नोटिसेस मिले?
11: हम लोग को भी नोटिसेस मिले।
10: क्या कितने लोगों को दिया गया है, कितने लोगों की कोई उन लोगों को कहां कोई रेस्ट्रिक्ट किया गया उनका मूवमेंट?
11: नहीं, 20-25 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों को फोन कॉल्स आया है कि कल अगर आप प्रोटेस्ट में इन्वॉल्वमेंट हुए तो आपको केसेस हो सकता है इसकी वजह। और काफी सारे गली के बाहर, घर के बाहर पुलिस जिनको बाहर आने नहीं दे रहे।
10: आप लोग को भी कहीं मोर्चा आप लोग निकालना चाह रहे थे, आप लोग को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया?
11: हम लोग अभी चेंबूर नाका पे प्रोटेस्ट निकालने चाहते थे, बट हम लोग के एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट पे पुलिस, मतलब जितने ज्यादा आंदोलन करते हैं उससे 3 गुना ज्यादा तो पुलिस है यहाँ पे, और वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से आप बाहर निकल नहीं सकते। बट हम लोग तो मतलब किसी भी तरह का तीव्र आंदोलन, मतलब कोई तोड़फोड़ करने वाले नहीं थे, हम लोग शांति से आंदोलन करने वाले थे। बट जो चेंबूर के जो सीनियर्स है और बाकी भी सीनियर्स लोग है, वो लोग हम लोग को आगे जाने नहीं दे रहे।
10: तो पुलिस अधिकारियों ने आप लोग के मूवमेंट को पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन आप ये विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं?
11: जनरली विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि कल तक हमारा रात में 8 बजे तक कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि निदर्शन करना है, कोई आंदोलन करना है। बट जो हिसाब से कल हम लोग ने जो दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन देखा, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, काफी गलत है।
9: मुंबई पुलिस ने लोगों को प्रदर्शन न करने के लिए कई नोटिस भी दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ एक झुग्गी बस्ती के अंदर ही प्रदर्शन कर सकते हैं।
12: छोटे छोटे बच्चों जब आंदोलन करते हैं तो ये सरकार उनको मारती है, भगाती है, लाठी अलग करती है, तो ये देश में लोकशाही है कि नहीं? और बच्चे क्या मांग रहे हैं? जिसने जो भवितव्य जो भविष्य करने का जो कई एग्जाम है वो पेपर लीक किया, और पेपर मतलब ऐसा ये कितने साल से चल रहा है, तो हमारा भाई कुछ भवितव्य है कि नहीं?
10: आप लोग भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, कितने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे, कितने लोगों को यहाँ पे रोका गया है?
12: हमारे सब कार्यकर्ताओं को रोका गया है, नोटिस दिया है, वो बोला है कि आंदोलन करने का नहीं। हम बोले कि लोकशाही मार्ग से हम आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जमाबंदी आदेश लागू किया है तो आप आंदोलन नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग को बोला है। फिर भी हम लोग उधर जाने की कोशिश करेंगे।
9: पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी आंदोलन उतना ही उग्र होगा।
13: हाँ, नाराजगी तो है, जो हुआ है वो जो हमारे जो शिक्षण जो मंत्री है उन्होंने तो राजीनामा देना चाहिए, और जो लाठीचार्ज हुआ है उसके वजह से हमारी नाराजगी है। जो आप स्टूडेंट लोगों को मार रहे हो वो गलत है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो स्टूडेंट्स है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, ये गलत है।
10: लेकिन आप लोग भी तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस वालों ने किस तरह से आप लोग?
13: हमारा कल से चालू है कि प्रोटेस्ट करना है, 2 दिन से हमारे लोग बाहर निकल रहे हैं। रात को पुलिस को किसी ने तो बता दिया है, तो पुलिस सबसे कांटेक्ट कर रही है, सबको नोटिस दे रही है, आप निकल नहीं सकते। कहीं तो लोकशाही को दबाने का एक ये चल रहा है, लोकशाही को दबाने का एक इरादा है उनका, वो दिख रहा है।
10: जैसा यही बात ये कह रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके में छावनी में तब्दील हो चुकी है तकरीबन हर जगह। आप देखिए कॉलोनी से जो सिद्धार्थ कॉलोनी है उससे निकलने का यही रास्ता है और इस रास्ते पे आप देख लीजिए पुलिस कर्मी इतने ज्यादा भारी तादाद में, और वहीं घर घर जाके नोटिसेस भी दिए गए थे, लोगों को कहा गया था कि वो निकले नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें मुंबई में, क्योंकि जहां जहां प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पे FIR रजिस्टर हुई है, जिस तरीके से शिवाजी पार्क में भी मुंबई के दादर इलाके में जो वहां प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर भी 3 FIR हुए हैं। इसके अलावा मेरीन ड्राइव पे, तो तमाम जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर FIR जरूर रजिस्टर कर रही है पुलिस, और यही वजह है कि एक के बाद एक धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों में ही सही लेकिन प्रोटेस्ट की आवाजें जरूर उठ रही हैं। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
1: और अब बात करेंगे कुदरत के बादल बॉम्ब के बारे में, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि देश के कई इलाकों में त्राहिमाम मच गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश का ब्रेक फेल है और जगह जगह कुदरत के बादल फट रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
14: सैलाब में जिंदगी और मौत की सीधी जंग, कहीं उफंती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं दहकते पहाड़ों पर जिंदगी की लड़ाई, कहीं सैलाब के बीच मौसम से सीधी टक्कर, कहीं कागज के तिनके की तरह बही गाड़ियां, पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही ही तबाही। जगह जगह फट रहा है बादल बम, सैलाब अटैक जारी, मानसूनी संकट काल भारी। ये तस्वीरें राजौरी के थामंडी इलाके में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। भारतीय सेना की 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने उफंती लहरों के बीच 13 स्थानीय निवासियों की जान बचाई। हुआ यूं कि भारी बारिश के चलते पहाड़ी नाले में अचानक बाढ़ आने से लोग फंस गए। आप देख सकते हैं कि नाले में पानी का बहाव कितना तेज है। सेना के जवानों ने उफनते सैलाब के आर पार एक रस्सी बांधी और फंसे हुए हर नागरिक को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए लोगों में 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक हालात में चलाया गया। क्योंकि भारी बारिश के चलते नाले का बहाव लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में रेस्क्यू टीम ने जान पर खेलकर लोगों को बचाया। मुश्किल की घड़ी में देवदूत बनकर खड़े हुए सेना के जवानों ने 13 जिंदगियों को बचा लिया। जिंदगी और मौत की सीधी जंग, ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश का कहर ऐसा है कि पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें पत्थरों का टीला बन चुकी हैं, तो भूस्खलन के चलते यातायात ठप है। कुदरत की इसी क्रोध लीला का शिकार ये बस बन सकती थी। दरअसल अचानक पहाड़ी से पत्थर बरसने लगे, मौके पर मौजूद लोगों ने वक्त रहते बस को रुकवा दिया। आप देख सकते हैं कि मलबे में यही बस फंस गई थी जिसमें कई यात्री सवार थे। हुआ यूं कि भूस्खलन के बाद मलबा बस के सामने आ गया, बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गई थी। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए।
15: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। ऐसा ही मंजर हिमाचल के जिला चंबा में भी देखने को मिल रहा है। रेड अलर्ट के चलते कल रात से लगातार बारिश हो रही है। इससे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रास्ते बंद पड़े हैं और कई जगह जो है सड़क पूरी तरह से बह गई है। चंबा जिला के पांगी में बादल फटने से कई मजदूरों को रेस्क्यू भी किया गया है। वहीं अगर बात करें चंबा जिला के भटियात क्षेत्र की, तो वहां पे नूरपुर को जोड़ने वाली, जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली, चंबा से जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली लाहड़ू नूरपुर सड़क जो है उसका लगभग 200 मीटर हिस्सा जो है वो पूरी तरह से चक्की नदी में समा गया है। बारिश का कहर जो है लगातार जारी है और अभी आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बारिश का अनुमान बताया जा रहा है।
14: सैलाब से जिंदगी की जंग, ये तस्वीरें चंबा के कलाह नाले की हैं। तस्वीरों में कैद मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। आसपास सैलाब का कहर और एक चट्टान पर तीन मजदूर फंसे हुए हैं। अचानक नाले का जल स्तर बढ़ने की वजह से तीन मजदूरों को बचाने का मौका नहीं मिला। तीनों मजदूर बीच जलधारा में फंस गए। जबकि उनके कुछ दूसरे साथी दूसरे छोर पर मौजूद थे। सैलाब में फंसे लोगों के पास तैर कर बचने का रास्ता नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव उन्हें बेमौत मार सकता था। जबकि हर मिनट बढ़ता जल स्तर उनकी सांसें अटकाने के लिए काफी था। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने जलधारा में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक बड़ी लकड़ी को एक चट्टान से दूसरी चट्टान के बीच रखा गया। उसके बाद तीनों मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक बादल फटने के बाद नाले में अचानक बाढ़ आ गई थी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी नालों और खड्डों के आसपास आवाजाही से बचें, क्योंकि अचानक जल स्तर बढ़ने का खतरा बना रहता है।
1: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
16: क्या मूंगा धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है? क्या मूंगा धारण करने से व्यक्ति का भय दूर होता है? क्या मूंगा धारण करने से महिलाएं स्वस्थ रहती हैं? क्या है मूंगा रत्न की विशेषता और कैसा है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य।
17: A burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price. Void in Florida.
18: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
19: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
18: Learn more at emory.edu.
20: Ready, set, summer with the Honda Summer Event. With available features like all-terrain tires and off-road tuned suspension, the rugged Honda Pilot, Ridgeline, CR-V, and Passport have all you need to get summer ready with the most fuel-efficient full-line automaker in America. Visit your local Honda dealer today.
21: See dealer for financing details. Based on EPA estimate of 2024 large full-line automaker fleet-wide fuel economy. EPA Automotive Trends Report 2025.
22: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
0: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पीएम मोदी भी छात्रों से माफी मांगे। धरने को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का राहुल पर हमला, कहा छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे राहुल। कांग्रेस जितेंद्र सिंह ने बोले चर्चा की मांग मानी लेकिन वो मुकरे, नितिन नवीन ने भी की निंदा। सरकार ने की सोनम वांगचू से बातचीत की पहल, सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में की मुलाकात, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किए गए वांगचू। मानसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार, पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर दो दिन से जारी है गतिरोध, पूरे सत्र में 7 अहम बिल लाने की तैयारी में सरकार। और अयोध्या में आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक, महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर चर्चा, एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी हो सकती है समीक्षा।

देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह 6 बजे हैं और 6 ताजा खबरों के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि दिल्ली में कल चले हाई वोल्टेज हंगामे के बाद राहुल गांधी ने सरकार से क्या मांगे रखी हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष को शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है और कौन कर रहा है छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल, कैसे लग रहे हैं आरोप, इसके बारे में बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर ये कि नीट पेपर लीक पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है, उसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अब क्रेडिट वॉर की जंग छिड़ गई है। चौथी बड़ी खबर यह कि सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल की है। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की। और पांचवी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि कैसे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर चर्चा होगी। और आखिर में यह भी बताएंगे कि कैसे पहाड़ों पर आफत बरस रही है, मूसलाधार बारिश, मानसूनी बादल कैसे कहर बरपा रहे हैं।

0: तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर, कैसे बीता दिन हंगामे भर रहा और उसके बाद दिल्ली में कल हुए हाई वोल्टेज हंगामे के बाद देर रात राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया गया। हिरासत से रिहा होने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, वीडियो जारी किया और कहा कि छात्रों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह इस्तीफा दें। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। इससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेता जो है प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े, सात लोक कल्याण मार्ग पर जहां पर उन्हें रोका गया वहीं से उन्हें हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कांग्रेस के तमाम नेता सांसद भी इस मार्च में शामिल हुए। बिल्कुल सरप्राइज की तरह ये उस रास्ते पर बढ़े, लोक कल्याण मार्ग के पास, प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंचे और उसी के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया। ये देखिए वो शाम की तस्वीरें हैं जब उन्हें हिरासत में ले जाया जा रहा था और उसके बाद राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह इस्तीफा दें। राहुल गांधी ने छात्रों की मांग को समर्थन दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो अमित शाह भी इस्तीफा दे। दरअसल विपक्ष पुलिसिया कार्रवाई को लेकर के भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन पुलिस वालों ने छात्रों को मारा है, उन्हें ह्यूमिलिएट किया है, उन पर कार्रवाई की जाए, छात्रों पर लगाए गए केस हटाए जाए। साथ ही राहुल गांधी ने मांग की है कि विपक्ष चाहता है इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में अब बहस हो, विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यह भी सुझाव दिया कि आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने जो किया है उसके लिए आपको देश के छात्रों से माफी मांगनी होगी। साथ ही पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से माफी मांगने की मांग की राहुल गांधी ने और ये वो वीडियो की तस्वीरें जब उन्होंने वीडियो जारी किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि राहुल के धरना प्रदर्शन को लेकर के दिल्ली में कैसे सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने सरकार के सामने क्या क्या मांगे रखी है, देखिए रिपोर्ट।
1: नीट को लेकर दिल्ली में दिखा हाई वोल्टेज हंगामा। राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा।

0: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी पीएम आवास के मुहाने पर धरने के बाद अब संसद में राहुल गांधी ने सरकार को घेरने का मन बना लिया है। हिरासत से रिहा होने के बाद राहुल गांधी ने अब लोकसभा और राज्यसभा में सीधे चर्चा की मांग की और कहा पूरा विपक्ष नीट पेपर लीक के विरोध में और छात्रों के साथ खड़ा है।
1: पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें।
0: संसद मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प पर राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी को घेरा और माफी मांगने की मांग रख दी।
1: मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए।
0: राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
1: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए।
0: वहीं थाने से रिहा होने के बाद प्रियंका गांधी ने भी छात्रों की मांगों को जायज ठहराया और कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
2: ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट, नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट।
0: जहां एक तरफ राहुल गांधी और विपक्षी नेता शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहुल और कांग्रेस पर छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी और कांग्रेस छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने पीएम आवास के बाहर धरना देकर आम जनता को असुविधा पहुंचाई। सरकार पहले से ही व्यापक चर्चा कराने की अपनी तत्परता जता चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन का रास्ता चुना। वहीं पीएम आवास के बाहर राहुल के धरने को लेकर बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे अराजकता फैलाने की कोशिश बताया।
3: लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो वो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर।
0: पीएम आवास पर धरने के दौरान राहुल गांधी से बात करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी राहुल पर शर्तें बदलने का आरोप लगाया।
4: हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा, लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी हैं।
0: जहां कल नीट के मुद्दे पर संग्राम देखने को मिला वो अब संसद में दिखने के आसार हैं। आज तक ब्यूरो।
5: तो जिस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है, आंदोलन चल रहा है, विपक्ष सड़कों पर उतर चुका है, उसी धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि राहुल गांधी और कांग्रेस स्टूडेंट्स का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर धरना दिया जिससे लोगों को परेशानी हुई। सरकार के पूरी चर्चा के तैयार होने की बात कहने के बाद भी कांग्रेस ने बहस की बजाय पॉलिटिकल तमाशा चुना। देश के स्टूडेंट्स पॉलिटिकल कैंपेन में सहारा बनने से कहीं बेहतर हकदार हैं। ये देखिए ये पूरा सोशल मीडिया पोस्ट है, तो एक्स पर उन्होंने पूरा बाकायदा एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए गुस्से से कहीं ज्यादा के कर्जदार हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस पोस्ट पर सैकड़ों हजारों की संख्या में रिप्लाई भरे पड़े हैं, संभवतः जो उन्होंने शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन उन्होंने आक्रामकता दिखाई और इस पूरे विवाद में जब से उनके इस्तीफे की मांग शुरू हुई, आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद विपक्ष पर आक्रामकता को लेकर के इस तरह का उनका पहला सबसे बड़ा पोस्ट है, जिसके बाद अब जो प्रतिक्रिया धर्मेंद्र प्रधान की ओर से आई। लेकिन आपको यह भी बता दें कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कल जबरदस्त सियासी हंगामा देखने को मिला। बातचीत के दौर, शर्तों पर तकरार, सड़क पर जोर आजमाई से लेकर के देर रात सोनिया गांधी के सरप्राइज एंट्री तक लगभग 6 घंटे चले इस पूरे हाई वोल्टेज हंगामे की जरा टाइमलाइन देखिए।
6: पेपर लीक की लड़ाई पीएम आवास पर धरने तक आई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा, सड़क पर एक तूफान खड़ा। कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा पुलिस ने धरना प्रदर्शन से हटाया। गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का हंगामा, पूरी रणनीति क्या है? पीएम आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम 6 बजे तक एक बड़े सियासी हंगामे में तब्दील हो जाता है। अब उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी सांसदों नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और 7 लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं, जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है?
7: हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृहमंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर।
6: लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देने लगते हैं, तो इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटाने की अपील। अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और राहुल गांधी से धरने से हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं और फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने पहुंचते हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं हैं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है।
8: छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी के बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है, यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
6: शाम 5:18 राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे, इस बात तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो। कांग्रेस के इस धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो जाते हैं। उनके साथ विपक्ष के कई और नेता भी इस धरना प्रदर्शन में जुटते हैं। आज तक ब्यूरो।
5: तो तकरार सिर्फ विपक्ष और सरकार के बीच अब नहीं रही। नीट पेपर लीक को लेकर के हो रहे प्रदर्शन के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी खींचतान शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि एक कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। इस पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने लिखा कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, हम समझ सकते हैं, बीजेपी के साथ जारी आपकी जुगलबंदी फेल हो गई, इसके लिए
0: पेपर लीक को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम। राहुल गांधी को मिला अखिलेश यादव का साथ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में शुरू हुआ क्रेडिट वॉर। पीएम आवास पर राहुल गांधी का जैसे ही धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन से दूरी बनाते हुए आपत्ति जाहिर की और कहा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शनों को कमजोर करने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यहां तक कह दिया कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बैठा दिया। इसके बाद कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवासन ने संजय सिंह को आड़े हाथों लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, आपको बहुत तकलीफ हुई है, हम समझ सकते हैं, बीजेपी के साथ जारी आपकी जुगलबंदी फेल हो गई है, इसके लिए। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी पीएम आवास पर राहुल के प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े किए और इसे बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी बता दी।
9: क्या ये संभव है देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर या किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बाहर प्रधानमंत्री के बिना मर्जी के कोई प्रोटेस्टर या उनका ग्रुप बैठ जाए? क्या इसमें साफ साफ कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी नहीं दिखती है?
0: तो अब साफ दिख रहा है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन पर अब सियासी क्रेडिट वॉर शुरू हो गया, जहां एक तरफ राहुल के साथ अखिलेश समेत कुछ विपक्षी दल नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी सियासी रोटी सेंकती दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
5: उधर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल की है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलाकात की। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज कर आगे के इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भर्ती कराया गया था। सोनम वांगचुक लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें सरकारी अस्पताल से मेदांता अस्पताल जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि यहां पर भरोसे की कमी है। हालांकि उनकी मांग तब नहीं सुनी गई, लेकिन उसके बाद अब उन्हें भेजा गया और इस बीच अब ये माना जा रहा है कि सरकार वांगचुक से बातचीत की पहल शुरू की है। सोनम वांगचुक कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के समर्थन में 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। उसके बाद उन्हें पुलिस ने 20 दिन के अनशन के बाद अस्पताल ले गई और उसके बाद अब उन्हें मेदांता अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। और बुलेटिन में बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद हो रही बड़ी बैठक की। अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में ट्रस्ट के कई समितियों के पुनर्गठन, उनके कामकाज की समीक्षा पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक महासचिव पद के लिए नाम और नए सीईओ के चयन पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं अंतरिम महासचिव कृष्णा मोहन के नाम पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा राम मंदिर से जुड़े मामलों की एसआईटी की जांच रिपोर्ट की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल हो सकती है। कल विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से अयोध्या में हिंदू संतों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण धार्मिक और संगठनात्मक मुद्दों पर मंथन होने की उम्मीद है। तो एसआईटी की जांच रिपोर्ट की समीक्षा, महासचिव की नियुक्ति, सीईओ की नियुक्ति, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के इसमें चर्चा की जाएगी।

0: आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुदरत के बादल बम की। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि देश के कई इलाकों में त्राहिमाम मच गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक बारिश का ब्रेक फेल है। जगह जगह कुदरत का बादल बम फट रहा है तो मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
1: सैलाब में जिंदगी और मौत की सीधी जंग। कहीं उफंती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं दहकते पहाड़ों पर जिंदगी की लड़ाई। कहीं सैलाब के बीच मौसम से सीधी टक्कर। कहीं कागज के तिनके की तरह बही गाड़ियां। पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही ही तबाही। जगह जगह फट रहा है बादल बम। सैलाब अटैक जारी, मानसूनी संकट काल भारी। ये तस्वीरें राजौरी के थामंडी इलाके में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। भारतीय सेना की 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने उफंती लहरों के बीच 13 स्थानीय निवासियों की जान बचाई। हुआ यूं कि भारी बारिश के चलते पहाड़ी नाले में अचानक बाढ़ आने से लोग फंस गए। आप देख सकते हैं कि नाले में पानी का बहाव कितना तेज है। सेना के जवानों ने उफनते सैलाब के आर पार एक रस्सी बांधी और फंसे हुए हर नागरिक को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए लोगों में 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक हालात में चलाया गया। क्योंकि भारी बारिश के चलते नाले का बहाव लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में रेस्क्यू टीम ने जान पर खेलकर लोगों को बचाया। मुश्किल की घड़ी में देवदूत बनकर खड़े हुए सेना के जवानों ने 13 जिंदगियों को बचा लिया। जिंदगी और मौत की सीधी जंग। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश का कहर ऐसा है कि पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें पत्थरों का टीला बन चुकी हैं, तो भूस्खलन के चलते यातायात ठप है। कुदरत की इसी क्रोध लीला का शिकार ये बस बन सकती थी। दरअसल अचानक पहाड़ी से पत्थर बरसने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने वक्त रहते बस को रुकवा दिया। आप देख सकते हैं कि मलबे में यही बस फंस गई थी जिसमें कई यात्री सवार थे। हुआ यूं कि भूस्खलन के बाद मलबा बस के सामने आ गया। बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गई थी। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए।
2: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। ऐसा ही मंजर हिमाचल के जिला चंबा में भी देखने को मिल रहा है। रेड अलर्ट के चलते कल रात से लगातार बारिश हो रही है। इससे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रास्ते बंद पड़े हैं और कई जगह जो है सड़क पूरी तरह से बह गई है। चंबा जिला के पांगी में बादल फटने से कई मजदूरों को रेस्क्यू भी किया गया है। वहीं अगर बात करें चंबा जिला के भटियात क्षेत्र की, तो वहां पे नूरपुर को जोड़ने वाली, जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली, चंबा से जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली लाहड़ू नूरपुर सड़क जो है उसका लगभग 200 मीटर हिस्सा जो है वो पूरी तरह से चक्की नदी में समा गया है। बारिश का कहर जो है लगातार जारी है और अभी आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बारिश का अनुमान बताया जा रहा है।
1: सैलाब से जिंदगी की जंग। ये तस्वीरें चंबा के कलाह नाले की हैं। तस्वीरों में कैद मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। आसपास सैलाब का कहर और एक चट्टान पर तीन मजदूर फंसे हुए हैं। अचानक नाले का जल स्तर बढ़ने की वजह से तीन मजदूरों को बचाने का मौका नहीं मिला। तीनों मजदूर बीच जलधारा में फंस गए। जबकि उनके कुछ दूसरे साथी दूसरे छोर पर मौजूद थे। सैलाब में फंसे लोगों के पास तैरकर बचने का रास्ता नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव उन्हें बेमौत मार सकता था। जबकि हर मिनट बढ़ता जल स्तर उनकी सांसें अटकाने के लिए काफी था। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने जलधारा में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक बड़ी लकड़ी को एक चट्टान से दूसरी चट्टान के बीच रखा गया। उसके बाद तीनों मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक बादल फटने के बाद नाले में अचानक बाढ़ आ गई थी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी नालों और खड्डों के आसपास आवाजाही से बचें, क्योंकि अचानक जल स्तर बढ़ने का खतरा बना रहता है।
0: ऐसे में अगर आप भी पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो सतर्क रहें, सावधान रहें, जानकारी लेकर के आगे बढ़े। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
4: Ready, set, summer with the Honda Summer Event. With available features like all-terrain tires and off-road tuned suspension, the rugged Honda Pilot, Ridgeline, CRV, and Passport have all you need to get summer ready with the most fuel-efficient full-line automaker in America. Visit your local Honda dealer today.
5: See dealer for financing details. Based on EPA estimate of 2024 large full-line automaker fleet-wide fuel economy. EPA Automotive Trends Report 2025.
6: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
7: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: क्या मूंगा धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है? क्या मूंगा धारण करने से व्यक्ति का भय दूर होता है? क्या मूंगा धारण करने से महिलाएं स्वस्थ रहती हैं? क्या है मूंगा रत्न की विशेषता और कैसा है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

हिरासत से रिहा हुए राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस नेता। राहुल ने वीडियो मैसेज जारी कर मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बोले पीएम मोदी भी छात्रों से माफी मांगे। धरने को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर हमला, कहा छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस। जितेंद्र सिंह ने कहा चर्चा की मांग तो मानी लेकिन वो मुकर गए। नितिन नवीन ने भी की निंदा। सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल की। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में मुलाकात की। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं सोनम वांगचुक। और मानसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर दो दिन से जारी है गतिरोध। पूरे सत्र में 7 अहम कानून लाने की तैयारी में है सरकार। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर चर्चा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी हो सकती है समीक्षा।

0: आशुतोष मिश्रा, अब वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 दुनिया भर की देश की बड़ी खबरों का। तो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सेना मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है। कारगिल में आए फ्लैश फ्लड के बीच देवदूत बनकर सामने आए रेस्क्यू टीमों के जवान। मलबे के बीच से रास्ता बनाकर पीड़ितों की मदद की, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उधर राजौरी में सेना का साहस देखने को मिला। तेज बहाव नाले में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित निकाला। 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने रस्सी के सहारे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाई। राजौरी, पुंछ, गुरेज, कारगिल और तंगमर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद दी जा रही है। लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर भी मलबा आकर के गिरा। चट्टान, जेसीबी की मदद से रास्ता साफ किया गया। ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर के बड़गाम में वीरवा बाजार में फ्लैश फ्लड का कहर देखने को मिला। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरह ढह गया। कैमरे में कैद हुआ ये मंजर। ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिर गया। गिरने से पहले दुकानदार सामान बचाते जुटाते नजर आए। पुलिस ने सबको सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। तड़केश्वर महादेव मंदिर अब जलमग्न हो गया है। कावेरी नदी भी खतरे के निशान पर है। गुजरात में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। डांग में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों, दुकानों और बाजारों में पानी भर गया है। लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। बो घाटी में बारिश का कहर देखने को मिला। पहाड़ी पर बादल फटा, नीचे बने घर और गौशालाएं बह गए। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। इस तबाही में 14 घरों का नामोनिशान मिट गया। डीसी कांगड़ा ने जानकारी साझा की है। एसडीआरएफ की टीम रवाना कर दी गई है। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं विकासनगर में जर्जर पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरता नजर आया। राहत कार्य करते मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तेज बारिश के दौरान 2 बाइक सवार और 5 लोगों पर पेड़ गिर गया। 1 बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, बाकी लोग गंभीर रूप से घायल। अमरेली में तालाब किनारे आराम फरमाती शेरनी को देखकर लोग हैरान हो गए। लोगों ने दूर सड़क से अपने मोबाइल में इस मंजर को कैद किया। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। लोगों को उमस से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्यम से भारी बारिश का भी पूर्वानुमान जताया गया है। दिल्ली के बदरपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे बारिश की वजह से जल भरा हुआ। लोगों को इससे काफी परेशानी हुई। बाढ़ प्रभावित असम में भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित शिवसागर जिले में हवाई बचाव और राहत अभियान के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। देहरादून के विकासनगर में गोना नदी के सैलाब में स्कूटी सवार बह गया। युवकों ने जान जोखिम में डालकर सबकी जान बचाई। तो चलिए खबरें विस्तार से। बीती रात हुए हंगामे के बाद आखिरकार देर रात राहुल गांधी को रिहा कर दिया गया है। कल दिन भर हाई वोल्टेज हंगामा, सियासी ड्रामा और तमाम सियासी हंगामे के बाद राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया और देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। ये सब प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे, धरने पर बैठ गए थे और उस धरने के बाद उन्हें मनाने के लिए, बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी पहुंचे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस ने हिरासत में लिया और राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, इन तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस के बाकी नेता और उसके बाद इन सबको रिहा कर दिया गया। देर रात राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, इन सब की हिरासत से रिहाई हुई। तो इधर राहुल गांधी हिरासत से रिहा हुए, उसके तुरंत बाद उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने तुरंत एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि छात्रों की यह मांग है कि अब धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि गृहमंत्री अमित शाह भी इस्तीफा दें। इसके अलावा जिन पुलिस वालों ने छात्रों को मारा है, उन्हें ह्यूमिलिएट किया है, अब उन पर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही छात्रों पर लगाए गए केस हटाए जाएं। राहुल गांधी ने मांग की है कि विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर लोकसभा राज्यसभा में बहस हो जिसमें विपक्ष अपनी बात रखे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यह सुझाव भी दे दिया कि जो आपकी सरकार में आपके होम मिनिस्टर ने किया है उसके लिए अब प्रधानमंत्री को देश के छात्रों से माफी मांगनी होगी। साथ ही जल्द से जल्द परीक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था पर रिफॉर्म शुरू करने की भी मांग की है। तो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया रिहाई के बाद। देखिए, एक पैर में जूता, दूसरे पैर का जूता भी गायब है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो छात्रों पर मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए हैं उनको हटाए जाएं, जिन पुलिसकर्मियों ने छात्रों की पिटाई की है, मारा है, उनको ह्यूमिलिएट किया है, उन पर कार्रवाई हो, नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो। तो बीता दिन बेहद हंगामे भरा रहा। अब आपको बताते हैं कि राहुल के धरना प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में कैसे सियासी बयानबाजी शुरू हुई, राहुल गांधी ने सरकार के सामने क्या क्या मांग रखी, देखिए रिपोर्ट।
1: नीट को लेकर दिल्ली में दिखा हाई वोल्टेज हंगामा। राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी पीएम आवास के मुहाने पर धरने के बाद अब संसद में राहुल गांधी ने सरकार को घेरने का मन बना लिया है। हिरासत से रिहा होने के बाद राहुल गांधी ने अब लोकसभा और राज्यसभा में सीधे चर्चा की मांग की और कहा पूरा विपक्ष नीट पेपर लीक के विरोध में और छात्रों के साथ खड़ा है।
2: पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें।
1: संसद मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प पर राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी को घेरा और माफी मांगने की मांग रख दी।
2: मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए।
1: राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।
2: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए।
1: वहीं थाने से रिहा होने के बाद प्रियंका गांधी ने भी छात्रों की मांगों को जायज ठहराया और कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
3: एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट, नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट।
1: जहां एक तरफ राहुल गांधी और विपक्षी नेता शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहुल और कांग्रेस पर छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी और कांग्रेस छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने पीएम आवास के बाहर धरना देकर आम जनता को असुविधा पहुंचाई। सरकार पहले से ही व्यापक चर्चा कराने की अपनी तत्परता जता चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन का रास्ता चुना। वहीं पीएम आवास के बाहर राहुल के धरने को लेकर बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे अराजकता फैलाने की कोशिश बताया।
4: लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभरे।
1: पीएम आवास पर धरने के दौरान राहुल गांधी से बात करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी राहुल पर शर्तें बदलने का आरोप लगाया।
5: हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा, लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी हैं।
1: जहां कल नीट के मुद्दे पर संग्राम देखने को मिला वो अब संसद में दिखने के आसार हैं। आज तक ब्यूरो।
0: तो अब आपको बता दें कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कल जबरदस्त सियासी हंगामा देखने को मिला। बातचीत के दौर, शर्तों पर तकरार, सड़क पर जोर आजमाइश से लेकर देर रात सोनिया गांधी की सरप्राइज एंट्री तक लगभग 6 घंटे चले इस पूरे हाई वोल्टेज हंगामे की टाइमलाइन देखिए।
6: नीट पेपर लीक की लड़ाई पीएम आवास पर धरने तक आई।
7: छह
6: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा, सड़क पर एक तूफान खड़ा। कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा, पुलिस ने धरना प्रदर्शन से हटाया। राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का हंगामा, पूरी रणनीति क्या है? पीएम आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम 6 बजे तक एक बड़े सियासी हंगामे में तब्दील हो जाता है। अब उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी सांसदों नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और सात लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं, जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है?
7: हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृहमंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर।
6: लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देने लगते हैं, तो इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटाने की अपील। अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और राहुल गांधी से धरने से हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं और फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने पहुंचते हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं हैं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है।
8: छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है, यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
6: शाम 5:18 राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बात तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो। कांग्रेस के इस धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो जाते हैं। उनके साथ विपक्ष के कई और नेता भी इस धरना प्रदर्शन में जुड़ते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: सोनम वांगचुक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल की है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलाकात की। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज कर आगे इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच ये भी माना जा रहा है कि सरकार ने वांगचुक से बातचीत की पहल शुरू की है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के समर्थन में 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद हो रही बड़ी बैठक की। अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में ट्रस्ट की कई समितियों के पुनर्गठन, उनके कामकाज की समीक्षा पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक महासचिव पद के लिए नाम और नए सीईओ के चयन पर भी विचार किया जा सकता है। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के नाम पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा राम मंदिर से जुड़े मामलों में एसआईटी की जांच रिपोर्ट की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल हो सकती है। वहीं गल विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से अयोध्या में हिंदू संतों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण धार्मिक संगठनात्मक मुद्दों पर मंथन होने की उम्मीद है। और बात करेंगे कुदरत के बादल बम की। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि देश के कई इलाकों में त्राहिमाम मच गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक बारिश का ब्रेक फेल है। जगह जगह कुदरत का बादल बम फट रहा है तो मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
6: सैलाब में जिंदगी और मौत की सीधी जंग। कहीं उफंती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं दहकते पहाड़ों पर जिंदगी की लड़ाई। कहीं सैलाब के बीच मौसम से सीधी टक्कर। कहीं कागज के तिनके की तरह बही गाड़ियां। पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही ही तबाही। जगह जगह फट रहा है बादल बम। सैलाब अटैक जारी, मानसूनी संकट काल भारी। ये तस्वीरें राजौरी के थामंडी इलाके में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। भारतीय सेना की 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने उफानती लहरों के बीच 13 स्थानीय निवासियों की जान बचाई। हुआ यूं कि भारी बारिश के चलते पहाड़ी नाले में अचानक बाढ़ आने से लोग फंस गए। आप देख सकते हैं कि नाले में पानी का बहाव कितना तेज है। सेना के जवानों ने उफनते सैलाब के आर पार एक रस्सी बांधी और फंसे हुए हर नागरिक को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए लोगों में 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक हालात में चलाया गया। क्योंकि भारी बारिश के चलते नाले का बहाव लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में रेस्क्यू टीम ने जान पर खेलकर लोगों को बचाया। मुश्किल की घड़ी में देवदूत बनकर खड़े हुए सेना के जवानों ने 13 जिंदगियों को बचा लिया। जिंदगी और मौत की सीधी जंग। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश का कहर ऐसा है कि पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें पत्थरों का टीला बन चुकी हैं, तो भूस्खलन के चलते यातायात ठप है। कुदरत की इसी क्रोध लीला का शिकार ये बस बन सकती थी। दरअसल अचानक पहाड़ी से पत्थर बरसने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने वक्त रहते बस को रुकवा दिया। आप देख सकते हैं कि मलबे में यही बस फंस गई थी, जिसमें कई यात्री सवार थे। हुआ यूं कि भूस्खलन के बाद मलबा बस के सामने आ गया। बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गई थी। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए।
9: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। ऐसा ही मंजर हिमाचल के जिला चंबा में भी देखने को मिल रहा है। रेड अलर्ट के चलते कल रात से लगातार बारिश हो रही है। इससे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रास्ते बंद पड़े हैं और कई जगह जो है सड़क पूरी तरह से बह गई है। चंबा जिला के पांगी में बादल फटने से कई मजदूरों को रेस्क्यू भी किया गया है। वहीं अगर बात करें चंबा जिला के भटियात क्षेत्र की, तो वहां पे नूरपुर को जोड़ने वाली, जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली, चंबा से जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली लाहड़ू नूरपुर सड़क जो है उसका लगभग 200 मीटर हिस्सा जो है वो पूरी तरह से चक्की नदी में समा गया है। बारिश का कहर जो है लगातार जारी है और अभी आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बारिश का अनुमान बताया जा रहा है।
6: सैलाब से जिंदगी की जंग, ये तस्वीरें चंबा के कलाह नाले की हैं। तस्वीरों में कैद मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। आसपास सैलाब का कहर और एक चट्टान पर तीन मजदूर फंसे हुए हैं। अचानक नाले का जल स्तर बढ़ने की वजह से तीन मजदूरों को बचाने का मौका नहीं मिला। तीनों मजदूर बीच जलधारा में फंस गए। जबकि उनके कुछ दूसरे साथी दूसरे छोर पर मौजूद थे। सैलाब में फंसे लोगों के पास तैरकर बचने का रास्ता नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव उन्हें बेमौत मार सकता था। जबकि हर मिनट बढ़ता जल स्तर उनकी सांसें अटकाने के लिए काफी था। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने जल धारा में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक बड़ी लकड़ी को एक चट्टान से दूसरी चट्टान के बीच रखा गया। उसके बाद तीनों मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक बादल फटने के बाद नाले में अचानक बाढ़ आ गई थी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी नालों और खड्डों के आसपास आवाजाही से बचें, क्योंकि अचानक जल स्तर बढ़ने का खतरा बना रहता है।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबर जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: क्या मूंगा धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है? क्या मूंगा धारण करने से व्यक्ति का भय दूर होता है? क्या मूंगा धारण करने से महिलाएं स्वस्थ रहती हैं? क्या है मूंगा रत्न की विशेषता और कैसा है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

हिरासत से रिहा हुए राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस नेता। राहुल ने वीडियो मैसेज जारी कर मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बोले पीएम मोदी भी छात्रों से माफी मांगे। धरने को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर हमला, कहा छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस। जितेंद्र सिंह ने कहा चर्चा की मांग तो मानी लेकिन वो मुकर गए। नितिन नवीन ने भी की निंदा। सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल की। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में मुलाकात की। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं सोनम वांगचुक। और मानसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर दो दिन से जारी है गतिरोध। पूरे सत्र में 7 अहम कानून लाने की तैयारी में है सरकार। अयोध्या में आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर चर्चा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी हो सकती है समीक्षा।

आपका आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मंगल के रत्न के बारे में जिसको कहते हैं मूंगा यानी कोरल। मूंगा कहां तक असर डालता है, किनको मूंगा पहनना चाहिए और मूंगा पहनने के लाभ क्या हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। देखिए आज हम बात कर रहे हैं मंगल के रत्न के बारे में जिसका नाम है मूंगा।

मंगल नाम का जो ग्रह है, ये आप भले ही समझते हो कि फायर का ग्रह है, लेकिन ये पूरी तरीके से अग्नि का ग्रह नहीं है। मंगल में कुछ हिस्सा जल का भी होता है। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। मेष अग्नि राशि है और वृश्चिक जलीय राशि है। तो लगभग 70-80% तक अग्नि होती है और 20-30% तक मंगल में जल होता है। इसी प्रकार मूंगे में भी अग्नि और जल, इन दोनों का हिस्सा पाया जाता है। मूंगा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक लाल मूंगा और एक सिंदूरी मूंगा, यानी ऑरेंज कोरल। लाल मूंगा इटैलियन मूंगा होता है, ये उग्र स्वभाव का है, ये कमजोर मंगल को ताकत देता है। जो नारंगी मूंगा है उसे कहते हैं इंडियन कोरल। नारंगी मूंगा सौम्य होता है और ये नकारात्मक मंगल की दुष्टता को कम कर देता है। तो मंगल का रत्न मूंगा इसीलिए है क्योंकि ये समुद्र के जल से संबंधित होता है और सूर्य की किरणों से इसके अंदर अग्नि की मात्रा भी पाई जाती है। मूंगे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना शुभ है किस राशि के लिए और किस राशि को सावधान रहना होगा ये भी बताएंगे। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग हैं, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। देखिए, अगर आपने मूंगा पहना और मूंगा आपको सूट करे, मूंगा आपको लाभ पहुंचाए, तो क्या क्या लाभ मूंगा पहनने से होते हैं? अगर मूंगा आपको लाभ पहुंचाए तो आपका साहस बढ़ेगा, आत्मविश्वास ताकतवर होगा।

का कॉन्फिडेंस में लाभ होगा। मूंगा अगर फायदा करे तो रक्त के मामले में और त्वचा संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। महिलाओं को जो गायनिक समस्याएं होती हैं, पीरियड्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम महिलाओं को होती है, अगर वो मूंगा पहने और उन्हें लाभ हो तो ये समस्याएं कम हो जाती हैं। टेक्निकल फील्ड में और फोर्स की नौकरी, पुलिस की, आर्मी की, इन नौकरियों में मूंगा पहनने से लाभ होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष है और आपको मूंगा सूट करता है तो मूंगा पहनने से मंगल दोष की समस्याओं का निवारण होता है। मूंगे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर की बाधा दूर होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें

आज का पहला प्रश्न नरेंद्र पाल सिंह जी ने बिजनौर से लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। 2 मई 1994 का जन्म है बेटे का, 10:05 प्रातः बिजनौर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा नौकरी करेगा या व्यापार करेगा और उसके विवाह के योग क्या हैं? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर वो टीचिंग के क्षेत्र में जाएं, कंप्यूटर में जाएं, सेल्स या मार्केटिंग की नौकरी करें तो उसमें सफलता मिलने की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। जहां तक इनके विवाह का प्रश्न है, इनकी कुंडली है मिथुन लग्न की और मकर राशि की, और इनकी जो दशा चल रही है वो राहु में मंगल की चल रही है, तो इनकी शादी होने का जो समय है वो साल 2027 में दिखाई दे रहा है और विवाह के बाद ये उन्नति ज्यादा कर पाएंगे। एक इनको ओपल बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करवा दें और इनको कहें कि ये सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। अब अगर आपने बिना सोचे विचारे, बिना किसी के सलाह के अपने मन से मूंगा पहन लिया तो मूंगा आपको नुकसान कर सकता है, और अगर आपको मूंगा नुकसान करेगा तो क्या नुकसान होगा? मूंगा अगर नुकसान करे और आपने मूंगा पहना है तो आपके साथ दुर्घटना घट सकती है, आपको शल्य चिकित्सा से, सर्जरी से, ऑपरेशन से गुजरना पड़ सकता है, वाद विवाद हो सकते हैं, झगड़े लड़ाइयां होंगी, मुकदमेबाजी की और जेल जाने की नौबत आ सकती है। मूंगा अगर नुकसान करे तो रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं, रिश्तों में विवाद हो सकते हैं, खास तौर से भाई भाई के संबंध खराब हो सकते हैं, स्वभाव उग्र हो सकता है, क्रोध एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और आपने मूंगा पहना है, मूंगा आपको नुकसान करे तो ऐसे लोग दुस्साहस में आकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं जिससे जीवन संकट में आ जाता है। मूंगे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, धन की हानि हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब आपको अगर सलाह दी गई है मूंगा धारण करने की, तो मूंगे को धारण करने का तरीका क्या है वो भी आपको बताते हैं। मूंगे को तांबे की अंगूठी में या सोने की अंगूठी में, अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। मंगलवार को दोपहर में थोड़ा सा सूर्य ताकतवर हो जाए तब मूंगा धारण करना ज्यादा बेहतर होगा। मूंगा धारण करने के पहले इसको गंगा जल में कम से कम एक घंटे डुबाए रखें, उसके बाद गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लें और अपने ईष्ट देव को या हनुमान जी को मूंगा अर्पित करके तब धारण करें। अगर आप मूंगा धारण करते हैं अंगूठी में या लॉकेट में, तो मूंगे के साथ हीरा, पन्ना या नीलम ये आपको धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपको मूंगा पहनने की सलाह दी जाती है तो मेरी एक सलाह ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान देकर थोड़ा सा पूछ लें कि क्या मैं मूंगे के साथ मोती भी पहन सकता हूं, क्योंकि अगर आप मूंगा और मोती एक साथ पहने तो ये कॉम्बिनेशन आपको धन प्राप्त करवाने में, आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करवाने में आपकी काफी सहायता कर सकता है। तो आप ऐसा करिए, जब भी मूंगा पहनिए सलाह लेकर साथ में एक मोती भी धारण करिए। मूंगा मोती का कॉम्बिनेशन पहनने से आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि किन लोगों के लिए मूंगा धारण करना शुभ होता है और किनको मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, जिनकी कुंडलियों में मंगल कारक हो, फायदेमंद हो या फायदेमंद हो सकता हो, उनके लिए मूंगा धारण करना शुभ होता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न के लिए मूंगा पहनना बहुत अच्छा है, और उसमें भी कर्क लग्न और सिंह लग्न के लिए मूंगा पहनना बहुत ही अच्छा है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और तुला लग्न के लिए मूंगा धारण करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, मैं लग्न की बात कर रहा हूं। वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला लग्न के लिए मूंगा धारण करना कदापि शुभ नहीं है। मकर लग्न में और कुंभ लग्न में मूंगा विशेष दशाओं में धारण किया जा सकता है, विशेष स्थिति और परिस्थिति में। जो लोग
क्रोधी बहुत हैं या जो लोग बहुत जल्दी वायलेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनके अंदर हिंसा आ जाती है, ऐसे लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। जो लोग आलसी स्वभाव के हैं, जिनको डर बहुत लगता है, डरपोक हैं, ऐसे लोगों को मूंगा जरूर पहनना चाहिए। देखिए, लग्न के आधार के अलावा आप अपनी जरूरत के आधार पर भी मूंगा पहन सकते हैं। जैसे अगर कोई महिला है और गायनिक प्रॉब्लम है या संतान होने में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, तो महिला सलाह लेकर मूंगा पहन सकती है। या अगर कोई व्यक्ति है, उसकी बार बार सर्जरी होती है या बार बार रक्त से संबंधित समस्या होती है, तो ऐसा व्यक्ति भी सलाह लेकर मूंगा पहन सकता है। तो लग्न के अलावा आप अपनी जरूरत के अनुसार, अपने कुंडली के तत्वों के अनुसार और मंगल की पोजीशनिंग के हिसाब से भी मूंगा पहन सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में शांति रखें। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। गुड़ का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

आर्थिक लाभ होगा, करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि मंगलवार को अगर आप सर्जरी करवाते हैं, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करवाते हैं, तो ऐसा करना अच्छा होता है। क्या ऐसा है? देखिए, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से संबंधित होता है और मंगल का संबंध सर्जरी से भी होता है। तो अगर मंगलवार के दिन सर्जरी कराई जाए तो सामान्य स्थितियों में मंगल का प्रभाव बना रहता है और सर्जरी कराना बेहतर होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल बहुत खराब है तब बात दूसरी है, अन्यथा सामान्य स्थितियों में मंगलवार को सर्जरी कराने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, परिवार में समस्याओं से बचाव करें। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, काम की अधिकता रहेगी। वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह हनुमान चालीसा पढ़ करके जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो हनुमान जी की आरती करने के बाद जाइएगा,
स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

कन्या राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। धनु राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा। मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सेना मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है। कारगिल में आई फ्लैश फ्लड के बीच देवदूत बनकर सामने आए रेस्क्यू टीमों के जवान, मलबे के बीच से रास्ता बनाकर पीड़ितों की मदद की, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जम्मू के राजौरी में भी सेना ने साहस दिखाया, तेज बहाव नाले में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित निकाला। 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने रस्सी के सहारे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाई। राजौरी, पुंछ, गुरेज, कारगिल और तंगमर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है राहत अभियान में। आपदा के चलते भूस्खलन के बाद सड़कों पर मलबा आकर के गिरा, चट्टाने गिरी, जेसीबी की मदद से रास्ता हटाया कर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की जा रही है। बड़गाम के बीरवाह बाजार में फ्लैश फ्लड का कहर देखने को मिला, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरह ढह गया, कैमरे में भयानक मंजर कैद हुआ। ताश के पत्तों की तरह पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिरने से पहले दुकानदार सामान बचाते जुटाते नजर आए, पुलिस ने हर किसी को सुरक्षित बाहर निकाला। नवसारी में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं, तड़केश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया, कावेरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गुजरात में बारिश का असर देखने को मिला, डांग में बाढ़ जैसे हालात, तो घरों में, दुकानों में, बाजारों में पानी घुस गया, लोगों को अब भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बो घाटी में भी बारिश का कहर देखने को मिला, पहाड़ी पर बादल फटा, नीचे बने घर, गौशालाएं, पल भर में सब कुछ खत्म हो गया, 14 घरों का नामो निशान इसमें मिट गया। कांगड़ा के डीसी ने जानकारी साझा की, घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। विकासनगर में जर्जर पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरता नजर आया, भूस्खलन से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। यूपी के उन्नाव में तेज बारिश के दौरान 2 बाइक सवार और 5 लोगों पर एक पेड़ गिर गया, 1 बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमरेली में तालाब किनारे आराम फरमाती एक शेरनी को देखकर लोग हैरान हुए, लोगों ने दूर सड़क से अपने मोबाइल में इस कैमरे में मंजर को कैद किया। दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हुआ, लोगों को तपती उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए भी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। बिहार के सहरसा में बाढ़ से भयावह स्थिति देखने को मिली, कोसी नदी में उफान के कारण कई इलाके जलमग्न हैं, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है शिक्षक, शिक्षिकाएं और बच्चे। बाढ़ प्रभावित असम में भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित शिवसागर इलाके में हवाई बचाव राहत अभियान के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। देहरादून के विकास नगर में गोना नदी के सैलाब में स्कूटी सवार बह गया, युवकों ने जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में है, सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। हिरासत से रिहा होने के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, कहा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को भी माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की न्याय की लड़ाई जारी रहेगी, शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल टूल के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान का राहुल और कांग्रेस पर आरोप कि पीएम मोदी के घर के बाहर धरना देना गलत प्रथा है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल को लेकर के कहा कि सरकार पूरी चर्चा के लिए तैयार होने के बाद कहने के बाद भी कांग्रेस ने बहस की बजाय पॉलिटिकल तमाशा चुना। धर्मेंद्र प्रधान का आरोप है कि कांग्रेस का मकसद कभी भी स्टूडेंट्स के लिए सोल्यूशन नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल हेडलाइन के लिए हंगामा करना था। पवन खेड़ा ने पोस्ट साझा करके कहा कि युवा मुद्दों पर संसद में बहस और छात्रों पर दर्ज मामलों की वापसी की जाए, प्रधानमंत्री से बिना शर्त माफी की अपील की। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की हिरासत पर शशि थरूर ने कहा कि असहमति को पुलिस कार्रवाई से दबाया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर पथराव और पुलिस कार्रवाई के दावों को दिल्ली पुलिस ने गलत दावा किया है, अफवाहों से बचने की अपील की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन में घंटों चला हाई वोल्टेज हंगामा, पुलिस ने राहुल गांधी को धरने से जबरन उठाया। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन में प्रियंका, अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता भी पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने जगह को खाली कराकर सभी को बसों में ले गए। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए इसे खतरनाक बताया।
राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि मोदी जी सारी ताकत लगा लो, लेकिन छात्रों के इंसाफ की लड़ाई अब रुके नहीं रुकेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने खुद जाकर मुलाकात की थी, लेकिन राहुल ने अब अपनी शर्त और अपनी बात बदल दी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार नीट पर चर्चा को अब तैयार है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नई मांग की गई। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर फिर आरोप लगाया और कहा कि राहुल बार बार अब बयान बदल दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं जहां चाहूं बैठूंगा, ये मेरी मर्जी है। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार से सवाल उठाया, कहा कि छात्रों की मांगे क्यों नहीं मान रही है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी उनकी सुने, उनकी बात सुने। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में जंतर मंतर पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। जंतर मंतर पर चल रहे धरने में एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी पहुंची, सरकार से युवाओं की बात सुनने का आग्रह किया। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत भी जंतर मंतर पहुंचे, उद्धव ठाकरे आज दिल्ली आकर छात्रों के प्रोटेस्ट का समर्थन करें। प्रियंका गांधी से मिलने मंदिर मार्ग पहुंची सोनिया गांधी, प्रदर्शनकारियों ने जमकर यहां नारेबाजी भी की। जंतर मंतर पहुंची महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी अमित शाह पर निशाना साधा, कहा मोदी और शाह उन लोगों से निपटना नहीं जानते जो उनसे नहीं डरते, ऐसे लोग सरकार के लिए आउट ऑफ सिलेबस हैं। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे, आतिशी सौरभ भारद्वाज संजय सिंह भी उनके साथ जंतर मंतर पर मौजूद रहे। राहुल गांधी के धरने को आम आदमी पार्टी ने बताया बीजेपी से मिली भगत, कहा सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश, आतिशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये क्या चुगलबंदी है। दिल्ली पुलिस ने बीती रात 10 बजे करीब सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया था, राहुल गांधी अखिलेश यादव भी छत्रसाल स्टेडियम से रिहा किए गए। सोनमांशु को बीती शाम 6:40 पर सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, अस्पताल ने कहा डिस्चार्ज के समय उनके वाइटल पैरामीटर स्थिर थे, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया। राजनांदगांव में छात्रों ने प्रदर्शन किया, जंतर मंतर आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरे सैकड़ों युवा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। पंजाब के मानसा में किसानों का प्रदर्शन, युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। मध्य प्रदेश विधानसभा में भारी हंगामे के बीच पास हो गया यूसीसी बिल, सीएम मोहन यादव ने कहा इसे स्वर्णिम अध्याय। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने खुशी जताई, कहा सीएम मोहन के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम है और ये मध्य प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुस्लिम तुष्टिकरण के चक्कर में कांग्रेस हिंदुस्तान विरोधी हो गई, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान में एक विवाह एक विधान का प्रावधान है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चोरी छिपे लाया गया है ये कानून, सरकार ने जबरन लागू किया। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी यूसीसी का विरोध करते हुए कहा कि ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी की सरकार। महाराष्ट्र के बीड में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता ने कार्यालय में लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, जांच में पुलिस जुटी है। महाराष्ट्र के अकोला में अलंकार मार्केट में भयंकर आग लग गई, इलेक्ट्रॉनिक की 3 दुकानें जलकर खाक, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। पश्चिमी दिल्ली के फतेहनगर इलाके में एक मकान में आग लग गई, फटे सिलेंडर, कई गाड़ियां जल गई, कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में एक घर की तीसरी मंजिल में आग लग गई, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। गुरुग्राम की सोसाइटी में बड़ा हादसा हुआ, प्रैक्टिस के दौरान लड़के के सिर पर बास्केटबॉल का पोल गिर गया, खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नोएडा में एम्बुलेंस की आड़ में चल रही थी गांजा की तस्करी, पुलिस ने 64 किलो गांजा और अंतर्राज्यीय तस्कर को दबोच लिया। सहारनपुर में पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान के मीट प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, 14 महिला कर्मचारी बेहोश हुए। हरिद्वार में खनन रोकने गई टीम पर माफियाओं ने हमला किया, नकाबपोश बदमाशों ने बरसाए लाठी डंडे, सरकारी गाड़ी के शीशे भी तोड़े। यूपी के बलरामपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई, आईएसआई नेटवर्क से जुड़े युवक को गिरफ्तार किया। करनाल एसएफ की बड़ी कार्रवाई, 5 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया, 5 विदेशी पिस्टल, 14 कारतूस बरामद, सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर फायरिंग करने का आरोप था। सोनीपत में 12 लाख की लूट का खुलासा हुआ है, यूपी पुलिस ने बर्खास्त हेड कांस्टेबल को ही मास्टरमाइंड बताया, मामले में 3 गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के सतना में एक मंदिर परिसर में युवक पर लाठी डंडों से हमला हुआ, पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया, घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुलंदशहर में अम्बेडकर पर टिप्पणी के आरोप में एक युवक पकड़ा गया, थाने ले जाते समय भीड़ ने पुलिस की गिरफ्त में पीटा। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ, 3 लोग घायल हुए, पुलिस ने मोर्चा संभाला।
बिजनौर में खेत में लगे खटके में एक तेंदुआ फंस गया, इलाके में दहशत मची, घंटों बाद वन विभाग ने रेस्क्यू किया। कोलकाता के वीआईपी रोड पर दो गुटों में भयंकर झड़प हो गई, बीजेपी कार्यकर्ता पर शहीद दिवस में शामिल होने जाने से कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप। पुणे के लोहागढ़ किले के ऐतिहासिक जलकुंड में पर्यटकों की लापरवाही, तैराकी का वीडियो वायरल होते बजरंग दल ने रोक लगाई। अहमदाबाद में करीब 40 करोड़ के अवैध पटाखे जब्त किए गए, दो गोदाम सील, दो गिरफ्तार हुए। वडोदरा में पांचवी मंजिल से कूदकर एक महिला ने जान देने की कोशिश की, लोगों की सूझबूझ से उसकी जान बचाई गई। सूरत में एक ग्राहक को परोसी गई मंचूरियन की प्लेट में चूहा मिलने का वीडियो वायरल हुआ है, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है, फूड सेफ्टी विभाग ने इस पर कार्यवाही की है। अगले महीने होने वाले FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 मेंबर्स की भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होंगे ये मुकाबले। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान, डिफेंडर अमनदीप लाकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल, रविंद्र सिंह, मोइरांगथम और फॉरवर्ड सेल्वम कार्थी टीम से बाहर किए गए हैं। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगी अभियान, 19 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा मुकाबला। 23 जुलाई से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज, आयरलैंड इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद अब ये सीरीज अहम होगी। BCCI ने घरेलू टूर्नामेंट और भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए टेंडर जारी किया, अगस्त में खत्म हो रहा मौजूदा स्पॉन्सर करार। ओ माय गॉड 2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म ओ माय डॉग का ट्रेलर सामने आ चुका है, 31 जुलाई को फिल्म दस्तक देगी। थलापति विजय की जन नायकन के रिलीज में चंद दिन बाकी है, नया प्रोमो भी फिल्म का जारी कर दिया गया है। नेटफ्लिक्स पर जल्दी रिलीज होगी ऑपरेशन सफेद सागर की शौर्य गाथा से जुड़ी कहानी, 7 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगी वेब सीरीज। 17 साल बाद पर्दे पर लौट रहे फुनसुक वांगड़ू, 4 सितंबर को थिएटर्स में री रिलीज होगी आमिर खान की 3 इडियट्स। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती की सगाई हुई, अपने मंगेतर माइटस मेंचर्स के साथ सगाई की तस्वीरें साझा की। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के 3 सबसे बड़े सैन्य अड्डों पर हमले करने का दावा किया, कुवैत के आरिफ जान कैम, बियोहरिंग, अहमद अल जाबिर एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। ईरानी सेना ने पड़ोसी देशों में मौजूदी अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला किया, जॉर्डन बहरीन समेत कुछ देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यमन के हूती ग्रुप ने शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी, कहा सऊदी बंदरगाहों पर माल लोड या अनलोड करने से बचें। गजा में इसराइल का भीषण हवाई हमला हुआ, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई, इजरायली सेना का बयान हमास के एक सदस्य को निशाना बनाकर हमला किया गया था। दक्षिण लेबनान के जाबतार इलाके से इजरायली सेना की वापसी हुई है, जिसके बाद लेबनान सेना वहां तैनात हो गई, अमेरिका समर्थित शांति योजना के तहत लेबनानी सेना दक्षिण लेबनान के कुछ इलाकों में हिजबुल्ला के हथियार जब्त करेगी। रूस ने आजोव सागर और क्रेच स्ट्रेट के बंदरगाहों में लंगर डालने वाले जहाजों को लेकर के चेतावनी जारी की है। रूसी सेना ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन के खार्किव इलाके के वोल्फ्स्क इलाके पर कब्जा हो गया है, यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने ज़ापोरिज़्या पर भीषण हमला किया जिसमें 3 की मौत हुई है, 13 घायल हुए हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नम ने बड़ा बयान दिया है, कहा हमारी सरकार का मकसद लोगों पर बढ़ती महंगाई का बोझ कम करना है। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी हिस्से में अचानक आई बाढ़ से 20 लोगों की मौत हो गई, तालिबान प्रशासन के मुताबिक 100 लोग अभी भी लापता हैं, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। चीनी नौसेना का बड़ा युद्ध अभ्यास देखने को मिला है, टेक ऑफ लैंडिंग और हमले की ट्रेनिंग करते समय दिखे नौसैनिक, चीन के पहले एम्फीबियस असॉल्ट शिप ने भी अभ्यास में हिस्सा लिया।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri, Hind Bade Aaram Se,
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: बड़ी खबर आ रही है पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम से, जहां नामची जिले में हुए लैंडस्लाइड में अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। टनल के अंदर अभी भी 5 मजदूर फंसे हैं, जिनको निकालने की कोशिश जारी है। निर्माणाधीन ये समरदुंग टनल के गेट पर हादसा हुआ था। NHPC के तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े टनल के पास लैंडस्लाइड हुई थी। उस समय मजदूर जब फंसे थे, राहत बचाव कार्य चलाया गया, 25 मजदूर टनल के अंदर ही फंसे रह गए थे। भूस्खलन हुआ, जिसके बाद टनल का एंट्री पॉइंट मलबे से बंद हो गया और अब 5 मजदूर अभी भी सुरंग में फंसे हैं, जबकि 20 मजदूरों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। बेहद दर्दनाक हादसा ये। NHPC के पास ये पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा टनल था, मलबा गिरने के बाद अंदर फंसे रह गए। राहत बचाव कर्मी लगातार अभियान चला रहे थे, लेकिन सिक्किम के इस लैंडस्लाइड में अब 20 मजदूरों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: पहाड़ों पर मानसूनी आफत का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का रेड अलर्ट। बादल फटने के बाद राजौरी और करगिल में हालात नाजुक। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर इस वक्त मानसून का कहर झेल रहा है। पूंछम के बफलियाज इलाके में कुदरत का रौद्र रूप दिखा। लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड की चपेट में कई इलाके आ गए। ये तस्वीर पुंछ की है, जहां एक सुरंग पर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रही मशीनें भी आ गई। वहीं भारी बारिश के बाद शहर के बीच बह रहा पानी भी लोगों को डरा रहा है। अब किश्तवाड़ से आई डरावनी तस्वीर देखिए। यहां राइटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड से तबाही मच गई। क्षतिग्रस्त हुआ पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था। वहीं डोड़ा में रागी नाला के पास लैंडस्लाइड की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। राजौरी के नौशहरा की वाई ये तस्वीर देखिए, जहां भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से नदी के बीच टापू में फंसे को निकाला गया। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सरकार ने की सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में की मुलाकात। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है वांगचुक। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर दो दिन से जारी है गतिरोध। पूरे सेशन में 7 अहम बिल लाने वाली है सरकार। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम बैठक। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर हो सकती है चर्चा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी समीक्षा संभव।

0: इस्तीफा जल्द से जल्द दे, ये मांग राहुल गांधी ने सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई हो, जिन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है उन पर कार्रवाई की जाए, साथ ही छात्रों पर लगाए गए जो केस है उनको भी जल्द से जल्द हटाया जाए। साथ ही देश के छात्रों से पीएम मोदी भी माफी मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं। वही लोकसभा और राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए, वो उस पर डिबेट करना चाहते हैं, साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर रिफॉर्म शुरू करें। तो ये कुछ मांग है जो राहुल गांधी ने सरकार से की है।
1: नीट को लेकर दिल्ली में दिखा हाई वोल्टेज हंगामा, राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी पीएम आवास के मुहाने पर धरने के बाद अब संसद में राहुल गांधी ने सरकार को घेरने का मन बना लिया है। हिरासत से रिहा होने के बाद राहुल गांधी ने अब लोकसभा और राज्यसभा में सीधे चर्चा की मांग की और कहा पूरा विपक्ष नीट पेपर लीक के विरोध में और छात्रों के साथ खड़ा है। संसद मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प पर राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी को घेरा और माफी मांगने की मांग रख दी। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। वहीं थाने से रिहा होने के बाद प्रियंका गांधी ने भी छात्रों की मांगों को जायज ठहराया और कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। जहां एक तरफ राहुल गांधी और विपक्षी नेता शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहुल और कांग्रेस पर छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। वहीं पीएम आवास के बाहर राहुल के धरने को लेकर बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे अराजकता फैलाने की कोशिश बताया। जहां कल नीट के मुद्दे पर संग्राम देखने को मिला, वो अब संसद में दिखने के आसार हैं। आज तक ब्यूरो।
0: तो राहुल गांधी और कांग्रेस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी निशाना साधा। एक बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस स्टूडेंट्स का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के घर के बाहर धरना दिया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। सरकार की पूरी चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहने के बाद भी कांग्रेस ने बहस के बजाय पॉलिटिकल तमाशा चुना। देश के स्टूडेंट्स पॉलिटिकल कैंपेन में सहारा बनने से कहीं बेहतर हकदार हैं। हम अपने स्टूडेंट्स के लिए गुस्से से कहीं ज्यादा कर्जदार हैं। राहुल गांधी की मांगों के बाद उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर क्या कहा है वो आप समझे। उन्होंने कहा कि छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे, कांग्रेस कर रही है। धरना देकर जनता को असुविधा पहुंचाई गई है। जो राहुल गांधी ने धरना दिया उसको लेकर भी असुविधा हुई है, ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को भी तोड़ा गया, उनकी अनदेखी की गई है। सरकार पूरी तरह से चर्चा को तैयार है मानसून सत्र के दौरान। ऐसे में कांग्रेस ने बहस के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन का रास्ता चुना है और लगातार कांग्रेस को इस मुद्दे घेर रही है एनडीए। तो कांग्रेस का उद्देश्य समस्याओं का समाधान निकालना नहीं था, यह धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है अपने ट्वीट में। राहुल के बयान के बाद धर्मेंद्र प्रधान का यह ट्वीट सामने आया है। वहीं कांग्रेस और राहुल के धरना प्रदर्शन को लेकर सियासत अभी भी तेज है, तो आम आदमी पार्टी ने भी राहुल गांधी के धरने वाली राजनीति पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राहुल का धरना सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिश है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। इस पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने पलटवार करते हुए कहा है कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, हम समझ सकते हैं, बीजेपी के साथ जारी आपकी जुगलबंदी फेल हो गई है।
1: नीट पेपर लीक को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम, राहुल गांधी को मिला अखिलेश यादव का साथ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में शुरू हुआ क्रेडिट वॉर। पीएम आवास पर राहुल गांधी का जैसे ही धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन से दूरी बनाते हुए आपत्ति जाहिर की और कहा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शनों को कमजोर करने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यहां तक कह दिया कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बैठा दिया। इसके बाद

0: कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवासन ने संजय सिंह को आड़े हाथों लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, आपको बहुत तकलीफ हुई है, हम समझ सकते हैं। बीजेपी के साथ जारी आपकी जुगलबंदी फेल हो गई है, इसके लिए। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी पीएम आवास पर राहुल के प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े किए और इसे बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी बता दी। तो अब साफ दिख रहा है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन पर अब सियासी क्रेडिट वॉर शुरू हो गया। जहां एक तरफ राहुल के साथ अखिलेश समेत कुछ विपक्षी दल नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी सियासी रोटी सेंकती दिख रही है। आज तक ब्यूरो।
1: उधर सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल सरकार ने की है। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती सोनम वांगचुक से बीती रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की और माना जा रहा है कि सरकार ने वांगचुक से बातचीत की पहल शुरू की है। आपको बता दें कि वांगचुक सीजेपी के प्रदर्शन के समर्थन में 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और उन्हें पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती भी कराया था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से आगे के इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो गुरुग्राम में सोनम वांगचुक भर्ती है, मेदांता अस्पताल में वो भर्ती है और उसके बाद लगातार बातचीत का दौर भी चल रहा है उनसे, सोनम वांगचुक से। ऐसे में सोनम वांगचुक से बातचीत की पहली पहल की गई है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उनसे खुद मुलाकात की। अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक से अस्पताल में ये मुलाकात हुई है दोनों नेताओं की। वही देर रात सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्री मिले हैं और इन मुद्दों पर बातचीत की गई है उनसे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक भर्ती है और वहीं पर दोनों मंत्री पहुंचे और उन्होंने वहां पर सोनम वांगचुक से इस पर बात की। अब बात संसद के मॉनसून सत्र की भी कर लेते हैं, क्योंकि आज सत्र का तीसरा दिन है। दो दिन से दोनों सदनों में भारी हंगामा हो रहा है और अब आज भी संसद के मॉनसून सत्र में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दलों की ओर से नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा विवाद जैसे मुद्दों को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी है। वहीं 13 अगस्त तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार कई अहम बिल भी लाने वाली है। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन दोनों दिन हमने देखा संसद में विरोध ही हुआ और मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाई और दोनों दिन हंगामेदार संसद का सत्र रहा। पेपर लीक, चढ़ावा चोरी पर भी हंगामा हो रहा है पिछले दो दिन से और आज तीसरा दिन है मॉनसून सत्र का। 7 बिल सरकार पेश करेगी, लेकिन मॉनसून सत्र बार बार स्थगित करना पड़ रहा है।
2: 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित।
1: और एक और खबर, कल दिल्ली में पुलिस और आरएएफ जवानों पर पत्थरबाजी की गई। कनॉट प्लेस इलाके में कल आरएएफ के वज्र वाहनों पर निशाना बनाया गया। पुलिस ने काफी संयम के साथ वहां से भीड़ को हटाया, लेकिन ऐसे हमलों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है तो फिर नई दिल्ली इलाके में खुलेआम घूम रही भीड़ में आखिर कौन लोग थे, क्यों पुलिस पर पथराव किया गया, क्यों आरएएफ के जवान को निशाना बनाया गया। 21 जुलाई की तस्वीर आप देख रहे हैं, भीड़ ने पुलिस आरएएफ को किस तरीके से निशाना बनाया है, उन पर पत्थरबाजी की गई है और सवाल यही है कि आखिर इस भीड़ में बच्चों के अलावा आखिर और कौन है जो पुलिस पर पत्थर बरसा रही है। कनॉट प्लेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीड़ ने किस तरीके से पुलिस और आरएएफ को निशाना बनाया है, जवानों को वहां पर निशाना बनाया गया। पहले से वहां पर आखिर पत्थर कैसे मौजूद थे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि टारगेट कर पुलिस को निशाना बनाया गया है भीड़ ने। ये तस्वीर देखिए आप, कैसे पुलिस को भगाया जा रहा है वहां से और आरएएफ के जो जवान है उन पर पथराव किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की जो टीम वहां पर है उन पर पथराव किया गया। तो आखिर इस भीड़ में जो बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके अलावा आखिर कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अरविंद ओझा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, ये तस्वीरें मैं देख पा रही हूं और भीड़ ने जिस तरीके से पुलिस को निशाना बनाया, आरएएफ को निशाना बनाया, धरना प्रदर्शन जिस मुद्दे को लेकर हो रहा है, ये तस्वीरें अलग नजर आ रही हैं। आखिर इस भीड़ में वो कौन लोग हैं जो लगातार पुलिस पर ऐसे हमले कर रहे हैं।
3: देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत चिंताजनक भी है और बहुत दुखद भी है। नई दिल्ली इलाका बेहद संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है क्योंकि संसद का मानसून सत्र वो चल रहा है और इन इलाकों में दिल्ली के तमाम आम लोग भी घूमने फिरने के लिए आते हैं। लेकिन कल देर शाम जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आरएएफ के जवान जो ड्यूटी कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी शांति व्यवस्था बनाए रखने की है, उस पर हमला किया गया। आरोप है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि पत्थरबाजी की गई। अब सवाल ये उठता है कि कल तो किसी तरह के प्रोटेस्ट के बारे में नहीं क्या कहा गया था, हालांकि कांग्रेस जनता पार्टी ने पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करने की बात की थी, लेकिन बातचीत के बाद बात बनी और जो प्रोटेस्ट है वो कॉल्ड ऑफ किया गया था। लेकिन उसके बाद इस तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है और उसके बाद पुलिस जब इनको रोकने की कोशिश करती है तो पत्थरबाजी होती है, डंडे चलते हैं। अब तस्वीरों में ये देखिए, ये तस्वीरें गवाही दे रही है। क्या इन तस्वीरों को कोई झुठला सकता है कि आरएएफ के जवान की एक तरह से लिंचिंग की जा रही है, उसको लात से मारा जा रहा है, उसको हाथ पैर से मारा जा रहा है, आरएएफ के जवान को घेर लिया जा रहा है। जो दिल्ली पुलिस है उसका कहना है कि स्टोन पिल्टिंग भी हुई है। तो ये किस तरह का प्रोटेस्ट है? शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की इजाजत सभी को है, चूंकि पुलिस भी सरकार भी
1: जानती है। बिल्कुल, ये तो प्रोटेस्ट को एक अलग दिशा में ले जाने की तस्वीरें सामने आई है। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की, क्योंकि जहां पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक भारी हंगामे के बीच पारित हो गया है। मंगलवार को सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताया और वॉकआउट किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पर्याप्त चर्चा का मौका नहीं दिया, जबकि कांग्रेस ने इस कानून को कानूनी चुनौती देने की तैयारी की बात कही है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यूसीसी विधेयक के पारित होने को ऐतिहासिक बताया। कांग्रेस ने विधेयक को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि वो कानूनी विशेषज्ञों से राय लेकर आगे की कार्रवाई करेगी।
4: आज मध्यप्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है।
5: ये भारतीय जनसंघ से हमारी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई है और हम पहले से ही समान नागरिक कानून के पक्ष में रहे। आपको स्मरण होगा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 लगाई थी, हमने विरोध किया था। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। जनसंघ का पहला आंदोलन था वो, देश के लिए पहला बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था और इसलिए हमारी तो विचारधारा वही रही और हमने जैसे मौका मिला धारा 370 हटा दी और इस देश में रहने वाले हर नागरिक के साथ समान कानून होना चाहिए। कानून के आधार पर किसी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो सही डेमोक्रेसी नहीं होगी।
1: एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, बात कर लेते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद हो रही बड़ी बैठक की। दरअसल अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की एक अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में ट्रस्ट की कई समितियों, उनके पुनर्गठन और उनके कामकाज की समीक्षा पर मुख्य चर्चा होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक महासचिव पद के लिए नाम और नए सीईओ के चयन पर भी विचार किया जा सकता है। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के नाम पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक से पहले एक बार फिर से वीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल बांगड़ा का भी नाम चर्चा में है। बांगड़ा का नाम ट्रस्ट महासचिव पद के दावेदार के रूप में सामने आया है। वैसे ट्रस्ट की आज प्रस्तावित बैठक में ट्रस्ट के पहले सीईओ के चयन पर फैसला हो पाना मुश्किल लग रहा है। वजह बताई जा रही है कि सीईओ के लिए इतने आवेदन आ गए हैं कि उनकी स्क्रीनिंग 4 दिन में संभव नहीं है। तो वही सिक्किम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां पर नामची जिले में हुए लैंडस्लाइड में अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। टनल के अंदर अभी भी 5 मजदूर फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश लगातार जारी है। निर्माणाधीन समुद्र टनल के गेट पर यह हादसा हुआ जहां पर एनएचपीसी के तीसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े टनल के पास लैंडस्लाइड की वजह से लगभग 25 मजदूर टनल के अंदर ही फंस गए। भूस्खलन के बाद टनल का एंट्री प्वाइंट मलबे से बंद हो गया, इसके बाद 20 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 5 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं क्योंकि वहां पर बारिश और फ्लैश फ्लड का कहर लगातार जारी है। कांगड़ा के शाहपुर की वो घाटी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। अचानक आए सैलाब में करीब 18 घर, स्कूल और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि कई गौशालाएं और मवेशी भी प्रभावित हुए हैं। प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। चंबा में भी भारी बारिश से भूस्खलन और सड़कें बंद होने की खबर सामने आई है। तीस्ता चंबा मार्ग पर बाढ़ में फंसी बस के सभी यात्रियों को सुरक्षित फिलहाल निकाल दिया गया है।
0: हिमाचल से उत्तराखंड तक मानसूनी आफत, कांगड़ा में बादल फटने से भारी तबाही, फ्लैश फ्लड से घरों में घुसा मलबा। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानो बादल फटने का सिलसिला जारी है। लाहौल स्पीति में बादल फटने के एक दिन बाद कांगड़ा में भी बादल फटने से भारी तबाही मची। कांगड़ा के शाहपुर की वो घाटी में बादल फटने के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड का रौद्र रूप देखने को मिला। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से करीब 18 घर, स्कूल और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गयी। मलबे में 9 गौशालाएं और कई मवेशी बह गए। बादल फटने की खबर मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव काम शुरू कर दिया। कांगड़ा ही नहीं, हिमाचल के बाकी इलाके भी मानसूनी आफत का सामना कर रहे हैं। चंबा जिला इस बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई सड़कें बंद हो गई हैं। मूसलाधार बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। चंबा के तीसा चंबा मार्ग पर भी बड़ा हादसा हुआ। कंदला नाला में अचानक बाढ़ आने से एक बस फंस गई। उस वक्त बस में कई यात्री सवार थे। खबर मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, फिर सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला। हिमाचल प्रदेश से पूजा शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: तो वही जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से बादल फटने और फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। दरअसल बड़गाम में तेज बहाव के चलते पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखते ही देखते नदी में समा गया। पुलिस और प्रशासन ने समय रहते हुए दुकानदारों को वहां से बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। उफनती नदी की लहरों में इमारतों की नींव को कमजोर कर दिया, इसकी वजह से पूरा मार्केट लहरों में समा गया है। भयावह तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बड़गाम से सामने आई।
0: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, भारी बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान, बाढ़ में बह गया बड़गाम का बाजार। जम्मू कश्मीर इस वक्त मानसूनी आफत का सामना कर रहा है। लगातार हो रही बारिश और फ्लैश फ्लड के चलते हाहाकार मच गया। बड़गाम से ये डरा देने जहां पलघर में बाजार की कई दुकानें पानी में समा गई। नदी के तेज बहाव के चलते मार्केट के नीचे की जमीन कटने लगी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने दुकानों को तुरंत खाली कराया, जिसके तुरंत बाद पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बह गया। बड़गाम ही नहीं, जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में भी बाढ़ बारिश का कहर जारी है। ये तस्वीरें गुरेज की हैं, जहां 4 जगहों पर बादल फटने के बाद भारी तबाही मची। खेत से लेकर सड़कें सब तबाह हो गई। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश के साथ लगातार हो रही लैंडस्लाइड से भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधमपुर में पहाड़ों से मलबा आ जाने के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। ये तस्वीर कठुआ की है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ के तेज बहाव में सड़क ही बह गई, जिसके चलते कई इलाकों से संपर्क टूट गया। राजौरी में भारी बारिश की वजह से फंसे लोगों को सेना को मैदान में उतारना पड़ा। 61 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने कई लोगों की जान बचाई। ये सब फ्लैश फ्लड में फंस गए थे। जो साफ है, धरती का स्वर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर इस वक्त मानसून का कहर झेल रहा है। श्रीनगर से अशरफानी के साथ आज तक ब्यूरो।
1: बात असम की कर लेते हैं, जहां पर बाढ़ बारिश कहर बरपा रही है। खासतौर पर अपर असम के जो जिले हैं वहां पर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित वो हुआ है। दरअसल जोरहाट, शिवसागर, नाजिरा, सोनारी और चराईदेव में सबसे ज्यादा हालात खराब नजर आए हैं।
0: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का कहर, लगातार हो रही बारिश से असम में बिगड़े हालात। मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, असम में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। जिसके कारण कई रिहायशी इलाकों और गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जोरहाट, शिवसागर, नाजिरा, सोनारी और चराईदेव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ये तस्वीर असम के जोरहाट की है, जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और सड़कें मानो दरिया सी नजर आ रही हैं, जिसके चलते कई परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों का सहारा लेना पड़ा है। असम के बाकी इलाके भी बाढ़ से अछूते नहीं रहे हैं। शिवसागर में हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ का पानी पुल तक पहुंच गया है। कई रिहायशी इलाकों, स्कूलों और सरकारी संस्थानों में पानी भर गया है। बाढ़ की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए असम सरकार ने आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। SDRF, NDRF और जिला प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं।
6: अपर असम में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, SDRF, NDRF लगातार लोगों को राहत शिविर लाने के लिए कोशिश कर जा रही है।
0: बाढ़ के चलते असम में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3,62,000 लोग प्रभावित हैं। असम के जोरहाट से पूर्णो विकास के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में मची जंग की। ईरान पर अमेरिका ने लगातार 11वीं रात ताबड़तोड़ हमले किए हैं। दरअसल अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाके ऐसे जिनको निशाना बनाया। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक तबरी, सिरिक, बुशहर, चाबहार में धमाके की आवाज सुनाई दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुशहर में 2 जगहों पर कई धमाके हुए हैं। तो 11वीं रात अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है फिर से। सिरिक, तबरीज, चबहार में धमाकों की आवाज काफी ज्यादा सुनाई दी गई है। बुशहर में भी कई धमाके हुए हैं। ईरानी मीडिया इस बात का दावा कर रही है। अमेरिकी हमले के बीच ईरान ने एक बार फिर से धमकी दी है। ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमांड ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के सभी हितों को निशाना बनाया जाएगा। परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ये चेतावनी दी गई है। यूएस उसके सहयोगियों पर हमले करेंगे। अब वक्त हो गया है सुपर 8 में फटाफट खबरों का। बड़गाम के बिरवा बाजार में फ्लैश फ्लड का कहर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहां कैमरे में कैद हुआ मंजर। गुरुग्राम की सोसाइटी में बड़ा हादसा, प्रैक्टिस के दौरान लड़के के सिर पर गिरा बास्केटबॉल पोल, खौफनाक वीडियो आया सामने। पश्चिमी दिल्ली के फतेह नगर इलाके में एक मकान में लगी आग, फटे सिलेंडर, जली कई गाड़ियां, कोई हताहत नहीं। हरिद्वार में खनन रोकने गई टीम पर माफियाओं का हमला, नकाबपोश बदमाशों ने बरसाए लाठी डंडे और सरकारी गाड़ी के शीशे भी फोड़े। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव, 3 घायल, पुलिस ने संभाला मोर्चा। पुणे के लोहगढ़ किले के ऐतिहासिक जलकुंड में पर्यटकों की लापरवाही, तैराकी का वीडियो वायरल होते हुए बजरंग दल ने रोक। वडोदरा में 5वीं मंजिल से कूदकर महिला ने जान देने की कोशिश की, लोगों की सूझबूझ से बची महिला की जान। फ्रांस में जंगलों में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी, जबकि प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा। चलिए सुपर 8 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे PNB One App, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या FD, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
2: PNB One App, बैंकिंग का कैप्टन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
2: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
1: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
3: समझ कर इन्वेस्ट कर। एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
7: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with
2: Sarah Sanitaryware, it's your moment of Sarah. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

पीएम आवास के पास धरने के बाद हिरासत से रिहा हुए राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस नेता, वीडियो मैसेज जारी कर मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बोले पीएम और अमित शाह भी मांगे छात्रों से माफी। धरने को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी पर हमला, कहा छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। जितेंद्र सिंह बोले संसद में चर्चा की मांग मानी थी लेकिन बाद में मुकरे राहुल। नितिन नवीन ने भी निंदा की। सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में की मुलाकात। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती वांगचुक। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर दो दिन से जारी है गतिरोध। पूरे सेशन में 7 अहम बिल लाने वाली है सरकार। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम बैठक। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर हो सकती है चर्चा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी समीक्षा संभव।

सोनम वांगचुक फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में है भर्ती। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से की मुलाकात। राहुल गांधी ने जारी किया एक वीडियो संदेश। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आगे कहा कि पीएम गृहमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा छात्रों की न्याय की लड़ाई जारी रहेगी, शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा राहुल गांधी और कांग्रेस स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल टूल के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का राहुल और कांग्रेस पर आरोप, पीएम मोदी के घर के बाहर धरना देना गलत है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल को लेकर कहा कि सरकार के पूरी चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहने के बाद भी कांग्रेस ने बहस के बजाय पॉलिटिकल तमाशा चुना। धर्मेंद्र प्रधान का आरोप, कांग्रेस का मकसद कभी भी स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन नहीं था बल्कि पॉलिटिकल हेडलाइन के लिए हंगामा करना था। पवन खेड़ा ने पोस्ट साझा कर की कहा कि युवा मुद्दों पर संसद में बहस और छात्रों पर दर्ज मामलों की वापसी की मांग, प्रधानमंत्री से बिना शर्त माफी की अपील। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की हिरासत पर शशि थरूर का हमला, बोले असहमति को पुलिस कार्रवाई से नहीं दबा सकती है सरकार। सोशल मीडिया पर पथराव और पुलिस कार्रवाई के दावों को दिल्ली पुलिस ने बताया फर्जी, अफवाहों से बचने की अपील की। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन में घंटों चला हाई वोल्टेज हंगामा, पुलिस ने राहुल गांधी को धरने से जबरन उठाया। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन में प्रियंका, अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने जगह खाली कराकर सभी को बस में ले गए। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी जी सारी ताकत लगा लो लेकिन छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोकेगा कोई नहीं। मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर आरोप, उन्होंने कहा कि मैंने खुद जाकर की मुलाकात लेकिन अब राहुल ने अपनी बात ही बदली। जितेंद्र सिंह बोले सरकार नीट पर चर्चा को तैयार है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नई मांग की गई। जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर आरोप, बोले राहुल बार बार बदल रहे हैं बयान, कहते हैं मैं जहां चाहूं बैठूं मेरी मर्जी। अखिलेश यादव का मोदी सरकार से सवाल, कहा छात्रों की मांगे क्यों नहीं मान रही है सरकार, पीएम मोदी सुने उनकी बात। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में जंतर मंतर पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके और प्रदर्शनकारियों से की मुलाकात। जंतर मंतर पर चल रहे धरने में एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले पहुंची, सरकार से युवाओं की बात सुनने का किया आग्रह। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का भी जंतर मंतर पर वो भी पहुंचे। उद्धव ठाकरे आज दिल्ली आकर करेंगे छात्रों के प्रोटेस्ट का समर्थन। प्रियंका गांधी से मिलने मंदिर मार्ग थाने पहुंची सोनिया गांधी, प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। जंतर मंतर पहुंची महुआ मोहित्रा ने पीएम मोदी अमित शाह पर साधा निशाना, कहा मोदी और शाह उन लोगों से निपटना नहीं जानते जो उनसे नहीं डरते, ऐसे लोग इस सरकार के लिए आउट ऑफ सिलेबस। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे, साथ में आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह भी मौजूद रहे। राहुल के धरने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बताया बीजेपी से मिली भगत, कहा ये सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश, आतिशी ने किया कटाक्ष, कहा क्या जुगलबंदी है। दिल्ली पुलिस ने बीती रात 10 बजे के करीब सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी छत्रसाल स्टेडियम से छोड़े गए। सोनम वांगचुक को बीती शाम 6:40 पर सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अस्पताल ने कहा डिस्चार्ज के समय उनके वाइटल पैरामीटर्स थे। राजनंदगांव में छात्रों का प्रदर्शन, जंतर मंतर आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरे सैकड़ों युवा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। पंजाब के मानसा में किसानों का प्रदर्शन, युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में केंद्र सरकार का फूका पुतला। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में भारी हंगामे के बीच पास हुआ यूसीसी बिल, सीएम मोहन यादव ने बताया स्वर्णिम अध्याय। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जताई खुशी, कहा कि सीएम मोहन यादव ने इनके नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम हुआ, वहीं बड़े गर्व की बात है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस हिंदुस्तान विरोधी हो गई है, बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान में एक विवाह एक विधान का प्रावधान। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का राज्य सरकार पर आरोप, बोले कि चोरी छिपे लाया गया है बिल, सरकार ने जबरन किया लागू। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी यूसीसी के विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का कोशिश कर रही है बीजेपी सरकार। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सेना मिलकर कर रही है बाढ़ पीड़ितों की मदद। कारगिल में आए फ्लैश फ्लड के बीच देवदूत बनकर सामने आए रेस्क्यू टीमों के जवान, मलबे के बीच से रास्ता बनाकर पीड़ितों की मदद की गई, सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया गया। राजौरी में सेना का साहस, तेज बहाव वाले नाले में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने रस्सी के सहारे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाई। राजौरी, पुंछ, गुरेज, कारगिल और तंगमर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।
वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की भी ली जा रही है मदद। भूस्खलन के बाद सड़कों पर भी आकर गिरा मलबा और चट्टान, जेसीबी की मदद से रास्ता साफ कर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की गई। बड़गाम के बिरुआ बाजार में फ्लैश फ्लड का कहर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ढहा, कैमरे में कैद हुआ भयावह मंजर। ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गिरने से पहले दुकानदार सामान बचाते जुटाते आए नजर, पुलिस ने कराया उनको सुरक्षित बाहर। नवसारी में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, तड़केश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हुआ, कावेरी नदी खतरे के निशान के ऊपर। गुजरात में बारिश का असर, डांग में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए, घरों दुकानों और बाजारों में घुसा बारिश का पानी, लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। बोह घाटी में बारिश का कहर, पहाड़ी पर फटा बादल, बह गए नीचे बने घर और गौशालाएं, पल भर में सब हो गया खत्म। 14 घरों का मिट गया है नामो निशान, डीसी कांगड़ा ने साझा की है ये जानकारी। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य अभी भी जारी। विकासनगर में जजरेट पहाड़ी से गिरते नजर आए हैं पत्थर और मलबा, लगातार भूस्खलन से आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित। यूपी के उन्नाव में तेज बारिश के दौरान 2 बाइक सवार और 5 लोगों पर गिरा पेड़, 1 बाइक सवार की मौके पर मौत हुई, बाकी लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अमरेली में तालाब किनारे आराम फरमाती शेरनी को देखकर हैरान हुए लोग, लोगों ने दूर सड़क से अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया नजारा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ, लोगों को उमस से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया, मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान। बिहार के सहरसा में बाढ़ से भयावह स्थिति, कोसी नदी में उफान के कारण कई इलाके जलमग्न हुए, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है शिक्षक शिक्षाएं। बाढ़ प्रभावित असम में भारतीय वायुसेना ने संभाला मोर्चा, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित शिवसागर जिले में हवाई बचाव और राहत अभियान के लिए हेलीकॉप्टर तैनात। देहरादून के विकासनगर में गोना नदी के सैलाब में बहा स्कूटी सवार, युवकों ने जान जोखिम में डालकर बचाई उसकी जान। वहीं महाराष्ट्र के बीड में एनसीपी शरद पवार गुट नेता के कार्यालय में लगाई गई आग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के अकोला के अलंकार मार्केट में लगी भयंकर आग, इलेक्ट्रॉनिक की 3 दुकानें जलकर खाक हुई, लाखों का नुकसान पहुंचा। पश्चिमी दिल्ली के फतेहनगर इलाके में एक मकान में लगी भयंकर आग, फटे सिलेंडर, जली कई गाड़ियां, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में एक घर की तीसरी मंजिल में लगी आग, एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। गुरुग्राम की सोसाइटी में बड़ा हादसा, प्रैक्टिस के दौरान लड़के के सिर पर गिरा बास्केटबॉल पोल, खौफनाक वीडियो आया सामने। नोएडा में एम्बुलेंस की आड़ में चल रही थी गांजा तस्करी, पुलिस ने 64 किलो गांजा और अंतर्राज्यीय तस्कर को दबोचा। सहारनपुर में पूर्व सांसद हाजी फजरुल रहमान के मीट प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव, 14 महिला कर्मचारी बेहोश। हरिद्वार में खनन रोकने गई टीम पर माफियाओं का हमला, दरअसल नकाबपोश बदमाशों ने बरसाए लाठी डंडे और सरकारी गाड़ी के शीशे भी फोड़े। यूपी के बलरामपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, आईएसआई नेटवर्क से जुड़े युवक को किया गया गिरफ्तार। करनाल एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 5 गैंगस्टर गिरफ्तार, 5 विदेशी पिस्टल, 14 कारतूस बरामद, सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर की थी फायरिंग। सोनीपत में 12 लाख की लूट का खुलासा, यूपी पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल निकला मास्टरमाइंड, मामले में 3 लोग गिरफ्तार। एमपी के सतना में मंदिर परिसर में युवक पर लाठी डंडों से हमला किया गया, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम, घायल की हालत गंभीर। बुलंदशहर में अंबेडकर पर टिप्पणी के आरोप में पकड़ा गया युवक, थाने ले जाते समय भीड़ ने पुलिस को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव, 3 घायल, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बिजनौर में खेत में लगे खटके में फंसा तेंदुआ, दरअसल इलाके में मची दहशत, घंटों बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू। कोलकाता के वीआईपी रोड पर 2 गुटों में भयंकर झड़प, बीजेपी कार्यकर्ता पर शहीद दिवस में शामिल हो जाने पर कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप। पुणे के लोहगढ़ किले के ऐतिहासिक जलकुंड में पर्यटकों की लापरवाही, तैराकी का वीडियो वायरल होते हुए बजरंग दल ने रोका। अहमदाबाद में करीब 40 करोड़ के अवैध पटाखे जब्त, 2 गोदाम सील हुए, 2 गिरफ्तार। वडोदरा में 5वीं मंजिल से कूदकर महिला ने की जान देने की कोशिश, लोगों की सूझबूझ से बची महिला की जान। सूरत में एक ग्राहक को परोसी गई मंचूरियन की प्लेट में चूहा मिलने का वीडियो वायरल, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश, फूड सेफ्टी विभाग ने की कार्रवाई।
अगले महीने होने वाले FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 मेंबर्स की भारतीय टीम की घोषणा, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होंगे मुकाबले। अनुभवी ड्रैग फिल्कर हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान, डिफेंडर अमनदीप लकड़ा और साथ ही मिडिल फील्डर राजकुमार पाल और रविचंद्र सिंह और साथ ही फॉरवर्ड सेल्स भी कार्थी टीम से बाहर। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगी अभियान, 19 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा महामुकाबला। 23 जुलाई से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज, आयरलैंड और इंग्लैंड से टी20 सीरीज हारने के बाद अहम है ये सीरीज। बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट और भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल मैच के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए जारी किया टेंडर, अगस्त में खत्म हो रहा है मौजूदा स्पॉन्सर का करार। OMG2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म ओ माई डॉग का ट्रेलर आया सामने, 31 जुलाई 2026 को रिलीज होगी ये फिल्म। थलापति विजय की जन आयकन की रिलीज में चंद दिन बाकी, नया प्रोमो हुआ रिलीज। नेटफ्लिक्स पर जल्द ही रिलीज होगी ऑपरेशन सफेद सागर की शौर्य गाथा से जुड़ी कहानी, 7 अगस्त 2026 को OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगी ये वेब सीरीज। 17 साल बाद पर्दे पर लौट रहे फुनसुक वांगडू 4 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी आमिर खान की 3 इडियट्स। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती की हुई सगाई, अपने मंगेतर माइल्स के साथ सगाई की तस्वीरें की शेयर। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के 3 सबसे बड़े सैन्य अड्डों पर बड़े हवाई हमलों का दावा किया, कुवैत के अरिफजान कैंप ब्यूरिंग और साथ ही अहमद अल जाबेर एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरानी सेना ने पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर किया बड़ा हमला, जॉर्डन बहरीन समेत कुछ और देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बनाया गया निशाना। यमन के हूतियों ने शिपिंग कंपनियों को दी है चेतावनी, कहा सऊदी बंदरगाहों पर माल लोड या अनलोड करने से बचे। हूती संगठन का दावा, सऊदी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को किसी भी जगह बनाया जा सकता है निशाना। तो वहीं गाजा में इसराइल का भीषण हवाई हमला अभी भी जारी, एक ही परिवार के 6 लोगों की वहां पर मौत हुई। दक्षिणी लेबनान के जाफ्तार शहर से इजरायली सेना की वापसी के बाद लेबनानी सेना की हुई तैनात, अमेरिका समर्थित शांति योजना के तहत लेबनानी सेना दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में जब्त करेगी हिजबुल्ला के हथियार। रूस ने आजोव सागर और केर्च स्ट्रेट के बंदरगाहों में लंगर डालने वाले जहाजों को लेकर जारी की है एक चेतावनी। रूसी सेना का बड़ा दावा, यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र के एक इलाके पर हुआ कब्जा, यूक्रेन का आरोप पर रूस ने ज़ापोरिज़्या पर किया है भीषण हमला, 3 लोगों की मौत, 13 घायल। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नम का बड़ा बयान, कहा हमारी सरकार का मकसद लोगों पर बढ़ती महंगाई का बोझ कम करना। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी हिस्से में अचानक आई बाढ़ से 20 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। तो वही चीनी नौसेना का बड़ा युद्धाभ्यास, टेक ऑफ लैंडिंग और हमले की ट्रेनिंग करते दिखे नौसैनिक।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग हैं, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

अपराधों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, करियर की बाधा दूर होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

चिंता रह सकती है, धन की हानि हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नील।

मिलेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में शांति रखें। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पी।

रखें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। गुड़ का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: स्पीकर पे स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है. मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट He has to take permission from the government. He's openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन. मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये education system के बारे में, testing system के बारे में protest कर रहे हैं. पूरा देश जानता है कि education system, testing system is broken. It has ceased to exist.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: कल रात करीब 9 बजे कनॉट प्लेस इलाके में कुछ लोगों ने पुलिस और आरएएफ जवानों पर पथराव किया है। घेर कर लिंचिंग की कोशिश की गई। आरएएफ के वज्र वाहन को निशाना बनाया गया। हैरानी की बात यह है कि नई दिल्ली इलाके में संसद का मॉनसून सत्र को लेकर बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। ऐसे में नई दिल्ली इलाके में हुड़दंगी कहां से पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस और आरएएफ को निशाना बनाया गया, लिंचिंग की कोशिश की गई, उन पर पथराव किया गया जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं। जब धारा 163 वहां पर लगी हुई है, इसके बावजूद अगर इस तरह का तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं, जाहिर तौर पर अब एफआईआर दर्ज की जाएगी, सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की जाएगी, वीडियो फुटेज मौजूद है, क्योंकि कनॉट प्लेस का ये इलाका है बेहद संवेदनशील। इसके इर्द गिर्द तमाम वो महत्वपूर्ण इलाके हैं जो भारी सुरक्षा से घिरे रहते हैं। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, क्या ये लोग आइडेंटिफाई हो पाए हैं, किस ग्रुप के हैं, किस संगठन के हैं, कहां से प्रायोजित हैं और कौन से वो फुटेज है जो इस बात की प्रामाणिकता करते हैं कि इन्होंने टारगेट किया खासतौर पर आरएएफ को?
1: बिल्कुल, और हम कोशिश करेंगे नेहा कि वो तस्वीरें भी आज तक पर हम दिखाएं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें काफी कुछ बोलती हैं और इस तस्वीरों को आज तक पर हम डिस्क्राइब कर देते हैं। कल जो पार्लियामेंट स्ट्रीट से टॉलस्टॉय रोड है वहां पर अचानक से भीड़ इकट्ठा हुई। ये भीड़ की तस्वीरें आप देख लीजिए। अनाउंसमेंट भी हो रहा था आरएएफ की टीम की तरफ से पहले कि आप कानून व्यवस्था अपने हाथ में न ले, पत्थरबाजी ना करें। वो अनाउंसमेंट का वीडियो भी आज तक के पास मौजूद है। उसके बाद अचानक से जो भीड़ है वो उग्र हुई। जो आरएएफ का वज्र वाहन है उसको निशाना बनाया गया। उसके बाद तस्वीर में दिख रहा है एक आरएएफ के जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उसकी लिंचिंग करने की कोशिश की गई। जबकि जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर पर चल रहा है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी हुई है। सरकार लगातार बातचीत कर रही है, जो प्रोटेस्टर है उनसे मुलाकात भी हुई है सरकार की। कल जो दिल्ली पुलिस मुख्यालय उसके घेराव का ऐलान था, लेकिन बातचीत हुई इसके बाद जो घेराव है उसको वापस ले लिया गया कि घेराव नहीं करेंगे, क्योंकि जो हिरासत में लिए गए थे उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद ये भीड़ इकट्ठा हुई और उसके बाद उग्र हुई और फिर जो आरएएफ के जवान हुए उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, पुलिस के जवानों पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो इसे कहां से जायज ठहराया जा सकता है? जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं उसका जो कॉज है वो बदनाम होता है। जिस कॉज को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था उसके बीच अब नौबत ये आ गई है कि आरएएफ और जो प्रोटेस्टर है उनके बीच हाथापाई की नौबत आ गई है। कांग्रेस जनता पार्टी को इस वीडियो पर सफाई देनी चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या ये कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं, ये कौन लोग हैं, इसके बारे में सफाई देनी चाहिए। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी अभी अभी दर्ज की है नेहा, ये लेटेस्ट अपडेट है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सूत्रों के जरिए, ये खबर आ रही है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। और बताया जा रहा है कि कल रात नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जंतर मंतर में अनशन करने वाले सोनम वांगचुक इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। कल शाम उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। नड्डा और जितेंद्र सिंह की वांगचुक से क्या बात हुई अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई। इससे पहले कल नड्डा लेडी हार्डिंज अस्पताल जाकर प्रदर्शन में घायल छात्रों से भी मुलाकात कर चुके हैं, जबकि सोमवार को सीजेपी के प्रतिनिधियों से उनकी मांगों पर वार्ता की गई थी। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, ये जो मुलाकात हुई है ये बेहद अहम है क्योंकि इसमें जेपी नड्डा शामिल है, इसमें जितेंद्र सिंह शामिल है, लेकिन बातचीत अनशन को लेकर हुई है, बातचीत मांगों को लेकर हुई है, क्या बातचीत हुई?
2: जी बिल्कुल नेहा, कल ये मुलाकात हुई है और आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक हो या जो प्रदर्शनकारी हो या विपक्ष भी हो, सभी से वार्तालाप करने की कोशिश की जा रही है। कल सरकार ने ये भी कहा था कि वो संसद में इस पूरे मुद्दे को लेकर डिबेट भी कराने के लिए तैयार है और इसी जो एक चैनल ओपन किया गया सरकार के द्वारा जिसमें कहा गया कि संवाद के लिए हम तैयार है, उसी के मद्देनजर हम देख रहे हैं लगातार जो मंत्री हैं सरकार के वो सभी प्रदर्शनकारियों से मुलाकात भी कर रहे हैं, जो चोटिल होगा तो उनसे मुलाकात

0: मुलाकात करने के लिए कल जेपी नड्डा आरएमएल अस्पताल भी गए थे और उसके बाद एक बैठक भी आरएमएल हॉस्पिटल में ली थी और ये कहा गया था कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनका इलाज सुचारू रूप से हो। इसी के साथ साथ कल जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलने के लिए चले गए थे, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसी क्रम में सूत्र ये बता रहे हैं कि कल देर रात मुलाकात हुई स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की सोनम वांगचुक से। और आपको याद होगा पिछले लंबे समय से सोनम वांगचुक जो है वो जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे, उनको जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उसके बाद दिल्ली पुलिस से उनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, वहां पर उनका इलाज हुआ, उसके बाद उनको मेदांता ले जाया गया। तो उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है, आगे उनका क्या प्लान है, इन सभी चीजों को लेकर चर्चाएं हुई हैं और ये दरअसल उसी क्रम में हो रहा है जिसमें सरकार साफ साफ ये कह चुकी है कि वो संवाद के लिए तैयार है, चाहे विपक्ष हो, चाहे प्रदर्शनकारी हो, चाहे कोई और गण हो जो इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने जा रहे
1: हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मुलाकात की खबर ऐसे वक्त आई है जब पेपर लीक को लेकर दिल्ली का सियासी पारा हाई हो चुका है। कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी धरने से अचानक दिल्ली में सियासी सरगर्मी तेज हो गई।
2: पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए।
3: मंगलवार शाम के हाई वोल्टेज एक्शन के बाद देर रात लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यह बयान जारी किया।
2: स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया।
3: संदेश साफ कि पेपर लीक को लेकर जारी बवाल अभी थमने वाला नहीं है।
2: ये जो इशू है देश का सबसे बड़ा इशू है।
3: मंगलवार शाम करीब 3:30 बजे अचानक दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके साथ प्रियंका और कांग्रेस के कुछ सांसद भी मौजूद थे। कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी वहां पहुंच गए। राहुल का यह कदम सरकार के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था, लिहाजा सरकार फौरन एक्शन में आई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव को राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा गया, लेकिन बात नहीं बनी। जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल अपनी ही बातों से मुकर गए और अचानक मांगे बदल दी।
4: हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी हैं।
3: राहुल से वार्ता टूटी तो पुलिस एक्शन में आई। पहले कांग्रेस सांसदों और पदाधिकारियों को पीएम आवास से बाहर हटाया गया।
5: सही है वो सुने कि इस देश में युवाओं का भविष्य हो चुका है, इन्होंने हिम्मत है तो आगे आए। जब जब कोई भी डरता है पुलिस वाले।
3: और फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी वहां से उठा लिए गए। सभी नेताओं को कुछ घंटे बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से अति सुरक्षित और धरना प्रदर्शन के लिए निषिद्ध पीएम आवास के बाहर धरना दिया उस पर सरकार में अब गहरी नाराजगी है। सरकारी सूत्रों का दावा है कि पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर कांग्रेस ने गलत और खतरनाक परंपरा डाली है। ये न सिर्फ सुरक्षा का जोखिम है बल्कि परिपक्व लोकतंत्रों में इस तरह का द्वेषपूर्ण व्यवहार देखने को नहीं मिलता। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों में क्या हुआ जब नेताओं के घरों को प्रदर्शन के दौरान निशाना बनाया गया।
6: राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है और हम शुरू से कहते रहे हैं राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभरे।
3: कल का बवाल थम चुका है, लेकिन उससे जो गुबार उठा है उसका असर आज भी संसद के अंदर और बाहर दिखना तय है। दिल्ली से मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, सरकार का ये दावा है कि छात्रों को राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेता बरगला रहे हैं क्योंकि उनका स्टैंड ही क्लियर नहीं। पहले कुछ मांगे थी, फिर कुछ और मांगे हो गई, जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन पर बैठे नहीं, सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए। क्या वो सोनम वांगचुक से अलग हो गए हैं या फिर वो कॉकरोच जनता पार्टी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है उनके एंड से।

0: परिपक्व लोकतंत्र में इस तरह से प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। धरने पर सवाल उठ रहे हैं, पड़ोसी देशों में क्या कुछ हुआ वो ना भूलें। नेताओं के घरों को बनाया गया प्रदर्शन के जरिए निशाना। यहां पर जिक्र दरअसल नेपाल और बांग्लादेश का किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन गलत और अलोकतांत्रिक था। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, राहुल गांधी का स्टैंड दरअसल क्या है, या फिर यूं कहें कि पूरे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या इस पर इंडिया गठबंधन एकजुट है? क्योंकि अखिलेश यादव को तो हमने उनके साथ खड़े हुए थे देखा, लेकिन आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कुछ और ही बातें कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो एकदम बदल गए हैं, ना वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ना वो कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम मांगों को सुन रहे हैं, वो सिर्फ इस्तीफे पर अड़ गए।
1: नया देखिए, इसके दो भाग हैं जो भी घटनाक्रम कल हुआ है उसका। पहला भाग ये है कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सरकार जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया है छात्रों पर, उस पर चर्चा करे सदन के अंदर और राज्यसभा और लोकसभा दोनों पे में चर्चा हो। और फिर धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के अंदर ये विचार बना कि दिल्ली पुलिस के लाठी चार्ज के एक्शन पे प्रोब होना चाहिए और गृहमंत्री को भी इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जब सदन दोनों सदनों में कार्रवाई टल गई, अडजर्न हो गई, तो कांग्रेस पार्टी ने अचानक से सरप्राइज करते हुए दिल्ली पुलिस को और अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को भी सीधे प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पे राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ बैठ गए। और हालात ये थे, मैं आपको यहाँ बता दूं कि कल कई बार समाजवादी पार्टी के अलग अलग सांसदों ने पूछा था कि क्या कोई मार्च है। लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मार्च नहीं है, कोई मार्च नहीं होने वाला, और उसके बाद अचानक से धरना हुआ। अखिलेश यादव वहां पे निश्चित रूप से बड़ा दिल दिखाते हुए, या जो आखिरी मोमेंट में कोऑर्डिनेशन हुआ होगा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और आरजेडी के सांसद वहां पहुंचे थे, ये लोग जरूर पहुंच गए। लेकिन आम आदमी पार्टी जो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे। उनका कहना है कि जंतर मंतर पे लोगों को बुलाने के बजाय राहुल गांधी अपने धरने में बुला रहे हैं लोगों को, जिससे जो धरना चल रहा है जंतर मंतर पे वो कमजोर हो सकता है और जो मंशा है कांग्रेस पार्टी की उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से विपक्ष में तो एक तरह से दो धाराएं दिख रही हैं, लेकिन अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो वहां पर कम से कम जो सीनियर पार्टनर कांग्रेस और उसके बाद जो सबसे
0: पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पीयूष, सरकार का क्या स्टैंड है? कल जिस तरीके से प्रदर्शन राहुल गांधी द्वारा किया गया उसको लेकर सरकार ने काफी आलोचना की है, अलग अलग ट्विटर हैंडल से इसको व्यक्त भी किया गया है। अब आगे अगर राहुल गांधी कुछ इसी तरह की चीजें करते हैं तो जाहिर तौर पर पार्लियामेंट का सेशन तो नहीं चलेगा, लेकिन सरकार किस तरीके से इसे हैंडल करेगी?
2: जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है कि मानसून सत्र में विपक्ष सरकार पर काफी हमलावर है, लेकिन सरकारी सूत्रों ने यह साफ कर दिया है कि जो भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिस तरह की चीजें राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है, वो पूरी तरह से राजनीतिक है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की जो मांग है वो पूरी तरह से राजनीतिक है। वहीं जहां तक नीट पेपर लीक की बात है, उसको लेकर सरकार ने शुरुआत से ही कड़े कदम उठाए। लगभग 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसको घोर पाप कहा। कल पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि आगे आने वाले दिनों में सरकार कुछ ऐसे लीगल ल्यूमिनरीज से बात करने की कोशिश भी करेगी ताकि पेपर लीक के खिलाफ कड़े से कड़े प्रावधान लाए जाएं, कड़े से कड़े कानून लाए जाएं। सरकार का ये साफ मानना है कि जब ये पेपर लीक हुआ तब उसके बाद ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे पेपर लीक की जिम्मेदारी ली, बल्कि इस पूरे मामले को ठीक करने की भी कोशिश सरकार की तरफ से की गई। अब इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है और इसीलिए कल जो राहुल गांधी ने किया और उनके साथ जो काफी जो कांग्रेस के नेता मौजूद थे वो पूरी तरह से एक राजनीतिक कृत्य था और इसीलिए सरकार जो है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आखिर सरकार या दिल्ली पुलिस को कैसे नहीं लग पाई राहुल गांधी के धरने की भनक? पीएम आवास अति सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है और यहां किसी को धरने की इजाजत नहीं है, फिर भी कैसे वहां पर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए? कांग्रेस अपने प्लान को गोपनीय रखने में कामयाब रही। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोपहर 2 बजे खड़गे के घर पहुंच गए थे। खड़गे के घर से पीएम आवास महज 300 मीटर की दूरी पर है। राहुल के बाद धीरे धीरे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पहुंच गए और कल खड़गे जी का जन्मदिन था, ऐसा लगा सब कुछ सामान्य है, ये दोनों वहां पर उन्हें बधाई देने पहुंचे। लेकिन जब सब कांग्रेसी इकट्ठा हो गए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल पीएम आवास की तरफ बढ़ चले, ये भी पुलिस को असामान्य नहीं लगा। इसके बाद टुकड़ों में कांग्रेस के नेता वहां पीएम आवास के बाहर जुटने लगे। यही वजह है कि जब राहुल गांधी धरने पर बैठे तब सरकार और पुलिस के मामले को गंभीरता से लिया गया।

0: साथ ही रास्ते से छोड़ दिया गया, लेकिन लोक कल्याण मार्ग जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है संसद भवन से, राहुल गांधी का धरना इससे कुछ ही दूरी पर शुरू हो गया प्रधानमंत्री आवास के बाहर यह धरना, और से ठीक 300 मीटर की दूरी पर खड़गे का आवास है, वहां पर कुछ देर पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलने पहुंचे और उसके बाद पैदल ही ये पीएम आवास के पास बढ़ चले। ये 10 राजधानी मार्ग की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि आपको इस रास्ते का पता चल सके। ये 300 मीटर की दूरी दोनों ने पैदल ही तय करी और दोनों वहां पर जब पहुंचे उसके बाद धीरे धीरे करके तमाम कांग्रेस के नेता वहां जुटने लगे और इसने एक धरने का रूप ले लिया। जब राहुल गांधी पैदल जा रहे थे तब कुछ भी पुलिस को असामान्य नहीं लगा, लेकिन उसके बाद जब इस प्रदर्शन ने धरने का रूप ले लिया तो एक्शन लिया गया। तो राहुल गांधी को कल रात ही रास्ते से छोड़ दिया गया था। रिहाई के बाद राहुल गांधी प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक वीडियो संदेश पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने वजह बताई कि उन्होंने क्यों पीएम आवास के बाहर धरने स्थल को चुना।
1: मॉर्निंग आई वेंट एंड मेट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड आई सेड टू हिम दैट इट वाज इंपॉर्टेंट दैट वी बी अलाउड टू डिबेट व्हाट हैपेंड टू द स्टूडेंट्स द डे बिफोर। The speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that that there was no interest in the government of having a debate. So we took the decision that we go to Prime Minister's house and do a dharna. And the issue of students, which is the most important issue for the country, and which has been done against them, we will नेशनल अटेंशन में लाए और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें।
0: तो राहुल गांधी के धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। उन्होंने उनको भी हिरासत में लिया गया। उन्होंने क्या मांगे रखी, उनको उन्होंने क्या कुछ बयान दिया आपको दिखाते हैं।
2: हमारी मांग इस सरकार से कि जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें और जो मंत्री है और वो इस्तीफा दे दें या मंत्रिमंडल से हटा दें। ये दबाव जो है वो ये दबाव समझ में नहीं आ पा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं हट रहे हैं, क्या दबाव है संगी साथियों का।
0: तो राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन लेकर सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी ने भी राहुल गांधी के धरने वाली राजनीति पर सवाल उठाए हैं। आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी का धरना सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिश है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया है। इस पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने पलटवार करते हुए कहा कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, हम समझ सकते हैं, बीजेपी के साथ जारी आपकी जुगलबंदी फेल हो गई है। और अब बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की, जिस पर बड़ी बैठक हो रही है। अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है और बैठक में ट्रस्ट की कई समितियों के पुनर्गठन और उनके कामकाज की समीक्षा पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक महासचिव पद के लिए नाम और नए सीईओ के चयन पर भी विचार किया जा सकता है। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के नाम पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बैठक से पहले एक बार फिर वीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल बांगड़ा का नाम चर्चा में है। बांगड़ा का नाम ट्रस्ट महासचिव पद के दावेदार के रूप में सामने आया है। वैसे ट्रस्ट की आज प्रस्तावित बैठक में ट्रस्ट के पहले सीईओ के चयन पर फैसला हो सकता है। वजह यह बताई जा रही है कि सीईओ के लिए इतने आवेदन आए हैं कि उनकी स्क्रीनिंग 4 दिन में संभव नहीं है। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, ये जो सीईओ के नाम आए हैं इसमें कोई चर्चित नाम, कोई जाना पहचाना चेहरा?
3: नहीं, देखिए सीईओ के तो इतने नाम आ गए हैं जिन पर आज चर्चा तो संभव है, लेकिन कोई निर्णय हो पाएगा ये फिलहाल असंभव सा लगता है। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही, हमारी मौजूदगी इस वक्त मणिदास छावनी में है जहां लगभग दोपहर 3 बजे पहली बैठक और 4 बजे दूसरी बैठक होगी। दूसरी बैठक में ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने वाले हैं। गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं 11 बजे अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन जो 3 पद खाली हैं यानी कि चंपत राय, अनिल मिश्रा की जो स्थान खाली है और अयोध्या के जो राजा रहे उनका जो स्थान खाली है, उन 3 स्थानों को आज भरा जा सकता है ट्रस्ट के द्वारा। वो नाम कौन से होंगे जिसमें बांगड़ा का नाम सबसे आगे चल रहा है, कृष्ण मोहन जो है उनका नाम तो चल ही रहा है, इसके अलावा कुछ और नाम भी है। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ही वो नाम है जिन्हें प्राथमिकता कहीं ना कहीं में दी जा सकती है। इसके अलावा आज की बैठक में चर्चा इस बात की भी होगी कि जिस तरीके से चंदा चोरी हुई है मंदिर परिसर में, इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो, इसको लेकर भी चर्चा होगी और एक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। इसके अलावा निर्माण कार्य जो मंदिर का बचा रह गया है उस पर भी चर्चा होगी। हालांकि SIT की फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उस पर भी ट्रस्ट चर्चा कर सकता है और क्या उनकी संलिप्तता हो सकती है इस बारे में भी राय मशवरा ट्रस्ट की बैठक में हो सकता है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात सिक्किम की करेंगे जहां से बड़ी खबर आ रही है। नामची जिले में हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 20 पहुंच गई है। टनल के अंदर अभी भी 5 मजदूर के फंसे होने की खबर है जिनको निकालने की कोशिश जारी है। निर्माणाधीन समरदुंग टनल के गेट पर यह हादसा हुआ था। NHPC के तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े टनल के पास लैंडस्लाइड की वजह से 25 मजदूर टनल के अंदर ही फंस गए। भूस्खलन के बाद टनल की एंट्री पॉइंट मलबे से बंद हो गई। और अब बात बाढ़ से मचे कोहराम की करेंगे। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश है, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं यहां पर हो रही हैं। बडगाम में तेज बहाव के चलते पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखते ही देखते नदी में समा गया।
4: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, भारी बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान। बाढ़ में बह गया बडगाम का बाजार। जम्मू कश्मीर इस वक्त मानसूनी आफत का सामना कर रहा है। लगातार हो रही बारिश और फ्लैश फ्लड के चलते हाहाकार मच गया। बडगाम से ये डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है जहां पलघर में बाजार की कई दुकानें पानी में समा गईं। नदी के तेज बहाव के चलते मार्केट के नीचे की जमीन कटने लगी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने दुकानों को तुरंत खाली कराया, जिसके तुरंत बाद पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बह गया। बडगाम ही नहीं, जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में भी बाढ़ बारिश का कहर जारी है। ये तस्वीरें गुरेज की हैं जहां 4 जगहों पर बादल फटने के बाद भारी तबाही मची। खेत से लेकर सड़कें सब तबाह हो गईं। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश के साथ लगातार हो रही लैंडस्लाइड से भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधमपुर में पहाड़ों से मलबा आ जाने के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। ये तस्वीर कठुआ की है जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ के तेज बहाव में सड़क ही बह गई, जिसके चलते कई इलाकों से संपर्क टूट गया। राजौरी में भारी बारिश की वजह से फंसे लोगों को सेना को मैदान में उतारना पड़ा। 61 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने कई लोगों की जान बचाई। ये सब फ्लैश फ्लड में फंस गए थे। जो साफ है, धरती का स्वर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर इस वक्त मानसून का कहर झेल रहा है। श्रीनगर से अशरफानी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश और फ्लैश फ्लड का कहर जारी है। कांगड़ा के शाहपुर की बो घाटी में बादल फटने से तकरीबन 18 घर, स्कूल और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई।
4: पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का कहर। लगातार हो रही बारिश से असम में बिगड़े हालात। मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर नदी नाले। असम में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण कई रिहायशी इलाकों और गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जोरहाट, शिवसागर, नाजिरा, सोनारी और चराईदेव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ये तस्वीर असम के जोरहाट की है जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और सड़कें मानो दरिया सी नजर आ रही हैं, जिसके चलते कई परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों का सहारा लेना पड़ा है। असम के बाकी इलाके भी बाढ़ से अछूते नहीं रहे हैं। शिवसागर में हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ का पानी पुल तक पहुंच गया है। कई रिहायशी इलाकों, स्कूलों और सरकारी संस्थानों में पानी भर गया है। बाढ़ की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए असम सरकार ने आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। SDRF, NDRF और जिला प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं।
5: असम में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, SDRF, NDRF लगातार लोगों को राहत शिविर लाने के लिए कोशिश कर जा रही है।
4: बाढ़ के चलते असम में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3,62,000 लोग प्रभावित हैं। असम के जोरहाट से पूर्णो विकास के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब रुक करेंगे असम का, जहां बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। खास तौर पर अपर असम के जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जोरहाट, शिवसागर, नाजिरा, सुनारी और चराईदेव में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं।

0: हिमाचल से उत्तराखंड तक मानसूनी आफत। कांगड़ा में बादल फटने से भारी तबाही। फ्लैश फ्लड से घरों में घुसा मलबा। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानो बादल फटने का सिलसिला जारी है। लाहौल स्पीति में बादल फटने के एक दिन बाद कांगड़ा में भी बादल फटने से भारी तबाही मची। कांगड़ा के शाहपुर की बोह घाटी में बादल फटने के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड का रौद्र रूप देखने को मिला। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से करीब 18 घर, स्कूल और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। मलबे में 9 गौशालाएं और कई मवेशी बह गए। बादल फटने की खबर मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव काम शुरू कर दिया। कांगड़ा ही नहीं, हिमाचल के बाकी इलाके भी मानसूनी आफत का सामना कर रहे हैं। चंबा जिला इस बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई सड़कें बंद हो गई हैं। मूसलाधार बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। चंबा के तीसा चंबा मार्ग पर भी बड़ा हादसा हुआ। कंदला नाला में अचानक बाढ़ आने से एक बस फंस गई। उस वक्त बस में कई यात्री सवार थे। खबर मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, फिर सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला। हिमाचल प्रदेश से पूजा शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

से बातचीत की पहल। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन में शामिल हुए शरद पवार और उद्धव ठाकरे। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन घमासान के आसार। पीएम आवास के पास राहुल के धरने पर आर पार। बीजेपी बोली नेता विपक्ष का रवैया निंदनीय। जितेंद्र सिंह का आरोप, डिमांड से पलट गए राहुल। हिरासत से रिहा हुए राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस नेता। वीडियो मैसेज जारी कर मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बोले पीएम और अमित शाह भी मांगे छात्रों से माफी। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर हो सकती है चर्चा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी समीक्षा संभव। सिक्किम में टनल पर लैंडस्लाइड के बाद 20 मजदूरों की मौत। असम में बाढ़ जैसे हालात। एक ही दिन में 21 लोगों की गई जान। सेना का ऑपरेशन हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक। बादलों का हाहाकार।

सिक्किम में लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 20, 5 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका, बचाने की जारी है कोशिश। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रभावित मजदूरों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। राहत और बचाव अभियान पर सीएम तामांग की लगातार नजर, बचाव कार्य में जुटे सभी अधिकारियों और कर्मियों से साहस की तारीफ। नामची जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर लगातार ऑपरेशन चल रहा है। टनल दुर्घटना की वजह का पता लगाने के लिए एक सोशल इन्वेस्टिगेशन टीम का किया गया गठन। मृतक के परिवारों के लिए 4,00,000 रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की राशि का ऐलान। असम में बाढ़ से भयंकर तबाही, पिछले 24 घंटे में 21 और लोगों की मौत, जबकि राज्य के 16 जिलों और 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर में 13 लोगों की गई जान, चराईदेव में 5, गोलाघाट में 2, जोरहाट में 1 व्यक्ति की गई जान, इसके साथ एक वर्ष में राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। राज्य में फिलहाल 71 राहत शिविर संचालित किए जा सकते हैं। असम में आई भीषण बाढ़ के बीच भारतीय सेना ने आपदा राहत एवं मानवीय सेवा का परिचय देते हुए 571 लोगों को सुरक्षित बचाया। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के कारण अचानक आई बाढ़ से 17 लोगों की गई जान, राहत और बचाव काम जारी। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 36 घंटे में भारी बारिश की जताई संभावना। रजौरी, पुंज, गुरेज, करगिल और तंगमर्ग में लोगों से सतर्क रहने की अपील। रजौरी में सेना के जवानों ने तेज बहाव वाले नाले में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित निकाला। रस्सी के सहारे महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की बचाई जान। बड़गाम के बीरवा बाजार में फ्लैश फ्लड का कहर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहां कैमरे में कैद हुआ भयावह मंजर। गुजरात में बारिश का असर, डांग में बाढ़ जैसे हालात, घरों और दुकानों बाजार में घुसा बारिश का पानी, लोगों को करना पड़ा है भारी दिक्कत का सामना। गुजरात के डांग में लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियां उफान पर, प्रशासन लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की। बिहार के सहरसा में बाढ़ से भयावह स्थिति, कोसी नदी में उफान के कारण कई इलाके जलमग्न, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं शिक्षक। धर्मशाला की बोघाटी में बारिश का कहर, भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, कई क्षेत्रों में नुकसान। चंबा में रावी नदी के बीच फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकालकर बचाई जान। बारिश, भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक, रुद्रप्रयाग में सुरक्षा के मद्देनजर रोकी गई यात्रा। लगातार बारिश से अमरनाथ यात्रा स्थगित, खराब मौसम के चलते श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई। बोघाटी में बारिश का कहर, पहाड़ी पर बादल फटा, बह गए नीचे बने घर और गौशालाएं, पलभर में सब कुछ हो गया खत्म। 14 घरों का मिट गया नामोनिशान, डीसी कांगड़ा ने साझा की जानकारी, घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। विकासनगर में जजरेट पहाड़ी से गिरते नजर आए पत्थर और मलबे, लगातार भूस्खलन से आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित। यूपी के उन्नाव में तेज बारिश के दौरान 2 बाइक सवार और 5 लोगों पर गिरा पेड़, 1 बाइक सवार की मौके पर मौत, बाकी गंभीर रूप से घायल। अमरेली में तालाब किनारे आराम फरमाती शेरनी को देखकर हैरान हुए लोग, दूर सड़क से अपने मोबाइल कैमरे में कैद की तस्वीर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को उमस से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने अगले 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया, मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान। देहरादून के विकासनगर में गोना नदी के सैलाब से बहा स्कूटी सवार, युवकों ने जान जोखिम में डालकर बचाई जान। पहाड़ों में हो रही बारिश से गंगा में बढ़ा जलस्तर, वाराणसी में डूबने लगी घाटों की सीढ़ियां, मंदिर और मूर्तियां, एनडीआरएफ और पीएसी हाई अलर्ट पर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 20 घंटे लगातार बारिश से घोघरा नदी में फंसे 9 लोग, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। सोनम वांगचुक फिलहाल गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में, सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सोनम वांगचुक की हुई है मुलाकात। राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश में कहा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की न्याय की लड़ाई जारी रहेगी, शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल टूल के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का राहुल और कांग्रेस पर आरोप, पीएम मोदी के घर के बाहर धरना देना गलत है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल को लेकर कहा, सरकार पूरी चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहने के बाद भी

दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन में घंटों चला हाई वोल्टेज हंगामा, पुलिस ने राहुल गांधी को धरने पर से जबरन उठाया। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन में प्रियंका अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने जगह खाली कर सभी को बस में ले जाया गया। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी सारी ताकत लगा लो लेकिन छात्रों के इंसाफ की लड़ाई अब रुकेगी नहीं। मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल पर आरोप, कहा मैंने खुद जाकर मुलाकात की लेकिन अब राहुल ने बदल दी है अपनी बात। जितेंद्र सिंह बोले, सरकार नीट पर चर्चा को तैयार है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नई मांग की गई। जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर आरोप, बोले राहुल गांधी बार बार बदल रहे हैं बयान, कहते हैं मैं जहां चाहूं बैठूं मेरी मर्जी। अखिलेश यादव का मोदी सरकार से सवाल, कहा छात्रों की मांगे क्यों नहीं मान रही है सरकार, पीएम मोदी सुने उनकी बात। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके और प्रदर्शनकारियों से की मुलाकात। जंतर मंतर पर चल रहे धरने में एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले शामिल, सरकार से युवाओं की बात सुनने का किया आग्रह। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत भी जंतर मंतर पहुंचे, उद्धव ठाकरे आज दिल्ली आकर करेंगे छात्रों के प्रोटेस्ट का समर्थन। प्रियंका गांधी से मिलने मंदिर मार्ग थाने पहुंची सोनिया गांधी, प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। जंतर मंतर पहुंची महुआ मोहित्रा ने पीएम मोदी अमित शाह पर सवाल उठाना, कहा मोदी और शाह उन लोगों से निपटना नहीं जानते जो उनसे नहीं डरते नहीं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे, साथ में आतिशी सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह रहे मौजूद। राहुल के धरने को आपने बताया बीजेपी से मिली भगत, कहा यह सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश, आतिशी ने किया कटाक्ष, कहा क्या जुगलबंदी है। दिल्ली पुलिस ने बीती रात 10 बजे करीब सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा किया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी छत्रसाल स्टेडियम से छोड़े गए। सोनम वांगचुक ने बीती शाम 6:40 पर सफदरजंग अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया, अस्पताल ने कहा डिस्चार्ज के समय उनके वाइटल पैरामीटर स्थिर हैं। राजनांदगांव में छात्रों का प्रदर्शन, जंतर मंतर आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरे सैकड़ों युवा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। पंजाब के मानसा में किसानों का प्रदर्शन, युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में केंद्र सरकार का फूका पुतला। महाराष्ट्र की भीड़ में एनसीपी शरद पवार गुट नेता के कार्यालय में लगाई गई आग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र कोला के अलंकार मार्केट में भयंकर आग, इलेक्ट्रॉनिक की 3 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। पश्चिमी दिल्ली के फतेहनगर इलाके में एक मकान में लगी आग, फटे सिलेंडर, जली कई गाड़ियां, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में घर की तीसरी मंजिल में आग, 3 लोगों की हुई मौत। गुरुग्राम की साइड में बड़ा हादसा, प्रैक्टिस दौरान लड़के के सिर पर गिरा बास्केटबॉल पोल, खौफनाक वीडियो आया सामने। नोएडा में एम्बुलेंस की आड़ में चल रही गांजा तस्करी, पुलिस ने 64 किलो गांजा और अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को दबोचा। सहारनपुर में पूर्व सांसद हाजी फजल रहमान के मीट प्लांट में अमोनियम गैस का रिसाव, 14 महिला कर्मचारी बेहोश। हरिद्वार में खनन रोकने गई टीम पर माफियाओं का हमला, नकाबपोश बदमाशों ने बरसाए लाठी डंडे और सरकारी गाड़ी के शीशे फोड़े। यूपी के बलरामपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, आईएसए नेटवर्क से जुड़े युवक को किया गिरफ्तार। करनाल एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 5 गैंगस्टर गिरफ्तार, 5 विदेशी पिस्टल, 14 कारतूस बरामद। सिंगर दलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर भी फायरिंग की थी। सोनीपत में 12 लाख की लूट का खुलासा, यूपी पुलिस का बर्खास्त, हेड कांस्टेबल निकला मास्टरमाइंड, मामले में 3 गिरफ्तार। एमपी के सत्ता में मंदिर परिसर में युवक का लाठी डंडों से हमला, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम, घायल की हालत गंभीर। बुलंदशहर में अंबेडकर पर टिप्पणी के आरोप में पकड़ा गया युवक, थाने ले जाते समय भीड़ ने पुलिस की गिरफ्त में पीटा। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव, 3 घायल, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बिजनौर में खेत में लगे खटके में फंसा तेंदुआ, इलाके में मची दहशत, घंटों बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू। कोलकाता में वीआईपी रोड पर 2 गुटों में भयंकर झड़प, बीजेपी कार्यकर्ता के शहीद दिवस में शामिल होने जाने पर कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप। पुणे के लोहगढ़ किले के ऐतिहासिक जलकुंड में पर्यटकों की लापरवाही, तैराकी का वीडियो वायरल होते ही बजरंग दल ने रोका। अहमदाबाद में करीब 40 करोड़ के अवैध पटाखे जब्त, 2 गोदाम सील, 2 गिरफ्तार। वडोदरा में 5वीं मंजिल से कूदकर महिला ने दी जान देने की कोशिश, लोगों की सूझबूझ से बची जान। सूरत में ग्राहक को परोसी गई मंचूरियन के पेट में चूहा मिलने का वीडियो वायरल, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश। अगले महीने होने वाले FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के 20 मेंबर्स की भारतीय टीम की घोषणा, बेल्जियम में नेदरलैंड्स में होंगे मुकाबले। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान, डिफेंडर अमनदीप लकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल, रवि चंद्र सिंह
मोईरांग थेम और फॉरवर्ड सेल्वम कार्टी टीम से बाहर। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगी अभियान। 19 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा मुकाबला। 23 जुलाई से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की T20 सीरीज। बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट और भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल मैचेस के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए जारी किया टेंडर। अगस्त में खत्म हो रहा है मौजूदा स्पॉन्सर का करार। OMG2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म ओ माय डॉग का ट्रेलर आया सामने। 31 जुलाई को होगी रिलीज। कलापति विजय की जन नायकन की रिलीज में चंद दिन बाकी। नया प्रोमो हुआ रिलीज। नेटफ्लिक्स पर जल्द होगी रिलीज ऑपरेशन सफेद सागर की शौर्य गाथा से जुड़ी कहानी। 17 साल बाद पर्दे पर लौट रहे हैं फुनसुक वांगड़ू। 4 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी आमिर खान की 3 इडियट्स। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशांत चक्रवर्ती की हुई सगाई। अपने मंगेतर संग शाहजहां की तस्वीरें। ईरान की कुवैत में अमेरिका के 3 बड़े सैन्य अड्डों पर हमले का किया दावा। कुवैत के आरिफ जान कैंप ब्यूरिंग और अहमद अल जाबेर एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी बेस पर हुआ हमला। ईरानी सेना ने पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर किया बड़ा हमला। जॉर्डन बहरेन समेत कुछ और मौजूद देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को बनाया निशाना। यमन के हूतियों से शिपिंग कंपनियों को दी चेतावनी। कहा सऊदी बंदरगाहों पर माल लोड या अनलोड करने से बचें। गाजा में इसराइल की भीषण हवाई हमले एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। इजरायली सेना का बयान हमास के एक सदस्य को निशाना बनाकर किया था हमला। दक्षिण लेबनान के जाबहा शहर से इसराइल सेना की वापसी के बाद लेबनानी सेना हुई तैनात। अमेरिका समर्थित शांति योजना के तहत लेबनानी सेना दक्षिण लेबनान के कुछ इलाकों में जब्त करेगी हिजबुल्ला के हथियार।

0: समंदर की लहरों के नीचे छिपी हर नापाक चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में एक ऐसा स्वदेशी शिकारी शामिल होने जा रहा है जो दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए पानी के भीतर ही शमशान बना देगा। माइन बिछाने में उस्ताद और घातक रॉकेट टॉर्पीडो सिस्टम से लैस INS मालवन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते ही भारत की एक ऐसी जीती जागती और सच्ची मिसाल है जो तटीय सीमाओं की सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगी। आज कोचीन शिपयार्ड में होने जा रहे इस आधिकारिक कमिश्निंग में महज एक रक्षा कार्यक्रम नहीं बल्कि हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती अंडरवाटर हरकतों को भारत की तरफ से दिया गया एक बेहद कड़ा और वास्तविक संदेश है। मनजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मनजीत, क्या खूबियां हैं इसकी?
1: नेहा, जहां तक इस युद्धपोत की बात करें, क्राफ्ट की बात करें, तो अंडरवाटर सलो क्राफ्ट है जो कि समुद्र के आसपास जहां पर कोई अगर विदेशी किसी दुश्मन युद्धपोत आता उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। और आज का जो कार्यक्रम है कमिश्निंग का, वो इस मायने में भी खास है क्योंकि जो वायुसेना प्रमुख है एयर मार्शल एच ई मार्शल AP सिंह, वो इस शिप को कमीशन कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि बहुत रिकॉर्ड टाइम समय सीमा के अंदर ये जो युद्धपोत है कोची वो तैयार हुआ है और पूरी तरह से कह सकते हैं कि स्वदेशी युद्धपोत है। पिछले एक साल के अंदर 10 से 12 अलग अलग क्लास के जो युद्धपोत हैं, चाहे डिस्ट्रॉयर की बात करें, सलो वाटर क्राफ्ट की बात करें या दूसरे फ्रिगेट की बात करें, इस तरह के अलग अलग जो युद्धपोत हैं भारतीय नौसेना में वो शामिल हुए हैं। और आज एक तरह से तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल को दिखाते हुए जो वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह, वो इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल कर रहे हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वक्त से ब्रेक का हो चला है, टिकते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
5: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
6: वाह वाह वाह वाह।
5: सेबी और NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
7: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
8: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
9: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: और बात अमेरिका ईरान जंग की करेंगे. अमेरिका ने लगातार 11वीं बार रात में ताबड़तोड़ हमले किए हैं. अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाया है. तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक तबरीज, सिरिक, बुशहर, चाबहार में धमाके की आवाज सुनी गई. ईरानी मीडिया के मुताबिक बुशहर में दो जगहों पर कई धमाके हुए. वहीं अमेरिकी हमलों के बीच ईरान एक बार फिर धमकी दी है. ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमांडर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो इस क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के सभी हितों को निशाना बनाया जाएगा. यूएस उसके सहयोगियों पर करेंगे हमले, ये ईरान ने चेतावनी दे दी है. लगातार हमले जारी हैं. 11वीं बार अमेरिका द्वारा हमला किया गया है. परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ये ईरान की चेतावनी है. नौ बज गए. मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
3: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस. हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई। हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
2: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
3: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
1: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
4: पहाड़ों पर मानसूनी आफत का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का रेड अलर्ट। बादल फटने के बाद राजौरी और करगिल में हालात नाजुक। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर इस वक्त मानसून का कहर झेल रहा है। पूंछम के बफलियाज इलाके में कुदरत का रौद्र रूप दिखा। लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड की चपेट में कई इलाके आ गए। ये तस्वीर पूंछ की है, जहां एक सुरंग पर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रही मशीनें भी आ गई। वहीं भारी बारिश के बाद शहर के बीच बह रहा पानी भी लोगों को डरा रहा है। अब किश्तवाड़ से आई डरावनी तस्वीर देखिए। यहां राइटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड से तबाही मच गई। क्षतिग्रस्त हुआ पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था। वहीं डोडा में रागी नाला के पास लैंडस्लाइड की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। राजौरी के नौशहरा की वाईये तस्वीर देखिए, जहां भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से नदी के बीच टापू में फंसे को निकाला गया। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: presented by
1: मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी घमासान के आसार। पीएम आवास के पास राहुल के धरने पर आर पार। बीजेपी बोली, नेता विपक्ष का रवैया निंदनीय। जितेंद्र सिंह का आरोप, शर्तें मानी पर पलट गए राहुल। हिरासत से रिहा हुए राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस नेता, वीडियो मैसेज जारी कर मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बोले, पीएम और अमित शाह भी मांगे छात्रों से माफी। सरकार ने शुरू की सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल। देर रात गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। करीब एक घंटे चली मुलाकात। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी। अयोध्या में आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर हो सकती है चर्चा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी समीक्षा संभव। सिक्किम में टनल पर लैंडस्लाइड के बाद 20 मजदूरों की मौत। असम में बाढ़ से हालात भयंकर। एक ही दिन में 21 लोगों की गई जान। सेना का ऑपरेशन। हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बादलों का हाहाकार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट और

0: सत्ता से चलेगा। राहुल गांधी, यू हैव बीन इररेस्पॉन्सिबल। आई कंडेम योर इंटायर कंडक्ट यस्टरडे। बाद में मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, जो सुरक्षा के लिए जरूरी था, शांति के लिए जरूरी था। कल प्रधानमंत्री जी ने हमेशा स्पष्ट रूप से कह दिया कि नीट में जो कुछ हुआ वो गलत था, और पिछले कई परीक्षाओं में ऐसी बात सामने में आई, कई प्रदेशों में ऐसी बात सामने में आई, इसलिए फुल प्रूफ परीक्षा कराई गई, तुरंत कराई गई कैंसिल होने के बाद, और आज रिजल्ट भी आ गया है। 56-57% सक्सेस रेट है, बच्चे खुश हैं, तुरंत उनकी नई परीक्षा हो गई जिसका कोई एडिशनल फी नहीं लिया गया। ये सारे नीट को देने वाले बच्चे, बाकी नौजवान हम लोग के बच्चे हैं, उनके भविष्य की चिंता करना हम लोग का फर्ज है और करेंगे। और स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि 13 लोग गिरफ्तार हैं, उनका ट्रायल होगा। उन्हें भी आग्रह किया, जो धुरंधर वकील लोग देश के हैं वो इनके ट्रायल में इनकी सजा को पक्का कराने आगे आए, ये उनकी अपील थी। उसके बाद भी उन्होंने ये भी कहा कि पूरे सिस्टम को और ठीक करने के लिए पूरी जांच और परख चल रही है, कैसे ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन कल दिया कि नीट की परीक्षा और बाकी परीक्षाओं में लीक नहीं हो, और जो प्रश्न पत्र लीक करने वाला जो सिंडिकेट है उसको वो तोड़ कर रहेंगे, और आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल गांधी ने किया है। क्या कांग्रेस के राज्यों में नहीं हुआ है लीक? क्या हम सब खोलना शुरू करें क्या? लेकिन हमारा स्तर राहुल गांधी की राजनीति का नहीं है, बच्चों के भविष्य से मामला जुड़ा हुआ है। अरे सारे बच्चे हमारे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जो सरकार लगी हुई है हम लोग सभी लगे हुए हैं। राहुल गांधी, आपको जो कुछ रचनात्मक सुझाव देना है जरूर दीजिए, लेकिन सवाल सुधार का और सुझाव का नहीं है, सवाल है अपने राजनीतिक स्वार्थ का। ये तो कल दिखाई ही पड़ गया क्या आम आदमी पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। जब देखे कि समाजवादी के लोग पीछे पड़ गए तो वो भागे भागे चले आए। आपको वोट नहीं मिलता, आप जीतते नहीं, आप बार बार हारते हैं। राहुल गांधी आपकी पार्टी आगे फिर हारेगी, लेकिन देश राजनीति से बड़ा होता है। हिंदुस्तान के नौजवानों का भविष्य हम समों से बड़ा होता है, उसमें मिलकर काम करने की जरूरत है। आपने जो आचरण किया है वो बहुत ही निंदनीय है, उसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं।
1: राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी बीजेपी,
0: सदन में बहस के लिए तैयार है, आप देख रही हैं, बार बार ऑफर किया है, अच्छी बहस होनी चाहिए, उस बहस से देश में एक संदेश जाना चाहिए। उस हाउस चलने दे रहे हैं क्या? आप देख रही हैं ना, तो आप हाउस चलने नहीं देंगे, फिर कहेंगे बहस होनी चाहिए, और जब बहस का ऑफर दिया जाएगा तो कहेंगे नहीं मेरी मर्जी, ऐसे तो कम नहीं करता।
2: जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम मांगथू से मिले हैं,
1: छात्रों से भी लगातार मिल रहे हैं,
2: किस तरीके से
0: ये संवाद तो हो ही रहा है। अब आप छोड़ दीजिए, वो लोग उस पर औपचारिक चर्चा करेंगे, लेकिन जितेंद्र सिंह मिलने
3: तो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत संसद की चौखट से निकलकर सीधे प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गई थी, तो सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। राहुल गांधी ने सरकार पर चर्चा न करने, छात्रों पर ज्यादती की दलील दी, तो सरकारी सूत्रों ने नेता विपक्ष पर गलत परंपरा शुरू करने का आरोप जड़ दिया। सरकार का दावा है कि चर्चा के लिए वो तैयार है, लेकिन राहुल गांधी ने बीच में अपनी मांगे बदल दी है, ये आरोप लगा रहे हैं, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शर्त बाद में जोड़ दी है। करीब एक घंटे बाद संसद की कार्यवाही शुरू होगी। जाहिर है आज भी हंगामा तय है। अब तक पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्र मुद्दे थे, आज राहुल

0: गांधी का पीएम आवास के बाहर का धरना भी उसमें जुड़ गया है। तो पीएम हाउस के बाहर धरने को लेकर राहुल गांधी की अपनी दलील है। वो कहते हैं कि सरकार सुन ही नहीं रही थी, ऐसे में कोई और रास्ता ही नहीं था।
1: मैं तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड आई सेड टू हिम दैट इट वाज इंपॉर्टेंट दैट वी बी अलाउड टू डिबेट व्हाट हैपेंड टू द स्टूडेंट्स द डे बिफोर। द स्पीकर सेड ही नीडेड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट इट वाज वेरी क्लियर टू अस in the hours after that that there was no interest in the government of having a debate. To humne decision liya ki hum prime minister ke ghar ke samne jaake dharna kare aur jo students ki issue hai, jo desh ke liye sabse zaruri issue hai aur jo unke khilaf kiya gaya hai, wo hum national attention mein laye और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें।
0: तो हिरासत के बाद कल रात राहुल गांधी को छोड़ा गया। उसके बाद राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर अपनी मांगे रखी।
1: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए।
0: तो कल राहुल गांधी के से बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरना स्थल तक पहुंचे थे। उन्होंने राहुल गांधी पर अपनी मांगे बदलने का आरोप लगाया।
2: राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मरतबा नहीं, दो तीन बार पूछी। हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माय विश। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए।
0: और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, विपक्ष कहता है कि सदन में चर्चा हो, लेकिन यहां पर मंत्री कहते हैं कि अब गोल पोस्ट चेंज कर दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से।
3: देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर जो है सरकार का ये कहना है कि जो राहुल गांधी की एक बेसिक मांग थी उस मांग को जो है हम लोग स्वीकार कर रहे थे, और सदन में चर्चा के लिए जो है सरकार तैयार हो गई थी, लेकिन जो है राहुल गांधी ने अपना जो गोल पोस्ट है उसको चेंज किया। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो, तो सरकार की तरफ से ये कहा गया, जितेंद्र सिंह जो बातचीत के लिए गए थे उन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं होता है, आपकी एक मांग को मान लिया गया, कल सदन के अंदर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उसके बाद राहुल गांधी जब नहीं माने तो जितेंद्र सिंह और जो गृह सचिव है गोविंद मोहन, दोनों गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उसके बाद लंबी एक बातचीत हुई। उसके बाद देर रात जो है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जाके सोनम वांगचू से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ये अपील करते हैं कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहे कि वो इस तरीके के जो भी कदम उठा रहे हैं, जो हिंसा करने की कोशिश की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, वो ना करें, और साथ ही साथ आप अपने हंगर स्ट्राइक को जो है यानी जो अक्षर समाप्त कीजिए। लंबी बात वो किसी
0: जी
3: भी डे का।
0: हिमांशु आपके पास लौटेंगे हमारे साथ, इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल गौतम भी जुड़ गए हैं। राहुल आप कल जो धरना स्थल था वहां पर भी मौजूद थे। दावा जो किया जा रहा है सरकार की तरफ से वो ये कि हम तो तैयार हैं सदन में चर्चा के लिए, विपक्ष क्या कहता है, क्या आज अगर चर्चा होती है तो वो सदन में जाएंगे?
4: देखिए बिल्कुल जाएंगे, चर्चा होती है, लेकिन जो मांगे हैं उनसे कतई पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपने जैसे हमने साउंड बाइट भी सुना राहुल गांधी का, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब वो एक कदम आगे जाकर गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से माफी मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस है उनको लगता है कि सरकार बैकफुट पर है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, और उन्होंने छात्रों के साथ संवाद नहीं किया, इंगेजमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से जंतर मंतर पर जो कुछ घटा परसों उसके लिए वो सरकार के ऊपर सारा का सारा ठीक रहा एक तरीके से फोड़ रहे हैं, या पूरा जो जिम्मेवारी है वो उनको दे रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर चर्चा होती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसमें भाग लिया जाएगा, लेकिन जो स्टैंड है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, इसके अलावा जो छात्रों के मुद्दे हैं उस पर सदन में चर्चा हो, जिन छात्रों के ऊपर FIR हुई है वो FIR वापस ली जाए, जो बच्चे घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है कथित तौर पर सुसाइड की वजह से उनको कॉम्पनसेशन दें, ये तमाम मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी के पास जो वो सदन के अंदर रखेंगे अगर चर्चा होगी। और वो लगातार पिछले 3 दिनों से कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम मांग कर रहे थे कि आप चर्चा कराइए, क्योंकि आपने चर्चा नहीं कराई इसलिए हम मजबूर होकर प्रधानमंत्री के निवास तक हमने मार्च किया, वहां पर हम धरने पर बैठे। और कल भी उनका तो ये भी आरोप है कि जिस तरीके से हमारे नेताओं को डिटेन किया गया, जिस तरीके से जो हमारे जो नेता हैं उनको जबरदस्ती गाड़ियों में भरा गया है, ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि सरकार अभी भी गंभीर नहीं है चर्चा के लिए। वरना जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे थे उसी समय कुछ ना कुछ समन्वय बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने आकर सिर्फ आग्रह किया कि आप यहाँ पर धरना मत करिए, आप कहीं और धरना कर लीजिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस
0: जी
4: ये नैरेटिव बना रही है अंजलि कि जो कांग्रेस है वो छात्रों के साथ खड़ी है मजबूती के साथ, और जो सरकार है वो आपके साथ संवाद नहीं कर रही है, और हम आपके मुद्दे संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह उठाएंगे।
0: जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधा रुख करते हैं उसी बड़ी खबर का। एक आरोप लगाया गया है धर्मेंद्र प्रधान पर जयराम रमेश कांग्रेस के नेता द्वारा। वो कह रहे हैं कि अपने कार्यकाल में NTA उनका नाकाम रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो बिल्कुल नाकाम रही है। यह आरोप है जयराम रमेश का धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है उन पर। तो बड़ा आरोप ये, और लगातार धर्मेंद्र प्रधान ही है जिन पर केंद्रित रहा है सबका आक्रोश। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ लगातार विपक्ष के आरोप आते रहे हैं, हमले आते रहे हैं, बल्कि सबसे बड़े इस्तीफे की मांग भी उनकी रही है, ये ताजा आरोप क्या है?
5: देखिए अंजलि, कल देर रात धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरह से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में उनके ऊपर हमला बोला था, और उनको उनका जो धरना था प्रधानमंत्री के आवास के बाहर उसको इररेस्पॉन्सिबल एक्ट करार दिया था, पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने वाला एक्ट करार दिया था, और बड़ा लंबा सा एक्स पे पोस्ट डाला था धर्मेंद्र प्रधान ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने। आज सुबह अब जब हम ये रेस्पॉन्स देख रहे हैं, असल में हमको इसका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, क्योंकि कल धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पे सीधा अटैक किया, इसी वजह से कांग्रेस कांग्रेस पार्टी अब अपना हमला उन पे और शार्पन करने वाली है, और ज्यादा तीखे हमले होंगे, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस तरह से उनके समय में फेल रही है कांग्रेस के हिसाब से, इस बात को कहेंगे। हो सकता है कि आपको ये भी देखने को मिले कि जैसे दिन बढ़ेगा पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट रही है एनटीए को लेकर, एजुकेशन पे जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट का भी जिक्र कांग्रेस पार्टी कर दे, लेकिन सीधा सीधा अटैक उनको इनडिफरेंट इनसेंसिटिव जैसे शब्दों से एड्रेस कर रहे हैं जयराम रमेश जो कांग्रेस के सांसद हैं और साथ ही साथ कम्युनिकेशन हेड हैं कांग्रेस पार्टी के। तो अब स्पष्ट है कि आज का दिन संसद में दोनों ही सदनों में अगर सदन की कार्यवाही शुरू भी होती है तो बहुत जबरदस्त हंगामा होने वाला है, क्योंकि मामला सिर्फ नीट पेपर लीक का नहीं है। विपक्ष चाहता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और इसके साथ साथ जो 20 जुलाई को विपक्ष के हिसाब से लाठी चार्ज हुआ छात्रों के ऊपर, आंदोलनकारियों के ऊपर, और विपक्ष के हिसाब से जो जिसको बर्बरता बता रहे हैं उसकी जांच की भी मांग इस वक्त विपक्ष कर रही है। और सोनम वांगचुक वाला मामला तो है ही, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चारों दल जो है वो इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं, और इसको लेके विपक्षी दलों ने 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिया है, चर्चा चाहते हैं। लेकिन इस ट्वीट के बाद, इस पोस्ट के बाद अब स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री पे और भी ज्यादा आज हमलावर दिखाई देगी। अंजलि,
0: बिल्कुल, और धर्मेंद्र प्रधान को नाकाम बता दिया है अब कांग्रेस पार्टी ने। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। राहुल गांधी का धरना सरकार के लिए हैरान करने वाला निकला, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। खड़गे का सरकारी निवास पीएम हाउस से करीब 300 मीटर दूर है। कांग्रेस नेता के लिए जुटे वहां अध्यक्ष के लिए उनका बर्थडे मनाने के लिए जुटे, और अचानक वो धरने पर जाकर बैठ गए। आखिर कैसे धरने पर दंगल छिड़ा, देखिए ये एक रिपोर्ट।

0: पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए।
1: मंगलवार शाम के हाई वोल्टेज सियासी एक्शन के बाद देर रात राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर साफ कर दिया कि पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है।
0: कि ये जो इशू है देश का सबसे बड़ा इशू है।
1: राहुल ने कहा कि सरकार संसद में चर्चा से बच रही है और पूरा विपक्ष चाहता है कि लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर बहस हो, यानी संसद से सड़क तक शुरू हुई लड़ाई अब और तेज होने के संकेत हैं। मंगलवार दोपहर राहुल गांधी पहले आरएमएल अस्पताल पहुंचे और घायल छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद इंडिया गठबंधन ने संसद में नीट पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और छात्र आंदोलन पर विशेष चर्चा की मांग का फैसला किया, लेकिन संसद में गतिरोध बना रहा। इसके बाद करीब 3:30 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस सांसद अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां पहुंच गए और विपक्ष का प्रदर्शन और बड़ा हो गया। राहुल गांधी का ये कदम सरकार के लिए अप्रत्याशित था, हैरान करने वाला था। पीएम आवास जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में धरने के बाद सरकार तुरंत हरकत में आई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन बातचीत के लिए मौके पर पहुंचे। सरकार का दावा है कि राहुल गांधी ने पहले संसद में चर्चा की मांग रखी और सरकार के तैयार होने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नई शर्त जोड़ दी। कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की मांगों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है।
2: हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी।
1: बातचीत नाकाम रही तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पहले कांग्रेस सांसदों और नेताओं को हिरासत में ले लिया, अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात हुई। शाम करीब 6:30 बजे अखिलेश यादव धरना स्थल पहुंचे और कुछ ही मिनट बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अलग अलग पुलिस बसों में बैठा कर हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेताओं को भी हटाया गया। देर रात सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम में लाया गया तो प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने में, सोनिया गांधी भी रात को मंदिर मार्ग थाने आकर प्रियंका गांधी से मिली। रात 9:45 बजे राहुल गांधी समेत सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। धरना खत्म हो गया लेकिन सियासी टकराव और तेज हो गया। सरकार ने राहुल गांधी के पीएम आवास के बाहर धरने को सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बताया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस तरह का प्रदर्शन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से गलत और खतरनाक परंपरा है। पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर कांग्रेस ने गलत और खतरनाक परंपरा डाली, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं के भी खिलाफ है। दुनिया के कई देशों में नेताओं की आवाज को निशाना बनाने वाले प्रदर्शनों के गंभीर परिणाम सामने आए हैं।
3: राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं, इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है और हम शुरू से कहते रहे राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभरे।
1: राहुल गांधी के धरने का दंगल अब संसद में दिखेगा। विपक्ष आज भी नीट पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस से ज्यादा टकराव की राजनीति कर रहा है।
4: और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
8: Right now, lease a 2026 Subaru Outback for 1.9% for up to 72 months.
7: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
8: Offer ends 7/30/126. See dealer for details.
9: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains, or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
10: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
12: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
13: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
12: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now. Sokudo.
14: Papa.
15: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
16: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
15: छक्का?
16: सब कैशलेस हो गया है।
15: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
17: चार्ज हुआ यार।
18: बैट किसका है?
19: टाटा AIG है तो भरोसा है।
20: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
2: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
1: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
2: अर्ज किया है,
1: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
3: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
1: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
4: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
5: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
6: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
7: In association with
8: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर। पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत।
11: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh yeah, you make my dreams come. Steely Dan, Loggins and Messina, even though we ain't got money, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
14: तड़का हर माँ का।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR. Ye rishta lamba chalega.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक।
3: सिक्किम के नामची में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन टनल के एंट्री गेट पर लैंडस्लाइड, गेट बंद होने से टनल में फंसे मजदूर। ये तस्वीरें सिक्किम के नामची में बन रही टनल के अंदर की है, जब लैंडस्लाइड के बाद वहां काम कर रहे मजदूर फंस गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि टनल के अंदर कितना अंधेरा है और पानी और मलबा भी साफ देखा जा सकता है। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन टनल के अंदर गैस होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम के कई बचाव कर्मियों को अंदर जाने के दौरान चक्कर आए और कुछ बेहोश भी हो गए। लैंडस्लाइड के बाद जमीन और चट्टानों की परतें खिसकने से गैस बाहर निकली। इसके अलावा टनल का संकरा रास्ता और अंधेरा भी राहत कार्य में रुकावट बन रहा है। SDRF, जिला पुलिस और फायर सर्विस की टीमें मौके पर मौजूद है। पश्चिम बंगाल से भी एक विशेष रेस्क्यू टीम बुलाई गई है। ये टीम गैस से बचाव के लिए विशेष सुरक्षा उपकरणों के साथ पहुंची है। बताया गया कि ये टनल तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

पीएम आवास के पास राहुल के धरने पर आर पार, बीजेपी बोली छात्रों की आड़ में राजनीति न चमकाए राहुल गांधी। संसद में काले कपड़े में पहुंच रहे हैं कांग्रेस सांसद। हिरासत से रिहा होने के बाद राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो मैसेज, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, छात्रों से माफी मांगे सरकार, तभी थमेगा विरोध। जयराम रमेश का पोस्ट, नाकाम शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। सरकार ने शुरू की सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल, देर रात गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने की एक घंटे तक मुलाकात, कार्रवाई का दिया भरोसा, अनशन खत्म करने की अपील।

0: आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मेदांता हॉस्पिटल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की सोनम वांगचुक के साथ एक घंटे से ज्यादा वक्त तक बैठक चली। जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक की सेहत के बारे में जानकारी ली। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक को सरकार के उस फैसले के बारे में भी बताया जिसके तहत सरकार संसद में बहस शुरू करने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सोनम वांगचुक को भरोसा दिलाया कि देश में शिक्षा सुधारों को लेकर सरकार जरूरी कदम उठा रही है। सरकार ने सोनम वांगचुक से आग्रह किया कि वे छात्रों से सरकार पर भरोसा रखने और आगे कोई कदम न उठाने की अपील करें। मेदांता अस्पताल जाने से पहले जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और ये बैठक 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन पहले सीजेपी और सोनम वांगचुक तक सीमित था अब वो बढ़कर विपक्ष का भी हो गया है। ऐसे में सोनम वांगचुक से बातचीत का रास्ता खोलना क्यों जरूरी है सरकार के लिए?
1: देखिए, क्योंकि अगर आप देखें तो अभिजीत दिपके जो हैं वो सीजेपी उन्होंने बनाई और वो प्रोटेस्ट पे बैठे और उसके बाद जो है सोनम वांगचुक जो हैं वो अनशन पे आ गए। वहाँ से जो है एक तरीके से अगर आप देखें तो ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो धरना था, इसमें एक तरीके से हल्के यूथ और छात्र जो है वो जुड़ते गए और 20 दिन का उनका जो लंबा अनशन है रहा उस दौरान जो है छात्र वहाँ आते थे, प्रोटेस्ट करते थे और फिर ये हुआ 20 मार्च को जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो एक मार्च निकाला जाएगा। उससे पहले सोनम वांगचुक को जो है दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन किया क्योंकि उनका जो हेल्थ है वो लगातार जो है खराब हो रहा था। उनको सफदरजंग हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहाँ से जो है सोनम वांगचुक ने ये अपील की कि उनका धरना जारी है, वो अनशन पर अभी भी बैठे हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें सरकारी हॉस्पिटल की जगह मेदांता में शिफ्ट कराने की परमिशन दे दी। कल देर रात जो है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां उनसे मुलाकात की, उनको बताया कि किस तरीके से सरकार जो है एजुकेशन सिस्टम को प्रूफ करना चाहती है, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो है पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर ये कहा कि ये घोर पाप है, जिन लोगों ने ये काम किया उनको सजा मिलेगी और सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। ये राज्य या केंद्र सरकार की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने की बात है और सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ सुधार होने चाहिए वो होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपील करें कि लोग जो है शांति बनाए रखें और अगर धरना खत्म किया जाए तो अच्छा रहेगा। ये सारी अपील जो है वहां से की गई लेकिन सोनम वांगचुक की तरफ से अभी तक कोई भी चीज जो है जवाब नहीं आया क्योंकि सीजेपी ने का जो प्रतिनिधि मंडल जेपी नड्डा से मिला था, उन्होंने अपनी 3 मांग कही थी। उन तीनों मांगों पे से सरकार एग्री नहीं कर रही है। उन्होंने ये जरूर उनके मेमोरेंडम को लिया, उस पर सोच विचार किया, उनसे बातचीत की, उनको कहा आप जाइए शांति बनाए रखिए और ये अपील कीजिए कि प्रशासन के साथ जो है जो प्रोटेस्टर हैं वो शांति बनाए रखने का काम करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार कल उसके बाद जो है राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पे बैठ गई, उस गेट पे जाके बैठ गए जहां से प्रधानमंत्री जो हैं वो आते और जाते हैं, यानी प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ वो गेट है, बाकी किसी के लिए नहीं। वहां जाके राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता बैठ गए, इस पे वहां से जो है राजनीति शुरू हो गई। अभी तक जो है राजनीति जो
0: है बने रहे, ये जो राजनीति कल शुरू हुई थी वो आज भी जारी है क्योंकि आज जो कल धरने पे बैठे थे कांग्रेस के नेता अब संसद में भी पहुंच रहे हैं। तो जो सांसद हैं कांग्रेस के उन्होंने आज संसद में भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के सांसद आज काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे हैं अपना विरोध जताने के लिए। वो अपनी मांगों पर डटे हैं, छात्रों पर एक्शन और नीट पेपर लीक, इन दोनों बातों को सदन में बहस में जोड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस का जो रवैया रहा उस पर भी चर्चा हो, नीट पेपर लीक हुई उस पर भी चर्चा हो और साथ में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो। तो 10:30 बजे मकर द्वार पर उन्होंने अपना वक्त तय किया था विरोध प्रदर्शन का, जिसके लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सांसद हैं कांग्रेस के वो काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जताने के लिए लगातार संसद परिसर में पहुंच रहे हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता।
2: हम आज काले कलर के कपड़े पहन रहे हैं, हमारे तमाम सांसद विरोध व्यक्त कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए विरोध, नौजवानों पर जो बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, आपको पता है पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, आज हमने पढ़ा शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ। हम अपना विरोध दर्ज करते हैं कि देश के अंदर देशवासियों के साथ देश की पुलिस, देश का गृहमंत्री ये वर्ताव कर रहा है। हमारा विरोध है छात्रों के भविष्य के साथ जो तबाही मचाई गई है। हमारा विरोध है धर्मेंद्र प्रधान आज भी अपनी कुर्सी पर क्यों है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री माफी मांग रहे, क्यों नहीं गृहमंत्री माफी मांग रहे।
0: और आइए सीधा रुख करते हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल का। ऐश्वर्या, क्या कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन मकर द्वार पर होना था, जिसके लिए काले कपड़े पहनकर पहुंच रहे सांसद, वो शुरू हो चुका है?
3: जी बिल्कुल, देखिए हम बता दें जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो सब इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी वाड्रा, वो सब आज काले कपड़े पहनकर आए हैं। और कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है, जो बच्चे उनका कहना है जो स्टूडेंट्स आए थे उनकी बात एक तो सुननी चाहिए थी, और दूसरा जिस तरीके से बच्चों की पिटाई हुई है उसकी जवाबदेही आखिरकार कौन देगा। मकर द्वार के ऊपर इस समय प्रदर्शन जोरों शोरों पर है, और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें से भी कुछ सांसद जो हैं काले कपड़े पहनकर आए हैं और कह रहे हैं कि हम चाहते हैं सबसे पहले कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो। और विपक्षी पार्टियों का यह भी कहना है कि एक डिटेल डिस्कशन नीट के ऊपर होना चाहिए। सरकार का कहना है कि डिस्कशन के लिए वो तैयार है, लेकिन इस समय ये जो पूरा मामला है ये बच्चों से हटकर इसने जो एक कलर ले लिया है वो लिया है एक पॉलिटिकल कलर। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कशमकश जो है वो चल रही है सरकार के बीच और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उन सब के बीच। विपक्षी पार्टियों का इस समय ये कहना है और मानना है कि सरकार को उनकी मांगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द नीट के ऊपर एक लंबा चौड़ा डिस्कशन करके लोगों को और बच्चों को खासतौर से ये आश्वासन देना चाहिए कि इस तरीके की हरकत, इस तरीके का पेपर लीक आगे कभी नहीं होगा। जी
0: जी, शुक्रिया ऐश्वर्या इस पूरी जानकारी के लिए। उधर कांग्रेस और राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन को लेकर अब सियासत भी हो गई है, और तो और आम आदमी पार्टी है जो राहुल गांधी के धरने वाली राजनीति पर सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राहुल का धरना कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने की कोशिश है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। इस पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने पलटवार करते हुए कहा कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, हम समझ सकते हैं बीजेपी के साथ जारी आपकी जुगलबंदी फेल हो गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कल संजय सिंह की, आम आदमी पार्टी के सांसद जो कि कल संसद परिसर में नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। हालांकि वो सीजेपी के मुद्दों को लगातार उठाते और समर्थन देते आए, लेकिन आरोप वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि वो दरअसल मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। क्या ये क्रेडिट वॉर है दोनों पार्टियों के बीच?
4: सब जानते हैं, तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इश्यू है, उसपे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो, हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो, किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज हैं उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स का जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है, वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो, ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे हो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो,
5: प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं।
4: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या, ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है? सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन, पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। लुक, इट्स वेरी क्लियर, वी आर अगेंस्ट वायलेंस, वी हैव ऑलवेज बीन, दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ आर पार्टी, इट्स द आइडियोलॉजी ऑफ आर नेशन। महात्मा गांधी fought for freedom, it was a unique revolution in which there was zero violence on their part. And I have heard the protesters and students and all also saying that they are not going to be violent. So if people have got hurt, police people have got hurt, or
0: तो एक तरफ संसद है, दूसरी तरफ जंतर मंतर, जहां अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है कांग्रेस जनता पार्टी का। लेकिन विपक्षी खेमा जो है वो जंतर मंतर भी पहुंच गया है। महाराष्ट्र के दो दिग्गज नेता कल सीजेपी के प्रदर्शन में पहुंचे, पहले शरद पवार पहुंचे और फिर उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंचे समर्थन देने के लिए। तो अब राजनीति सियासत भी सीजेपी के साथ जुड़ गई है। तो जो कई दिन से उनका प्रदर्शन धरना जारी था, यहां तक कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी थी, वो अब सियासत के केंद्र में आ चुकी है। उनकी आवाज अब संसद तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अब विपक्षी खेमे ने उनकी आवाज में अपनी आवाज मिला ली है। तो बड़ी खबर आ रही है कि आज सीजेपी से फिर से बात करेगी सरकार। तो आपको याद होगा कि ज्ञापन सौंपा था सीजेपी के नेताओं ने, उनका प्रतिनिधि मंडल गया था जेपी नड्डा के पास और अपना ज्ञापन अपनी मांगे उनको सौंप कर आया था। लेकिन अब दोपहर 12 बजे एक बार फिर से सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत कर सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा का, जो कि जंतर मंतर पर ही मौजूद है। सुशांत, ये 12 बजे बातचीत जो होगी उसके बारे में क्या पता चल रहा है, किस जरिए से ये बातचीत हो सकती है?
6: देखिए अंजलि, पहले ही सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं है, बातचीत के रास्ते जो है वो खोले रहेंगे। जंतर मंतर की मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि अभी जस्ट यहां पर अनाउंसमेंट की गई है कि क्योंकि अभिषेक दीप के जो कि कल रात को तबीयत जो है वो ज्यादा खराब हो गई है, फूड पॉइजनिंग हुई है, वो आज फिलहाल धरना स्थल पर जो है वो ज्यादा मैसेजिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन धरना स्थल की अगर तस्वीरें देखेंगे कि कल के मुकाबले आज जबरदस्त भीड़ जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। मांग लगातार वही है कि केंद्रीय यूनियन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा जो है वो किया जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो मांगे हैं वो लगातार वो अभी तक जारी है। सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों के बीच में जो आयोजक हैं उन सबका यही कहना है कि कानून जो है वो हाथ में नहीं लेना है, और कुछ ही पल है जिसमें कि अगर कहा जाए तो शायद सरकार जो है वो दबाव में आए और उनकी मांगों को जो है वो मान ले। तो ऐसे में लगातार शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने को लेकर के नारेबाजी आप देख रहे होंगे कि लगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर
0: चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, सीजेपी से बातचीत सरकार की, इस पर क्या जानकारी है आपके पास?
1: देखिए बिल, अभी तक जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि आज दूसरे राउंड की सरकार के जो मंत्री हैं उनकी मुलाकात होगी सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी हैं उनके प्रतिनिधि मंडल से। पिछले परसों जो है जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी, अपना ज्ञापन जो है वो जेपी नड्डा को दिया था। सरकार की तरफ से कोई एश्योरेंस जो है उनको नहीं दिया गया था। ये जरूर कहा गया था कि आप प्रोटेस्ट को जो है शांतिपूर्ण बनाए रखें और ये कोशिश करें कि किसी भी तरीके के हिंसा जो है वहां ना हो। और आज जो है दूसरे राउंड की बातचीत होगी, क्योंकि कल देखिए आप जेपी नड्डा जो है वो आरएमएल हॉस्पिटल गए जो है, उसके साथ साथ जो है वो लेडी हार्डिंग गए, उसके बाद देर रात जो है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो केंद्र सरकार में मंत्री है दोनों ने जाके जो है मेदांता हॉस्पिटल में जो है सोनम वांगचू से मुलाकात की है। और अब सीजेपी के जो प्रोटेस्टर हैं उनसे दूसरे राउंड की जो है वो मुलाकात आज दोपहर 12 बजे के करीब जो है वो होगी। तो ये मानकर चला जा सकता है कि सरकार जो है वो एक तरीके से जो है संवाद करके जो है इसका रास्ता निकालना चाहती है। वो चाहती है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये खत्म हो और छात्रों को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। जो प्रोटेस्ट किया ठीक है, सरकार ने उसका संज्ञान ले लिया है, सरकार एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए काम करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो मंगल मिलन जो इंडिया का पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग था उसमें साफ साफ कह दिया ये घोर पाप हुआ है, जिन लोगों ने ये काम किया उनको अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया जाए, बच्चों और छात्रों को लेकर किसी भी तरीके की राजनीति ना हो, छात्रों को किसी भी तरीके से राजनीति में ना घसीटा जाए और सबको मिलकर काम करना चाहिए। पेपर लीक एक स्टेट या केंद्र सरकार का इशू नहीं है, ये एक ऐसा इशू है जिस पर हम सबको मिलकर काम करना होगा और सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना होगा। सरकार जो है अकाउंटेबल है और इसीलिए जैसे ही पता चला सरकार ने रिस्पॉन्ड किया और कार्रवाई की है। तो एक तरीके से आप देखें तो सरकार इस तरीके से जो है कम्युनिकेशन वे के जरिए जो है वो इस पूरे प्रोटेस्ट को जो है वो खत्म कराना चाहती है। इसीलिए सोनम वांगचू से मुलाकात हुई है, सीजेपी के प्रोटेस्टर से बातचीत हुई, कल जो है जो हॉस्पिटल में जो प्रोटेस्टर थे जो जिन लोगों ने प्रदर्शन किया जिनको चोटें आई हैं उनसे मुलाकात करने गए थे जेपी नड्डा, और जितेंद्र सिंह ने खुद मुलाकात की थी राहुल गांधी से जो प्रधानमंत्री के आवास के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे, उनसे मुलाकात की और उनको एश्योरेंस किया था कि सदन के अंदर जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार जो है नीट पेपर लीक मामले पर जो है चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी ने दूसरी मांग रखी जिसमें कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो तमाम इस तरीके के जो इशू है सरकार जो है इन सबको फेजर आउट करना चाहती है बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, और यही कारण है कि आज दूसरे राउंड की जो मुलाकात है सरकार के द्वारा जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ हो सकती है।
0: जी बड़ी खबर आ रही है ये, हिमांशु मिश्रा हमें बता रहे थे कि दूसरी बार बातचीत होने वाली है, लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं संसद के परिसर से। आज विपक्षी पार्टी
7: राइट इन फ्रंट ऑफ मकर द्वार, ऑल ऑफ देम आर सीन वेयरिंग ब्लैक, रिमेंबर दैट द इशू ऑफ नीट इज नाउ बीइंग टेकन अप बाय द एमपीज ऑफ ऑपोजिशन।
0: तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी जो वहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं संसद परिसर से, जहां पर कांग्रेस के नेता काले कपड़े पहन के पहुंचे हैं और उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं दूसरे विपक्षी नेता भी, दूसरे विपक्षी दल भी इस विरोध प्रदर्शन पर में जुट गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी लेफ्ट के नेता सब वहां पर साथ में आकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ। मुद्दा एक है और वो है नीट पेपर लीक, साथ में जो मांगे जोड़ी गई हैं, जो वो मांगे कर उस सामने रख रहे हैं उसमें जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई, छात्रों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की गई, इसको लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
10: आर यू रेडी टू टैकल दोस होम प्रोजेक्ट्स? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
11: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
12: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
14: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
15: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
14: Smartless.
16: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of apple.
14: Marketplace.
17: Big three on the program today, or... You know, the big three of
14: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
4: देखिए हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से, ये कोई और कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या दो दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्जाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं।
13: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मानसून सत्र के तीसरे दिन भी घमासान के आसार। काले कपड़े में संसद भवन पहुंचकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। राहुल और अखिलेश का एक साथ अटैक। बीजेपी बोली, छात्रों के कंधे पर राजनीति न चमकाएं।
1: हिरासत से रिहा होने के बाद राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो मैसेज। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, छात्रों से माफी मांगे सरकार, तभी थमेगा विरोध। जयराम रमेश का पोस्ट, नाकाम शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान।
2: सदस्यगण, अभी प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के अंदर सभी माननीय सदस्यों के जो प्रश्न होते हैं उनको बोलने का अवसर दिया जाता है, और ये महत्वपूर्ण और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। इससे मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल के बाद मैं जिन विषयों पर आपने नोटिस दिया है उन विषयों पर मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ। जितनी देर जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे, उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा, लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना चाहती अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।
0: लगातार तीसरे दिन संसद विपक्ष का हंगामा। हंगामे के चलते लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित है, वहीं राज्यसभा की कार्यवाही में भी हंगामा देखा जा रहा है।
1: लोकसभा की कार्यवाही आज फिर शुरू होते ही खत्म, अब स्थगित हो गई है दोपहर 12 बजे तक के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन हंगामा करता दिख रहा था। राज्यसभा की आपको कार्यवाही

0: Minister of Railways, the ministers, the officers on the staff of the Ministry of Railways, Indian Railways, and all the scientists, engineers, technicians, and others whose dedication and hard work have made this pioneering venture a big success. I am confident that this achievement will further strengthen India's journey towards.
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
2: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और अब शुरुआत करते हैं शतक आज तक की।

0: दिल्ली सीजीएपी प्रदर्शन मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज, संसद मार्ग समेत 5 थानों में दर्ज है केस, जांच भी जारी। दिल्ली पुलिस का फैक्ट चेक, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन इस्तेमाल का दावा का खंडन किया, पुलिस ने लोगों से अपुष्ट जानकारी साझा न करने की भी अपील की। राहुल गांधी के पीएम आवास प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का देश भर में विरोध, प्रदर्शन सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी का आरोप, दोपहर 12 बजे के बाद कांग्रेस कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन। राहुल गांधी के प्रदर्शन पर सरकार का पलटवार, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को बताया राजनीतिक, नीट मुद्दे पर संसद में चर्चा को तैयार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, संसद के मकर द्वार पर काले कपड़ों में जुटे सांसद, नीट यूजी की अनियमितताओं का मुद्दा उठा रहे। रविशंकर प्रसाद के राहुल गांधी पर हमला, पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन को बताया सुरक्षा और गरिमा का उल्लंघन। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार का बयान, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले दोषियों पर कार्रवाई हुई, परीक्षा प्रक्रिया पूरी की गई। दिल्ली पुलिस कार्रवाई पर रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्शन जरूरी था। जयराम रमेश ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा, एनटीए की कार्यप्रणाली और परीक्षा विवादों को लेकर भी आरोप लगाए। नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक पर कांग्रेस का हल्ला बोल, जयराम रमेश बोले कि एनटीए की लगातार विफलता का ही पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने का दावा।
1: सोनम वांगचुक फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती, सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से की मुलाकात, राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश का, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, आगे कहा पीएम गृहमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी ने कहा छात्रों की न्याय की लड़ाई जारी रहेगी, शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा राहुल गांधी और कांग्रेस स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल टूल के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का राहुल और कांग्रेस पर आरोप, पीएम मोदी के घर के बाहर धरना देना गलत है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल को लेकर कहा सरकार की पूरी चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहने के बावजूद कांग्रेस ने बहस के बजाय पॉलिटिकल तमाशा चुना। धर्मेंद्र प्रधान का आरोप, कांग्रेस का मकसद कभी भी स्टूडेंट्स के लिए सोल्यूशन नहीं था बल्कि पॉलिटिकल हेडलाइन के लिए हंगामा करना था। पवन खेड़ा ने पोस्ट साझा कर कहा युवा मुद्दों पर संसद में बहस और छात्रों पर दर्ज मामलों की वापसी की मांग की। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की हिरासत पर शशि थरूर का हमला, बोले असहमति को पुलिस कार्रवाई से नहीं दबा सकती सरकार। सोशल मीडिया पर पथराव और पुलिस कार्रवाई के दावों को दिल्ली पुलिस ने बताया फर्जी, अफवाहों से बचने की अपील की।
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजीपी प्रदर्शन में घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने राहुल गांधी को धरने से जबरन उठाया। जंतर मंतर पर सीजीपी के प्रदर्शन में प्रियंका, अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने जगह को खाली करवाकर सभी को बस में लेकर गई। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि मोदी जी सारी ताकत लगा लो लेकिन छात्रों के इंसाफ की यह लड़ाई अब रोके नहीं रुकेगी। मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर आरोप, कहा कि मैंने खुद जाकर मुलाकात की लेकिन अब राहुल ने अपनी बात बदल ली है। जितेंद्र सिंह बोले सरकार नीट पर चर्चा को तैयार, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नई मांग की गई। जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर आरोप, बोले कि राहुल बार बार बदल रहे हैं बयान, कहते हैं कि मैं जहां चाहूं बैठूं, मेरी मर्जी। अखिलेश यादव के मोदी सरकार से सवाल, कहा कि छात्रों की मांगे क्यों नहीं मान रही सरकार, पीएम मोदी उनकी बात सुने। सीजेपी के प्रदर्शन पर जंतर मंतर पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके और प्रदर्शनकारियों से मिले। जंतर मंतर पर चल रहे धरने में एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले पहुंचे, सरकार से युवाओं की बातचीत सुनने का आग्रह किया।
1: शिवसेना यूबीडी के सांसद संजय राउत भी जंतर मंतर पहुंचे, उद्धव ठाकरे आज दिल्ली आकर करेंगे छात्रों के प्रोटेस्ट का समर्थन। प्रियंका गांधी से मिले मंदिर मार्ग थाने पहुंची सोनिया गांधी, प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। जंतर मंतर पहुंची महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी अमित शाह पर साधा निशाना, कहा मोदी और शाह उन लोगों से निपटना नहीं जानते जो उनसे नहीं डरते।

0: आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे, साथ में आदिशी सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह रहे मौजूद। राहुल के धरने को आपने बताया बीजेपी से मिली भगत, कहा सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश। सिक्किम लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 20, 5 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राहत एवं बचाव अभियान पर सीएम तामांग की लगातार नजर, बचाव कार्य में जुटे सभी अधिकारियों और कर्मियों से साहस की तारीफ। नामची जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर लगातार ऑपरेशन चला रहा है। टनल दुर्घटना की वजह का पता लगाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का किया गया गठन, मृतक के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए का मुआवजे राशि का ऐलान।
1: असम में बाढ़ से भयंकर तबाही, पिछले 24 घंटों में 21 लोगों की मौत, राज्य के 16 जिलों में 5.5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित। सबसे ज्यादा प्रभावित शिवसागर में 13 लोगों की मौत हुई, वहीं चाराईदेव में 5, गोलाघाट में 2, जोरहाट में 1 व्यक्ति की जान गई है और इसके साथ ही इस साल राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 31 पहुंच गई। सीएम हेमंत बिस्व सरमा आज बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे, राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। राज्य में फिलहाल 71 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। असम में आए बाढ़ के बीच में भारतीय सेना ने आपदा राहत एवं मानवीय सेवा का परिचय देते हुए अब तक 571 लोगों को सुरक्षित बचाया, ऑपरेशन जल राहत के तहत एक्शन। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के चलते अचानक आई बाढ़ से अब तक 17 लोगों की मौत, राहत और बचाव का काम जारी। एमडी ने रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 36 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई। राजौरी, पुंच, गुरेज, कारगिल और तंगमर के लोगों से सतर्क रहने की अपील। राजौरी में सेना के जवानों ने तेज बहाव वाले नाले में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित निकाला, रस्सी के सहारे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाई। बड़गाम के बीरवाह बाजार में फ्लैश फ्लड का कहर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जा कैमरे में कैद हुआ भयावह मंजर। गुजरात में बारिश का असर, डांग में बाढ़ जैसे हालात, घरों, दुकानों और बाजारों में घुसा बारिश का पानी, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। गुजरात के डांग में लगातार बारिश के चलते कई नदियां उफान पर, प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की।
0: बिहार के सहरसा में बाढ़ से भयावह स्थिति, कोसी नदी उफान पर, कई इलाके जलमग्न, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है शिक्षक। धर्मशाला की बोघाटी में बारिश का कहर, भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई क्षेत्रों को नुकसान। चंबा में रावी नदी के बीच फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू ऑपरेशन, सुरक्षित बाहर निकालकर बचाई गई जान। बारिश भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक, रुद्रप्रयाग में सुरक्षा के मद्देनजर रोकी गई यात्रा। लगातार बारिश से अमरनाथ यात्रा स्थगित, खराब मौसम के चलते श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना, लोगों को मिली उमस से राहत। दिल्ली एनसीआर मौसम विभाग ने 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया, मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान। देहरादून के विकास नगर में गोना नदी के सैलाब में बहा स्कूटी सवार, युवकों ने जान जोखिम में डालकर बचाई जान। पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा में बढ़ा जलस्तर, वाराणसी में डूबने लगी घाटों की सीढ़ियां, मंदिर और मूर्तियां, एनडीआरएफ और पीएसी को हाई अलर्ट पर रखा गया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 20 घंटे लगातार बारिश से घोघरा नदी में फंसे 9 लोग, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला।
1: पुणे में खूनी वारदात, पुरानी रंजिश में नाबालिग पर धारदार हथियार से निर्ममता से हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा सेक्टर 44 में चलती टाटा सफारी में भीषण आग लगी, चालक ने कूद कर बचाई जान। यूपी के आगरा में एक पति ने अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या की, सुसाइड वीडियो में पत्नी और उसके परिवार पर तंग करने का आरोप लगाया। हरदोई में लीकेज की मरम्मत करते समय तेज दबाव में हादसा हुआ, पानी की टंकी का वॉल्व फट गया, बाल बाल बची ऑपरेटर की जान। मैसूर में खौफनाक वारदात, पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करके व्यक्ति ने खुद भी फांसी लगा ली। हल्द्वानी में पानी की टंकी के लैंडर की शटरिंग खोलते समय हादसा हुआ, एक ही परिवार के 3 लोगों की दम घुटने से मौत। और अयोध्या में दर्दनाक हादसा, टीबी मरीज पत्नी की मौत का सदमा नहीं सह सका पति, अंतिम संस्कार के दौरान हार्ट अटैक से जान गई। गुजरात के दौहद में एसी रिपेयर करते समय करंट लगने से 20 साल के युवक की मौत, इलाके में कोहरा। गोंडा में मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल, पुलिस का दावा पहले बदमाश ने फायरिंग की थी। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर डीजल टैंकर में लगी भीषण आग, चलते चलते टायर अचानक फट गया।
0: महाराष्ट्र के बीड़ में एनसीपी शरद पवार गुट नेता के कार्यालय में लगाई गई आग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, जांच में जुट गई है पुलिस। महाराष्ट्र के कोला में अलंकार मार्केट में भीषण आग, इलेक्ट्रॉनिक की 3 दुकानें जलकर राख, लाखों का नुकसान। पश्चिमी दिल्ली के फतेहनगर इलाके में एक मकान में लगी आग, फटे सिलेंडर, जल गई कई गाड़ियां, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में एक घर में तीसरी मंजिल पर आग, एक ही परिवार के तीन लोग की मौत। गुरुग्राम की सोसाइटी में बड़ा हादसा, प्रैक्टिस दौरान लड़के के सिर पर गिरा बास्केटबॉल पोल, खौफनाक वीडियो आया सामने। नोएडा में एम्बुलेंस की आड़ में चल रही थी गांजा की तस्करी, पुलिस ने 64 किलो गांजा बरामद किया। सहारनपुर में पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान के मीत प्लांट में अमोनिया गैस के रिसाव, 14 महिलाएं बेहोश। हरिद्वार में खनन रोकने गई टीम पर माफियाओं का हमला, नकाबपोश बदमाशों ने बरसाए लाठी डंडे। यूपी के बलरामपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, आईएसआई नेटवर्क से जुड़े युवक को किया गिरफ्तार। करनाल एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 5 गैंगस्टर गिरफ्तार, 5 विदेशी पिस्टल, 14 कारतूस बरामद। सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर की थी फायरिंग।
1: भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत, मालवन कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह की मौजूदगी में कमीशन हुआ। भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन का बेहतरीन उदाहरण वॉरशिप मालवन है, इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जे और तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे गानों पर अब सहारनपुर पुलिस का शिकंजा, डीजे पेन ड्राइव की होगी पूरी जांच, केवल मंजूर किए गए भक्ति गीत ही बजाने की इजाजत। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में प्रशासन ने कांवड़ मेला की तैयारियां शुरू की, श्रद्धालुओं के लिए सबूत जरूरी इंतजाम के निर्देश। 30 जुलाई से लगने वाले देवघर श्रावणी मेले की तैयारियां जारी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। अगले महीने होने वाले FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 मेंबर्स की भारतीय टीम का ऐलान, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होंगे मुकाबले। अनुभवी ट्रैक फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान, डिफेंडर अमनदीप लकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल, रविचंद्र सिंह और फॉरवर्ड सेल्वम कार्थी टीम से बाहर हुए। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगी अपना अभियान, 19 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला। 23 जुलाई से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज, आयरलैंड और इंग्लैंड से। T20 सीरीज हारने के बाद अब यह सीरीज अहम। BCCI ने घरेलू टूर्नामेंट और भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए जारी किया टेंडर, अगस्त में खत्म हो रहा है मौजूदा स्पॉन्सर का करार।
0: OMG2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म ओ माय डॉग का ट्रेलर आया सामने, 31 जुलाई को हो रही रिलीज। कलापति विजय की जन नायकन की रिलीज में चंद दिन बाकी, नया प्रोमो हुआ लॉन्च। नेटफ्लिक्स पर जल्द रिलीज होगी ऑपरेशन सफेद सागर की शौर्यगाथा से जुड़ी कहानी, 7 अगस्त 2026 को OTT पर होगी लॉन्च। 17 साल बाद पर्दे पर लौट रहे हुंगसुक मांगचुक, 4 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी आमिर खान की 3 इडियट्स। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशा चक्रवर्ती की हुई सगाई। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के 3 सबसे बड़े सैन्य अड्डों पर बड़े हमले का किया दावा, कुवैत के अरफजान, कैंप ब्यूरिंग और अहमद अल जाबेर एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी बेस पर किया गया हमला। ईरानी सेना ने पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर किया बड़ा हमला, जॉर्डन बहरेन समेत कुछ और देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बनाया निशाना। यमन के हुतियों की शिपिंग कंपनियों को दी चेतावनी, कहा सऊदी बंदरगाहों पर माल लोड या अनलोड करने से बचें। गाजा में इजराइल का भीषण हवाई हमला, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। दक्षिण लेबनान के जावतार शहर के इजरायली सेना की वापसी के बाद लेबनानी सेना हुई तैनात।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, CJP और सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है, आज तकरीबन दोपहर 12 बजे बातचीत बताई जा रही है। CJP एक बार फिर बात करेगी और इसके पहले वांगचुक से मुलाकात के दौरान JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने छात्रों को समझाने की अपील की थी।
1: तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, इससे पहले बातचीत हुई थी, जिस दिन हिंसा हुई, जिस दिन प्रदर्शन हुआ उस दिन बातचीत हुई थी, तब JP नड्डा से मुलाकात हुई, तो आज CJP से एक बार फिर से बातचीत होगी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, कितने बजे मुलाकात होने वाली है और आज की बातचीत में क्या होगा, कौन सा डेलीगेशन आने वाला है CJP की तरफ से?
3: देखिए, अभी जो कौन आएंगे मुलाकात करने, किन मंत्रियों के साथ होगी, वो तो अभी तय नहीं है, लेकिन इतना जो हमको खबर मिली है 12 बजे के आसपास जो है CJP के एक प्रतिनिधि मंडल से जो है वो बातचीत का क्रम दोबारा दूसरे राउंड का जो है वो शुरू होगा। और सरकार की तरफ से JP नड्डा जिन्होंने पिछले राउंड मुलाकात की थी वो तो रहेंगे, उनके साथ और कौन मंत्री रहेंगे ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन सरकार जो है इस चीज़ में ये चाहती है कि जो भी कम्युनिकेशन चैनल है उसको ओपन रखा जाए और सरकार किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन चैनल को जो है वो बंद नहीं करना चाहती है। सरकार का कहना है वो बातचीत के लिए हमेशा तैयार है और इसीलिए आप देखिए कि परसों एक राउंड की बातचीत हुई और उसमें ये तय हुआ जब CJP के लोग आए उन्होंने वर्बली मौखिक तौर पर जो है ये बताया कि उनकी क्या मांग है तो JP नड्डा ने ये कहा आप मौखिक तौर पर मत कहिए लिखित तौर पर जो है ज्ञापन दे दीजिए हम जो भी चीज़ें हैं उस पर बैठ कर डिस्कस करते हैं। जब लिखित तौर पर लेकर आए ज्ञापन को उस पर सरकार ने उसको पढ़ा और ये अपील की कि आप वापस जब जाएं तो लोगों से ये अपील कीजिएगा कि शांति बनाए रखें।
0: ठीक है अंशुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंशुल क्या जानकारी मिल रही है सरकार की ओर से कौन प्रतिनिधित्व करेगा और CJP अब पहली जो वार्ता थी उससे क्या अलग बातचीत करेगी?
4: जी CJP का अभी तक यही कहना है कि आगे जो भी बातचीत होगी वो बातचीत अब CJP के साथ यहाँ जंतर मंतर पर ही होगी। हालांकि आज सुबह हमने देखा कि BJP से बड़े नेता और सरकार के बड़े नेता आज सुबह गए थे सोनम वांगचुक से मिलने लेकिन उसका भी जो रिस्पांस है यहाँ CJP के नेताओं में वो काफी पॉजिटिव इस वक्त वैसा नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उनकी अभी भी यही डिमांड है कि अगर सरकार को वार्तालाप करनी है बातचीत करनी है तो यहाँ आकर बातचीत करे। इसके अलावा उन्होंने एक और डिमांड अब जो वो आगे प्रखर रूप से मुखर होकर रखने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस एक्शन हुआ 20 जुलाई को जब संसद की तरफ लोग मार्च कर रहे थे उनमें पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए तो अब ये देखना होगा कि क्या सरकार इन बातों को मानती है।
1: देखना होगा क्या स्टेप अब आगे उठाए जाते हैं। आप बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद भारत।
5: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
8: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
7: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
9: You're listening to MSNBC.
7: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
10: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया
2: है। हाँ। ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ, तो
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी हिंड बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
4: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
5: स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं, और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज टू एग्जिस्ट।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: मानसून सत्र के तीसरे दिन भी घमासान के आसार, काले कपड़ों में संसद भवन पहुंचकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, राहुल और अखिलेश का एक साथ अटैक, बीजेपी बोली छात्रों के कंधे पर राजनीति न चमकाए।
1: हिरासत से रिहा होने के बाद राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो मैसेज, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, छात्रों से माफी मांगे सरकार तभी थमेगा विरोध, जयराम रमेश का पोस्ट, नाकाम शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान।
0: सरकार ने शुरू की सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल, देर रात गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल पहुंचे जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने की एक घंटे तक मुलाकात, सीजेपी से दोपहर 12 बजे बात करेगी सरकार।
1: अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक, महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर हो सकता है चर्चा, एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी समीक्षा संभव।
0: सिक्किम में टनल पर लैंडस्लाइड के बाद 20 मजदूरों की मौत, असम में बाढ़ के हालात भयंकर, एक ही दिन में 21 लोगों की गई जान, सेना का ऑपरेशन, हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बादलों का हाहाकार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह का।
1: संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन आज भी तस्वीरें बीते दिन की तरह ही दिखाई दे रही हैं। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के हालात को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन आज तीसरे दिन जारी है। विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहा है।
2: अब विपक्ष ने आज काले कपड़े पहने हैं, इन काले कपड़ों में विरोध किया गया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी काले कपड़ों में आज संसद में दिखाई दिए। ऑपोजिशन के दूसरे लीडर भी काले कपड़ों में दिखाई दिए। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हुआ। चंद ही मिनटों के भीतर सदन की कार्यवाही एक से दो मिनट के भीतर ही स्थगित हो गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी ज्यादा देर तक नहीं।
3: प्रश्नकाल के बाद मैं जिन विषयों पर आपने नोटिस दिया है उन विषयों पर मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। जितनी देर जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा, लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना चाहती अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता।
1: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 12 बजे लोकसभा में पेपर लीक पर चर्चा का ऐलान किया जा सकता है।
2: ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा अपडेट है। स्पीकर से मिलने के लिए किरण रिजिजू पहुंचे हैं। हमारे साथ संवाददाता हिमांशु मिश्रा भी जुड़ गए। हिमांशु, तो क्या 12 बजे से सबसे बड़े विषय पर चर्चा संभव है?
4: देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से ये जरूर घोषणा की जाएगी, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं। स्पीकर पहले ही कह चुके हैं कि हम संसद में चर्चा के लिए मैं समय देने के लिए तैयार हूं, जितना समय आप चाहें। अब क्योंकि किरण रिजिजू ने जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है, तो ऐसे में हमको जो खबर आई है उसमें ये कि सरकार की तरफ से ये अनाउंस किया जाएगा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जो समय आपको लगता है, जिस नियम के तहत एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आम सहमति के तहत जो भी चीजें तय होंगी उस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। दूसरी तरफ आप देखें, जो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल की मीटिंग चल रही है, और जो हमको सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि 12 बजे के करीब जो है दूसरे राउंड की जो मुलाकात है वो सीजेपी के साथ आज जो है वो हो सकती है सरकार की, तो उसको लेकर भी जो है एक स्ट्रेटेजिक रणनीतिक बैठक जो है वो चल रही है।
2: हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। आज संसद की शुरुआत से पहले कुछ अलग अलग तस्वीरें भी हमें देखने को मिली। विपक्ष की संसद में आज मोर्चाबंदी जारी रही, विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया है।
1: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीजेपी से दूसरे दौर की बातचीत से पहले ही बड़ी बैठक की जाएगी जिसमें जेपी नड्डा, पीयूष गोयल शामिल होंगे। संसद भवन में ये बैठक चल रही है जिसमें ये दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। नितिन नवीन भी बैठक में शामिल है। तो एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर तैयार करने की कोशिश सरकार की ओर से कि किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, अगर ये बातचीत होती है कैसे मांगों को माना जाएगा या फिर नहीं, ये तमाम चीजों को लेकर ये बड़ी बैठक की जा रही है।
2: सीजेपी की मांग है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, तो उस पर क्या चिंतन मंथन होगा, उनकी बहुत क्लियर और स्पष्ट मांग है। और अभी संसद भवन में जानकारी मिल रही है कि ये बैठक चल रही है। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, सीजेपी के साथ दूसरे दौर की बातचीत, मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो उनकी सबसे बड़ी मांग है, क्या इस पर भी मंथन हो रहा है कि करें या नहीं?
4: देखिए, सरकार जो है वो किसी भी तरीके के दबाव में नहीं आने वाली है। आप देखिए कि कितने दिनों से जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचू जो है वो लगातार जो है अनशन पे बैठे रहे, दिल्ली पुलिस उनको डिटेन करके ले गई और सफदरजंग हॉस्पिटल में रहे वो 2 से 3 दिन, और उसके बाद कल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल जो है मैदानता में शिफ्ट किया गया, जहां देर रात जो है वो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और साथ में जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री है उन्होंने मुलाकात की, उनको समझाया कि एजुकेशन सिस्टम में सरकार सुधार चाहती है और ये इंश्योर करना चाहती है कि इस तरीके की चीजें भविष्य में नहीं होंगी। सरकार अकाउंटेबल है, सरकार की तरह उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली गई और साथ ही साथ उनकी जो अनशन है उसको खत्म करने की भी अपील की गई है। तो 1 घंटे की ये मुलाकात चली थी, लेकिन अभी भी ये जो बैठक है वो बेनतीजा निकली, इस पर कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए सीजेपी के साथ जो है दूसरे राउंड की मुलाकात जो है वो आज हो सकती है 12 बजे के करीब जो है, जो हमको सूत्रों के हवाले हवाले से खबर मिली है, तो कहीं ना कहीं सरकार रणनीति के तहत जो है हर तरीके से जो है संवाद करना चाहती है और संवाद के जरिए जो है वो एक बीच का रास्ता निकालना चाहती है। सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, जब नीट पेपर लीक का मामला हुआ था तब से सोशल मीडिया विपक्ष इसकी मांग कर रहा है।
1: इस बीच विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ये गतिरोध जारी है। इसी प्रोटेस्ट की एक तस्वीर ऐश्वर्या पालीवाल ने भेजी अपनी रिपोर्ट के जरिए।
5: हरिद्वार पे जोरों शोरों से इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन करने वाले हैं सारे विपक्षी नेता। अखिलेश यादव की बात करें तो वो इस समय काले कपड़ों के अंदर पहुंचे हैं। राहुल गांधी खड़े हैं काले कपड़ों के अंदर, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हैं, और ये सब बड़े जितने भी विपक्षी नेता हैं वो सब एकजुट हैं, एक साथ हैं और खड़े हैं पीछे और बोल रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं, जो एक अहम मांग है, वो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। वो सभी लोग यहां आपको पीछे नजर आएंगे। विपक्षी पार्टियों का इस समय ये कहना है और मानना है कि जो उनकी मांग है वो बहुत जेन्युइन मांग है। वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार को इस समय जो बातचीत है वो करनी चाहिए और एक डिस्कशन के साथ साथ ये लोग मांग रहे हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा। ऐश्वर्या पालीवाल आज तक।
2: एक और बहुत बड़ी खबर इस समय मिल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया जा रहा है कि मुलाकात की है उपराष्ट्रपति से। एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात ये भी है, एक तरफ लोकसभा को लेकर भी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है तो दूसरी तरफ राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनके साथ मुलाकात की गई है। और नेता राज्यसभा में विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की है और वो भी नीट के मसले पर ही बताया जा रहा है कि चर्चा हुई।
1: मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, किस बात को लेकर ये मुलाकात है, क्योंकि सदन तो चल नहीं रहा है, ऐसे में मुलाकात काफी अहम?
6: देखिए, ये मुलाकात काफी अहम हो जाती है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयरमैन के सामने ये मांग रख दी है कि नीट पर चर्चा बाद में होगी, उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। यानी कि विपक्ष अपना ही स्टैंड क्लियर कर रहा है, भले ही सरकार 12 बजे या 2 बजे लोकसभा या राज्यसभा में चर्चा का टाइम दे दे, लेकिन विपक्ष अब चर्चा के लिए तैयार नहीं है। उसकी पहली मांग यह है कि चर्चा इस्तीफे के बाद होगी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अब सबसे प्राथमिक मांग विपक्ष की यहाँ पे, जहाँ पे कहा जा रहा है कि चर्चा और नीट पेपर लीक से लेके जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर विस्तार से चर्चा हो, लेकिन उससे पहले सरकार एजुकेशन मिनिस्टर को सैक करे। और यही मांग को लेके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, जो कि राज्यसभा के नेता विपक्ष है, उन्होंने मुलाकात की है चेयरमैन साहब से।
2: जो आप जानकारी दे रहे हैं बहुत बहुत बड़ी खबर है, और आप ये बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब जो मिले हैं चेयरमैन से, उनका स्पष्ट कहना है कि हम चर्चा तभी करेंगे जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। यानी कि सरकार के चर्चा करने की सहमति की जानकारी तो मिल रही थी कि सरकार अब चर्चा करना चाहती है, लेकिन अब ऑपोजिशन चर्चा नहीं चाहता, वो चाहता है कि पहले इस्तीफा हो उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। थोड़ी देर पहले आपको सुनाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था।
7: हमारे जो बड़े नेता है उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। कल आप पछताएंगे कि हमने जो राहुल जी के लिए किया या प्रियंका जी के लिए किया ये ठीक नहीं है, उसी का परिणाम हम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा उनको महसूस करना पड़ेगा और वो हम दिखा देंगे।
2: इस बीच में एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और इस बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात बताया जा रहा है कि हुई है, शरद पवार की मुलाकात हुई है, सुप्रिया सुले की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से। आपको ये भी बता दें कि वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी गए थे, वहां पर ही मुलाकात उनकी होती है, लेकिन उसके बाद एक तस्वीर ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं, शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात, और दोनों काफी देर तक बातचीत करते हुए दिखाई दिए हैं, हाव भाव चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिखाई दे रहे। तो पीएम मोदी से शरद पवार की मुलाकात, क्या बातचीत हुई, अब इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन मुलाकात इस गहमा गहमी के बीच में इंपॉर्टेंट जरूर है।
1: हिमांशु मिश्रा में सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये महाराष्ट्र की सियासत को लेकर मुलाकात है या फिर सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि कल हमने सुप्रिया सुले को राहुल गांधी के साथ देखा था प्रोटेस्ट में।
8: राजनीतिक चीजें जो होती है ना उसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। कल सुप्रिया सुले जो है वो राहुल गांधी के साथ पहुंची, शरद पवार जंतर मंतर पहुंचे थे सीजेपी के प्रोटेस्ट में, और आज प्रधानमंत्री से मुलाकात, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीतिक को लेकर बिल्कुल चर्चा हुई होगी। और शरद पवार कई बार ऐसे सोशल इश्यूज को लेकर जाते हैं, ऐसे सामाजिक विषयों को लेकर जाते हैं और प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि इन सब चीजों को किया जाए, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या अन्य कई मुद्दे हो, उन पर जाके प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करते हैं। अब से कुछ देर में शायद साफ हो जाएगा कि शरद पवार और सुप्रिया सुले क्यों मिले थे, क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार की जो एनसीपी है और शरद पवार एनसीपी है, इनका मर्जर होगा जल्द से जल्द, और इसकी भी कोशिशें जो है लगातार जो है बैक चैनल के थ्रू जो है वो की गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अच्छा होगा कि दोनों ही पार्टियां अगर एक साथ आए, क्योंकि एनसीपी जो है शरद पवार की, उनके 8 सांसद हैं और एक राज्यसभा में सांसद है, तो कोशिश अगर ये होता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी होगा। और सुप्रिया सुले इस चीज को पहले भी कह चुकी है कि जो बिल आएगा महिला आरक्षण को लेकर और डिलिमिटेशन बिल को लेकर, उसको पढ़ने के बाद जो है अंतिम फैसला जो है वो उनकी पार्टी लेगी। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश जो जरूर पीछे के बैक चैनल के थ्रू चल रही है कि शरद पवार एनसीपी और अजीत पवार एनसीपी जो है एक बार फिर से एक हो जाए और सरकार के साथ आए। लेकिन चाहे इस पर बातचीत हुई है या किसी अन्य जो है सामाजिक मुद्दे पर बातचीत हुई है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है।
1: ठीक है, मुलाकातों का दौर चल रहा है, उसी की तस्वीरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर ये कि शरद पवार काफी दिन बाद दरअसल राजीव ये मुलाकात हो रही है और ये तस्वीर बेहद अहम है। और हालांकि इस पूरी मुलाकात का महत्व क्या है, इस पर क्या चर्चा की गई, ये तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन काफी दिन बाद हिमांशु ये तस्वीर नजर आई है, शरद पवार प्रधानमंत्री एक साथ।
2: हिमांशु का हम रुख करेंगे, लेकिन आपको यह भी बता दें कि इसी मानसून सत्र को लेकर कई तरह की चर्चाएं थी कि परिसीमन बिल आ सकता है, फिर महिला आरक्षण का बिल आ सकता है, तो इस पर भी हो सकता है कि एनसीपी शरद गुट समर्थन दे दे, इस तरह की खबरें भी थी। और इसी इन्हीं तमाम चीजों के बीच में ये मुलाकात हुई है।
1: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। हालांकि वो तस्वीर भी हमने देखी थी जब मेट्रो स्टेशन के गेट फान फान कर छात्र प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे। जिस दिन प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी सीजेपी द्वारा, उस दिन सेंट्रल दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था और आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए।
2: तो देश की राजधानी दिल्ली और जंतर मंतर यूं तो बहुत सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि आसपास सब हाई प्रोफाइल एरियाज हैं, जगह हैं, और 16 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए ताकि लोग भीतर ही ना आ सके। और ये एक बहुत बहुत बड़ा अपडेट, क्योंकि हमने पहले देखा था कि कैसे उपद्रव भी हुआ,
1: दरअसल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं ताकि लोग इस प्रोटेस्ट में ना जुड़ सके। सुशांत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बंद है?
9: देखिए नया, इसमें ना तकरीबन जो मैं बता दूं कि टोटल 16 मेट्रो स्टेशन है जिनको बंद किया गया है। इसमें लोक कल्याण मार्ग है, राजीव चौक है, पटेल चौक है, रामकृष्ण आश्रम है, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीरथ, जनपद, मंडी हाउस और आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, ये वो मेनली मेट्रो स्टेशन के गेट्स हैं जो कनॉट प्लेस के आसपास, उसके इर्द गिर्द जंतर मंतर के आसपास हैं। और ताकि भीड़ जो है वो लगातार जंतर मंतर पर जुट रही है। कल भी देर शाम को जिस तरीके की हिंसा की घटनाएं सामने आई, पुलिस बल के ऊपर पथराव हुआ, ऐसी घटनाएं ना हो पुलिस की तरफ से अब पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि इस प्रोटेस्ट को किसी तरीके से आगे बढ़ने से फिलहाल कहीं ना कहीं रोका जाए। और यही वजह है जिसको लेकर के दिल्ली मेट्रो स्टेशन के जो गेट्स हैं फिलहाल बंद किए गए हैं और मेट्रो स्टेशन पर जो लोग आते थे उनको बाहर निकलते थे और तमाम जो
1: सुशांत ये आज दिन भर बंद रहने वाले हैं या कुछ ही समय के लिए बंद किया गया है?
9: फिलहाल अभी देर अगर कहा जाए शाम तक ये गेट जो है वो फिलहाल बंद रहेंगे और उसके बाद जो है इन गेट्स को जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो देखा जाएगा, उसके बाद ही जो है इन गेट्स को जो है वो खोला जाएगा।
2: ये सुशांत बहुत इंपॉर्टेंट, तो यहाँ मेट्रो रुकेगी भी नहीं ऐसे लगता है, इन 16 स्टेशन से सीधा गुजरी जाएगी, क्योंकि पिछली बार जो ट्रेन के अंदर ही गेट खुल रहे थे, बाहर तो बंद था लेकिन लोग फिर भी बाहर आ जा रहे थे।
9: हाँ देखिए फिलहाल इसमें इंटरचेंज जो है वो जारी रहेगा, अगर आपको अंदर ही अंदर अगर आपको ट्रेन बदलनी है तो आप बदल सकते हैं, लेकिन आप मेट्रो स्टेशन गेट से बाहर नहीं आ पाएंगे। 20 जुलाई को भी जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें मेट्रो स्टेशन के जो गेट थे, एग्जिट गेट थे, उससे लोग जो है वो कूद रहे थे और बाहर आ रहे थे। फिलहाल वो स्थिति ना हो इसको देखते हुए पूरा तैयारी जो है वो दिल्ली मेट्रो की तरफ से जो है वो।
2: सुशांत, ये अचानक ये निर्णय क्यों लेगा, क्या कोई इन्फॉर्मेशन है कि इस तरह से प्रोटेस्ट एक बार फिर से लोग एकत्रित हो सकते हैं?
9: देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि कल सुबह के वक्त अगर देखा जाए तो जंतर मंतर पर 200 से 250 लोगों की भीड़ थी, लेकिन शाम होते होते ये भीड़ काफी ज्यादा हजारों।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पक्ष और विपक्ष लगातार वार पलटवार कर रहा है। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी ने धरना प्रदर्शन किया, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है।
10: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में।
11: प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है, फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदारना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष के नेता की भी होती है, बाकी मंत्रियों की होती है। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे? और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी? ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा, आप ही की उद्दंडता से चलेगा?
12: वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहां उपद्रव कराना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के आवास के पास ये धरना, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती, कोई वहां से कुछ अग्नि चीज छोड़ता, तो क्या राहुल गांधी के ऊपर? तो मैं कहता हूं कि जिस तरह की घटना घटी है उसमें उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।
13: हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए। मैसेजिंग यूथ के लिए है, मैसेजिंग प्रधानमंत्री के लिए है, यूथ के लिए ये मैसेजिंग है। घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं, राहुल गांधी आपके साथ खड़े हैं, उनकी पूरी फौज आपके साथ खड़ी, डरिए मत। और मैसेजिंग प्रधानमंत्री के लिए है कि आप अपने महल में बैठे रहेंगे इसका मतलब नहीं कि सड़क चुप रहेगी। सड़क आवाज लगाएगी, सड़क चिल्लाएगी, सड़क नारे लगाएगी, आपको बाहर आना होगा।
14: काले कपड़े का मतलब है विरोध करना। और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है, डर लग रहा है सरकार को, और डर तक डर ना पहुंच गया हो कहीं, ऐसा तो नहीं है?
2: ये कल की हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस पर आज भी राजनीति चल रही है। कल जो राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया और ऐसा लगता है कि किसी और को जानकारी नहीं थी, जब वो एक वहां पर पहुंच गए और खूब प्रोटेस्ट हुआ। और आज बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मर्यादा का पालन नहीं किया गया, ये अमर्यादित आचरण था। अब राजनीति इस पर चल रही है।
15: राहुल की धरनागिरी, अखिलेश की मोर्चाबंदी, जंतर मंतर पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे का दिल्ली कूच, आपका हाथ छात्रों के साथ। दिल्ली में बहुत कुछ लंबे अरसे बाद हो रहा है। लंबे अरसे बाद छात्रों का ऐसा आक्रोश दिख रहा है और लंबे अरसे बाद सियासी बिरादरी में ऐसी खलबली दिख रही है और नेताओं की ऐसी कदमताल भी लंबे अरसे बाद दिख रही है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर लंबे अरसे बाद धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं के इस जमावड़े को गौर से देखना जरूरी है। धरने का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जमीन पर बैठी हैं, खड़गे हाथ में लगी हथकड़ियां दिखा रहे हैं, डीके शिवकुमार कर्नाटक से दिल्ली आए हैं, केरल के सीएम वीडी सतीशन भी केरल से आए हैं, साथ में केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, चरणजीत सिंह चन्नी जैसे तमाम पार्टी के अहम चेहरे हैं। इस जमावड़े से साफ है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस धरने को वजनदार बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, और ये भी साफ है कि एक दिन पहले छात्रों के संसद कूच से ही कांग्रेस को इस धरने तक आने की संजीवनी मिली। कल के घटनाक्रम पर जरा एक बार फिर से गौर कीजिए। राहुल गांधी अचानक पीएम आवास के बाहर धरना देने पहुंच जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से मंत्री जितेंद्र सिंह उन्हें धरना खत्म करने का आग्रह करने पहुंचते हैं। राहुल गांधी धरना से हटने से इनकार कर देते हैं। पुलिस राहुल गांधी को हिरासत में ले लेती है। प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया जाता है। प्रियंका गांधी से मिलने सोनिया गांधी थाने पहुंचती हैं। देर रात जब राहुल गांधी को हिरासत में छोड़ा जाता है तो उनका ये संदेश सामने आता है।
16: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा की स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए, और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए।
15: यानी कि 24 घंटे के भीतर देश की राजनीति में जैसे भूचाल आ जाता है। ये भूचाल कितना बड़ा है इसकी कुछ और बानगी देखिए। अखिलेश यादव की ये तस्वीर देखिए। जैसे ही राहुल गांधी के धरने की जानकारी मिली, अखिलेश यादव भी समर्थन में वहां पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया।
17: हमारी मांग इस सरकार से कि जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें, और जो मंत्री है और वो इस्तीफा दे रहे या मंत्री मंत्री का हदम बना दे, ये दबाव जो है वो ये दबाव समझ में नहीं आ पा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं हट रहे हैं, क्या दबाव है संगी साथियों का।
1: वक्त आए छोटे से ब्रेक का, उछला बनी रही हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
19: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
20: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
21: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
22: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
21: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health care, durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
23: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on SpinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just $10.
24: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
19: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
20: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
3: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.

0: तिनके की तरह बहती गाड़ियां, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कारगिल की है। बादल फटने से यहां पानी का ऐसा उफान आया कि पेड़ और गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आई। राजौरी के नौशेरा की तस्वीर भी देखिए। भारी बारिश से यहां मानवर नदी उफान पर है। दब्बड़ क्षेत्र में नदी के बीचों बीच एक व्यक्ति का शव दिखाई देने की सूचना मिली तो प्रशासन ने बड़े स्तर पर राहत बचाव अभियान शुरू किया। दो दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में कल दोपहर सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया। पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में कुदरत का रौद्र रूप देखिए। लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड की चपेट में कई इलाके आ गए। ये स्कूल भी पानी की मार से बुरी तरह बर्बाद हो गया। ये तस्वीर पुंछ की है, जहां एक सुरंग पर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रही मशीनें आ गईं। भारी बारिश के बाद शहर के बीचों बीच बह रहा पानी भी लोगों को डरा रहा है। पुंछ जिले में बारिश ने भारी बर्बादी मचाई है। भूस्खलन से सूरनकोट के मुर्रा इलाके में एक घर मलबे में दब गया, जिसमें 7 लोग जिंदा दब गए। अब किश्तवाड़ से आई डरावनी तस्वीर भी देखिए। रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड से तबाही मच गई। पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, जो क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं डोडा में रागी नाला के पास लैंडस्लाइड की वजह से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मीर फरीद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: थोड़ी देर में सीजेपी से शुरू होगी सरकार की बातचीत। वांगचुंग से रात में हुई नड्डा जितेंद्र सिंह की मुलाकात। सुरक्षा कारणों से जंतर मंतर के आसपास के 16 मेट्रो स्टेशन बंद, सिर्फ इंटरचेंज की सुविधा। हंगामे की इज्जत में है मॉनसून सत्र का तीसरा दिन। संसद भवन में सरकार के बड़े मंत्रियों की बैठक, काले कपड़े पहुंचकर कांग्रेस का विरोध। बीजेपी बोली, छात्रों के कंधे पर राजनीति ना चमकाए राहुल। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम, कांग्रेस को कुछ भी मंजूर नहीं। प्रियंका आक्रामक, राज्यसभा चेयरमैन से मिले खड़गे, कहा जब तक कुर्सी नहीं छोड़ते शिक्षा मंत्री तब तक जारी रहेगा विरोध। राजनीतिक उथल पुथल के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सुले। एनडीए के साथ जाने की अटकलों को फिर से मिली हवा। तस्वीरों में पवार का हाथ पकड़े दिखे पीएम। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर हो सकती है चर्चा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी समीक्षा संभव।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ। पेपर लीक पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। लगातार तीसरे दिन शोर शराबे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही पर असर पड़ा है। आज भी शुरुआत होते ही दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित हुए। आज हंगामे की वजह से पहले लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर राज्यसभा की कार्यवाही पर असर पड़ा। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। पहले दो दिन हंगामे की बेट चढ़ चुके हैं। इस बीच में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, संसद में गतिरोध के बीच राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात उन्होंने की। बातचीत में खड़गे ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और उसके बाद हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूरी तरह से अड़ी हुई दिख रही है कांग्रेस। एक बार फिर से दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई।
2: मैं बार बार आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, क्वेश्चन आवर है। आजादी के 50 साल पूरे पर संसद ने संकल्प लिया था, रेजोल्यूशन पास किया था कि हम किसी भी
3: सर लास्ट टू थ्री डेज
4: बोलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं
3: लास्ट सर
4: बैठो
3: वी देंटर नेशनल।

0: से कह रहे हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है।
1: अखिलेश यादव को
2: अखिलेश बोलना चाहते हैं। अखिलेश जी
1: अध्यक्ष महोदय
2: आपको नहीं बोलने दे रहे
1: अध्यक्ष महोदय।
2: ये मुद्दा
1: कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें?
2: आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज।
1: नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर?
0: हम लोग का बात भी सुनिए।
2: अखिलेश जी
1: नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल?
2: अखिलेश जी एक मिनट।
1: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाहर ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं सुनते, नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?
2: माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं, और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को, ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी है, किस नियम के तहत करिए, आप बैठिए। सरकार ने कहा है कि खुले मन से कहा है, चर्चा को तैयार है और सबका मत आ गया है। अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है।
3: लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन किस नियम के तहत हो, कितनी ड्यूरेशन के लिए हो, ये तो तय करना पड़ेगा। ऑपोजिशन के लीडर्स ने भी बात रखी, उन्होंने कहा कि वो भी चर्चा चाहते हैं। तो सब चर्चा चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चर्चा हो नहीं पा रही है। लोकसभा की कार्यवाही में ऑपोजिशन आज भी हंगामा ही करता दिखाई दिया। दोपहर 12 बजे एक बार फिर से जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामे के साथ ही हुई। अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने भी कहा कि जो हुआ छात्रों के साथ वो गलत हुआ, उन पर जो लाठीचार्ज हुआ, कपड़े फाड़े, तमाम चीजें, वो अत्याचार था। इस्तीफा तो हो जाएगा, लेकिन छात्रों के साथ जो हुआ वो अन्याय है। विपक्ष भी चर्चा चाहता है, सत्ता पक्ष भी चर्चा चाहता है, लेकिन चर्चा नहीं हो पा रही। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये भी बड़ी विचित्र स्थिति है कि विपक्ष भी चाहता है चर्चा हो, सत्ता पक्ष भी चाहता है चर्चा हो, लेकिन चर्चा हो नहीं पा रही है।
4: देखिए बिल्कुल, चूंकि किस नियम के तहत चर्चा हो इसको लेकर अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, और सरकार की तरफ से कोशिश है कि चर्चा हो जाए, और इसीलिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो है ये आश्वासन दे दिया है कि वो चर्चा चाहते हैं, और इसी कारण जो है विपक्ष भी चाहता है चर्चा हो, लेकिन कब हो, कैसे हो, किस नियम के तहत हो, इसको लेकर अभी जो है कोई भी चीज फाइनल नहीं हुई है। और एक बड़े तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार की ये कोशिश है हर तरीके से, हर जगह संवाद हो, चाहे वो सोनम वांगचू से हो या सीजीपी के प्रोटेस्टर्स से हो, साथ ही साथ संसद के अंदर जो अपोजिशन की मांग है चर्चा की उस पर हो, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, इनका इस्तीफा होना चाहिए, और यही कारण है कि सरकार ये कह रही है आप चर्चा कीजिए, इस्तीफा हो या ना हो ये सरकार का प्रोरोगेटिव है, ये प्रधानमंत्री के विवेक पर है। और कभी भी इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं कि आप विपक्ष मांग करे और इस्तीफा हो जाए। कोई सरकार का ये भी मानना है कि जो लीक पेपर एग्जाम लीक हुआ उसके बाद भी पेपर जो है कंडक्ट कराया गया, और उसपे पेपर कंडक्ट होने के बाद उसके रिजल्ट आ गए, छात्र अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं फर्दर एजुकेशन के लिए, तो अब ऐसे में आप चर्चा कर लीजिए, लेकिन चर्चा के लिए दोनों

0: पक्ष तैयार है, लेकिन कब होगी नहीं होगी इसको लेकर
1: ठीक है,
0: किस नियम
1: हिमांशु
0: के
1: पकड़
0: तहत
1: रहे हो आप,
0: होगा
1: हमारे
0: ये
1: साथ
0: जब
1: मौसमी
0: स्पीकर
1: का
0: और
1: विवरण कर लेते
0: पार्टी
1: हैं।
0: दोनों
1: मौसमी,
0: बैठे
1: ऑपोजिशन चाहता क्या, मतलब सत्ता पक्ष तैयार है चर्चा के लिए, किस नियम के तहत कितने समय तक करनी है, अब क्या स्ट्रेटेजी है, क्या इस्तीफे के बिना वो चर्चा करेंगे या नहीं?
2: देखिए इसमें पेच फंस गया है। अगर आप देखें कि अखिलेश यादव ने क्या कहा उसमें और जो कांग्रेस मांग कर रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा अंतर नजर आ रहा है राजीव, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक लाइन कही कि इस्तीफा तो कभी भी हो जाएगा, जब चाहे ले लें इस्तीफा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री संसद के भीतर बोलते हैं तो हम बाहर क्यों जाते पीएम आवास पर, और मजबूरी में हम गए पीएम आवास पे। अब ये विपक्ष को साफ करना पड़ेगा कि चर्चा प्राथमिकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये विपक्ष की ये राय है कि कांग्रेस की ये डिमांड है, क्योंकि कांग्रेस ने तो नो ट्यूब कह दिया है कि कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। आप स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कीजिए, स्थगन प्रस्ताव धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर है और मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस कर रही है, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी की लाइन क्या डाइल्यूट हो रही है ये स्पष्टता अभी बिल्कुल नहीं आई है। और जो अखिलेश यादव फ्लोर ऑफ द हाउस में कह रहे हैं वो चर्चा की बात कर रहे हैं, वही बात जो किरण रिजिजू कह रहे हैं, हालांकि वो
1: देखिए फिर मौसमी सवाल ये है कि जब ऑपोजिशन के लीडर एक साथ मिलकर धरना दे सकते हैं तो क्या उन्होंने तैयारी नहीं की है, क्या हमारे आगे की रणनीति क्या होगी, हमारी लाइन क्या रहेगी?
2: देखिए हो सकता है कि कहीं बीच का रास्ता इख्तियार करने की भी बात चल रही हो, क्योंकि अभी तो खड़गे साहब ने ये कम्युनिकेट कर दिया, आप वहां पे सपा के भी नेता है राज्यसभा में, उन्होंने कह दिया कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, तो और जिस तरह से अखिलेश के साथ कल खड़े नजर आए, तो कम से कम समाजवादी और कांग्रेस इस बात को दोहराना चाह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा हो और फिर चर्चा हो।
1: लाइन बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही है, बिल्कुल। मौसमी और हिमांशु आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब दिल्ली की खबरों के बाद अब हम आपको कुछ और खबरें भी दिखाते हैं। पटना से एक बड़ी खबर है, जहां पर पटना में जेपी गोलंबर पर आयसा के छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग यहां पर हुई है। आयसा के छात्र यहां प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच में टकराव में गांधी मैदान थाना अध्यक्ष का सिर ही फट गया। पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले यहां पर चले हैं, यहां पर भी टकराव देखने को मिला है। तो देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब आप पटना की सड़कों की तस्वीर देखिए, यहां छात्र संगठन आयशा के छात्र उतरे, वो भी यही मांग कर रहे थे कि इस्तीफा हो, और इस बीच में छात्रों के साथ छात्र भी भिड़े, पुलिस भी भिड़े, और इसमें थाना अध्यक्ष का सिर फट गया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है और उनको तितर बितर करने का हर संभव प्रयास किया है।
3: पटना की सड़कों पर आयशा के जो छात्र है वो सड़कों पर उतर गए हैं और यहाँ पे देखिए हंगामा कर रहे हैं जेपी गोलंबर पर और पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है और पुलिस ने कई आयशा के छात्रों को अभी यहाँ पीटा भी है, क्योंकि ये सभी जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं आयशा की संगठन के, वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए यहां से राजभवन जाना चाह रहे थे, लेकिन जेपी गोलंबर पर देखिए पुलिस और इन सब के बीच जो है झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अभी भी देखिए जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं आयशा के जो वर्कर हैं वो यहां पर डटे हुए हैं, पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश कर दी।
1: आपको देते हैं आयशा के प्रोटेस्ट में टकराव हुआ है छात्रों और पुलिस का, और छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने पत्थरबाजी की है, फिर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के जो है वहां पर बौछारें भी की गई हैं। पटना में ये प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और पुलिस को फिर इनको भगाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा, यहां तक कि थाना अध्यक्ष का उस पत्थरबाजी में सर ही फट गया। तो छात्रों का व्यवहार कैसा होना चाहिए और वो भी एक जो है लगातार सवालों में है, लेकिन ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ये भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, सरकार दूसरी तरफ अपने रुख पर बिल्कुल कायम दिखाई दे रहे हैं। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां खून से लथपथ थाना अध्यक्ष दिखाई दिए, उनके सर से टपकता हुआ लहू दिखाई दिया है। ये आयशा के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, और आपको ये बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर भी आयशा के छात्र संगठन लगातार एकत्रित हैं, वो भी प्रोटेस्ट यहां पर भी कर रहे थे, और पटना में जो उनका प्रोटेस्ट हुआ वहां पर भी ये उग्र हुआ प्रोटेस्ट। वहां पर नौबत ये आ गई कि फिर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, आरोप ये लगाया जा रहा है कि पत्थरबाजी की गई। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी के धरने पर अब बीजेपी ने चौतरफा प्रहार किया है। कल राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया था। आज सुबह बीजेपी के सीनियर नेता सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि राहुल गांधी कल बिना अनुमति के प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठ गए। प्रधानमंत्री निवास की गरिमा उन्हें मालूम है, उसके बावजूद उन्होंने धरना दिया। और थोड़ी देर में बीजेपी राहुल गांधी के धरने के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन भी करने वाली है। तो जहां कल प्रोटेस्ट हुआ, अब बीजेपी भी प्रदर्शन की तैयारी कर रही है कि एक तो अनुमति नहीं ली, दूसरा जिस जगह का चयन किया प्रदर्शन के लिए उस जगह की एक गरिमा है।
4: विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। आप इस तरह से करेंगे? जबरदस्ती बैठ जाएंगे? और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी? ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा, आप ही की उद्दंडता से चलेगा?
1: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पीएम आवास पर धरने का पूरा बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं था।
5: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है।
1: अब एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको देते हैं। दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री एग्जिट बंद कर दिया गया है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में मेट्रो यात्री इंटरचेंज जरूर कर पाएंगे। तो 16 मेट्रो स्टेशन प्रदर्शन के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इंटरचेंज की व्यवस्था वो जारी रहेगी, गेट पूरी तरह से बंद रहेंगे। प्रदर्शन के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया। इसमें राजीव चौक, इसमें मंडी हाउस से लेकर बाराखंबा रोड, ये तमाम जो 16 इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन है जो बेहद नजदीक है जंतर मंतर के और इस सेंसिटिव पॉइंट के, वो बंद किए गए हैं। इंटरचेंज की व्यवस्था रहेगी, लेकिन मेट्रो के एंट्री और एग्जिट दोनों ही बंद रहेंगे।
2: देखिए, हमारे पीछे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मेट्रो स्टेशन है और ये पार्लियामेंट बिल्कुल इसी के पीछे है। ये रेल भवन है जहाँ पे काफी बवाल दो दिन पहले कटा था और प्रदर्शनकारी यहाँ पे आ गए थे। तो ये देखिए कितना पास है, बस 10 कदम की दूरी पर। और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से लेके बताया जा रहा है कि आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। आशंका है कि प्रदर्शनकारी यहाँ फिर से कूच कर सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए कि बैरिकेडिंग लगाई जा रही है और जो भी मेट्रो स्टेशन के भीतर है वो इस एग्जिट से बाहर नहीं आ सकते, ना ही कोई कम्यूटर। आप यहाँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से या इसके आसपास जो सेवा तीर्थ है या बाकी मेट्रो स्टेशन है इलाके के, वहां से मेट्रो ले सकते हैं। और एक तरीके से दोबारा पुलिस ने बैरिकेडिंग का समुंदर यहाँ पे खड़ा कर दिया है। जबरदस्त तैनाती भी है अलग अलग पॉकेट्स में। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के सामने भी हमने देखा और कुछ इस तरीके की तस्वीर जहां संसद परिसर के बाहर रेल भवन के आसपास से देखने को मिल रही है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
1: अब एक बड़ी खबर आपको देते हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। ये बताया जा रहा है कि कल रात जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जंतर मंतर में अनशन पर करने वाले सोनम वांगचुक इस समय इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वहीं पर जाकर ये दोनों ही नेता उनसे मिले हैं।
6: सरकार द्वारा सोनम वांगचुक को यह आश्वासन दिया गया है कि सरकार पूरी तरीके से अपना जो सिस्टम है उसको करेक्ट कर रही है और किसी भी तरीके का पेपर लीक किसी भी लेवल पर आगे नहीं हो, इसके लिए सरकार ने सिस्टम के अंदर चेंजेस ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। सोनम वांगचुक का हालचाल लेने के लिए पहुंचे थे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। लगभग एक घंटे तक जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की बातचीत सोनम वांगचुक से हुई। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है नीट के ऊपर चर्चा करने के लिए। एक अपील भी करी गई है सरकार द्वारा सोनम वांगचुक से। उनसे कहा गया है कि वो अपने मंच से स्टूडेंट्स को बोलें कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको सरकार पर विश्वास इस समय नहीं है, स्टूडेंट्स को सरकार पर विश्वास करना चाहिए। एक अपील सोनम वांगचुक से सरकार ने यही करी है कि आप स्टूडेंट्स को बोलिए कि एक तो धैर्य रखें, इस तरीके की हरकत, इस तरीके का पेपर लीक कभी भी आगे नहीं होगा, और दूसरा कि आपको सरकार के अंदर फेथ दिखाना है और जिस तरीके से बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं, सरकार उनको सुनने के लिए तैयार है और उन पर इस समय काम करने के लिए भी तैयार है।
1: एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, सीजेपी और सरकार के बीच में दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। थोड़ी देर में सरकार और सीजेपी एक बार फिर से बात करेंगे और इससे पहले सोनम वांगचुक से मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उनसे छात्रों को समझाने की अपील की थी। थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा, नितिन नवीन, पीयूष गोयल के बीच में एक बैठक भी हुई है और अब सीजेपी के साथ दूसरे दौर की यह बातचीत होने वाली है। तो सीजेपी के साथ ये दूसरे दौर की बातचीत, क्योंकि संसद की कार्यवाही पर तो बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट पड़ रहा है, वो चल नहीं पा रहे हैं, तो अब सीजेपी के और सरकार के बीच में बातचीत की खबर मिल रही है। कल ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात हुई थी, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वो मेदांता हॉस्पिटल गए थे, सोनम वांगचुक से मिले थे, उनसे बातचीत की थी, छात्रों को समझाने की अपील की थी। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, क्या रणनीति सरकार की तरफ से बनी है, मंत्रियों की नेताओं की बनी है, क्या बातचीत करेंगे वो सीजेपी से?
0: देखिए, सीजेपी का दूसरे राउंड की जो है वो मुलाकात अब से कुछ देर में होगी, क्योंकि जेपी नड्डा जिन्होंने फर्स्ट राउंड की मीटिंग की थी अपने घर पर सीजेपी के दो प्रतिनिधियों से, सौरभ दास से और आशुतोष से, आज फिर दूसरे राउंड की बातचीत होगी और जेपी नड्डा बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया था उसमें तीन मांगे मुख्य तौर पर थी, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके साथ साथ जो है सोनम वांगचुक को रिलीज किया जाए, और तीसरा एक मांग ये भी थी कि जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवारों को जो है वो 1 करोड़ पे जो है वो कंपनसेशन दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आज के राउंड की एक और मुलाकात होगी, क्योंकि पिछली बार सरकार की तरफ से कोई एश्योरेंस जो है वो नहीं दिया गया था, बातचीत अच्छे माहौल में हुई थी।
1: अब इसीलिए इस बार जाएंगे,
0: देखिए जो बातचीत है, बातचीत में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा ये अलग बात है, क्योंकि जेपी नड्डा निकले अपने घर से, संसद भवन से अपने घर के लिए, और अब क्या मुलाकात होगी, कितनी देर होगी, कितने प्रतिनिधि आएंगे, क्या दो पिछली बार आए थे तो क्या उससे ज्यादा रहेंगे, और सरकार की तरफ से और कोई दूसरे मंत्री वो रहेंगे, क्योंकि कल जितेंद्र सिंह जो है वो थे स्वास्थ्य मंत्री के साथ, जब वो
1: हिमांशु नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे 12 बजे 12 रिपोर्ट में। अगली रिपोर्ट अब दिल्ली से ही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कल रात लगभग 9 बजे कनॉट प्लेस इलाके में कुछ लोगों ने पुलिस और आरएएफ के जवानों पर पथराव किया है, घेर कर लिंचिंग की कोशिश की गई है, आरएएफ के वज्र वाहन को निशाना बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि नई दिल्ली इलाके में संसद मानसून सत्र को लेकर बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, ऐसे में नई दिल्ली इलाके में हुड़दंगे कहां से पहुंच गए, उन्होंने आरएएफ पर हमला किया, वज्र वाहन पर हमला किया, तस्वीरें भी हैं।
7: 21 जुलाई को एक बार फिर नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा काटा, एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि रैपिड एक्शन फोर्स की टीम लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि शांति बनाए रखें। कुछ देर बाद उग्र भीड़ आरएएफ की गाड़ी पर अटैक करती है, आरएएफ के एक जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। इलाके के डीसीपी ने आज तक को बताया है कि कनॉट प्लेस इलाके में कुछ भीड़ जमा हो गई थी जिन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पहले पथराव किया गया, उसके बाद आरएएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया, और जब एक आरएएफ के जवान ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो उसको जो हुड़दंगी है वो दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और वीडियो में दिखाई दे रहे हैं हुड़दंगियों की पहचान की जा रही है।
1: और उग्र छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
11: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
13: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
14: To right field, and it will leave.
13: From the first pitch of the season to the stretch run.
14: And that's the ballgame.
13: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
15: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
16: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
15: ओ, अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
17: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
18: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: ला भाई मेरा बैट,
6: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
10: कुछ तो बात है इस दिल में।
11: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार। रिजिजू बोले नियमों के तहत हो सकती है बहस, लेकिन हंगामे की जद में मानसून सत्र का तीसरा दिन काले कपड़े में संसद पहुंचे विपक्षी सांसद। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कांग्रेस को कुछ भी मंजूर नहीं। प्रियंका आक्रामक, राज्यसभा चेयरमैन से मिले खड़गे। बीजेपी बोली छात्रों के कंधे पर राजनीति ना चमकाए राहुल। थोड़ी देर में सीजेपी से शुरू होगी सरकार के बाद नड्डा के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। रात में दोनों की वांगचुक से भी हुई मुलाकात। सुरक्षा कारणों से जंतर मंतर के आसपास के 16 मेट्रो स्टेशन बंद। राजनीतिक उथल पुथल के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सुले। एनडीए के साथ जाने की अटकलों को फिर से मिले हवा। तस्वीरों में पवार का हाथ पकड़े दिखे पीएम। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर हो सकती है चर्चा। एसआईटी के जांच रिपोर्ट पर भी चर्चा संभव।

और अब बुलेटिन में समय हो गया है यूपी एक्सप्रेस वे का। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से दो दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर, वहां पर यूथ जो है वो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, तुलसीपुर मंदिर परिसर के गौशाला का किया दौरा, गाय को खिलाई रोटी, अधिकारियों को निर्देश भी। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की आज बैठक, कल कमल नैंथ दास बोले कि सभी सदस्य पहुंचे हैं अयोध्या, राम जी अयोध्या में सब कुछ ठीक कर देंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद से ट्रस्ट ने व्यवस्था बदली, 349 कर्मचारियों की स्क्रीनिंग शुरू, पुराने 36 गणना कर्मियों की भूमिका खत्म कर दी गई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच भी तेज, 8 आरोपियों और लगभग 50 रिश्तेदारों की संपत्तियों का मांगा गया ब्यौरा, 10 जिलों में पड़ताल। जौहर यूनिवर्सिटी मामले को लेकर एसपी का बड़ा कदम, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में कल रामपुर जाएगा प्रतिनिधिमंडल। काले कपड़े पहनकर विरोध पर अखिलेश यादव का बयान आया, कहा कि काला रंग विरोध और दुख का प्रतीक है, सरकार को डर लग रहा है। नीट मुद्दे पर अखिलेश का सवाल है, सरकार मंत्री को क्यों नहीं हटा रहे, बोले कि जब कोई बात छिपाने के लिए नहीं रही तो कार्रवाई से परहेज क्यों है। नीट विवाद को लेकर इटावा में विपक्ष का प्रदर्शन तेज, कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक आंदोलन रहेगा जारी। बीजेपी के बूथ सम्मेलन पर एसपी का हमला, अमित जमाई बोले कि पंचायत प्रतिनिधि बीजेपी के खिलाफ 2027 में 100 सीटों पर सिमटेंगे। बिजनौर में बेटे ने की मां की ही हत्या, मुआवजे के लिए रची गई साजिश, गुलदार के हमले की बताई गई कहानी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का राज खुल गया। मऊ में पुलिस मुठभेड़ में वांछित अपराधी जो है घायल हुआ है, आरोपी गौवंश वध के मामले में इसकी तलाश थी। नोएडा सेक्टर 44 में चलती गाड़ी में लगी अचानक आग, चालक ने कूद कर बचाई जान, मौके पर दमकल की टीम पहुंची। आगरा में युवक ने आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो, वीडियो में परिवार से मांगी गई माफी, पत्नी को परेशान न करने की अपील भी। कांवड़ यात्रा को लेकर झांसी प्रशासन अलर्ट पर, तैयारियां तेज, 70 किलोमीटर रूट पर 70 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी। सहारनपुर मीट प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, 14 कर्मचारी बीमार, मौके पर प्रशासन की टीम पहुंचे। हरदोई में बड़ा हादसा टला, पानी की टंकी से फूटा तेज बहाव, वॉल प्लेट टूटने से सड़क पर पानी भर गया, 400 परिवारों की सप्लाई हुई प्रभावित। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर डीजल टैंकर में लगी भीषण आग, चलते टैंकर का टायर फटने के बाद से हादसा, दमकल ने पाया काबू। नोएडा में 2 करोड़ की कैंसर रोधी दवाएं बरामद, सेक्टर 76 फ्लैट से अवैध दवा कारोबार का खुलासा हुआ, आरोपी गिरफ्तार।

0: अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। दिल्ली में चल रहे पेपर लीक विरोधी प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने संसद के अंदर एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने सदन की कार्यवाही के दौरान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने चुनिंदा बयान क्यों दिला दिए। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या सरकार की डील हो गई है, क्या सरकार जो है डील कर चुकी है, ये बड़ा बयान दिया अखिलेश ने संसद के अंदर बयान दिया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं।
1: ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें?
2: आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज।
1: नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर?
2: हम लोग का बात भी सुनिए
3: अखिलेश जी।
1: नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल?
2: अखिलेश जी एक मिनट।
1: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाहर ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं सुनते, नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?
0: बढ़ते आगे, दिल्ली में पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, इस बीच में किरण रिजिजू भी बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको।
4: आज पार्लियामेंट सदन में कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए। और सरकार चाहते हैं कि नीट एग्जाम पेपर पे पूरा चर्चा हो करके और उसमें क्या क्या कदम सरकार ने उठाया है ये भी देश के सामने में जाना चाहिए। और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो कठिनाई हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे और क्या क्या कार्रवाई किया है ये भी देशवासियों को जानने का पूरा अधिकार है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो देशवासियों को जानकारी कैसे मिलेगा? लेकिन हमारे बात सिर्फ इतना ही है कि किसी नियम के तहत चर्चा करने के लिए स्पीकर साहब के साथ बैठ करके सब पार्टी ये तय करे, सबसे पहले कब चर्चा करना है वो तय करे, सरकार मंजूर है। किस नियम के तहत चर्चा करना है सरकार तैयार है। और कितने लंबे चर्चा होना चाहिए, कितने घंटे का चर्चा होना है ये भी सब पार्टी का लीडर स्पीकर के साथ बैठ करके तय करे, सरकार पूरा मंजूर है। जितना लंबा बहस होगा सरकार पूरा अपने बात देश के लोगों को बताने के लिए पहले दिन से कह रहे हैं और युवाओं का भविष्य के लिए क्या क्या कदम उठाया है और क्या कदम उठाना चाहिए इसका भी बहुत सार्थक बहस होना ही चाहिए। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं कि सरकार की तरफ से औपचारिक हमने फिर से कह दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो समय तय करें और पार्लियामेंट का समय को बर्बाद नहीं करके सबसे इस वक्त जो मुद्दा सारे पार्टी चाहते हैं नीट एग्जाम पेपर लीक को, यही मुद्दा सबसे पहले चर्चा हो हम ये चाहते हैं। इसलिए अभी समय विलंब नहीं करके जो ऑफर किया है सरकार ने स्पीकर महोदय के साथ बैठ करके तिथि समय और नियम तय करें और बहस जितना जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए।
5: सरकार सदन चलाना नहीं चाहती।
4: वी हैव फ्रॉम द डे वन इन्फॉर्म्ड आवर ऑपोजिशन लीडर्स एंड ऑल्सो इन्फॉर्म्ड द ऑनरेबल स्पीकर एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा that the government is ready for discussion. but we have to decide under which rule.
0: तो रिजिजू को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं अब, लेकिन समय और सारी चीजें आप तय करें। तो दिल्ली में पिछले 3 दिनों से एक प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन का सबसे गहरा सियासी असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे पर हो रही राजनीति का गर्भनाल कैसे यूपी की राजनीति से जुड़ा दिख रहा है, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं।
3: दिल्ली में पेपर लीक को लेकर चल रही राजनीति ने 2 इशारे साफ कर दिए हैं। एक तो ये कि तमाम क्षेत्रीय बयानबाजियों के बावजूद राहुल और अखिलेश की जोड़ी आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में मजबूती से बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। दूसरा ये कि दिल्ली की सियासत का चुनावी असर तेजी से यूपी में हो रहा है। खासकर आम आदमी पार्टी जैसे दल जब कांग्रेस को बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में राहुल के साथ अखिलेश का डटकर खड़ा होना इंडिया की एकता पर मोहर है।
6: क्या विपक्षी एकता में टूट हो रही है?
7: उन बच्चों का साथ देने का समय है, कोई आपसी चर्चा का समय या वाद विवाद का ये समय नहीं है।
8: जो छात्र युवाओं के साथ हुआ है और सरकार डर कर के व्यवहार कर रही है, ये अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है या क्या वजह है, हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाए।
3: सत्ता और सरकार से टकराव के मुद्दों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक पन्ने पर है, इसकी तस्वीर पिछले 3-4 दिनों से नजर आ रही है। पहले तो सीजेपी के मंच से लेकर प्रदर्शन तक डिंपल यादव की सक्रिय मौजूदगी और फिर राहुल के धरने में अखिलेश की भागीदारी ने दिल्ली के मुद्दे पर लखनऊ तक चिंगारी फैला दी है।
9: उत्तर प्रदेश के अंदर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार किया गया, सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर आपने समर्थन का जनसैलाब देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिलों में आपने प्रदर्शन देखा होगा आम जनों का।
3: दिल्ली की सियासी गतिविधियों का असर यूपी में किस कदर हो रहा है, उसकी एक बानगी तब दिखी थी जब दिल्ली में अखिलेश यादव की राहुल के धरने में जाने के बाद गिरफ्तारी हुई तो पूरा यूपी उबल पड़ा। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक और अलीगढ़ से लेकर संभल तक समाजवादी पार्टी ने पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे अखिलेश की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हालांकि थोड़ी देर में अखिलेश की रिहाई की खबर आ गई थी, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी के उठाए गए पेपर लीक के मुद्दे को अखिलेश ने दिल्ली में समर्थन दिया, उसी तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी के अखिलेश के मामले को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। संसद भवन से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पेपर लीक मामले पर ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला है, ये बड़ी खबर। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में ज्यादा पेपर लीक हुआ करते थे।
10: समाजवादी पार्टी की सरकार में खुली में नकल होती थी, पेपर बिकते थे और रिजल्ट बिकते थे, ये कोई किसी से छुपा नहीं है। वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस की बात हो रही है। जब अगर हम कांग्रेस की सरकार की बात करें तो उनकी सरकार में भी पेपर लीक हुए हैं, वो भी हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है। उस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने प्रयास किया। आपने देखा कि नीट की परीक्षा देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी मुट्ठी में लेकर के कि इसको हम देखे कराते हैं, एक रिहर्सल उन्होंने किया और पूरे देश में नीट की परीक्षा करा दिया, कहीं भी पेपर लीक का मामला नहीं आया।
0: दिल्ली में चल रही राजनीति का जीवंत प्रभाव लखनऊ में साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में जब डिंपल यादव प्रदर्शनकारियों के साथ सड़क से थाने तक संघर्ष करते हुए नजर आती है तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी से भुनाने में तनिक भी देर नहीं करती है। लखनऊ के पार्टी दफ्तर के पास से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इससे जो असर है वो भी आपको पता चल जाएगा।
11: उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदर्शन किया और सांसद डिंपल यादव ने किया, लेकिन इसके ठीक बाद इन छात्रों के प्रदर्शन के बाद लखनऊ में कई जगह पोस्टर्स लगे जिन पर डिंपल यादव को छात्र के साथ संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। इन पोस्टर्स पे अगर देखेंगे तो ये समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगे हैं और यहाँ पर साफ तौर से दिखाया गया संघर्ष को सलाम। इन पोस्टर्स में देखिए किस तरीके से डिंपल यादव बैरिकेडिंग पर खड़ी हुई है, किस तरीके से वो पुलिस से बात कर रही, किस तरीके से वो उन अभ्यर्थियों या छात्रों से जो घायल हुए उनकी मदद को लेकर खड़ी है। अगर मैं आपको दूसरा पोस्टर यहाँ पर दिखाऊंगा तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो दूसरा पोस्टर लगा है उस पर लिखा है बच्चों का दर्द बच्चे वाले ही जान सकते हैं। ये पोस्टर लगा हुआ है समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर और यहाँ पर डिंपल यादव को एक छात्रा को पानी पिलाते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये साफ तौर से डिंपल यादव को पूरी तरीके से प्रोजेक्ट किया है। ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, अगर मैं आपको और भी एक पोस्टर दिखाऊंगा तो आप पाएंगे कि इधर भी एक ऐसा ही बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है समाजवादी हुंकार है नहीं सहेंगे अत्याचार। और इस तरीके के पोस्टर्स आप अलग अलग जगह पर समाजवादी पार्टी बाहर पाएंगे और साफ तौर से मैसेज वही है कि डिंपल यादव को छात्रों के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। साफ इतने बड़े तादाद में डिंपल के पोस्टर पहली बार लगे हैं जहां पर प्रोजेक्ट किया गया है कि छात्रों के आंदोलन में किस तरीके से डिंपल यादव की एक अहम भूमिका रही है और इसी आंदोलन को चैलेंज करते हुए इन पोस्टरों के जरिए दिखाया गया है। ये पोस्टर कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं उनके, लेकिन मैसेज और मकसद साफ है कि कहीं ना कहीं जो डिंपल यादव है वो समाजवादी पार्टी की उभरती हुई वो नेता है जिससे बताया गया है कि छात्रों के साथ दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक खड़ी हुई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव आज तक।
0: आज अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि चढ़ावा चोरी के विवाद के बाद पहली बार ट्रस्ट का व्यापक पुनर्गठन होने वाला है। खाली 3 पदों पर नए ट्रस्टियों की तैनाती होने वाली है और ट्रस्ट का कामकाज देखने के लिए सीईओ की तैनाती पर भी फैसला होने वाला है। अयोध्या में चल रही तमाम गहमा गहमी पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं।
3: जिस रामलला की पहली झलक से असंख्य भक्तों की श्रद्धा तृप्त हो गई थी, जिस रामलला के साक्षात दर्शन को करोड़ों मन लालायित रहते हैं, जिस रामलला के चरणों में असंख्य भक्त अपनी अपार श्रद्धा के अर्पण स्वरूप दान पूजन करते हैं, उसी दान की चोरी ने भक्तों के मन को जो आघात पहुंचाया है उसके निवारण का प्रयास अब अयोध्या में हो रहा है।
12: हम इस वक्त उस जगह मौजूद हैं जहां ये बैठक दोपहर में शुरू होनी है और अगली तस्वीरें आप देखेंगे उस स्थल की। यह है श्री स्वामी मणिराम दास जी की छावनी जहां पर आज ट्रस्ट के दिग्गज संत महात्मा मेंबर्स इकट्ठा होने वाले हैं। तो चहल पहल अभी से छावनी के आसपास आप देखें तो बढ़ने लगी है। श्रद्धालु इस छावनी में दर्शन के लिए भी पहुंचते हैं। नृत्य गोपाल दास जो यहां पर अध्यक्ष भी हैं तीर्थ क्षेत्र के, उनके भी यहां पर जो लोग मिल पाते हैं उनसे आकर मिलते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। पिछली बार नृत्य गोपाल दास इस बैठक में शामिल हुए थे और आज क्योंकि छावनी में ही है तो उनकी तरफ से कमल नयन दास और खुद नृत्य गोपाल दास भी बताया जा रहा है इस बैठक में रहेंगे। कंस्ट्रक्शन को लेकर भी कुछ चर्चाएं होनी है। इसके अलावा जो SIT है उसमें क्या कुछ जांच पड़ताल में अभी तक सामने आया है उसको लेकर भी ट्रस्ट बैठक करने वाला है और कैसे सबसे बड़ी बात है चंदा चोरी रोकी जाए और आगे रुकी रहे उसको लेकर भी ट्रस्ट कुछ नए दिशा निर्देश इस बैठक में जारी कर सकता है।
3: दरअसल मंदिर ट्रस्ट की 2 चरणों में बैठक है। पहले सत्र में दोपहर 3 बजे से खाली पदों के चयन पर मंथन होगा। दूसरे सत्र में दोपहर 4 बजे से बैठक में अन्य विषयों पर मंथन होगा।
13: केवल इतना मुझे पता है बैठक होगी, क्या विचार होगा इस पर कुछ पता नहीं।
3: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये बड़ी बैठक 3 बड़े एजेंडों को लेकर हो रही है जिसमें चढ़ावा चोरी की घटना के बाद हुए बदलावों को देखते हुए अहम फैसले लिए जाएंगे। ट्रस्ट के महासचिव का औपचारिक चयन, ट्रस्ट के रिक्त पदों पर योग्य लोगों का मनोनयन, ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति से जुड़ा फैसला।
12: जो नाम इस वक्त चर्चा में है उसमें विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बांगड़ा का नाम है, कृष्ण मोहन जिनको कुछ समय की जिम्मेदारी दी गई है उनका नाम भी है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ही कुछ नाम हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं और जिनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। चंपत राय जिस पोजीशन पर थे वो जिम्मेदारी मिल सकती है।
3: ट्रस्ट के नए महासचिव की रेस में सबसे आगे मौजूदा अंतर महासचिव कृष्ण मोहन का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा वीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल बांगड़ा का नाम चर्चा में है जो सदस्य और महासचिव दोनों पदों के लिए दावेदारों की सूची में बताए जाते हैं। इसके अलावा बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दानोदिया का नाम भी रेस में है। दरअसल 15 सदस्यों वाले ट्रस्ट में फिलहाल 3 पद खाली है। एक पद चंपत राय के इस्तीफे से खाली हुआ है जो महासचिव पद का है। दूसरा पद अनिल मिश्र के इस्तीफे से खाली हुआ है जो सदस्य पद का है और तीसरा पद अयोध्या नरेश के निधन से खाली हुआ है। इसमें अनिल मिश्र और अयोध्या नरेश के निधन से खाली पदों पर मनोनयन का फैसला होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक संभावित नामों में रामानंदीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़े संतों के नाम है जिनमें मणि रामदास जी की छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास का नाम भी चर्चा में है। सिद्धपीठ हनुमान निवास के महंत आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण का नाम प्रमुख दावेदारों में शामिल है। श्री राम वल्लभाकुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास का नाम चर्चा में है। रंगमहल पीठाधीश्वर महंत रामचरण दास के नाम भी सामने है। रामकथा कुंज के पीठाधीश्वर डॉक्टर रामानंद दास और कौशलेश पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर के नाम भी संभावित सूची में बताए जा रहे हैं। इनके अलावा अयोध्या राज परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में यतीन्द्र मोहन मिश्रा का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है क्योंकि यतीन्द्र मोहन मिश्रा के पिता बिमलेंद्र मोहन मिश्रा ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति के सदस्य रहे थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद मौजूदा ट्रस्ट की पिछली बैठक में ट्रस्ट का कामकाज संभालने के लिए एक प्रोफेशनल सीईओ की तैनाती का फैसला किया गया था लेकिन आज की बैठक में सीईओ के नाम पर फैसला होना मुश्किल लग रहा है।
12: इसके अलावा सीईओ पद को लेकर तमाम आवेदन आए हैं इसलिए जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है उसमें आवेदनों पर चर्चा तो हो सकती है लेकिन सीईओ को के नाम को लेकर निर्णय हो पाना काफी मुश्किल प्रतीत होता है क्योंकि आवेदन इतने आ गए हैं कि 3-4 दिन में उस पर कुछ भी अंतिम निर्णय लेना ट्रस्ट के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है।
3: दोपहर बाद 3 बजे शुरू होने वाली इस बैठक के लिए ट्रस्ट के मौजूदा सदस्यों का अयोध्या आगमन शुरू हो चुका है। मंगलवार की देर शाम ही वासुदेवानंद सरस्वती अयोध्या पहुंच चुके हैं। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरन ऑनलाइन ही मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ वीएचपी के महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा धर्माचार्य संपर्क प्रमुख अशोक तिवारी वरिष्ठ संरक्षक दिनेश चंद्र अयोध्या पहुंच चुके हैं। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर श्रीवास्तव अयोध्या आज तक।
0: अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
17: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
18: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
19: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
15: durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair.
16: Summer's too good to run on empty. Save 30% on more than 4,000 vitamin and body care items at Fresh Time Market from July 22nd through July 28th. Stock up on your wellness essentials like Mary Ruth's multivitamins, Truvani plant-based protein powder, Brownie's facial patches and Sunbum sunscreen. Because feeling your best should be part of every summer adventure. See you and your friends July 22nd through the 28th. Fresh Time Market, rooted in your well-being.
18: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
17: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
19: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
20: Right fields, and it will...
19: From the first pitch of the season to the stretch run.
20: And that's the ball game.
19: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
14: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
15: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

का रिजिजू बोले नियमों के तहत हो सकती है बहस लेकिन हंगामे की जद में है मॉनसून सत्र का तीसरा दिन काले कपड़ों में संसद आए कांग्रेस के सांसद। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कांग्रेस को कुछ भी मंजूर नहीं प्रियंका आक्रामक राज्यसभा चेयरमैन से मिले खड़गे बीजेपी बोली छात्रों के कंधे पर राजनीति ना चमकाए राहुल। बीजेपी प्रदर्शनकारियों से सरकार की बातचीत नड्डा के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रात में दोनों की वांगचुक से हुई थी मुलाकात सुरक्षा कारणों से जंतर मंतर के आसपास के 16 मेट्रो स्टेशन बंद। राजनीतिक उथल पुथल के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सुले एनडीए के साथ जाने की अटकलों को फिर मिली हवा तस्वीरों में पवार का हाथ पकड़े दिखे प्रधानमंत्री।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अमित शाह के आवास पर इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है, जिस बैठक में जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और नितिन नवीन शामिल हैं। ये बैठक आज के लिए शेड्यूल की गई है। किस तरीके से अब सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को हैंडल करना है, इसको लेकर भी तमाम रणनीतिक फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि तीसरा दिन है प्रदर्शन का और ऐसे में सरकार लगातार अब इस गतिरोध को खत्म करना चाहती है। इसका असर सदन पर भी पड़ रहा है, उसकी कार्रवाई नहीं चल पा रही है। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, बैठक अभी भी चल रही है या फिर बैठक खत्म हो चुकी है?
1: जी बिल्कुल, ये बैठक अभी चल रही है नेहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर सरकार के तीन बड़े मंत्री किरेन रिजिजू, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा मौजूद है। आपको याद होगा कल देर रात तक जितेंद्र सिंह मौजूद थे और उनने पहले राहुल गांधी से बात की थी, उसके बाद उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब राहुल गांधी नहीं माने तब उसके बाद हमने बैठकों का दौर देखा, जिसमें जितेंद्र सिंह लगभग 4 घंटे के आसपास कल गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू और जितेंद्र सिंह की मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से उनके आवास पर चल रही है। सूत्रों की माने तो इस बैठक का मेन जो मुद्दा है वो जिस तरह से धरना प्रदर्शन कल राहुल गांधी ने किया और जो लगातार प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली में हो रहा है। कल जब जितेंद्र सिंह पहुंचे थे तो उस वक्त राहुल गांधी को ये साफ कहा था कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, और आज भी किरेन रिजिजू ने यह साफ कर दिया कि सरकार नीट पेपर लीक को लेकर

अपने काम करने वालों में से नहीं अगर हुई कुचलने की कोशिश तो लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक गतिरोध के बीच रात हुआ चेयरमैन से मिले खड़गे, कहा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद हम चर्चा को तैयार हैं। प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर जमकर साधा निशाना, बोली हमारा प्रदर्शन लोकतांत्रिक नहीं बल्कि छात्रों की बात ना सुनना और संसद में चर्चा ना करना लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा हमारे विरोध का मकसद युवाओं के हितों की रक्षा करना है, कांग्रेस का हर सिपाही युवाओं के साथ खड़ा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जंतर मंतर लाठीचार्ज मामले को लेकर सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार का फर्ज है छात्रों से जाकर बातचीत करना, उनकी गलतफहमी हटाना। नीट मुद्दे पर चर्चा को सरकार तैयार, किरण रिजिजू बोले नियमों के तहत सभी दलों से बातचीत कर होगी चर्चा। लोकसभा में नीट पर विपक्ष का हंगामा, केसी वेणुगोपाल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। कांग्रेस की तीन गैर समझौतावादी मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों पर दर्ज केस वापस हो, पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग। अखिलेश यादव बोले यह किसी पार्टी का नहीं छात्रों का मुद्दा है, मजबूरी में जाना पड़ा प्रधानमंत्री आवास, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। दिल्ली में जारी बवाल के बीच नया सियासी हलचल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पार्टी सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी से की मुलाकात। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला, पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन को बताया सुरक्षा और गरिमा को उल्लंघन। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार का बयान, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले दोषियों पर कार्रवाई हुई, परीक्षा प्रक्रिया पूरी की गई। दिल्ली पुलिस कार्रवाई पर रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्शन जरूरी था। जयराम रमेश ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, एनटीए की कार्यप्रणाली और परीक्षा विवादों को लेकर लगाए नए आरोप। नीट यूजी और यूजीसी एनईटी पेपर पर कांग्रेस का हमला, जयराम रमेश बोले एनटीए की लगातार विफलता, कई पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने का दावा। राहुल गांधी के प्रदर्शन पर सरकार का पलटवार, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को बताया राजनीतिक, नीट मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, संसद के मकर द्वार पर काले कपड़ों में जुटे सांसद, नीट यूजी अनियमितताओं का उठाया मुद्दा। राहुल गांधी के पीएम आवास प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का देश भर में विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी का आरोप। दिल्ली सीजेपी प्रदर्शन मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज, संसद मार्ग समेत 5 थानों में दर्ज हुए केस, जांच जारी। दिल्ली पुलिस का फैक्ट चेक, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल के दावे का खंडन, पुलिस ने लोगों से अपुष्ट जानकारी साझा न करने की अपील की है। सुरक्षा कारणों से बंद दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय पर सिर्फ इंटरचेंज की सुविधा, एंट्री एग्जिट बंद। पटना में आईएसआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर पुलिस से भिड़ंत। पटना के जेपी गोलंबर पर आईएसआई कार्यकर्ताओं और पुलिस आमने सामने, प्रदर्शन के दौरान पथराव। मुंबई के आजाद मैदान में एमएनएस का प्रदर्शन, नीट को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध। मणिपुर में कांग्रेस ने राहुल गांधी की रियासत का विरोध किया, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे जेपी नड्डा के आवास, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के घर हुई मुलाकात। केरल में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का मार्च आज, पीएम आवास प्रदर्शन के विरोध में केपीसीसी दफ्तर तक निकालेगा मार्च। नीट प्रदर्शन पर बीजेपी का कांग्रेस विपक्ष पर पलटवार, बांसी स्वराज बोली सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन की अनुमति दी। नीट मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार, अमित मालवीय बोले विपक्ष सदन चलने दे, बहस में शामिल हो, गतिरोध खत्म करे। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बयान, कहा काला रंग विरोध और दुख का प्रतीक है, सरकार को डर लग रहा है। नीट मुद्दे पर अखिलेश का सवाल, सरकार मंत्री को क्यों नहीं हटा रही है, बोले कहीं कोई और बात छुपाने के लिए तो नहीं हो रही है कार्रवाई से परहेज। नीट विवाद को लेकर इटावा विपक्ष का प्रदर्शन तेज, कार्यकर्ताओं ने कहा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन। लखनऊ सपा कार्यालय में डिंपल यादव के छात्र समर्थन में प्रदर्शन के पोस्टर लगाए गए, छात्रों के मुद्दे को लेकर एसपी ने संघर्ष को प्रमुखता से दिखाया। जौहर विश्वविद्यालय मामले को लेकर एसपी का बड़ा कदम, नेता प्रतिपक्ष माथुर प्रसाद पांडे के नेतृत्व में कल रामपुर जाएगा प्रतिनिधिमंडल। सीएम योगी आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर, वहां सीएम बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं को देंगे चुनावी मंत्र। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, तुलसीपुर मंदिर परिसर की गौशाला का किया दौरा, गाय को खिलाई रोटी, अधिकारियों को दिए निर्देश। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की आज बैठक, महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर हो सकती है चर्चा, एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर समीक्षा संभव।
राम मंदिर चराहा चोरी मामले

0: बाद ट्रस्ट ने बदली व्यवस्था, 349 कर्मचारियों की स्क्रीनिंग शुरू, पुरान 36 गणना कर्मियों की भूमिका खत्म। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले, पुलिस की जांच तेज, 8 आरोपी और करीब 50 रिश्तेदारों की संपत्तियों का मांगा गया ब्यौरा, 10 जिलों में पड़ताल। सिक्किम लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 20 पहुंचा, 5 लोग अब भी फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राहत और बचाव अभियान पर सीएम तमांग की लगातार नजर, बचाव कार्य में जुटे सभी अधिकारियों और कर्मियों के साहस की तारीफ। नामची जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएम, सिक्किम पुलिस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल दुर्घटना का वजह का पता लगाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया गया है। मृतक के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा राशि का ऐलान। असम में बाढ़ से भयंकर तबाही, पिछले 24 घंटों में 21 और लोगों की मौत, जबकि राज्य के 16 जिलों में 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर में 13 लोगों की मौत, चराईदेव में 5, गोलाघाट में 2, जोरहाट में 1 व्यक्ति की गई जान। इसके साथ ही इस राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। राज्य में फिलहाल 71 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। असम में आई भीषण बाढ़ के चलते भारतीय सेना ने आपदा राहत और मानवीय सेवा का परिचय देते हुए 571 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से अचानक बाढ़ से 17 लोगों की गई जान, राहत और बचाव का काम जारी। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 36 घंटे में भारी बारिश की जताई संभावना। रजौरी, पुंछ, गुरेज, करगिल और तंगमर्ग से लोगों से सतर्क रहने की अपील। रजौरी में सेना के जवानों ने तेज बहाव वाले नाले में 13 फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, रस्सी के सहारे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जान बचाई। बड़गाम के बीरवा बाजार में फ्लैश फ्लड का कैश, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैमरे में कैद हुआ भयावह मंजर। गुजरात में बारिश का असर, डांग में बाढ़ जैसे हालात, घरों और दुकानों और बाजार में घुसा बारिश का पानी। गुजरात के डांग में लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियां उफान पर, प्रशासन लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की। बिहार के सहरसा में बाढ़ से भयावह स्थिति, कोसी नदी में उफान के कारण कई इलाके जलमग्न, जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं शिक्षक। धर्मशाला के बोघ घाटी में बारिश का कहर, भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, कई क्षेत्रों में नुकसान। चंबा में रावी नदी के बीच फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू ऑपरेशन, सुरक्षित बाहर निकालकर बचाई गई जान। बारिश भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक, रुद्रप्रयाग में सुरक्षा के मद्देनजर रोकी गई यात्रा। लगातार बारिश से अमरनाथ यात्रा स्थगित, खराब मौसम के चलते श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद। कांवड़ यात्रा को लेकर जांच से प्रशासन अलर्ट, तैयारियां तेज, 70 किलोमीटर रूट पर 70 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से होगी निगरानी। सहारनपुर मीट प्लांट में अमोनिया गैस के रिसाव के चलते 14 कर्मचारी पड़े बीमार। बिजनौर बेटे ने मां की हत्या की, मुआवजे के लिए रची साजिश, गुलदार के हमले की बताई कहानी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुला हत्या का राज। नोएडा में 2 करोड़ के कैंसर रोधी दवाएं बरामद, 76 फ्लैट से अवैध दवा कारोबार का खुलासा। मऊ में पुलिस मुठभेड़ में वांछित आरोपी घायल, गिरफ्तार, गोवंश वध मामले में तलाश थी आरोपी की। पुणे में खूनी वारदात, पुरानी रंजिश में नाबालिग की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। नोएडा सेक्टर 44 में चलती टाटा सफारी में लगी भीषण आग, चालक ने कूद कर बचाई जान। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पति ने अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या की, सुसाइड वीडियो में पत्नी और उसके परिवार को तंग न करने की अपील की। हरदोई में लीकेज की मरम्मत करते समय तेज दबाव से हादसा, पानी की टंकी का वॉल्व फटा, बाल बाल बची ऑपरेटर की जान। मैसूर में खौफनाक वारदात, पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर व्यक्ति ने खुद को लगाई फांसी। हल्द्वानी में पानी की टंकी के लेंटर की शटरिंग खोलते समय हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की दम घुटने से मौत। उत्तर प्रदेश के अररिया में दर्दनाक हादसा, टीवी मरीज पत्नी की मौत का सदमा पति नहीं कर सका बर्दाश्त, अंतिम संस्कार के दौरान हार्ट अटैक से गई जान। गुजरात दाहौद में एसी रिपेयर करते समय करंट लगने से 20 साल की युवा की दर्दनाक मौत, इलाके में भारी कोहराम। गोंडा में मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर की गोली लगने से घायल, पुलिस का दावा पहले बदमाश ने की थी फायरिंग। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर डीजल टैंकर में लगी भीषण आग, चलते समय टायर फटने के बाद हुआ हादसा। भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत मालवन, कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह की मौजूदगी में हुआ कमीशन। भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन का बेहतरीन उदाहरण वॉरशिप मालवन, इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जों और तकनीक का हुआ इस्तेमाल। कांवड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे गानों पर सहारनपुर पुलिस का शिकंजा, डीजे पेन ड्राइव की होगी जांच। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में प्रशासन ने कांवड़ मेलों की तैयारियों की तेज की, श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश। 30 जुलाई से लगने वाले देवघर श्रावणी मेले की तैयारी जारी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा। अगले महीने होने वाली एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 मेंबर्स की भारतीय टीम की घोषणा। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान, डिफेंडर अमनदीप लकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल, रविचंद्र सिंह, मोई रांगथेम और फॉरवर्ड सेल्वम कार्थी टीम से बाहर। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगी अभियान, 19 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा मुकाबला। 23 जुलाई से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज, आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद अहम है ये सीरीज। बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट और भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल मैचेस के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए जारी किया है टेंडर। OMD2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म होगी ओ माई डॉग का ट्रेलर आया सामने, 31 जुलाई को हो रही रिलीज। सेलापति विजय की जन नायकन की रिलीज में चंद दिन बाकी, नया प्रोमो हुआ लॉन्च। नेटफ्लिक्स पर जल्द रिलीज होगी ऑपरेशन सवेश सागर से शौर्यगाथा से जुड़ी कहानी। 17 साल बाद पर्दे पर लौट रहे हैं फुनसुक वांगड़ू, 4 सितंबर को रिलीज हो रही है आमिर खान की 3 इडियट्स। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती की हुई सगाई, मंगेतर संग की फोटो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सप।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि पेपर लीक पर चर्चा के लिए 267 के तहत नोटिस दिया गया है लेकिन सरकार इसके तहत चर्चा को तैयार नहीं। खड़गे का कहना है कि विपक्ष एडजर्नमेंट मोशन के तहत चर्चा चाहता है। उनसे बात की गई सहयोगी मौसमी सिंह ने।
3: सर खड़गे साहब है, उनसे पूछते हैं, सर आज आप चेयरमैन से मिले, क्या बात हुई, क्या मांग रखी आपने? सर
4: मांग रखने का सवाल नहीं है, हमने जो नोटिस दिया है 267 में उस पर चर्चा हो और चर्चा के लिए वो अनुमति दे। तो हमने पूछा, वो बोले कि नहीं 267 में हम दे नहीं सकते, अगर किसी और रूल्स में अगर आप चर्चा चाहते हैं तो वो करवाएंगे इस पे। तो हम बोले उसका महत्व चले जाएगा, 267 इसका मतलब ये है कि जैसा कि लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन होता है यहाँ पर ऐसा ही होता है, उसका महत्व इसके लिए हम डट के लड़ रहे हैं 2-3 दिन से। अब तुम अगर इसको बदल दो ये इम्पॉसिबल है। और आज तो इतने राहुल जी को आपने अपमान किया, प्रियंका जी को आपने जिस ढंग से उनको बिहेव करना चाहिए, किसी महिला को आप रात के 9 बजे तक पुलिस स्टेशन में बिठा के नहीं रख सकते
0: जी, जी।
4: और अपोजिशन लीडर को साथ जो मिसबिहेव की आपकी पुलिस के, ये खंडनीय है
0: जी।
4: और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इसका चर्चा ओपनली हो, आप उसको पहले उत्तर दो, बाकी के बाद देखेंगे।
3: और ये भी कहा जा रहा है कि आप इस्तीफे की मांग करेंगे, पहले इस्तीफा हो फिर चर्चा हो।
4: तो ये सब उस वक्त आएंगे जब हम तुम चर्चा को अलाउ करेंगे,
3: तब मांगेंगे।
4: हम क्या बात करेंगे अभी नहीं बोलते हैं।
3: अच्छा।
4: जो बात करना है हाउस में करेंगे, सदन में करेंगे, लोग उसको सुनेंगे
3: जी।
4: सदन भी सुनेगा
3: जी।
4: फिर उसके बाद क्या निर्णय होगा देखेंगे।
0: और संसद में गतिरोध को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, मॉनसून सत्र में संसद में जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ अलग अलग बैठक करेंगे और इस बैठक के जरिए वो पेपर लीक पर चर्चा को लेकर दलों में आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। अगर विपक्ष सहमत होता है तो सरकार कल इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है। इसके पहले सरकार की तरफ से बयान आया कि सरकार देश हित के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये कहा कि संसद में चर्चा करने का एक नियम है और उसी तरह से चर्चा हो सकती है, सीधे सड़क पर उतरना सही नहीं है।
5: सरकार ने आज पार्लियामेंट सदन में कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो ये ठीक नहीं है। चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए।
0: इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सीजेपी से बात करेंगे। सीजेपी के साथ आज बातचीत का दूसरा दौर शुरू होने की संभावना है। सीजेपी से सरकार की बातचीत आज के लिए तय थी, जेपी नड्डा बातचीत करेंगे ये भी अब सामने आ रहा है। हालांकि सीजेपी से कौन प्रतिनिधित्व करेगा इस बातचीत का ये अभी फिलहाल तय नहीं है। दूसरे दौर की ये वार्ता होगी आज। तीन दिन से प्रदर्शन जारी है, आज भारी बारिश के बीच भी प्रदर्शन चल रहा है, बड़ी संख्या में इसमें छात्र जुड़ रहे हैं। तो लगातार पेपर लीक मामले को लेकर और छात्रों के भविष्य को लेकर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है और अब जेपी नड्डा बातचीत करेंगे सीजेपी से, दूसरे दौर की ये बातचीत होगी। इससे पहले भी बातचीत हो चुकी है जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज बताया जा रहा है कि ये दूसरा दौर बातचीत का शुरू हो सकता है।

ये पहले दौर की बातचीत आपने देखी, इसमें दो लोग सीजेपी की ओर से गए थे जिन्होंने जेपी नड्डा से बातचीत की। उन्होंने अपनी मांगे और शर्तें जेपी नड्डा को सौंपी थी। 20 जुलाई की तस्वीर है, आज 22 जुलाई है, यानी कि दो दिन पहले ये पहले दौर की बातचीत हुई थी जिसमें सीजेपी की ओर से ये दोनों गए थे। हालांकि इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था।

0: पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पीयूष, दूसरे दौर की बातचीत में सीजेपी की ओर से कौन आएगा?
1: जी बिल्कुल, एक बात साफ है, सरकार बातचीत के लिए तैयार है और सरकार ने सभी दरवाजे खोल दिए। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने सीजेपी के सभी जो नेता हैं उनको ये कह दिया है कि आप कभी भी आ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो संभवतः आज ही ये दूसरे दौर की बैठक सरकार और सीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हो सकती है। इससे पहले सीजेपी के दो प्रवक्ता आए थे, एक मेमोरेंडम सबमिट किया था और संभवतः आज वही दोनों प्रवक्ता आ सकते हैं और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले जब बैठक हुई थी तो उस दिन दो राउंड्स की मीटिंग हुई थी और आज सरकार फिर से उनसे बात कर सकती है। पहले सरकार ये कह चुकी है कि आपकी जो मांगे हैं उस पर सरकार जो है वो उस पर।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। हमले में एक पुलिसकर्मी के मौत की खबर है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। आतंकियों की संख्या कितनी थी फिलहाल इस पर जानकारी नहीं है, लेकिन आतंकी हमले में एक कांस्टेबल की जान गई है। अनंतनाग की घटना बताई जा रही है जहां पर पुलिस टीम पर यह आतंकी हमला गोलियां चलाकर किया गया, उसके बाद यह आतंकी भाग गए।

0: तो गोलियां चलाकर ये आतंकी भाग गए। अब आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है क्योंकि पुलिस टीम को निशाना बनाया गया था। मीर फरीद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मीर, क्या डिटेल्स मिल रही हैं इस आतंकी हमले की? मीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
1: अनंतनाग से खबर आ रही है जहां मेन मार्केट में सड़क। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ये अनंतनाग से खबर आई है जहां मेन मार्केट से एक रास्ता जो कोकरनाग की तरफ जाता है, वहां एक पुलिस हेड कांस्टेबल रोड जो है पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहा था, और तभी सूत्रों का माने तो एक गाड़ी वहां से गुजरी और गाड़ी से जो है एसपी तरफ गोलियां चली हैं, और साफ तौर पे एक टेरर अटैक, और इसमें ये जो है गंभीर रूप से घायल हुआ। इसको अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने अब कहा है कि इसकी मृत्यु हो गई है। इस इंसिडेंट के बाद जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है, सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है और गाड़ियों की तलाशी हो रही है। आसपास की जो आउटपोस्ट हैं, पुलिस स्टेशंस को अलर्ट कर दिया गया है। ये एक बड़ा हमला है, और खासकर अगर आप पिछले एक साल की बात करें पहलगाम टेरर अटैक के बाद का जो समय है, पहला मेजर एक टेरर इंसिडेंट हुआ है घाटी में। काफी ज्यादा सुरक्षा है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला, टिकते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
4: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
6: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
7: सवारी सोकुडो।
8: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क,
9: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
10: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
11: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
12: Kuch to baat hai is dil mein.
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद भारत।
1: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट, बिकॉज़ वेल्स फार्गो विल सेंड एन अलर्ट इफ हर बैलेंस ड्रॉप्स बिलो हर सेट अमाउंट। यप, नथिंग गेट्स पास्ट लूसी or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
3: Tune In Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on Tune In. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
0: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो
4: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
5: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
6: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
7: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri, Hind Bade Aaram Se,
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ फिटनेस योगा मेंटल वेलनेस सब कुछ एक ही जगह फिट तक सिंपल टिप्स एक्सपर्ट इनसाइट्स रियल कॉन्वर्सेशंस लाइफ अपग्रेड करो इजी वे वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब.
3: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं. 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई. हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं. 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया.
4: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर. आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे.
5: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं.
3: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

जीजू बोले नियमों के तहत हो सकती है बहस। सभी विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर से मिलेंगे ओम बिरला, लेकिन हंगामे की जद में है मॉनसून सत्र। सरकार ने नड्डा को बनाया सीजेपी के साथ वार्ता के लिए नेगोशिएटर। प्रदर्शनकारियों के साथ आज हो सकती है दूसरे दौर की बातचीत। थोड़ी देर में तय होगी बैठक की जगह। रात में हुई थी वांगचुक से मुलाकात। राहुल के धरने के जवाब में कांग्रेस मुख्यालय के सामने बीजेपी का प्रदर्शन। खड़गे बोले हमारे नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं। बीजेपी का जवाब छात्रों के कंधे पर राजनीति ना चमकाए राहुल। राजनीतिक उथल पुथल के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सुले। एनडीए के साथ जाने की अटकलों को फिर मिली हवा। तस्वीरों में पवार का हाथ पकड़े दिखे प्रधानमंत्री। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर हो सकती है चर्चा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी समीक्षा संभव।

0: नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। लगातार मूसलाधार बारिश से सबसे गंभीर हालात जम्मू कश्मीर के हैं। वहां पिछले 3 दिन से अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हुई है और इसका खौफनाक परिणाम ये हुआ है कि बीते 48 घंटे में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लद्दाख में भी तबाही का आलम है। करगिल और द्रास में तो सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं।
1: ये कुदरत का क्रोध है। मॉनसून में बादल ऐसे फटे हैं कि सैलाब सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। आंखों के सामने मेहनत की पूंजी उफनती नदी की लहरों में समा गई। लोग देखते रह गए और सब कुछ खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर में मौसम की मार ऐसी पड़ी है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग सकते में हैं तो सरकार अलर्ट मोड में होने का दावा कर रही है। बडगाम के बीरवा से आई ये तस्वीर बेहद डरावनी है। ये बडगाम के मुख्य बाजार का इलाका है। मंगलवार को वहाँ अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सब कुछ आंखों के सामने हुआ। चंद सेकंड के अंदर उभनती नदी की लहरों ने इस इमारत की नींव को हिला कर रख दिया और देखते ही देखते ये इमारत धड़ाम हो गई। सैलाब के एक तरफ लोग खड़े थे, दूसरी तरफ ये मार्केट था और मार्केट की बर्बादी को देखने के लिए उसके ठीक बगल में सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। उन्हें खतरे की आहट पहले ही हो गई थी, लिहाजा पुलिस प्रशासन सतर्क था। जम्मू कश्मीर पुलिस के कई जवान लगातार लोगों को आगाह कर रहे थे, उन्हें खतरे की जद से दूर हटा रहे थे। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से दुकानदार अपना सामान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि पुलिस उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकालने की कोशिश में जुटी थी। उसके चंद सेकंड बाद ही ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नदी में समा गया। इस इमारत के नदी में समाने से बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है।
2: अराउंड 20 दुकानें थी इस एक कॉम्प्लेक्स में, जो बिल्कुल नाले सुखना बस स्टैंड जो हमारा बीरवा में है यहाँ पर वाक़ था। और लोगों से अभी हम गुजारिश कर रहे हैं कि नाले के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि नाले में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और ये बहाव अभी बढ़ने का खदशा है, क्योंकि हायर रीच में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जो पानी अभी इधर की तरफ आ रहा है और बीरवा पहुंचना अभी वो बाकी है, जिसकी वजह से पानी का लेवल इंक्रीज हो सकता है। आपने देखा होगा कि बीरवा में जो हमारा मेकशिफ्ट टेम्परेरी कनेक्शन ब्रिज था वो भी पानी की वजह से वॉश आउट हो गया है, और पानी का बहाव जो ही कम हो जाता है तो रेस्टोरेशन वर्क्स हमारी स्टार्ट हो जाएंगी।
1: बडगाम के अन्य हिस्सों में भी बेहिसाब तबाही हुई है। बादल फटने की घटनाओं के बाद से कई इलाके खतरे का सामना कर रहे हैं। कुछ जगह सड़कों पर तेज बहाव दिखा। अब आपको हंदवाड़ा के हालात दिखाते हैं। वहां भी मूसलाधार बारिश ने संकट को विकराल कर दिया है। रिहायशी इलाकों में हालात ऐसे हैं कि जिंदगी ठप हो गई है। कई जगह सैलाब की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें गुरेज की हैं। वहां भी भारी तबाही हुई है। फ्लड की वजह से हाहाकार है। ऐसी लहरों से हड़कंप मच गया है। पुंछ में भी विनाश काल की एक हाहाकारी तस्वीर दिखी। वहां कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि कई लोग लहरों के बीच फंस गए। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और लोगों को सही सलामत सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। भारी बारिश और बादल फटने की घटना तंगमर में भी हुई है। गुलमर्ग श्रीनगर सड़क की हालत तो नदी जैसी हो गई है। आसपास के गांवों और पार्कों में पानी भर गया है। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन लोगों को आगाह कर रहा है कि वो फंते नालों से दूर रहे। करगिल के किरकिचू में मंगलवार को भी बादल फटने की घटना हुई। 3 दिन पहले भी किरकिचू इलाके में तबाही आई थी। 21 जुलाई की घटना के बाद इलाके का संपर्क टूट गया। जानकारी के मुताबिक कई संपत्ति को भी नुकसान हुआ। वहां राहत और बचाव के काम में सेना के जवान स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जुटे रहे। मौसम की इस मार की वजह से पिछले 50 घंटों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मौतें पुंछ और राजौरी में हुई है।
3: राजौरी और पुंछ में बहुत नुकसान का सामना बहुत नुकसान हुआ है और कीमती जाने भी गई हैं, जिस तरह नासिर ने शुरू में आपसे कहा। पहले तो हमारी मुकम्मल कोशिश है कि किसी और की जान ना जाए। मैंने कल जो रिव्यू मीटिंग लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, میں نے افسروں کو واضح ہدایت دی ہے کہ جو ولنریبل ایریاز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو سب سے ولنریبل فیملیز ہیں وہاں پہ جو نالوں کے قریب دریاؤں کے قریب یا لینڈ سلائڈ پرون ایریاز کے قریب رہتے ہیں ان کو شفٹ کیا جانا چاہیے.
1: جموں کشمیر میں ادھکتر جگہوں پر بارش جاری ہے جس کی وجہ سے جھیلم اور چناب ندیوں کا جل استر بڑھ گیا ہے. ان کی سہایک ندیاں بھی افان پر ہیں. ان سب کے بیچ موسم وبھاگ نے آج بھاری بارش کی چیتاونی دی ہے. ساتھ ہی بھوسخلن اور فلیش فلڈ کا بھی خطرہ بڑھ گیا ہے.
4: جموں پونچھ ہائی وے اس وقت بلاک ہو چکا ہے. سلائڈنگ کی وجہ سے ہائی وے پربھاوت ہو چکا ہے اور تمام گاڑیاں, آپ میرے پیچھے تصویروں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, یہ تمام گاڑیاں جو جموں سے راجوری کی طرف اور راجوری سے جموں کی طرف جا رہی تھی, یہ تمام گاڑیاں راستے میں ہی رک گئی ہیں کیونکہ سلائڈنگ یہاں پر ہو رہی ہے. زوردار سلائڈنگ جموں پونچھ ہائی وے پر ہو رہی ہے جس وجہ سے جموں پونچھ ہائی وے جو ہے وہ پوری طرح سے بلاک ہے. تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پر رکی ہیں کیونکہ سلائڈنگ جو ہے وہ زوردار طریقے سے آگے ہو رہی ہے اور سلائڈنگ کی وجہ سے ان گاڑیوں کو یہاں پر ہی رکنے کی اجازت جو ہے وہ آگے جانے کی اجازت جو ہے وہ گاڑیوں کو نہیں ہے اور یہ تمام گاڑیاں یہاں پر رکی ہوئی ہیں.
1: بھاری بارش سے سنکٹ ایسا ہے کہ امرناتھ یاترا آج لگاتار چوتھے دن استھگت ہے. موسم وبھاگ حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں. جموں سے سنیل جی بھٹ اور شری نگر سے میر فرید کے ساتھ اشرف وانی آج تک.
0: تو جموں کشمیر کا حال تو آپ نے دیکھ لیا, اب آپ کو دکھاتے ہیں ہماچل پردیش پر کیسے سنکٹ منڈرا رہا ہے. وہاں بھی کئی حصوں میں موسلا دھار بارش کا دور ہے. کانگڑا اور چمبا میں بھاری تباہی ہے, ساتھ ہی آج بھی کئی ضلعوں میں بھاری بارش کا ریڈ الرٹ ہے.
1: ہماچل میں سیلاب سنکٹ, اچانک آئی باڑھ, تباہی اور ہاہاکار. نہ آشیانہ بچا نہ زندگی بچی. مانسون نے دکھائے تیور, خوفناک منظر. یہاں بے بسی ہے, لاچارگی ہے اور مایوسی ہے. ہماچل کے پہاڑی علاقے کے اس حصے میں بھاری بارش نے کیا حال کر دیا ہے, یہ منظر اس کی گواہی دے رہے ہیں. یہ کانگڑا ضلع کے شاہپور علاقے کی بو گھاٹی ہے, یہاں نان اسٹاپ موسلا دھار بارش جاری ہے. موسم کی مار ایسی ہے کہ مانو یہ سیلاب سب کچھ تباہ کر کے ہی دم لیں گے. بارش کے چلتے اسپیڑا اور گڑمون گاؤں میں کئی مکان تباہ ہو گئے, کئی گوشالائیں بہ گئی. گڑمون گاؤں میں 10 گھر اور اسپیڑا میں 4 مکان چھتگرست ہوئے ہیں. چشمدید بتا رہے ہیں کہ پہاڑی پر زوردار دھماکے کے بعد اچانک باڑ آئی, اس کے ساتھ بھاری ماترا میں ملبا بھی رہائشی علاقے میں پہنچ گیا. حالت ایسی ہو گئی کہ لوگوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی. گھٹنا کے بعد سے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے. ڈراونے منظر کی تصویر چمبا سے بھی آئی ہے, وہاں لگاتار ہو رہی بھاری بارش کے چلتے راوی ندی کا رود روپ دکھ رہا ہے. کئی جگہوں پر ندی کا جل استر بڑھنے سے بے حساب خطرہ بڑھا ہے. اسی سنکٹ کال میں ایک شخص افنتی راوی ندی کے بیچ پھنس گیا. لہروں کے بیچ ایک چٹان کے سہارے وہ اپنی جان بچانے کی جد و جہد کرتا دکھا. اسے سرکشت باہر نکالنے کے لیے ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور کافی مشقت کے بعد کامیابی ملی. مانسونی سنکٹ سے چمبا کا جل جیون ٹھپ ہے, وہاں سڑکوں پر پانی بھرنے کی وجہ سے انہیں بند کرنا پڑا ہے. ایک دن پہلے ہی موسلا دھار بارش کے کارن ضلع کے کئی حصوں میں بھوسخلن اور سڑک دھسنے کی گھٹنائیں سامنے آئی. حالات ایسے ہو گئے کہ ٹریفک پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا. بھٹیات کھیتر میں چمبا کو کانگڑا ضلع کے نورپور سے جوڑنے والی لاہڈو نورپور سڑک کا بڑا حصہ چکی ندی میں سما گیا, اس وجہ سے کئی گاڑیاں پھنسی دکھی. ہماچل کے لیے کب سنکٹ کے بادل چھٹیں گے یہ اب تک صاف نہیں ہو پایا ہے, لیکن موسم وبھاگ نے چیتاونی دے دی ہے کہ آج بھی بھاری بارش کا خطرہ ہے. آئی ایم ڈی نے چمبا, کانگڑا, کلو, منڈی, سولن, کنور اور سرمور ضلعوں کے لیے بھاری بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. ایسے میں ابھی بھی تمام پربھاوت ضلعوں میں خطرہ بنا ہوا ہے, پرشاسن ہائی الرٹ پر ہے. کانگڑا سے پوجا شرما کے ساتھ وشال آنند, چمبا, آج تک.
0: वहीं अन्य राज्यों में भी संकट कम नहीं है। जुलाई के मॉनसून ने उत्तराखंड की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां स्थिति ऐसी है कि चार धाम यात्रा पर ब्रेक लग चुका है। कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें हैं और खतरा अता है।
5: कहीं भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ाई है तो कहीं लैंडस्लाइड ने रास्ता रोक दिया। मानसून के मौसम में उत्तराखंड के लिए आफत कम नहीं। आफत की इस बारिश ने एक बार फिर डरावनी तस्वीर सामने ला दी है। उत्तराखंड की सबसे डरावनी तस्वीर पिथौरागढ़ से आई। वहां मूसलाधार बारिश के बीच दारमा घाटी में जोरदार भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 21 जुलाई का बताया जा रहा है। चंद सेकंड में पूरी पहाड़ी भरभरा कर ढह गई। नतीजा ये हुआ कि भारी मात्रा में मलबा और विशाल बोल्डर सड़क पर आ गए। हालात ऐसे हो गए कि ये रूट पूरी तरह बंद हो गया। गनीमत रही कि हादसे की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई। ये हाहाकारी तस्वीर उत्तराखंड के विकास नगर की है। वहां रुद्रपुर में बरसाती गोना नदी ने ऐसा रूप लिया कि जान पर बनाई। नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। देखते ही देखते एक स्कूटी सवार सैलाब के बीच फंस गया। स्कूटी सवार लहरों में बहने लगा। तभी मौके पर मौजूद दो युवकों ने अपनी जान पर खेलकर उसे सैलाब से खींचकर बाहर निकाला। इसी विकास नगर से एक और डरावनी तस्वीर सामने आई। वहां जौनसार बाबर चक्राता की लाइफ लाइन कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर अचानक आफत आ पड़ी। सुबह सवेरे खतरनाक पहाड़ी से अचानक भारी भूस्खलन हुआ। इसके बाद चट्टाने और भारी मलबा भरभरा कर सड़क पर आ घिरा। इसका असर ये हुआ कि कई घंटे तक यहां आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। राहत की बात ये रही कि भूस्खलन से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लैंडस्लाइड का खौफ केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी दिखा। लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई। उसका असर ये हुआ कि केदारनाथ यात्रा फिलहाल बंद है।
6: पेटपड़ी के नीचे भी लैंडस्लाइड हो रखा है। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे
5: पैदल यात्रा मार्ग गौरीकुंड से निकट रात से ही बंद है। यात्रा का मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में बैरियर लगाकर धाम जाने वाले यात्रियों को आगे जाने से रोका जा रहा है। विकास नगर से टीना साहू और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ राकेश पंत, पिथौरागढ़ आज तक।
0: तो वहीं असम में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। वहां जोरहाट, शिवसागर और कई अन्य जिलों में रिहायशी लाख के डूब चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा आबादी पर संकट गहराया गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक असम में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है।

0: डूब चुके इलाकों में अब जिंदगी खत्म होने लगी है। असम बेबस होकर मदद की आस लगाए बैठा है। लोग अपने आशियाने में भी परेशान हैं। बाढ़ के पानी से उनकी जिंदगी घिरी हुई है, घर डूब गए हैं, कहीं आना जाना मुश्किलों से भरा है। असम में कहीं जिंदगी बचाने की जंग लड़ी जा रही है तो कहीं सिर छुपाने की। बाढ़ की इस त्रासदी ने असम को परेशान कर दिया है। सड़कों पर सैलाब है और गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरह थम चुकी है तो ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। असम की नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां डरा रही हैं। जलस्तर बढ़ने से ऊपरी असम के कई गांव जलमग्न हो गए। गंभीर हालात के बीच घरों, फसलों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य में बाढ़ के हालात की विभीषिका से जुड़े आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 24 घंटे में असम में 21 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा मौत शिवसागर इलाके में हुई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 31 हो गई। वहां 16 जिलों में 540,000 लोग प्रभावित हैं। जोरहाट में हालात विकट है। संकट के बीच पहुंचकर आज तक संवाददाता ने वहां के हालात देखे।
1: असम में शिवसागर, जोरहाट, सरायदो, नादिया, सोनारी बाढ़ का संपर्क में आ रही है। उसी के दौरान असम में 7 लाख से ऊपर अभी बाढ़ में प्रभावित है।
0: जोरहाट के हालात आपने देखे। शिवसागर और अन्य कई जिले ऐसी ही मुसीबत का सामना कर रहे हैं। गोलाघाट, कामरूप, होजई, द्रिभुगढ़, विश्वनाथ, धेमाजी, सोनितपुर, उदलगुरी, नागांव, चराईदेव, तिनसुकिया, कार्बी आंगलोंग और लखीमपुर जिलों में भी कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। स्थिति ऐसी है कि 5.5 लाख से ज्यादा की आबादी मदद का इंतजार कर रही है। सोमवार को 15 जिलों में संकट था और प्रभावितों की संख्या 3.5 लाख थी, लेकिन एक दिन में ही 2 लाख और लोग बाढ़ में फंस गए।
2: डेटा नदी का जो पानी है वो एक्सट्रीम लेवल से ऊपर हो गया है। अचानक से पता नहीं कहाँ से ये बना, एक अविश्वसनीय परिचय मतलब परिस्थिति का उद्भवन हुआ है। यहाँ पे पहली बार देखा है, जन्म से लेके आज पहली बार इतना भयानक बाढ़ देखा है। यहाँ पे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। और अचानक से इतना कुछ लोगों का सामान वगैरह भी सब कुछ तहस नहस हो गया है। और कोई मतलब अचानक से आया है, इसमें कोई सावधानीता वो लोग कर ही नहीं पाया है।
0: संकट की इस घड़ी में लोगों को मुश्किल दौर से उबारने के लिए सेना ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है। आर्मी वहां ऑपरेशन जल राहत चला रही है। इसके तहत सेना के जवानों ने असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 570 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है। 19 जुलाई से सेना दिन रात लगातार राहत बचाव अभियान में जुटी है। ऑपरेशन जल राहत के तहत 45 सैनिकों वाली 3 विशेष राहत टीमों को शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट सहित सबसे अधिक प्रभावित जिलों में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां भी दिन रात रेस्क्यू में जुटी हैं। राहत कार्य के बीच हालात का जायजा लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर है। पूरा विकास बोरा, जोरहाट, आज तक।
3: आपने मॉनसून की आफत देखी, कैसे पहाड़ी राज्यों और असम में हाहाकार मचा हुआ, लेकिन कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई हैं। लद्दाख और उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी का नजारा दिखा। लद्दाख के वारी ला पास में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है तो उधर चमोली में मॉनसून के बीच भी ट्रैकिंग का रोमांच चरम पर है। भारी बारिश के बावजूद गुप्तखाल ट्रैक, जिसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर मानी जाती है, जो नीति घाटी को माणा घाटी से जोड़ता है, इन दिनों ट्रैकिंग प्रेमियों की पहली पसंद बन गया है। ब्रेक का चला है, देखते रहिए आज।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
4: Presented by
7: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic.
9: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
10: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
12: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, Complete Oral Health Ka Sach.
13: In association with
5: Bharat Ki Apni Electric Sawari, Sokudo.
8: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty. Durable Pipes, Fittings and Tanks, a complete range of sanitary solutions.
14: Thumbtack presents. Uncertainty strikes. I was surrounded. The aisle and the options were closing in. There were paint rollers, satin and matte finish, angle brushes, and natural bristles. There were too many choices. What if I never got my living room painted? What if I couldn't figure out what type of paint to use? What if I just used Thumbtack? I can hire a top-rated pro that knows everything about interior paint, easily compare prices, and read reviews. Thumbtack knows homes. Download the app today.
10: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
15: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk. No fluff with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
16: Gold ke liye Hallmark
17: aur mustard oil ke liye sirf P Mark.
18: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
19: P-Mark, the mustard specialist since 1933. बरसों से सरसों।
20: कुछ तो बात है इस दिल में।

तिनके की तरह बहती गाड़ियां, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कारगिल की है। बादल फटने से यहां पानी का ऐसा उफान आया कि पेड़ और गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आई। राजौरी के नौशेरा की तस्वीर भी देखिए। भारी बारिश से यहां मानवर नदी उफान पर है। दब्बड़ क्षेत्र में नदी के बीचों बीच एक व्यक्ति का शव दिखाई देने की सूचना मिली तो प्रशासन ने बड़े स्तर पर राहत बचाव अभियान शुरू किया। दो दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में कल दोपहर सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया। पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में कुदरत का रौद्र रूप देखिए। लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड की चपेट में कई इलाके आ गए। ये स्कूल भी पानी की मार से बुरी तरह बर्बाद हो गया। ये तस्वीर पुंछ की है, जहां एक सुरंग पर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रही मशीनें आ गईं। भारी बारिश के बाद शहर के बीचों बीच बह रहा पानी भी लोगों को डरा रहा है। पुंछ जिले में बारिश ने भारी बर्बादी मचाई है। भूस्खलन से सूरनकोट के मुर्रा इलाके में एक घर मलबे में दब गया, जिसमें 7 लोग जिंदा दब गए। अब किश्तवाड़ से आई डरावनी तस्वीर भी देखिए। रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड से तबाही मच गई। पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, जो क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं डोडा में रागी नाला के पास लैंडस्लाइड की वजह से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मीर फरीद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।

सदन में पेपर लीक पर कल से चर्चा के लिए तैयार है सरकार। रिजिजू बोले नियमों के तहत हो सकती है बहस। सभी विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर से मिलेंगे ओम बिरला, लेकिन हंगामे की जद में है मानसून सत्र।

0: सरकार ने नड्डा को बनाया CJP के साथ वार्ता के लिए नेगोशिएटर। प्रदर्शनकारियों के साथ आज हो सकती है दूसरी बातचीत। थोड़ी देर में तय होगी बैठक की जगह। रात में हुई थी वांगचुक से मुलाकात। लखनऊ से पटना और जम्मू तक बीजेपी और विपक्षी दलों के प्रदर्शनों का दौर। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल। खड़गे बोले, हमारे नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं। बीजेपी का जवाब, छात्रों के कंधे पर राजनीति ना चमकाएं। राजनीतिक उथल पुथल के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सुले। एनडीए के साथ जाने की अटकलों को फिर मिली हवा। तस्वीरों में पवार का हाथ पकड़े दिखे पीएम। और अयोध्या में थोड़ी देर बाद शुरू होगी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर हो सकती है चर्चा। SIT की जांच रिपोर्ट पर भी समीक्षा संभव।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत की।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 2 बज गए हैं और न्यूज रूम लाइव का वक्त चला है। और सबसे पहले, जैसे हम आपको बताते हैं न्यूज रूम लाइव में किन खबरों के बारे में बात करेंगे, तो वो हम आपको बता देते हैं न्यूज रूम लाइव में। सबसे पहले हम बात करेंगे संसद में पेपर लीक को लेकर किस तरह से अब हंगामा हो रहा है, और उसके बाद अब बातचीत का चैनल कैसे शुरू किया गया है, सरकार की तरफ से विपक्ष को क्या प्रस्ताव दिया गया, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी जो खबर है बड़ी, वो हम आपको बताएंगे CJP के साथ बातचीत का अब कैसे एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। सोनम वांगचुक से भी मुलाकात हो रही है और JP नड्डा को यहां पर आगे रखा गया है। अब कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, ये डिटेल में हम आपको बताएंगे। जो तीसरी बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता देंगे, उस खबर के बारे में बात करेंगे। पटना में भी कोहराम हुआ, मुद्दा छात्रों का ही था, छात्रों के भविष्य का था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का था, लेकिन पटना से किस तरह की तस्वीरें आई, लाठी चार्ज की, पथराव की, टीयर गैस की, वो भी हम आपको बताएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी करीब जो 2:30 बजे वो हम आपको बताएंगे कि जंतर मंतर पर जो मेट्रो बंद है, 16 स्टेशन को नो एंट्री को लेकर क्या कुछ कहा गया, ये भी हम आपको बताएंगे कि क्या तैयारी आपको करनी है अगर आप वहां पर जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सीधे राज्यसभा लिए चलते हैं। किरण रिजिजू बात रख रहे हैं।
2: शुरू से सरकार ने कहा है के महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी है और नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार है, अभी भी हम तैयार है। हमने कांग्रेस के नेताओं को बताया, बाकी पार्टी के नेताओं को भी कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप का अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चर्चा नहीं कराने के लिए व्यवधान डालने के लिए बहाना बनाते हैं और वो कंडीशन लगाते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। हमारा सरकार हमारे युवाओं के भविष्य के लिए, हमारे छात्रों के भविष्य के लिए नीट एग्जाम और संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है और सरकार ने जो जो कदम उठाया है एक एक करके ये कदम भी देश के लोगों के सामने में जानकारी रखना ये हमारा दायित्व है और इस सदन का भी दायित्व है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप चर्चा मांग रहे हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर आप नाराबाजी लगा करके क्यों यहाँ पे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को। अभी कई मेंबर से मैंने बात की है,

0: You said rarest of the rare occasion.
1: Yeah.
0: What is going on is the rarest of the rare occasion.
2: Yeah. Already on the bull chair, then,
0: please, sir. Please,
2: no, I'm not done.
0: Please.
2: The house has been down and adjourned up to 3 p.m. No. Thank you.
3: तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा जमकर हंगामा हुआ, जैसा कि पिछले दो दिनों से हो रहा, और 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भारी हंगामे के चलते कार्रवाई को, सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी 45 मिनट बाद एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी। और हो सकता है जैसा अभी तक हो रहा है, जब शुरुआत 20 तारीख को हुई, फिर 21 तारीख को हुई, फिर आज जोरदार हंगामा, जमकर हंगामा। इस दौरान जेपी नड्डा ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने कहा सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, चर्चा के लिए सरकार तैयार है, ये किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया। लोकसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई है और राज्यसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, लोकसभा में भी हंगामा हुआ, तो लोकसभा अब कल तक के लिए स्थगित है और राज्यसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित है, यानी राज्यसभा में कल फिर राज्यसभा में 3 बजे दोबारा से चर्चा होगी। हालांकि हंगामा यहां भी जोरदार हुआ और जमकर नारेबाजी यहां पर की गई, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, मोदी सरकार पारदर्शी सरकार है, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन खड़गे कह रहे हैं कि सरकार नैतिकता खो चुकी है, और जमकर जब हंगामा हुआ, जब सदस्य नहीं माने, तो उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और राज्यसभा की कार्रवाई को 3 बजे तक लिए स्थगित किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल्याण बनर्जी को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद कल्याण बनर्जी पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं, यानी अब वो इस पूरे मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं रहेंगे, उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए, यानी अभी कुछ वक्त बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। हंगामे के आसार फिर भी किए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार बातचीत को तैयार नहीं है, और सरकार की तरफ से एक आ जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। हिमांशु, आखिर हो क्या रहा है और सरकार की अब क्या रणनीति है, क्योंकि हंगामा हो रहा है, बातचीत हो नहीं पा रही है, तो अब आगे क्या प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया जाएगा विपक्ष को?
4: देखिए, लोकसभा के जितने विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स हैं, उनसे एक एक कर जो है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुलाकात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है अभी, और कुछ और अन्य फ्लोर लीडर्स के साथ जो है बातचीत होगी। राज्यसभा में किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा कैसे हो, किस नियम के तहत हो, इस पर बात करनी चाहिए हम सबको, और उसके बाद जो है हम सब जानते हैं कि सरकार की तरफ से किस तरीके से ये सेकंड राउंड बातचीत के लिए भी जो है सीजीपी प्रोटेस्टर को बुलाया जा रहा है। सरकार का एक मानना है कि जो भी लोग छात्र खासकर जब भी बातचीत के लिए आए, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, कभी भी 24 आवर्स सरकार के दरवाजे जो हैं बातचीत के लिए खुले हुए हैं।
3: और अब जो हम लोग ये खबर जो सामने आ रही है कि विपक्ष एक खास नियम के तहत चर्चा चाहता है, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? राज्यसभा में भी इस बारे में सुना गया है।
4: देखिए दो नियम है लोकसभा के अंदर, अगर आप देखें तो 184 और 193। 184 जो है उसके अंदर जब चर्चा होती है तो सरकार के जो उस संबंधित चर्चा से मंत्री हैं वो जवाब देते हैं, लेकिन उस पर डिवीजन नहीं होता, यानी वोटिंग नहीं होती है। लेकिन 193 पे जब भी चर्चा होगी तो उस पर जो है वोटिंग होगी, तो इसको लेकर, नियमों को लेकर जो है भी बातचीत होनी है, और उसके बाद जो है ये होगा। राज्यसभा में 267 पर अगर चर्चा होती है तो मंत्री बयान देंगे, लेकिन उस पर डिवीजन नहीं होगी, यानी वोटिंग नहीं होगी। तो दोनों ही सदनों में विपक्ष ये चाहता है कि चर्चा हो लेकिन वोटिंग भी हो उसके साथ साथ।
3: हिमांशु, मैं आपको रोकता हूं, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर जो आ रही है वो बिहार के पटना से आ रही है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त सड़क पर आ चुके हैं, मार्च कर रहे हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं,
5: और पूरा इलाका इस वक्त रण क्षेत्र में
1: तब्दील हो चुका है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।
3: सुयेशा क्या हो गया? रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या तस्वीरें, क्या हालात है, किस तरह से प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है, बताइए।
1: देखिए, पटना में जो है हिंसक तस्वीरें देखने को मिल रही है कांग्रेस दफ्तर के बाहर। आप देखिए, यहां पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर पत्थरबाजी चल रही है दोनों तरफ से। बीजेपी के यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे प्रदर्शन करने के लिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया, उसके विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस मुख्यालयों पर जो है बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। और उसी कड़ी में देखिए किस तरीके से थोड़ी देर पहले जब बीजेपी के यहाँ पर नेता कार्यकर्ता पहुंचे थे, उसके बाद दोनों तरफ से कांग्रेस के भी यहाँ पर नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। और पहले तो जमकर लाठियां चली हैं एक दूसरे पर, और उसके बाद जबरदस्त पथराव जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और इस वक्त भी देखिए पत्थरबाजी जो है वो चल ही रही है, और बहुत ही हिंसक जो है वो तस्वीरें इस वक्त पटना में आपको नजर आ रही होगी, जहां पर सदाकत आश्रम जो कांग्रेस मुख्यालय है प्रदेश का, उसके बाहर में बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता और बीजेपी के जो है आपस में जबरदस्त हिंसक झड़प। और पूरा इलाका देखिए रण क्षेत्र में जो है वो तब्दील हो गया है, और पुलिस यहाँ पर एक तरीके से कहें तो कुछ करने में नाकामयाब नजर आ रही है जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। और आज हमने देखा किस तरीके से अभी दो घंटे पहले पटना के गांधी मैदान में भी किस तरीके से जमकर हिंसा हुई है, जहाँ पर आइसा के कार्यकर्ता जो हैं आज वो प्रदर्शन कर रहे थे, और वहाँ पर ही पुलिस के साथ जमकर लाठीचार्ज हुआ है, पत्थरबाजी की गई। देखिए पत्थरबाजी कांग्रेस की तरफ से इधर की तरफ, जिस तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता उधर तरीके की पत्थरबाजी जो है आपको नजर आ रही होगी, और इस तरफ पे बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता है वो भी जवाबी पत्थरबाजी कर रहे हैं। यानी दोनों तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्थरबाजी वो देखने को मिल रही है, और स्थिति बेहद बेहद तनावपूर्ण इस वक्त पटना में नजर आ रहा है। खासकर कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप देखिए लगातार लाइव तस्वीरें आप देखिए पत्थरबाजी की, ये देखिए लाइव तस्वीरें आप पत्थरबाजी की आप देख सकते हैं यहाँ पर की जा रही है। और दोनों तरफ से इधर देखिए, इस तरफ कांग्रेस के जो लोग हैं, इधर से कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता जो हैं, और इसमें हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद हो। देखिए इधर कांग्रेस के तरफ से देखिए पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है।
3: लेकिन रोहित, एक बड़ी अचंभे वाली बात है, यहाँ पर सिर्फ एक दो पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, बाकी कोई व्यवस्था यहाँ पर पुलिस की नजर नहीं आ रही है कि उन उपद्रवियों को शांत करा सके।
1: बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पुलिस वाले जो है अभी हम जब यहाँ पहुंचे थे तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई एक दूसरे पर, और उसके बाद जो पत्थरबाजी शुरू हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी लगातार पत्थरबाजी जो है वो दोनों तरफ से जो है वो की जा रही है। और हम लोगों ने प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के, उनसे भी बात की, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कल प्रदर्शन किया था उसको लेकर उनकी नाराजगी है, इसीलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस के लोग जो हैं वो यहाँ पर उनको शांत कराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन किस तरीके से पथराव हुआ है उसकी तस्वीरें यहाँ पर लाइव आज तक पर आप देख सकते हैं। चारों तरफ आपको केवल और केवल पत्थर यहाँ पर नजर आएगा, और देखिए अभी भी पत्थरबाजी चल रही है, अभी भी एक दूसरे पर पत्थर चलाया जा रहा है, रोड़े चलाए जा रहे हैं, और स्थिति बेहद बेहद जो है वो इस वक्त पटना में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है वो तनावपूर्ण है। और किसी तरीके से पुलिस की कोशिश हो रही है कि इस हिंसा को रोका जाए, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और जबरदस्त
3: रोहित जिस हिसाब से भीड़ है, जिस हिसाब से यहाँ पर लोग हाथों में लाठियां लेकर पत्थर लेकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उस हिसाब से बहुत ही कम पुलिसकर्मी यहाँ पर है। डिप्लॉयमेंट ज्यादा होनी चाहिए यहाँ पर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुलिस होना चाहिए था, देखिए पुलिस थी भी यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से हिंसा शुरू हुई, हिंसा भड़की है, उसके बाद देखिए अब चारों तरफ, अब देखिए यहाँ पर अब एक दूसरे से बात कर किया जा रहा है, कांग्रेस का बीजेपी का कार्यकर्ता एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और पत्थर देख सकते हैं आप चारों तरफ, आप यहाँ पर पत्थर ही पत्थर जो है वो आपको नजर आएगा। और फिर देखिए फिर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई है, फिर पत्थरबाजी जो है वो शुरू की गई है और देखिए लाठियां फिर बरसना शुरू, पत्थरबाजी भी फिर शुरू, यानी कोई मानने को तैयार नहीं है यहाँ पर, कोई भी मानने को यहाँ तैयार नहीं है। और जो भी बीच बचाओ या स्थिति को शांत करने की जो कोई कवायद की जा रही है, सब कुछ यहाँ पर फेल नजर आ रहा है। पुलिस कहीं आपको अब देखिए नजर नहीं आ रही होगी, पुलिस को यहाँ पे चाहती तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ एक्शन ले सकती थी, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं इस वक्त पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है। और लाइव तस्वीरें इस वक्त आज तक पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस,
3: ठीक है रोहित, हम समझते हैं कि बिहार में अलग तरह की राजनीति चलती है, लेकिन बीजेपी की सरकार है, सम्राट चौधरी कहते हैं कि कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है बीजेपी के राज में, और यहाँ पर उन्हीं के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता हमने सामने पत्थरबाजी
1: अब देखिए दीपक जी एक बार फिर से हिंसा भड़क गई और ठीक कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ये सब कुछ जो है हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है, देखी जा रही है। और यहाँ देखिए कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, खदेड़ा जा रहा है यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, लेकिन कांग्रेस के लोग भी जो है वो भी मानने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके की हिंसा दिल्ली में भी देखने को मिली थी, ठीक वैसे ही हिंसा, देखिए कई लोगों ने जो है हेलमेट पहन रखा है, कई लोगों ने अपना चेहरा जो है वो नकाब में ढका हुआ है, अब इसमें कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, असामाजिक तत्व है, किस तरफ है ये पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल पटना की सड़कों पर ज़बरदस्त हंगामा बरपा हुआ है, ज़बरदस्त हिंसा जो है वो देखने को मिल रही है, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त पूरा इलाका जो है वो रण क्षेत्र में जो है वो तब्दील हो गया है और रह रहकर देखिए पत्थरबाजी।
3: रोहित, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दीजिए, ये आखिर हंगामा शुरू किस वजह को लेकर हुआ, क्यों ये कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और ऐसे पथराव करने लगे, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया?
1: देखिए ये सब कुछ जो है आज बीजेपी की तरफ से पूरे देश में जो है वो धरना प्रदर्शन का जो है आयोजन किया गया है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विभिन्न राज्यों में, और कल जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने जो है वो प्रदर्शन किया था प्रधानमंत्री आवास के बाहर, उसको लेकर जो है वो नाराज़गी जो है वो सामने आ रही है, और उसी को लेकर जो है आज पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता अभी से थोड़ी देर पहले आप देखिए यहाँ पर जुटे थे कांग्रेस दफ्तर के बाहर सदाकत आश्रम पर, और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहले से ही लाठी डंडे लेकर जो हैं वो तैयार बैठे हुए थे, और अब उसके बाद देखिए देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। फिर
3: बिल्कुल देखिए, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कानून नियम कायदे सबकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, पत्थरों को एक दूसरे पर फेंका जा रहा है, और सम्राट चौधरी जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं उनको तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
5: Hexa Organic, Radiance.
7: May I have your attention, please?
8: College wasn't built for people with full-time jobs, families, and busy lives. At WGU, we built something different. Education that lets you keep living your life. Your progress is based on what you know, not time in a classroom. If you know the material, schedule, you can move faster, saving time and money. With 24/7 online access, you stay in control, able to work, care for family, and learn on your schedule. Education that moves with you, not against you. Learn more at wgu.edu.
9: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
12: somebody save me,
11: to timeless favorites,
12: life is like a song,
11: and new discoveries.
12: So much more than a history. Wake up.
11: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
12: You and

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

चर्चा की शर्तों और नियमों पर बना है गतिरोध। नियम 267 के तहत बहस को तैयार नहीं है सरकार। सभी विपक्षी दलों से मिलेंगे ओम बिरला। खड़गे ने कहा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक चर्चा नहीं। सरकार ने नड्डा को बनाया सीजेपी के साथ वार्ता के लिए नेगोशिएटर। प्रदर्शनकारियों के साथ आज हो सकती है दूसरी बातचीत। थोड़ी देर में तय होगी बैठक की जगह। रात में हुई थी वांगचुक से मुलाकात।

0: लखनऊ से पटना और जम्मू तक बीजेपी और विपक्षी दलों के प्रदर्शन का दौर। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल। खड़गे बोले, हमारे नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं। बीजेपी का जवाब, छात्रों के कंधे पर राजनीति ना चमकाएं। राजनीतिक उथल पुथल के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सुले। एनडीए के साथ जाने की अटकलों को फिर मिली हवा। तस्वीरों में पवार का हाथ पकड़े दिखे प्रधानमंत्री।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस हेक्सा ऑर्गेनिक।
0: और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। जो भी सीजेपी को लेकर हुआ, जंतर मंतर पर हुआ, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है।
2: आक्रोश लोगों के अंदर, केवल जनता विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि एक यह असफल प्रयास है। युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का मैं मानता हूं अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वह मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे।
0: तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बयान आता है, वो कहते हैं कि विपक्ष बच्चों को गुमराह कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों को गुमराह करना, विपक्ष को बंद कर देना चाहिए। ये राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि छात्रों की बात सुनना हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि छात्र भी यही चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन अभी तक उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मिल चुके हैं। पीयूष, मामला अभी शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। छात्र कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं, वो कहते हैं कि विपक्ष छात्रों को गुमराह करना बंद करे, यानी विपक्ष पर पूरा आरोप।
3: जी बिल्कुल हिमांशु, सरकार ने साफ कह दिया है कि जो पूरा मामला चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। आज हमने बीजेपी के कई नेताओं से बात की। निशिकांत दुबे ने तो ये तक कहा कि राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन चीन जैसे देशों के साथ मिलकर देश को तोड़ने की एक साजिश कर रहे हैं। वही दूसरी ओर अभी अभी हमने राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है उनका भी बयान सुना। वो उनका साफ ये कहना है कि छात्रों को लेकर जो उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई दोहराई नहीं है मानसू कि सरकार ने सभी दरवाजे खोले हैं। सरकार ने चाहे सीजेपी के लोग हो या विपक्ष के जो सांसद हैं वो हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो, इन सभी से बातचीत करने की कवायद शुरू की। कल जितेंद्र सिंह गए भी थे, राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन राहुल गांधी जिनकी मांग पहले ये थी कि इस पूरे मुद्दे को लेकर संसद में चर्चा हो, जब सरकार ने ये मांग मान ली तो राहुल गांधी ने अपनी मांग बदल दी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो सरकार का ये साफ साफ मानना है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है और सरकार सभी पक्षों से बात करने के लिए तैयार है। और शायद यही कारण है कि कल देर रात मुलाकात करने के लिए गए थे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। उनकी मुलाकात सोनम वांगचुक से हुई और सोनम वांगचुक को बताया गया सरकार की तरफ से कि हम ना सिर्फ सदन में इसको लेकर चर्चा कराने के लिए तैयार है बल्कि एजुकेशन रिफॉर्म्स भी लाने के लिए तैयार है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। देखना होगा कि कब तक विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ा रहेगा।
0: शुक्रिया पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। पेपर लीक, छात्रों का जो हंगामा हुआ उसके साथ ही प्रदर्शनकारियों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष चाहता है कि नियम 267 यानी 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए संसद में। सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है और सरकार अभी इस पर स्पष्ट सरकार का जवाब नहीं आया कि 267 के तहत चर्चा होगी कि नहीं होगी, लेकिन खड़गे कह रहे हैं कि 267 के तहत हम चर्चा करना चाहते हैं, राज्यसभा में नियम 267 पर चर्चा संभव नहीं है, ये हरिवंश जी की तरफ से कहा गया। असाधारण स्थिति में 267 पर चर्चा संभव है, असाधारण स्थिति पर, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। पेपर लीक पर चर्चा को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हो रहा है और क्या मांग की गई वो हम आपको सुनवाते हैं।
4: मांग रखने का सवाल नहीं है, हमने जो नोटिस दिया है 267 में उस पर चर्चा हो और चर्चा के लिए वो अनुमति दे, तो हमने पूछा, वो बोले कि नहीं 267 में हम दे नहीं सकते, अगर किसी और रूल्स में अगर आप चर्चा चाहते हैं तो वो करवाएंगे इस पे नहीं। तो हम बोले उसका महत्व तो चले जाएगा, 267 इसका मतलब ये है कि जैसा कि लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन होता है यहाँ पर ऐसा ही होता है, उसका महत्व तो इसके लिए हम डट के लड़ रहे हैं 2-3 दिन से, अब तुम अगर इसको बदल लो ये इम्पॉसिबल है। और आज तो इतने राहुल जी को आपने अपमान किया, प्रियंका जी को आपने जिस ढंग से उनको बिहेव करना चाहिए, किसी महिला को आप रात के 9 बजे तक पुलिस स्टेशन में बिठा के नहीं रख सकते,
5: जी जी।
4: और अपोजिशन लीडर को साथ जो मिस भी हो कि आपकी पुलिस के ये खंडनीय है।
6: सरकार ने आज पार्लियामेंट सदन में कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो ये ठीक नहीं है। चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए।
0: देखिए विपक्षी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आज काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंची और विरोध जताया, प्रियंका गांधी की तरफ से भी सरकार पर सवाल उठाए गए और कहा गया छात्रों के साथ जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है।
7: 10 घंटे के लिए तो हमने वंदे मातरम पर चर्चा की, अब फिर से वंदे मातरम की जो बिल निकाल रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो हम इस विषय पे एडजर्नमेंट मोशन पे चर्चा क्यों नहीं कर सकते, लंबी चर्चा ठीक ढंग से क्यों नहीं हो सकती, ये पूछिए आप सरकार।
8: जंतर मंतर आप लोग जा रहे हैं,
9: आप देखिए कि
10: यहाँ पे आप देखिए प्रियंका गांधी बात करते हुए निकली है और कह रही है कि इस पूरे मसले पे हम चर्चा की मांग क्यों नहीं कर सकते हैं, पूरी चर्चा होनी चाहिए। तो एक तरीके से अब ये साफ हो गया है कि विपक्ष कह रहा है कि एडजर्नमेंट नोटिस जो दिया गया है सारा कामकाज सदन का रोक के इस पूरे मसले पर चर्चा हो, फिर उसके बाद ही बात आगे बनेगी। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
11: यहाँ पे आप लगातार लोकसभा अर्जन पे अर्जन होता चला जा रहा है और प्रियंका गांधी और तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं, विपक्ष के सांसद काला कपड़ा तो पहन के आई है, उसके साथ ही लगातार ये मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इसको लेकर भी राहुल गांधी 4 बजे प्रेस वार्ता करने वाले हैं और उससे पहले।
0: देखिए ये बात बहुत स्पष्ट है कि सरकार डैमेज कंट्रोल प्लान में जुटी हुई है और हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े लोग अब जिसमें अमित शाह भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, ये भी जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई बात निकल नहीं पा रही कि कोई रास्ता बन जाए और जो डैमेज कंट्रोल किया जाए।
12: जो मांग अब तक दबी जुबान में हो रही थी वो अब बुलंद होने लगी है। विपक्ष कह रहा है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इस्तीफे से कम पर कोई बात नहीं होगी।
5: संसद के मकर द्वार पे जोरों शोरों से इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन करने वाले हैं सारे विपक्षी नेता। अखिलेश यादव की बात करें तो वो इस समय काले कपड़ों के अंदर पहुंचे हैं, राहुल गांधी खड़े हैं काले कपड़ों के अंदर, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हैं, और ये सब बड़े जितने भी विपक्षी नेता हैं वो सब एकजुट हैं, एक साथ हैं और खड़े हैं पीछे और बोल रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं, जो एक अहम मांग है वो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। वो सभी लोग यहाँ आपको पीछे नजर आएंगे।
12: तो अब ये लड़ाई सीधी सीधी है, विपक्ष के निशाने पर सीधे सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और सरकार इसी की काट तलाशने में लगी है। विपक्ष एक्शन में है तो पर्दे के पीछे सरकार भी कम एक्टिव नहीं है। बैठकों का दौर सत्ता के गलियारे में भी खूब चल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा स्पीकर से मिले, खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी लोकसभा स्पीकर से मिले। एक बैठक जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और नितिन नवीन की हुई। जितेंद्र सिंह भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले और फिर सबसे बड़ी बैठक अमित शाह के घर पर नड्डा, जितेंद्र सिंह, नितिन नवीन की हुई।
8: गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, जेपी नड्डा मौजूद रहे। सूत्र ये बताते हैं कि इस बैठक में चर्चा की गई कि आगे की रणनीति कैसे होगी और कैसे प्रदर्शनकारियों से आगे सरकार बातचीत करने जा रही है।
12: जाहिर है सत्ता पक्ष में खलबली है। पहले छात्रों का प्रदर्शन और फिर राहुल गांधी का औचक धरना और तीसरे दिन भी विपक्ष की संसद में मोर्चाबंदी। चुनौती बड़ी है। सरकार की रणनीति है कि छात्रों से संवाद के दरवाजे हमेशा खुले रखे जाएं। जेपी नड्डा प्रदर्शनकारी छात्रों से बात कर रहे हैं लेकिन बीच में विपक्षी दलों के कूद जाने से मामला पेचीदा हो गया है।
13: जबरदस्ती बैठ जाएंगे और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर मुकर गए कि मेरी मर्जी, ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा, आप ही की उद्दंडता से चलेगा।
14: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है।
12: बीजेपी विपक्ष के हमलों का आक्रामकता से जवाब दे रही है लेकिन गतिरोध खत्म करने की भी शिद्दत से कोशिश हो रही है। लोकसभा स्पीकर तमाम दलों के नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। सहमति बनी तो कल ही संसद में नीट के सवाल पर चर्चा कराई जा सकती है। हिमांशु मिश्रा के साथ पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: और देखिए जयपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है और इसके साथ साथ पटना में भी प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त आ गए हैं। पटना से वो तस्वीरें भी आपने देखी थी किस तरह के हालात हुए थे, तो जयपुर से हमारे सहयोगी शरद वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। झंडा लेकर बीजेपी कार्यकर्ता निकले हुए हैं तो पटना से शशि भूषण भी उनके पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले शरद जरा बताइए कि किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं प्रदर्शन की। शरद जरा तस्वीरें बताइए कि प्रदर्शन किस तरह से बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्या हालात है वहाँ? चलिए अभी लगता है शरद तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आप देखिए कि एक बहुत लंबा मार्च बीजेपी की तरफ से निकाला जा रहा है। हाथ में बीजेपी के झंडे हैं, महिला पुरुष कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और कांग्रेस को लेकर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। जयपुर हो, दिल्ली हो, पटना हो, अब देश में धरना वर्सेस धरना, प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और जमकर पॉलिटिक्स की जा रही है। ये जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का फॉर्मूला अहंकार टकराव, तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, किस तरह से प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, बताइए।
15: आप जिस व्यक्ति,
0: चलिए अभी अभी बातचीत नहीं हो पा रही है लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझेंगे। ये देखिए, भड़काव टकराव अराजकता, भड़काव प्लस टकराव इजिकल टू अराजकता, ये कांग्रेस की तरफ से ऐसे पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और कल जो हुआ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन हुआ था उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जयपुर की तस्वीरें आपने देख ली, अब आपको लिए चलते हैं पटना। शशि भूषण हमारे सहयोगी मौजूद है और कुछ वक्त पहले तो यहां पर लाठियां चल रही थी, पत्थर चल रहे थे, अभी क्या हालात है शशि वहां?
16: देखिए पुलिस पहुंची है
3: और एक गतिरोध की स्थिति या जो लाठी और रोड़ेबाजी की स्थिति वो अभी कंट्रोल में है। देखिए कांग्रेस के लोग हैं उनको भी पीछे पुलिस लेकर के जा रही है, लगातार समझाने बुझाने की कोशिश है क्योंकि उनके हाथ में भी डंडे हैं, लाठियां हैं। रण क्षेत्र बना हुआ है ये पूरा दीघा सुरजी का इलाका, यहाँ पर देखिए गुत्थम गति पुलिस के साथ हो रही है। और दूसरी तरफ भी आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए आगे की तरफ, और एक बार सड़क चला जरा देखिए हिमांशु दर्शक, देखिए हर जगह रोड़े नजर आ रहे हैं, तमाम वो बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं जो बीजेपी के लोग लेकर के आए थे, अब वो पोस्टर नीचे है, कहीं कांग्रेस का झंडा है कहीं बीजेपी का झंडा है, और अब एक तरफ पुलिस का एक जो खेमा है ना वो दूर तक लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के गया है। लेकिन दरअसल हुआ क्या, थोड़ी पूरी कहानी पूरी पटकथा आपको बताते हैं। ये सनातन आश्रम इसी सड़क पे है जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है। 1 बजे कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और कल जो घटना हुई दिल्ली में राहुल गांधी के साथ जो हुआ उसको लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात रख रहे थे। दूसरी तरफ जो बीजेपी ने, राहुल गांधी ने जो किया प्रधानमंत्री आवास का घेराव, उसके खिलाफ बीजेपी ने प्रोटेस्ट रखा 1:45 पे। नतीजा ये हुआ कि जब बीजेपी के लोग यहाँ पहुंचे तो कांग्रेस के लोग भी सामने आ गए और पुलिस की मौजूदगी रही। लेकिन आप देखिए जो स्थिति है, कांग्रेस के युवा के कार्यकर्ता लगातार यहाँ मौजूद रहे और ये देखिए जो तमाम नेता कांग्रेस के वो यहाँ मौजूद रहे और सदाकत आश्रम के बाहर रण क्षेत्र की स्थिति रही। और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद यहाँ मौजूद है।
0: ठीक है, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास, दोबारा आ जाऊंगा आपके पास शशि। अब जयपुर का रुख कर लेते हैं, शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद बताइए वहां क्या हो रहा है।
16: देखिए हिमांशु मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं, इस तरह से पहली बैरिकेडिंग को तोड़ दिए हैं और ये कूच कर रहे हैं कांग्रेस दफ्तर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर यहां पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहली बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अब कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर पुलिस ने बड़ी बैरिकेडिंग कर रखी है। इन सबका यही आरोप है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री निवास का घेराव किया है, कल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में डाली है, इसे लेकर यहां पर ये सड़क पर निकले हैं। तो कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, क्या क्या परेशानी है आप लोगों को?
17: सर जिस हिसाब से इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी जैसा कृत्य कर रही है, एक विपक्ष का नेता राहुल गांधी जी, एक हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आवास पर जाके धरना देते हैं, उनका अशोभनीय है, उनको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए।
16: ये मानसो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कार्यकर्ता जो लगातार बढ़ रहे हैं कांग्रेस दफ्तर की तरफ और वहां पर पुलिस की भारी बैरिकेडिंग आगे की गई है जहां पर इन्होंने ऐलान किया है कि हम घेराव करेंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर बैठे हुए थे, और इसे लेकर यहां पर जयपुर की सड़कों पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे जो लगातार कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। हालांकि पुलिस ने बड़ी बैरिकेडिंग कर रखी है मगर ये इस तरह से आपको सड़क पर दिखाई देगा किस तरह से बड़ी संख्या में ये बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो सारे सड़क पर निकले हुए हैं और लगातार इस तरह से नारेबाजी करते हुए निकल रहे हैं बहुत सारे। आप लोग क्या क्या नाराजगी है आप लोगों को?
18: ये कॉकरोचों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रही है वो तो सरासर गलत है और देश विरोधी ताकत है, विदेशों से फंडिंग हो रही है उसको।
16: राहुल गांधी से क्या समस्या है?
19: राहुल गांधी से कोई समस्या नहीं है। राहुल गांधी ने जब पूरे देश के लिए ये बात बोली कि भाई हम जैन जी को भड़काना चाहते हैं, केजरीवाल ने राहुल गांधी दोनों ने
0: दोबारा आऊंगा शरद आपके पास, लेकिन अभी पटना चलते हैं। शशि भूषण हमारे साथ बने हुए। शशि आप दिखा रहे हैं कि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया यहां पर जो पथराव हुआ था कार्यकर्ताओं के बीच।
3: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक गाड़ी है कांग्रेस के नेता की गाड़ी है जो यहाँ लगी हुई थी सदाकत आश्रम बिल्कुल पास में, और देखिए इनकी गाड़ी का क्या हाल हुआ है और क्या उस समय दृश्य रहा होगा, इस बात को समझा जा सकता है। हिमांशु जो दिल्ली में घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम बहुत तेजी से आज पटना में आकर के पहुंचा है, और कांग्रेस के नेता है प्रेमचंद जी, ये आप ही की गाड़ी है प्रेमचंद जी?
20: बिल्कुल मेरे नाम से मेरी गाड़ी है और जैसे हम यहाँ से निकल रहे थे देखे कि अचानक भाजपा के 150 के करीब में कुछ लाठी डंडा लिए हुए गुंडिया आए और ताबड़तोड़ बिना पूछे कहे उन्होंने कि मार ये कांग्रेस का है।
21: चोट भी लगी आपको?
20: चोट लगा, हमने लाख रुपए किया उसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ी को तोड़ा।
21: एक बात, राजनीति ऐसे तो होती नहीं है, तो ये आखिर कैसे?
20: नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आप कार्यकर्ता पहले हैं कि गुंडा? अमित शाह जी, आप पुलिस वालों को सबसे पहले इशारा कराए हैं
22: कि पुलिस वाला यदि चाहता तो इस तरह से भाई वैकेशन नहीं होता।
21: तो ये नर क्षेत्र बन गया मतलब कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के बीच।
20: राहुल गांधी के पापा सेंटर के रहे सर।
21: ये देखिए एक बार हिमांशु से फिर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि कैसे रण क्षेत्र में तब्दील रहा ये पूरा इलाका, जो तमाम कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो एक दूसरे के सामने रहे और किसी ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरह की स्थिति होगी। दो बड़े राष्ट्रीय दल उनके कार्यकर्ता, देखिए पटना में आज सुबह से हंगामा हुआ है, हमने देखा आयशा का प्रदर्शन था वहां पर भी बहुत हंगामा हुआ और अब कांग्रेस के वर्कर सड़क पे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, निशाने पे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, वो नेता है जो आज यहाँ पहुंचे थे प्रोटेस्ट के लिए। और एक बार सनाकर आश्रम के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, देखिए सनाकर आश्रम के अंदर की तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको। और राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, राजेश राम जी हमारे साथ हैं, सीधे लाइव राजेश राम जी को हम लेते हैं। राजेश जी आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, थोड़ा सा करीब बजे थोड़ा सा प्रेस क्या बैठी, क्या मतलब अचानक से यहाँ प्रदर्शन इस तरह सा अचानक हो गया?
0: आपकी आवाज नहीं आ पा रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ आप देखिए कि कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है, पटना हो अलग अलग जगह पर, राजस्थान में भी वो प्रदर्शन किया गया, लखनऊ में भी प्रदर्शन किया गया और यहाँ वक्त उछला है बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देख रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
23: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
24: Hanging out at the pool is great. Relaxing and playing Vegas-style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games, including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
25: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
26: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
27: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
28: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
29: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
23: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: द दिल्ली पुलिस के मुताबिक कल रात 9 बजे कनॉट प्लेस के पास पुलिस और आरएएफ जवानों को हुड़दंगियों ने निशाना बनाया, उन पर पथराव किया, उनकी लिंचिंग करने की कोशिश की गई है। और दिल्ली में बीएनएस की धारा 163 लागू है मानसून सत्र के चलते, ऐसे में वहां हुड़दंगी कैसे पहुंचे, 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, इतनी भीड़ वहां पर कैसे पहुंची, ये सवाल खड़े हो रहे हैं।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
23: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
27: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
28: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads, like this one, and score more of the content you love. That's more curated news.
5: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
4: More top sports.
6: And he's gonna go! There's the tying goal!
4: And everything in between.
6: This game is over!
4: Upgrade now for the premium listening experience.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach Hexa Organic Radiant Skin and Nourished Hair Pure Ayurvedic Beauty
7: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
8: Right now, lease a 2026 Subaru Outback for 1.9% for up to 72 months.
7: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
8: Offer ends 7/30/126. See dealer for details.
29: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
9: Oh yeah!
29: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
27: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
28: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
11: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
10: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
13: स्पीकर पे स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है मतलब आप समझिए स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट He has to take permission from the government. He's openly telling us that. ठीक है देखिए issue students की है youth के future की है और ये जो किया जा रहा है लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज टू एग्जिस्ट।

पेपर लीक और राहुल के धरने के विरोध में पूरे देश में शुरू हुआ प्रदर्शनों का दौर। दिल्ली से लेकर पटना, लखनऊ, जयपुर और अहमदाबाद में सड़कों पर लाठी डंडे और पत्थर, कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी का हल्ला बोल। चर्चा की शर्तों और नियमों पर बना है गतिरोध। नियम 267 के तहत बहस को तैयार नहीं है सरकार। सभी विपक्षी दलों से मिलेंगे ओम बिरला। खड़गे ने कहा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक चर्चा नहीं होगी। सरकार ने नड्डा को बनाया सीजेपी के साथ वार्ता के लिए नेगोशिएटर। प्रदर्शनकारियों के साथ आज हो सकती है दूसरी बातचीत। थोड़ी ही देर में तय होगी बैठक की जगह। रात में हुई थी वांगचुक से मुलाकात। राजनीतिक उथल पुथल के बीच में पीएम मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सुले। एनडीए के साथ जाने की अटकलों को फिर मिली हवा। तस्वीरों में पवार का हाथ पकड़े दिखे पीएम। अयोध्या में थोड़ी देर बाद शुरू होगी ट्रस्ट की अहम बैठक। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर हो सकती है चर्चा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी समीक्षा संभव।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सोनम वांगचुक से जानकारी मिल रही है कि ऑपोजिशन के लगभग 50 लीडर्स मुलाकात करने वाले हैं। गुरुग्राम में वेदांता हॉस्पिटल में वो अभी भर्ती हैं। कल बीजेपी की तरफ से दो सीनियर लीडर्स गए थे मुलाकात करने के लिए, दो मंत्री गए थे मिलने के लिए, और अब आज वांगचुक से विपक्ष के नेता मिलने वाले हैं। ये विपक्ष के 50 सांसद बताया जा रहा है कि मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता राहुल गौतम इस खबर पर हमारे से जुड़ गए। राहुल, क्या खबर है, ये कौन से दलों के नेता है जो मिलने जा रहे हैं, और क्या हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं या कुछ और वजह है मिलने की?
1: देखिए, इसमें कई दल शामिल हैं। इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हस्ताक्षर किए गए हैं। जो डेलीगेशन जाएगा, दरअसल वो चिट्ठी लेकर जाएगा सोनम वांगचुक के लिए। बताया जा रहा है कि 50 सांसदों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें लेफ्ट की जो पार्टीज हैं वो भी शामिल हैं। तमाम जो ये विपक्षी दल हैं वो इसमें शामिल हैं, और वो जाकर आग्रह करेंगे सोनम वांगचुक से कि वो आप अपनी जो भूख हड़ताल है जो उन्होंने जारी रखी हुई है उसको खत्म कर दें। और जाहिर है जो तमाम जो मुद्दे हैं छात्रों से जुड़े हुए उसको लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर सरकार को कैसे मनाया जा सकता है। सोनम वांगचुक ने भी पहले कहा था कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स मेरे पास आकर मुझे ये एश्योरेंस दे, जैसे कि कल जेपी नड्डा और अन्य लोग सरकार की तरफ से मिलने के लिए गए थे, तो मैं अपना जो अनशन है उसको मैं खत्म कर दूंगा। तो कुल मिलाकर आप ये मान सकते हैं कि पहले पक्ष के लोग गए, सरकार के लोग गए, और अब विपक्ष के लोग भी जा रहे हैं। आप देखिए, पिछले 48 घंटे से विपक्ष हाइपर एक्टिव हो गया है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, जब से हिंसा देखने को मिली है दिल्ली के अंदर। और वो लगातार ये मैसेजिंग कर रहा है कि देखिए, हम सोनम वांगचुक के साथ में खड़े हैं, छात्रों के मुद्दों के साथ खड़े हैं, और सरकार से जवाबदेही तय कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जब ये डेलीगेशन सोनम वांगचुक से मिलेगा, ना सिर्फ वो आग्रह करेगा कि आप अपनी जो हड़ताल है बुकर उसको उसको उसको बंद करिए, क्योंकि

इन मुद्दे पर चर्चा को सरकार है तैयार। किरण रिजिजू जो बोले, नियमों के तहत ही हर दल से बातचीत करके चर्चा होगी। जनता मंत्र पर प्रदर्शन को लेकर मचे बवाल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान कि हम छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार हैं, विपक्ष गुमराह कर रहा है। संसद में मचे हंगामे के बीच टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी पूरे सत्र के लिए निलंबित, महिला सांसदों पर अभद्र भाषा के गंभीर आरोप में कार्रवाई। अखिलेश यादव बोले कि यह किसी पार्टी का नहीं छात्रों का मुद्दा है, मजबूरी में जाना पड़ा प्रधानमंत्री आवास, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। दिल्ली में जारी बवाल के बीच नया सियासी हलचल, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला, पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन को बताया सुरक्षा और गरिमा का उल्लंघन। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार का बयान, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले कि दोषियों पर कार्रवाई हुई है, पूरी प्रक्रिया उसके बाद पूरी की गई। दिल्ली पुलिस कार्रवाई पर रविशंकर प्रसाद का बयान कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्शन जरूरी था। जयराम रमेश ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, एनटीए की कार्यप्रणाली और परीक्षा विवादों को लेकर आरोप लगाए। नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक पर कांग्रेस का हमला, जयराम रमेश बोले कि एनटीए की लगातार विफलता कई पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने का दावा। राहुल गांधी के प्रदर्शन पर सरकार का पलटवार, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को बताया राजनीतिक, नीट मुद्दे पर संसद में चर्चा को तैयार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, संसद के मकर द्वार पर काले कपड़ों में जुटे सांसद, नीट यूजी अनियमितताओं का मुद्दा उठा। राहुल गांधी के पीएम आवास के प्रदर्शन पर बीजेपी का देश भर में विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी का आरोप। दिल्ली सीजेपी प्रदर्शन मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज, संसद मार्ग समेत 5 थानों में दर्ज हुए हैं केस। दिल्ली पुलिस का फैक्ट चेक, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के दावे का खंडन किया, पुलिस ने लोगों से अपुष्ट जानकारी साझा न करने की भी अपील की। सुरक्षा कारण से मध्य दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय पर सिर्फ इंटरचेंज की ही सुविधा उपलब्ध, एंट्री एग्जिट बंद। पटना में आए से प्रदर्शन कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पुलिस से जा भिड़े। पटना में जेपी गोलंबर पर आए से प्रदर्शनकारियों और पुलिस सामने सामने आए, प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। मुंबई के आजाद मैदान में एमएनएस का प्रदर्शन, नीट को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध। मणिपुर में भी कांग्रेस ने राहुल गांधी को हिरासत में लेने का विरोध किया, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जेपी नड्डा की आवाज पहुंचे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के घर पर एक मुलाकात हुई। केरल में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का मार्च, आज पीएम आवास प्रदर्शन के विरोध में केपीसीसी दफ्तर तक मार्च निकलेगा। नीट प्रदर्शन पर बीजेपी का कांग्रेस विपक्ष पर पलटवार, बांसुरी स्वराज बोले कि सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन की अनुमति दी। नीट मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार, अमित मालवीय बोले कि विपक्ष सदन चलने दे, बहस में शामिल हो, गतिरोध खत्म करें। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कहा कि हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास देखने का समय नहीं है। काले कपड़े पहनकर विरोध में अखिलेश यादव दिया बयान, कहा कि काला रंग विरोध का और दुख का प्रतीक है, सरकार को डर लग रहा है। नीट मुद्दे पर अखिलेश यादव का सवाल, सरकार आखिर मंत्री को क्यों नहीं हटा रही, कोई बात छिपाने के लिए तो नहीं हो रही है, कार्रवाई से परहेज क्यों है। नीट विवाद को लेकर इटावा में विपक्ष का प्रदर्शन तेज, कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन। लखनऊ में सपा कार्यालय में डिंपल यादव के छात्र समर्थन प्रदर्शन के पोस्टर्स लगाए गए हैं, छात्रों के मुद्दों को लेकर एसपी ने संघर्ष को प्रमुखता से दिखाया है। जौहर विश्वविद्यालय मामले को लेकर एसपी का बड़ा कदम, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में रामपुर जाएगा कल एक प्रतिनिधिमंडल। सीएम योगी आज से 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं, वहां पर बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं को देंगे चुनावी मंत्र। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, तुलसीपुर मंदिर परिसर की गौशाला का किया दौरा, गाय को खिलाई रोटी, अधिकारियों को दिशा निर्देश। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की आज इंपॉर्टेंट बैठक, महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर हो सकती है चर्चा, एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी समीक्षा संभव। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद से ट्रस्ट ने बदली व्यवस्था, 349 कर्मचारियों की स्क्रीनिंग शुरू, पुराने 36 कर्मचारियों की भूमिका कर दी गई खत्म। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच तेज, 8 आरोपियों और लगभग 50 रिश्तेदारों की संपत्तियों का मांगा गया ब्यौरा, 10 जिलों में पड़ताल। सिक्किम में लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 20, 5 लोग फंसे हुए, बचाने की कोशिश जारी।
पीएम मोदी ने हादसे पर गहरा दुख प्रकट करते हुए प्रभावित मजदूर और उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट की। हर

0: हर मदद का भरोसा। राहत और बचाव अभियान पर सीएम तवांग की लगातार नजर है। बचाव कार्य में जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साहस की तारीफ की। नामची जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और दूसरे संबंधित विभागों के साथ मिलकर लगातार चल रहा ऑपरेशन। टनल दुर्घटना की वजह का पता लगाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया गया। मृतक के परिवार वालों के लिए 4 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मुआवजा राशि का ऐलान। असम में बाढ़ से भयंकर तबाही, बीते 24 घंटों में 21 और लोगों की मौत। राज्य के 16 जिलों में 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा प्प्रभावित शिव सागर में 13 लोगों की मौत हुई है और चराई देव में 5, गोलाघाट में 2 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की जान गई है। और इसके साथ ही इस साल राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब तक 31 हुई। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा आज बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करके राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। राज्य में फिलहाल 71 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। असम में आए भीषण बाढ़ के बीच में भारतीय सेना ने आपदा राहत एवं मानवीय सेवा का परिचय देते हुए अब तक 571 लोगों को सुरक्षित बचाया। ऑपरेशन जल राहत के तहत एक्शन। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के चलते अचानक आए बाढ़ से अब तक 17 लोगों की मौत। राज्य में बचाव कार्य जारी। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 36 घंटों के लिए भारी बारिश की संभावना जताई। राजौरी, पुंछ, गुरेज, कारगिल, तंगमार में लोगों से सतर्क रहने की अपील। राजौरी में सेना के जवानों ने तेज बहाव वाले नाले में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित निकाला। रस्सी के सहारे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की बचाई गई जान। बड़गांव में बीर वहां बाजार में फ्लैश फ्लड से कहर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहां कैमरे में कैद भयानक मंजर। गुजरात में बारिश का असर, डांग में बाढ़ जैसे हालात, घरों, दुकानों और बाजारों में घुसा बारिश का पानी, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। गुजरात के डांग में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की। बिहार के सहरसा में बाढ़ से भयानक स्थिति है। कोसी नदी लगातार उफान पर है, कई इलाके जलमग्न। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं शिक्षक। धर्मशाला की बोह घाटी में बारिश का कहर दिखा, भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित, कई क्षेत्रों को नुकसान। चंबा में रावी नदी के बीच में फंसे हुए व्यक्ति का रेस्क्यू टीम ने किया और सुरक्षित निकाला गया बाहर। बारिश, भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा पर भी ब्रेक, रुद्रप्रयाग में सुरक्षा के मद्देनजर रोकी गई यात्रा। लगातार बारिश से अमरनाथ यात्रा स्थगित हुई, खराब मौसम के चलते श्रद्धालुओं की आवाजाही फिलहाल रोकी गई। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच में दारमा घाटी में भारी भूस्खलन। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क खोलने के काम में आ रही है बाधा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर कई जगहों पर भारी बारिश के कारण पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने की घटनाएं। हालात सुधरने तक हाईवे को बंद करने का ऐलान है। प्रशासन ने हाईवे पर फंसे ट्रक ड्राइवर्स को सुरक्षित जगह पर गाड़ी करने के लिए खड़ी करने के लिए कहा है। यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बरसात का कहर, पेड़ गिरने से पठानकोट, मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, जनजीवन भी प्रभावित। उत्तराखंड के चमोली में मानसून के बीच में भी ट्रैकिंग का रोमांच चरम पर। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। कांवड़ यात्रा को लेकर झांसी प्रशासन अलर्ट पर है, तैयारियां थे। 70 किलोमीटर के रूट पर 70 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सहारनपुर मीट प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव, 14 कर्मचारी बीमार, प्रशासन टीम मौके पर। बिजनौर में बेटे ने मां की हत्या की, मुआवजे के लिए रची साजिश, गुलदार के हमले की बताई कहानी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का राज खुला। नोएडा में 2 करोड़ की कैंसर रोधी दवाइयां बरामद, सेक्टर 76 के फ्लैट में अवैध दवा कारोबार का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। मऊ में पुलिस मुठभेड़ में वांछित आरोपी घायल हुआ, गिरफ्तार। गौवंश वध मामले में इस आरोपी की तलाश थी। पुणे में खूनी वारदात, पुराने रंजिश में नाबालिग पर धारदार हथियार से निर्ममता से हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा सेक्टर 44 में चलती टाटा सफारी में लगी आग, चालक ने कूद कर बचाई जान। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पति ने अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या की, सुसाइड वीडियो में पत्नी और उसके परिवार को तंग न करने का भी आरोप। हरदोई में लीकेज की मरम्मत करते समय तेज दबाव में हादसा, पानी की टंकी का वॉल फट गया, बाल बाल बचे ऑपरेटर की जान। मैसूर में खौफनाक वारदात, पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करके व्यक्ति ने खुद भी फांसी लगा ली। हल्द्वानी में पानी की टंकी के लेंटर के शटरिंग खोलते समय हादसा हुआ, एक ही परिवार के 3 लोगों की दम घुटने से मौत। उत्तर प्रदेश के औराई में दर्दनाक हादसा। टीबी मरीज पत्नी की मौत का सदमा, पति नहीं सह सका, अंतिम संस्कार के दौरान हार्ट अटैक से गई जान। गुजरात के दाहोद में एसी रिपेयर करते समय करंट लगने से 20 साल के युवक की दर्दनाक मौत। इलाके में भारी कोहराम के साथ मातम का माहौल। गोड्डा में मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर गोली लगने से घायल, पुलिस का दावा, पहले बदमाश ने फायरिंग की थी। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर डीजल टैंकर में लगी भीषण आग, चलते समय टायर फटने के बाद हादसा। भारतीय नौसेना को मिला स्वदेशी युद्धपोत मालवाहक मालवन। कर्नाटक के कारवार में हुआ भव्य समारोह, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह की मौजूदगी में कमीशन हुआ। भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन का एक बेहतरीन उदाहरण है वॉरशिप मालवन, और इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी पुर्जे और तकनीक का इस्तेमाल हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे गानों पर सहारनपुर पुलिस का शिकंजा, पेनड्राइव की अब होगी जांच, केवल मंजूर किए गए भक्ति गीत ही बजाने की इजाजत होगी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में प्रशासन ने कांवड़ मेला की तैयारियों को देखा, श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम करने के निर्देश। 30 जुलाई से लगने वाले देवघर श्रावणी मेले की तैयारियां जारी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। अगले महीने होने वाली एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 मेंबर्स की भारतीय टीम का ऐलान, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होंगे मुकाबले। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान, डिफेंडर अमनदीप लाकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल, रविचंद्र सिंह मोयरांगथेम और फॉरवर्ड सेल्वम कार्थी टीम से बाहर। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगी अपना अभियान, 19 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला। 23 जुलाई से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच में 3 मैचों की टी20 सीरीज, आयरलैंड और इंग्लैंड से टी20 सीरीज हारने के बाद अभी सीरीज अहम हुए। बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट और भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए जारी किया है टेंडर, अगस्त में खत्म हो रहा है मौजूदा स्पॉन्सर का करार। बिग बॉस 20 का नया लोगो हुआ आउट, बिग बॉस 20 में सलमान का फर्स्ट लुक भी सामने आया। गुरु पूर्णिमा से पहले प्रेमानंद के आश्रम में पहुंचे विराट, अनुष्का वृंदावन में लिया आशीर्वाद, आध्यात्मिक यात्रा ने खींचा ध्यान। विजय की फिल्म जननायकम ने रिलीज होने से पहले शानदार कमाई कर ली, फिल्म ने अब तक 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, 6 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। फिल्म द इंडिया स्टोरी का नया पोस्टर रिलीज, फिल्म में काजल अग्रवाल, श्रेयस्थल पड़े का अहम रोल, शुक्रवार को फिल्म होगी रिलीज। ओटीडी पर दस्तक देगी फूलन की कहानी, अनुराग ठाकुर, विक्रम प्रताप सिंह, आकाश दहिया, प्रतीक पचौरी और देवदत्त बोधोलिया की अहम भूमिका में दिखेंगे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
0: अब बड़ी खबर आपको देते हैं, संसद में अखिलेश यादव को बोलने का मौका नहीं मिलने पर आज बवाल हुआ है। अखिलेश यादव ने इशारों में कांग्रेस और सरकार के बीच में समझौते का आरोप भी मढ़ दिया। हालांकि बाद में आज तक से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि सदन में कई बार ऐसा हो जाता है, कांग्रेस के साथ फ्लोर पर तालमेल जारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल छात्रों के साथ बर्बरता का मुद्दा है, न कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। ये अखिलेश यादव ने कहा, उन्होंने कहा कि इस्तीफे की मांग तो पहले दिन से ही कर रहे हैं।
2: सर, पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव को गुस्सा क्यों आया?
3: नहीं, ये कोई सवाल नहीं है, अपनी बात कहने के लिए गुस्सा होना चाहिए।
2: आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार राजी होगी, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं नीट के मसले को लेके, आपने कहा कि
3: स्वीकार करना चाहिए और इस्तीफा कोई, जब पूरा देश युवा मांग रहा है इस्तीफा और तुमने खुद स्वीकार की, खुद परीक्षा दोबारा परीक्षा की है, तो इसका मतलब आपने खुद गलती मानी है ना, खुद गलती मानी है कि आपकी परीक्षा गड़बड़ हुई है।
2: पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस्तीफा पहले कर रही है और आपने कहा ना कि इस्तीफा तो होता रहेगा।
3: नहीं नहीं, इस्तीफा क्योंकि आज जब बात होनी है, जो पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का व्यवहार छात्र नौजवानों के साथ था
2: जी।
3: और राहुल जी के साथ, हमारे साथ, हमारे सांसदों के साथ क्या व्यवहार था पुलिस का, पुलिस कपड़े फाड़ रही थी, पुलिस की पड़ी, तो वो बात भी तो आए सदन में। और इस्तीफा के लिए तो हम पहले दिन से रुके हुए हैं, छात्रों की मांग हो पूरी, हम वो चाहते हैं कि इस्तीफा दे सकते।
2: अखिलेश जी, आप संसद में कह रहे थे कि मुझे बोलने दिया जाए, काफी शोर हो रहा था उस समय और विपक्ष की तरफ से ही नारे लगाए जा रहे थे जब आप बोल रहे थे। कई बार आप कांग्रेस के लिए रुके हैं, राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, उसके लिए खड़े भी हो रहे हैं।
3: ये फ्लोर कोऑर्डिनेशन में कभी कभी होता है, वो हम लोग बातचीत से रास्ता निकालते
2: हैं। मैं भी हुई थी,
3: कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है, फ्लोर कोऑर्डिनेशन नहीं फ्लोर कोऑर्डिनेशन फिट की हो जाएगा।
2: डील का
3: अगर जो कमी होगी वो दूर होगी।
2: डील की ओर आपने इशारा किया कि डील हो गई है क्या? आपने गुस्से मतलब कि बोला भी उस समय किसके लिए कह रहे थे?
3: हम अगर नहीं बोल पाएंगे तो मैं क्या मानूं? मैं किसको दोषी ठहराऊंगा? अपने साथी को, सरकार को, किसको?
4: अगले साल एक एक
3: बहुत हो गया।
2: कांग्रेस जैसे पार्टनर आपको लगता है कि थोड़ा तालमेल बेहतर होना चाहिए? मेरा आखिरी
3: मुझे उम्मीद है कि आप हम सब मिलकर के अच्छा तालमेल करें।
5: अगले सर एक छोटा यहाँ
6: पे अखिलेश यादव आज तक से खास बातचीत में कि मुझे उम्मीद है कि बेहतर तालमेल आगे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहते हुए कि अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा फ्लोर ऑफ द हाउस में तो मैं क्या समझूं, और ये भी बात सामने आ रही है कि जैसे ही स्थगित हुआ हाउस उसके बाद अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच में कुछ तल्ख टिप्पणियां भी हुई जिसमें अखिलेश यादव ने जो है केसी वेणुगोपाल को कुछ कहा, और कुल मिला के अब अखिलेश यादव बेहतर तालमेल का की बात करते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: हमारे साथ बता तो मौसमी समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, अब ये क्या चल रहा है, क्या तालमेल है या नहीं है? अखिलेश यादव का गुस्सा कोई सामान्य तो नहीं है?
2: जी बिल्कुल, देखिए मेरा पहला सवाल ही उनसे ये था, लेकिन जिस तरीके से काफी बारी उन्होंने परिपक्वता का परिचय दिया है जब समन्वय बनाने की बात हुई है या गठबंधन में कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की बात हुई है। आप एग्जांपल ले लीजिए कि कल उनको नहीं पता था कि विरोध होने वाला है पीएम आवास के बाहर, लेकिन बाद में इतना दी कांग्रेस ने, उसके बावजूद भी वो वहां पे आ गए एक सेकंड रोल अदा करने के लिए। राहुल जब अगुवाई कर रहे थे तो अपने आप में अखिलेश यादव को लगता है कि बचे कुछ दो तीन विपक्षी दल है वो भी तालमेल नहीं बैठाएंगे तो कैसे होगा, लेकिन उन्होंने ये इंतजार नहीं बिठाना है, जो भी है आगे सब अच्छा होगा और तालमेल बैठ जाएगा। दिलचस्प बात यह भी है कि जब अखिलेश और केसी वेणुगोपाल के बीच में जो भी बयानबाजी हुई तो ये भी अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपके नेताओं नेता के कपड़े कल फटे तो हमारे साथ भी बर्बर व्यवहार हुआ, तो ऐसे में उसके बाद वो स्पीकर के दफ्तर जाते हैं और काफी लंबी उनकी स्पीकर साहब से बातचीत चलती है।
0: ठीक है मौसमी, आप नजर बनाए रखें अपडेट्स के, लौटेंगे फिलहाल, शुक्रिया आपका। एक बड़ी खबर समय अयोध्या से देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक शुरू हो गई है। आज ट्रस्ट की बैठक इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए मेंबर्स को लेकर चिंतन मंथन होना है, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। इसके साथ साथ जो रिपोर्ट आई है उस पर भी बताया जा रहा है कि चिंतन मंथन होगा, उसकी भी समीक्षा होगी। तो अयोध्या से बड़ी खबर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम बैठक शुरू हो गई है। महासचिव कौन होगा, सीईओ कौन होगा, इनके चयन पर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इनका चयन होगा। और SIT की जांच रिपोर्ट पर भी बताया जा रहा है कि समीक्षा की जाने और जो मेंबर्स हैं वो बैठ भी गए। रुकने छोड़े से ब्रेक के खिलाफ देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
9: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट।
10: Order for Jennifer C.
11: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
10: Yeah. Can you handle that much caffeine?
11: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
10: Oh, really? That's great.
11: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
10: Yeah, you just said that.
11: Did you say I just said that?
10: Yeah, I'm cutting you off.
11: I can't have any more? Why not?
12: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
13: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
14: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
15: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
16: Schwarber to right field, and it will leave.
15: From the first pitch of the season to the stretch run,
16: and that's the ball game.
15: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se.
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी जॉइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं। 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
4: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

पेपर लीक और राहुल के धरने के विरोध में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना, जयपुर, लखनऊ तक बवाल, कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी का हल्ला बोल। चर्चा की शर्तों और नियमों पर बना है गतिरोध, नियम 267 के तहत बहस को तैयार नहीं है सरकार, सभी विपक्षी दलों से मिलेंगे ओम बिरला, खड़गे ने कहा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक चर्चा नहीं। सरकार ने जेपी नड्डा को बनाया सीजेपी के साथ वार्ता के लिए नेगोशिएटर, प्रदर्शनकारियों के साथ आज हो सकती है दूसरी बातचीत, थोड़ी देर में तय होगी बैठक की जगह, रात में हुई थी वांगचुक से मुलाकात। राजनीतिक उथल पुथल के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सुले, एनडीए के साथ जाने की अटकलों को फिर मिली हवा, तस्वीरों में पवार का हाथ पकड़े दिखे प्रधानमंत्री। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक शुरू, महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर चर्चा के आसार, एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी समीक्षा संभव।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के करीब धरना दिया तो आज उस धरने के खिलाफ धरने का सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी कई शहरों में धरने पर उतर आई। पटना, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के धरने के विरोध में बीजेपी का ये धरना देश के अलग अलग शहरों में शुरू हुआ। मुंबई में भारी बारिश के बीच जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पटना में वंदे मातरम की तख्तियों के साथ राहुल गांधी के विरुद्ध, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के धरने के विरोध में भारत माता की जय के प्लैकार्ड्स लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। शशि भूषण और जानकारी वहां से दे रहे हैं। शशि, कहां पर इन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और क्या मुख्य तौर पर कहा है?
1: श्वेता, देखिए, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, सर्कुलर रोड, मुख्यमंत्री आवास बिल्कुल हमारे ठीक दाहिनी तरफ, और नीतीश कुमार का आवास भी यहीं पर है, पहले रावड़ी आवास भी यहीं होता था। और देखिए, इस प्रतिबंधित क्षेत्र में जो तमाम छात्र हैं वो पहुंच चुके हैं, और आपको सीधी तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है।
0: शशि, एक चीज पहले जानना चाहती हूँ आपसे, ये सीजेपी के पक्ष में समर्थन है, ये प्रोटेस्ट किस चीज के लिए है?
1: ये बिल्कुल नहीं, देखिए, ये आयशा ने प्रोटेस्ट बुलाया था, लेफ्ट का जो छात्र संगठन है आयशा, उसने प्रोटेस्ट बुलाया था जिसमें दूसरे छात्र भी जुड़े हैं, और वो मार्च शुरू हुआ पटना के गांधी मैदान से। बंगला पर पुलिस उनको रोक नहीं पाई, पहले पटना के जेपी गोलंबर पर रोकने का प्रयास किया, वहां असफल हुई पुलिस, फिर डाक बंगला पे असफल हुई, फिर बेली रोड का पूरा स्टेज पार करके ये तमाम जो छात्र हैं वो इस वक्त, देखिए, आयशा के संगठन जो है वो भी इसमें शामिल है, जो तमाम प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे हैं, छात्र हैं, वो है। और सबसे बड़ी बात, ये सर्कुलर रोड है, जो मुख्यमंत्री आवास है वो यहाँ पे है, ये सामने देखिए मुख्यमंत्री का आवास है, उसके ठीक सामने नीतीश कुमार का साथ सर्कुलर आवास, वहां पर पहुंच जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है पटना पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, कि कैसे पुलिस यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाई। और ये प्रोटेस्ट यहाँ देखिए यहाँ पहुंच चुका है इस वक्त, जो हम दिखा रहे हैं लगातार, और अब बिल्कुल अफरा तफरी की स्थिति है। थोड़ी देर पहले मैं सराकेत आश्रम पे था, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई, लेकिन अब देखिए यहाँ सर्कुलर रोड जो प्रतिबंधित इलाका है, मैं एक बार फिर तस्वीर दिखाता हूँ, ये प्रतिबंधित इलाका है, और ये सामने जो सर्कुलर रोड का गोलंबर है उसको थोड़ी देर पहले गोलंबर के उस तरफ थे जो छात्र, वो अब यहाँ आ चुके हैं, पुलिस को पीछे हटना पड़ा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, छात्र नहीं माने पुलिस, ये देखिए, अब ये देखिए एक तरह से लग रहा है कि लाठीचार्ज की स्थिति बन रही है, और हो सकता है कुछ भी यहाँ पे हो थोड़ी देर में। तो बेहद अपना तफरी की तस्वीरें हमने देखा गांधी मैदान में पहले, फिर डाक बंगला चौराहे पे, और अब सर्कुलर रोड, जो सरकार जहां बैठती है, जो लुटियन जोन कहा जाता है पटना का, आईजी है जीतन राणा, खुद कमान संभाल करके इन्होंने रखी है, और देखिए खुद कमान इन्होंने संभाल करके रखी है, और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, और ये प्रतिबंधित इलाका, यहाँ तक छात्रों का पहुंचना, संगठन का पहुंचना, इतने बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में, ये अपने आप में बड़ा सवाल होता है सरकार प्रशासन के ऊपर। जी,
0: हमारे साथ अहमदाबाद से अतुल तिवारी जुड़ रहे हैं। अतुल, वहां किसका प्रोटेस्ट है, वहां क्या तस्वीरें हैं?
2: देखिए अहमदाबाद की बात करूं तो कांग्रेस के मुख्यालय पर सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में यहां पे विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन उसमें 150 से ज्यादा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन दोपहर को 2 बजे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय पर आकर आज विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं लगभग 2 से 5 मिनट पहले ही यहां से पुलिस ने बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को यहां से दूर कर दिया है, लेकिन अभी भी बैरिकेडिंग्स और पुलिस की भारी संख्या में मौजूदगी तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 3 अलग अलग लेयर्स में यहां पे पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया था, 2000 जितने पुलिस कर्मियों की यहां पे तैनाती थी। सामने की तरफ आप राजीव गांधी भवन देख रहे हैं जो कि गुजरात कांग्रेस का मुख्यालय है, और गुजरात कांग्रेस के मुख्यालय में जो भी नेता कार्यकर्ता मौजूद थे उसके बाहर भी और अंदर की तरफ भी पुलिस की भारी संख्या में तैनाती आज 2 बजे के बाद से कर दी गई थी। अंदर की तरफ जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे वो भी सूत्रोच्चार अंदर की तरफ से कर रहे थे, उनको अंदर से बाहर की तरफ नहीं आने दिया। लेकिन तस्वीरों में बीच में आप देख रहे हैं वाटर कैनन भी वहां पे लगा दी गई थी, लेकिन फिलहाल वाटर कैनन का इस्तेमाल तो नहीं करना पड़ा है पुलिस को। लेकिन ये जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं, जो पुलिस कर्मियों की अभी भी तैनाती देख रहे हैं, ये तैनाती अभी भी यहां पे बरकरार है। लेकिन लगभग 2 से 5 मिनट पहले ही यहां से गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा यहां से रवाना हुए हैं, उसके बाद पुलिस ने बाकी के नेता कार्यकर्ताओं को यहां से रवाना किया है। लेकिन बीजेपी ने जिस बात को लेकर विरोध किया है वो ये है कि कल जिस प्रकार से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, उसके चलते आज बीजेपी ने भी अपना विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर किया है। लेकिन उसके पहले सुबह के वक्त की अगर बात करें तो गुजरात प्रदेश के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में आज विरोध प्रदर्शन किया गया था। छात्रों की जो बात है, उनकी आवाज है, उसको लेकर बात कही गई थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया था, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से एक प्रकार से माफी की मांग आज गुजरात कांग्रेस की तरफ से की गई थी। लेकिन वो जो एक प्रदर्शन हुआ उसमें लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद जो अब ये बीजेपी का प्रदर्शन हुआ है उसमें 2000 जितने पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रकार से कहें तो प्रदर्शन हुआ है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जो नारेबाजी है वो यहां पे देखने को मिली। जी
0: तो ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पटना की तस्वीर आपको हम बता देते हैं कि ये मिली जुली तस्वीर है। ये भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के विरोध में इसलिए प्रदर्शन क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री निवास के बहुत करीब धरना किया। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर जो पटना से देख रहे हैं, ये आयसा के जो छात्र संगठन है उनके साथ बाकी प्रदर्शनकारी मिलकर यहां पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो वहां का लोक निवास है यानी कि जहां पर राज्यपाल रहते हैं और जहां मुख्यमंत्री रहते हैं उनके आवास तक ये प्रदर्शन पहुंच रहा है। वहां पर आप सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी देख रहे हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों को आप आगे की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। यहां पर पुलिस चौकी मौजूद है, पुलिस व्यवस्था हमेशा यहां पर रहती है, लेकिन देखना है कि कितनी संख्या में पहुंचे हैं छात्र। रोहित सिंह हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या बताया जा रहा है, क्या यह अप्रत्याशित है, क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी कि इस तरह का प्रदर्शन होगा?
3: श्वेता, पहले आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के सबसे वीवीआईपी जोन जहां पर मुख्यमंत्री आवास, जहां पर राजभवन, गवर्नर रहते हैं, और यहां पर जो घुस आए हैं सब ये कार्यकर्ता जो प्रदर्शनकारी हैं आयसा के हैं, सीजेपी के अपने आप को बता रहे हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने वीवीआईपी जोन में एक तरीके से कहें तो डेरा डाल लिया है, उसके बाद यहां पर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। पुलिस को अभी लाठी चार्ज करना पड़ा है, लाठी चार्ज करके तमाम प्रदर्शन थे उनको यहां से भगाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहां पुलिस की तैनाती है, और साथ ही साथ अभी पानी के फव्वारे भी चलाए गए हैं। चारों तरफ आप देखिए जूते चप्पल जो है आपको यहां पर बिखरे हुए मिलेंगे चारों तरफ, क्योंकि खदेड़ा जा रहा है। और क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सबसे वीवीआईपी जो जहां पर सीएम रहते हैं, जहां राज गवर्नर रहते हैं, तमाम नेता, बड़े बड़े मंत्री का आवास है, वहां तक ये लोग घुस आए हैं। और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं यहां से केवल 50 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है, उनका सचिवालय है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने डाक बंगला चौराहा से आगे बढ़ते हुए पहली बार इस वीवीआईपी जोन में इन लोगों ने घर कर लिया है, और लगातार ये लोग बवाल काटे हुए हैं सुबह से। और पुलिस इनको रोकने में हर जगह नाकामयाब रही है। गांधी मैदान से ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ था, डाक बंगला होते हुए इनकम टैक्स, विश्व सरैया भवन, ये तमाम 4-5 किलोमीटर का दायरा ऐसा था जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। और यहां पर देखिए अब धरने पर बैठ गए हैं कुछ यहाँ ऐसा के कार्यकर्ता जो अपने आप को बता रहे हैं, वो लोग यहाँ धरने पर भी बैठे हुए हैं और पुलिस लगातार बल प्रयोग करने की कोशिश कर रही है ताकि इनको यहाँ से तितर बितर किया जा सके। लेकिन पूरे चारों तरफ आप देखिए जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं, किस तरीके से यहाँ पर इस VVIP जोन पे कब्जा किया हुआ है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने, और पुलिस को मुश्किलें आ रही है, जबरदस्त चुनौती है उनके सामने कि किस कैसे यहाँ से इनको तितर बितर किया जा सके। IG पटना खुद जितेंद्र राणा ने कमान संभाली हुई है, उनके नेतृत्व में यहाँ देखिए लाठियाँ चल रही हैं, देखिए यहाँ से यहाँ पर लाठी चार्ज करके भगाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तमाम चीज़ें जो हैं आज पटना में पिछले 5-6 घंटे से जो है वो देखी जा रही है, जहाँ पर ज़बरदस्त बवाल, दिल्ली के बाद कहीं अगर इस तरह का बवाल कहीं देखने को मिला है तो पटना में देखने को मिला है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था किस तरीके से BJP और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे, जमकर पत्थरबाजी हुई थी, और अब इस VVIP जोन में ज़बरदस्त हिंसा, ज़बरदस्त बवाल काटा है इन प्रदर्शनकारियों ने। श्वेता,
0: जाहिर सी बात है कि जब छात्र होते हैं तो पुलिस बल नहीं इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन इस इलाके तक पहुंच कैसे गए हैं प्रदर्शनकारी वो बड़ा सवाल है। ये आमतौर पर जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, आमतौर पर ये पूरी तरीके से यहां पर आवाजाही कंट्रोल्ड होती है। जी जी रोहित बताएं।
3: श्वेता ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, DPS में पढ़ने वाले बच्चों की बस यहाँ जा रही है, देखिए इनको भी घंटों तक यहाँ पर रोका गया था, किस तरीके से ये बच्चे टीचर्स अंदर जो हैं वो घंटों फंसे हुए थे। यहाँ भी आप देखिए DPS में पढ़ने वाले बच्चों को किस तरीके से यहाँ निकाला जा रहा है बस को, शीशे भी यहाँ पर, गाड़ियों के शीशे भी देखिए यहाँ पर तोड़े गए हैं, और किसी तरीके से ये मासूम बच्चे जो पढ़ के निकले हैं अभी स्कूल से अपना चेहरा ढके हुए हैं क्योंकि आंसू के गोले चलाए गए हैं, और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से इन बच्चों को जो है ये चेहरा और मुंह ढक के जो है ये इनको किसी तरीके से यहाँ निकाला जा रहा है, और सब बच्चों ने देखा किस तरीके से मुंह ढके हुए हैं। ये अपने आप में ये तस्वीर बयान करता है कि हालात कितने गंभीर हैं इस वक्त पटना की सड़कों पर, और छोटे मासूम बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी, उनके बसों को रोका गया है घंटों तक, और किसी तरीके से इस VVIP जोन से इनको निकालने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। और बच्चों लोगों ने किस तरीके से मुंह ढके हुए थे अपना, उन वो मासूम बच्चे, इनको पता तक नहीं होगा क्या हो रहा है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बेहद बेहद बड़ी तस्वीर है कि किस तरीके से ये VVIP जोन जो है इस वक्त प्रदर्शनकारियों के द्वारा एक तरीके से कहें तो होस्टेज बनाया गया इस पूरे इलाके को, और लगातार भारी संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ पर इन्हें खदेड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल इस इलाके को खाली नहीं कराया जा सका है। श्वेता,
0: रोहित, क्या पहले से तय था कि ये प्रोटेस्ट आयशा की तरफ से आज होने वाला है या फिर ये अचानक ये प्रोटेस्ट हुआ है, और क्या केवल आयशा के जो लोग हैं वो इसमें शामिल रहे, छात्र रहे इसमें, या फिर बाकी छात्रों का भी समर्थन यहाँ रहा है?
3: ठीक है, देखिए ये पहले ही से प्लान था, हम लोगों को आज सुबह ही पता चला था कि आयशा के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके छात्र विंग के हैं लेफ्ट वाले, वो लोग प्रदर्शन करेंगे, और देखिए मुश्किल क्या आ गई है क्योंकि इस वक्त बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो इस वक्त विधानसभा में देखी जा रही है, पटना पुलिस की जितनी सबसे बड़ी व्यवस्था जो है पुलिस की वहाँ लगाई गई है, इसीलिए जो ये प्रदर्शन कारगिल चौक से यानी गांधी मैदान से शुरू हुआ उसके बाद लगातार डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स, विश्व सरैया भवन, आप जानती हैं इन इलाकों को, इन तमाम इलाकों में पुलिस तो मौजूद थी लेकिन उतनी पर्याप्त संख्या में मौजूद नहीं थी, आंसू गैस के गोले दागे गए इन सभी इलाकों में, पानी के फवारे छोड़े गए, लेकिन पुलिस जो है नाकाफी साबित हो रही थी, पुलिस की संख्या जो है वहाँ नाकाफी साबित हो रही थी, और इसीलिए ये प्रदर्शनकारी जो है ये सफल हो पाए कि ये VVIP जोन में घुस आए हैं, जहाँ पर CM और गवर्नर दोनों जो यहाँ पर रहते हैं इनके घर के ठीक 50-100 मीटर की दूरी के दूरी पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस बल तो मौजूद है लेकिन क्योंकि ये छात्र हैं, ये प्रदर्शनकारी हैं या इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुस आए हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जगह देखिए आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, यहाँ देखिए अभी आपने आवाज़ सुनी होगी, ये आंसू गैस के गोले जो हैं यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, और कोशिश की जा रही है किसी तरीके से यहाँ पर IG जितेंद्र राणा भी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरीके से लीड कर रहे हैं इसको। यहाँ पर आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में यहाँ पर देखिए सब खाली करने की कोशिश की जा रही है। आईजी साहब क्या
4: करने दो ना यार, हम लोग
3: आईजी साहब है जितेंद्र राणा, ये खुद यहाँ पर मौजूद है और देखिए किस तरीके से तमाम पुलिस के आला अधिकारियों को मैदान में उतरना पड़ गया है इस वक्त यहाँ पर इस इलाके को सिक्योर करने के लिए, ताकि और आगे ना बढ़ पाए। लेकिन फिलहाल पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भी पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है प्रदर्शनकारियों को रोक पाना, और चारों तरफ जो है पुलिस बल नज़र तो आ रहा है लेकिन यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। और जगह जगह आप देखिए गाड़ियों के शीशे जो यहाँ तोड़ फोड़ किया गया है, यहाँ पर बैनर पोस्टर्स को भी देखिए फाड़ा गया है। ये कुछ बीजेपी का सरकार का कुछ बैनर पोस्टर था, आप देख सकते हैं इसको भी यहाँ पर फाड़ दिया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें अराजकता की तस्वीर जो है वो दिखा रही है कि किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है इसमें कहीं ना कहीं कहना मुझे गलत नहीं होगा कि असामाजिक तत्व भी जरूर शामिल हुए होंगे तभी इस तरीके का।
0: लेकिन बड़ी चिंता की बात है कि देखिए पहले जो राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन, पहले कांग्रेस पार्टी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, हिंसक भी दोनों के बीच टकराव भी हो गया, झड़प हो गई, और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो आयशा का प्रदर्शन है वो यहाँ पर हो रहा है। ये पूरा वो इलाका है जहाँ पर पटना के अलग अलग स्कूल लगते हैं और कुछ तस्वीरें हमने वहां देखी कि किस तरीके से स्कूल बसें फंसी उस प्रदर्शन के बीच में। अब रायपुर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस के विरुद्ध ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन करके क्यों इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क उन्होंने बनाया, ये बीजेपी का कहना है। और बीजेपी इसके विरुद्ध वहां पर प्रदर्शन कर रही है जहां वाटर कैनन्स चल रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी पर अगर कुछ होता है तो वहां वो शिकायत कर रहे हैं, जो सीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली में, यहाँ पर जो लेफ्ट की छात्र संगठन है उसका पटना में, और भारतीय जनता पार्टी का रायपुर में, इन सब पर पुलिस हल्के बल का प्रयोग करके पीछे हटाने की कोशिश में लगी है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती इस समय देश के अलग अलग राज्यों में कमोवेश एक सी ही स्थिति आपको दिखेगी, कहीं बारिश के बीच में प्रदर्शन, कहीं भीषण गर्मी के बीच में प्रदर्शन। मांग विपक्षी दलों की तरफ से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, तो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर क्यों उसको उस पर किस तरीके से प्रहार अगर राहुल गांधी प्रदर्शन करते हैं पीएम आवास के पास। तो ये सारी चीजें मिलके आप देखिए यहाँ पटना में पुलिस वाले को भी चोट लगी है, घायल हुआ है पुलिस वाला, उसको एक साथी साथ में लेके जा रहा है। लेकिन ये रायपुर की तस्वीर, राज्य बदल रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरें लगभग एक जैसी आपको हर जगह से नजर आएंगी। रोहित, क्या हो पाया है, क्या वहां पर जो छात्र बैठे हैं उनको उठाने की कोशिश,
5: सर को चाकू मार के भाग गया, कुछ लोग है जो अभी पत्थर
0: चलाया गया। रोहित, ये कौन कह रहा है जी?
3: देखिए हम पुलिसकर्मी से ही बात करते हैं जिसको गंभीर यहाँ पे चोट लगी है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर पे से खून निकल रहा है। और कैसे आपको चोट लगा है,
5: किसी कोई अराजक तत्व बीच में आया और सर को चाकू मार के भाग गया।
6: चाकू
3: मारा गया आपको?
6: देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी
3: अजीत कुमार, चाकू मारा गया आपको?
6: अजीत जी,
3: अजीत चाकू मारा गया क्या आपको?
5: एक दो लोग जो आए हैं लग रहे नए आए हैं, पत्थर मार
6: आगे आगे थे क्या आप?
3: देख सकते हैं यहाँ पे ये घायल अवस्था में, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अजीत कुमार है ये पुलिसकर्मी, और इनके साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इनके सर से खून निकल रहा है और कहा जा रहा है कि चाकू मारा गया है इनको। तो देखिए गंभीर पटना की सड़कों पर देखी जा रही है, और एक तरफ यहाँ पर आप देखिए आयशा के कुछ से और कार्यकर्ता जो है ये यहाँ धरने पर ही बैठ गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं इस वीवीआईपी जोन में, यहाँ पर आप देखिए अपनी मांगों को लेकर जो है वो लोग यहाँ पे धरने पर बैठ गए हैं और इसी तरीके से सुबह से पूरा बवाल जो है वो पटना में इस वक्त देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इधर भी घायल जो हैं वो बताए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक कौन है ये, यहाँ भी देखिए यहाँ भी गंभीर चोट यहाँ पर आई है। और देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब यहाँ से जो प्रदर्शनकारी थे उनको और थोड़ा वहाँ पीछे धकेल दिया गया है और ज्यादा संख्या में अब एसएसबी को बुला लिया गया है, यानी पैरा मिलिट्री फोर्स को भी। देखिए पैरामिलिट्री फोर्स भी जो है, एसएसबी जो है वो, यहाँ देखिए पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी के सर से खून निकल रहा है। श्वेता अगर आपको हम दिखाएं, ये देखिए महिला पुलिसकर्मी के सर से यहाँ देखिए खून निकल रहा है। छोटी कुमारी सिंह इनका नाम है, ये इनको देखिए इनको चोट आई है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आज तक पर, देखिए किस तरीके से इनको छोटी पत्थर कैसे चोट लगा है, पत्थर मारा गया कैसे। तो यहाँ पे देखिए छोटी कुमारी सिंह जो एक प्रदर्शनकारी है रोकने की कोशिश कर रही थी, इनको यहाँ पे देखिए इनके सर पे देखिए देखिए गंभीर चोट, ये देखिए आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से घायल हुई है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अपने कुछ लोगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं कि इनको भी मारा गया है। तो यहाँ देखिए पुलिस का आक्रोश देखिए, पुलिस का आक्रोश देखिए, यहाँ पर पुलिस वाले जो है अब आक्रोशित होकर जो है यहाँ पर आक्रोशित होकर ये महिला पुलिसकर्मी डीएसपी है अनु वो नाराजगी व्यक्त कर रही है कि देख लीजिए कि पुलिसकर्मियों के साथ क्या हो रहा है। ये प्रदर्शनकारी हैं जिनको चोट आई है और
7: ये लॉ एंड ऑर्डर हाथ में देखिए,
3: ये देखिए किस तरीके का बवाल पटना में, महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष,
8: छात्र आरोप भी लगा रहे हैं पुलिस पर कि वो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे
3: हैं, जो है सर फटे हैं। देखिए कुछ लोगों को डिटेन किया जा रहा है और अंदर ठूसा जा रहा है बस में, यहाँ देखिए देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को जो है अब बस में जो है वो ठूसा जा रहा है, जो प्रदर्शनकारी हैं जो यहाँ से हटने को तैयार नहीं थे इनको पुलिस ने अब यहाँ पकड़ के इनको अब अंदर ठूसने की यहाँ पर कवायद जो है वो चल रही है। और लगातार इस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर पटना में इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने वीवीआईपी जोन, मुख्यमंत्री आवास, कई मंत्रियों के आवास, सब बगल 150 मीटर की दूरी पर सचिवालय, एक तरफ आपको राजभवन, श्वेता आप सब जानती हैं इस इलाके को, और यहाँ पर जब पहुंच जाते हैं प्रदर्शनकारी, यहाँ भी देखिए सबको यहाँ पकड़ के अंदर ठूसा जा रहा है, सबको यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है और सबको यहाँ पर अंदर ठूसने की तैयारी जो है पुलिस वैन में और पुलिस जीप में जो है की जा रही है। यहाँ भी देखिए यहाँ भी प्रदर्शनकारियों को जो है इधर पकड़ा जा रहा है। तो जो जो प्रदर्शनकारी जो हटने को तैयार नहीं थे, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं पिछले कई कितनी देर से, उनको अब पुलिस जो है वो पुलिस जी वैन में जो है वो यहाँ पर फेंकने की तैयारी की जा रही है, इनको अंदर डाला जा रहा है। तो बेहद अराजक स्थिति श्वेता इस वक्त राजधानी पटना में देखने को मिल रही है, वो भी सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले इलाके में। देखिए इसको प्रदर्शनकारी को भी देखिए अंदर ठूसा, जेल में माफ कीजिएगा, ये पुलिस गाड़ी में जो है वो अंदर भेजा जा रहा है। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है इस वक्त पटना में और पुलिस लगातार जो है वो आंसू गैस के गोले चला रही है और पानी के फवारे भी चला गए हैं और कोशिश की जा रही है कि इस इलाके को कम से कम खाली कराया जाए, इस वीवीआईपी जोन को। लेकिन थोड़ी देर अभी कुछ दूर तो इनको तितर बितर किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी जो हैं वो फिलहाल बैठे हुए हैं यहीं पर। और यहाँ पर देखिए पुलिस के साथ जो है इनकी धक्का मुक्की चल रही है, अंदर सबको यहाँ पर किया जा रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और देखिए आईजी जितेंद्र राणा भी जो है यहाँ पर
9: जो है खुद सड़क पर
3: खुद सड़क पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएसपी भी है यहाँ पे कार्तिकेय शर्मा, और हालात इतने कैसे बेकाबू हो गए ये भी बड़ा सवाल बनता है पुलिस से जानना कि भाई आखिर कैसे ये पुलिसकर्मी जो है यहाँ तक अंदर आ गए।
9: थाना पे लगाओ, बंद कराओ, ए बंद करो उसको।
8: सड़कों पर उतरकर इस समय पटना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी स्थिति को काबू में करना पड़ रहा है, लेकिन इस सब के बीच चिंता का विषय ये भी है कि किस तरीके से यहीं से चाकूबाजी की बात कही जा रही है, पत्थर चले हैं पुलिस पर, महिला पुलिस कर्मियों को चोटिल देखा गया है, दूसरी तरफ छात्र भी आरोप लगा रहे हैं ज्यादती का। इस सब के बीच पटना में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, ये घायल महिला पुलिसकर्मी को वहां से ले जाया जा रहा है, ये जो मौके स्थल पर मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि पत्थर चले थे जिसमें चोट लगी है। शहर जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं बेहद चिंताजनक। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
10: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
10: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty. Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
11: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

0: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
1: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पहाड़ों पर मानसूनी आफत का सिलसिला जारी, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पेपर लीक और राहुल गांधी के धरने के विरोध में कई शहरों में बवाल, दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना, जयपुर और लखनऊ तक प्रदर्शन, कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी का हल्ला बोल। चर्चा की शर्तों और नियमों पर बना है गतिरोध, नियम 267 के तहत बहस को तैयार नहीं सरकार, सभी विपक्षी दलों से मिलेंगे ओम बिरला स्पीकर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।

पांगचुक से मिलेंगे विपक्षी सांसद। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक शुरू। महासचिव के नाम और सीईओ के चयन पर चर्चा के आसार। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर भी समीक्षा संभव। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, एक सिपाही की मौत। पहलगाम अटैक के बाद घाटी में पहली आतंकी वारदात।

0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम इस समय मचा हुआ है और अब से थोड़ी देर में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोनों सदनों की कार्यवाही जहां एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ी, वहीं आज शहर शहर विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर राहुल गांधी के धरने के खिलाफ बीजेपी आज कांग्रेस के दफ्तरों पर प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान पटना से लेकर जयपुर और अहमदाबाद तक जबरदस्त तनातनी है। इधर संसद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद नजर आया, जिसे बाद में अखिलेश यादव ने महज एक गलत फहमी बताया है। इस बीच आज सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सीजेपी के साथ बातचीत के लिए मुख्य वार्ताकार सरकार की ओर से बनाया गया है। हम आपको देश भर में समय क्या स्थिति है वो अलग अलग शहरों की बताएंगे। जैसे पटना में जो वामपंथी छात्र संगठन है आईसा और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़पों की खबर है। छात्र संगठन आईसा मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। इस दौरान पत्थरबाजी की खबरें आई, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। आज तक संवाददाता रोहित सिंह और शशि भूषण सिंह दोनों ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हम उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पटना की तस्वीर आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन है। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर भी हो रहा है, अलग अलग स्थानों पर हो रहा है। कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है कि क्यों प्रधानमंत्री के घर के बाहर विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी इसका विरोध कर रही है। शशि भूषण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। ये तस्वीरें शशि हम देख रहे हैं, कुछ पुलिस वाले चोटिल नजर आ रहे हैं, जमीनी स्थिति क्या है इस समय? रोहित आपके कैमरे पर हमें वो बच्चे पुलिस वाले दिख रहे हैं। जी रोहित।
1: गौरव, हम इस वक्त वीवीआईपी जोन में खड़े हैं। ये आप देखिए, एक पुलिसकर्मी को कितनी गंभीर चोट आई है। यहाँ पर सर उनका फट गया है, देखिए खून साफ तौर पर जो है वो नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले इस पूरे इलाके में जो है जमकर जो है हिंसा देखने को मिली है, और जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने वीवीआईपी जोन में वो घुस गए थे और उसके बाद उन्होंने पूरे इस इलाके को एक तरीके से कहे तो हाईजैक कर लिया था। उसके बाद पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी चुनौतीपूर्ण तरीके से उनको वहां से तितर बितर करने के लिए, और आंसू गैस से गोले चलाए गए, पानी के फवारे जो है चलाए गए। और आप देखें किस तरीके से यहां कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं, जिनको आज तक के कैमरे में जो है वो कैद किया गया है। और यहां भी एक देखिए पुलिसकर्मी जो है उनको कितनी गंभीर चोट आई है, इनका भी सर जो है वो फट गया है। और ऐसे ही कई पुलिसकर्मियों को हमने अपने कैमरे में देखा है कि किस तरीके से उनको, देखिए इनके आंख पे देखिए आप, इनको कहां पे चोट लगी है आप देखिए, ये देख सकते हैं आप कितनी गंभीर चोट इनको आई है। और
0: शशि भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। शशि, विरोध प्रदर्शन दोनों ही तरफ से हो रहा है, एक तरफ छात्र वामपंथी छात्र दलों का विरोध है, आप जहां पर इस समय क्या स्थिति है शशि?
2: देखिए सर्कुलर रोड में एंट्री ली थी इन छात्रों ने, आईसा और बाकी छात्र संगठन के लोग। इस वक्त हम सर्कुलर रोड के उस एंट्री पॉइंट से बाहर आए हैं गौरव, जहां से छात्रों ने एंट्री ली थी। ये प्रतिबंधित इलाका है, मुख्यमंत्री आवास, बिहार के डिप्टी सीएम का आवास।

0: सरदार पटेल भवन तक जाता है, खदेड़ा है पुलिस ने छात्रों को। और देखिए दूसरी तरफ वहां अभी भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में छात्र जमे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है और पुलिस इस वक्त वही है जहां इस वक्त हम खड़े हैं। सर्कुलर रोड को खाली करा लिया गया है घंटों मशक्कत करने के बाद, लेकिन पटना पुलिस के ऊपर सवाल है कि आखिर इतना जब तैयारी इतनी बड़ी थी छात्रों की, आयशा और दूसरे जो छात्र जुड़े इस आंदोलन में मार्च में, तो गांधी मैदान से निकलते उनको क्यों नहीं वहां रोका गया, फिर वो डाक बंगला चौराहे पहुंचे वहां क्यों नहीं रोका गया, बेली रोड में भी पुलिस रोक नहीं पाई और आखिरकार मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल सामने जाकर के छात्र खड़े हो गए पिछले इलाके में। और अब देखिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, पूरा एक तरफ का तो लेन बंद है ट्रैफिक, हमारी दाहिनी तरफ का जो बेली रोड से डाक बंगला की तरफ सड़क जाती है वो बंद है। और देखिए यहाँ पुलिस अब एक बार फिर एक्शन में आती दिख रही है,
1: हमको पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करते नजर आ रही है। दूसरे रोहित सिंह के पास मैं चलता हूँ, वहां पर भी पुलिस वाले कई चोटिल हुए हैं। रोहित, पुलिस अब छात्रों को पीछे करने की कोशिश करने में क्या सफल हो रही है?
2: आईजी जितेंद्र राणा इस वक्त आज तक पे मौजूद है। सर एक बता, स्थिति क्या है सर? ठीक है,
3: अभी हम लोग करने की बात नहीं।
2: अच्छा ठीक है, यहाँ आईजी साहब खुद देख सकते हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे इलाके को खाली कराने की यहाँ कोशिश हो रही है। यहाँ से बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहाँ से खदेड़ा भी जा चुका है और आगे जहाँ शशि मौजूद थे बेली रोड पर, वहाँ पर वो प्रदर्शनकारी पहुँच चुके हैं। लेकिन इस वीवीआईपी जोन को किस तरीके से तकरीबन घंटे भर तक जो है प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में रखा, उसके बाद पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। पटना पुलिस के आला अधिकारी जो हैं यहाँ पे भारी संख्या में आप देखिए पहुंचे, उसके बाद ही जो है स्थिति जो है काबू में आ पाया है और कई पुलिसकर्मी जो हैं इसमें चोटिल भी हुए हैं, ये भी हमने दिखाया। इधर देखिए पत्थरबाजी की तस्वीरें, आप देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी भी की गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। ये देखिए ये तस्वीरें इस रोड पर देखिए, इस वीवीआईपी जोन वाले रोड पर देखिए, आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आएगा और ये इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरीके से पत्थर रोड़े पत्थर लेके जो है या फिर उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है पुलिस पर हमला करने के लिए। और चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से पत्थर जूते चप्पल जो है वो बिखरे पड़े हैं, क्योंकि पुलिस को जो है वो बल प्रयोग करना पड़ा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन इसी तरीके की तस्वीर आज पटना के कई इलाकों में जो है, चाहे वो कांग्रेस का दफ्तर हो, गांधी मैदान हो, डाक बंगला चौराहा हो, इन सब इलाकों में जो है ज़बरदस्त सुबह से जो है वो हिंसा देखी जा रही है। और स्थिति तब सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई जब ये प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगभग बाहर पहुंच गए थे। 100 मीटर की दूरी पर सीएम आवास है, राजभवन है, तमाम यहां पर आप देखिए उप मुख्यमंत्री का आवास ये बगल में है, ये डिप्टी सीएम का आवास है विजय कुमार सिन्हा का, यहां पहुंचे हुए थे, स्पीकर का आवास है यहां पर, खुद चीफ सेक्रेटरी का आवास है। यानी कि ये पूरी तरीके से वीवीआईपी जोन है जहां पर तकरीबन घंटे भर तक प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। लेकिन अब
1: तो गांधी मैदान से पुलिस बल की तैनाती, दूर तक आ कैसे गए वो पूरी सड़क पार करते हुए? रोहित, छात्र इतनी दूर तक पहुंच कैसे गए? क्या पुलिस की व्यवस्था उचित नहीं थी, उचित संख्या में पुलिस की तैनाती नहीं थी? रोहित,
2: देखिए गौरव, एक पुलिस के लिए आज चुनौती दरअसल ये है क्योंकि विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, तो सबसे ज्यादा जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है इस वक्त विधानसभा में जो है वो देखी जा रही है। सुबह से ही वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी जो है वहाँ पे सुरक्षा के हिसाब से वहाँ मौजूद रहते हैं। इसीलिए जब ये पूरा हंगामा पहली बार गांधी मैदान में शुरू हुआ तो पुलिस बल वहाँ मौजूद तो था, लेकिन उतनी ज्यादा संख्या नहीं थी कि इनको काबू में लाया जा सके। और दूसरी तरफ जगह जगह पर, चाहे वो गांधी मैदान हो, डाक बंगला चौराहा हो, इनकम टैक्स हो, विश्व चौरैया भवन हो, सब जगह पर पानी के फवारे चलाए गए, आंसू गैस के गोले चलाए गए, इसके बावजूद भी ये प्रदर्शनकारी जो है वो आगे बढ़ते चले गए। पुलिस को जो है वो नाकामयाबी हासिल हो रही थी कि इनको रोका जा सके और आखिरकार ये सफल हुए वीवीआईपी जोन तक पहुंच जाने में। और जिसके बाद जब वीवीआईपी जोन पहुंचे हैं तो फिर आला अधिकारी पटना पुलिस के सब जो है वो मैदान में उतरे और उसके बाद जो है पुलिस एक्शन शुरू हुआ है। और अब इस इलाके को जो है प्रदर्शनकारियों से फिलहाल तो खाली करा लिया गया है, लेकिन किस तरीके की हिंसा देखने को मिली है इसकी तस्वीरें हम साफ तौर पर देख सकते हैं।
1: जी, एक बात तो पुलिस की तैनाती होती है और दूसरी बात पुलिस की आसूचना, उनकी इंटेलिजेंस, क्या उनके पास जानकारी नहीं थी इतनी बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा होंगे? शशि, आप और रोहित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए ताजा जानकारी के लिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। अब बिहार से आपको लिए चलते हैं राजस्थान, पटना से जयपुर। जयपुर में बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया, दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर जिस तरह से नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के आला अधिकारी और बड़े नेता पहुंच गए थे,

0: के जवाब में बीजेपी कांग्रेस के दफ्तर पर धरना दे रही है। बीजेपी के प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर कर रहे थे, उनके साथ राजस्थान के बीजेपी के विधायक और नेता भी थे, और जयपुर से मेरे सहयोगी शरद कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
1: जयपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास का घेराव हुआ है उसे देखते हुए यहाँ पर देखिए पानी की बौछारें शुरू हो गई है और यहाँ पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर का यह दृश्य जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया था प्रधानमंत्री निवास का, उसके खिलाफ यहां पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर लगातार बीजेपी मुख्यालय से कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि यहां पर इन्हें गवर्नमेंट हॉस्टल पर रोक लिया गया है, जिसके बाद ये इस तरह से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है और वाटर कैनन के धारों के बीच ये इस तरह से यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। जयपुर की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है। ये बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और वाटर कैनन के जरिए इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता चढ़े हुए बैरिकेडिंग पर और लगातार प्रदर्शन जारी है इनका। ये विरोध कर रहे हैं, इनका कहना है कि हम इसी तरह से कांग्रेस के मुख्यालय का घेराव करना चाह रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने घेराव किया था।
0: भारतीय जनता पार्टी का आरोप कांग्रेस पर है कि सुरक्षा में सेंध इससे लग सकती थी, एक बहुत बड़ी सुरक्षा के लिए चुनौती बन गई थी जिस तरह से प्रधानमंत्री के घर के बाहर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया कल राहुल गांधी के धरने को लेकर। जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मतभेद दिख रहा है, वहीं संसद में आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद की भी खबरें सामने आई। सूत्रों की माने तो दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस भी हुई, और इससे पहले सदन में अखिलेश यादव ने स्पीकर से बकायदा पूछा क्या कांग्रेस और बीजेपी में कोई आपसी समझौता हो गया है। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों केसी वेणुगोपाल के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं को अखिलेश यादव को बोलने का मौका नहीं दिया गया। यही नहीं, केसी वेणुगोपाल ने जहां यह कहा कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए तभी चर्चा हो सकती है पारदर्शी तरीके से, वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इस्तीफा तो बाद में भी हो सकता है, पहले छात्रों पर बेरहमी का हिसाब संसद में होना चाहिए। सुनिए
2: सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। इफ यू एक्सेप्ट एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा करो सर।
3: अध्यक्ष महोदय जी,
2: एडजर्नमेंट मोशन
3: 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किए हुए, मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना, सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।
4: ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या, समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें?
5: आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज।
4: नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर?
5: हम लोग का बात भी सुनिए
3: अखिलेश जी।
4: नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल?
3: अखिलेश जी एक मिनट।
4: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए।
0: तो सुना आपने, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार और कांग्रेस के बीच क्या समझौता हो गया है कि पहले किरण रिजिजू बोले और फिर केसी वेणुगोपाल बोले, दोनों के बीच कोई समझौता है? अखिलेश यादव इस बात से भी नाराज थे कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। हम आपको विस्तार से अखिलेश यादव का पूरा बयान सुनवाते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि वो समझौते या डील का आरोप क्यों लगा रहे हैं और किस पर लगा रहे हैं। सुनिए,
4: ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें?
5: आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज।
4: नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर?
5: हम लोग का बात भी सुनिए। अखिलेश जी,
4: नहीं छात्र नौजवान क्या केवल?
5: अखिलेश जी एक मिनट।
4: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?
0: ये बड़ी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव का कहना है कि अगर संसद में बहस होती तो प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नहीं करना पड़ता। लेकिन इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने विस्तार से अपना पक्ष रखा। आज तक से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, बकायदा सफाई दी। उन्होंने कहा कि फ्लोर पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, वैसे कांग्रेस के साथ मतभेद की खबरों को उन्होंने कहा कि यह कोई गलतफहमी है। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस के साथ तालमेल का मुद्दा नहीं है, तालमेल तो हो ही जाएगा। सुनिए,
6: हमारे साथ अखिलेश यादव है, ये उनसे पूछ लेते हैं। सर, पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव को गुस्सा क्यों आया?
4: नहीं, ये कोई सवाल नहीं है, अपनी बात कहने के लिए गुस्सा होना चाहिए।
6: आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार राजी होगी, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं नीट के मसले को लेके, आपने कहा
4: कि स्वीकार करना चाहिए और इस्तीफा, कोई जब पूरा देश युवा मांग रहा है इस्तीफा और तुमने खुद स्वीकार की, खुद परीक्षा दोबारा की है, दोबारा परीक्षा की है, तो इसका मतलब आपने खुद गलती मानी है ना, खुद गलती मानी है कि आपकी परीक्षा गड़बड़ हुई है।
6: पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस्तीफा पहले कर रही है और आपने कहा ना कि इस्तीफा तो होता रहेगा।
4: नहीं, इस्तीफा क्योंकि आज जब बात होनी है, जो पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का व्यवहार छात्र नौजवानों के साथ था और राहुल जी के साथ, हमारे साथ, हमारे सांसदों के साथ क्या व्यवहार था पुलिस का? पुलिस कपड़े फाड़ रही थी, पुलिस की पड़ी, तो वो बात भी तो आए सदन में। और इस्तीफा के लिए तो हम पहले दिन से रुके हुए हैं, छात्रों की मांग हो पूरी, हम वो चाहते हैं कि इस्तीफा दे सकते।
6: अखिलेश जी, आप संसद में कह रहे थे कि मुझे बोलने दिया जाए, काफी शोर हो रहा था उस समय और विपक्ष की तरफ से ही नारे लगाए जा रहे थे जब आप बोल रहे थे। कई बारी आप कांग्रेस के लिए रुके हैं, राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, उसके लिए खड़े भी हो रहे हैं।
4: ये फ्लोर कोऑर्डिनेशन में कभी कभी होता है, वो हम लोग बातचीत से रास्ता निकाल
6: रहे हैं। तो मैंने भी हुई थी,
4: नहीं ऐसा कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है, फ्लोर कोऑर्डिनेशन फिट हो जाएगा।
6: डील का
4: अगर जो कमी होगी वो दूर होगी।
6: डील की ओर आपने इशारा किया कि डील हो गई है क्या? आपने गुस्से मतलब कि बोला भी उस समय, किसके लिए कह रहे थे?
4: हम अगर नहीं बोल पाएंगे तो मैं क्या मानूं? मैं किसको दोषी ठहराऊं? अपने साथी को, सरकार को, किसको?
5: अखिलेश सर, एक एक
4: बहुत हो गया
6: सर, कांग्रेस जैसे पार्टनर, आपको लगता है कि थोड़ा तालमेल बेहतर होना चाहिए? मेरा आखिरी,
4: मुझे उम्मीद है कि आप हम सब मिलकर के अच्छा तालमेल
7: करते हैं। सर, एक छोटा
6: यहाँ पे अखिलेश यादव आज तक से खास बातचीत में कि मुझे उम्मीद है कि बेहतर तालमेल आगे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहते हुए कि अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा फ्लोर ऑफ द हाउस में तो मैं क्या समझूं। और ये भी बात सामने आ रही है कि जैसे ही स्थगित हुआ हाउस, उसके बाद अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच में कुछ तल्ख टिप्पणियां भी हुई, जिसमें अखिलेश यादव ने जो है केसी वेणुगोपाल को कुछ कहा, और कुल मिला के अब अखिलेश यादव बेहतर तालमेल की बात करते हुए।
0: तो आज तक संवाददाता मौसमी सिंह पूछती रही सवाल तब तक जब तक अखिलेश यादव ने मान नहीं लिया कि कांग्रेस के साथ तालमेल में कुछ कमी है और उनको ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच बातचीत चल रही थी, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इसी मुद्दे पर डिंपल यादव ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि निहत्थे छात्रों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। जहां तक संसद में पेपर लीक पर चर्चा की बात है तो डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहती है, लेकिन उनका मुख्य मुद्दा है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। सुनिए
7: डिंपल जी, आप खुद गई थी सबसे पहले, आपने सब बच्चों का हाल देखा, आपको वहां जाके क्या लगा कि इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही आखिर?
8: मुझे समझ नहीं आ पाता किस बात का अहंकार है सरकार को, इतने बच्चे आए, लाखों बच्चे आए, एंड दे वर विदाउट एनी, किसी के हाथ में कुछ था, खाली मोबाइल ही तो थे। सरकार ने क्या रवैया अपनाया? क्या सरकार जानती नहीं थी कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन, ये आंदोलन जो हो रहा है, जो बच्चे आ रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं भावना जुड़ी थी इस आंदोलन से, क्योंकि वो चाहते थे कि बदलाव हो हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो ये जो सरकार के पास बच्चे आए, तो सरकार अगर पहले ही फैसला ले लेते कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम सही करेंगे, रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और एजुकेशन मिनिस्टर को हटाएंगे, तो बच्चे क्यों आते? वी वांट डिस्कशन भी हो एंड वी वांट इस्तीफा भी हो।
0: तो चर्चा भी हो, इस्तीफा भी हो। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने आ गए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष को लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं है, तो दूसरी तरफ नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जरूरी है, तभी निष्पक्ष रूप से चर्चा हो सकती है। सदन में सुनिए।
9: पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है, और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, ना ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है, ये इनका रवैया है।
10: विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेल डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्ष पात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्ष पात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाओ, चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा शुरू करेंगे।
0: और आपको सीधे लिए चलते हैं, इस समय राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इंदिरा भवन में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके साथ प्रियंका गांधी, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सांसद पवन खेड़ा को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा। और राहुल गांधी आगे की रणनीति, काला आर्मबैंड भी राहुल गांधी ने लगा रखा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री के घर के बाहर कल विरोध प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी ने, सुनते हैं राहुल गांधी
11: को। पहले राहुल जी अपनी प्रेस वार्ता करेंगे, क्योंकि समय की बहुत कमी है तो हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस जरूर लेंगे, 4 या 5, और उसके बाद ये प्रेस वार्ता को हम समाप्त करेंगे, ज्यादा समय है नहीं, और उसके बाद एक आप लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था है, हम लोग मिलकर फिर वहां चाय पे बात करेंगे।

0: बंदूक से फायर किया गया और इसके शरीर में जो आपको दिख रहे हैं ये बंदूक के छुरे हैं।
1: ये देखिए लेटा, देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठी चार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर।

0: question is, why is this happening to our students? What exactly have our students done? Thousands and thousands of students, what have they done to have security forces aiming weapons at them, to be beaten up, to be thrashed, to be humiliated? What have they done? What have they done wrong? They're protesting peacefully. They're asking for their demands. They're asking for what this country owes them. They're not doing the crime. They're simply asking that, listen, as students in this country, we deserve an education system that works. We deserve an education system that is fair, and we don't have it. Children have committed suicide. Our students go through unlimited stress. And then at the last minute, they're told that the paper has leaked. So there is a legitimate problem. And it is now a very deep problem in this country. So, the thing that is very clear to everybody is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world, is today a rigged system. I don't say this lightly. Thousands of students who are running around outside are not saying this lightly. What is the proof? It's a superficial proof because we don't actually know the exact number. But what we do know is that 152 paper leaks have taken place over the last decade. If you do the math, so one a month approximately. Every month, lakhs of students are told that all the stress that you went through, you're going to have to go through again. And after that, they're told, we really don't care. We don't care if there's a re-exam. We don't care how much you have to wait. We don't give a damn. ₹7.5 crore students and their families are affected by this. These are middle class and poor families. They put their hard-earned money into this. And then they're literally spat on. And the best part of this is zero convictions. In the last 10 years, 152 leaks have taken place and zero convictions. Zero. So somebody is, or a group of people are destroying our education system, India's most valuable asset, destroying the lives of our students, and what does the government do? Zero convictions. So this is the first reason, an absolutely legitimate reason, why our youngsters are protesting. Thing doesn't stop here. It goes further. It's not just that the system is rigged. It's that the system is unaffordable. And this is a statistic that every youngster knows. But somehow, the government of India doesn't. One exam costs the families who take this exam the same amount of money as our entire education budget. So please think, the government of India, after collecting all the taxes, spends money on the future of our children. That money goes into something called the education budget. It is 1.4 lakh crores. At the same time, every year, 1.32 lakh crore, similar amount, is spent by the families who have taken the NEET exam. So please understand the scale of this thing. This is pure theft from these families. There's nothing else. And then after you steal from them, you tell them that there's a paper leak, the thing is rigged. So this is the second reason and legitimate reason why our youngsters are outside. But there's a more fundamental reason. And that reason is this. That even after you have an education, you become a doctor, you become a lawyer, you become, you learn something, you're suddenly told that the doors that should be open to you, what your country and your government owes you, a livelihood, a job, is closed. So, manufacturing is closed. Look around you, you'll see there are only Chinese products. Entrepreneurship is closed. Take a look at who gets the money from the banks. Two or three large companies get all the money from the banks. So a young person who wants to be an entrepreneur cannot. Corporate job, AI is destroying it. The IT sector, public sector has been privatized. So what is the choice? The only choice they have is a sarkari job. So you give them one door, you close all the doors, then you rig that system and make it unbelievably expensive. And then you expect they won't be outside. Which world are you living in? So we are 100% in agreement with what every single student is feeling, what every single student is doing. And there must be some consequences to what has been done some days ago. It is not their fault. And so they have some demands. What are their demands? The first demand, completely legitimate demand, is that Mr. Dharmendra Pradhan, who has failed as an education minister, who is known to be corrupt, should be relieved of his duties. 100% legitimate demand, nothing wrong with it. He has shown India and the world that he is incapable of running this system. Exam leaks are happening one after the other. So this is a completely legitimate demand. Second demand, every single person who raised a finger on our students, and it doesn't matter who he is, the people who ordered it and the people who executed it, should be made accountable. And the third thing is that the man who is running this entire system, the man who is finally accountable to all this, should have the decency to apologize to the students for what has happened. These are not complicated things, these are not difficult things. This gentleman, Mr. Dharmendra Pradhan, has literally destroyed India's biggest asset. what used to be called our success, what used to be called divesting India as our education system, has been wiped out. And so we fully support these demands, and we fully support every single student who is on the streets. Thank you. आप कुछ सवाल जवाब हिंदी में कर दो, हिंदी में कर देता हूं. कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इसके कारण है, पहला कारण जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है. कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम. सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में. सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है. बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं. स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं. आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है. उनको 152 बार पिछले 10 साल में भी यह बताया गया है. साढ़े 7 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है. और स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, जीरो. तो यह पहला कारण है. दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है. मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है. जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं. आप सोचिए, सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है, जीएसटी, इनकम टैक्स सारा लेती है, और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे, और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे. दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन दिस कंट्री, दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल फैमिली इन दिस कंट्री. और ये कौन लोग हैं? ये मिडिल क्लास गरीब लोग हैं। ये अमीर लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉर्पोरेट हाउसेस का, अदानी अंबानी का प्रॉब्लम नहीं है, ये मिडिल क्लास और गरीबों का प्रॉब्लम है। तो ये है दूसरा कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, एजुकेशन के बाद जो होना चाहिए, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, उसके बाद देश की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम आपको जॉब देंगे, रोजगार देंगे, फ्यूचर देंगे। देश का यही मतलब होता है, देश का मतलब होता है कि हम आपको फ्यूचर देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको हेल्थ केयर देंगे। ये फाउंडेशन होता है देश का। और ये देश कहता है कि नहीं, हम आपसे पैसा चोरी करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को रिग करेंगे और फिर उसके बाद सारे के सारे दरवाजे हम बंद कर देंगे, एक ही दरवाजा आपके लिए खुला होगा, सरकारी नौकरी, वो भी रिग्ड है, उसमें भी जिसकी जान पहचान है वो घुसेगा, जिसके पास 40 लाख रुपए है वो घुसेगा। पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग, चाइना का माल कोने कोने में बिकता है, हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन खत्म है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज खत्म है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, बैंक का सारा पैसा 2-3 बिजनेसेस के हाथ में जाता है। आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, दरवाजा बंद। टीवी पे आ जाएंगे एंटरप्रेन्योर बनो, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लोन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, वो नहीं मिलेगा। दूसरा दरवाजा बंद। तीसरा दरवाजा कॉर्पोरेट जॉब, आईटी जॉब, जो हिंदुस्तान की सक्सेस रही है, उसको एआई ने खत्म कर दिया है, खत्म कर रहा है। पब्लिक सेक्टर बंद, पूरा प्राइवेटाइज कर दो, खत्म कर दो। तो एक ही रास्ता है, वो सरकार वाला गवर्नमेंट एग्जाम। और फिर उसमें कहते हैं सबसे पहले पूरी अपनी आमदनी दो, उसके बाद हम सिस्टम को रिग करेंगे, और आप लोग मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग अपना पैसा डालो, और जिसके पास 40-50 लाख रुपए है वो पीछे से बैकडोर से घुस जाएगा। ये तीन कारण है कि दिल्ली के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स गुस्से में है, बाहर है। इनको क्या कमिटमेंट चाहिए? ये कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए, बड़ी बात नहीं है। सुइसाइड हुए बच्चों के, 152 पेपर लीक हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, जो आपने अभी वीडियो देखा, पूरी सोशल मीडिया पे, मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगें तोड़ी जा रही हैं, पैलेट गन से मारा जा रहा है, ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये तीन डिमांड्स हैं, वे 100% सपोर्टिंग एवरी सिंगल स्टूडेंट एंड वी आर फुली बिहाइंड यू एंड वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट यू आर प्रोटेक्टेड एंड योर फ्यूचर प्रोटेक्टेड। थैंक यू।
1: थैंक यू राहुल जी। फर्स्ट क्वेश्चन संजीव चोपड़ा, पीटीआई।
0: अच्छा, वन सेकेंड। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तरफ स्टूडेंट्स हैं, उनका फ्यूचर है, वो क्या चाहते हैं कि बात उनकी इशू पे रहे। उनकी इशू क्या है? एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक, ये जो हुआ, इनको जो मारा गया, ये चाहते हैं कि शिक्षा पर, पेपर लीक पर, वायलेंस पर पूरे देश का फोकस रहे। मैं भी चाहता हूं और पूरा ऑपोजिशन चाहता है कि फोकस यहां रहे और इसके बारे में कुछ किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। और ये जो तीन डिमांड्स है स्टूडेंट्स की, दिल की डिमांड्स है, जो उनको चोट लगी है, उस आवाज से ये बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी तरफ क्या है? डिस्ट्रैक्शन, कि ध्यान इधर उधर करो, कभी ध्यान उधर ले जाओ, कभी इधर ले जाओ, कभी आगे ले जाओ। दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स डिस्ट्रैक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स फोकस करने की कोशिश कर रही है। थैंक यू।
1: जीव चोपड़ा जी, माइक दो भाई।
2: राहुल जी, वी ऑल सीन व्हाट हैज हैपेंड विद द स्टूडेंट्स ऑन मंडे, वी ऑल्सो सीन व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे विद द प्रोटेस्टिंग एमपीज राइट आउटसाइड द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस। You know, the manner in which the leader of opposition was roughed up, manhandled and beaten up and removed from the protest site, what would you say on that? But the government has accused you of crossing the line and not behaving in a manner befitting the leader of opposition.
0: This, how I was treated, is an irrelevant issue to me. I don't care. Treat me 5 times worse, I don't care. The focus has to be on this. The focus has to be on what was done to the students. The focus has to be on the education system, on paper leaks, and on the cost that these children have been forced to pay. So, do whatever you want to me. 5 times, 10 times worse, I don't care. In fact, I like it because I learn from it.
2: And the government's allegation on you?
0: I don't care about government's allegations. Government's allegations have no consequence to me.
1: Siddharth, ANI.
3: Rahul ji, my question is, do you think Dharmendra Pradhan's istifa se koi solution aapko lagta hai vipaksh ko, ki usse hi nikal jayega, kya hona chahiye? Dusri baat ye ki itne kai saalon mein pichle 30-40 saalon se zyada ki jo democratic setup hai hamare desh ka, humne nahi dekha ki vipaksh ke neta प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने पहुंचे, उनके घर के बाहर पहुंचे हो, क्या वजह रही कि आप लोगों को वहां जाना पड़ा? और अब सरकार से भी आप मांग कर रहे हैं कि डिस्कशन हो और सरकार की तरफ से किरण रिजिजू आ जाए, उन्होंने कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन किस नियम के तहत करेंगे वो सरकार को तय करने दिया जाए। तो अगर सरकार किसी नियम के तहत आप लोगों से बात करती है,
0: आपने बहुत लंबा बोला भैया, आपके क्वेश्चन क्या है?
3: मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या वजह रही कि आप लोगों को प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचना पड़ा और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सॉल्यूशन?
0: इसके दो कारण है। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए, और हमने स्पीकर से कहा, देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरा पूरी इशू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, जस्ट पुट दैट अदर स्लाइड, धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है, धर्मेंद्र प्रधान इज ए सिंबल, एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड, दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड। Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number one. Number two, that symbol has to be removed because he's a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister's house yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making. How the discussion is going to be held, who is going to hold it, it's not only the government's decision. Because two people need to talk. That's going to be decided by the opposition, at least our part of it. The government wants to distract from this. The government wants to rub this thing under the carpet. Ki bhai hua hi nahi. Aur hum chahte hain ki ye central issue hai aur ye central issue par resolution aaye. Pradhan jaye, Prime Minister apologizes, everyone who assaulted students is the first step. Then we want to see changes being made to the testing system. We want to see changes being made to the amount of money people are charging. Thank you.
1: IANS.
4: सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जितेंद्र सिंह जब आपसे मिलने आए थे, जब आप प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे धरना दे रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने बात पे अडिग नहीं है, बार बार वो चेंज कर रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि सभी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस मामले में एक हैं, लेकिन एक अपोजिशन पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिन्होंने जिसके सांसद संजय सिंह हैं उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे?
0: देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है, मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? Jitendra Singh is irrelevant in this discussion. I mean, I'm not, he's an irrelevant fellow who doesn't. He can say whatever he wants. He's an irrelevant part of this discussion. The discussion is very simple. We have clear demands. Demand number one, Dharmendra Pradhan goes. Not our demands, student demands. Number one, Dharmendra Pradhan goes. Number two, anyone who assaulted the students is punished. Number three, Prime Minister must apologize to students. Mr. Jitendra Kumar wants to see whatever fantasy he wants to see, he's welcome to see it. I'm not really bothered about it.
1: Archana, PTI Hindi.
5: Mike. सर, कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट पे हमने देखा आपको, आपको पंच भी किया गया, आपको मारा भी गया, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, क्या हुआ था एग्जैक्टली?
0: It was fine. I'm used to getting punched and all. It's no problem. It was fine. My job is to express the will of India's people. Whether it is the will of the students, whether it is the will of young people, whether it is the will of the farmers, this is the job that I'm supposed to do as leader of opposition. I'm supposed to become an expression of the voice of India's people. I'm supposed to bring attention to where pain is being felt. These are very small costs. These are not big costs. It's a huge honor for me to do this, to be able to stand with the wishes of my people. So a couple of punches and all, this is not a problem at all. I'm happy to take many more.
1: One second. Mohit Dubey.
6: राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूँ, एबीपी न्यूज से। राहुल जी, अभी आपने कहा कि मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है नहीं, लेकिन आपकी सुरक्षा की चिंता मुझे लगता है कि क्योंकि नेता विपक्ष हैं, तमाम लोगों को है। जिस तरीके से कल आपके साथ सलूक किया गया, मुझे लगता है कि आजाद भारत के बाद किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। आपको घसीटा गया, बस में डाला गया, छत्रसाल स्टेडियम लेके आप गए हैं। आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के हक को लेकर आप लड़ रहे हैं, छात्रों की गूंज के तहत भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, आगे की अब रणनीति क्या रहने वाली है?
0: सबसे पहले सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए, हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो कर रहे हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपेंड। सेंसिबल पुलिस पीपल फील दैट दिस इज अ क्राइम दैट इज बीन डन टू द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, इज अ क्राइम दैट इज बीन डन टू द पीपल वी लव। दे कैन सी देयर चिल्ड्रन इन दिस। तो पहली बात वो है। दूसरी बात देखिए, यहां तो बड़ा क्लियर है, दिस इज द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, वी फुली सपोर्ट इट एंड वट एवर आंदोलन इज टेकिंग प्लेस ऑन दिस फ्रंट इन दिल्ली, इन एनी स्टेट, एनी वेयर दैट हैज टू डू विद दीज इश्यूज, हैज टू डू विद स्टूडेंट इश्यूज, कांग्रेस पार्टी 100%, मी 100% एंड द ऑपोजिशन एज अ होल 100% is supporting this. We are going to continue supporting it. The deeper problem is the government. There is a fundamental issue on jobs that is causing tremendous pain, and I've already said that we are heading into a storm. This is just signs that the storm is coming. But when the Iran war impact is felt, then you will see that there will be serious problems coming as a result of the pain that is being caused to farmers, to students, to other people. Anyway, I'd like to thank all of you.
1: Arun Kumar Singh.
0: Yeah. Last question.
1: एक मिनट. सवाल पूछने दीजिए, एक मिनट।
4: मैं पूछूं राहुल जी, एक एक छोटा सा सवाल है पिछले 10-12 सालों में,
6: ये छोटा सवाल और बड़ा सवाल में क्या फर्क होता है?
4: वो छोटा सा हो जाएगा ना, अच्छा आपको दोहराना नहीं पड़ेगा। जितनी तेजी से आप वहां पहुंचे, पीछे पीछे मिनिस्टर भी पहुंच गए, बहुत तेजी से पहुंचे, आपको क्या लग रहा है पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था, व्हाट कंपेल्ड हिम टू रीच आउट टू यू फर्स्ट? एंड सेकेंड थिंग ये जो तीनों डिमांड्स हैं, इज इट टोटली नॉन नेगोशिएबल? क्या इससे कम कुछ पर आप तैयार नहीं है और संसद नहीं चलेगी?
1: नहीं, सी दिस इज अ डिसीजन फॉर द मीटिंग टुमारो मॉर्निंग। देयर इज अ मीटिंग ऑफ ऑपोजिशन पीपल, इट इज डिसरिस्पेक्टफुल फॉर मी टू डिसाइड फॉर देम। व्हाट दे विल डिसाइड वी विल अग्री विथ, बट दिस इज नॉन नेगोशिएबल फॉर श्योर। दीज थ्री पॉइंट, दिस इज नॉट आवर डिमांड, दिस इज द स्टूडेंट्स डिमांड विच वी आर फुली बैकिंग। दिस इज नॉट नेगोशिएबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। Whether House will run tomorrow, that is up to the entire opposition, which will be a discussion.
7: And the first question.
4: What compels government to reach out to you so immediately?
1: Because in every government, there comes a time when psychologically they collapse. The leadership collapses. So that has happened. The government is actually in panic. This reaction that they have done with the students, panic reaction, right? What they were doing yesterday with us is a panic reaction. That's a different issue. We have to resolve this issue. Thank you very much.
8: राहुल गांधी ने तीन डिमांड यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखी हुई है और उनका यह कहना है कि किसी भी हालत में ये डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। पहली मांग उनके तरफ से ये रखी गई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी डिमांड राहुल गांधी की तरफ से ये रखी गई है कि जिन्होंने बर्बरता से स्टूडेंट्स पर कार्रवाई की है, उनको मारपीट की है, उन पर कार्रवाई हो, उन्हें अकाउंटेबल होल्ड किया जाए। और तीसरी डिमांड कि प्रधानमंत्री इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगे, ये एक मांग उन्होंने रखी है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि स्टूडेंट्स के मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, फोकस उस पर होना चाहिए। स्टूडेंट्स सड़क पर थे और इसीलिए जब स्पीकर ने उनकी बात नहीं मानी, स्पीकर से वो मिलने गए थे, वो चाहते थे कि सदन के भीतर इस पर चर्चा हो, लेकिन जब चर्चा नहीं हुई तब जाकर उन्हें सड़क पर बैठना पड़ा और सड़क पर जाने के बाद भी उनको लगता है कि इस पर कार्रवाई हो पाएगी। स्टूडेंट सड़क पर थे और इसीलिए हमें भी सड़क पर जाना चाहिए। हालांकि विपक्षी एकता की बात भी उन्होंने रखी है, उनका यह कहना है कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ है। कल विपक्ष के नेताओं की बैठक होगी और उसके बाद तय होगा कि क्या ये तीनों डिमांड नॉन निगोशिएबल है और क्या इसी मुद्दे पर सदन के भीतर भी चर्चा होती रहेगी। राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बात की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। एक प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने ये मुद्दे को सामने रखने की कोशिश की है कि जो स्टूडेंट्स दिल्ली में सोमवार को प्रदर्शन कर रहे थे उन पर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, कुछ तस्वीरें भी उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिखाई है और उसके बाद ये सवाल भी खड़े किए हैं। उनका यह कहना है कि मुख्य मुद्दा, केंद्रीय मुद्दा स्टूडेंट्स का है, छात्रों का है, उन्हें सिस्टम में चेंज चाहिए और इसी को लेकर हम बात करेंगे। जब उन्हें पूछा गया कि जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय के जब वो मिलने आए, क्या सरकार के रुख में आपको फर्क नजर आ रहा है? उनका यह कहना था कि जितेंद्र सिंह का मिलना यह इररिलेवेंट है। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया, वहां से हटाया गया, उस पर भी राहुल गांधी का यह कहना है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से उन्हें हटाया गया है, उनके लिए छात्रों का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। कुल मिलाकर एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी गई है। आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तीसरे दिन मानसून सत्र के तीसरे दिन और इस बीच और एक बड़ी खबर आ रही है, सोनम वांगचुक जो मेदांता अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। वांगचुक ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है, बच्चों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए, यह भी सोनम वांगचुक ने लिखा हुआ है। अब तक दिल्ली पुलिस की तरफ से 10 FIR दर्ज किए गए हैं। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि सरकार आश्वस्त करे तो मैं अनशन खत्म करूंगा।
9: अभिजीत दिपके कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके सोनम

0: कार्रवाई नहीं की जाए। जो सड़क पर आंदोलन हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस के तरफ से 10 FIR करीब करीब किए गए। अननोन लोगों के खिलाफ FIR किए हुए हैं, अनजान लोगों के खिलाफ FIR किया हुआ है, लेकिन बच्चों पर कार्रवाई नहीं की जाए, ये भी उन्होंने मांग यहां पर रखी हुई है। उसके साथ साथ JP नड्डा, अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, ये मांग क्या है? क्योंकि जो जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस की तरफ से 10 FIR अब तक इस पे किए गए हैं, तो क्या इन FIR को रद्द करने की मांग सोनम वांगचुक यहां पर कर रहे हैं अपना अनशन तोड़ने के लिए, और उनकी बाकी जो मांगे थी उस बात को लेकर उनका क्या कहना है?
1: देखिए साहिल, अहम पत्र है ये, क्योंकि दो कारणों से। एक, आप सही कह रहे हैं कि जो छात्रों के ऊपर FIR हो रहा है या पुलिस का एक्शन हो रहा है उसको लेकर सोनम वांगचुक ने स्पष्ट रूप से अपना संदेश सरकार को दे दिया है कि बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, जो 20 जुलाई को दिल्ली में एक्शन देखने को मिला था। और दूसरा कि आप पार्लियामेंट में इसको लेके डिस्कशन करें, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो प्राइमरी डिमांड था छात्रों का और कांग्रेस जनता पार्टी का, सैक धर्मेंद्र प्रधान, उसमें आप देखिए टोन डाउन दिख रहा है सोनम वांगचुक की तरफ से खुद ही, क्योंकि आप वहां कंसिडरेशन ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लिखा हुआ है, यानी कि आप कंसिडर करें। एकदम जो रिजोल्यूशन था जिस मांग को लेके अड़े हुए थे सोनम वांगचुक, वहां पे थोड़ा टोन डाउन दिख रहा है। संभवतः ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से डेलिब्रेशन किए, कल भी मुलाकात हुई थी, आज भी किसी तरह के कम्युनिकेशन की बात हमें बताई जा रही थी सूत्रों के हवाले से, और संभवतः उसके बाद से वर्डिंग्स चेंज कराए गए हैं इस पत्र के, इन्हीं डेलिब्रेशन के बाद, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप कंसिडर कीजिए इस्तीफा हो शिक्षा मंत्री का। लेकिन अब लग रहा है कि डेडलॉक खत्म होगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी एक डेलीगेशन सोनम वांगचुक से मिलने वाला है उनको अपील करने के लिए कि आप अपना जो अनशन है उसको खत्म कीजिए, हम सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाएंगे। साहिल,
0: अमित, दो बड़ी बातें हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और एक बार फिर उन्होंने तीन मांगे दोहराई है। पहली मांग उनकी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, जिस बात को लेकर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे। दूसरी मांग जो स्टूडेंट्स की तरफ से भी उठाई गई है कि जिन्होंने लाठी चार्ज किया है उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें अकाउंटेबल होल्ड किया जाए। और तीसरी मांग अब राहुल गांधी रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी इस पर माफी मांगे, जो घटनाएं हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री भी माफी मांगे। सोनम वांगचुक के इस चिट्ठी में इसमें से किसी भी मांग का जिक्र नहीं है, और उसके साथ साथ राहुल गांधी यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर इसलिए गए क्योंकि उन्हें स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना था। अगर स्टूडेंट सड़क पर है तो वो भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करें, इसीलिए वो वहां पर जाकर आंदोलन कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या सोनम वांगचुक के साथ विपक्ष खड़ा है, या सोनम वांगचुक अब अपने तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखना चाहते हैं और अपने तरीके से मांग रखना चाहते हैं? और उसके साथ साथ जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका क्या होगा, क्योंकि वहां पर भी अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि तब तक वहां पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते।
1: अब बिल्कुल, अब जो कांग्रेस जनता पार्टी है या अभिजीत दीप की टीम है उसको रिकंसिडर करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी को, और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या एक कम्युनिकेशन गैप आया सोनम वांगचुक और अभिजीत दीप की टीम के बीच, क्योंकि जंतर मंतर पे ये मांग बिल्कुल बनी हुई है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। और राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने आज सदन की कार्रवाई में कंडीशंस रख दिए थे कि सदन की कार्रवाई तभी होगी जब आप एडजर्नमेंट मोशन के तहत इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिन पुलिस वालों ने एक्शन किया है विपक्ष के हिसाब से, बर्बरता की है, उनके खिलाफ जांच हो और कार्रवाई हो, और इसके साथ साथ जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। तो कुल मिला के अब विपक्ष को भी एक बार से तालमेल अपना बिठाना पड़ेगा सोनम वांगचुक के साथ, और जिस तरह से छात्र हैं, क्या अब ये देखा जाए यहाँ से कि अंदेशा लगाया जा रहा था कि एक बार फिर से मोबिलाइजेशन हो सकता है दिल्ली में, और जगह जगह पे CJP अलग अलग तरह के क्लेम्स कर रही है कि उनके सपोर्टर्स को रोका जा रहा है, तो उस हिसाब से भी अब यहाँ से आप ये मान सकते हैं कि चीजें स्केल डाउन हो रही हैं, और संभवतः एक अंडरस्टैंडिंग जरूर बन रही है जिस तरह से डिलिब्रेशन सरकार ने किए हैं सोनम वांगचुक के साथ, और आज भी विपक्ष के साथ कई राउंड डिलिब्रेशन करने की कोशिश की गई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी जो धरने पे बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर, उनसे भी डेलिब्रेशन करने की कोशिश की गई। खुद अर्जुन राम मेघवाल जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो मिलने के लिए गए थे उनसे कि आप धरना अपना खत्म कीजिए, आपकी बात हम सुनने को तैयार हैं।
0: ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है उसमें दो चीजों का जिक्र है जिसका जिक्र अमित भारद्वाज भी कर रहे हैं. एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ द स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड फॉलोइंग द एग्जामिनेशन पेपर लीक, जो मांग स्टूडेंट्स के तरफ से भी रखी गई थी. दूसरी बात जिसका जिक्र अमित भारद्वाज ने किया कि इस बार ये लाइन थोड़ी चेंज होती हुई नजर आ रही है.

0: कंसिडरेशन ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब आप सोचे इस इस्तीफे को लेकर। और आखिरी बात उन्होंने रखा है कि पीसफुल मार्च था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से ब्रूटैलिटी से वहां पर लाठीचार्ज किया गया, उसका भी उन्होंने निषेध किया हुआ है और कहा है कि स्टूडेंट्स पीसफुली मार्च कर रहे थे, स्टूडेंट्स अपनी मांग रखने की कोशिश कर रहे थे, वो सरकार के साथ अपनी भूमिका रखने की कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि उनका ये कहना है कि डेमोक्रेसी के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलती है, इसीलिए उन पर जो कार्रवाई होगी उसे रद्द किया जाए और उसके बाद वो अपना अनशन तोड़ेंगे। ये बात उन्होंने यहां पर रखी हुई है। और अपोजिशन पार्टी का डेलीगेशन भी अब सोनम वांगचुक को मिलने वाला है। अलग अलग चीजें वहां पर हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए वो सड़क पर उतर आए हैं, सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि वो अपना अनशन तोड़ देंगे, कि अगर जो FIR किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। कई सारी बातें चर्चा करेंगे। हमारे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, अनुराग ढांडा भी जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से, सत्यप्रकाश मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट है JDU लीनिंग है वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी से भी इस चर्चा में शामिल होंगे। शहजाद पूनावाला, अब तीन मांगे राहुल गांधी यहां पर रख रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि सदन में चर्चा होगी कि नहीं होगी ये तो विपक्ष के साथ जो मीटिंग होगी उसमें तय होगा, लेकिन इस बीच सोनम वांगचुक की चिट्ठी, क्या सरकार इस बात पर विचार करने के लिए तैयार है कि कम से कम स्टूडेंट्स पर कार्रवाई नहीं होगी, जो FIR लिए गए वो वापस लिए जाएंगे, किसी तरीके से दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी?
1: साहिल जी, आज इस डिबेट में एक ऐतिहासिक चीज होने वाली है। आपकी पहली बार डिबेट में पक्ष और विपक्ष नहीं है, हम सभी लोग एक ही साइड पर है कि स्टूडेंट्स का हित होना चाहिए। मुझे लगता है आज अलका जी हो, मैं हूं, अनुराग हो, धीरेन्द्र जी हो, या सत्यप्रकाश हो, या साहिल हो, हम सब एक साइड पे होने चाहिए। हाँ, दो पक्ष ये है, नीट स्टूडेंट्स के साथ या राजनीति के साथ। अभी आपने बोला कि राहुल जी की ये तीन मांगे जो उन्होंने अभी प्रेस वार्ता में की, मैं सुन रहा था, राहुल जी की कल 2 बजे से पहले एक और मांग थी, दूसरी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान के विषय में। फिर जब राहुल जी प्रधानमंत्री के निवास पर पहुंचे और उनको बोला गया कि भाई आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने बोला पार्लियामेंट में चर्चा। फिर उनसे फिर से पूछा गया कि पार्लियामेंट में चर्चा के लिए हम तैयार है, अब क्या चाहते हो, तो बोल रहे कि नहीं अब मेरी मांग बदल गई है। फिर उसके बाद उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला आप होम मिनिस्टर की भी रेजिग्नेशन होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की भी होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने तो बोला राहुल जी को हमने भेजा वहां पे, और आम आदमी पार्टी ने अपनी सेट ऑफ डिमांड्स दे दी। फिर समाजवादी पार्टी आज पार्लियामेंट में खड़ी हो गई और KC वेणुगोपाल की तरफ देखते हुए पीयूष मिश्रा ने ट्वीट किया है, कहा कि देखो कांग्रेस और बीजेपी में समझौता हो चुका है।
0: सॉरी मैं आपको रोकूंगा, जो चिट्ठी है, सॉरी मैं आपको रुकूंगा, क्योंकि क्या है ना, एक अहम खबर है इसमें, सोनम वांगचुक की जो चिट्ठी है उस पर उन्होंने कहा है कि इस्तीफे तक की मांग पर विचार का भरोसा दिया गया। सोनम वांगचुक कह रहे हैं सरकार की तरफ से,
1: मैं उस पर आ रहा हूं।
0: हाँ, तो ये भरोसा दिया गया है क्या
1: साहिल जी? हाँ, मुझे पता है ना मैंने कौन सा ऐसा डिबेट किया जिसमें आपकी बात का जवाब नहीं दिया है। आप केवल मतलब अब ये था कि फ्लो में था, फ्लो अब टूट गया, चले मैं फिर से प्रयास करता हूँ।
0: चिट्ठी अभी आई है ना शहजाद?
1: कोई नहीं,
0: अगर चिट्ठी अभी आई है तो उसमें जो कंटेंट है उस पर बीच बीच पे सवाल पूछेंगे ना।
1: मैं हाथ जोड़ के अपनी बात में क्या, इसीलिए मैंने हाथ जोड़ के मौका चाहता हूँ कि मैं अपनी बात पूरी कर दूं जहां से मैंने छोड़ी थी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी बोलते हैं कि इस्तीफा विस्तीफा छोड़ो, हमको चाहिए कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आ जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सोनम वांगचुक से मंत्री जी मिले हैं, नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी, उनकी अब एक डिमांड आई है जिसमें कि राहुल जी की मांग से उलट मांगे हैं। हमने देखा है कि दीपके वाला जो फैक्शन है जिसमें कि सौरव दास है और आशुतोष रंका है, उनकी एक मांग है। तो मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, सरकार ने एक बहुत अच्छी बात कही, सरकार ने कहा जिसकी जो मांग हो, जिसके मन में जो हो, पार्लियामेंट में चर्चा हो जाने दीजिए, हम सब पार्लियामेंट में बैठ के नीट स्टूडेंट्स के लिए चर्चा कर सकते हैं और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड चर्चा होगी। परंतु अब जो राजनीति करते, 10-15 सेकंड लूंगा केवल, राजनीति करने वाले साहिल जी नीट के मुद्दे में 370 बहाल करने का भी मुद्दा लाते हैं, उमर खालिद को रिहा करने का भी मामला लाते हैं, पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे का भी मामला लाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री को गोली मार देंगे, ये भी मामला लेकर आते हैं। इसीलिए मैं आज हाथ जोड़ के, अभी दो और बातों का अगर जवाब देने मिले, क्योंकि राहुल जी की इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे 1 घंटे चली, तो मुझे थोड़ा अवसर दीजिए। राहुल जी ने बोला कि 150 पेपर लीक हुए 10 साल में और उसमें 0 कन्विक्शन हुई। मैं मानता हूं राहुल जी बहुत ही बुद्धिमान है, वो ये जानते हैं।
0: एक मिनट, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपका जवाब नहीं लूंगा मैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य मुद्दे उस पर मैंने आपको सवाल पूछे थे, तो आप उस पर पहले बात करिएगा।
1: नंबर एक, तो बहुत नंबर दो
0: है। नहीं, अभी मेरी बात सुनिए, आप मेरी भी बात सुन लीजिएगा। दूसरी बात यह कि उस जो मोर्चा निकला, जो आंदोलन हुआ, उसमें 200 चीजें कही गई होंगी, लेकिन सेंट्रलाइज फोकस तरीके से हम देखें तो स्टूडेंट्स की मांग बड़ी क्लियर है इसमें। मैं और जो स्टूडेंट्स के तरफ से भी रखी गई है, जेपी नड्डा आपके मंत्री उनसे बात कर रहे हैं, उनके सामने लिखित स्वरूप में लिखी गई है, तो बात तो उसी पर होगी। मैं बाकी चीजों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि लिखित स्वरूप में आपके मंत्री के पास में वो मांगे रखी गई है, हम उसी पर बात करेंगे।
1: आपने पर साहिल जी शुरुआत में राहुल जी के तीन मांगों की जिक्र किया, अभी आप मंत्री के सामने
0: तो वही मांगे है ना
1: साहिल जी, जो मांगे सोनम वांगचुक की तरफ से अभी उस लेटर में आई है उसमें क्या है, कॉम्पनसेशन पॉइंट नंबर वन, मेरे पास भी लेटर है। दूसरी बात है कि पार्लियामेंट में एक सार्थक चर्चा हो, जो दोनों चीजों के लिए हम विचार करने के लिए और तैयार है, पार्लियामेंट में चर्चा के लिए तो बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर बैठे सभी पैनलिस्ट से, हालांकि ये सब स्टूडेंट्स के लिए तैयार है, मुझे पता है पंजाब में आज पेपर लीक हुआ है उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला, पंजाब में क्या कर्नाटका में तमिलनाडु में तेलंगाना में ऐसे कुल मिलाकर 10 पेपर लीक हुए 2-3 महीने में, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ये वॉट अबाउटरी आप बोलेंगे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कल पार्लियामेंट में चर्चा के लिए कांग्रेस समर्थन देगी या कांग्रेस विरोध करेगी। समाजवादी पार्टी बोलती है कांग्रेस का हमारे साथ समझौता हो चुका है क्योंकि कांग्रेस जो मांग रख रही है उसको हम लोग मान रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है आम आदमी पार्टी का हमारे साथ समझौता हो चुका है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो बोल रही है उसकी मांग हम मान रहे हैं। सबकी मांग तो पार्लियामेंट में चर्चा है, तो क्यों आज वो पार्लियामेंट में चर्चा करने से क्यों घबरा रहे, इतनी बात का जवाब दे दीजिए।
0: अलका लंबा जवाब दे दीजिएगा,
2: धन्यवाद।
0: उसके साथ साथ सोनम वांगचुक ने जो बात रखी है उनका भी जी।
2: बिल्कुल साहिल जी, अच्छा है कि भाजपा के प्रवक्ता को आप गुमराह कर रहे थे, उन्हें आप मुद्दे पर वापस लाए, मुद्दा साफ है, पेपर लीक से बात शुरू होती है। बहुत आसान है, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा हम सब छात्रों का हित चाहते हैं, हम चाहते हैं आप नहीं चाहते हैं। अगर छात्रों का हित चाहते हैं तो छात्रों का हित धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ये तय हो चुका है। एक बार पेपर लीक नहीं हुआ, ये बार बार हुए, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया एक बार फिर से, 22-25 बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और 1.32 लाख करोड़ रुपया एक नीट के पेपर पर खर्च होता है। कितना? अभिभावकों का, छात्रों का खर्च होता है 1.32 लाख करोड़, और सरकार का पूरे साल का शिक्षा का बजट ही 1.4 लाख करोड़ है। और हमारी मांगें बिल्कुल साफ है, राहुल गांधी जी की कांग्रेस की अपनी कोई निजी मांग नहीं है। राहुल गांधी जी छात्रों के गूंज एक अभियान चलाते हैं, वो राजस्थान के कोटा जाते हैं, वो देहरादून जाते हैं, वो हर शहरों में अपने नेताओं को, हम सब गए प्रेस वार्ता की, बच्चों से मिले, छात्रों से मिले, और मांग आती है जंतर मंतर से भी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो शिक्षा मंत्री के तौर पर फेल हो गए हैं। अगर आप सच में छात्रों का हित चाहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान फेल हो चुके हैं, उनके हाथ में बच्चों का भविष्य।
0: जल्दी से दो चीजें अलका लंबा, आपने हाँ आपने सेंट्रलाइज मांग उसमें रख दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आज जब सदन के भीतर इस पर बातचीत हुई तब स्पीकर के तरफ से भी पूछा गया कि आप चर्चा करना चाहते हैं, लेजिटिमेट तरीके से आइए, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। उसके बाद केसी वेणुगोपाल ये कहते हैं कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे, तो आखिरकार क्या है? इस्तीफा जब तक नहीं होता तब तक चर्चा नहीं होगी, या चर्चा होगी या उसके बाद इस्तीफे की मांग रखी जाएगी?
2: साहिल जी, मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपने नाक का सवाल क्यों बनाकर रखा हुआ है, क्यों ताकत और बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों छात्रों को कुचल के लहूलुहान करके अस्पताल में पड़े हुए अमित शाह जी और मोदी देखने नहीं जाते हैं, क्यों उनकी मांग अगर मान ली जाए धर्मेंद्र प्रधान नाक का सवाल क्यों है? क्योंकि साफ सी बात है, पेपर लीक के भ्रष्टाचार में भाजपा के नेता पकड़े जाते हैं नागपुर से, इसलिए उन्हें बचाने के लिए बचाना आज प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है वो मजबूरी हो चुकी है। हमारी बिल्कुल मांगे वही है जो जनता
0: जरूरी क्या है, चर्चा या इस्तीफा सदन हाँ? के भीतर चर्चा या इस्तीफा? सोनम वांगचुक चाहते हैं कि सदन के भीतर चर्चा हो, सदन के भीतर पहले चर्चा हो, तो चर्चा जरूरी है कि इस्तीफा?
2: देखिए राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा पे बात हुई, स्पीकर को मिले, राहुल गांधी जी मिले, सब मिले और बोला चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने कहा मैं सरकार से बात करूंगा, लेकिन अब बात यह है कि वो कह रहे इस्तीफा नहीं होगा, चर्चा कर लो, फिर चर्चा का क्या फायदा जब आप
0: इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी? जिस तरीके से वो कह रही है बिना इस्तीफे के चर्चा नहीं होगी
1: साहिल जी,
0: और कल विपक्ष की बैठक होगी उसमें जो होगा वो तय होगा, और उसके बाद अनुराग भदौरिया को भी पूछना है क्योंकि अखिलेश यादव आज जब खड़े हुए उन्होंने कहा इस्तीफा तो बाद में होता रहेगा, पहले चर्चा होना जरूरी है, तो उनके पास भी मैं जाऊंगा।
1: साहिल जी बिना गुस्सा हुए, बिना तू तड़ाक किए, क्योंकि आज देखिए बहुत ही गंभीर विषय है और मैं बड़ी विनम्रता से साहिल जी मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। साहिल जी यदि आपका संरक्षण होगा तो मैं बोलूंगा, वरना
0: मुझे गालियां देती है, शांति से सुनी गई है। ये बात तो ठीक है कि शांति से इस पर बात
2: होनी चाहिए।
0: प्लीज अलका लामा जी, प्लीज
1: जी देखिए, साहिल जी ऐसा है, साहिल जी मेरी
0: रिक्वेस्ट, अलका लामा जी प्लीज, अलका जी प्लीज,
1: साहिल जी मेरी रिक्वेस्ट,
0: उनकी बात सुन लीजिए, मैंने उनको सवाल पूछा है, ऐसे मत करिएगा, फिर क्या होगा ना, डिबेट बिगड़ जाएगा, फिर आपके बीच में वो बात करेंगे और यही होता रहेगा।
1: साहिल जी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।
0: अरे तो आपको भी पूरा समय दिया ना, आपको भी पूरा समय दिया।
1: साहिल जी मेरी एक बहुत छोटी रिक्वेस्ट,
0: आपको भी पूरा समय दिया गया, शहजाद जवाब दीजिए।
1: साहिल जी मेरी एक बहुत छोटी रिक्वेस्ट है, अलका जी तो मेरी बड़ी हैं और मेरी बहन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि यदि आपको मेरी कोई बात भी कम लगे तो मैं मेरा आगे का मौका भी आपको दे दूंगा, पर मेरी बात इस बार आ जाने दीजिए, उसके बाद आप बात रखिए। देखिए साहिल जी, अभी आप साहिल जी मैं अपनी बात रखूं, देखिए मैं तो केवल शालीनता का परिचय दे सकता हूं, मैं तो पार्लियामेंट उखाड़ नहीं सकता, मैं बात
0: ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहली बार शहजाद कह रहे हैं कि उनका समय भी वो आपको देंगे, आप जरा प्लीज उनका भी ख्याल रखिएगा,
1: थैंक यू,
0: शांति से उनकी बात देखिएगा।
1: सिर्फ समस्या ये है साहिल जी, साहिल जी आप देखिए, आपको थोड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी वरना मेरा संरक्षण छीन जाएगा आपसे। साहिल जी मैं तो अपना
0: नहीं,
1: समय
0: आपका संरक्षण है, बोलिए आपकी बात रखिए।
1: साहिल जी लाइटर नोट पे, मैं तो अपनी बहन अलका को मेरा समय दे दूंगा तो पता नहीं अखिलेश जी की भी गालियां सुननी पड़ेगी और आम आदमी पार्टी की भी सुननी पड़ेगी। अब मेरी बात हो जाने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दर्शकों को ये पसंद नहीं आता, दर्शकों को पसंद नहीं आता, स्टूडेंट्स देख रहे हैं। साहिल जी प्लीज इंटरवीन कीजिए, मैं ऐसे नहीं टू विंडो में कर सकता, ये गंभीर
0: मुद्दे पर सीधे आइए। अलका जी प्लीज सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना एक बार,
2: कल तो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी,
0: ठीक है अलका लामा जी आप सुन लीजिए,
1: या तो आप
0: सीधे मुद्दे पर आएंगे, अलका जी को जरा शांत,
1: मैं आ रहा हूं मुद्दे पर, ऐसे कैसे हो सकती है चर्चा, बेसिक कर्टेसी भी होती है देश में।
0: सीधा मुद्दे पर आइए, आप सीधा मुद्दे पर आइए।
1: साहिल जी अब उन्होंने क्या कहा, आपने सिंपल पूछा कि चर्चा पहले या इस्तीफा पहले, क्योंकि अखिलेश जी ने बोला इस्तीफा पहले नहीं चर्चा पहले हो जाए, सोनम जी ने बोला चर्चा पहले हो जाए, बाकी लोग बोल रहे चर्चा पहले हो जाए, तो इन्होंने बोला कि हमने नाक का सवाल बनाया प्रधान जी को, तो मैं पूछना चाहता हूं बड़े विनम्रता से, क्या सोनम वांगचुक ने भी प्रधान को अपना बना दिया नाक का सवाल, क्या अखिलेश जी ने भी बनाया? दूसरी बात ऐसा है, मैं हाथ जोड़कर, क्योंकि उन्होंने अभी बात की राजस्थान की और उन्होंने इस्तीफे की भी मांग की, राजस्थान में ग्रेड 3 लाइब्रेरियन, जूनियर इंजीनियर, वन रक्षक, रीट का एग्जाम, एसआई का एग्जाम, मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम, एलडीसी का एग्जाम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एग्जाम, टीचर का एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, ऐसे 15 एग्जाम लीक हुए तो सचिन पायलट धरने पर बैठे, ना काला टी शर्ट पहना, उल्टा प्रियंका जी बोलती थी कि ये पेपर लीक तो रोक नहीं सकते। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब में 3 पेपर लीक हुआ, अलका जी बताइए पंजाब में किसी का इस्तीफा मांगा कांग्रेस ने? नहीं मांगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के ऊपर है, ये पेपर और पीपल के ऊपर है ही नहीं, इनको पॉलिटिक्स की चिंता है, मत कीजिए पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मत कीजिए पॉलिटिक्स,
2: नरेंद्र मोदी
1: पार्लियामेंट में आइए चर्चा कीजिए हमारे साथ,
2: जिम्मेदारियों से आज की अपनी जवाबदेही से,
1: अलका जी कल पार्लियामेंट में चर्चा हो जाएगी, आइए ना,
2: कांग्रेस के काल में ये हुआ था तो वो भी ठीक था तो ये भी ठीक है।
1: नहीं कोई नहीं कह रहा अलका जी, आपके कुकर्मों को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, अलका जी कल पार्लियामेंट में अच्छी चर्चा करते हैं, आइए स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं, आइए ना,
2: क्योंकि वो संघ की निकल डाल के संघ आरएसएस की बैकग्राउंड रखने वाले को बनाया गया,
1: साहिल जी ये सॉल्यूशन ही नहीं चाहते, ये दंगा चाहते हैं, ये पार्लियामेंट उखाड़ना चाह रहे हैं, ये पुलिस वालों को मारना चाह रहे हैं,
0: ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
1: गलत बात है, गलत।
0: अलका लामा जी एक मिनट, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में है अनुराग भदौरिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने तीनों मांगे क्योंकि अभी ये सोनम वांगचुक ने जो उन्होंने जो खत लिखा है वो मेरे हाथ में आ गया है, मैं क्योंकि अभी अभी ये आया था तो मैं जरा थोड़ा पढ़ रहा था उसको, और उसमें हम ये समझ पा रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने अभी जो प्रेजेंटेशन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसमें जो तीन मांगे रखी, करीब करीब उसी तरीके की बातें सोनम वांगचुक की चिट्ठी में भी लिखी गई है, और उसमें तो वो ये कहते हैं कि हमारी चर्चा हुई है सरकार के साथ में, चर्चा के दौरान आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से, और उसमें पहले दो मुद्दे बड़े इंटरेस्टिंग है, परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को पर्याप्त मुआवजा मिलेगा, नंबर एक, नंबर दो, संसद में सार्थक चर्चा कर जवाबदेही सुनिश्चित करना जिसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार भी शामिल है। सिर्फ ऑर्डर ऊपर नीचे है लेकिन मांगे वही है, अखिलेश भी वही बात रख रहे हैं, सिर्फ ऑर्डर ऊपर नीचे है, तो पहले चर्चा या पहले इस्तीफा इस बात को लेकर ही चर्चा हो रही है यहां पर, शहजाद भी वही मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज अखिलेश जब पार्लियामेंट में बात कर रहे थे तब उन्होंने भी यही किया।
3: देखिए बहुत अफसोस और दर्द के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई दर्द नहीं है, बच्चों को जिस तरह से लाठी पड़ी, उनके कपड़े फटे, उनके पैर टूटे, कोई दर्द नहीं है, वो राजस्थान भाग गए, पंजाब भाग गए, मतलब ये बच्चे मार खा गए, ये बच्चे हमारे नहीं है। तो किसके हैं बच्चे? आप नहीं है, हमारा खून है, हमारे देश के बच्चे हैं, जिस लाठी से उनको पीटा गया है। कहते हैं ना, लाठी की ताकत तो पल भर की होती है, युवाओं की आवाज सदियों तक गूंजेगी। ये सदियों तक गूंजेगी जिस तरह की आपने बर्बरता उनके साथ की है, किस तरह से आपने उनको पीटा है। आपने आप आपकी पुलिस को, आपकी सरकार को दर्द नहीं जगा जरा सा भी कि मेरे ही बच्चे हैं ये? लेकिन उनके ऊपर आप लाठियां बरसाते रहे और आप एक मंत्री का इस्तीफा लेने को तैयार नहीं, उसके बदले में आप हजारों लड़कों को पीट डालो, लेकिन मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा मंत्री इस्तीफा? मंत्री को कौन चुनता है? एक एमपी को कौन चुनता है? यही जनता चुनती है ना, यही युवा चुनती है ना, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है, सदन पहुंचाती है। और उनको सदन पहुंचाने के बाद उनके साथ क्या होता है? हमने सदन पहुंचाया आपको, आपको सत्ता में उन्होंने, युवाओं ने बैठाया, और आप उन पे लाठियां बरसाएंगे, उनका इस्तीफा तक नहीं लेंगे। इतनी तानाशाही, इतनी लोकतंत्र की हत्या करेंगे आप? आपने देखा वहां पे किसी के सर फूटे, किसी की टांगे टूटी, फिर भी सवाल जिंदा है। युवाओं का हर एक घाव आज गवाह के रूप में जिंदा है। आप जो जो
0: पहली
3: गवाह
0: मांग
3: के
0: कौन
3: रूप
0: सी
3: में जिंदा
0: आपकी?
3: है, उनके घाव आपके,
0: पहली
3: आप
0: मांग
3: उसको
0: कौन सी
3: कैसे?
0: है? और जो ऑर्डर है
3: मेरी
0: उस ऑर्डर के
3: पहली,
0: हिसाब से पहली मांग कौन सी है आपकी?
3: मेरा सीधा सा मांग ये है, मैं सीधी सी बात कहता हूं कि जो वहां पे, जैसे मैंने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला साफ साफ, इस्तीफा होना चाहिए, और जो बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है, जो बर्बरता हुई है, क्या वापस आ जाएगी? इस्तीफा भी आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने साफ साफ बोला सदन में खड़ा
2: माफी
3: होके,
2: मांगनी चाहिए
3: इस्तीफे आप लेंगे,
2: प्रधानमंत्री
3: जो
2: जी।
3: सम्मान गया है वापस आ जाएगा, आ जाएगा सम्मान वापस। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से पूछता हूं,
0: शहजाद
3: पूछना चाहता हूं, अगर इनको इनको
1: साहिल जी,
3: अपनी
1: देखिए
3: बहनें
1: मैं अपने
3: नजर आती
1: डिबेट में
3: उसमें,
1: जब भी
3: अपनी बेटी
0: आज
3: नजर
0: राहुल
3: आई
0: गांधी
3: आती
0: भी,
3: उसके अंदर
0: आज
3: में,
0: राहुल
3: मेरी
0: गांधी भी
3: अपनी
0: ये
3: बेटी
0: बात
3: बहन
0: रखने की
3: नजर नहीं
0: कोशिश कर
3: आती।
0: रहे थे कि
3: अलका
0: पूरा
3: जी को
0: विपक्ष
3: बता
0: एक साथ
3: रहे
0: है इस मुद्दे पर, और वो सड़क पर इसके लिए गए क्योंकि सड़क पर स्टूडेंट्स भी सड़क पर थे, इसीलिए उनका प्रधानमंत्री आवास के सामने जाना पड़ा, चर्चा हो नहीं रही थी सदन के भीतर, इसीलिए हमें सड़क पर जाना पड़ा।
1: अपनी बात
3: मैं पूछना चाहता हूँ,
0: 10 सेकंड, 1 मिनट, 10 सेकंड, चलिए बात खत्म करिए,
3: 10 सेकंड, ये आज मैं गारंटी से
0: 10 सेकंड अनुराग जी गिन रहा हूँ।
3: अलका जी भी इसको अपना, अलका जी भी भारतीय जनता पार्टी को अपना भाई नहीं बोलेगी, मैं भी भाई नहीं बोलूंगा, ऐसा भाई
2: बिल्कुल
3: नहीं चाहिए, ऐसा भाई जो हमारी बहनों को पीटेगा, बेटियों को पीटेगा, भाई बनता है नहीं चाहिए, ऐसी भाई हम लोग,
0: शहजाद
3: हम कोई भाई नहीं,
0: चलिए हो गया शहजाद।
1: साहिल जी मैं अपनी बात रख सकता हूँ, आप प्लीज मुझे संरक्षण दे दीजिए, केवल मुझे संरक्षण दे दीजिए साहिल जी, धन्यवाद।
0: ठीक है, हो गया
1: साहिल जी,
0: आपके 10 सेकंड
1: दे दीजिए,
0: हो गया हो गया,
1: थैंक यू,
0: हो गया हो गया हो गया।
1: साहिल जी देखिए, आप हमें डिबेट पे बुलाते हो और बड़े फोकस तरीके से डिबेट की आप हमेशा एक आग्रही रहते हो। मैं आज तक का ही स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं क्योंकि मुझे पता था ये समस्या होगी। अखिलेश यादव, अभी पुलिस बर्बरता मुद्दा है, इस्तीफा नहीं। डिंपल यादव, हम चर्चा तो चाहते हैं, इस्तीफा चाहते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी, उनका थर्ड स्टैंड, अब बताइए कि एक स्टैंड क्लैरिफाई करके दे नहीं रहे। दूसरी बात, पंजाब पुलिस के द्वारा ये पंजाब के बच्चों को मारा जा रहा है, तो इनके पेपर लीक मांगने के लिए, पेपर लीक पर जस्टिस मांगने का अधिकार पंजाब के बच्चों को नहीं है ना? पंजाब के बच्चों को बोल देना हम। फिर उसके बाद 10 सेकंड सर, 10 सेकंड, प्लीज, 10 पेपर इंडिया अलायंस के स्टेट्स में लीक हुए हैं, वहां पर भी बच्चे पीटे गए जब अपनी आवाज उठाए। उनकी भी बात नहीं करनी है ना पार्लियामेंट में, उनको भी बोलना है कि नहीं आपकी कोई जरूरत नहीं है बात करने की। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, हमने कहा विरोध किया प्रधानमंत्री निवास पे राहुल गांधी के जाने का, जितेंद्र सिंह तो गए, परंतु जिसने विरोध किया उनका नाम है आम आदमी पार्टी। मुझे तो लगा आम आदमी पार्टी को भी बुलाएंगे, वो तो गालियां दे रहे, वो तो कह रहे अलका जी और मेरी पूरी राजनीतिक एक तरीके से ट्यूनिंग है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बड़े संवेदनशीलता से, अखिलेश जी की मांग क्या है? अखिलेश जी ने तो बोला समझौता हो गया कांग्रेस बीजेपी का, क्योंकि अखिलेश जी को उठकर यह कहने नहीं मिला कि इस्तीफा विस्तीफा छोड़ दो। अब बताइए मैं किसकी बात मानूं, अनुराग जी जो कांग्रेस जाना चाहते हैं या अखिलेश यादव की?
0: किसकी बात माने जरा आप एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए उनको, किसकी
3: बात
0: माननी चाहिए?
3: ये नाटक करना बंद करें और वहाँ पे जो छात्र युवाओं हैं, जो हमारी बेटी बेटियां हैं, उनकी बात मानिए ना, उनकी बात क्यों नहीं मानते हो? हम तो कहते हैं इस्तीफा भी देना चाहिए, आप क्या चाहते हो? मैं पूछता हूँ, इनकी बहन बेटियां होती, इस पे लाठी पड़ती तो ये क्या मांगते, ये क्या मांगते? शहजाद पूनावाला मैं पूछना चाहता हूँ, अगर खुद की बेटी होती, बहन होती, उसमें लाठी पड़ी होती, उनके उनके सर फटे होते, खून निकल रहा होता, कपड़े नुचे हुए होते, क्या मांगते सरकार से? क्या मांगते सरकार से बताओ?
0: वीरेंद्र कुमार,
3: एनडीए
0: की मीटिंग के भीतर प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ,
3: नहीं बोल पा,
0: जो पेपर लीक होता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ स्टूडेंट सड़क पर उतरते हैं, पूरा विपक्ष आज कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा?
4: देखिए, मेरे नेता चिराग पासवान जी ने कल ही कहा है और बच्चों के साथ उन्होंने सहानुभूति जताई है, आपके चैनल पर भी चला है। मैं कहता हूं कि अगर संवैधानिक रूप से सदन के मंदिर में इस पर चर्चा हो, किससे कौन भागता है? अगर इस्तीफे का आप
2: लगातार
4: मांग
2: मांग रही
4: करते
2: है।
4: हैं तो उस पर आप जरूर
0: चिराग
4: मांगिए।
0: पासवान ये भी कह रहे थे कि इस तरीके से आंदोलन करके कुछ नहीं होता है, ये भी
4: मैं
0: उन्होंने कहा
4: उसका
0: है, प्रदर्शन करने से समस्या हल नहीं होती है। बयान
4: यही
0: सुनाऊं
4: बात तो
0: आपको?
4: मैं बोल रहा हूँ, यही बात मैं बता रहा हूँ, उसके आगे का लाइन मैं बोल रहा हूँ कि संवाद के जरिए आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। सदन के अंदर में आइए कि भाई आप रेजिग्नेशन
3: संवाद
4: मांग
3: क्या
4: रहे हैं,
3: होगा, वो तो
4: इसके
3: 19 दिन
4: मैं
3: बचे
4: ये
3: रहे, संवाद
4: कह रहा
3: करने
4: हूँ,
3: गए ही
4: इसके
3: नहीं।
4: चलते आप रिजाइन करिए और जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं
3: अरे
4: उनको
3: संवाद करने
4: किसी
3: कहाँ
4: पास
3: गए
4: के
3: भाई,
4: खाने
2: टायर
4: दस लोगों
2: है
4: के
2: जो
4: खाने
2: आंदोलन के
3: बैठे
2: अब
3: थे
2: जाके
3: आप
2: बातें
3: नहीं करने
2: नहीं
3: देंगे,
2: करेंगे,
3: कोई मिलने तक नहीं
2: टायर है
3: गया,
2: जो
3: कोई बात
2: आंदोलन
3: करने
2: के
3: तक नहीं
2: खिलाफ
3: गया, सब
2: एक
3: आधे
2: मिनट
3: घंटे की दूरी में
4: देखिए ये
3: बैठे थे,
4: दोनों लोग एक
3: जो
4: साथ
3: चुने गए
4: बोलेंगे,
3: थे उनसे बात कर
4: गंभीरता
3: लेते,
4: का परिचय
3: क्यों नहीं
4: दीजिए,
3: आपने बात की उनसे,
4: थोड़ी
3: तब तो आप
4: गंभीरता का
3: मिलने गए
4: परिचय
3: नहीं,
4: दीजिए तो
3: आप
4: सही,
3: ध्यान दे रहे हो
4: आप
3: संवाद होना चाहिए, संवाद के लिए वहां मंत्री
4: मैं
3: गया,
4: बता रहा
3: कोई
4: हूँ,
3: अधिकारी गया था
4: थोड़ी देर
3: 19
4: आप
3: दिन तक,
4: डिफेंस
3: और नहीं नहीं
4: चाहिए
3: वो
4: ना,
3: मास्क
4: बात तो
3: करके बैठे
4: सुनिए,
3: थे, बच्चे धरने पे
4: किस
3: बैठे थे
4: तरह से
3: 19 दिन में,
4: एलओपी
3: 19 दिन
4: ने
3: तक आपने
4: साथ
3: सोचा,
4: धरने देने का
3: आपने जरा
4: काम किया,
3: सोचा कि उनसे मिलके आ
4: इस
3: जाए, आप मिलने
4: मंथन
3: तक
4: में
3: नहीं गए, अभी
4: आयल
3: याद
4: जी
3: दे रहे
4: देखिए
3: हो
4: इनको
3: आप
4: बंद करिए
3: खड़े
4: पहले,
3: हुए
0: भदौरिया जी प्लीज
3: मानने लगे,
0: वो तो बात तो खत्म
3: होना
0: करने दीजिए,
3: चाहिए पहले
0: आपको
3: संवाद
0: बोलने
3: के लिए
0: का
3: जो
0: मौका
3: बोलना
0: मिलेगा बीच में
3: चाहिए।
0: मत टोकिए ना प्लीज, ये
4: इनकी
0: पूरा
4: आदत
0: ऑर्डर
4: है,
0: खत्म हो जाएगा, प्लीज जरा अनुराग अनुराग जी प्लीज धीरेन्द्र कुमार को अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए, पूरा पूरा बात उनको खत्म करने दीजिए, बोलिए
4: एलओपी वहां पे गए, एलओपी स्टूडेंट के समर्थन में प्रधानमंत्री निवास के पास धरने पर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे पर आरोप लगता है कि 20 दिन आप क्या कर रहे थे, जबकि उस दरमियान में हमने परीक्षा करा कर सर समय रिजल्ट लाया, लेकिन विदेश घूमने वाले जो नेता थे उनको तो कम से कम जनता
2: सेना को कायर लोगों
4: वैधानिक पद पे रहते हैं, जब जितेंद्र
2: नहीं
4: प्रसाद जी उनसे मिलने जाते हैं जितेंद्र सिंह, तो फिर वहां पर एनओपी के नाते लोग जल्दी सरकार के जाते, कहीं ना कहीं देखिए बीच में ही हल्ला करेंगे तो मुश्किल होगा, सरकार
0: धीरेन्द्र कुमार आपका कहना क्या है कि राहुल गांधी विदेश में थे, एक मिनट धीरेन्द्र कुमार आपका कहना क्या है कि राहुल गांधी विदेश में थे इसीलिए उनको स्टूडेंट्स के मुद्दे पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है,
4: नहीं,
0: ये आपका कहना
4: है,
0: ये आपका कहना है,
4: तुम देर कर दी, जब उनसे मिलने के लिए जितेंद्र सिंह जाते हैं, एलओपी का हम लोगों ने सम्मान किया,
2: उनकी हैसियत क्या है सरकार में, नड्डा जी की और जितेंद्र सिंह जी की हैसियत क्या है सरकार में,
4: समाप्त हो गया
2: होता
0: क्योंकि आज उस पर सवाल भी पूछे गए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पहली बार ये देखा गया है कि जितेंद्र सिंह सड़क पर जब आंदोलन हो रहा है तो सीधे नेता विपक्ष से मिलने जाते हैं, पहली बार यह देखा जा रहा है कि राजनाथ सिंह बयान दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हम करने के लिए तैयार है, पहली बार जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, वो सोनम वांगचुक को भी मिलने गए, 20 दिन के बाद क्यों ना हो, 22 दिन के बाद क्यों ना हो, लेकिन क्या सरकार भी दो कदम पीछे आने को तैयार हुई है, ये आपको लगता है पहली बार यह देखा गया?
5: नहीं नहीं, ये आगे और पीछे का कदम नहीं, ये एक जिम्मेदार सरकार का जिम्मेदारी भरा लोकतांत्रिक कदम है, किसी भी लोकतंत्र में यदि किसी की कोई मांग है, आहत है, पीड़ित है, तो किसी भी सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़कर छात्रों के साथ संवाद स्थापित करे, और जेपी नड्डा साहब ने और आपने सारा नाम लिया जिन्होंने संवाद स्थापित किया, मैं अलका जी ना आपके बीच बोला, आपका मौका आएगा आप बोलिएगा, तो मेरी बात रखने दीजिए, आपको मेरे आलोचना करना हो मेरे तर्कों का करिएगा, स्वागत करेंगे हम उसका, इस्तीफे की राजनीति है बहुत खूब, देखिए इस्तीफा मांगा है छात्रों ने, अशोनम वांगचुक साहब ने कहा कंसीडर करिए, मेरा मानना है कि देखिए सदन लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी संस्था है, मंदिर है, आइए चर्चा करिए, चर्चा से बातें निकालिए, और उन बातों में जो तथ्य सामने आए उस पर कार्रवाई जरूर हो, अगर मैं इस्तीफे की पिछली राजनीति पे जाऊंगा तो इतना परचम खोल दूंगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या विपक्ष के जितने पटेर हैं
3: ना,
5: रुकिए ना प्लीज, अलका जी रुक जाइए ना, अलका जी रुक जाइए,
0: तीनों लोग साथ में बात करते तो नहीं हो पाएगा, जरा एक मिनट, सभी को शांत करिए प्लीज,
5: अलका जी
0: और अनुराग भदौरिया आप दोनों एक साथ बात करने लगेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगा, ये डिबेट ही नहीं हो पाएगा, फिर बातचीत ही नहीं हो पाएगी, आप उनको बोलने दीजिए, आपको बोलने का मौका मिल रहा है, इस तरीके से बातचीत नहीं हो पाएगी, सत्यप्रकाश मिश्रा बात करेंगे, उनकी आवाज सुनाई देगी, चलिए
5: राहिल जोशी जी मैं एक उदाहरण अलका जी को जरूर दूंगा, महिला प्रवक्ता हैं, इसी दिल्ली में दिसंबर 2012 में निर्भया गैंगरेप हुआ, लड़कियों ने प्रदर्शन किया, ठंडे का दिन था, पुलिस ने जिस तरह भंगी कार्रवाई की, भीषण मारा, एक पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार तो उनसे हटाया नहीं गया, गृह मंत्री तो बैठा रहा अपनी कुर्सी पर, कोई इस्तीफा नहीं दिया, लोगों का डिमांड था हटाइए इस पुलिस कमिश्नर को, जिनसे अदना सा पुलिस कमिश्नर नहीं हटता दिल्ली में, वो हमसे बर्बरता का हिसाब मांग रहे। सुनिए, किसी भी छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार बल प्रयोग के खिलाफ है, जब कोई संसद पूछ कर रहा है, पथराव चल रहा है, 118 पुलिसकर्मी घायल हुए, सोचिए वहां किस तरह की भीषण हालत होगी। उसके बाद भी मैं यहां से कहता हूं कि लोकतंत्र में लाठी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन भी छात्रों की जो भी मांग है सरकार की, उनके
0: आपको लगता है सत्यप्रकाश मिश्रा जी, सोनम वांगचुक ने जो मांग रखी है कि पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, वो सरकार को टुकड़ा देनी चाहिए, ये आपको लगता है? क्योंकि अगर इस तरीके से हुआ है तो सरकार कार्रवाई करेगी?
5: नहीं, मेरा हमेशा ये मानना है कि जो कानून सम्मत और संविधान सम्मत जो भी बातें हैं, उससे सबको ही पता हुआ है। संविधान हाथ में घूमने वाले लोग आज संविधान की दुहाई क्यों नहीं दे रहे? क्या लोगों को संसद में घुसने दे दिया जाता? क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि इस देश को बांग्लादेश बना दो, श्रीलंका बना दो, नेपाल बना दो? क्या इन लोगों ने अराजकता की बात नहीं करी? क्या वहां अराजक स्थिति नहीं पैदा हो रही थी? कौन लोग थे नहीं पता? छात्र तो बैठे थे अपने मुद्दे को लेकर, ये राजनीतिक पार्टियों के सारे पटे उनके कांधे पर चढ़कर
0: अलका लंबा जवाब दीजिएगा। एक मांग यहाँ पर यह रखने की कोशिश हो रही है कि पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ी है, यानी एक भूमिका यह भी बनाने की कोशिश चल रही है कि उस पर कार्रवाई नहीं होगी, हो सकता है, क्योंकि एक अब अकाउंटेबिलिटी की बात रखी गई है राहुल गांधी की तरफ से, जिनका लाठीचार्ज उस पर अकाउंटेबिलिटी।
2: पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, शांतिपूर्ण छात्र बच्चे आंदोलन कर रहे थे, लहूलुहान करने के बाद घायल अस्पताल में कहते आइए चर्चा करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, पहले क्या और बाद में उलझा रहे हैं, चर्चा भी होगी, इस्तीफा भी होगा, दोनों एक साथ होंगे और हम ये करवा कर रहेंगे। ये कायर सरकार है, ये पहले लहूलुहान करेगी और फिर कहेगी चर्चा के लिए आ जाओ, ये पहले क्या बाद में क्या? शर्म आनी चाहिए इन्हें, शर्म आनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जो फेल हो गए, उनके इस्तीफा नहीं होना चाहिए, इस पे आज भी ये अड़े हुए हैं, बेशर्मी से इतिहास में जा रहे हैं कि 12 में लहूलुहान किया तो अब भी लहूलुहान करके विशेषज्ञ बता रहे राजनीति की कोई गलत नहीं कर रहे, तब गलत था तो आज सही कैसे है छात्रों को लहूलुहान करना? अगर तब सही था तो आज भी सही है, आपका ये मतलब है? कहना क्या चाहते हैं? आज की बात आज करिए, 12 साल से केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार है, 22 लाख बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव में है, 22 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, लहूलुहान पड़े हुए हैं, और आप कहते हैं बात, अरे लहूलुहान करके कौन सी बात होती है?
1: अनुमति हो तो
0: राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे थे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब उनको सवाल पूछा गया कि क्या सिर्फ इस्तीफे से सब मामला सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा सिर्फ इस्तीफे की वजह से, राहुल गांधी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से ये मंत्रालय चलाया गया है, ये डिपार्टमेंट चलाया गया है, इसी के वजह से जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए।
1: हाँ,
0: और ये प्राइमरी मांग बन रही है, सोनम वांगचुक हो, स्टूडेंट हो, विपक्ष हो, यह प्राइमरी मांग बन रही है आज की स्थिति में।
1: बिल्कुल, राहुल गांधी ने कितनी अच्छी बात की है कि जिस चीज को उन्होंने राजस्थान में होते हुए लागू किया ना, गहलोत जी का तो इस्तीफा ले लिया था 15 पेपर लीक के बाद, और फिर उन्होंने जब केंद्र में AIEEE AIPMT CBSE के पेपर लीक हुए थे तब दिया था ना। साहिल जी, आप देखिए पानी सर से ऊपर जा रहा है, मेरी बारी में हर बार डिस्टर्ब, हर बारी में कर रही है और आप लोग उसको अलाउ कर रहे हैं।
0: अलका जी को जरा शांत करिए,
1: ये नहीं हो सकता।
0: अलका जी, क्या होगा ना, आप ऐसे मत करिएगा, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ, बीच बीच में आप मत बोलिए ना, मैं आपको बोलने का मौका मिल जाएगा।
1: देखिए ऐसा है,
0: आपकी बात खत्म करिए।
1: साहिल जी, कांग्रेस की एक नई डिमांड भी आई है, आपको पता है? मैं आपको सुनाता हूँ वो डिमांड, सुनिए जरा।
6: राहुल गांधी जी की इन्होंने टिप्पणी चलाई थी कि डंडे से मारेगी प्रधानमंत्री को, मैं कहता हूं डंडे से ही नहीं मारेगा इस युवा प्रधानमंत्री को, घसीट के ले जाएगा।
1: ये है कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता ईशान त्यागी, इन्होंने TV9 भारतवर्ष पे स्टेटमेंट दिया है और कांग्रेस के MP कुरियोकोज ने पुलिस को लाफा मारा है।
0: ये भारतवर्ष पे किसने क्या बोला उससे मुझे कोई लेना देना
1: क्यों नहीं,
0: मैं अपने चैनल पर क्या बोला है और जो अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी बात मैं करूं?
1: साहिल जी,
0: किसी और चैनल पे, किसी और अखबार में किसने क्या बोला उस पे मैं क्या चर्चा करूंगा?
1: साहिल जी, मैं हाथ जोड़ के, अच्छा चलिए, इससे मतलब नहीं साहिल जी, आपको
0: ऐसे आपके बहुत सारे बयान में निकाल के दिखाऊंगा।
1: प्लीज,
0: मंत्री कह रहे हैं कि कीड़े हैं ये सारे, कीड़े मकोड़े हैं।
1: मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने,
0: आप वो आपको निकाल के दिखा
1: देंगे। जाने दीजिए,
0: पहले दिन बोला गया था इनसे क्या बातचीत करना, 20 दिन 22 दिन तक किसी ने बातचीत नहीं की है।
1: आप
0: मुद्दा मत भटकाइए ना, मुद्दे पर रहिएगा, जिसने मांग रखी है वो मुद्दे पर बात करिए।
1: बात हो जाने दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। चलिए, उससे आपको मतलब नहीं, छोड़ दीजिए, डिलीट कर दिया। एक और चीज दिखा रहा हूँ, कल की बात है जब प्रधानमंत्री निवास से सबको हटाया जा रहा था तो यादव नाम के पुलिस वाले को कुरियोकोज उनके सांसद ने लाफा मारा। इससे भी मतलब नहीं है सहल जोशी को, या पुलिस वाला यादव है मार दो, रहमान होता तो ये चिल्लाते, ऐसा है क्या? अच्छा वो आपके कॉलीग देव कोटक को पीटा गया, नंगा किया गया, उससे भी आपको मतलब नहीं है ना सहल जी? ये देव कोटक को नहीं है ना मतलब आपको सहल जी? नहीं है ना? देव कोटक को मारा गया, सही मारा गया ना टाइम्स नाउ के रिपोर्टर, क्योंकि टाइम्स नाउ का आज तक को क्या मतलब है? सर इस प्रकार से मत कीजिए, मेरी संवेदना हर एक के साथ है, मेरे मंत्री गए हैं वो उन बच्चों से मिलने,
0: ये देखिए जयपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है,
1: उनको नहीं है जो चर्चा नहीं चाहते, और मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं 10 स्टेट में पेपर लिखो इंडिया लाइंस के, छात्रों को पीटा गया, अनुराग जी की पार्टी वहां पे इस्तीफा नहीं मांगती।
0: आपने तीन तस्वीरें दिखाई, एक मिनट शहजाद, आपने तीन तस्वीरें दिखाई तो आप ये बोल दीजिए इन पर कार्रवाई होगी, और किस तरीके से कार्रवाई होगी ये भी बता दीजिएगा। सबसे पहले आपने कहा कि यादव नाम के एक व्यक्ति को मारा गया, मुझे नहीं पता था कि उनका नाम यादव है कि क्या है करके,
1: मैं आपको
0: पता नहीं किसने पीटा है, लेकिन आप वीडियो दिखा रहे हैं, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता। आप बताइए क्या कार्रवाई करेंगे आप? एक मिनट, आप बताइए क्या कार्रवाई करेंगे? नंबर एक, देव कोटक को पीटा गया आप कह रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे वो भी बता दीजिएगा। यानी सोनम वांगचुक ने जो मांग रखी है वो नहीं मानेंगे हम, सीधे कार्रवाई करेंगे, या एक ऑफिशियली आप बता दीजिएगा इस बात को, सरकार की तरफ से ये भूमिका है आप बता दीजिए उसको।
1: सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी पुलिस वाले ने किसी को गलत मारा या किसी सांसद ने किसी पुलिस वाले को मारा, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब अलका जी बोले क्या वो सांसद पे कार्रवाई के लिए तैयार है, क्या वो ईशान त्यागी पे कार्रवाई के लिए तैयार है, क्या वो कुरियो को उस पे तैयार है, क्या देव कोटक को मारने वाले उर्दंगों पे कार्रवाई के लिए तैयार है? उनकी संवेदना नहीं है,
2: समय मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी,
0: उनकी आवाज सुनाई
2: दे रही है, चले जाते हैं प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरों पर जाने की बजाय, 22 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसकी हत्यारी ये सरकार उसके माँ बाप को मिल लेते, अस्पताल में
0: शहजाद पूनावाला ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 22 बच्चों ने जो सुसाइड किया हुआ है उस पर कार्रवाई तब होगी, जरा शहजाद पूनावाला को दिखाइए एक मिनट, जब इन सारे चीजों पर भी कार्रवाई होगी और जो कहा गया उसके बाद ही कार्रवाई होगी, तो ये वॉट अबाउटरी अभी भी चल रही है एक तरीके से, यही बात है ना शहजाद?
1: हाँ साहिल जी,
0: ये नहीं कह रहे हैं
1: आप, मुझे मौका दे रहे हो
0: तो आप वॉट अबाउटरी निकाल रहे हैं, तो मैं आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो तो मैं आपसे पूछ रहा
1: हूं। जी एक सेकंड प्लीज, डोंट डू दिस, क्योंकि आप मुझसे बहुत वरिष्ठ और मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, आप जानते हैं,
0: सो यू ऑल्सो डोंट डू दिस।
1: एक सांसद का एक पुलिस वाले को, सांसद का पुलिस वाले को मारना जायज है हाँ या ना?
0: कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए, आपकी सरकार है,
1: बिल्कुल आपकी, तो मैं सरकार वही है। कह रहा हूं
0: वीडियो मत दिखाइए, कार्रवाई करिए,
1: मैं अरे नहीं
0: मेरे वीडियो, वीडियो क्यों दिखा रहा है, कार्रवाई करिए, पुलिस वाले को मारा है तो
1: वीडियो इस, आपको वीडियो नहीं दिखाया, कांग्रेस को दिखाया
0: तो मुझे दिखा रहे थे आप, चलिए ठीक है, उम्मीद यही है कि इस बात को लेकर कम से कम बातचीत शुरू हो जाएगी, और जब बातचीत शुरू होगी तभी इसमें से रास्ता निकल पाएगा। आप देखना है कि कल सदन के भीतर इस पर चर्चा होती है कि नहीं होती है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं विपक्ष में चर्चा करेंगे हम पहले, और उसके बाद ही हम तय करेंगे कि सदन के भीतर चर्चा का रुख किस तरीके से होगा, तो इस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se.
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
3: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
4: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
5: इस मांग को आगे बढ़ाया, उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
3: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।

0: पीछे 6 फुट वाली रखी, पीछे दुणाली, आगे हैट पे लिखा था गुजर। बात करा दे दीदी तेवर से, मेरी निकले जान हुआ के तेवर से।
1: वाह, ये अलग लेवल पे है भाई।
2: वाहन का क्या है? जब तक इस देश में एथनॉल है।
1: पानी हल्का गर्म है, मिर्ची अपने मुंह पे डाल लिया, हल्दी वो पानी उन्हें गिरा के रो रहा हो कि एक लाइक दे दो, हम उसको स्वाइप कर मिले तो लाते लात मारो कि क्या पागलपन कर रहा है भाई।
3: भाई अरबी
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी
2: एट नॉर्थवेस्ट बैंक वी आर हियर फॉर व्हाट्स नेक्स्ट द नेक्स्ट बकेट लिस्ट ट्रिप द नेक्स्ट होम रेनोवेशन or the next milestone celebration. Right now, earn 4.0% annual percentage yield with a new high-yield performance savings account. Opening an account online takes just minutes. Go to northwest.com/performance to get started today. And visit a new financial center opening in your neighborhood soon. Member FDIC. Northwest Bank. For what's next.
3: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
5: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा. आप अपना देख लो.

पहाड़ों पर मानसूनी आफत का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का रेड अलर्ट। बादल फटने के बाद राजौरी और करगिल में हालात नाजुक। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर इस वक्त मानसून का कहर झेल रहा है। पूंछम के बफलियाज इलाके में कुदरत का रौद्र रूप दिखा। लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड की चपेट में कई इलाके आ गए। ये तस्वीर पुंछ की है, जहां एक सुरंग पर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रही मशीनें भी आ गई। वहीं भारी बारिश के बाद शहर के बीच बह रहा पानी भी लोगों को डरा रहा है। अब किश्तवाड़ से आई डरावनी तस्वीर देखिए। यहां राइटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड से तबाही मच गई। क्षतिग्रस्त हुआ पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था। वहीं डोडा में रागी नाला के पास लैंडस्लाइड की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। राजौरी के नौशहरा की वाईये तस्वीर देखिए, जहां भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से नदी के बीच टापू में फंसे को निकाला गया। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो।

तिनके की तरह बहती गाड़ियां, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कारगिल की है। बादल फटने से यहां पानी का ऐसा उफान आया कि पेड़ और गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आई। राजौरी के नौशेरा की तस्वीर भी देखिए। भारी बारिश से यहां मानवर नदी उफान पर है। दब्बड़ क्षेत्र में नदी के बीचों बीच एक व्यक्ति का शव दिखाई देने की सूचना मिली तो प्रशासन ने बड़े स्तर पर राहत बचाव अभियान शुरू किया। दो दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में कल दोपहर सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया। पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में कुदरत का रौद्र रूप देखिए। लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड की चपेट में कई इलाके आ गए। ये स्कूल भी पानी की मार से बुरी तरह बर्बाद हो गया। ये तस्वीर पुंछ की है, जहां एक सुरंग पर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रही मशीनें आ गईं। भारी बारिश के बाद शहर के बीचों बीच बह रहा पानी भी लोगों को डरा रहा है। पुंछ जिले में बारिश ने भारी बर्बादी मचाई है। भूस्खलन से सूरनकोट के मुर्रा इलाके में एक घर मलबे में दब गया, जिसमें 7 लोग जिंदा दब गए। अब किश्तवाड़ से आई डरावनी तस्वीर भी देखिए। रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड से तबाही मच गई। पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, जो क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं डोडा में रागी नाला के पास लैंडस्लाइड की वजह से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मीर फरीद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, कहा 10 साल में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद, 152 पेपर लीक में कोई सजा नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, बोले छात्रों से माफी मांगे पीएम मोदी। नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी में वांगचुक ने अनशन खत्म करने के लिए रखी शर्त, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर संसद में विचार और छात्रों को मुआवजे पर आश्वस्त करे सरकार। पेपर लीक और राहुल के धरने के विरोध में कई शहरों में बवाल, दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना, जयपुर तक प्रदर्शन, कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस का हल्ला बोल। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक खत्म, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त, मंदिर का धार्मिक कार्यभार संतों को सौंपने का फैसला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, एक सिपाही की मौत, पहलगांव अटैक के बाद घाटी में पहले आतंकी वारदात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए, वायलेंस क्या है, हिंसा की है, इंटरेक्शन होना चाहिए। जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए।
3: आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते,
4: हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन।
5: आपने इनको बुलवा दिया क्या, समझौता कर लिया आपने क्या?
6: जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है।
7: आप जानते हैं जो आ रहा है करने की अपील करता
8: हूँ। 267 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये लिया जाता है, इससे रेयरेस्ट क्या हो सकता है।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की लड़ाई तेज हो गई है। आज राहुल गांधी ने न सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई बल्कि प्रधानमंत्री से भी माफी की मांग की। उधर सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी और सरकार के सामने भूख हड़ताल खत्म करने के लिए शर्तें रखी हैं। चिट्ठी में सोनम वांगचुक ने साफ साफ लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा हो, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार हो, उन्होंने पेपर लीक पर आत्महत्या करने वाले छात्रों को मुआवजा देने और किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कार्रवाई न करने का भी भरोसा मांगा है। इस बीच संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा क्योंकि सरकार चर्चा के लिए राजी होने के बावजूद विपक्ष को लंबी चर्चा का भरोसा देने को तैयार नहीं है। आज लोकसभा में बोलने का मौका न मिलने पर अखिलेश यादव का गुस्सा न सिर्फ सत्ता पक्ष पर फूटा बल्कि कांग्रेस भी निशाने पर आ गई। बाद में हालांकि अखिलेश यादव ने कहा आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कि फ्लोर कोऑर्डिनेशन है उसमें कमी की वजह से ऐसा हुआ और वो आपसी तालमेल कांग्रेस के साथ बिठा लेंगे। सवाल यह है कि क्या पेपर लीक के मुद्दे पर अब सियासत की आर पार की लड़ाई छिड़ गई है? क्या छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में विपक्ष कामयाब हो रहा है? क्या सीजेपी के धरने से बने माहौल का फायदा विपक्ष को मिलेगा? पेपर लीक के विरुद्ध अपना अपना युद्ध। हल्ला बोल में आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब विपक्ष का मुद्दा बस एक है, वो ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और संसद में पेपर लीक से जुड़े सारे मसलों पर चर्चा हो।
1: सबसे पहला कमिटमेंट धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
0: विपक्ष के तेवर तो सख्त है लेकिन जहां विपक्ष की सरकार से सीधी भिड़ंत है वहीं आपस के तालमेल में कमी और हितों का टकराव भी सामने दिखा है। मसलन प्रधानमंत्री आवास तक विरोध करने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज संसद के बाहर काले कपड़ों में विरोध जताने सांसदों के साथ नजर तो आए लेकिन लोकसभा में अखिलेश का गुस्सा इस बात पर फूट गया कि कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और सरकार की ओर से किरेन रिजिजू बोले लेकिन उन्हें बोलने का मौका ना मिला।
2: ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें?
3: आपको मैंने बोलने के लिए कहा।
2: उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
0: अखिलेश से ठीक पहले केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में साफ कहा था कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो लेकिन सदन में अखिलेश का रुख बिल्कुल अलग था।
4: हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। इफ यू एक्सेप्ट अडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा करो सर।
2: इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे, लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है।
0: कल ही राहुल गांधी के धरने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुगलबंदी का आरोप लगाया था। वैसे अखिलेश यादव ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि फ्लोर कोऑर्डिनेशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है।
2: ये फ्लोर कोऑर्डिनेशन में कभी कभी होता है, वो हम लोग बातचीत से रास्ता निकाले।
5: नहीं
2: ऐसा कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है। फ्लोर कोऑर्डिनेशन फिर ठीक हो जाएगा, अगर जो कमी होगी वो दूर होगी।
0: इस बीच आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार ने भरोसा दिया कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। हालांकि पेच इस बात पर फंसा है कि चर्चा कैसी हो। विपक्ष लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाना चाहता है और राज्यसभा में रूल 267 के तहत चर्चा चाहता है ताकि लंबी चर्चा हो। सरकार इस पर कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। पेपर लीक के मसले पर सीजेपी के विरोध से बढ़ गए हंगामे पर राजनीतिक दल हालात को परख रहे हैं।

0: से परे था, जैसे कि कोर्ट का जजमेंट जज लिखता है और जब तक प्रोनाउंस न कर दे तब तक वह गोपनीय माना जाता है। अब वो जज जिसने जजमेंट लिखा है वही जज अपना जजमेंट सुनाने से पहले लीक कर दे, ये एक विचित्र व्यवस्था हुई है। तो परंतु सरकार उसकी भी व्यवस्था कर रही है कि अब टेक्नोलॉजी का यूज करके एक या दो पेपर सेटर नहीं रहे, किस ढंग से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर उसको डाइवर्सिफाई करके किया जाए, सरकार उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जहां तक हमारे युवाओं की उपलब्धि की बात है हमें उसके ऊपर पूरी तरीके से गर्व है। अंजना जी फिजिक्स का ओलंपियाड हुआ है, भले ही ज्वाइंट में ही सही, भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, पांच लोगों के सदस्यों ने, हमारे बच्चों ने शानदार काम किया है। अभी आपने देखा कि भारत का पहला स्पेस सैटेलाइट प्राइवेट सेक्टर का विक्रम वन जो स्काई रूट नाम की कंपनी ने जाके एस्टेब्लिश किया, उसमें जो यंग बच्चे हैं उनकी एवरेज एज 28 साल है। भारत का ही एक युवा है जो है जो अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में भी रह चुका है। तो भारत के युवा अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वह प्रतिभा पूरी तरीके से आनी चाहिए। पेपर लीक के विषय के ऊपर सरकार सजग भी है और कठोर भी है उन लोगों के ऊपर, परंतु यह भी बात है कि छात्रों को भी यह साथ ध्यान रखना चाहिए कि कुछ विशेष उपद्रवी तत्व हैं जो अराजकता की गिद्ध दृष्टि रखते हैं और वो सत्ता लोलुपता की मानसिकता से प्रभावित हैं और वो हर आंदोलन में पिछले दरवाजे से जाकर घुस जाते हैं और उनका उद्देश्य तोड़फोड़ करना होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, ये वही नारे वही शब्द जिनका आंदोलन से उस मुद्दे की मांग से कोई मतलब नहीं, जैसे उमर खालिद को रिहा होना चाहिए, ये आपने सीए में भी सुना, किसान आंदोलन में भी सुना, पहलवान आंदोलन में भी सुना और यहां भी आप सुन रहे हैं। मोदी जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग, मोदी जी को गाली, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, अमित शाह जी को गाली, ये सब जगह सुना। तो बस मैं छात्रों से कहना चाहूंगा आपकी बात पर सरकार संवेदनशील है, परंतु बहुत सावधान रहिए कि ये कुछ खतरनाक घुसपैठिए हैं जो कभी मुसलमान के रूप में, कभी किसान के पीछे, कभी पहलवान के पीछे और कभी नौजवान के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये भी कहूंगा कि घुसपैठियों से सावधान रहिए और अपने आंदोलन का भी एसआईआर करा के रखिए और ये देखिए कि उपद्रवी तत्व जो कि हिंसा पैदा करना चाह रहे हैं वह आपके उद्देश्य को भटकाना चाह रहे हैं, जबकि सरकार बात करने को भी तैयार है। अब आप देखिए नड्डा जी ने जब बुलाया था बात करने के लिए तो अब यह भी एक विचित्र बात थी कि जब नड्डा जी ने कहा कि अपनी डिमांड बताइए तो उन्होंने कहा हम तो कोई डिमांड लाए नहीं, हम 4 बजे के बाद आएंगे। तो यह भी दर्शाता है कि एक नॉन सीरियस अप्रोच भी थी। तो मैं कह रहा हूं गंभीरता से आइए, बात करिए, सरकार हर समस्या का समाधान करने के लिए कृतसंकल्पित है।
1: ठीक है प्रियंका जी, आप ही के पास आते हैं, उसके बाद मैं वीरेन जी फौरन आपका रुख करूंगी। प्रियंका जी, आज बड़ा सवाल यह है कि एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त है सरकार के सामने, जो तैयारी उनकी तरफ से दिख रही है या जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो बच्चों को आश्वस्त करने में कामयाब होते दिख रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ आज भी वो विरोध प्रदर्शन जस का तस जंतर मंतर पर चल रहा है और एक तरह से भावनात्मक रूप से ज्यादा लोग जुड़े सोनम वांगचुक की वजह से वो भी सरकार के सामने आज शर्तें रख रहे हैं।
2: नहीं देखिए, जिस तरीके से सरकार ने अपने अहंकार के चलते ये पूरा मामला इतना आगे बढ़ने दिया जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रास्तों पे आए और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। और अंजना जी, मैं आपको ये भी बता दूं, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे छात्र राजनीति अलाउड नहीं है, कॉलेज कैंपसेस में अलाउड नहीं है और आज हमेशा स्टूडेंट्स अपॉलिटिकल रहे हैं, पर आज वो भी इतनी भारी संख्या में शिवाजी पार्क जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 900 से ज्यादा बच्चों को डिटेन किया है, हर रोज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, बार बार ये कहने की कोशिश, चोला पहनाने की कोशिश की जा रही है कि फॉरेन फंडेड है, एंटी नेशनल है, ये है वो है, दीज आर जेन्युइन स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। सरकार चाहती तो जब मई में ये पूरा नीट एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन ऑर्डर किया था तभी बच्चों से संवाद शुरू कर सकती थी, पर जब चीफ जस्टिस ने उनको कॉकरोच और ये सारी चीजों की उपाधि दी उसके बाद भी ये लोग बात कर सकते थे, पर ये बात करना इनके अहंकार पे मान चलता नहीं ना, इस सरकार में इतनी अहंकार से भरी हुई सरकार है तो यहां पे भी नीम टिकड़े ढूंढ ढूंढ कर बहानेबाजी कर अकाउंटेबिलिटी से भाग रही है। 23 दिन पूरा जंतर मंतर में उनका प्रोटेस्ट चला है और 23 दिन के बाद आप जाकर जेपी नड्डा जी कहते हैं आइए मुझसे बात करिए और फिर ये बहानेबाजी करें कि अरे कुछ फॉर्मेट तो लाते, कोई फॉर्मल नोट तो लाते। क्या फॉर्मल नोट, जब पूरे देश भर में एक ही मांग चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब धर्मेंद्र प्रधान की बात आती है, 2014 से लेकर आज तक 3 इनके एजुकेशन मिनिस्टर बदल चुके हैं, स्मृति ईरानी बदल चुकी है, डॉक्टर आरपी निशांक बदल चुके हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी बदल चुके हैं। ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान में है कि ये लोग पूरी सरकार को दांव पे लगाने को तैयार हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं इनके पास, धर्मेंद्र प्रधान के पास, जिससे खुद सरकार डरी हुई लग रही है? दूसरी चीज, सिर्फ ये नीट का मामला नहीं है,

0: यूजीसी नेट का भी मामला है, सीयूईटी का भी मामला है, यूजीसी गाइडलाइंस में पूरे देश में आक्रोश हुआ, जहां ये जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे कैंपसेस में, सुप्रीम कोर्ट ने जाकर उस पर स्टे लगाई है। 22 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं नीट के उसमें, जहां पे जो बच्चे मरे हैं उनके पेरेंट्स आज जंतर मंतर पे खड़े हैं, फिर भी आप उनको सुनने को तैयार नहीं हो। आज भी आप क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ बातचीत करेंगे पार्लियामेंट में, हम आपको बोलेंगे आप हमें बोलिए, पर हम इस्तीफा नहीं देंगे। अगर अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो अकाउंटेबिलिटी तय करने का, वो मिनिस्टर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस्तीफा देता है। देश इस देश में हो चुका है, देश ने देखे हैं इस्तीफे होते हुए, ये कोई नया इस्तीफा नहीं होगा, ये सरकार का बड़प्पन होगा, सरकार की जिम्मेदारी होगी कि युवाओं के प्रति, युवाओं के आक्रोश के प्रति थोड़ा विनम्रता दिखाते हुए ये स्टेप लें, और फिर जो चेंजेस लाने हैं, बदलाव लाने हैं, आप करिए। ये बार बार कह रहे हैं कि पहले कैपिटेशन फी लगती थी, कैपिटेशन फी लगती थी, अरे ये नीट का पूरा कार्यक्रम ही 2013 में शुरू हुआ इनकी सरकार के आने से पहले, इसको तो कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस वजह से ये लोग श्रेय ले जाते हैं, और श्रेय किसका, धर्मेंद्र प्रधान जी को दे रहे हैं, जबकि उस समय वो धर्मेंद्र प्रधान थे भी नहीं एजुकेशन मिनिस्टर।
1: ठीक है,
0: तो थोड़ा तथ्यों के अनुसार अगर बात करेंगे तो अहंकार से भरी हुई सरकार को जनता और युवाओं की किसी तरीके के दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते ये माहौल आज बन चुका है।
1: श्याम कुमार बर्वे जी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन सुधांशु जी आप उनकी बात का जवाब दीजिए। सीधा आरोप है उनका कि सरकार अहंकार में बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ी, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, और अब जबकि ये आंदोलन जिसमें आप कह रहे हैं कि वो सामने आ गए, वो उसको हाईजैक कर लिए, लेकिन ये आंदोलन का ही दबाव था कि आपको बातचीत के लिए आगे आना पड़ा। और दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि पेपर लीक हुआ है, जिम्मेदारी और जवाबदेही तो है। सुधांशु जी।
2: बिल्कुल, जिम्मेदारी जवाबदेही है। 3 मई को पेपर लीक हुआ, 12 मई को सीबीआई के ऊपर पास केस गया, 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कानूनी कार्रवाई चल रही है। अब जहां तक आपने ये बात कही कि किन लोगों ने क्या किया, तो मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगर कोई बात करना चाहता है तो अंजना जी 3 बातें, नंबर 1 वो ये कहे कि सरकार से बात करना चाहते हैं, नंबर 2 उसके लिए अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बताए, यानी डिजिग्नेटेड पर्सन ये बात करेंगे, तीसरा वो अपनी डिमांड बताए। इससे पहले कहीं पर ऑफिशियली हुआ नहीं हुआ, जैसे ही उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं और ये अमुक 2 लोग आएंगे, सरकार तैयार हो गई, आइए। और जब वो 2 लोग आए और माननीय नड्डा जी ने कहा बताइए आपकी डिमांड क्या है, 3 चीजें होती है ना, कि पहले कहे व्यक्ति बात करना चाहते हैं, फिर वो ये कहे कि अमुक लोग हमारी तरफ से जाके बात करेंगे और ये हमारी डिमांड है। अब चांस की बात है, उन्होंने कहा कि हम तो कोई डिमांड लाए नहीं, हम 4 बजे तक लाके देंगे, सरकार ने कहा कोई बात नहीं 4 बजे लाके देखिए। सोनम वांगचुक जी से मिलने के लिए गए नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी, राहुल गांधी जी जाके बैठ गए, उनसे भी मिलने गए, तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरा सोच रखा है। और फिर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा भाई आप आपसी प्रतिस्पर्धा में क्यों लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस अलग चल रही है, कांग्रेस को लग रहा है जंतर मंतर के ऊपर ज्यादा मीडिया कवरेज मिल रहा है, तो हम 7 लोक कल्याण मार्ग पे जाकर ज्यादा मीडिया कवरेज ले लें। अब संसद के अंदर की बात बताता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका इंडी गठबंधन का एक प्रस्ताव है, आप लिख के दीजिए कि ये हमारा इंडी गठबंधन है, ये हमारे सारे दल इस गठबंधन के पार्ट हैं, और है। हमारे ये अमुक नेता हैं, और ये हमारा प्रस्ताव है,
1: ठीक है,
2: सरकार विचार करेगी। जैसे हमारा एनडीए गठबंधन है, एनडीए के दल डिफाइंड है, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं,
1: ठीक है। बर्वे जी भी हमारे साथ
2: हैं कि इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है, सदन के पटल पर भी प्रतिस्पर्धा है और सड़क पर भी प्रतिस्पर्धा है।
1: इसी पर तो आप लोग खुश होते रहते हैं सुधांशु जी, विपक्षी एकजुटता नहीं है, इसकी आड़ में कैसे बचिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से। लेकिन हम बर्वे जी से, एक मैं आ रही हूं, एक सेकंड प्रियंका, ठीक है प्रियंका जी, छोटा सा रिबाटल, श्याम जी भी इंतजार कर रहे हैं और वीरेन जी भी, छोटा सा एकदम।
0: बस एक ही चीज कहूंगी, इनके हिसाब से इंडिया अलायंस हो या ना हो, कोई इंडिया अलायंस का मुखिया हो या ना हो, हर पार्टी एकजुट इसी मांग के लिए है जो देश की जनता की मांग है, देश के युवाओं की मांग है, सोनम वांगचुक की मांग है, कॉकरोच जनता पार्टी की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार में विनम्रता आनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। इस बात से तो यकीन है कि भले ही अलग अलग आपको ड्राफ्ट मिल रहे हों, अलग अलग मांगे मिल रही हों, पर एक मांग कॉमन है कि उनका इस्तीफा होना चाहिए।
1: नहीं, लेकिन प्रियंका जी इसी बात पर,
0: ठीक है प्रियंका जी छोड़ दीजिए,
1: ठीक है प्रियंका जी
0: आप अपनी जिम्मेदारी संभालिए।
1: प्रियंका जी बर्वे जी के पास चलते हैं कि इसी पर आज कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि पार्लियामेंट में ही अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमको इस्तीफा किसी का लेना होगा तो हम बाहर में बाद में ले लेंगे, आज कम से कम हम बच्चों की बात करें, जो बच्चों के साथ हुआ है, बच्चों बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उन्होंने ये तमाम बातें आज पार्लियामेंट में कही। अब ऐसे में इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला, वो कह रहे कि भाई तय तो करो आपस में, क्योंकि आपने शर्त रख दी केसी वेणुगोपाल जी ने कि हमें पहले इस्तीफा चाहिए तब हम उस पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगे कैसे ले जाना चाह रही है, सांसद श्याम कुमार बर्वे जी जवाब दें।
3: जी नमस्कार। जिस तरीके से आज हमारे देश के हालात है और जो सरकार पिछले 12 सालों से यहाँ पे काम कर रही है और आज ये विपक्ष पार्टी ये सब विषय छोड़कर आज देश का नौजवान एक मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो और शिक्षण प्रणाली में सुधारना चाहता है, और ये कोई व्यक्तिगत किसी की मांग नहीं है, ये मांग है देश के युवाओं का, स्टूडेंट्स का। आज आपने देखे होंगे 152 पेपर लीक हुए हैं 10 सालों के अंदर। आज नीट पेपर लीक होने से कई छात्रों ने आत्महत्या की है। तो ये सरकार किसके लिए चलती है इस देश में, कि भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए या आरएसएस को प्रोटेक्ट करने के लिए? आज देश के युवा पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं एक जगह नहीं, कोई एक इशू नहीं है, एक स्टेट नहीं है, आज पूरे देश में। और उसके बाद भी सरकार, क्या प्रेम है धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारे देश के प्रधानमंत्री को? अरे उनके डिपार्टमेंट ने गलती की है, पेपर लीक हुआ है, रिजाइन कराइए, स्टूडेंट से बात कीजिए। आप तो देश के डेमोक्रेसी को मानते नहीं हो, लोकतंत्र को मानते नहीं हो, विरोधी पक्ष की कोई बात सुनते नहीं हो, कम से कम इस देश के युवाओं को तो सुनो। कल हमने प्रधान जी के घर पर प्रोटेस्ट किया, किस तरीके से सांसदों को मारा गया पूरा मीडिया ने देखा है, मुझे खुद घसीटा गया, राव एलओपी को घसीटा गया। इस देश की डेमोक्रेसी कहीं बची है? स्टूडेंट को किस तरीके मारा गया, कैसे वीडियो आ रहे, वो वीडियो देखने के बाद भी हम कैसे शांत रहे? ये आज देश को प्रश्न, विपक्ष को प्रश्न पड़ा हुआ है और ये लोग सिर्फ बातें बना रहे हैं कि विपक्ष ने ये मांगनी की, फिर डिमांड बदल दी गई, आज राहुल जी ने ये पहले बोला था कि चर्चा चाहिए फिर रिजाइन। अरे देश का युवा क्या मांग रहा है, राहुल जी क्या मांग रहे हैं छोड़ दो, कांग्रेस पार्टी क्या मांग रही छोड़ दो, विपक्ष क्या मांग रहा है छोड़ दो, देश का युवा क्या चाह रहा है, स्टूडेंट क्या चाह रहा है, उस पर आप सुनो, उस पर तो राजनीति मत करो। आज अगर इतना युवा, पूरा देश का युवा दिल्ली में आके खड़ा हुआ है, वो कहां गली गली घूम रहा है, कम से कम उसकी तो परवाह करो।
1: ठीक है सुधांशु जी वो कह रहे हैं, ठीक है समझ गए सर। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि राहुल जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, समाजवादी इसमें उलझाइए मत, जो स्टूडेंट्स के प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, उसके लिए सामने आइए।
2: बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूं बर्वे जी से, बिल्कुल अहम मान्यता छोड़िए कि राहुल गांधी जी नेतृत्व लेंगे कि अखिलेश यादव जी लेंगे, अगर सच्ची निष्ठा है स्टूडेंट्स के प्रति तो सारा ईगो छोड़िए और आकर एक अपना नेता चुनिए और एक ही प्रस्ताव लाइए सदन में तो मैं मानूं। अभी आप हमसे कह रहे हैं कि सरकार असंवेदनशील थी, सोनम वांगचुक जी वहां पर बैठे हुए थे, ये राहुल गांधी जी कहां अंतर ध्यान थे, लुप्त प्राय थे, धरती के किस कोने में विचरण कर रहे थे, अचानक सदन शुरू होने से 2 दिन पहले उनका भारत भूमि पर धरातल पर अवतरण होता है और वो ज्ञान देने लगते हैं। आप तो बहुत संवेदनशील थे ना, तो आप 22 दिन से क्या कर रहे थे? चलिए अब जो बात गई सो बीत गई सो बात गई, आज मैं कह रहा हूं आपस का ईगो छोड़ दीजिए और कहिए हम सब छात्रों के साथ हैं, हम सदन में एक ही प्रस्ताव लाएंगे, हम आपस में एकजुट होकर एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, एक प्रस्ताव लाएंगे। और अंजना जी मैं दावे से कहता हूं ये नहीं लाएंगे, क्योंकि इनमें से सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है, छात्र हितों से कोई मतलब नहीं रखना है। और उसका प्रमाण यह है, मैं बर्वे जी को याद दिलाना चाहता हूं, सर एक आपके यहां यात्रा निकली थी पेपर लीक को लेकर अजमेर से जयपुर तक अशोक गहलोत जी की सरकार के खिलाफ, 19 पेपर लीक हुए थे, किसने निकाली थी? सचिन पायलट जी ने, और उन्होंने कहा था मेरे पैर के छाले भी फट जाएंगे मगर मैं ये यात्रा निकालूंगा।
3: सुधांशु जी आप फिर नेहरू जी पे चले जाएंगे।
2: और हुआ क्या था, अशोक गहलोत जी ने एंटी सीडेशन लॉ यानी देशद्रोह के कानून का प्रयोग सचिन पायलट जी के ग्रुप के विधायकों के विरुद्ध किया था।
3: भूतकाल
2: ये हकीकत है सर। आपने दूसरा दल तो छोड़िए, अपने दल में आप में एका नहीं है। इसका मतलब आपके लिए 100% राजनीति है, गठबंधन हो या पार्टी का अंदरूनी मामला। और विदेश से घूम के आके प्रधानमंत्री आवास के सामने लोटपोट होना, मुझे लगता है यह नाटकीयता अधिक है गंभीरता।
1: सुधांशु जी, आप ऑपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? मैं सरकार की अकाउंटेबिलिटी पर पूछ रही हूँ। इस बीच खबर आ रही है दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन फिर से चल रहा है और बीजेपी दफ्तर की ओर जाने की कोशिश इस वक्त हो रही है। सुधांशु जी, अब देखिए बीजेपी दफ्तर कांग्रेस का प्रदर्शन पहुंच रहा है। हमारे साथ मौसमी पहले जुड़ रही है, फिर आपके पास वापस लौटूंगी। मौसमी, जल्दी से बताएं क्या स्थिति है इस वक्त, क्या हो रहा है? कल पीएम आवास के पास आज बीजेपी दफ्तर
4: जी, देखिए अंजना, हम लोग खड़े हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, हम लोग दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर खड़े हैं। और कल वाकई में जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, तब आपने देखा था कि पुलिस का कितना समुंदर वहां पे मौजूद था। अभी हमारे पीछे आप देखिए, ये नर्व पॉइंट है। सत्या आगे आ जाइए, ये नर्व पॉइंट है। पीछे आप देखिए तो पूरी खाकी वर्दी में आपको यहाँ पे पुलिसकर्मी नजर आएंगे। अभी एक दो बैरिकेड पीछे किए गए हैं, तो उधर से यातायात को चालू किया गया है। पुलिस कितने भारी भरकम बंदोबस्त के साथ आई है, ये एक 360 डिग्री व्यू हम आपको दिखाते हैं। दाई से लेके बाएं हाथ तक हमारे पीछे आपको पुलिस कर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी टुकड़ी नजर आ जाएगी। और यहाँ पे आप देखिए कि तमाम आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के जो है पेट्रोल कर रहे हैं। दो बसें भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाया गया है, जिसमें देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल है। कहाँ से कहाँ तक आपका मार्च था यहाँ पे? तो बैरिकेड लगा
5: जो बीजेपी मुख्यालय तक मार्च था, और यहाँ बीजेपी मुख्यालय जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, तो यहाँ पर जो है बैरिकेड लगा, मैं रोक दी गया,
4: नहीं पाया
5: यहाँ डिटेन किया हमको। हमारी दो तीन बसें भर के जो है पुलिस लेके गई है, क्योंकि मतलब गिरफ्तारी दी है देवेंद्र यादव जी ने और हमारे जो बड़े लीडर हैं उन्होंने। और ये बर्बरता जो हुई है कल, जो आप देखिए हिस्ट्री में नहीं है। हमारे जो देश का मुस्तकबिल है, वो जो देश का मुस्तकबिल जो है उसको करा जा रहा है।
4: हम बता दें आपको अंजना कि अभी एक घंटे पहले ही राहुल गांधी ने यही इंदिरा भवन में प्रेस वार्ता खत्म की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर भी बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पे ही है बीजेपी ऑफिस के। और यही वजह है कि मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा तैनाती पुलिस की, क्योंकि एक तरीके से अगर इस बैरियर को ब्रीच कर देते तो बीजेपी के कार्यालय पहुंच जाते कांग्रेस कार्यकर्ता।
1: ठीक है, तो एक मोमेंटम जो विरोध प्रदर्शन का कांग्रेस को मिला है, उसको वो आगे ले जाना चाह रही है। एक बार जो अन्य मेहमान है उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर उसके बाद सुधांशु जी एक ही बार आपके पास आएंगे। वीरेंद्र सिंह जी, आज इस पर चर्चा तो होगी, हालांकि मौसमी से ही बातचीत में अखिलेश यादव जी ने बाहर संसद के फिर कहा कि हम आपसी तालमेल बिठा लेंगे, उसकी चिंता बीजेपी छोड़ दे। लेकिन अगर कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसमें मुख्य मांग के तौर पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई इस्तीफा हो, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश जी कहते हैं कि इस्तीफा तो बाद में है, स्टूडेंट्स का मुद्दा उठते रहना चाहिए, क्या सोच रही है आपकी पार्टी इस पर, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए?
6: देखिए अजय जी, हमारी पार्टी का सोच यह है कि जो छात्रों की मांग है, हम छात्रों की मांग के साथ हैं। छात्रों की पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, फिर उसके बाद उसकी जांच हो। कि जिस तरीके से सुधांशु जी ने कहा कि नीट की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की सीटों को खरीदा बेचा जाता था, तो 2014 से 26 तक आज 12 साल से ज्यादा हो रहे हैं और 5 परीक्षाएं इन लोगों ने की, 5 लीक हुई। तो क्या ये मान रहे हैं कि जो MBBS की परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं उनके हिस्से की सीट को ये लाखों में बेचते रहे हैं? और आज हम लोग जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो जायज है, क्योंकि सरकार के ऊपर से छात्रों का भरोसा उठ गया है। दूसरी बात यह है कि जो डाइवर्ट कर रहे हैं कि किसानों के आंदोलन में आतंकवादी थे, तो जब आतंकवादी आंदोलित कर रहे थे 3 काले कानून को, तो सरकार ने उसे वापस क्यों लिया? अगली बात यह है कि आंदोलन में जो सिपाही बिना नेम प्लेट के, बिना अपनी आइडेंटिटी के, डंडा लिए सादे वर्दी में जो छात्र और छात्राओं के कपड़े फाड़ रहे थे, डंडे से पीट रहे थे, लहूलुहान कर रहे थे, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच करने का दायित्व सरकार को है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप आंदोलन को डिरेल करने की जो कोशिश करते हैं और सबको आतंकवादी और दुनिया भर के जो है उससे नवाजते हैं, ये आपकी राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है। सवाल ये उठता है कि सरकार पर छात्रों का भरोसा उठ गया है, विपक्ष उनकी आवाज के साथ खड़ा है और विपक्ष ये चाहता है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद जो है कि काम रोको प्रस्ताव के साथ विपक्ष जो है सदन के अंदर अपना प्रस्ताव लाए, बहस कराए जो है लोकसभा अध्यक्ष और बहस पे चर्चा हो, चर्चा के बाद जरूरत हो तो वोटिंग हो, ताकि सबके चेहरे बेनकाब हो जाए कि कौन छात्रों के मांग के साथ खड़ा है, कौन छात्रों के मांग के साथ नहीं खड़ा है। लेकिन ये सरकार ऐसी धारा नियमों के तहत जो है चर्चा कराना चाहती है जिसमें बहस तो हो, वो आधे घंटे की चर्चा हो जाए और उसको ठंडे बस्ते में डालना चाहती है।
1: यही मंशा अरुण भारती जी, जो वीरेन जी कह रहे हैं, वीरेन जी कह रहे हैं कि वो हल्का फुल्का में आधे घंटे की एक बहस करके सरकार रफा दफा करना चाहती है मामले को।
7: अंजना जी, विपक्ष को पहले यह तय करना पड़ेगा, सपा के मुखिया जी उनको तय करना पड़ेगा कि वो बहस किस मुद्दे पर चाहते हैं। कांग्रेस किसी और मुद्दे पर बहस चाहती है, सपा किसी और मुद्दे पर बहस चाहती है, हर कोई जब स्टूडेंट्स आते हुए उनको दिखे। देखिए, हमारे नेता ने बड़ा साफ कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि हम स्टूडेंट के कंसर्न्स के साथ हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के कंसर्न के नाम पर जो राजनीतिक पार्टियां अपना अपना राजनीति चलाने का प्रयास कर रही हैं, हम उसके खिलाफ में हैं। लगातार अभी राहुल गांधी जी तो बाहर थे देश से, जब देखे कि सरकार ने बातचीत करना शुरू कर दिया, सरकार को क्रेडिट मिलेगा तो तुरंत ही जाकर के प्रधानमंत्री जी के यहाँ निवास पर पहुंच गए, अनशन करने के लिए, अनशन करने के लिए पहुंच गए, तो ताबड़तोड़ आज उन्होंने पीसी किया। अब ये बताइए कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके कॉम्पिटिशन में है अखिलेश जी। हम लोग चाहते हैं कि सार्थक बात हो। देखिए, नाम बदलने से प्रश्न पत्र सुरक्षित नहीं होगा, समाधान से व्यवस्था को सही करने से प्रश्न पत्र सुरक्षित होगा और इसके लिए विपक्ष को भी सार्थक रूप से सदन के अंदर आकर के बातचीत करके अपने सही एक विपक्ष, एकजुट विपक्ष हो करके सही मुद्दे पर को रख करके बात करने की जरूरत है। लगातार जिस तरह से मुद्दे भटकाने के लिए सदन नहीं चलने देने के लिए अलग अलग मुद्दे उठा के आते हैं, विपक्ष को पहले एकजुट होने की जरूरत है और आपस में ये जो क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है अखिलेश जी की, आम आदमी पार्टी की, राहुल जी की, इसको पहले छोड़ना होगा। आपको अगर बात करना है तो अगर आपको तो आपको समाधान की बात करनी पड़ेगी। आप सिर्फ मांग रख रहे हैं, आप समाधान की बात नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था को बेहतर कैसे करना होगा, नीति को कैसे बेहतर करना होगा, इसकी योजना, कार्य योजना, कार्यान्वयन को कैसे बेहतर करना होगा, इस पर आकर बहस करें। अध्यक्ष महोदय ने कहा है सदन में, आपको जितना समय चाहिए बहस करने के लिए मिलेगा, मगर आप अपनी नियत तो दिखाएं। नियत तो यहां पर सिर्फ क्रेडिट लेने की है, क्योंकि यूपी में चुनाव दिख रहा है, पंजाब में चुनाव दिख रहा है, कांग्रेस को वहां पे यूपी में वहां पे आपस में लड़ना है सपा से, आपसे लड़ना है पंजाब में। देखिए, हमारी सरकार इस बात के लिए सजग है कि जो छात्र की चिंताएं हैं उसको हम एड्रेस करेंगे और सरकार ने पहल भी की, पहल करते हुए कानून भी बने हैं और उनसे बात भी की जा रही है, उनके सार्थक जो उपाय आ रहे हैं उस पर चर्चा भी हो रही है। चिराग पासवान जी लगातार इसको लेकर के मंत्रिमंडल में सजग है, मगर विपक्ष को भी सरकार के साथ इस बहस में आकर के साथ में बैठ के करना पड़े। आप क्रिटिसाइज कीजिए सरकार को, आप सरकार की सारी नीति को क्रिटिसाइज कीजिए सदन में, आप वहां पर सरकार की नीतियों के और प्रक्रियाओं को लेकर के सारी बात रखिए। सारा देश देखेगा कि आपने कैसे क्रेडिट लेने के बजाय व्यवस्था को बेहतर करने का, समाधान आगे बढ़ाने का काम किया है, सिर्फ क्रेडिट लेने का काम नहीं किया है।
1: इधर तो एजेंडा क्लियर है कि आइए संसद में, वहां पर बहस कीजिए, अपनी अपनी बात कहिए।
8: कितने नहीं, देखिए बहुत सारी उपलब्धियां बताई सरकार की
0: और सरकार इतना अच्छा काम कर रही है फिर भी युवा अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो कमी किस में है? युवाओं में? हाँ हाँ, वो सारे युवा जो हैं वो डीप स्टेट फंडेड है, दूसरे देश उन पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यही तो आपकी आर्ग्यूमेंट है, हम तो सब कर रहे हैं, ये क्यों आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और बात रही होड़ मचाने की कि किसको क्रेडिट मिलेगा, यूपी के इलेक्शंस तो बीजेपी भी लड़ने वाली है, पंजाब में भी लड़ने वाली है, तो क्रेडिट आप ले लीजिए ना, आप इस्तीफा ले लीजिए, विपक्ष का जो भी वो है, जो भी जिस बल से वो चल रहे हैं उनके वो आप उसका क्रेडिट लेकर इस्तीफा दे दीजिए, कह दीजिए कि हाँ हम शुरुआत करेंगे, हाँ हम ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि हाँ मैंने 28 साल युवा के बारे में तो बात की जो स्काई रूट में काम कर रहे हैं, मैं उन बच्चों की भी बात करूंगा जिनकी समय से पहले मौत हो गई क्योंकि नींद की व्यवस्था हम ठीक से नहीं संभाल पाए, कर लें प्रधानमंत्री जी, ले लें क्रेडिट, आप हर इंस्टीट्यूशन में जाकर अपना झंडा लहरा लें, हर इंस्टीट्यूशन में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिखा दें और प्रधानमंत्री जी की फोटो साथ में लगा दें, कौन रोक रहा है, ले लीजिए क्रेडिट, पंजाब के हर स्कूल में लगा दीजिए, यूपी के हर स्कूल में लगा दीजिए, पर जो युवा मांग कर रहे हैं उनकी बात तो सुन लीजिए। अब रही बात पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में बात करने से और यहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखकर, क्या युवाओं को उनका न्याय मिल जाएगा? क्या जो FIR दर्ज किए हैं मुंबई से लेकर दिल्ली तक, वो FIR बच्चों पर खत्म हो जाएंगे? जो पैलेट गन्स चलाई गई हैं क्या उनके निशान और दाग खत्म हो जाएंगे? क्या उन बच्चों को, उन परिवारों को वो 22 बच्चे वापस मिल जाएंगे? बहस का निष्कर्ष होना चाहिए ना, और बहस का निष्कर्ष एक ही है, अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी तय करने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार इस्तीफा ले ले और फिर बताए कि क्या क्या काम करने वाली है बच्चों के भविष्य के लिए,
1: जवाब दीजिए,
0: उसी से तो बच रही है ये सारा, आज संसद तक नहीं आती बात, अगर आप लोगों ने तभी मई के महीने में ही काम कर लिया होता, पर आपने इसको हवा दी ना, अब आप कह रहे हैं कि ये आकर इस ये आकर हमें प्रोटेस्ट रखें, ये प्रस्ताव रखें, क्यों प्रस्ताव रखें, देश की आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको, आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है।
1: सुधांशु जी,
2: आप देखिए, मैं तथ्यात्मक जवाब भी देता हूं और राजनीतिक भी, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं जनाइस, आप बिल्कुल सरकार से कोई सहयोग मत करिए, आप जितनी टांग खींचनी है खींचिए, मगर मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, शिक्षा क्या यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है क्या? नहीं, ये तो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये केंद्रीय सूची का विषय नहीं है, समवर्ती सूची का विषय है, राज्यों का भी है, तो आप जिन राज्यों में हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, अनेक राज्यों में सरकार में हैं, वहां अपना मॉडल दिखा दीजिए कि हमने ये किया, जैसे एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट था 2014 से 4 से 14 के बीच में, विपक्ष में रहते हुए हमने मॉडल दिखाया कि हमारे सारे भाजपा शासित राज्यों में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10% से ऊपर रही,
1: तो मध्य प्रदेश का एग्जाम कौन करा रहा था सुधांशु जी, 6%
2: एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पे,
1: सुधांशु जी, सुधांशु जी, नीट का एग्जाम कौन कराता है?
2: सुनिए तो, मैं अभी हम बता रहे हैं आपको, हम आपको बता तो रहे हैं, अगर इनको नीट से कोई प्रॉब्लम है आप अपने यहां करके दिखाइए और कहिए ये है मेरा मॉडल, जैसे ICR अलग था एग्रीकल्चर में हमने करके दिखाया, आप दिखाइए कर्नाटक का मॉडल क्या है, आप दिखाइए तेलंगाना का मॉडल क्या है, आप दिखाइए, तो मॉडल क्या है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया डीके शिवकुमार लड़ेंगे, वहां चन्नी जी और राजा वाडिंग लड़ेंगे, सब आपस में लड़ेंगे और काम धेले भर का नहीं करेंगे, फिर दिल्ली में आके हल्ला मचाएंगे। अब मैं बताना चाहता हूं जो भारत की संसद में दिखाई पड़ा, जो कुछ कांग्रेस ने अखिलेश जी के साथ किया और अखिलेश जी के मुंह से जो निकला, ये मैं 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव का वाक्य याद दिलाता हूं, कमलनाथ जी ने अखिलेश जी के लिए क्या बोला था, अखिलेश वखिलेश छोड़ो, तो संसद के पटल पर केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अखिलेश जी को जैसे किनारे किया, यानी छात्रों का मुद्दा नहीं था, अखिलेश वखिलेश छोड़ो, और अखिलेश जी के मुंह से क्या निकला था, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, और आप देखिए कांग्रेस ने क्या शानदार स्ट्रेटजी अपनाई है कि प्राइम टाइम में मीडिया का सारा आकर्षण कैसे लिया जाए, उनको लगा कि कॉकरोच पार्टी जंतर मंतर पे सारा फुटेज खाए जा रही है, तो कल जाकर शाम के समय प्रधानमंत्री आवास के ऊपर जाके लोटपोट हो गए। अब देखिए 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 6 बजे अभी आप क्या दिखाया जा रहा है, अब भाजपा कार्यालय की तरफ जा रहे हैं, यानी वो न मीडिया में एक अपनी स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं कि कैसे हम लगातार फोकस बने रहे, छात्रों के हितों से कोई मतलब नहीं है, और संसद के अंदर भी अपने साथियों के हितों से भी मतलब नहीं है, आपस में एक होड़ है कि कौन ज्यादा पॉइंट स्कोर कर ले, और आज इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोग जो काले कपड़े पहन के आए थे, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा जितने भी रूप ये धर के आ रहे हैं, नारायण स्वामी का एक दोहा है वो कांग्रेस के चरित्र पे एकदम सही आता है, जिनको छात्रों से कोई मतलब नहीं अपनी राजनीति करनी है, इसे कहते हैं अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौवा तनमन एक, तो इस देश ने बाकायदा ये पता है और बिल्कुल सही बात है, विपक्ष में अपने साथियों को मात देती हुई कांग्रेस पार्टी जो अपना जो भी बाहर से सीख लेके आते हैं राहुल गांधी जी, कैसे सोशल मीडिया और मीडिया में मुझे अट्रैक्शन बना के रखना है कि सारा फोकस मेरे ऊपर रहे, कोई दूसरा नेता कहीं कुछ पाने ही ना पाए, वो अपना उस रणनीति पे चल
1: रहे हैं। इस वक्त खबर आ रही है प्रदर्शन खत्म करने के लिए सरकार से सीजेपी की 3 मांगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी अड़ गई है और साफ साफ कह दिया है कि 3 शर्तों में से 1 शर्त इस अनशन को खत्म करने का, इस धरना प्रदर्शन को खत्म करने का यह है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। उनकी बातों पर जल्दी से सुधांशु जी की बातों पर प्रियंका जी आप हाथ उठा रही थी, जवाब दीजिए फिर मैं जाऊंगी सांसद श्याम कुमार बर्वे जी।
0: बार बार ये बार बार बोल रहे हैं कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है एजुकेशन, बिल्कुल राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और 152 जो पेपर लीक्स हुए हैं बाकी राज्यों में भी हुए हैं, पर जहां जहां इन्वेस्टिगेशन हुआ है, हाल ही में महाराष्ट्र का TET एग्जाम लीक हुआ है और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ उसकी जड़ वही है, वही सेम पेपर लीक माफिया है जो नीट को भी संभाल रहा है, जो राज्य के एग्जाम्स को भी संभाल रहा है, तो जो जड़ है वो जड़ को खत्म करने के लिए एक ही समाधान है कि पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी आए और बाकी सारा ये जो ये लीक माफिया है, पेपर लीक माफिया है, उसको पूरी तरीके से तोड़ा जाए। ये तोड़ नहीं पाए हैं, ये बल्कि उसको और मजबूत किए हुए हैं, बैठे हुए हैं और फिर भी अपनी जगह बनाए बैठे हैं, सवाल उसका है। और ये बार बार कह रहे हैं कि ये कौन है, सचिन पायलट जी ने प्रोटेस्ट किया, ये किया, अरे इतनी तो हिम्मत है कांग्रेस पार्टी के सदस्यों में कि आपस में ही अगर कुछ कमियां दिख रही हैं बोल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक सांसद या कोई भी एक सदस्य ये हिम्मत जुटाकर कह दे कि इतने बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी लाठीचार्ज हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं होगी, किसी एक के पास हिम्मत नहीं है। और जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो महिमा मंडन कर रही हैं प्रधानमंत्री का, ठीक है, तो ये आप लोगों की समझ है। हम तो कहते हैं जिस पार्टी में डेमोक्रेसी होगी उस पार्टी में सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी जैसी घटनाएं भी सामने आएंगी।
1: जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि उधर लोकतंत्र तो है, आपकी पार्टी में किसी को हिम्मत है बोलने का, और भारती जी को कह रहे हैं कि वो सब तो प्रशंसा करने में लगे रहते
2: लगता
1: हैं।
2: है,
1: आ रही उसके बाद बर्वे जी फौरन।
2: प्रियंका जी ने सुना नहीं या सुन के अनसुना कर दिया? अरे मैंने बताया सचिन पायलट ग्रुप के विधायकों के खिलाफ UAPA यूज हुआ, एंटी सिडेशन लॉ, और कितना लोकतंत्र है कि अभी अशोक गहलोत जी बोल चुके हैं पिछले महीने कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा था मगर कांग्रेस वालों ने बनने नहीं दिया। गजब का लोकतंत्र है भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो 5,700 कुल का इलेक्टोरल कॉलेज की पूरी लिस्ट थी, और जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने खड़गे जी तो शशि थरूर और कई लोगों ने मांगा कि भाई वो वोटर कौन कौन है उनकी लिस्ट दे दो, लिस्ट दी नहीं गई। इसलिए सबको पता है कि लोकतंत्र क्या है, वो अलग विषय है, हम आज के विषय की बात कर रहे हैं। विपक्ष से मैं कह रहा हूं अगर आपको सरकार पे भरोसा नहीं है तो आप कम से कम एक दूसरे पे भरोसा करिए और आइए एक प्रस्ताव लेके आइए, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का और एक दूसरे पे मौका साथ
1: क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है क्या?
2: छोड़िए
1: कॉकरोच जन, ठीक ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो ये प्रदर्शन शुरू किया, बर्वे जी सवाल सुन लीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया उसके बाद से क्या होड़ मच गई है सभी पार्टियों में। कल कांग्रेस ने अपने आप को पहले दिन 20 तारीख को अलग रखा, फिर कल अलग से राहुल जी ने पूरा प्रोटेस्ट किया, अखिलेश जी भी वहां पर पहुंचे लेकिन उससे पहले दिन नहीं गए थे।
3: बिल्कुल, आपका प्रश्न हमारे सुधांशु जी और अरुण भारती जी के साथ में मेरे सांसद साथी हैगन है, इन्होंने जो प्रश्न उपस्थित किया था कि अभी तक राहुल जी या कांग्रेस पार्टी कहां पर थी, तो आपको भी मैं याद दिलाना चाहूंगा और सुधांशु जी को भी याद दिलाना चाहूंगा और भारती जी को भी याद दिलाना चाहूंगा, कोटा का जो स्टूडेंट के साथ में जो प्रोग्राम राहुल जी ने किया था वो शायद हमारे साथी सुधांशु जी भूल गए हैं, अरुण भारती जी भूल गए हैं, और देहरादून की ये सारे प्रोग्राम्स हमारे लगे हुए हैं, आगे हमें और भी नीट पे आगे हम करने वाले हैं, लेकिन अभी हमारा सेशन चालू हुआ तो हमारी नैतिक जवाबदारी इस देश का विपक्ष करके बनती है और उस जवाबदारी से हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमारा देश का स्टूडेंट आज इतना आक्रोशित है, इतना एग्रेसिव है, वो सारे चीज़ें छोड़कर राजस्थान में क्या हुआ था, केरल में क्या हुआ था, कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हुआ था, कांग्रेस के समय क्या हुआ था, इस सुधांशु जी नेहरू जी तक के चले जाएंगे उसमें मुझे कोई शक नहीं है, वो जाते ही है। अरे आज की बातों करो, आज हमारा पूरा स्टूडेंट पूरा छात्र दिल्ली में आके खड़ा हुआ है, उनके साथ अमानुष तरीके से व्यवहार पुलिस कर रही है, उनकी जाने जा रही है, उन्हें लाठियां मार रही है, लड़कियां नहीं देख रही है ना लड़के देख रहे हैं, वो सारी चीजें छोड़कर आप किसको क्रेडिट लेना है? कांग्रेस को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। आप कल रिजाइन कर दीजिए, परसों चर्चा करा लीजिए, हम उस पर सजेस्ट करेंगे किस तरीके से परीक्षा लेनी चाहिए, हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपको सरकार चलाना आता नहीं है, आपको आप एग्जाम लेने के लायक आपकी सरकार नहीं है। 12 साल में एक काम आप बता दो जो आपने सही से किया हो, सिर्फ राहुल गांधी, नेहरू जी यही सब चीजें करते रहोगे। आज देश को जरूरत, हमारे छात्रों को न्याय की जरूरत है। उनके साथ जो अमानुष तरीके से मारपीट की जा रही है, उन पे जो मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उस पे चर्चा की बात जरूरी है। आप नेहरू जी पे चले जाएंगे, राहुल जी पे चले जाएंगे, विपक्ष पे चले जाएंगे, विपक्ष की एकता पे, आप विपक्ष की एकता की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप क्रेडिट ले लीजिए, आप कल रिजाइन करा दीजिए धर्मेंद्र प्रधान का, हम आपको क्रेडिट दे देंगे, हाँ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, आप छात्रों आप शांत हो जाओ, अब हम चर्चा करके नया एक ये लेकर आएंगे जिससे हमारा पेपर लीक नहीं होगा, उस चर्चा में हम सम्मिलित होंगे।
1: सुधांशु जी, बरवेर जी और प्रियंका जी दोनों कह रहे हैं आप क्रेडिट ले लीजिए ना, छात्रों को आप आश्वासन दे दीजिए, भरोसा दिला दीजिए, आप ऐसा कदम उठाइए जिससे वो खुश हो जाए और ये प्रदर्शन खत्म हो जाए, आप क्रेडिट ले लीजिए।
2: बिल्कुल, मैं तीन लाइन में जवाब देता हूं। अंजना जी, आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं, विपक्ष ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी अहम की लड़ाई है, हम तो एक नहीं होंगे, अब सरकार को जो करना हो करे, क्रेडिट ले ले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से क्रेडिट लेने की ओढ़ में पीछे हटने वाले नहीं। पॉइंट नंबर दो, हम नेहरू जी से नहीं हटना चाहते, नेहरू जी के खानदान से आज तक आप चिपके हुए। पॉइंट नंबर तीन, लाखों दर्शकों को पता है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के लिए आयोजित किया था, क्या उसकी डेट पोस्टपोन नहीं करनी पड़ी चूंकि वो विदेश गए हुए थे? विदेश में सैर सपाटा करने, ज्ञान ध्यान प्राप्त करने, चिंतन मनन करने, अज्ञातवास में विचरण करने, वट एवर द रीजन वुड हैव बीन, जो भी कारण रहा हो, मगर ये बताइए छात्रों की गूंज तो शिफ्ट हो जाएगी और यहां पर जंतर मंतर पे नहीं आएंगे और फिर आकर अचानक प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर जैसे बच्चों में बाल हट होता है कि मुझे खिलौना नहीं मिला तो मैं बैठ जाऊंगा, उन्हें लगता है ये मेरा खानदानी मकान था, यहां तो मुझे ही रहना था, वो भूल गए कि वो किराएदार थे, चल अंदर ना बैठ सका तो बाहर ही जाके बैठ जाऊं, इस ढंग का नाटकीयता प्रस्तुत करेंगे। मैं सिर्फ एक बात बरवे जी से कहता हूं, क्या छात्रों की गूंज कार्यक्रम शिफ्ट हुआ कि नहीं, बोलिए, राहुल जी के विदेश जाने से? इसका मतलब विदेश में घूमना इंपॉर्टेंट था आपके अनुसार, छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो कांग्रेस ने रखा वो कम इंपॉर्टेंट था?
3: नहीं हुआ, नहीं हुआ।
2: अच्छा, तो इसका मतलब मई से लेके और जून तक वो 25 दिन कांग्रेस ने कार्यक्रम ही नहीं बनाया कि जब तक राहुल गांधी बाहर रहेंगे? बहुत बढ़िया, स्वीकारोक्ति के लिए धन्यवाद।
1: चलिए जल्दी से वीरेन जी से, एक जल्दी से एक कमेंट, वीरेन जी और अरुण भारती जी से। वीरेन जी, अब आगे क्या करना है? कांग्रेस पार्टी तो आज फिर आंदोलन करती दिखी है, आप लोग क्या कीजिएगा?
6: देखिए, हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के मांग के साथ हैं। केवल एक लाइन है कि तू इधर उधर की न बात कर, कि बता कि कारवा क्यों लूटा। आप इधर उधर की बात मत करिए, किसका किससे संबंध है, किसका किससे नहीं है, कौन एकजुट है कौन नहीं है। जो हमारे छात्र आंदोलनरत है उनकी एक मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, इस्तीफा होने के तुरंत बाद जो है लोकसभा में प्रस्ताव ला करके हमसे जो भी बन पड़ेगा वो सारे पॉजिटिव सुझाव आपको देंगे और उस रास्ते पर आप चलेंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। ये बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को।
1: प्रियंका जी कह रहे हैं इतने बड़े मुद्दे पर भी आप लोग आईना नहीं दिखा रहे हैं सरकार को।
7: आप अंजना जी, 350 से ज्यादा परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं हमारे देश में, इसीलिए व्यवस्था को बेहतर करना ही एकमात्र समाधान है। नाम बदलने से प्रश्न पत्र सुरक्षित नहीं होगा, समाधान से, बेहतर सुझाव से और व्यवस्था को बनाने से, बेहतर व्यवस्था को बेहतर करने से यह प्रश्न पत्र सुरक्षित होगा। देखिए, जरूरी यह है आज के दिन में कि विपक्ष आए अपने मुद्दों को एकजुट होकर सही तरीके से रखे, सदन में किस प्रावधान के तहत बहस करना चाहता है बहस करे और बहस करके अपने सुझाव दे, व्यवस्था को बेहतर करने में अपना सहयोग दे। और अभी मैं सुन रहा था बर्वे जी को, इन्होंने कहा कि छात्रों की गूंज देहरादून में हुई, कोटा में हुई, आपके केरल में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है छात्रों की गूंज केरल में भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और वहां की तस्वीरें नहीं चल रही पर वहां पर भी वाटर कैनन्स खूब चल रहे हैं। सुधांशु जी हाथ उठा रहे हैं, सिर्फ एक लाइन सुधांशु जी, सिर्फ एक लाइन।
2: मैं सिर्फ एक लाइन में यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी यहां पर किया जा रहा है सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है, और अगर विपक्ष यह अपनी जो भी विषय रखना चाहता है, अगर चार घंटे की बहस में दावे से कह रहा हूं अंजना जी, जैसे मणिपुर पे ये लाए थे अविश्वास प्रस्ताव, 5% मणिपुर पे नहीं बोले थे, जिस दिन ये डिस्कशन होगा आप देखिएगा 1/4 नहीं बोलेंगे छात्रों पे, अनाप शनाप मोदी जी से लेके देश विदेश ईरान तूरान की लड़ाई,
1: हमें इंतजार रहेगा, इंतजार रहेगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज रात 9 बजे रहिएगा हमारे साथ, आपको दिखाएंगे क्या सोनम वांगचुक सीजेपी का प्रदर्शन खत्म कराएंगे, और आखिर में बताएंगे जब पिछले 16 साल में सैकड़ों पेपर लीक हुए तो किसी एक भी आरोपी को अभी तक सजा क्यों नहीं हुई। देखते रहिए आज।
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच, in association with
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: Step into timeless classical music, works from the masters, brought to life by world class orchestras, conductors and soloists, from past to present, every performance played with depth, precision and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
2: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
1: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
2: अर्ज किया है,
1: पहले गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
3: वाँ वाँ वाँ वाँ।
1: सेबी और एनएसई का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
4: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
5: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
8: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
9: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
10: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
11: Kuch to baat hai is dil mein.
12: Papa.
13: Sorry yaar, galti ho gayi hai. Ye chot kharcha
14: varcha. Arre last ball pe chhakka bhi tumhara.
13: Chhakka?
14: Sab cashless ho gaya hai.
13: Haan.
14: Oh, la bhai mera bat.
13: Oh, abhi to theek hua tu.
14: Oh, abhi to discharge hua yaar.
13: Oh, la bat kiska hai?
15: Tata AIG hai, to bharosa hai.
16: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
17: We are over, Jimmy.
18: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
19: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
21: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
22: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
21: to live sports action.
23: To the near side corner, to wrap around, he scores!
21: And your favorite music.
24: You and I stargazing.
21: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
6: Kuch to baat hai is dil mein.
7: Papa.
8: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ
9: ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
9: चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: वी आर ओवर जिमी।
13: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
14: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
15: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमाक, the mustard specialist since 1933.

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार. अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या. रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.
3: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच. हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें.
4: हमारे पीछे आप देखें और वहीं रेल भवन जो कि संसद परिसर पर ही है,
5: टियर गैस को इस्तेमाल करने जा रही है और यहाँ पे टियर गैस का इस्तेमाल पुलिस करती हुई नजर आ रही है.
4: पीछे संसद का पूरा मार्ग है और यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से टियर गैस का इस्तेमाल हो रहा है.
6: कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: में शिक्षा व्यवस्था चौपट। नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी में वांछित टेंशन खत्म करने के लिए रखी शर्त, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर संसद में विचार और छात्रों को मुआवजे पर आश्वस्त करे सरकार। पेपर लीक और राहुल के धरने के विरोध में नहीं थम रहा बवाल, दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना, जयपुर तक बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग प्रदर्शन, प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी सीजेपी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक खत्म, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त, मंदिर का धार्मिक कार्यभार संतों को सौंपने का फैसला। उत्तर से पश्चिम तक बाढ़ बारिश का कहर, बंद हुई वैष्णो देवी की यात्रा, गुजरात के सूरत वलसाड में बिगड़े हालात। और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त सोनम वांगचुक से अस्पताल में मिलने जा रहे हैं विपक्ष के डेलीगेशन को पुलिस ने रोक दिया है, जिसके बाद जोरदार हंगामा देखने को वहां मिला। आपको दिखाते हैं वहीं की तस्वीरें। सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे हैं विपक्ष के नेता, जिसमें संजय सिंह को आप देख सकते हैं धक्का मुक्की हो रहे हैं। वहां पर सुरक्षा के जो गार्ड्स हैं वो उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर राजनीति इतनी ज्यादा गर्म है कि इसको हवा ना मिले, यही वजह है कि इन्हें रोका जा रहा है।
1: अभी आपका क्या एक्शन रहेगा, अंदर नहीं जाने दे रहे आपको?
2: पूछ लेते हैं भाई उनका, कोई कह रहे हैं वो मेडिकल आपके सामने, उन्होंने कहा है कि उनके प्रशासन से हमारी बात कराएंगे, आने दीजिए उनके प्रशासन का।
3: मीडिया के साथ ही कौन सी धारा लगा रखी है इन्होंने जो अंदर नहीं जा रहे, जाने दे रहे मेंबरों पार्लियामेंट को? बीजेपी के नेता चले जाएंगे, विपक्ष के नहीं जाएंगे? मैन हैंडलिंग कर रहे हैं मेंबरों पार्लियामेंट के साथ, दे डोंट इवन नो द बेसिक प्रोटोकॉल। अच्छा, हम पुलिस को बोल रहे हैं कि आप दिखाइए हमको रिटर्न में कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका है या आपको किसने रोका है।
0: सरकार नीट को लेकर जारी ये प्रदर्शन कैसे खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार लगातार अलग अलग फ्रंट्स पर सहमति बनाने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं प्रदर्शनकारी और सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने अपनी शर्तें रख दी हैं। विपक्ष भी अपनी शर्तों पर अड़ गया है।
4: आखिर कैसे खत्म होगा सीजेपी का आंदोलन, आखिर कब सोनम वांगचुक तोड़ेंगे अनशन, आखिर सरकार कैसे छात्रों की दूर करेगी नाराजगी? जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक घमासान जारी है, ऐसे में प्रदर्शन को लेकर सरकार में बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में देर रात सोनम वांगचुक से करीब एक घंटे तक मुलाकात की। बैठक में सरकार ने संसद में चर्चा और शिक्षा सुधारों पर अपने रुख की जानकारी दी। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और नितिन नवीन शामिल थे। संसद भवन परिसर में धरने पर बैठे सांसद चंद्रशेखर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुलाकात की है। इस बीच सरकार अब कॉकरोच पार्टी से फिर संवाद की तैयारी कर रही है। पहले खबर आई थी कि ये बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हो सकती है, लेकिन कॉकरोच पार्टी के विरोध के बाद बैठक की जगह बदलने पर बातचीत हुई।
5: आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया, उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे, जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को, अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं।
4: इस बीच सोनम वांगचुक की ओर से सरकार को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें अनशन खत्म करने को लेकर अपनी मांग रखी है। पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए, जवाबदेही तय करने के लिए संसद में सार्थक चर्चा, जिसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार करना भी शामिल है। मैं सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी युवा प्रदर्शनकारी को किसी कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा आश्वासन दिया जाता है तो मैं इस भरोसे के साथ अपना अनशन खत्म करूंगा कि सरकार ने न केवल मेरी अपील सुनी है बल्कि लाखों युवा भारतीयों की आकांक्षाओं को भी सुना है। ऐसे आश्वासन के अभाव में मैं अनिश्चित काल तक अपना अनशन जारी रखने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। उधर सीजेपी ने भी सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए आम सहमति बनाने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स से अलग अलग बैठक की तैयारी की है। अगर विपक्ष सहमत होता है तो सरकार कल से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है। वहीं राहुल गांधी सरकार की ओर से हुई बातचीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
6: धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इंटरैक्शन होना चाहिए। जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए।
4: सूत्रों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां भेजी गई हैं। इनकी तैनाती संवेदनशील इलाकों में की जाएगी ताकि प्रदर्शनों और संसद सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जा सके। आज तक ब्यूरो।
0: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। खबरों के मुताबिक सीजेपी अपना प्रदर्शन तब तक जारी रखेगा जब तक उसकी तीन मांगें पूरी नहीं हो जाती। पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी मांग आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, तीसरी मांग शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई मुकदमा न चलाया जाए। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, यही मांगे पहले भी थी या इन मांगों में तब्दीली की गई है?
7: एक मांग जो है शायद उसमें तब्दीली हुई है नेहा, जिसमें ये था कि सोनम वांगचुक को जो है वो रिहा किया जाए, क्योंकि कल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है सोनम वांगचुक को जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल से शिफ्ट कराया गया है, उन्हें मेदांता गुड़गांव में एडमिट कराया गया है, जहां कल देर रात हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जो है जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की थी। उनसे तमाम चीजों पर बातचीत हुई और उनसे अपील की कि आप हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए और सरकार जो है सदन के अंदर चर्चा कराने के लिए तैयार है। अब ये जो सीजेपी की नई मांग है जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी तरीके का कोई केस जो है जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनके ऊपर नहीं हो, ये एक नई एडिशनल मांग जो है वो जोड़ी गई है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई पर अन्ना हजारे ने चिंता व्यक्त की है इस चिट्ठी में। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह इस वक्त जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, इस चिट्ठी में जिस तरीके से स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है उस पर अन्ना हजारे चिंता जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर वो टिप्पणी कर रहे हैं कि उनके लिए वो पीड़ादायक है, और क्या कुछ लिख रहे हैं इस चिट्ठी में?
8: देखिए, और उसको लेके पुलिस की बर्बरता की बात कर रहे हैं विपक्ष, और जिस तरीके से तमाम दृश्य आए सामने उसको लेके तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वही तमाम छात्रों के वीडियो भी सामने आए हैं। इसको लेके न सिर्फ तमाम सियासी दल, लेकिन एक तरीके से जो सेंटिमेंट है छात्रों के साथ वो ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। और अन्ना हजारे पहले भी बयान वक्तव्य दे चुके हैं कि इस आंदोलन में जो छात्रों का आंदोलन है उनकी बात को सुना जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर इस चिट्ठी में भी उन्होंने जो घटना घटी और जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांगी गई और कई जगह टियर गैस और छात्राओं के साथ बदसलूकी की बात सामने आई है, इसको लेके उन्होंने विस्तार से अपना विरोध दर्ज किया।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर संसद में आज फिर नीट पेपर लीक पर जमकर हंगामा हुआ। सरकार ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ गया है।
9: सरकार जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद। एक बार फिर संसद के दरवाजे खुले तो नीट पेपर लीक और प्रदर्शनकारियों पर एक्शन की गूंज सुनाई दी।
10: तैयार हूँ

0: तीव्र भत्सा करते हैं, इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है।
1: उधर अखिलेश यादव भी चर्चा पर जोर दे रहे हैं।
2: छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाहर ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं सुनते, नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?
1: राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे, जहां उन्होंने 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन पर एक्शन का विरोध किया।
3: जर्मन मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से जर्मन मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमेशा खेल खेलती है, राजनीतिक खेल खेलती है, जो एक्चुअल चीज है वो आप बताते भी नहीं है और आपको बताना नहीं।
1: बहरहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों हंगामे के बीच स्थगित हुई और अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार चर्चा कैसे कराएगी, क्योंकि विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो।
4: वही संसद में आज कांग्रेस और बीजेपी को बोलने का मौका मिला, जिस पर अखिलेश यादव भड़के नजर आए। अखिलेश से बात की हमारे सहयोगी मौसमी सिंह।
5: पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव को गुस्सा क्यों
6: आया? नहीं, ये कोई सवाल नहीं है, अपनी बात कहने के लिए गुस्सा होना चाहिए।
5: आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार राजी होगी, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं नीट के मसले को लेकर, आपने कहा
6: तो स्वीकार करना चाहिए। और इस्तीफा कोई, जब पूरा देश युवा मांग रहा है इस्तीफा और तुमने खुद स्वीकार की, खुद परीक्षा दोबारा की है, दोबारा परीक्षा की है, तो इसका मतलब आपने खुद गलती मानी है ना, खुद गलती मानी है कि आपकी परीक्षा गड़बड़ हुई है।
5: पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस्तीफा पहले कर रही है और आप
6: नहीं,
5: कहा ना कि इस्तीफा तो होता रहेगा।
6: नहीं, इस्तीफा क्योंकि आज जब बात होनी है, जो पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का व्यवहार छात्र नौजवानों के साथ था और राहुल जी के साथ, हमारे साथ, हमारे सांसदों के साथ क्या व्यवहार था पुलिस का? पुलिस कपड़े फाड़ रही थी, पुलिस की पढ़ाई, तो वो बात भी तो आए सदन में। और इस्तीफा के लिए तो हम पहले दिन से रुके हुए हैं, छात्रों की मांग हो पूरी, हम वो चाहते हैं कि इस्तीफा दे सकते।
5: अखिलेश जी, आप संसद में कह रहे थे कि मुझे बोलने दिया जाए, काफी शोर हो रहा था उस समय और विपक्ष की तरफ से ही नारे लगाए जा रहे थे जब आप बोल रहे थे। कई बार आप कांग्रेस के लिए रुके हैं, राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, उसके लिए खड़े नहीं हुए।
6: ये फ्लोर कोऑर्डिनेशन में कभी कभी होता है, वो हम लोग बातचीत से रास्ता निकाल
5: रहे हैं। तो मैं भी हुई थी,
6: नहीं ऐसा कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है, फ्लोर कोऑर्डिनेशन फिर ठीक हो जाएगा।
5: डील क्या,
6: अगर जो कमी होगी वो दूर होगी।
5: डील की ओर आपने इशारा किया कि डील हो गई है क्या? आपने गुस्से मतलब कि बोला भी उस समय, किसके लिए कह रहे थे?
6: हम अगर नहीं बोल पाएंगे तो मैं क्या मानू, मैं किसको दोषी ठहराऊं, अपने साथी को, सरकार को, किसको?
7: अखिलेश सर, एक
6: बहुत हो गया,
5: कांग्रेस जैसी पार्टनर, आपको लगता है कि थोड़ा तालमेल बेहतर होना चाहिए? मेरा आखिरी,
6: मुझे उम्मीद है कि आप हम सब मिलकर के अच्छा तालमेल करेंगे।
7: अखिलेश सर, एक छोटा बयान,
5: यहाँ पे अखिलेश यादव आज तक से खास बातचीत में कि मुझे उम्मीद है कि बेहतर तालमेल आगे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहते हुए कि अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा फ्लोर ऑफ द हाउस में तो मैं क्या समझूं। और ये भी बात सामने आ रही है कि जैसे ही स्थगित हुआ हाउस, उसके बाद अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच में कुछ तल्ख टिप्पणियां भी हुई, जिसमें अखिलेश यादव ने जो है केसी वेणुगोपाल को कुछ कहा और कुल मिला के अब अखिलेश यादव बेहतर तालमेल की बात करते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
4: तो बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि वांगचुक से मिलने तमाम नेता पहुंचे थे, जिन्हें रोक दिया गया था अस्पताल के बाहर। अब उन्हीं नेताओं से मिलने उनकी पत्नी पहुंची हैं, वांगचुक की पत्नी बाहर आ गई हैं संजय सिंह से मिलने। आपके अलावा आरजेडी के भी नेता भी मिलने पहुंचे थे। तो विपक्ष के नेताओं से वांगचुक की पत्नी वेदांता अस्पताल के बाहर आ गई है। हालांकि पुलिस वालों ने इन नेताओं को अंदर नहीं जाने दिया था, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, इसमें वांगचुक की पत्नी दिखाई दे रही है संजय सिंह से बात करते हुए। इर्द गिर्द सुरक्षा बल है, लेकिन एक कागज हाथ में लिए हुए यहां वांगचुक की पत्नी दिखाई दे रही। आप आरजेडी एसपी और जेएमएम के सांसद मिलने पहुंचे थे, आप पत्नी से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन का असर अब देश के अलग

0: अलग शहरों में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात पटना की। पटना में बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आ गए और फिर दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई।
1: पत्थरबाजी हो रही है, लाठियां चल रही हैं, पुलिस वाले उपद्रवियों पर लाठियां बरसा रहे हैं, बवाल मचा हुआ है। ये तस्वीरें पटना की हैं। पटना में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर राहुल गांधी के धरने के विरोध में बीजेपी के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे तो हंगामा मच गया। दोनों तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी हुई।
2: दोनों तरफ से, इधर देखिए, इस तरफ कांग्रेस के जो लोग हैं, इधर से कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता जो हैं, और इसमें हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद हो। देखिए इधर कांग्रेस के जो तरफ से देखिए पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है। दोनों तरफ से बवाल जो है इस वक्त।
1: कांग्रेस के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी कर रहे थे।
3: राहुल गांधी देश में अराजकता लाना चाहते हैं, इस लोकतंत्र को सर्वसार कर रहे हैं। संसद चल रहा, उनकी बात, उनको बात संसद में जाके करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री जी के आवास पर जो देश का सबसे सुरक्षित क्षेत्र है वहाँ जाके बैठ जाना चाहिए।
1: प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के नेताओं की गाड़ियां भी चकनाचूर कर दी।
4: ये एक गाड़ी है, कांग्रेस के नेता की गाड़ी है जो यहाँ लगी हुई थी सलाहकार आश्रम बिल्कुल पास में, और देखिए इनकी गाड़ी का क्या हाल हुआ है और क्या उस समय दृश्य रहा होगा, इस बात को समझा जा सकता है।
5: जैसे हम यहाँ से निकल रहे थे, देखे कि अचानक भाजपा के 150 के करीब में कुछ लाठी डंडा लिए हुए घूम आए, और ताबड़तोड़ भी ना पूछे कहे उन्होंने कि मार एक कांग्रेस का है।
4: ये चोट भी लगी आपको?
5: चोट लगा, हमने लाख रिक्वेस्ट किया, उसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ी को तो।
1: इस बवाल में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हुए। देखिए इस पुलिसकर्मी का सिर फट गया है। अब धरना प्रदर्शन के जवाब में धरना प्रदर्शन हो रहा है और हंगामा बढ़ता जा रहा है। शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।
0: और पटना की तरह मुंबई, भोपाल, रायपुर और जयपुर में भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। यहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पोस्टर लहराकर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। जयपुर में तो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन तक लाना पड़ा।
6: ये कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का गुस्सा है। तस्वीरें मुंबई की, जहां बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी की तस्वीर पर चप्पल बरसाया जा रहा है। बीजेपी वाले राहुल के खिलाफ मुंबई की सड़कों पर उतरे तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करने सामने आ गए।
7: मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, गए ठीक है, नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर हम मुकर गए कि मेरी मर्जी, ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा, आप ही की उद्दंडता से चलेगा?
8: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है।
6: मुंबई के बाद जयपुर की तस्वीरें देख लीजिए। बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी के लोग राहुल और प्रियंका गांधी के विरोध में उतरे। यहाँ बवाल ऐसा बढ़ा कि प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन चलाना पड़ा।
9: बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं, इस तरह से पहली बैरिकेडिंग को तोड़ दिए हैं और ये कूच कर रहे हैं कांग्रेस दफ्तर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं।
6: जयपुर के बाद रायपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की।
10: वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि जिस तरह की घटना घटी है उसमें उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।
11: हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए। मैसेजिंग यूथ के लिए है, मैसेजिंग प्रधानमंत्री के लिए है, यूथ के लिए ये मैसेजिंग है घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं, राहुल गांधी आपके साथ खड़े हैं, उनकी पूरी फौज आपके साथ खड़ी है।
6: अब भोपाल की तस्वीरें देख लीजिए, राहुल गांधी के खिलाफ के बीजेपी का आक्रोश, बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़ रहे हैं।
12: भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच किया, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन देखिए बैरिकेड तोड़ दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और अब ये कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच कर रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए, पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे लेकिन वो बैरिकेड नाकाफी साबित हुए और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता अब कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच कर रहे हैं।
6: अलग अलग शहरों में अब बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई चल रही है, धरना वर्सेस धरना देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: तो अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था सोनम वांगचुक की पत्नी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करते हुए मेदांता अस्पताल में, इस वक्त उनके पति भर्ती हैं, उन्होंने बाहर आकर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद क्या कुछ कहा सुनिए।
13: I'm not going to do with ANI because you cut out, which is not convenient for you. Yesterday you did. Agar aur koi hai, to hum karenge, nahi to hum aur kahin public ye karenge.
14: Ma'am, namaskar. Ma'am, district president.
0: इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
16: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
17: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
18: Savari, Sokudo.
19: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
20: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
21: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
22: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
23: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
22: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
24: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
25: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
26: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: तो भरोसा है।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
8: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
9: कुछ तो बात है इस तेल में।
10: वी आर ओवर जिमी।
11: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
12: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint Bade Aram Se.
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
2: मुझे पैरालिसिस हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा प्यार में पागल हो गई थी किसी के एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टेड थी उस इंसान के अंदर. तो फिर वापस से मुझे एक बार और स्ट्रोक आया था जनवरी में बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ओनली. आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड्स. इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं. माय वेट वाज 52 एंड विद इन 7 डेज माय वेट गोज 85. सो इट्स अ ट्रिजेमिनल न्यूरोलॉजिया. मुझे डॉक्टर ने ही बताया. हाँ, ये सलमान खान को भी बीमारी है. वो भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि उनको भी है. सडन अटैक्स आते हैं यहाँ पे. मतलब ऐसा लगता है कि कुछ करंट लग गया है. दिस इज अ सुसाइडल डिजीज.
3: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है. परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं. 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई. हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं. 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया.
4: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर. आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे.
5: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं.
3: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम.
6: स्पीकर पे स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं. और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है. मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है. और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन. मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे. नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: माफी मांगे पीएम मोदी, बोले 10 साल में शिक्षा व्यवस्था चौपट। सरकार को चिट्ठी में वांछित ने अनशन खत्म करने की रखी शर्त, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर संसद विचार पर आश्वस्त करे केंद्र, अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद रोके गए। राहुल के धरने के विरोध में नहीं थम रहा बवाल, दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना, जयपुर तक बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग प्रदर्शन पर, प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है सीजेपी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक खत्म, सीईसी के चयन में एक और महीने का वक्त लगेगा, मंदिर का धार्मिक कार्यभार संतों को सौंपने का फैसला। उत्तर से पश्चिम तक बाढ़ और बारिश का कहर, बंद हुई वैष्णो देवी की यात्रा, गुजरात के सूरत वलसाड़ में बिगड़े हालात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं नेहा बाथम। मॉनसून बिल्कुल अनोखी चाल चल रहा है, कहीं भारी तबाही हो रही है, फ्लैश फ्लड आ रहा है, बरसाती नालों में उफान है, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है, भारी नुकसान है, लेकिन दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश इस तरह से नहीं हो रही है जैसा कि उम्मीद थी। बारिश का मौसम बनता है, बादल ऐसे घिर कर आते हैं जैसे बहुत भारी बारिश होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद बूंदाबांदी होती है, जमीन गीली होती है और फिर धूप खिल जाती है। अब मौसम की इस आंख मिचोली में ये नहीं समझ आ रहा है कि आगे ये कैसी चाल चलेगा, देखिए पूरी रिपोर्ट।

0: झटके में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नदी में समा गया। जम्मू कश्मीर में मॉनसून में बादल ऐसे फटे हैं कि सैलाब सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। आंखों के सामने मेहनत की पूंजी उफनती नदी की लहरों में समा गई। लोग देखते रह गए और सब कुछ खत्म हो गया। मौसम की मार ऐसे पड़ी है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता। लोग सकते में, बड़गाम के बीरवाह से आई ये तस्वीर बेहद डरावनी है। ये बड़गाम के मुख्य बाजार का इलाका है। मंगलवार को वहां अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। सब कुछ आंखों के सामने हुआ। चंद सेकंड के अंदर उफनती नदी की लहरों ने इस इमारत की नींव को हिलाकर रख दिया और देखते ही देखते ये इमारत धड़ाम हो गई। 8 सेकंड में ये इमारत उफनती नदी में समा गई। सैलाब के एक तरफ लोग खड़े थे, दूसरी तरफ ये मार्केट था और मार्केट की बर्बादी को देखने के लिए उसके ठीक बगल में सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। हाथों में मोबाइल लिए उन्हें खतरे की आहट पहले से हो गई, लिहाजा पुलिस प्रशासन सतर्क था। जम्मू कश्मीर पुलिस के कई जवान लगातार लोगों को आगाह कर रहे थे, उन्हें खतरे की सद से दूर हटा रहे थे। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से दुकानदार अपना सामान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि पुलिस उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकालने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन चंद सेकंड के बाद ही यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नदी में समा गया। इस इमारत के नदी में समाने से बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है।
1: अराउंड 20 दुकानें थी इस एक कॉम्प्लेक्स में, जो बिल्कुल नाले सुखना बस स्टैंड जो हमारा बीरवा में है यहाँ पर वाक़ था। और लोगों से अभी हम गुजारिश कर रहे हैं कि नाले के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि नाले में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और ये बहाव अभी बढ़ने का खदशा है, क्योंकि हायर रीच में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जो पानी अभी इधर की तरफ आ रहा है और बीरवा पहुंचना अभी वो बाकी है, जिसकी वजह से पानी का लेवल इंक्रीज हो सकता है। आपने देखा होगा कि बीरवा में जो हमारा मेकशिफ्ट टेम्परेरी कनेक्शन ब्रिज था वो भी पानी की वजह से वॉश आउट हो गया है, और पानी का बहाव जो ही कम हो जाता है तो रेस्टोरेशन वर्क्स हमारी स्टार्ट हो जाएंगी।
0: बड़गाम के अन्य हिस्सों में भी बेहिसाब तबाही हुई है। बादल फटने की घटनाओं के बाद से कई इलाके खतरे का सामना कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तेज बहाव दिखा। अब आपको हंदवाड़ा के हालात दिखाते हैं। वहां भी मूसलाधार बारिश ने संकट को विकराल कर दिया है। रिहायशी इलाकों में हालात ऐसे हैं कि जिंदगी ठप हो गई। कई जगह सैलाब की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। ये तस्वीरें गुरेज की है, यहाँ भी भारी तबाही हुई है। फ्लैश फ्लड की वजह से हाहाकार है, ऐसी लहरों से हड़कंप मचा हुआ है। और यह है अखनूर, जहां चेनाब नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाढ़ के हालात है। चेनाब ने फिलहाल खतरे के निशान को तो पार नहीं किया है, लेकिन उसके बहुत नजदीक आ गई है।
2: जम्मू कश्मीर में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर के अधिकतर क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र अखनूर में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो चेनाब नदी है इसका जल स्तर काफी बढ़ चुका है, जल प्रवाह भी काफी तीव्र है, और जो चेनाब नदी है इस समय अलर्ट मार्क से ऊपर बह रही है। 32 फीट जो है वो अलर्ट मार्क है और 35 फीट जो है वो खतरे का निशान है, और फिलहाल जो नदी है वो खतरे के निशान के आसपास बह रही है, अलर्ट मार्क को पार कर दिया है। इसीलिए यहां पर प्रशासन ने जो है सख्त निर्देश दिए हैं लोगों को कि वो नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि स्थिति काफी गंभीर हो रही है। इस समय आप देखिए कि यहाँ जल प्रवाह कितना तीव्र है, जल प्रवाह कितना तेज है, और जो आसपास के यहाँ मंदिर है, हम इस समय जिया पोता घाट पर जो है स्थित है, इसी के आसपास हम यहाँ खड़े हैं, और जियापोता घाट जो है, यहाँ जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भी चेनाब नदी का पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है और मंदिर के अंदर भी पानी आ चुका है। और साथ ही में ये जो क्षेत्र है, दरअसल यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, कई सारी सीढ़ियाँ हैं वो नीचे तक जाती हैं, फिर आगे घाट है, और यहाँ जो आप ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, लोग यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं, लोग यहाँ पर जो आसपास की जो सीनरी है, आसपास के जो दृश्य है उसका आनंद लेते हैं, लेकिन इस समय अगर आप देखें तो स्थिति काफी गंभीर है।
0: यह जम्मू के रियासी जिले का सलाल डैम है, जिसमें इतना ज्यादा पानी भर गया कि डैम के सारे गेट खोलने पड़े। यहां लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां लबालब भरी। देखिए पानी का प्रवाह बता रहा है कि ये डैम कितना ज्यादा भर गया। ये राजौरी की तस्वीरें हैं, यहां भी बुरा हाल, पहाड़ी नाले बहकर सड़कों पर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि राजौरी पुंछ हाईवे को बंद करना पड़ा है क्योंकि लगातार भूस्खलन हो रहा है।
3: जम्मू पुंछ हाईवे इस वक्त ब्लॉक हो चुका है, स्लाइडिंग की वजह से हाईवे प्रभावित हो चुका है और तमाम गाड़ियां, आप मेरे पीछे तस्वीरों में आपको दिखाना चाहता हूं, ये तमाम गाड़ियां जो जम्मू से राजौरी की तरफ और राजौरी से जम्मू की तरफ जा रही थी, ये तमाम गाड़ियां रास्ते में ही रुक गई हैं क्योंकि स्लाइडिंग यहां पर हो रही है। जोरदार स्लाइडिंग जम्मू पुंछ हाईवे पर हो रही है जिस वजह से जम्मू पुंछ हाईवे जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम गाड़ियां जो है वो यहाँ पर रुकी है क्योंकि स्लाइडिंग जो है वो जोरदार तरीके से आगे हो रही है और स्लाइडिंग की वजह से इन गाड़ियों को यहाँ पर ही रोकने की इजाजत जो है वो, आगे जाने की इजाजत जो है वो गाड़ियों को नहीं है और ये तमाम गाड़ियां यहाँ पर।
0: जम्मू कश्मीर में पिछले चार दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद कर दिया गया है क्योंकि हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं।
2: पिछले चार दिन से लगातार हो रही बारिशों के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पूरी तरह से बंद है। कहा जा रहा है कि कई जगह मडस्लाइड्स और रोलिंग स्टोन जो है वो उसकी वजह से सड़कें पूरी तरह से बंद है और किसी भी गाड़ी को उधमपुर से आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। इस समय जो प्रशासन है उसने पूरी तरीके से पूरा इंतजाम जो है लोगों के लिए किए हुए हैं ताकि उनको कई जगह पे रोका जाए और उनको वहां पे ठहरने का इंतजाम जो है किया गया। कई जिले आगे पड़ते हैं, उनमें डोडा, किश्तवाड़ और रामगढ़ जिले हैं, लेकिन वहां तक गाड़ियों को जाने की इजाजत जो है बहुत सोच समझ के और बारिश रुकने पर ही दी जा रही है।
0: पहाड़ों में भारी बारिश के बाद लगातार भूस्खलन हो रहा है, फ्लैश फ्लड आ रहा है, बारिश रुक ही नहीं रही और मैदानी इलाकों में अभी भी सूखा है। बादल घिर कर आते हैं, बारिश का मौसम भी बनता है लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है, मॉनसून झूम कर नहीं बरस रहा। मौसम विभाग बता रहा है कि अगले कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
4: तो बारिश अपेक्षाकृत कम हुई, हालांकि अमृतसर वगैरह में काफी तेज बारिश की घटना देखने को मिली है, मध्य भारत में बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, मैदानी इलाकों में बारिश में कुछ कमी देखने को मिली है। उसका मेन कारण यह है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी पहाड़ों पर आ रहे हैं और जब टफ जो पहले पहाड़ों पर थी वो जब मैदानी इलाकों में आई तो बंगाल की खाड़ी से जो और अरब सागर से, दोनों सागरों से जो नमी वाली हवाएं वहां पर पहुंची, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, इन सबके मिले जुले प्रभाव से यहां पर टोरेंशियल रेन हो रही है।
0: मौसम की इस मार की वजह से पिछले 50 घंटों में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ज्यादातर मौतें पुंछ और राजौरी में हुई।
5: पुंछ में बहुत नुकसान का सामना, बहुत नुकसान हुआ है और कीमती जाने भी गई हैं, जिस तरह नासिर ने शुरू में आपसे कहा। पहले तो हमारी मुकम्मल कोशिश है कि किसी और की जान न जाए। मैंने कल जो रिव्यू मीटिंग लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, मैंने अफसरों को वाजिया हिदायत दी है कि जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके जो सबसे वल्नरेबल फैमिलीज हैं वहां पे, जो नालों के करीब, दरियाओं के करीब या लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज के करीब रहते हैं उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए।
0: भारी बारिश से संकट ऐसा है कि अमरनाथ यात्रा आज लगातार चौथे दिन स्थगित रही। मौसम विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ अशरफानी आज तक।
6: सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर बुरा हाल है, यहां भी लगातार बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के हालात है। दोनों ही राज्यों में भारी नुकसान है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर असर पड़ा है, काफी जगहों पर यात्रा को रोकना पड़ रहा है क्योंकि पहाड़ों से लगातार भारी भूस्खलन हो रहा है।
0: दिल दहला देने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच पिथौरागढ़ की दारमा घाटी को जोड़ने वाली सड़क पंगबांबे के पास भारी भूस्खलन की चपेट में आ गई। देखते ही देखते पूरी पहाड़ी भरभराकर ढह गई और भारी मात्रा में मलबा और विशाल बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पहाड़ी दरकी, उस समय सड़क पर कोई गाड़ी नहीं। सड़क बंद होने से दारमा घाटी का संपर्क प्रभावित हो गया। इधर लगातार बारिश की वजह से आज केदारनाथ यात्रा को भी बंद करना पड़ा था, क्योंकि पैदल यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड के पास छोड़ी में भूस्खलन हो गया। पहाड़ से भारी बोल्डर गिर रहे थे, जिसकी वजह से यात्रियों को गौरीकुंड में ही रोका जा रहा था। लेकिन शाम को रास्ता साफ कर दिया गया और उसके बाद यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। उधर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। मॉनसून के इस भारी बारिश के बीच ये बर्फ गिरी है। ये चमोली के गुप्तखाल ट्रैक की तस्वीरें हैं। ये ट्रैक 16,400 फीट की ऊंचाई पर है। ये ट्रैक नीति घाटी को माणा से जोड़ता है। भारी बर्फबारी के बीच लोग यहाँ ट्रैकिंग करने आए हैं। निचली घाटियों में लगातार बारिश हो रही है, जबकि ऊंचे हिमालयी इलाकों में मौसम बदलते ही बर्फबारी शुरू हो जाती है। पूरी घाटियां सफेद बर्फ की चादर से ढक गई है। हिमाचल में भी बुरा हाल है। ये कांगड़ा के शाहपुर इलाके की बोह घाटी, यहाँ बेबसी है, लाचारगी है और मायूसी है। हिमाचल के पहाड़ी इलाके के इस हिस्से में भारी बारिश ने क्या हाल कर दिया, ये मंजर उसकी गवाही दे रहे हैं। मौसम की मार ऐसी है कि मानो ये सैलाब सब कुछ तबाह करके ही दम ले। बारिश के चलते स्पैडा और गढ़ून गांवों में कई मकान तबाह हो गए, कई गौशालाएं बह गई। गढ़ून गांव में भी 10 घर और स्पैडा में 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। चश्मदीद बता रहे हैं कि पहाड़ी पर जोरदार धमाके के बाद अचानक से बाढ़ आई, उसके साथ भारी मात्रा में मलबा भी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। डरावने मंजर की तस्वीर चंबा से भी आई है। यहाँ लगातार हो रही भारी बारिश के चलते रावी नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। कई जगहों पर नदी का जलस्तर बढ़ने से बेहिसाब खतरा बढ़ गया है। इसी संकट काल में एक शख्स उफनती रावी के बीच में फंस गया। लहरों के बीच एक चट्टान के सहारे वो अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करता दिखा। उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद कामयाबी मिली। मॉनसूनी संकट से चंबा का जनजीवन ठप है। यहाँ सड़कों पर पानी भरने की वजह से उन्हें बंद करना पड़ा है। एक दिन पहले ही मूसलाधार बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई। हालात ऐसे हो गए कि ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया है। भटियात क्षेत्र में चंबा को कांगड़ा जिले के नूरपुर से जोड़ने वाली लाहड़ू नूरपुर सड़क का एक बड़ा हिस्सा चक्की नदी में समा गया। इस वजह से कई गाड़ियां फंसी दिखी।
6: ब्रेक का चला है, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
9: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: वी आर ओवर जिमी।
5: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: पीछे 6 फुट वाली रखी, पीछे दुनाली आगे हैट पे लिखा था गुजर। बात करा दे दीदी तेवर से, मेरी निकले जान हुआ के तेवर से।
1: वाह, ये अलग लेवल पे है भाई।
2: वाहन का क्या है? जब तक इस देश में एथनॉल है।
1: पानी हल्का गर्म है, मिर्ची अपने मुंह पे डाल लिया, हल्दी वो पानी उन्हें गिरा के रो रहा हो कि एक लाइक दे दो। हम उसको स्वाइप कर मिले तो लाते लात मारो कि क्या पागलपन कर रहा है भाई।
3: भाई अरबी
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया।
2: मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है।
1: करीब 2 घंटे तक चली चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बीच सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून को हरी झंडी दे दी।
3: आर्टिकल 25-29 का वायलेंस हो रहा है और 29 का तो पूरा का पूरा हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और आप सिविल में जाते थे और आप सिविल से क्रिमिनल में आ गए, तो दोनों एक साथ कैसे कर सकते हो हाउस में? लेकिन 2 घंटे देखा, हठधर्मी है, संविधान तो बचा नहीं है, मर्यादाएं बची नहीं है, बस दे दे।
4: अब मध्य प्रदेश में किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं होगा, अब उत्पीड़न नहीं होगा, अब कोई मर्द 4 शादी नहीं कर पाएगा, अब हलाला जैसी कुप्रथा समाप्त होगी, अब एक रूपता आएगी, समानता आएगी, हर बेटी को अधिकार मिलेगा, हर महिला को सम्मान मिलेगा, अब पूरी तरह से एक रूपता मध्य प्रदेश में रहेगी।
1: कांग्रेस का आरोप है कि ये बिल सरकार ने जबरन लागू किया है। कांग्रेस इस पर अभी कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है, जिसके बाद इसे चैलेंज करने की तैयारी है।
5: भाजपा की सरकार की सोची वहां तक सीमित है। वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो लागू होता है पूरे देश पर, एक राज्य पर नहीं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर, कि यह लागू कर रहे हैं? भाई देश में लागू हो अगर उनको करवाना है तो।
2: हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है।
1: उधर कांग्रेस अब सदन के बाहर सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है।
6: यूसीसी बिल विधानसभा में जहां एक तरफ पास हो गया, तो वहीं यूसीसी बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज धरने पे बैठे हुए हैं। ये प्रदर्शन हो रहा है भोपाल के शाहजहानी पार्क में।
7: बिल्कुल गलत बिल लेकर पास किया है, इससे इसके हम खिलाफ हैं।
8: हम अपने मजहब के अकॉर्डिंग ही, संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ना कि मोहन सरकार की कानून के तहत।
1: देश में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है, जबकि गुजरात और असम में यूसीसी विधेयक पारित हो चुका है, जिसके बाद अब इस लिस्ट में मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल हो गया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कहा छात्रों से माफी मांगे पीएम, बोले 10 साल में शिक्षा व्यवस्था चौपट। सरकार को चिट्ठी में वांगचुक ने अनशन खत्म करने की रखी शर्त, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर संसद में विचार पर आश्वस्त करे केंद्र, अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद रोके गए। पेपर लीक और राहुल के धरने के विरोध में नहीं थम रहा बवाल, दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना, जयपुर तक बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग प्रदर्शन करते रहे, प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी सीजेपी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक खत्म, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त, मंदिर का धार्मिक कार्यभार संतों को सौंपने का निर्णय। और उत्तर से पश्चिम तक बाढ़ बारिश का कहर, बंद हुई वैष्णो देवी की यात्रा, गुजरात के सूरत वलसाड में बिगड़े हालात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। लगातार पूरे देश की नजरें दिल्ली पर लगी हुई हैं, जहां पर शुरू हुई धरने और प्रदर्शन वाली राजनीति अब देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुकी है। सरकार संसद में चर्चा को तैयार है, लेकिन मंत्री के इस्तीफे पर अड़े विपक्ष को इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। आज राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज पर करीब 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बीजेपी ने कल पीएम आवास के बाहर तक आकर कांग्रेस की तरफ से किए गए प्रदर्शन के खिलाफ राज्यों में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना जारी है। लेफ्ट के प्रदर्शन में पटना में जमकर बवाल हुआ। अनशन करते सोनम वांगचुक ने अस्पताल से चिट्ठी सरकार को लिखी है। इन सब के बीच मानसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद ठप है। किसने क्या कहा है, कहां क्या हो रहा है, इसका वीडियो विवरण आपको हम दिखाएं। उससे पहले छात्रों के मुद्दे पर सबके स्टैंड को देख लीजिए। कांग्रेस साफ कह रही है कि बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफा दिए चर्चा नहीं करेंगे। राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग भी की गई है, और संसद मार्च के दौरान जिन लोगों को चोट लगी उन्हें जख्मी करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। वहीं सरकार साफ कह रही है कि वो नीट पेपर लीक से लेकर छात्रों से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह कल रात मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों ने आज बताया कि सीजेपी के साथ जेपी नड्डा बात कर सकते हैं, यानी सरकार विपक्ष से लेकर प्रदर्शनकारी तक से बात कर रही है, ताकि इस मुद्दे का हल निकले, समस्या का समाधान निकले। समाजवादी पार्टी कल संसद परिसर में प्रदर्शन से लेकर पीएम आवास के पास राहुल गांधी के धरने तक अखिलेश साथ देने पहुंचे। सुबह संसद परिसर में प्रदर्शन के वक्त कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन लोकसभा में चर्चा को लेकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी में खींचतान दिखी, जहां अखिलेश यादव ने स्पीकर से कहा कि आपने इनको यानी कांग्रेस को बोलने दिया, मंत्री को बोलने दिया, क्या आपस में समझौता कर लिया। अखिलेश यादव कहते हैं कि इस्तीफा तो क्या है, जब चाहेंगे ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मांग एक ही है, इस्तीफा हो फिर चर्चा हो। अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी लगातार कांग्रेस के प्रदर्शन और धरने पर सवाल उठाती है। आम आदमी पार्टी लगातार सीजेपी के जंतर मंतर वाले धरने का समर्थन करती है, राहुल गांधी पर निशाना साधती है, सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं। उद्धव ठाकरे सीजेपी के प्रदर्शन में जाते हैं, केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी के धरने से दूरी रखते हैं। शरद पवार और सुप्रिया सूले कल ये सीजेपी के प्रदर्शन में गए, आज जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बाद में शरद पवार ने कहा कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर भी उन्होंने पीएम से बात की है। वहीं चंद्रशेखर, जो यूपी की नगीना सीट से सांसद हैं, ये अलग संसद परिसर में धरना दे रहे हैं, जिनसे पहले कल ओवैसी ने मुलाकात की थी, आज जाकर संजय सिंह उनसे मिलते हैं। एक बात आज साफ दिखी, भले प्रदर्शन करने की जगह, धरना देने की जगह को लेकर विपक्ष में अलगाव हो, लेकिन इस्तीफा वो मांग है जिस पर सब एक है।
1: धरना देती सीजेपी कहती है सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आए। अनशन करते वांगचुक कहते हैं कि बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन ना हो, सरकार भरोसा दिलाए तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत पूरा विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना संसद में चर्चा को तैयार नहीं। बीजेपी खुद अब प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से देने में राज्यों के भीतर जुट गई। इन सब के बीच छात्रों से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे को लेकर संग्राम ऐसा छिड़ा, जहां पीएम आवास के बाहर मंगलवार शाम को अचानक 3 घंटे का धरना देने के बाद हिरासत में लेकर छोड़े गए राहुल गांधी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं।
2: सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए, हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो करने हैं, बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड।
1: तीन मांग रखते हैं। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दूसरी मांग, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो। तीसरी मांग, प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से माफी मांगे।
3: इनको क्या कमिटमेंट चाहिए, ये कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है, सुइसाइड हुए बच्चों के, 152 पेपर लीक हुए।
2: धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है, धर्मेंद्र प्रधान इज अ सिंबल एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड। दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स। दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड, नंबर वन। नंबर टू, दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड बिकॉज ही इज अ कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट, प्रोबेबली कलूसिव पर्सन इन दिस ड्रामा। वी नो हिज बैकग्राउंड, we know how clean he is, we know the type of person he is, there's a history here, and to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister House yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making.
1: Rahul Gandhi ka dawa hai in teen mang par koi samjhauta nahi hoga.
3: This is non-negotiable for sure. These three points, this is not our demand. This is the students' demand, which we are fully backing. This is not negotiable under any circumstances.
1: अखिलेश यादव भी मांग करते हैं कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होना चाहिए।
4: आप ये बताइए, परीक्षा दोबारा हुई कि नहीं हुई? अगर परीक्षा दोबारा हुई, इसका मतलब ये है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में लोग पकड़े गए हैं, तो इस्तीफा देने में क्या दबाव है, क्या मजबूरी है, क्या छिपा हुआ राज खुल जाएगा?
1: जंतर मंतर पर लगातार धरना देती सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी भी इस बात को दोहराती है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, जंतर मंतर खाली नहीं होगा।
5: सबसे जरूरी चलाएगा जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, धरने का इस्तीफा देगा तो देगा ही, उसको देखना यहाँ से जब तक एक तीसरी जीत नहीं मिल जाती।
1: सीजेपी के प्रदर्शन के साथ ही नीट पेपर लीक का मुद्दा दोबारा चर्चा में आया, जहां सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल पर बैठने के बाद इस मुद्दे को और ताकत मिली। अब सवाल है, क्या सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म होती है तो फिर जो आंदोलन चला है वो भी खत्म हो सकता है? इस सवाल की वजह समझिए। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मंगलवार रात हुई मुलाकात के बाद बुधवार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार के दो मंत्रियों से हुई बातचीत पर वांगचुक ने लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार का आश्वासन उन्हें दिया गया है। वांगचुक के मुताबिक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी विचार का आश्वासन उन्हें मिला है। ये सब तो विचार और आश्वासन की बात है, पर चिट्ठी में नीचे वांगचुक लिखते हैं कि बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन ना हो, अगर सरकार भरोसा दे तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं। तो अब सवाल है कि अगर छात्रों पर केवल एक्शन ना होने देने का भरोसा सरकार देती है तो वांगचुक का अनशन खत्म हो सकता है? और क्या वांगचुक का अनशन खत्म होता है तो सदन में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार सरकार बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के आगे बढ़ सकती है, जहां वो साफ कहती है कि छात्रों के हित में हर फैसला लिया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक दल सियासत साध रहे हैं।
6: दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन यह गंभीर चिंता का विषय है, और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे

0: बिना किसी लीक या आपत्ति के परीक्षा करा ली, जब पहले लीक हुए पेपर के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जांच जारी है, तो फिर क्यों राजनीति? विपक्ष कहता है यह मुद्दा देश के करोड़ों छात्रों और उनकी उम्मीदों से जुड़ा है, इसीलिए जरूरी है। बीजेपी आरोप लगाती है कि असल में विपक्ष के बीच प्रदर्शन और आंदोलन का क्रेडिट लेने की लड़ाई है। विपक्ष इसे खारिज करता है, लेकिन क्या सच यही है?
1: पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, ना ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है, ये इनका रवैया है।
2: विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए।
3: धन्यवाद।
2: जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाओ।
4: राज्यसभा में सरकार चर्चा को तैयार और विपक्ष की तरफ से बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा चर्चा नहीं वाली तकरार के साथ सदन स्थगित हो गया।
5: स्थगित किया जाता है,
4: लेकिन इससे पहले एक सवाल यह आया कि जो अखिलेश यादव अपने दल बल यानी संगी साथी सांसद को लेकर राहुल गांधी के पीएम आवास के बाहर वाले धरने में शामिल होने पहुंचते हैं, मंगलवार को जो राहुल गांधी के साथ ही हिरासत में लिए जाते हैं, जो बस में बैठकर पुलिस हिरासत में अखिलेश यादव जाते हैं, बुधवार को जो काले कपड़े पहनकर विरोध जताते कांग्रेस के सियासी प्रदर्शन तक में साथ नजर आते हैं, क्या वो अखिलेश यादव कांग्रेस की इस पूरे मुद्दे पर अलग रणनीति या अलग क्रेडिट लेने की राजनीति से नाराज है? सवाल की वजह बुधवार दोपहर 12 बजे लोकसभा में दिखती है, जब सदन शुरू होता है और कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल शिक्षा मंत्री को हटाए बिना चर्चा को तैयार नहीं होते।
6: सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन।
4: इस पर तुरंत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं सरकार तो तैयार है।
7: सरकार ने आज पार्लियामेंट सदन में कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है।
8: ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं।
4: इसके तुरंत बाद अचानक अखिलेश यादव खड़े होते हैं और थोड़ा तल्खी के साथ क्या कहते हैं सुनिएगा।
6: ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें?
9: आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज।
6: नहीं आपने समझौता क्यों कर लिया फिर?
9: हम लोग का बात भी
6: अखिलेश जी नहीं छात्र नौजवान क्या केवल
9: अखिलेश जी एक मिनट
6: नहीं अध्यक्ष महोदय ये अध्यक्ष महोदय ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे।

0: और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे, लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर, अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं सुनते नहीं जाते, क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते आप?
1: इसी के बाद सवाल आया, क्या छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी में खींचतान है, जहां अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और केंद्रीय मंत्री को पहले केवल बोलने दिया गया।
2: समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है।
3: बिना तर्क, बिना आधार कुछ नेता लुम्पिन बनने का प्रयास कर रहे हैं, लुम्पिन जैसा व्यवहार कर रहे हैं। होड़ लगी है सभी दलों में कि किस तरह छात्रों के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। लगभग 11 लोग जेल में हैं, एक भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब, पंजाब के अंदर पेन ड्राइव के साथ, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इतना बड़ा पेपर घोटाला हुआ है।
1: सूत्रों के अनुसार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी केसी वेणुगोपाल और अखिलेश यादव के बीच में बातचीत होती रही।
4: बड़ी खबर इस समय आ रही है, सोनम वांगचुक का वीडियो संदेश आया है। उन्होंने कहा है उसमें कि अगर सरकार छात्रों पर कार्रवाई न करने का भरोसा दे तो वो अपना अनशन आज ही तोड़ देंगे। सोनम वांगचुक का वीडियो बयान आया है और उसमें बड़ी बात यह है कि उन्होंने मंत्री के इस्तीफे वाली मांग अब नहीं रखी है, वो केवल छात्रों पर कार्रवाई न होने का आश्वासन चाहते हैं।
5: बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद, लगभग 65 के हस्ताक्षर, और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं, मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए, और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
4: एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाज सेवी अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने के लिए कहा है। अन्ना हजारे ने कहा है कि किसी मंत्री से इस्तीफा लेने पर जवाबदेही तय होती है, इससे दूसरे मंत्रियों को साफ संदेश जाता है कि अगर वो अपने विभागों की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाएंगे तो उन्हें भी अपना पद छोड़ना पड़ सकता है, इससे सरकार का कामकाज ज्यादा जवाबदेह और असरदार बनेगा। अन्ना हजारे की यह चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। इस बीच शरद पवार ने दावा किया है कि उन्होंने नीट और छात्रों को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान बातचीत की है। शरद पवार ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी के सामने छात्रों का पक्ष रखा, जिसके बाद पीएम मोदी ने इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक और ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उधर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के आवास के बाहर धरने के खिलाफ आज बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस दफ्तरों को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया और बीजेपी दफ्तर घेरने की कोशिश की गई। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। पटना में तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़प हो गई।
1: नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पटना में कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं।
6: एक दो लोग जो आए हैं लग रहे हैं नए आए हैं, पत्थर मार रहे हैं।
1: आईसा और छात्र संगठनों का मार्च प्रतिबंधित इलाके में पहुंचता है तो पुलिस ने हटाने के लिए यहां लाठी चार्ज किया।
7: 100 मीटर की दूरी पर सीएम आवास है, राजभवन है, तमाम यहां पर आप देखिए उप मुख्यमंत्री का आवास ये बगल में है, ये डिप्टी सीएम का आवास है विजय कुमार सिन्हा का, यहां पहुंचे हुए थे, स्पीकर का आवास है यहां पर, खुद चीफ सेक्रेटरी का आवास है, यानी कि ये पूरी तरीके से वीवीआईपी जोन है जहां पर तकरीबन घंटे भर तक प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया।
1: पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास पत्थरबाजी भी हुई। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी का सिर फट जाता है।
7: महिला पुलिसकर्मी के सर से खून निकल रहा है। श्वेता अगर आपको हम दिखाएं, ये देखिए महिला पुलिसकर्मी के सर से यहाँ देखिए खून निकल रहा है। छोटी कुमारी सिंह इनका नाम है, ये इनको देखिए इनको चोट आई है। छोटी पत्थर कैसे चोट लगा है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी गंभीर चोट यहाँ पर आई है। और देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब यहाँ से जो प्रदर्शनकारी थे उनको और थोड़ा वहाँ पीछे ढकेल दिया गया है और ज्यादा संख्या में अब एसएसबी को बुला लिया गया है।
1: पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के बाद पुलिस लाठी चार्ज करती है, प्रदर्शनकारियों को पुलिस पीटती है। इस दौरान कई छात्र सड़क पर लेट गए, पुलिस घसीट कर उन्हें अपने साथ ले गई, छात्रों को गाड़ियों में बैठा कर ले जाया गया।
7: आ रहे हैं पटना के सबसे वीवीआईपी जोन जहां पर मुख्यमंत्री आवास, जहां पर राजभवन, गवर्नर रहते हैं और यहां पर जो घुस आए हैं सब ये कार्यकर्ता जो प्रदर्शनकारी हैं आईसा के हैं, सीजेपी के अपने आप को बता रहे हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने वीवीआईपी जोन में एक तरीके से कहें तो डेरा डाल लिया है, उसके बाद यहां पर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। पुलिस को अभी लाठी चार्ज करना पड़ा है, लाठी चार्ज करके जो तमाम प्रदर्शनकारी थे उनको यहां से भगाने की कोशिश की जा रही है।
1: प्रदर्शनकारी एक बार फिर डाक बंगला पहुंचते हैं, यहां छात्रों ने जमकर पत्थरबाजी, कई पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई।
7: आईपी जोन को किस तरीके से तकरीबन घंटे भर तक जो है प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में रखा, उसके बाद पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। पटना पुलिस के आला अधिकारी जो है यहाँ पे भारी संख्या में आप देखिए पहुंचे, उसके बाद ही जो है स्थिति जो है काबू में आ पाया है और कई पुलिसकर्मी जो है इसमें चोटिल भी हुए हैं, ये भी हमने दिखाया। इधर देखिए पत्थरबाजी की तस्वीरें, आप देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी भी की गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। ये देखिए ये तस्वीरें इस रोड पे देखिए, इस वीवीआईपी जोन वाले रोड पे देखिए आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आएगा और ये इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरीके से पत्थर रोड़े पत्थर लेके जो है या फिर उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है पुलिस पर हमला करने के लिए।
1: इससे पहले पुलिस ने छात्रों को डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग करके रोका, यहाँ करीब एक घंटे तक छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस ने कई बार उन्हें हटने को कहा लेकिन वो पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी यहां पर दागे। पटना में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच भी जमकर लाठी डंडे चले हैं। यहां बीजेपी नेता कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे, इस दौरान दोनों ओर से डंडे और पत्थर चलाए जाते हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस नेता पहले से पत्थर और डंडे लेकर मारपीट के लिए तैयार बैठे थे। दोनों पार्टियों के बीच मारपीट के दौरान शुरुआत में पुलिस चुपचाप खड़ी नजर आई, इसके बाद मामला बढ़ने पर पुलिस ने एक्शन लिया। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता बड़े पैमानों पर सड़कों पर उतरे। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने दुर्भावना के साथ दिल्ली में पीएम आवास के सामने धरना प्रदर्शन करके हंगामा किया था।
8: कांग्रेस के गुंडे मवाली पत्थर प्रोटेस्ट का अधिकार लेंगे, पत्थर फेंक रहा है, ईंटा फेंक रहा है।
1: प्रदर्शन करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार का इस्तेमाल कर काबू किया गया। पटना की तरह कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं का रांची में भी आमना सामना होता है। बीजेपी कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता झंडे बैनर लेकर अपने पार्टी दफ्तर के बाहर खड़े हो जाते हैं।
9: लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका प्रोटेस्ट करने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कल राहुल गांधी एक सुनियोजित साजिश के तहत प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर के धरना दिए हैं और वहाँ जो नाटकबाजी किए हैं, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसी के खिलाफ आज हम लोग कांग्रेस भवन का घेराव करने आए हैं।
10: कांग्रेस भवन का घेराव का कार्यक्रम है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी है। प्रधानमंत्री आवास के पास पहुँच कर जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, उसको लेकर काफी नाराजगी झारखंड में भी दिख रही है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
4: लखनऊ में भी बीजेपी कार्यकर्ता, नेता और मंत्री सड़कों पर निकले, जिन्हें रोकने के लिए कांग्रेस दफ्तर में महिलाएं लाठी लिए हुए दिखी।
1: प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के धरना देने की गूंज लखनऊ में भी सुनी गई, जब बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नौबत धक्का मुक्की तक जा पहुंचती। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका तो फिर वो भड़क गए, नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए।
11: देखेंगे तो पीछे यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है और यहीं पर ये बैरिकेडिंग लगा दी गई क्योंकि आगे ना जा पाए, इस वजह से रोक दिया गया। कई भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सभी इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल रहे और
12: मुर्दाबाद। हमारी मांग है इनको जेल भेजा जाए, जो इनकी हरकत है
13: भेजा जाए इनको।
1: कांग्रेस मुख्यालय के अंदर कार्यकर्ता बीजेपी के विरोध का सामना करने को तैयार दिखे। यहां कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने लाठी हाथों में लेकर नारेबाजी की। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर की एक और तस्वीर दिखती है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने को तैयार दिखे, लेकिन उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। ऐसा ही टकराव गुजरात में दिखा, जहां बड़ी तादाद में कांग्रेस दफ्तर का घेराव करके नारेबाजी की।
14: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में यहां पे विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन उसमें 150 से ज्यादा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन दोपहर को 2 बजे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय पर आकर आज विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, लगभग 2 से 5 मिनट पहले ही यहां से पुलिस ने बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को यहां से दूर कर दिया है, लेकिन अभी भी बैरिकेडिंग्स और पुलिस की भारी संख्या में मौजूदगी तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है।
15: कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज सुबह भी यहां पे विरोध प्रदर्शन किया था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। साथ ही में कहा है जिस प्रकार से कल नेता विपक्ष के साथ व्यवहार पुलिस कर्मियों द्वारा दिल्ली में किया गया, उसके चलते प्रधानमंत्री और गृहमंत्री माफी मांगे।
16: ये गलत बात है क्योंकि कल जो भी धरना प्रदर्शन किया उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है। कानून अगर आप हाथ में लोगे तो कानून कानून का काम करेगा।
1: पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी के धरने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस देश भर में एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इधर आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। हालात तनावपूर्ण होते उससे पहले ही पुलिस ने हालात संभाल लिए।
4: जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने में पूरा दिन पुलिस व्यस्त रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जयपुर में कांग्रेस लगातार दूसरे दिन सड़क पर उतरी तो बीजेपी कार्यकर्ता पीएम आवास पर राहुल के धरने के खिलाफ कांग्रेस दफ्तर घेरने उतरे।
1: जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन भर आमने सामने रहे। सुबह बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी ऐसा ही करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करने के खिलाफ बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता सुबह से ही इकट्ठा हो गए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए, लेकिन पहले को वो तोड़ने में कामयाब रहे।
17: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहली बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अब कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी बैरिकेडिंग कर रखी है। इन सबका यही आरोप है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री निवास का घेराव किया है, कल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में डाली है, इसे लेकर यहां पर ये सड़क पर निकले हैं।
18: कांग्रेस पार्टी जैसा कृत्य कर रही है,
13: एक विपक्ष का नेता राहुल गांधी जी, एक हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आवास पर जाके धरना देते हैं, उनका अशोभनीय है, उनको ऐसा करते नहीं करना चाहिए।
17: हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कार्यकर्ता जो लगातार बढ़ रहे हैं कांग्रेस दफ्तर की तरफ, और वहां पर पुलिस की भारी बैरिकेडिंग आगे की गई है, जहां पर इन्होंने ऐलान किया है कि हम घेराव करेंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर बैठे हुए थे। और इसे लेकर यहां पर जयपुर की सड़कों पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे।
1: बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने एक और बैरिकेडिंग लगाई, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ता चढ़ गए। जैसे ही पुलिस को लगा कि अब हालात बेकाबू हो सकते हैं, पुलिस ने पानी की बौछार से बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका।
17: जयपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास का घेराव हुआ है, उसे देखते हुए यहां पर देखिए पानी की बौछारें शुरू हो गई है और यहां पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने की कोशिश हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं जयपुर का यह दृश्य, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: जयपुर में बीजेपी मुख्यालय से शुरू हुए इस प्रदर्शन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मुख्यालय से रवाना हुए कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां, बैनर और बीजेपी के झंडे को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते हैं।
18: प्रशासनिक अनुमति के बिना रैली एवं प्रदर्शन करना गैरकानूनी है।
1: बीजेपी के इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने भी मार्च निकाला। उसके कार्यकर्ता भी बैनर झंडे लेकर बीजेपी दफ्तर को घेरने निकल पड़ते हैं, जिन्हें रोकने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है।
18: हम प्रशासनिक अनुमति नहीं दी गई है।
17: जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी दफ्तर के तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस ने वापस धकेल रही है। कांग्रेस और के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच इस तरह से यहां पर धक्का मुक्की हो रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सब गुत्थम गुत्थी हो रहे हैं। दिन में जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो प्रधानमंत्री आवास पर राहुल गांधी ने धरना दिया था, उसके खिलाफ कांग्रेस दफ्तर की तरफ कूच किए थे, तो अब ये बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने कांग्रेस के निकले हैं।
8: आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन जंतर मंतर पर जिस तरीके से अन्यायपूर्ण तरीके से जो नौजवानों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, कल हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ जो व्यवहार किया गया वो बिल्कुल निंदनीय है।
1: कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद कार्यकर्ता आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया।
19: पूरे देश के अंदर इतना आक्रोश फैला और आक्रोश की चपेट में सब लोग आए, ये बीजेपी वाले हो चाहे वो जनता पार्टी, जितने लोग थे वो सब आए। आखिर में सत्ता से उनको हटना पड़ा और इंदिरा गांधी की हवा चली। अब जो हरकत कल की राहुल गांधी के साथ में, ये हरकत भी ले डूबेगी इन लोगों को। पूरे देश में घर घर के अंदर आक्रोश पैदा हो गया है।
1: इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और पूर्व मंत्री शामिल हुए। गहलोत ने कहा कि राहुल पर पुलिस की कार्रवाई बीजेपी सरकार को भारी पड़ेगी।
4: लड़ाई युवाओं की क्यों जंतर मंतर तक पहुंच जाती है, क्यों धरना प्रदर्शन आंदोलन की नौबत आती है, इसकी वजह राज्य दर राज्य हम बताते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती 4 साल से अटकी है। भर्ती निकलने से लेकर अब तक चरण दर चरण लटकाया जा रहा है।
1: हाथ में बैनर, कंधे पर केवल एक बैग नहीं बल्कि सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद टांगे ये वो बेरोजगार युवा हैं, जो थक चुके हैं प्रदर्शन करते करते। 2023 में निकली भर्ती में 2026 आधा बीत जाने के बाद भी नियुक्ति न मिल पाने के बाद हताश होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर के बाहर गुहार लगाने पहुंचे हैं।
20: ग्राम पंचायत अधिकारी की यह भर्ती, आप अगर पदों की बात करेंगे तो 1468 यानी कि 1450 के ऊपर ये पद हैं, 200-300 के ऊपर ये लड़के लड़कियां यहाँ खड़े हैं। सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको आवाज दिखाई पड़ेगा, डिप्टी सीएम की चौखट पर इसलिए इनको आना पड़ा है क्योंकि पंचायती राज मंत्री के यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है या जो डिपार्टमेंट है वो इनकी नहीं सुन पाया है। अग्नि सेवा चयन आयोग के दफ्तर भी कई बार जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। थक हार कर डिप्टी सीएम से उनको आस है कि डिप्टी सीएम उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाए और मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर उनकी आवाज पहुंचे।
21: इसमें बच्चे सहारनपुर से, बांदा से, झांसी, कुशीनगर, मतलब पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हुए हैं।
22: हम कई बार आ चुके हैं लेकिन हम लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज कभी नहीं मिलती है। भर्ती तो 2023 में ही आई थी 22 के पेट से, फिर 2 साल तक संघर्ष हुआ एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट के लिए हुआ।
23: 7000 रुपए महीने घर से मांग के और घर से बाहर अपने हाथों से रोटी बना के हम लोग रहते हैं।
1: ये वो बेरोजगार हैं जिनकी भर्ती ओम प्रकाश राजभर के विभाग से जुड़ी। राजभर तो दिन भर सियासी बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पार्टी में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कराने की चिंता में जुटे रहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी नौकरी के लिए परेशान युवाओं को न्याय नहीं दिला पाते।
20: घर वाले क्या कहते हैं, मतलब आप लोग?
24: घर वालों को कहा हमने कि हमारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल से ज्यादा हो गया। घर वाले कहते कब सिलेक्शन होगा, अब तो पड़ोसी भी विश्वास नहीं करते कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या किया जाए। आयोग से बहुत परेशान है, प्रताड़ित है। अब महोबा से आते पहले ट्रेन बदलो बांदा, बांदा से फिर कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ, 3 बार ट्रेन बदलो जब लखनऊ आ पाओ, अब क्या किया जाए।
1: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तभी इन बेरोजगारों से मिलने पहुंचते हैं।
25: मेरे भाई है, मैं अभी बात करूंगा और रिजल्ट बाबू जल्दी घोषित कराएं, घबराओ नहीं, अभी करा था। अभी
20: सर,
25: ए बच्चों को मिठाई तो खिलाया।
20: तो ज्ञापन ले लिया है, ये ज्ञापन की कॉपीज हैं, डिप्टी सीएम साथ में हैं और यहां पर जो है उनसे समझ रहे हैं कि और आयोग से बात करने के लिए कहा है। अब उनके प्रतिनिधि जो है वो आयोग को फोन मिला रहे।
1: आज तक के कैमरे के सामने ही उप मुख्यमंत्री ने यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े अफसरों को फोन मिलाकर 2023 की ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी भर्ती पर सवाल किया और आश्वासन दिया है।
25: ग्राम पंचायत अधिकारी वाला रिजल्ट नहीं निकला है और 9 महीना हो गया है, बच्चे हमारे पास आए हैं, बहुत दुखी हैं, इनकी मदद करके जल्दी जल्दी निकाल दो, ये मेरे भाई है सर। कब तक निकलेगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, निकाल देना भैया, ये हमारे बच्चे हैं, बहुत दिन से परेशान है, निकाल देना भैया। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा है, अभी 2 रिजल्ट निकल रहे, तीसरे तुम्हारा नंबर है, ये मान चलो महीना डेढ़ महीना में रिजल्ट निकल जाएगी, और घबराना नहीं तुम्हें।
20: आज तक लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और अगले 1.5 महीने बाद अगर भर्ती पूर्ण नहीं होती है तो आज तक एक बार फिर डिप्टी सीएम की चौखट पर पहुंचेगा, एक बार फिर अभ्यर्थियों की आवाज बनेगा और एक बार फिर इन भर्तियों के खिलाफ खबरदार करेगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: कहीं भर्ती में देरी, कहीं पेपर लीक, कहीं भर्ती परीक्षा में नकल, सियासत सब करते हैं, जरूरत समाधान की है। जैसे पंजाब की खबर है जहां फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में नकल करवाते 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 4 की तलाश जारी है। ये लोग पेन लगे कैमरा और वायरलेस माइक्रो डिवाइस के जरिए नकल करा रहे थे। अब विपक्ष कह रहा है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है वो अपने राज्य में क्यों नहीं भर्ती में नकल रोक पाई।
26: इट इज नॉट माय डिपार्टमेंट बट फॉर द मैटर ऑफ द फैक्ट एक बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे विच एक एग्जाम होया, उस दे विच कुछ बच्चे स्मार्ट पेन लेके आ गए, शरारती अंध, हुण देखो तुसी किन्नी फ्रिस्किंग कर सकते हो। एक स्मार्ट पेन लेके आ गए जिहदे विच कोई कैमरा लग्या होया सी, उहनां नूं मौके ते फड़ लिया गया। पंजाब शुड बी अवॉर्डेड फॉर इट, इहदे लई तां सानूं शाबाशी मिलनी चाहीदी है। मैम तुसी कह रहे हो अच्छा, पर फिर भी कोई गल नहीं मैम, मैं तां घरों जदों निकलिया सी 2011 दे विच कल्ला निकलिया सी, परसों भी जंतर मंतर ते कल्ला, इफ माई रेजिग्नेशन कैन इंप्रूव द एजुकेशन सिस्टम एनी टाइम।
4: उच्च शिक्षा के लिए हर साल करोड़ों छात्र कॉलेजों में दाखिला लेते हैं लेकिन गांव के कई छात्र और छात्राएं कॉलेज दूर होने की वजह से उच्च शिक्षा से दूर हो जाते हैं। बिहार सरकार ने इस समस्या को खत्म करने के लिए छात्रों को अपने जिले और आसपास ही उच्च शिक्षा देने की योजना शुरू की। 15 तारीख को शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के रियलिटी चेक में हमें ज्यादातर कॉलेजों में बेहद कम शिक्षक मिले। इसके अलावा इन कॉलेजों में न लाइब्रेरी मिली और न ही स्थायी भवन।
0: सभी में हम लोगों ने प्रिंसिपल दे दिया है, एक एक बर्सर के रूप में टीचर दे दिया गया है ताकि वो टीचिंग भी करें और प्रिंसिपल भी टीचिंग, इवन कल भी कहीं कहीं जगह क्लास हुआ है। साथ ही साथ अभी तत्काल यहाँ से हम लोग बीच बीच में टीचर भेजेंगे और उन्हीं को कहेंगे कि भाई घूम घूम के थोड़ा सा हर जगह पढ़ा लीजिए। लाइब्रेरी के लिए अभी बुक नहीं है, वो भी बहुत जल्द ही हो सकता है कि प्रोवाइड कर दिया जाए।
1: बिहार में ये उन 211 डिग्री कॉलेज का हाल है जो 15 जुलाई से आनन फानन में शुरू तो कर दिए गए, लेकिन न तो कॉलेज की इमारत का पता है न टीचर का। फिर भी छात्रों को अपने जिले और आसपास ही उच्च शिक्षा दिलाने का सरकारी अभियान ढोल बजाकर शुरू कर दिया गया, क्योंकि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की महत्वाकांक्षी योजना जो ठहरी। आज तक संवाददाता रोहित सिंह इसी योजना की हकीकत जानने के लिए मुजफ्फरपुर के बोचहा में बनाए गए इस डिग्री कॉलेज में पहुंचते हैं जो एक मिडिल स्कूल में बना दिया गया है।
2: यहीं पर जो है इसके कैंपस में दरअसल एक दूसरे हिस्से में जहां पर बच्चों की पढ़ाई होती थी, पहले से आठवीं के बच्चे जहां पढ़ाई किया करते थे, जहां क्लासेस चला करती थी, उसी में से बताया जा रहा है कि 6 कमरे जो है वो डिग्री कॉलेज के लिए जो है वो लिया गया है और यहां जो बच्चे पढ़ा करते थे स्कूल के उनको बाकी के हिस्से में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि एडजस्ट किया गया है।
1: समस्या सिर्फ अपनी बिल्डिंग की नहीं, सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की है। इस डिग्री कॉलेज में हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र की पढ़ाई होनी। 21 छात्र दाखिला भी ले चुके हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए फिलहाल सिर्फ एक हिंदी की टीचर है जो हमें यहाँ गैर हाजिर मिलती है।
3: तो शिक्षक है, उन लोगों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है?
5: अभी तो नहीं है, पर आ जाएंगे।
6: अभी एक ही है हिंदी की जो मैम, वो अभी आज नहीं आई है।
2: लाइब्रेरी की कोई सुविधा है यहाँ पर?
6: अभी लाइब्रेरी का भी सुविधा नहीं, अभी तो नया ना कॉलेज खुला, तो आगे चल के ना होगा।
1: तो मुजफ्फरपुर के इस डिग्री कॉलेज में न टीचर और न ही लाइब्रेरी, इस तरह छात्रों का और भविष्य क्या यहाँ बर्बाद नहीं हो रहा? जबकि पूरे बिहार में ऐसे डिग्री कॉलेज में 15 तारीख तक 1,35,000 छात्र दाखिले के लिए आवेदन कर चुके हैं।
2: अधिकतर कॉलेज का अपना भवन नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है और साथ ही साथ कॉलेजेस का संचालन प्रतिनियुक्ति के बदौलत किया जा रहा है।
1: सिवान के इस डिग्री कॉलेज का हाल भी हमें अलग नहीं मिला, जो एक हाई स्कूल में चल रहा है। 12 की जगह 2 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं।
7: 63 हुए।
9: 63 हो चुके
7: हैं।
9: तो टीचर कितने हैं 63 बच्चों के?
7: 2 हम लोग हैं, एक प्रचार के पद पर हूँ मैं, हिंदी का शिक्षक हूँ, और बर्सर के पद पर हैं वो राजनीति विज्ञान के शिक्षक हैं। आपके सामने देखा कि इतिहास के विद्यार्थी आए हुए थे, तो हम लोगों ने अभी अपने जो अतिरिक्त ज्ञान है उसके आधार पर हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा है। कभी कभी बच्चे आते हैं तो हम लोग को अपराध बोध होने लगता है कि प्रचार के पद पर हूँ और बच्चों को संसाधन पढ़ने आए हैं तो शिक्षक नहीं है, तो कहने में शर्म लगती है कि लेकिन आशा दिलाता हूँ कि अगस्त तक आप लोग इंतजार करें, अगस्त तक शिक्षक आ जाएंगे।
1: इस डिग्री कॉलेज के टीचर से ज्यादा यहाँ पढ़ने वाले छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जो पूछते हैं कि जब तैयारी नहीं थी तो कॉलेज ही क्यों शुरू किया गया?
27: चलो नहीं है
9: टीचर, नहीं है नहीं। कितने टीचर है पता किए हैं?
27: अभी तो फिलहाल 3-4 2 से 3-4 है।
9: 2-3-4 है तो 2-3-4 करके पढ़ाई पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आपको लग रहा है?
27: मुझे तो यही बात है कि नहीं लग रहा है।
9: हिस्ट्री के टीचर भी नहीं है? तो कॉलेज तो खुलवाएंगे कि आप लोग पढ़ेंगे तो क्या सुविधा होगा यहाँ पे, क्या मिल रहा है या नहीं है?
5: नहीं मिल रहा है कभी भी,
9: कुछ नहीं,
5: नहीं 2-3 दिन से आया कोई भी सुविधा नहीं है।
1: तो बिहार में नेता और अफसर स्कूल में नए डिग्री कॉलेज का फीता काट कर फोटो खिंचा कर तो चले गए और अपने पीछे छोड़ गए सारण जैसे डिग्री कॉलेज जहाँ पढ़ाने के लिए 2 टीचर हैं और 88 छात्र हैं।
28: हमारे पास अभी संसाधन की कमी है, संसाधन जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट लिस्ट में हमें कुल 122 विद्यार्थियों की सूची मिली जिनका नामांकन होना था, 122 के विरुद्ध कुल 88 नामांकन हुए। पीछे साइड में बाथरूम विद्यार्थियों के लिए जो बन रहा है टॉयलेट वो निर्माणाधीन है, बरसात के चलते बीच बीच में बाधाएं भी आईं, तो वो निर्माणाधीन है, अब वो जब मिल जाए। कुल 288 सीट 6 विषयों में, कुल हर विषय में 48 सीट निर्धारित की गई।
1: आज तक की टीम ने गोपालगंज और पूर्णिया में भी ऐसे ही डिग्री कॉलेज का रियलिटी चेक किया, लेकिन वहाँ भी बनाए गए नए कॉलेज में न तो स्थायी भवन है, न पर्याप्त शिक्षक और न ही पढ़ाई के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध है। पूर्णिया के डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी है लेकिन किताबें नहीं। अब इन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र पूछते हैं कि जब बिल्डिंग और टीचर तक का इंतजाम सरकार कर नहीं पाई तो फिर उसने ये कॉलेज क्यों शुरू किए। ये सवाल हमने बिहार के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर से पूछा है।
10: उसको चिन्हित किया गया है और उसको भी कैसे पूरा किया जाए वो प्रयास हो रहा है और बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसका विज्ञापन भी आ चुका है।
2: एक जरूर बात आ रही है कि फिर इतनी जल्दबाजी में क्यों फिर कॉलेज वॉलेज खोल दिया गया, अभी शिक्षकों की बहाली पूरी हुई नहीं है?
10: ये जल्दबाजी में नहीं, ये पहले से घोषित था कि जुलाई में हम शुरू करेंगे, सत्र प्रारंभ हो जाएगा, तो जुलाई में हमने शुरू किया। अब जुलाई में कहा था नहीं करते, फिर सवाल खड़ा होता।
1: तो जिम्मेदार मंत्री भी मानते हैं कि उनकी इस योजना में अभी खामियां हैं, लेकिन मंत्री जी को समझना होगा कि सिर्फ 211 नए डिग्री कॉलेज खोल के उद्घाटन करने भर से मुख्यमंत्री की योजना जनता के लिए सफल नहीं होगी। उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षकों की बहाली, तय नियम के मुताबिक बुनियादी साधन छात्रों को देने होंगे, क्योंकि प्रतिनियुक्ति के सहारे उच्च शिक्षा का सपना साकार नहीं हो सकता। मुजफ्फरपुर से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।
11: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
12: Drive home a new 26 Volkswagen Tiguan S front-wheel drive, $229 for 36 months with $3,999 to its signing.
11: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
12: Offer ends 8/31/26. See dealer for details.
13: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
14: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
15: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय जी लोगों को संबोधित करेंगे। मेरा आदरणीय नड्डा जी से आग्रह है कि अपना संबोधन प्रारंभ करें।
1: मित्रों, ये जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, जिस विषय पर उन्होंने मुद्दे उठाए हैं पेपर लीक का, सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि हमें इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और इसमें से राजनीतिक लाभ लेना उचित नहीं है। यह एक गहन समस्या है और इस समस्या का गहनता के साथ चर्चा होने की आवश्यकता रहती है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, भारत की संसद में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतिकरण दिया और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो सरसरी तौर पर मुझे ध्यान में आया है, जो मैंने पेन डाउन किया है, वो आपके साथ मैं जरूर चर्चा करूंगा। अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ, जहां पर कांग्रेस और एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, उसमें पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है। उसी तरीके से झारखंड में JAC में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए, झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तेलंगाना में वहां पर इंटरमीडिएट के लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ और वहां पर भी हमको मालूम है कि कांग्रेस और CPI की सपोर्टेड सरकार है। तेलंगाना में SSC ने लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ और वहां भी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और CPI की सपोर्टेड सरकार है। तमिलनाडु में BEd के कोर्स पेपर में, वहां पर जो जिसे हम कहते हैं तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी बोर्ड, वहां भी पेपर लीक हुआ, वहां भी उस समय विपक्ष की सरकार थी। वेस्ट बंगाल में पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक हुआ, वहां उस समय TMC की सरकार थी। पंजाब में पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसमें ग्रुप बी के एग्जामिनेशन में, इसमें भी पेपर लीक हुआ और मैल प्रैक्टिसेस भी हुए हैं। उसी तरीके से केरला में स्टेट में PSC के 26 एग्जाम पेपर में इरेगुलरिटीज हुई हैं। कर्नाटक में, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां भी प्रेपरेटरी बोर्ड एग्जाम में पेपर लीक हुआ, PUC के पेपर में लीक हुआ। तो इस तरीके से मेरे को तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं अभी, ये इसकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है जिसके बारे में हम चर्चा चाहेंगे कि जब चर्चा हो। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? व्हाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने UPA की और UPA के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, आपका उद्देश्य एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इस मोड़ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यह समय यह नहीं है कि हमारी सरकारें, आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीजों को विभाजित करें। यह गंभीर मसला है और जैसा मैंने आपके सामने कुछ नाम गिनाए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें यूपीए की सरकारें इन्वॉल्व हैं जहां पेपर लीक हुआ है। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा हो, गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू फॉर पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। हमने किस तरीके से, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है, और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय ना हो। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है, और बहुत गंभीरता से हमने इन विषयों को लिया है, और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है जहां हम गहराई से इसके चिंतन कर सकते हैं। ड्यूरेशन विपक्ष तय करे और उसमें हरेक एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा हो, और हम कोई ठोस नीति लेकर के आए, क्योंकि बच्चे कोई हमारे हैं, आपके हैं, वो देश की के भविष्य हैं, और देश के भविष्य के की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है, और हमारी जिम्मेवारी में सरकार के साथ साथ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है, इसलिए विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए और हम सब साथ मिलकर इसका समाधान करें और कोई स्थायी समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज मेरी तरफ से इतना ही कहना है। मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जिम्मेवार सरकार, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये हमेशा आतुर है कि सभी बातों की संसद में चर्चा होनी चाहिए, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
0: एक मिनट, दो तीन सवाल ले पाएंगे, ज्यादा सवाल ले नहीं पाएंगे हम लोग। आमोद राय
2: सर, इसमें आपने सीजेपी के कुछ नेताओं से मुलाकात की थी, और ये कहा गया था कि वार्ता बहुत सफल रही, तो वार्ता किस असर में करी, क्या आपकी कोई बातचीत हुई है, आगे क्या इस पर हो सकता है, क्या आपको लगा?
1: वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, उनकी बातें हमने बहुत शांति से सुनी, उनको मैंने ये भी कहा कि आप लिख करके देंगे तो अच्छा रहेगा, उन्होंने वो सारी बातें लिखी है, मैंने कहा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया और मैंने उनको कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप जब कहेंगे हम चर्चा के लिए अग्रसर हैं।
0: नीरज पांडे, कोई बात नहीं पूछ रहे, नीरज पांडे
1: आज कोई चर्चा नहीं है।
2: आज
1: नहीं, हम तो उनका हालचाल पूछने गए, उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से, हम वो मेदांता में पहुंचे, तो एक तो वो आईसीयू में थे तो वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है, लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की, और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाएं, हमारा सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है मुझे, ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे, हम उस पर जवाब देंगे और जवाब दे करके वार्ता आगे बढ़े इसकी हम चिंता करें।
0: जतिन ठक्कर, आपने शुरू किया था, ये आपने शुरू किया,
2: पुलिस कार्रवाई उस पर आता
1: उसकी गहन चर्चा होगी ना, पार्लियामेंट में चर्चा होगी, डिटेल में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जब हमने कह दिया एवरीथिंग रिलेटेड टू पेपर लीक वी आर रेडी टू डिस्कस ऑन द फोरम ऑफ द पार्लियामेंट, विल डिस्कस।
0: चलिए
1: हम एक एक सवाल कीजिए। नहीं, इस तरीके से नहीं होते, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, वो पार्लियामेंट में होगी, वो अपनी बातों को रखे, सरकार जवाब देगी।
0: शर्मा जी पूछो लास्ट सवाल आप, जल्दी पूछो।
1: मैं पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे ना,
2: जो इश्यू जो सोनम मांग चुके हैं, जो अपने पत्र में आपके एड्रेस किए हैं, क्या मुद्दों का सरकार के पास समाधान है?
1: वी विल रिस्पॉन्ड, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, उन्होंने लिख करके दिया, हम रिस्पॉन्ड करेंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों
1: का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को, जिन्होंने कहा कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम एक रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और बीजेपी की तरफ से बोलते हुए मंत्री केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यह कहा है कि विपक्ष गैर जिम्मेदाराना तरीके से मामले को पॉलिटिकल बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आने वाले वक्त में विपक्ष तैयार हो जाए तो संसद में इस पर चर्चा होगी और जो भी एक्शन लेना है उस पर पूरी बात देश की संसद में ही होगी। मेरे हाथ में वो ओपन लेटर है जो सोनम वांगचुक जी ने लिखा है श्री जेपी नड्डा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, क्योंकि ये दोनों ही उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। तो इस खत की शुरुआत में ही जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को ये लिखते हैं सोनम वांगचुक जी कि हम आप हमसे मिलने आए, उसके लिए हम आपके आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो मांगे उन्होंने रखी है इन सब के बारे में, इस चिट्ठी के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आज सबसे पहले आपको 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के बारे में भी बताएंगे, जिन्होंने सरकार से आश्वासन मिलने पर भूख हड़ताल खत्म करने के संकेत दिए हैं। फिलहाल वो मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां दिन भर गहमा गहमी बनी रही। आज शाम आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता सोनम वांगचुक से मिलने मेदांता पहुंचे, लेकिन पुलिस ने अनुमति न होने के कारण उन्हें रोक दिया। इससे पहले सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अस्पताल जाकर उनसे करीब एक घंटे तक मुलाकात की। सोनम वांगचुक की तरफ से जारी वीडियो संदेश में उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार युवाओं के खिलाफ कार्रवाई ना करने का आश्वासन देती है तो वो अपना अनशन समाप्त कर सकते हैं। आज आपको दिल्ली की सड़कों से आई दो तस्वीरों के बारे में भी बताएंगे, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन का रुख बदल दिया। एक तस्वीर 21 जुलाई की है, जब संसद मार्ग और कनॉट प्लेस के पास भीड़ ने आरएएफ की गाड़ी पर पथराव किया और जवानों के साथ धक्का मुक्की हुई। दूसरी तस्वीर को लेकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारा। आपने देखा होगा हमारे समाज में भी अलग अलग लोग अपनी अपनी राय सोशल मीडिया के जरिए हर प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं, तो इसीलिए आज ये जरूरी है कि दोनों पक्षों की तस्वीर को देखा जाए और हम यही करेंगे। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जबकि सीजेपी का कहना है कि हिंसक घटनाओं में शामिल लोग प्रदर्शनकारी नहीं थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आई जंतर मंतर पर आंदोलन का समर्थन करने के ठीक एक दिन बाद शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंच गए। आज आपको बताएंगे कि क्या सोनम वांगचुक की शर्तें मानकर सरकार इस अनशन को समाप्त कराएगी या दिल्ली की सड़कों पर यह गतिरोध यूं ही बना रहेगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अपना एक नया वीडियो जारी किया है और 25 दिनों से जारी अपनी भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए सरकार के सामने उन्होंने एक बड़ी शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि वो इसी शर्त पर अपने अनशन को खत्म करेंगे जब सरकार उन्हें यह आश्वासन दे कि वो प्रदर्शनकारी छात्रों पर ताकत और बल का इस्तेमाल नहीं करेगी और 20 और 21 जुलाई को हुए उपद्रव के मामलों में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई या बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो पहले उनका ये वीडियो संदेश सुनिए।
1: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
0: तो याद रखिए, सोनम वांगचुक अब भी अपना अनशन जारी रखे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ संकेत इस वीडियो के जरिए जरूर दिए हैं। एक ओपन लेटर भी उन्होंने लिखी है और उसमें ये साफ लिखा है कि एक तो जो परिवारों को क्षति पहुंची है उनको मुआवजा मिले, दूसरा कोई भी बल और ताकत का प्रयोग प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ ना किया जाए, वहीं तीसरी तरफ वो इस पूरी व्यवस्था में देश की संसद में चर्चा हो कि क्या किया जाएगा, ये शर्त भी रख रहे हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये कहा है कि सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने जो बात रखी उसका जल्द जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर हैं और सरकार इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार है।
2: तो उनका हालचाल पूछने गए, उनका वो उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से हम वो मेदांता में पहुंचे, तो एक तो वो आईसीयू में थे तो वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है, लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाए, हमारे सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है मुझे, ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे और जवाब देकर के वार्ता आगे बढ़े इसकी हम चिंता करें। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इस मोड़ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यह समय यह नहीं है कि हम हमारी सरकारें, आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीजों को विभाजित करें। यह गंभीर मसला है और जैसा मैंने आपके सामने कुछ नाम गिनाए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें यूपीए की सरकारें इन्वॉल्व हैं जहां पेपर लीक हुआ है, लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय न हो। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है।
0: और इससे पहले आज सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मेदांता हॉस्पिटल जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी और हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा के मुताबिक ये मुलाकात करीब एक घंटे चली, जिसके बाद सोनम वांगचुक की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई और इसमें जो बातें लिखी हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। और यहां आपको ये भी देखना होगा कि क्यों सरकार के लिए सोनम वांगचुक के साथ बातचीत का रास्ता खोलना जरूरी है। तो इस चिट्ठी में सोनम वांगचुक ने क्या क्या लिखा है, सबसे पहले ये चिट्ठी आपको दिखा देते हैं जो ओपन लेटर उनका है। उन्होंने सीधे इस लेटर को एड्रेस किया है न सिर्फ जेपी नड्डा को, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ये चिट्ठी एड्रेस किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। दोनों मंत्री उनसे मिलने गए थे और नीचे उनका हस्ताक्षर है और जो बड़ी मांगे वो रख रहे हैं वो आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग रात में हॉस्पिटल मिलने आए, आपने जो अपील की है कि मैं अपना अनशन तोड़ूं उसके लिए मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन हमारे डिस्कशन के दौरान आपने मुझे ये आश्वासन दिया है कि आप दो बातों को पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे, यानी आप सकारात्मक रूप से इन दो बातों पर ध्यान देंगे, सबसे पहले जो जरूरी हो ऐसा कॉम्पनसेशन दिया जाए, यानी मुआवजे की बात वो कर रहे हैं ऐसे परिवारों को, ऐसे जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है, इनमें आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देना, नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा करना, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार करने की मांग शामिल है। तो ये पूरी उनकी चिट्ठी है। फिर उन्होंने चलो संसद, ये जो पूरा मार्च हुआ है इसी चिट्ठी में ये भी लिखा है कि सोनम वांगचुक इसी शर्त पर अपने अनशन को समाप्त कर सकते हैं जब

0: कारियों की धीरे धीरे वहां पर भीड़ बढ़ने लगी और एक बहुत बड़े हिस्से ने सोशल मीडिया के जरिए सोनम वांगचुक के समर्थन में वीडियोस बनाए और इस सब का असर हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। सोनम वांगचुक अपने अनशन के साथ इस आंदोलन को खत्म करने का आग्रह कर देते हैं तो ये विरोध प्रदर्शन खत्म होने का भी आसार बन सकता है, क्योंकि उनकी बात पर लोग भरोसा कर रहे हैं, खास तौर पर जो प्रदर्शनकारी या फिर जो समर्थक हैं इस आंदोलन के। इसके अलावा आज शाम को आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के 5 सांसद सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन अनुमति ना होने के कारण पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी और इसके बाद वहां काफी हंगामा हुआ। इन विपक्षी नेताओं ने धरना देने की भी कोशिश की, लेकिन आखिर में इन्हें सोनम वांगचुक से बिना मिले ही वापस गुरुग्राम से दिल्ली लौटना पड़ा। हालांकि दावा है कि इन विपक्षी सांसदों ने अपनी चिट्ठी सोनम वांगचुक की पत्नी को, जो कि उनसे मिलने बाहर आई, उनको सौंप दी और ये वही चिट्ठी है जिस पर विपक्ष के कुल 55 सांसदों ने हस्ताक्षर करके ये अपील की थी कि सोनम वांगचुक को अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन ये चिट्ठी अभी सोनम वांगचुक तक क्या पहुंच पाई है, देखिए।
1: सुनो, आप एमपी हो गए, खा भी नहीं होंगे। हाँ, मैं भी एमपी हूँ। पता है क्या नतीजा होगा इसका? पता है नहीं पता है?
2: My humble request is you please talk to the MS. MS ने कहा है कि प्रायोरिटी क्या मेडिकल है, मेडिकल वाइज को कैसे निकल चाहिए। हाँ, जितने चलते हैं बिल्कुल कैसे अभी तो आप अपना प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं, लेकिन अपना आमरण अनशन समाप्त कर लें, क्योंकि उनका जीवन इस देश के लिए, युवाओं के लिए, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
3: अरे भाई, आप
2: क्या देना क्या नहीं, अभी आप लोगों को परमिशन
3: किस बात की परमिशन?
4: एक बार आप होल्ड
3: कीजिए, वी डोंट गो बैक।
5: पचपन एमपीज ने साइन किया है, 55 सांसदों ने साइन किया है ये पत्र, और ये साइन करके हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को?
0: और अब इन दो तस्वीरों की बात करना चाहते हैं, जिनमें पहली तस्वीर 21 जुलाई यानी कल रात की है। आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर हमला किया और सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर पत्थर फेंके। यह घटना 20 जुलाई की हिंसा से अलग है और दिल्ली पुलिस का यह आरोप है उसने इस हिंसा के खिलाफ भी एक नई एफआईआर दर्ज की है। दूसरी तस्वीर 20 जुलाई की है, जब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने संसद तक मार्च निकालने की कोशिश की थी और पार्टी का आरोप है कि उस दिन कई छात्रों के साथ पुलिस ने मारपीट की। और आरोप के साथ साथ तस्वीरें भी है, तस्वीरें भी हर कोई देख रहा है। इनमें भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला प्रदर्शनकारी को बिना किसी कारण के थप्पड़ मारा। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने इसका एक वीडियो भी जारी किया जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं और अब यह मामला इन दो तस्वीरों में बटा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जंतर मंतर या उसके आसपास के इलाकों में पहुंच रहे हैं वो पुलिस पर हमले कर रहे हैं, उनकी तरफ से हिंसा की जा रही है, जबकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मारपीट और हिंसा दिल्ली पुलिस की तरफ से हो रही है और जो छात्र अपनी वाजिब मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना भी चाहते हैं उन्हें पुलिस की तरफ से जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यहां सबसे अहम यह है कि जो उपद्रव 20 जुलाई को थमता हुआ दिख रहा था वो दिल्ली पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई यानी कल रात को भी जारी रहा। क्या हुआ? आज सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि कल रात को दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स पर हमला क्यों हुआ और क्या हमला करने वाले लोगों को बिना जांच के प्रदर्शनकारी मान लेना सही होगा, क्योंकि यहां पर मामला समझिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन कहां चल रहा है, जंतर मंतर पर। हिंसा और उपद्रव की घटनाएं कहां हो रही हैं? दूसरे इलाके में। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी शुरुआत कल शाम 6 बजे से हुई। पुलिस का कहना है कि संसद मार्ग और कनॉट प्लेस में शाम से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। शुरुआत में पुलिस ने यही माना कि ये लोग कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस का आरोप है कि धीरे धीरे ये भीड़ संसद मार्ग से संवेदनशील इलाकों, खासकर संसद भवन की तरफ बढ़ने लगी।

0: आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिनकी उस वक्त पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा गया कि भीड़ संसद मार्ग के इलाके से पीछे हट जाए, लेकिन ये भीड़ ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई। हमारे पास उस वक्त का एक वीडियो है जिससे आप इस पूरी स्थिति को समझ पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने जब तक उपद्रव करने वाले इन लोगों को प्रदर्शनकारी अभी तक नहीं माना है। पुलिस यही कह रही है कि वो इन लोगों की जांच करेगी कि आखिर ये कौन थे और कहां से आए थे। इसका एक कारण ये भी है कि कल कॉकरोच जनता पार्टी ने इस तरह के किसी विरोध प्रदर्शन का कोई ऐलान किया नहीं था, लेकिन फिर भी जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन से अलग संसद मार्ग और कनॉट प्लेस के इलाकों में लगातार भीड़ बढ़ रही थी। इनमें भी कई लोगों को ये कहते हुए सुना गया कि 20 जुलाई को पुलिस ने उन्हें पीटा था, अब इन लोगों की बारी है। इन्हीं नारों के बीच जब रैपिड एक्शन फोर्स की एक गाड़ी खाना और दूसरा सामान लेकर वहां से गुजर रही थी, तब सबसे पहला हमला आरोपों के मुताबिक उसी पर हुआ। इसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान इस गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे, उन्हें भीड़ ने घेर कर जमीन पर गिरा दिया। और हम आपको इस वक्त जितनी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं उनकी पुष्टि हो चुकी है, आप खुद देख सकते हैं कि कल रात क्या हुआ है। एक बार फिर ये बात कहनी जरूरी है कि ना पुलिस ने ना किसी ने यह दावा किया है कि वही प्रदर्शनकारी हैं जो अपना आंदोलन जंतर मंतर पर कर रहे हैं, और अभी भी इनकी पहचान होनी जरूरी है कि आखिर ये लोग अचानक से जो यहां पर आए और जिन्होंने हमला किया वो कौन से लोग थे। रैपिड एक्शन फोर्स के जिन जवानों पर यह हमला हुआ वो फोर्स केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और इस पर हुए हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक नई FIR अब दर्ज की है। यहां हम आपको ये बात भी याद दिलाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये उपद्रव हमला किया उन्हें प्रदर्शनकारी छात्र मानना बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर आप देखें तो ये छात्र नीट के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जंतर मंतर पर बैठे हैं, जबकि ये घटनाएं कनॉट प्लेस, संसद मार्ग, इनके आसपास हुई है। अभी पुलिस जांच कर रही है और मुमकिन है कि पहचान हो जाए। आप कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी सुन सकते हैं, जिन्होंने कल रात खुद बताया कि जो लोग जंतर मंतर के बाहर जाकर उपद्रव कर रहे हैं उनका इस विरोध प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए।
1: हेलो एवरीवन, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहा है, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ अगर आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना है तो जंतर मंतर आइए। यहाँ पर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और हम कहीं से भी कोई गलत चीज या गलत नारे नहीं करेंगे, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं और इसका उदाहरण कल हमने दे दिया है। कल हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया हमारे सपोर्टर्स ने, लेकिन कहीं से भी अपने तरफ से कोई गलत हरकत नहीं करी है, और जो लोग ऐसी हरकत करेंगे वो कभी भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। हमारा और उनका कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर से भेजे गए गुंडे हैं इस मूवमेंट को डीरेल करने के। थैंक यू।
0: अभिजीत दीपके के इस बयान से ये स्पष्ट है कि कॉकरोच जनता पार्टी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर हमला करने वाले लोगों को प्रदर्शनकारी छात्र नहीं मान रही है, और खुद पुलिस ने भी ऐसा नहीं कहा है। कई हिंसक घटनाओं में ऐसा हुआ है जब बाहरी लोगों ने शामिल होकर शांति को भंग करने की कोशिश की है। अभी इंतजार करना होगा। और यहां भी अगर आप इस आंदोलन को देखेंगे तो इसमें कल जो हमले हुए उनमें लगातार पुलिसकर्मियों जवानों के शुरू हो गया है। देखिए
2: तो भाई, कल पुलिस वालों ने हम पे लाठी चार्ज की, आज हम पुलिस वाले को चार्ज कर रहे हैं, और ये देखो पुलिस वाले सब वैन में बैठ बैठ के भाग रहे हैं यहां से, और कई वैन यहां से भगा दिए मार मार के सबने। तो स्थिति का मैं दिखा रहा हूं आपको, भाई नेपाल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है।
3: सब भागे पुलिस वाले भागे।
2: भाई ये सिटी में देख सकते हो आप लोग किस तरीके से किया जा रहा है, पूरी पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में।
3: भाई मैं हूँ अभी सीपी में और यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक लोग ने पुलिस वाले को मार मार के भगा दिया यहाँ से मार मार के। गाइस
2: ये देखो भाई ये देखो पूरा रोड जाम कर दिया गया बैरिकेड से, यहाँ पे पूरा बैरिकेड से घेरे हुआ था एंड अभी यहाँ पे सब देख सकते हो कैसे किस तरीके से जाम कर रहे हैं, पूरा गेट बैरिकेड हटा रहे यहाँ से। वो देखो गाइस इधर दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है मारने के लिए, यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी।
0: बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी है कि जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स को क्यों तैनात किया गया और ये रैपिड एक्शन फोर्स होती क्या है। रैपिड एक्शन फोर्स दिल्ली पुलिस की नहीं बल्कि सीआरपीएफ की एक विशेष टुकड़ी है। सीआरपीएफ का मतलब है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल। इसकी जो स्थापना अक्टूबर 1992 में हुई थी और इस फोर्स का काम है दंगे हो सांप्रदायिक हिंसा हो उसको रोकना, वहीं पर इनकी तैनाती होती है। बड़े विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी होती है। इसे जीरो रिस्पॉन्स फोर्स भी कहा जाता है क्योंकि इसे किसी भी संकट की स्थिति में बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है, तो बहुत कम टाइम में उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। अभी इस फोर्स में कुल 15 बटालियन हैं, इनका नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल स्तर के अधिकारी करते हैं और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अब तक दिल्ली में जब भी कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है, 2020 में जब दिल्ली के दंगे हुए, जब जब आतंकी हमलों का अलर्ट आया इसी फोर्स को हमेशा सड़कों पर पुलिस के साथ उतारा गया। और ये रैपिड एक्शन फोर्स तीन प्रमुख हिस्सों में बटी होती है। इनमें पहला है रायट कंट्रोल यानी भीड़ और दंगों को नियंत्रित करना, दूसरा है टियर स्मोक एलिमेंट यानी आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल कर हिंसक भीड़ को तितर बितर करना, और तीसरा है फायर एलिमेंट यानी आगजनी जैसी घटनाओं से तुरंत निपटना और उन्हें काबू करना। अब तक रैपिड एक्शन फोर्स का लगभग सभी सरकारों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी इस फोर्स की तैनाती को लेकर कई सवाल उठा रही है। प्रदर्शनकारी भी इस पर नाराजगी जता रहे हैं। अभिजीत तिपके ने रैपिड एक्शन फोर्स का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला है जिसमें कुछ जवान 19 जुलाई को टियर गैस की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए
4: तैयारी चल रही है।
0: कॉकरोच जनता पार्टी दो और गंभीर आरोप लगा रही है। पहला आरोप यह है कि जिन प्रदर्शनकारियों का दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज हुआ उनके बारे में अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि अस्पताल पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी संख्या को आखिर क्यों छिपाना चाहता है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक और आरोप है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने 20 जुलाई के प्रदर्शन में एक महिला को बिना किसी कारण के थप्पड़ मारा था और प्रदर्शनकारियों ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अब तक दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि इस उपद्रव में एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा खुद पथराव में घायल हुए, लेकिन अब इस वीडियो के आधार पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की थी।
5: आपको कोशिश कर रहे थे कि बैरिकेड को और पुलिस के जो को छोड़ कर रहे थे, तो वो जा नहीं पा रहे थे, पीछे से पथरा हुआ और उनमें से एक पेट तो बड़ा था साइज में था और फिर खुला था और कीचड़ का भरा हुआ था, वो मुझे घुटने में लगा और घुसने में लगने से कुछ पैंट भी फट के कुछ हिस्से में घुसने में पूरे पैर में और काफी काफी चोट और क्रैक आया।
0: इस बीच एक बार फिर से दिल्ली में खबर आ रही है, लगभग 9:24 हो रहे हैं और एक बार फिर से प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। दिल्ली में पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प की खबर आ रही है, तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली के टॉलस्टॉय मार्ग में ये हिंसक झड़प की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर आरएएफ और दिल्ली पुलिस लगातार स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिशें कर रही है और एक बार फिर से ऐसा प्रतीत होता है कि लाठीचार्ज की नौबत आ चुकी है। ये देखिए अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये तस्वीरें एक बार फिर से बहुत भयावह स्थिति दिखा रही है।
4: बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, तकरीबन 8:30 के आसपास की तस्वीरें हैं अंजना, जो संसद मार्ग से जंतर मंतर के आसपास का इलाका, वहां पर जो ड्यूटी पर तैनात आरएएफ और पुलिस टीम है, क्योंकि जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर है तो दूसरी साइड पर जो ड्यूटी है ड्यूटी पर तैनात थे, उसी दौरान पुलिस की तरफ से आरोप है कि कुछ प्रोटेस्टर ने पथराव किया, जिसके बाद जब आरएएफ और पुलिस की टीम एक्टिव हुई तो उसके बाद जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, जो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है और कुछ के हाथ में डंडे भी थे, जिसके बाद स्कफल हुआ आरएएफ की टीम की तरफ से और जो प्रोटेस्टर है उनकी तरफ से। तस्वीरें सबके सामने हैं, उसको हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं अंजना। जिसके बाद आरएएफ की टीम ने 1 से 2 आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद फिर समझाया बुझाया गया और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। फिलहाल शांति है, लेकिन तस्वीरें वो आप सामने देख पा रही हैं। और कल देर शाम भी कमोबेश इसी तरह की तस्वीर आई थी, जब आरएएफ की एक टीम पर एक गाड़ी पर अटैक कर दिया गया था और उसके बाद फिर आरएएफ के एक जवान को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था, जिसका वीडियो सामने आया था। बुरी तरह से वो आरएएफ का जवान जख्मी है, जिसके बाद कल एफआईआर दर्ज हुई थी और आज ठीक उसी वक्त पर जो भीड़ है उस भीड़ में से कुछ लोग जंतर मंतर से आगे जो जो चौराहा है वहां पर आ गए और पत्थरबाजी जब शुरू की, उसके बाद आरएएफ की टीम एक्शन में आई और पत्थरबाजी आप सामने से देख पा रहे हैं, एकदम नजदीक का मामला है। आरएएफ की टीम प्रोटेस्टर आमने सामने की भिड़न जैसी स्थिति है, उसके बाद पत्थरबाजी हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई, बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए, जिसके बाद आरएएफ की टीम एक्टिव हुई, हल्का बल प्रयोग किया गया, 1-2 टीयर गैस की सेल छोड़ी गई और उसके बाद भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। अंजना
0: धन्यवाद आपका। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में पुलिस प्रदर्शनकारियों में एक बार फिर से झड़प की तस्वीरें आ रही हैं और ये टॉलस्टॉय मार्ग की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे हैं एक तरफ से लाठी और हवा में पत्थर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल है कि ये स्थिति जो है काफी उग्र और हिंसक इस वक्त दिखाई दे रही है, तो आगे बढ़ते हैं और आपको अगली खबर दिखाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि एक और खबर जो बीते दिन से काफी चर्चा हुई, पार्थ गोयल नाम के यूट्यूबर की, तो ये पूरा जो मामला है यूट्यूबर पार्थ गोयल का है, उनके आरोप भी शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस के जवान 20 जुलाई की घटना में लाठियों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने नया वीडियो जारी करके ये बताया है कि इस यूट्यूबर ने पहले उन पर पेपर स्प्रे छिड़का और बाद में ये कार्रवाई हुई। दोनों का अपना अपना पक्ष है, देखिए।
6: विजय जी, ये क्या हुआ, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें
7: ऐसा था अरविंद जी की क्या हुआ था, मैं टिकट पे था जो पटेल चौक से संसद मार्ग है ना, तो उसपे स्टाफ जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, मेरी पोस्टिंग आज दुबई में है तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ था, तकरीबन 12:30 जो है तो वहाँ पहले टिकट थी हमारी, काफी देर तो उनको रोकते रहे फिर पीछे से कुछ लोग और आ गए तो उसके बाद इन्होंने भी धक्का मुक्की शुरू कर दी, बैरिकेड गिरा दिए, हमारी लेडी कांस्टेबल और एक एएसआई को भी चोट लगी उसमें। तो एक जब मैं उधर से पीछे से थोड़ा सा आगे आके उनको समझा रहा हूँ, बैरिकेड गिरा रहे थे वो आगे पीछे गिराने के लिए, तो मैं उनको समझाया भाई आप डंडे से इशारा करके, मैंने कहा आप पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो, इस तरह कर रहा था, ऑल ऑफ सडन एक तरह फेंका, फिर जो ही मैं पहुंचा हूं तो स्पेशली मुझे टारगेट करके इस तरह फेंका, वो लकीली थोड़ा सा गर्दन पे रह गया, गर्दन पे ना जलन हुई काफी देर, चेहरे पे जलन हुई, लकीली आंखें बच गई उसकी मेरी, अदरवाइज ज्यादा नुकसान हो जाता। तो आंखें बच गई तो फिर काफी देर जलन होती रही, फिर कुछ लड़कों ने उसको जो है उठा लिया था वहां।
0: इधर दिल्ली पुलिस ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें 20 जुलाई के उपद्रव में भीड़ ने एक पुलिसकर्मी पर हमला किया था। इक्कीस जुलाई को हुए उपद्रव के बाद दिल्ली पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है। आज सुबह दिल्ली मेट्रो ने यह बताया कि उसने जंतर मंतर के आसपास अपने सभी 16 स्टेशन को बंद कर दिया था। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो ये सारे मेट्रो स्टेशन जंतर मंतर के 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में है। इनमें भी लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, इंडिया गेट और आईटीओ का मेट्रो स्टेशन प्रमुख है। दिल्ली मेट्रो ने अब तक ये नहीं बताया था कि उसने इन मेट्रो स्टेशन को क्यों बंद किया, लेकिन इसके पीछे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हुए उपद्रव को बड़ी वजह माना जा रहा था। कुछ लोगों ने मेट्रो स्टेशन के बाहर जमा होकर इसके खिलाफ नाराजगी भी आज जताई और इसी के बाद आज शाम को ये सभी मेट्रो स्टेशन वापस खोल दिए गए। और इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी ने यह दावा भी किया कि 20 और 21 जुलाई के मुकाबले आज जंतर मंतर पर ज्यादा भीड़ थी। देखिए इस भीड़ को देखते हुए पश्चिम बंगाल में तैनात सीआरपीएफ की अतिरिक्त 20 टुकड़ियों को दिल्ली भेजा जा रहा है और ये सुरक्षा कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और संसद के मानसून सत्र को लेकर बढ़ाई जा रही है। इस सबके बीच कॉकरोच जनता पार्टी ये दावा भी कर रही है कि केंद्र सरकार ने आज बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा था जिसे उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि अब उनकी पार्टी अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत तभी करेगी जब सरकार खुद जंतर मंतर पर आएगी और इस बातचीत के लिए गंभीर होगी। सुनिए,
8: आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया, उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे, जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को, अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं।
0: अब इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर सरकार को क्यों बुलाना चाहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि 20 जुलाई को ही बातचीत में सरकार ने उनके नेताओं का जानबूझकर समय बर्बाद किया। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है कि 20 जुलाई को सुबह 11:45 पर पहली बार यह सहमति बनी कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने जाएंगे। 12 बजे सौरभ दास, आशुतोष रांका जेपी नड्डा के सरकारी आवास पर पहुंच चुके थे, हालांकि इस दौरान खुद जेपी नड्डा संसद में मौजूद थे। वो दोपहर 12:30 बजे पहली बार संसद से अपने सरकारी आवास के लिए रवाना हुए और दोपहर 2 बजे उनकी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से मुलाकात हुई। ये पहली मुलाकात थी जिसमें दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों नेता अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन लेकर आए नहीं थे। इसके बाद दूसरी मुलाकात 4:15 पर हुई और इस मुलाकात में उन्होंने जेपी नड्डा को बाकायदा एक लिखित ज्ञापन सौंपा और जब ये मुलाकात हो गई तब इसके अगले दिन अभिजीत दीपके ने यह आरोप लगाया कि जेपी नड्डा ने जानबूझकर नेताओं का समय बर्बाद किया और उन्हें बाहर बैठा कर रखा गया ताकि उनके नेता संसद जो मार्च है उसमें शामिल ना हो सके। और इसी वजह से अब अभिजीत दीपके ये शर्त रख रहे हैं कि अगर सरकार को बातचीत करनी है तो सरकार को यानी किसी मंत्री को खुद जंतर मंतर आना होगा। हालांकि सरकार इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है और यह भी औपचारिक रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है कि आज सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा था या नहीं भेजा था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी यह दावा जरूर कर रही है। दूसरी बड़ी खबर शरद पवार को लेकर है और हम चाहेंगे कि इस खबर को भी आप बहुत ध्यान से देखें। आज शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की जिसमें पार्टी सांसद सुप्रिया सुले भी शामिल हुई। यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे कुछ घंटे पहले 21 जुलाई को यही शरद पवार जंतर मंतर पहुंचे थे और वहां उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन किया था और अभिजीत दीपके से मुलाकात की थी। अगर आप इन दोनों तस्वीरों को साथ देखेंगे तो आपके मन में भी यह सवाल आएगा कि क्या शरद पवार कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार दोनों से मिल रहे हैं, तो क्या वो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। आज तक के लिए इस पर स्टोरी लिखने वाले हमारे रिपोर्टर ऋत्विक अरुण भालेकर का यह कहना है कि परिसीमन बिल के मुद्दे पर सरकार के पक्ष में दिखने वाले शरद पवार इस विरोध प्रदर्शन में क्या मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकते हैं, ऐसा हमारे सहयोगी हमारे रिपोर्टर ऋत्विक भालेकर का दावा है। ये बात अहम होगा क्योंकि शरद पवार अब तक विपक्षी खेमा के नेता माने गए हैं, लेकिन अब सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज उनकी शिष्टाचार मुलाकात ने एक नई चर्चा छेड़ दी है। हालांकि इसमें एक बड़ा तर्क यह भी है कि जब जेपी नड्डा लगातार खुद ही कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं तो क्या सरकार को वाकई किसी अन्य मध्यस्थ की जरूरत है, ऐसा प्रतीत बिल्कुल नहीं होता है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 86 साल के शरद पवार संतुलित राजनीति के लिए जाने जाते हैं। जब साल 2017 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी वहां किसान आंदोलन चल रहा था तब विपक्ष में रहते हुए शरद पवार ने पर्दे के पीछे से आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच में कोशिश की थी कि एक बातचीत हो सुलह निकले और माना जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। खैर ये तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन आज हम अपने छात्रों की बात भी करना चाहते हैं, उन लाखों करोड़ों छात्रों की जिन्होंने पेपर लीक की बेईमानी पर एक बड़ा मानसिक आघात झेला है। क्या आप जानते हैं कि पेपर लीक की ये बेईमानी रुकती क्यों नहीं है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ऐसे मामलों में पेपर लीक के ज्यादातर आरोपी जमानत पर बाहर आ जाते हैं और अदालतों में कई सालों के बाद भी इन मामलों पर अंतिम फैसला आ ही नहीं पाता। उदाहरण के लिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि साल 2002 से 2025 के बीच ऐसी 45 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए जिनमें हर परीक्षा में कम से कम 1,00,000 छात्र शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि इन 45 मामलों में सिर्फ 2 मामलों में दोषियों को सजा मिली है वरना बाकी सारे के सारे छूट गए। यानी बाकी मामलों में या तो सालों से अदालतों में ये केसेस लंबित हैं या जांच ठंडे बस्ते में चली गई है। आपको याद होगा एक वक्त वो था जब निर्भया कांड के बाद जनता सड़कों पर निकली थी और सबने यही महसूस किया कि जो दोषी होते हैं उनको सजा ही नहीं मिलती, कन्विक्शन रेट इतना लो है रेप केसेस में। और उसके बाद यह फैसला किया गया कि कानून को सख्त करना होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हियरिंग करनी होगी और जल्द से जल्द अंजाम तक ऐसे केसेस को पहुंचाना होगा, कन्विक्शन करना होगा, जो दोषी हैं उन्हें दोषी करार देकर सजा मिलनी चाहिए। और आज एक बार फिर वही मामला उठ रहा है, इसीलिए हमें लगा कि इस कानूनी एंगल को उठाना बहुत जरूरी है। आखिर ये जो पेपर लीक करने वाला पूरा माफिया है ये कैसे छूट जाता है? और यह भी तब हुआ है जब पेपर लीक की इन घटनाओं से 3,46,00,000 छात्र प्रभावित हुए और ये कोई छोटा आंकड़ा है, ये संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन सोचिए फिर भी पेपर लीक के मामलों में गिरफ्तार हुए 1,678 लोगों में से सिर्फ 18 यानी बहुत कम लोगों को दोषी मानकर सजा दी गई है, बाकी आरोपी जमानत पर छूट गए, उनके खिलाफ सही से जांच नहीं हुई। सोचिए इन परीक्षाओं के पेपर लीक के कारण कई छात्रों की नौकरी, कॉलेज में प्रवेश और करियर सालों तक प्रभावित रहा और जिन बेईमानों ने यह पेपर लीक कराया उनमें 90% से ज्यादा आसानी से बाहर घूमते रहे। आखिर क्या सिस्टम है ये? और ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जो आरोपी पेपर लीक के मामलों में जेल से छूटकर बाहर आए, उन्होंने फिर से दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक कराए। आपने सही सुना है, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे लोगों में दो आरोपी तो आज विधायक बनकर बैठे हैं। इनमें पहले विधायक का नाम बेदी राम, ये उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाजवादी समाज पार्टी के विधायक हैं, जो अभी बीजेपी सरकार का समर्थन करती है। बेदी राम के चुनावी हलफनामे में लिखा है कि उनके खिलाफ कुल 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 8 आपराधिक मामले पेपर लीक के हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पेपर लीक के ये मामले एक ही राज्य के हैं। विधायक बेदी राम पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आरोपों के मुताबिक इन दो राज्यों में पेपर लीक कराए। और बड़ी बात यह है कि विधायक साहब जब एक बार पेपर लीक के मामले में जमानत पर छूट कर बाहर आ गए, तो उन पर फिर से दूसरी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने का फिर से आरोप लगा। 2006, फिर 2008, फिर 2009, फिर 2010 और फिर 2014 में कुल 8 परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले बेदी राम के खिलाफ दर्ज हुए। लेकिन आज यही बेदी राम उत्तर प्रदेश के लॉ मेकर यानी माननीय विधायक हैं। दूसरे विधायक हैं विपुल दुबे, जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक हैं। आरोप है कि इन विधायक साहब ने भी 2006 में रेलवे भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराया था, जिसके लिए उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा। लेकिन आज सोचिए, पेपर लीक के यही आरोपी विधायक लॉ मेकर बने हुए, कानून बनाने वाले। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि विपुल दुबे ने 2006 में पेपर लीक कराया था, लेकिन जो आरोप है उनके मुताबिक, लेकिन आज भी उनके मामले में अदालत का फैसला आया नहीं है। तो आरोप ये कहता है कि कब उन्होंने आरोपों के मुताबिक पेपर लीक कराया, लेकिन आज तक फैसला नहीं आया। और 2024 में तो इनके खिलाफ सिर्फ आरोप ही दर्ज किए गए हैं। वैसे ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। महाराष्ट्र में पेपर लीक के आरोपी विजेंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के आरोपी राजीव नयन मिश्रा, रवि अत्री और बिहार में पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया कई बार पेपर लीक के आरोपों में गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर जमानत पर बाहर आए और बाद में कई और पेपर लीक को अंजाम देने का आरोप लग गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, बात हमारी सरकारों, हमारे सिस्टम, हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी इन्वेस्टिगेशन सब पर है। अगर पेपर लीक के मामलों में इंसाफ नहीं होगा, गिरफ्तार किए गए आरोपी जमानत पर बाहर आएंगे और बाहर आकर दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक कराते रहेंगे, तो ये समस्या खत्म होने के संकेत है। हमारे देश में ऐसे मुद्दों को लेकर हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि पेपर लीक सभी पार्टियों की सरकारों में हुए और कोई पार्टी रोक नहीं पाई। अगर केंद्र स्तर पर बात करें तो बीजेपी और एनडीए की सरकारों में 67% पेपर लीक हुए, यूपीए की सरकारों में 20% पेपर लीक के मामले आए, 13% बाकी सरकारों में। यानी ये समस्या मौजूदा सरकार में बढ़ी है और इसीलिए सरकार को यह सोचना ही होगा कि वो कैसे बच्चों को पेपर लीक के इस कैंसर से बचाएगी। हम इसे कैंसर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक ये बीमारी हमारी सरकारों और सिस्टम ने लाइलाज बनाकर रखी हुई है। खैर, पेपर लीक, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों के वीडियो चलाए और कहा कि सुरक्षा बलों ने छात्रों को बुरी तरह पीटा। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भ्रष्ट, पूरी तरह फेल बताया, उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए, ऐसा कहा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामने आने, परेशान छात्रों से माफी मांगने, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने के दौरान हुए हंगामे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले उन्हें थोड़ा घसीट कर ले गए, लेकिन वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाओ।
9: सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं, दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं इनको हटाइए. तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस. ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने हैं. बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड.
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं. ब्रेक के बाद लौट रहे हैं अंजना की विचारधारा के साथ. देखते रहिए आज तक.
10: को प्रेजेंटेड बाय हिंट थर्मल्स फॉर ऑल, बड़े आराम से. को प्रेजेंटेड बाय क्रॉस बॉन्ड, फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग चले वेरी वेरी लॉन्ग. को प्रेजेंटेड बाय जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग. पावर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. पावर्ड बाय वैलोलिन, ऑफिशियल सपोर्टर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026.

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
3: Swing and a foul out of play off to the left.
2: Big 12 Radio.
4: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
2: Talk Sport.
5: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
2: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
6: मैं करता हूँ ना,
7: मैं करूँगा।
8: ओए, कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
6: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
8: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टेज, डाइनिंग एंड मच मोर।
6: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
8: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life में scratches तो आएंगे. गाड़ी के scratches को तो Cosmo PP अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी
2: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
3: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
2: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: वी आर ओवर जिमी।
3: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
4: भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया।
5: मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है।
4: करीब 2 घंटे तक चली चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बीच सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून को हरी झंडी दे दी।
6: आर्टिकल 25-29 का वायलेंस हो रहा है और 29 का तो पूरा का पूरा हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और आप सिविल में जाते थे और आप सिविल से क्रिमिनल में आ गए, तो दोनों एक साथ कैसे कर सकते हो हाउस में? लेकिन 2 घंटे देखा, हठधर्मी है, संविधान तो बचा नहीं है, मर्यादाएं बची नहीं है, बस दे दे।
7: अब मध्य प्रदेश में किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं होगा, अब उत्पीड़न नहीं होगा, अब कोई मर्द 4 शादी नहीं कर पाएगा, अब हलाला जैसी कुप्रथा समाप्त होगी, अब एक रूपता आएगी, समानता आएगी, हर बेटी को अधिकार मिलेगा, हर महिला को सम्मान मिलेगा, अब पूरी तरह से एक रूपता मध्य प्रदेश में रहेगी।
4: कांग्रेस का आरोप है कि ये बिल सरकार ने जबरन लागू किया है। कांग्रेस इस पर अभी कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है, जिसके बाद इसे चैलेंज करने की तैयारी है।
8: भाजपा की सरकार की सोच वहां तक सीमित है। वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो लागू होता है पूरे देश पर, एक राज्य पर नहीं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर, कि यह लागू कर रहे हैं? भाई देश में लागू हो अगर उनको करवाना है तो।
5: हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहते? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है।
4: उधर कांग्रेस अब सदन के बाहर सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है।
9: यूसीसी बिल विधानसभा में जहां एक तरफ पास हो गया, तो वहीं यूसीसी बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज धरने पे बैठे हुए हैं। ये प्रदर्शन हो रहा है भोपाल के शाहजहानी पार्क में।
10: बिल्कुल गलत बिल लेकर पास किया है, इसके हम खिलाफ हैं।
11: हम अपने मजहब के अकॉर्डिंग ही, संविधान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ना कि मोहन सरकार की कानून के तहत।
4: देश में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है, जबकि गुजरात और असम में यूसीसी विधेयक पारित हो चुका है, जिसके बाद अब इस लिस्ट में मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल हो गया है। भोपाल से रवीश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।

0: के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए, और तारीफ अगर हद से ज्यादा हो रही हो तो समझ लेना कि छुरी में धार लगाई जा रही है। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: मुद्दे पर संसद में चर्चा को तैयार सरकार, नड्डा ने राहुल पर लगाया राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप, कहा वांगचुक के पत्र का हम देंगे जवाब। सरकार के विरोध में राहुल ने खोला मोर्चा, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जंतर मंतर के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों में फिर से झड़प। वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की बताई शर्त, कहा किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ ना हो कोई कार्रवाई, अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को रोका गया। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े निर्णय, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा समय। ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी, कहा अगर हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर किया हमला तो हर वार पर एक पुल या पावर प्लांट को करेंगे तबाह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक, नीट पेपर लीक, कॉकरोच, जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों के विरोध प्रदर्शन में पुलिस का लाठी चार्ज और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर उठा तूफान, कैसे अब बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया। एक तरफ सरकार है, सरकार की दलील है, दूसरी तरफ कांग्रेस और पूरा विपक्ष है जो छात्रों की मांग और छात्रों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर सरकार पर बरस रहा है। पहले प्रधानमंत्री आवास के पास हुआ विरोध प्रदर्शन और अब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो छात्रों के समर्थन में खुद को खड़ा दिखाने का प्रयास है। आज राहुल गांधी ने इस समय देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार के सामने तीन मांगे रखी हैं, जिन्हें राहुल छात्रों की मांगे बता रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाएं छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कैसे हंगामा है बरपा।
1: छात्रों पर लाठी चार्ज, विपक्ष और सरकार में सीधा टकराव। सड़क से संसद तक पेपर लीक और शिक्षा मंत्री पर संग्राम। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष सरकार पर सवार। पहले पीएम आवास के पास धरना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से घेराव। शिक्षा व्यवस्था पर राहुल के सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। मॉनसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से उठे तूफान ने सियासत में बड़ा उफान ला दिया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन पर लाठी चार्ज हुआ, अब पूरी सियासत इसी पर घूम गई है। पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद संसद में चर्चा।
2: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन।
3: ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं।
4: क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
5: चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।
6: इससे क्या हो सकता है?
1: संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुए लाठी चार्ज पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की भेंट चढ़ जाता है। और फिर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले वो अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। इसके बाद राहुल गांधी पेपर लीक और इस वक्त देश की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं। पिछले 10 सालों में पेपर लीक का आंकड़ा पेश करते हैं।
7: कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। 152 बार पिछले 10 साल में भी यह बताया गया है। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है।
1: और फिर राहुल गांधी देश में शिक्षा का बजट बताते हैं और नीट के एग्जाम पर खर्च से उसकी तुलना करते हैं। साथ ही ये भी पूछते हैं कि पेपर लीक के मामले में किसी को सजा क्यों नहीं मिली।
7: स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, यह अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, एक नीट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार उतना पैसा देते हैं, सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे, और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे. दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन दिस कंट्री, दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल फैमिली इन दिस कंट्री.
1: राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों की तीन मांगों का दावा किया और वो तीन मांगे हैं: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो, पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे.
7: धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए, स्टूडेंट्स की पहली मांग है इनको हटाइए. दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए. और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं.
1: राहुल गांधी ने तीन शर्तों में सबसे ऊपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को रखा तो उनसे सवाल हुआ कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारे मामले का हल निकल जाएगा. साथ ही राहुल गांधी से ये सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन क्यों किया. राहुल गांधी ने जवाब में जो कहा वो आप भी सुनिए.
7: इसके दो कारण है, हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और हमने स्पीकर से कहा देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए. स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, कोई डिस्कशन नहीं. धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड, दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड एंड दैट इज व्हाई वी वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस यस्टरडे टू सपोर्ट दिस डिमांड.
1: आपको बता दें कि 21 जुलाई को कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर पीएम आवास के पास धरना दिया. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को धरने से उठाकर हिरासत में ले लिया गया.
8: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलेट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए.
1: और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरने को लेकर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच खींचतान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने एक तंज वाले अंदाज में इसका जवाब दिया.
7: सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए.
1: राहुल गांधी की पावर पॉइंट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को रोजगार और एजुकेशन सिस्टम पर घेरा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा आधार यही रहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद कोई चर्चा और छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ. आज तक ब्यूरो.
0: राहुल गांधी के इन आरोप और प्रहार पर सरकार ने भी जवाब दिया, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक छात्रों को लेकर सरकार बहुत चिंतित है. नड्डा ने कहा नीट पेपर लीक का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, सरकार चाहती है पेपर लीक पर संसद में चर्चा हो.
9: व्हाई आर यू सो सिलेक्टिव, आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की, क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं।

0: कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सोनम वांगचुक का क्या संदेश है? 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक अनशन कब तोड़ेंगे?
1: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए, और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
0: नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की कड़ी 3 जगह से जुड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या मांग कर रहा है? सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड ही क्लियर करते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत वहीं से हुई है। ऐसे में जंतर मंतर पर धरना दे रही CJP ने फिर से वही बात दोहराई है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक जंतर मंतर खाली नहीं होगा।
2: सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती हमें जंतर मंतर से हिलना है,
0: क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक हैं और 25 दिन से उनका अनशन जारी है। ऐसे में गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार के 2 मंत्रियों से हुई बातचीत पर वांगचुक ने लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार का आश्वासन उन्हें दिया गया है। वांगचुक के मुताबिक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी विचार का आश्वासन मिला है। ये सब तो विचार की बात है, पर चिट्ठी में नीचे वांगचुक लिखते हैं, बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न हो, सरकार भरोसा दे तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं।
3: सारे MP ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं। ये सारे MP के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े? और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है कि जब तक वो फास्ट MP के कहने पर और भारत सरकार के उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली ना फिजिकली ना FIR ना कुछ भी। उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो चुकी हैं और उन्होंने फिर भी इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और जो कह रहे हैं कि बच्चों ने स्टोन फेंके, ये उन्हीं के लोग थे जो इन्होंने अंदर डाले हुए थे, जो ये सब इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे।
0: अब सवाल है कि अगर छात्रों पर एक्शन न होने देने का भरोसा सरकार दे दे तो क्या वांगचुक का अनशन खत्म हो सकता है? आपको बता दें कि विपक्ष के नेता भी 60 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी लेकर सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोनम अनशन खत्म करें।
4: समाजवादी पार्टी इस पक्ष में तभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए, और ये सरकार तो ऐसी है कि अब बताओ मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो। बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप।
5: हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को?
6: साजिश कर रहे हैं।
5: ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू न कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए यहाँ

0: चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं, इस प्रकार की तानाशाही है।
1: सीजेपी ने भी कहा है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दें, बाकी वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक धरने पर डटे रहेंगे।
2: मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये अश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा, तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं मेरी उनसे अपील है आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो।
1: इस बीच सरकार कह रही है कि देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थ का हथियार नहीं बनना चाहिए, जबकि सीजेपी के प्रवक्ता अपनी मांगों का ज्ञापन जेपी नड्डा को पहले ही सौंप चुके हैं। सरकार ने हल निकालने का भरोसा दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर संसद में राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है।
4: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन।
5: पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।
6: ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है।
1: जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्र डटे हुए हैं। मांग यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और एजुकेशन सिस्टम में जरूरी बदलाव किए जाएं। जब तक सरकार सीजेपी की मांगे पूरी नहीं करती तब तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र अब तक हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस इन्हीं मांगों को मुद्दा बनाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है।
7: सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है, ये इनका रवैया है।
8: विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्ष पात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्ष पात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए।
1: कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की शर्त यही है कि इस मुद्दे पर चर्चा तभी होगी जब केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देंगे, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष से पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा शुरू करने की अपील की।
5: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है।
1: सीजेपी के धरना प्रदर्शन को लेकर संसद सियासी संग्राम का अखाड़ा बनी हुई है। सरकार की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। यही सड़क से संसद तक गतिरोध की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पेपर लीक और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज पर संसद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले चर्चा के लिए तैयार हैं।
6: ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें?
9: आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज।
6: नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर?
9: हम लोग का बात भी सुनिए
6: अखिलेश जी। नहीं छात्र नौजवान क्या केवल?
9: अखिलेश जी एक मिनट।
6: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाहर ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
3: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे ईरान की सबसे बड़ी धमकी, अमेरिका दहल उठेगा, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए दस्तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
4: हाँ
3: ला ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
10: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
9: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
10: अर्ज किया है
9: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
11: वाँ वाँ वाँ वाँ।
9: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
12: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
13: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
14: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
15: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
16: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
17: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
18: कुछ तो बात है इस दिल में।
19: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
20: Goldie Hing ka tadka lage to sabhi daba ke khate hain. Goldie Hing kan kan mein jaan.
21: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
22: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
23: Rungta nahi to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar ekdam solid.
24: We are over, Jimmy.
25: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.

0: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, भारी बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान, बाढ़ में बह गया बड़गाम का बाजार। जम्मू कश्मीर इस वक्त मानसूनी आफत का सामना कर रहा है। लगातार हो रही बारिश और फ्लैश फ्लड के चलते हाहाकार मच गया। बड़गाम से ये डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पलघर में बाजार की कई दुकानें पानी में समा गई। नदी के तेज बहाव के चलते मार्केट के नीचे की जमीन कटने लगी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने दुकानों को तुरंत खाली कराया, जिसके तुरंत बाद पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बह गया। बड़गाम ही नहीं, जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में भी बाढ़ बारिश का कहर जारी है। ये तस्वीरें गुरेज की हैं, जहां चार जगहों पर बादल फटने के बाद भारी तबाही मची। खेत से लेकर सड़कें सब तबाह हो गईं। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश के साथ लगातार हो रही लैंडस्लाइड से भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधमपुर में पहाड़ों से मलबा आ जाने के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। ये तस्वीर कठुआ की है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ के तेज बहाव में सड़क ही बह गई, जिसके चलते कई इलाकों से संपर्क टूट गया। राजौरी में भारी बारिश की वजह से फंसे लोगों को सेना को मैदान में उतारना पड़ा। 61 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने कई लोगों की जान बचाई। ये सब फ्लैश फ्लड में फंस गए थे। तो साफ है, धरती का स्वर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर इस वक्त मानसून का कहर झेल रहा है। श्रीनगर से अशरफानी के साथ आज तक ब्यूरो।
1: सिक्किम के नामची में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन टनल के एंट्री गेट पर लैंडस्लाइड, गेट बंद होने से टनल में फंसे मजदूर। ये तस्वीरें सिक्किम के नामची में बन रही टनल के अंदर की है, जब लैंडस्लाइड के बाद वहां काम कर रहे मजदूर फंस गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि टनल के अंदर कितना अंधेरा है और पानी और मलबा भी साफ देखा जा सकता है। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन टनल के अंदर गैस होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम के कई बचाव कर्मियों को अंदर जाने के दौरान चक्कर आए और कुछ बेहोश भी हो गए। लैंडस्लाइड के बाद जमीन और चट्टानों की परतें खिसकने से गैस बाहर निकली। इसके अलावा टनल का संकरा रास्ता और अंधेरा भी राहत कार्य में रुकावट बन रहा है। SDRF, जिला पुलिस और फायर सर्विस की टीमें मौके पर मौजूद है। पश्चिम बंगाल से भी एक विशेष रेस्क्यू टीम बुलाई गई है। ये टीम गैस से बचाव के लिए विशेष सुरक्षा उपकरणों के साथ पहुंची है। बताया गया कि ये टनल तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आप। ईरान ने अमेरिका के परमाणु ठिकानों पर हमले की सबसे बड़ी धमकी दी है। ईरान ने ऐलान किया है कि पिकेक्स एटमी सेंटर पर हमला हुआ तो ईरानी सेना की मिसाइलें अमेरिका के एटमी सेंटर्स को अपना निशाना बनाएंगे। ईरान की धमकी का मतलब है कि अब उसकी मिसाइलें अमेरिका की धरती को दहलाएंगी। तो क्या ईरान की धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर पिकेक्स एटमी सेंटर पर दबाव बनाने की रणनीति का एक हिस्सा है, या फिर ईरान अब इस युद्ध को एक नए लेवल पर ले जाना चाहता है? जैसे ईरान की धरती पर अमेरिकी मिसाइलें गिरा रहा है, ठीक वैसे ही ईरान भी अमेरिका की धरती पर अब मिसाइलें बरसाएगा।

0: क्या अमेरिका पर मिसाइल हमले की तैयारी है? ईरानी मीडिया का दावा, निशाने पर है अमेरिका। पिकेक्स एटमी सेंटर पर हमला तो लेगा बदला। अमेरिकी एटमी सेंटर पर हमले की सीधी धमकी। ईरान की मिसाइलों का टारगेट अमेरिका लॉक। ईरान की धमकी अब अमेरिका को दहलाएंगे। एक तरफ अमेरिकी सेना बीते 11 दिन से ईरान के अलग अलग शहरों पर हवाई हमले कर रही है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं। लेकिन अब ईरान ने अपनी युद्ध रणनीति बदली है। हमलों के चलते हुर्मुज में तेल और गैस के टैंकरों की आवाजाही करीब करीब बंद है, लेकिन हुर्मुज वाली रणनीति ईरान ने बाब अल मंदेब में भी लागू कर दी है। हूती आतंकियों ने ईरान के कहने पर बाब अल मंदेब की नाकेबंदी कर रखी है। नाकेबंदी के चलते सऊदी अरब ने अपने जहाजों की आवाजाही बंद कर दी है। मतलब यही है, आज हुर्मुज और बाब अल मंदेब पर ईरान का नियंत्रण है। वहीं ईरान ने पिकेक्स एटमी सेंटर पर हमले की धमकी के बाद अमेरिका के परमाणु ठिकानों पर हमले की सीधी चेतावनी दी है। ईरान ने यही ऐलान किया है कि पिकेक्स एटमी सेंटर पर अमेरिका ने हमला किया तो धमाकों की आवाज अमेरिका के परमाणु ठिकानों पर भी सुनाई देगी। मतलब यही है कि अब अमेरिका की धरती को दहलाने की प्लानिंग ईरान कर चुका है। दरअसल ईरान के अखबार कायहान में छपी रिपोर्ट में ईरानी सेना के हवाले से धमकी दी गई है। धमकी में कहा गया है, अगर अमेरिका ने ईरान के पिकेक्स माउंटेन एटमी सेंटर या दूसरे परमाणु सुविधाओं पर हमला किया तो ईरान भी अमेरिकी परमाणु सुविधाओं पर हमला करेगा। अगर ईरान की परमाणु सुविधाओं को फिर से निशाना बनाया जाता है तो ईरानी अपनी निवारक नीति और आंख के बदले आंख के सिद्धांत के तहत अज्ञात स्थानों से अमेरिकी परमाणु स्थलों पर विनाशकारी हमले करेंगे। अमेरिका को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान का जवाब है जिसमें उन्होंने पिकेक्स एटमी सेंटर पर हमले की बात कही थी। ट्रंप ने यही कहा था कि ईरान का पिकेक्स परमाणु सेंटर उनकी हिट लिस्ट पर है। किसी भी वक्त अमेरिकी सेना पिकेक्स एटमी सेंटर पर हमला कर सकती है।
1: Great speech, Mr. President. Go get Pickaxe Mountain and don't keep the speaker waiting. I appreciate your time, sir.
2: Okay, and we will do that. We're going to take out Pickaxe Mountain. Tell the Iranians to be ready.
1: I will. Let them
2: know we're coming, okay? There's not a damn thing they can do about it.
0: ट्रंप की इसी धमकी के बाद से ईरान और अमेरिका का तनाव चरम पर है। ईरान ने यही दावा किया है कि पिकेक्स माउंटेन पर कोई भी परमाणु गतिविधि नहीं चल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने उल्टा ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ट्रंप की नज़र इस सेंटर पर है और इसे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का बहाना बना रहे हैं। पिकेक्स माउंटेन पर अमेरिका की नज़र है जहाँ कोई परमाणु गतिविधि नहीं हो रही है। ये आक्रामकता विनाश और तोड़फोड़ के लिए एक मनगढ़ंत बहाना मात्र है। ईरान ने कानून के तहत IAEA को अपनी सभी परमाणु गतिविधियों की जानकारी दी थी। ईरान अमेरिका के और हमलों का सामना करने के लिए तैयार है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। सवाल ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पिकेक्स एटमी सेंटर को लेकर दी गई धमकी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। वहीं ईरानी सांसद इब्राहिम ने दावा किया है कि अमेरिकी धमकी ही उनके लिए परमाणु सिद्धांत को बदलने के लिए ठोस आधार है। परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के संभावित हमले को देखते हुए परमाणु सिद्धांत में बदलाव करना एक ठोस कारण है। अमेरिका ने ईरान के एटमी सेंटरों पर पहले भी हमला किया। ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सीधा हमला था। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के एटमी सेंटर पर हमले की धमकी दी है। ये धमकियां ईरान को सोचने पर मजबूर करती हैं कि वो अपनी परमाणु नीति क्यों नहीं बदले। ईरान लंबे समय से ये कहता आ रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करता है। बड़ी बात यह है कि ईरान के पिकैक्स एटमी सेंटर को लेकर इसराइल ने भी एक खुफिया रिपोर्ट अमेरिका के साथ साझा की है। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भले ही ईरान परमाणु हथियार बनाने से इनकार करता है, लेकिन बीते साल हुए युद्ध के बाद ईरान ने यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज को बेहद सुरक्षित पिकैक्स एटमी सेंटर पर ट्रांसफर कर दिया था। बीते साल अमेरिका और इसराइल ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। अगर ईरान के एटमी सेंटर पर ट्रंप इस खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए हमले का आदेश देते हैं तो ईरान भी अमेरिकी एटमी सेंटर को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है। ईरान का कहना है कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, और तो और मिसाइलों का प्रोडक्शन न तो युद्ध के दौरान रुका और न ही युद्ध के बाद कभी थमा है। चालीस दिनों के युद्ध के दौरान या दूसरे पक्ष द्वारा समझौता ज्ञापन का उल्लंघन करने के बाद भी हमारी रणनीतिक मिसाइलों के उत्पादन में कभी कोई रुकावट नहीं आई। मिसाइलें उत्पादन से सीधे परिचालन उपयोग में लाई जा रही हैं, जिससे हमारे भंडार की भरपाई हो रही है। इधर ईरान के एटमी सेंटर पर हमले की तैयारी ट्रंप कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान के कहने पर हूती ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है। बीते कुछ घंटों में हूती की धमकियों के बाद लाल सागर में 4 टैंकरों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। हूती ने सीधी धमकी दी है कि अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट से सऊदी अरब के जहाज नहीं गुजरेंगे, मतलब सऊदी अरब के लिए अल मंदेब स्ट्रेट में एंट्री बना है। यूरोपीय संघ की नौसेना ने अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब से जुड़े जहाजों को लाल सागर से बचने की सलाह दी है। दरअसल बाब अल मंदेब से दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 5% और कुल एलएनजी व्यापार का 8-10% हिस्सा होकर गुजरता है। ये फारस की खाड़ी में यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाने वाले ऊर्जा जहाजों के लिए एक अहम समुद्री रूट है। ऐसे में ईरान पहले दुनिया के 20% तेल गैस की सप्लाई को अपने कंट्रोल में कर चुका है और अब बाब अल मंदेब में हूती की धमकी के बाद दुनिया का करीब 30-35% तेल और गैस की सप्लाई चेन पर नियंत्रण करेगा। इसी बीच ईरानी सेना के प्रमुख की तरफ से अमेरिका को सीधी धमकी दी गई। अगर अमेरिकी सेना ईरानी धरती पर अपना गंदा कदम रखती है तो उन्हें लाखों ईरानियों का सामना करना पड़ेगा जो लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी भी सैन्य हस्तक्षेप का हमारे पास जो कुछ भी है उससे प्रतिरोध किया जाएगा। हम जानते थे कि दुश्मन समझौते के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहेगा और कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा, इसीलिए हमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाए। ईरान अपनी चुनौतियों पर काबू पा लेगा और उसके दुश्मन अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पछताएंगे। ये ईरान सेना को ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन वाले प्लान का जवाब है। भले ही ट्रंप बार बार दावा कर रहे हों कि ईरान की पूरी सेना को तबाह कर दिया हो, लेकिन आज भी ईरान पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। ईरान के हमलों में अमेरिका के कई सैनिक मारे जा चुके हैं तो 100 से ज्यादा जख्मी भी हैं।

0: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three, it's probably three as opposed to two, great patriots.
1: हुर्मुज को लेकर ट्रंप का यही दावा है कि ईरान का नियंत्रण खत्म हो चुका है, लेकिन हकीकत यही है कि ईरान लगातार टैंकरों को निशाना बना रहा है। ऐसे में ट्रंप ने ईरान को नई धमकी देते हुए कहा है, अगर ईरान ने हुर्मुज में किसी भी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन से हमला किया तो अमेरिकी सेना तेहरान और उसके आसपास ईरान के एक पुल या बिजली घर को तुरंत बमबारी कर नष्ट कर देगी। अमेरिका अभी हुर्मुज में उलझा हुआ है, लेकिन ईरान की रणनीति मिडिल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका तक हमले की है। आज तक ब्यूरो।
2: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का दूसरा दौर और भी भीषण होता जा रहा है। दूसरे दौर के इस युद्ध को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, न कोई उम्मीद दिख रही है। और ट्रंप ने कसम खा ली है कि वो अपने सैनिकों की मौत का बदला ईरान से लेंगे। ईरान भी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है, अड़ा हुआ है। और इस बीच ये आंकड़े भी सामने आ गए कि ईरान से युद्ध अमेरिका को कितना भारी पड़ रहा है। जहां पेंटागन ने पहली बार अमेरिका ईरान युद्ध की लागत बताई, उसने अमेरिकी मिड टर्म चुनाव से पहले इस युद्ध के लिए और अधिक फंड की मांग की। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध का खर्च $37.5 अरब तक पहुंच गया है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि आखिर इस युद्ध का अंजाम क्या होगा।
1: ईरान और अमेरिका में युद्ध का दूसरा दौर, क्या होगा अंजाम? ईरान का नया दाम, अमेरिका में युद्ध के लिए नए फंड की मांग। ईरान युद्ध अमेरिका पर कितना भारी पड़ा? पेंटागन से आंकड़े आ गए। दूसरे दौर में अमेरिकी हमलों के 11वें दिन डोनाल्ड ट्रंप की कसम। डोनाल्ड ट्रंप की ललकार, हुर्मुज में हमला तो पुल उड़ाकर देंगे बदला।

0: अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध लगातार 11वें दिन भी जारी है। अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से ईरान की धरती को हिलाकर रख दिया है। हालांकि इसमें अमेरिका का भी कम नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने अमेरिकी संसद में बताया कि अब तक इस युद्ध पर $37.5 अरब खर्च हो चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने ईरान युद्ध की लागत को सार्वजनिक किया है। उन्होंने अमेरिका में अलोकप्रिय इस युद्ध के लिए तुरंत फंड की भी मांग की, लेकिन अमेरिकी सांसदों ने इसका विरोध किया है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिड टर्म इलेक्शन से पहले ईरान युद्ध को जारी रखना नई चुनौती बन गया है।
1: Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
2: Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion.
1: And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the months ahead?
2: Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
1: So the new number you've given me is what?
2: $37.5 billion.
1: Senator. And that represents the cost of the war through what period of time?
2: Through now for certain aspects of it, but also mill pay, O&M, other anticipated costs through September 30.
0: अमेरिका को ईरान के साथ जंग में जान माल दोनों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेंटागन ने हाल ही में बताया था कि हमलों में 3 और अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। इसके बाद जुलाई की शुरुआत से अब तक कुल 17 सैनिक मारे जा चुके हैं, वहीं 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी मिड टर्म चुनावों में सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। इस चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में अपना बहुमत बनाए रखने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वहीं डेमोक्रेट्स जनमत सर्वेक्षणों में आगे चल रहे हैं और वो ईरान के अलोकप्रिय युद्ध को आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले असर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी जनता भी इस युद्ध के खिलाफ है और इसका विरोध कर रही है। जबकि अमेरिका ने लगातार 11वीं रात भी ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। वहां मौजूद F-15 युद्ध पोतों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर सुविधाओं को तबाह कर दिया है। दूसरी ओर युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज हो गए हैं। पाकिस्तान की सेना एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच गुप्त बातचीत का माध्यम बनती दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामिनई ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए एक गोपनीय संदेश भेजा है। ईरान के गृह मंत्री एस्केंदर मोमेनी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर सहित कई नेताओं के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और युद्ध रोकने के उपायों पर चर्चा की। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ आउन से भी मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि वो लेबनन और इसराइल के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनन से कब तक वापस लौटेगी, तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट समय सीमा बताने से इनकार कर दिया। आज तक ब्यूरो।
3: दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट। Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC. Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
8: Jack, you're killing me.
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
9: Hicks.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
6: Kuch to baat hai is dil mein.
7: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
8: We are over, Jimmy.
9: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.

0: पीछे छह फुट वाली रखी, पीछे दुणा लिया, आगे हैट पे लिखा था गुजर। बात करा दे दीदी तेवर से, मेरी निकले जानू आके तेवर से।
1: वाह, ये अलग लेवल पे है भाई।
2: वाहन का क्या है? जब तक इस देश में एथनॉल है।
1: पानी हल्का गर्म है, मिर्ची अपने मुंह पे डाल लिया, हल्दी वो पानी उन्हें गिरा के रो रहा हो कि एक लाइक दे दो। हम उसको स्वाइप कर मिले तो लात मारो कि क्या पागलपन कर रहा है भाई।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love, whether you're a music lover. Interested in what's going on around the world.
1: I have no idea how this election is going to play out.
0: Or want to catch up on your team's live play-by-plays.
2: He's got some fires.
0: It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क.
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना.
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933. बरसों से सरसों.
6: कुछ तो बात है इस दिल में.
7: वी आर ओवर जिमी.
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: स्पीकर पे स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है. मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट He has to take permission from the government. He's openly telling us that. ठीक है, देखिए issue students की है, youth के future की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, this is completely un-Indian. मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये education system के बारे में, testing system के बारे में protest कर रहे हैं. पूरा देश जानता है कि education system, testing system is broken. It has ceased to exist.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

0: आंदोलन पर सलमान खान का बयान आया है और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार हंगामा मचा हुआ है छात्र आंदोलन पर सलमान खान ने भी बयान दिया है। छात्र आंदोलन के हिंसक होने पर सलमान खान ने दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तमाम अलग अलग जगहों से तमाम प्रतिक्रिया लगातार आ रही है इस आंदोलन पर और अब सलमान खान की तरफ से भी बयान दिया गया है जिसमें इस आंदोलन के हिंसक होने जो संवेदनाएं हैं वो घायल छात्रों के साथ हैं। लाठीचार्ज में जो छात्र घायल हुए थे उनके साथ संवेदना व्यक्त की है सलमान खान ने और इस आंदोलन पर सलमान खान ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो हिंसक आंदोलन हुआ है इस पर उन्हें दुख है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

में चर्चा को तैयार है सरकार। नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाया सियासी रोटियां सेकने का आरोप, कहा वांगचुक के पत्र का देंगे जवाब। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी, जंतर मंतर के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों में फिर से झड़प। वीडियो संदेश में सोना वांगचुक ने अनशन खत्म करने की बताई शर्त, कहा किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्रवाई। अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद रोके गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। और ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी, का अगर हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हुआ हमला तो हर वार पर एक पुल या पावर प्लांट कर देंगे तबाह।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सीधे जंतर मंतर से। बच्चे अगर घर के बाहर हों तो घर में माँ बाप परेशान हो जाते हैं, पर जरा सोचिए अगर देश का भविष्य ही सड़कों पर उतर आए तो फिर देश को कितना परेशान होना चाहिए। इस वक्त जंतर मंतर हम सबको उसी परेशानी का एहसास करा रहा है, कि हमारे देश का भविष्य अपने भविष्य और उस भविष्य के सपने को लेकर कितना परेशान है, कि कहीं उसके भविष्य का सपना मर ना जाए। और सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लालच की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी से चुप ले जकड़े जाना बुरा तो है, पर यह भी सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। दिल्ली का जंतर मंतर यानी वो दहलीज जहां से देश का गुस्सा अपने हुक्मरानों से फरियाद करता है। ये फरियादें दरबार के किस हिस्से तक पहुंचने में कामयाब होती हैं, इसी बात से फरियाद के कद और उसकी हैसियत का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन इस बार चोट थोड़ी गहरी है। इस बार जंतर मंतर पर गम और गुस्से का अजीब संगम है। किसी को छात्रों और आम लोगों का त्योहार देखना हो तो उसे जंतर मंतर का नजारा जरूर करना चाहिए। हर तरफ बस एक ही शोर है कि शायद इस बार कुछ ऐसा हो जाए कि फिर किसी बच्चे के सपने को एग्जाम के नाम पर कोई चुराने की हिम्मत न कर पाए। माँ बाप और उनके बच्चों के सपनों के हक में एक ऐसा कानून बन सके जिसके बाद हर बच्चे का मुस्तकबिल महफूज हाथों में। नाइंसाफी, बेईमानी और भ्रष्टाचार का सैकड़ों साल पुराना किस्सा नई पोशाक पहनकर एक बार फिर हमारे दिलों पर दस्तक दे रहा है। रगों में लहू बनकर उतर चुका इम्तिहान चोरों का कैंसर आखिरी ऑपरेशन की मांग कर रहा है। अवाम सियासत के बीज बोकर हुकूमत की रोटियां सेकने वाले नेताओं के भविष्य का फैसला करना चाहती है। यह गुस्सा एक मिसाल है कि हजारों छात्र जब एक मकसद के लिए एक साथ स्कूल कॉलेज से निकलकर गांधी के बताए आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं तो हिंदुस्तान का हिंदुस्तानियत पर यकीन और बढ़ जाता है।

0: महंगाई, गरीबी, भूख और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से रोजाना और लगातार जूझती देश की आवाम के सामने भ्रष्टाचार इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर इस बीमारी से हम पार पा गए तो यकीन मानिए सोने की चिड़िया वाला वही सुनहरा हिंदुस्तान एक बार फिर हम सबकी नजरों के सामने होगा। पर क्या ऐसा हो पाएगा? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? जी हाँ, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ क्रांति की मशालें जलाकर, नारे लगाकर, आमरण अनशन पर बैठकर ये सरकार को झुकाकर आप छात्रों की ये जंग नहीं जीत सकते। इस जंग को जीतने के लिए खुद आपका बदलना जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार और बेईमानी का बढ़ावा देने में आप भी कम गुनहगार नहीं है। नीट एग्जाम पेपर लीक सिर्फ एक लीकेज नहीं, बेईमानी और भ्रष्टाचार का पूरा एक कटर है। दिल्ली के दिल जंतर मंतर से शुरू हुआ इंकलाब उम्मीद की किरण जगाता है कि अपने देश को ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर हमारे भविष्य यानी नौजवानों का भविष्य बेहतर बनाने का हमारा सपना अभी मरा नहीं। यह अलग बात है कि हक और ईमानदारी की बात करते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों की चर्चा तक करना नहीं चाहते और दूसरों से ईमानदारी से नीट या उस जैसे दूसरे इम्तिहान को कराने की उम्मीद रखते हैं। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि जंतर मंतर पर मौजूद छात्र निरंकुश थे या सियासी लोग उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे लोगों को जंतर मंतर के इस गम और गुस्से को करीब से महसूस करना चाहिए। यह भीड़ किसी वोट बैंक का हिस्सा नहीं बल्कि उनकी है, जो पूरे साल की पढ़ाई की मेहनत और अपने माँ बाप के सपनों के बार बार टूटने से तंग आ चुके हैं। अगर हम तंग आ चुके इन हजारों लोगों को किसी एक नाम से पुकारेंगे तो यकीनन वो नाम आंदोलन ही होगा। बाकी सब आजाद हैं अपने अपने हिसाब से इसे कोई और नाम देने के लिए। जंतर यानी मशीन और मंतर, मंत्र के मतलब की गिनती, यानी जंतर मंतर का मतलब हुआ वक्त और ग्रहों की गिनती करने वाली मशीन। क्या इत्तेफाक है ना कि आज जो जंतर मंतर धरने प्रदर्शन और आंदोलन का पहचान बन चुका है वो गुजरे वक्त में देश की महान वैज्ञानिक तरक्की का सबूत हुआ करता था। और ये भी क्या इत्तेफाक है कि 33 साल पहले 1993 में डूसू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने पहली बार जंतर मंतर पर कोई बड़ा प्रदर्शन किया था। इसके बाद से जंतर मंतर वो जगह बन गई जो सबको जगह देती है, जहां लोकतंत्र सचमुच जिंदा नजर आता है। वही इस बार भी हो रहा है इसी जंतर मंतर पर। पर क्यों? तो असल में इसकी शुरुआत इसी साल मई में हुई थी। पूरे साल कड़ी मेहनत और सपनों पर नजरें गड़ाए 22 लाख बच्चे डॉक्टर बनने के लिए नीट के इम्तिहान में बैठते हैं, उस इम्तिहान में जिसे चोरों ने पहले ही चुरा लिया था। पेपर लीक हो चुका था, एग्जाम कैंसिल। अब सोचिए सिर्फ उन बच्चों के बारे में नहीं, उनके माँ बाप के बारे में भी, जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की हसरत में अपनी सारी पूंजी लगा दी। कुछ की पूंजी कम पड़ी तो बच्चों की खातिर घर बार बेच दिया, पर उन्हें मिला क्या? धोखा। अब अगर एक देश एक इम्तिहान तक को चोरों से न बचा पाए तो भारत का भविष्य गुस्सा तो होगा, उदास और मायूस भी। बहुत से तो ऐसे बच्चे थे जिन्हें एग्जाम के बाद लगा कि उनकी मंजिल बस अब दरवाजे पर खड़ी है। इम्तिहान ही इतना अच्छा गया था, लेकिन जब नीट चोरों के चोरी की दास्तान सामने आई तो ऐसे बहुत सारे बच्चे टूट गए। देश भर में 20 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान दे दी। सोचिए, सोचकर ही अजीब लगता है। जिंदगी का इम्तिहान तो समझ आता है, पर बच्चों का इम्तिहान भी जान लेता है।
1: उससे पहली बात तो ये है कि देखिए जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट का दर्द समझता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं एमए कर चुका हूँ अभी कंप्लीट, मैं पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आंदोलन जो हो रहा है, सबसे पहले तो हमारे 90 से ऊपर पेपर लीक हो गए 10 साल में, छोटे बड़े सब मिला करके पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं, चाहे यूपी में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे कहीं भी हो, जिसके कारण हमारे केवल तथाकथित आंकड़े में 17 छात्रों ने जान गंवाई है। ना जाने कितने छात्रों ने, छात्राओं ने जान गंवाई होगी। हम उनके

0: देश भर में मौजूद 14,71,000 स्कूल हैं, जिनमें लगभग 24,70,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। भारत चीन के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा ग्रेजुएट पैदा होते हैं। हर साल देश के अलग अलग कॉलेजों से करीब 50,00,000 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन जानते हैं हर साल इन 50,00,000 ग्रेजुएट होने वाले बच्चों में से नौकरी कितनों के हिस्से में आती है? सिर्फ 28,00,000। यानी हर साल औसतन 22,00,000 बच्चे ग्रेजुएट होने के बावजूद बेरोजगारों की गिनती बढ़ाते जाते हैं। अब ऐसी सूरत में अगर पूरे साल की मेहनत के बाद एक पूरा इम्तिहान ही चोर चुरा ले जाए तो उन बच्चों पर क्या बीतती होगी, उनके माँ बाप का क्या हाल होता होगा? और यहीं से ये सवाल और गुस्सा दोनों एक साथ आया कि जिस देश का डंका पूरी दुनिया में बजने के दावे किए जा रहे हैं, वो देश बच्चों का एक छोटा सा एग्जाम भी चोरों और भ्रष्टाचारियों से नहीं बचा पाया।
1: सही बोले तो मेरा पढ़ाई जस्ट कंप्लीट हो गया, बट आई वांटेड कि मेरा जो फ्यूचर, जो मेरा बहन है, जो मेरा भाई है, उनको ये जो एजुकेशन सिस्टम से चल रहा है अभी, जो इसका ये जो जो भी ये लोग कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम जो ठीक नहीं चल रहा है अभी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे भाई, जो मेरा बहन आने वाला है, उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो। इस चीज़ की वजह से मैं आज आई हूँ यहाँ पर, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेन लेने के लिए।
2: जैसे कि मम्मा ने बोला कि एजुकेशन बेसिक राइट है, और हम कंट्री में ये भी बोलते हैं कि यूथ ही हमारा फ्यूचर है, तो अगर आप अपने फ्यूचर को बेसिक एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है अपनी बेसिक नीड्स के लिए, तो फिर आप क्या ही करोगे? आप ये बोलते हो कि फ्यूचर में हम इतने डेवलप हो जाएंगे, आपका एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा, आप कैसे डेवलप हो पाओगे?
3: जो है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए हम लोग आ गया, क्योंकि मेरी बेटी ने भी नीट का पेपर दिया, 2 बार लीक हुआ है, वो आज के टाइम में वो इतनी डिप्रेस है ना कि सर वो नहीं आई।
4: अच्छा,
3: इसने भी नीट का पेपर दिया।
5: जो पेपर लीक हो जा रहा है, कम से कम उसे तो कंट्रोल किया जाए, चलो मतलब रोक लगाई जाए। अगर आप नहीं कर सकते, कम से कम कोशिश तो आप कर सकते हो ना, दिखना चाहिए कि आपने कोशिश किया, ठीक है। और सेकंड ये हो सकता है कि जो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, बेसिकली क्या है कि नीट तो पास हो गए, बट कॉस्टली इतना ज़्यादा हो जा रहा है आगे जाके कि एजुकेशन कि मतलब सर्वाइव करना लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा है।
6: डेमोक्रेसी की तुमने पूरी तरह से हत्या कर दी, और तुम हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते हो। सोना वांगचुक को जिस तरह से तुम उठा के ले गए हो, क्या वो सही तरीका था? तो इस बात का हम अभी तक तो हम ये चाहते थे कि भाई सुने सुने सुने, लेकिन अब हम इस स्थिति में आ गए कि भैया हार पार की स्थिति होनी चाहिए, बहुत हुआ, अब इसके आगे सहन शक्ति बची नहीं।
2: आप कंपेयर करते हो खुद को कि हम बांग्लादेश से ऊपर है, हम पाकिस्तान से ऊपर है, आप चाइना से खुद को कंपेयर करो ना, वो इतना बड़ा एग्जाम गांव का, जो वर्ल्ड नंबर वन टफेस्ट एग्जाम है, वो इतने अच्छे तरीके से कंडक्ट करा पाते हैं, आप 25,00,000 बच्चों का नीट नहीं करवा पा रहे कंडक्ट, तो ये कैसा सिस्टम हुआ फिर आपका?
7: मम्मी पापा ने अलाउ नहीं किया, लेकिन मम्मी पापा का ये कहना था कि तुम पहले पढ़ो, तुम अपने ये करो, लेकिन भाई सिस्टम है, हम उस सिस्टम में अभी आगे और बढ़ना है, जाना है। अगर ये सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे फिर आगे जा पाएंगे? इस वजह से हम खुद झगड़ भांड के आ गए।
8: और एक मेरे पास एक पॉइंट है, एक्चुअली मैंने जैसे एक न्यूज पे देखा था एक्चुअली कि एक स्टूडेंट था जिसको 2 मिनट हो गया था, तो एग्जाम को वो नहीं बैठने दिया, उनको नहीं बैठने दिया गया है, तो ये तो देखिए कितना शेमफुल बात है। जो बंदा उतने टाइम से वो स्टडी कर रहा है, सब कर रहा है, तो उसके उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी, तो ये तो एकदम शेमफुल एकदम चीज है।
9: आई थिंक जो मिलेनियल्स हम जैसे नहीं कर पाए वो आज की यूथ करेगी, बिकॉज दे आर नॉट स्कैर्ड, एंड आई थिंक वी हैव रियली पुश देम टू द कॉर्नर। अगर हमने उनको इतना कॉर्नर में पुश कर दिया तो रेवोल्यूशन का स्पार्क तो वहीं से आएगा। तो
10: सिस्टम से बहुत परेशान हूँ, और सिर्फ एक इस्तीफा पे या एक रेजिग्नेशन से ये चीज़ नहीं बदलेगी, हमें सिस्टम में बहुत बड़े चेंज करने पड़ेंगे। एक जाएगा, दूसरा आएगा, सिस्टम वही रहेगा। मेन जो हमारा रूट कॉज है इस प्रॉब्लम का, वो हमें सिस्टम में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, बहुत सारे रूल्स चेंज करने पड़ेंगे कि लोगों को अकाउंटेबिलिटी हो, प्लस उसमें ट्रांसपेरेंसी हो।
11: बार्स वहाँ से स्प्रेड हो रहा था, हमारी पूरी आंखों में से पानी, हमारी सांसें पूरी बंद हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था, भागे दौड़े क्या करे करके। अगर इनको हमारे साथ यही करना था तो, और अगर उनको हमारे ऊपर मतलब यहाँ से ये प्लान है ना कि इन्होंने पहले ही तय करके रखा था कि पहले हम इनको यहाँ तक लेके आते हैं और फिर उसके बाद हम उन पे ये जानलेवा हमला करेंगे।
12: हम टेररिस्ट थोड़ी ना, स्टूडेंट है, हम क्यों फेंकेंगे पत्थर? पत्थर वो लोग लेके आए थे और उन्होंने फेंके, और फिर बाद में ये बोल दिया कि स्टूडेंट फेंक रहा है। वो उनका ऑलरेडी प्लान था कि ये सब उनको करना है और ये जो हो रहा है ये रुक जाए।
13: ये जो प्रशासन है,

0: जिसने बिना कुछ कहे लड़कियों पे लाठी चार्ज किया, पत्थरबाजी की यहाँ के लोगों के, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी हैं सरकार से परेशान लोग हैं, तो क्या ये सही है हम पे लाठी चार्ज करना, हम पे पत्थरबाजी करना जो हमारी प्रशासन ने किया है?
1: जिस तरह से बर्बरता के साथ हमारे साथियों को मारा गया, हमारी बहनों को मारा गया, वो अशोभनीय था। और हमने उन्हें, जब हमारे साथियों को, हमारी बहनों को ये बर्बरता से मार रहे थे, उसको, उनको बचाने के लिए हम बैरिकेड के बाहर थे, वहाँ से कूद के उनके पास हम गुलाब का फूल लेके जा रहे थे, और उन्होंने हमें फूल के बदले, फूल तो नहीं लिए लेकिन बदले में लठ मारी।
2: मई में पेपर लीक के बाद बच्चे नाराज थे, उदास थे, गुस्सा थे, छोटे मोटे मंचों से अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी एक अजीब वाकया हुआ। देश की सबसे बड़ी अदालत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे भारत के चीफ जस्टिस के मुंह से एक शब्द निकला, कॉकरोच। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से निकले इस एक शब्द को अमेरिका के बॉस्टन शहर में एक भारतीय ने मजाक मजाक में लपक लिया, और उसी मजाक मजाक में सोशल मीडिया पर अचानक कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। शुरुआत में सोशल मीडिया पर यह मजाक ही बना हुआ था, इस पर मीम्स बन रहे थे, सब इसे मजाक में ही ले रहे थे, लेकिन असल में चुपचाप खामोशी के साथ यही कॉकरोच नीट के मारे बच्चों का साथी बनता जा रहा था। उधर हुक्मरानों को लगा कि कोई नहीं, दोबारा नीट का एग्जाम करा लेंगे। गरज तो बच्चों को है, डॉक्टर बनना है तो वो इम्तिहान में बैठ भी जाएंगे। लंबे चौड़े दावों के बीच पहली बार दुश्मन देशों की सरहदों के अंदर जाने वाले वायुसेना के जहाजों को डॉक्टरी के सवाल जवाब वाली पर्चियों यानी पेपर एग्जाम सेंटर तक भेजना पड़ा। तब कहीं जाकर बच्चों के इम्तिहान पूरे हुए और फिर रिजल्ट भी आ गए। तो सवाल है कि जंतर मंतर पर बच्चों का फिर ये हुंकार क्यों?
3: यार, जब वोट मांगने का वक्त आता है तो आप घर घर भेजते वोट डोलते हो, लेकिन आज हम लोग जब आपसे न्याय मांगने आए हैं तो आप आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ रहे हैं? आप बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है क्या? आपकी संवेदना कहाँ गई है? जिनसे चुनकर आप आते हो उन्हीं को तुम कुत्तों की तरह भगाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
4: अब बात उस शिक्षा के मुद्दे से ऊपर आ गई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा था, तो अब मैं कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, सो रहे हैं,
5: उनका मांगो।
4: वो क्या देश को चला रहे हैं, क्या है कि उनसे एक इस्तीफा नहीं मांगा गया? तो वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि ये लोकतंत्र यहाँ खत्म है।
6: हमारी डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, वो और जितने पेपर लीक हुए सभी बच्चे का मेहनत समझे, कैसे बच्चे मेहनत करते हैं और दिन दिन भर रात रात जाग के एक पेपर निकालने के लिए इतने संघर्ष कर रहे हैं, तो उस संघर्ष को समझे धर्मेंद्र प्रधान।
7: हम पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि सर, जिस तरह के आपने कल हम लोगों को मारा है, पीटा है, आप लोगों को सल्यूट करते हैं। आप जितना तोड़ोगे उतना मजबूत होंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेंगे, साथ ही साथ अब मोदी प्रधान, मोदी का भी इस्तीफा की मांग होगी।
8: एक कुर्सी नहीं छोड़ सकता है, एक रेजिग्नेशन नहीं दे सकता है। अब सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि उसकी तानाशाही नहीं चलेगी। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। हमारे पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं है मैम कि ये जो ट्यूशन का इतना हायर फी है वो बार बार हम पे दे सकते हैं। हम तो कोई सिंगल चाइल्ड नहीं है मैम कि सिर्फ हम ही को पढ़ाएंगे, पेरेंट्स और भी भाई बहन हमारे होते हैं पढ़ने के लिए। और मैम, एक बार पेपर लीक हो जाता है इससे बच्चों का मनोबल भी टूट जाता है।
9: मतलब वो आए ही सिर्फ इस माइंडसेट से थे कि आज बहुत पीटना है। बहुत से बिना वर्दी के जो लोग थे वहाँ पर, उनका क्या अधिकार था? वो सब गुंडे हैं, खाकी वर्दी वाले गुंडे। मेरा मन तो उन्हें आतंकवादी कहने का था कि वो खाकी वर्दी वाले आतंकवादी हैं, पर थोड़े सभ्यता का मान्य रखते हुए कि मेरे हम भी पुलिस से आते हैं जो भी है, तो हमने कहा गुंडे थे वो लोग।
10: पुलिस फैमिली से बिलोंग करते
9: हैं? जी जी जी।
2: लोगों के लिए मजाक में पैदा हुआ कॉकरोच अब जंतर मंतर पर पहुंच चुका था। मुद्दा और मांग बड़े सीधे साधे थे। पढ़ाई के एग्जाम और तरीके अच्छे, और पढ़ाई की फील्ड के देश के सबसे बड़े उस्ताद यानी शिक्षा मंत्री नीट एग्जाम में फेल होने के बाद स्कूल से निकल जाए, यानी अपनी कुर्सी छोड़ दे। मांग सीधे बच्चों से जुड़ी थी। कॉकरोच नया नया, और नई चीज हमेशा अपने साथ नई उम्मीदें लाती है। लिहाजा देखते ही देखते अब सोशल मीडिया के पर्दे के बाहर हकीकत की जमीन पर भी बच्चे कॉकरोच से जुड़ते चले गए। अब भी सब कुछ शांत और ठीक ठाक चल रहा था। फिर तभी लद्दाख के समाज सेवी सोनम वांगचुक जंतर मंतर में एंट्री होती है। फिर वो अचानक आमरण अनशन का ऐलान कर देते हैं। भूख हड़ताल शुरू हो जाती है। कई दिन बीत जाते हैं पर होता कुछ नहीं। लोग जंतर मंतर पर आते हैं और वीकेंड की छुट्टियां जैसी छुट्टियां मनाकर लौट जाते हैं। पर जैसे जैसे भूख हड़ताल के दिन बढ़ते गए, अचानक लोगों को 15 साल पुराना जंतर मंतर याद आने लगा। लगा 2011 का अन्ना हजारे का आंदोलन, वो आंदोलन जिसमें पहली बार नई नस्ल ने अन्ना हजारे में गांधी को देखना शुरू कर दिया था। बीतते दिनों के साथ सोनम वांगचुक की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, वजन तेजी से गिर रहा था। ऐसे में कोई दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया इस फरियाद के साथ कि सोनम वांगचुक की जान बचाई जाए, यानी उनका आमरण अनशन खत्म करवाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत एक फैसला सुनाया, कहा सोनम वांगचुक की जिंदगी कीमती है, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। बस हाईकोर्ट का इतना भर कहना है, दिल्ली पुलिस को एक हथियार दे गया। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था। सोनम वांगचुक ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि उस दिन सभी छात्र संसद भवन तक मार्च करेंगे, लेकिन उससे पहले अचानक दिल्ली में हलचल तेज हो जाती है। 17 जुलाई की सुबह अचानक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया जाता है। नए कमिश्नर की पहली मीटिंग जंतर मंतर को लेकर होती है। पूरी शाम और रात तैयारी होती है और फिर 18 जुलाई की सुबह सुबह सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के ठीक 20वें दिन डॉक्टरों का भेष बनाकर दिल्ली पुलिस उन्हें जबरन मंच से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाती है। लगा 20 जुलाई का संसद मार्च मुमकिन नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक हटाने के साथ साथ जंतर मंतर को भी खाली करने का फरमान जारी कर दिया था। लेकिन शायद दिल्ली पुलिस उस जंतर मंतर का मतलब भूल बैठी थी, जिसका जन्म ही समय और ग्रहों की गिनती करने के लिए हुआ था। 20 मार्च को हजारों बच्चे अपने समय और ग्रहों को बेहतर बनाने एक बार फिर उसी जंतर मंतर पर पहुंच चुके थे। उधर पुलिस भी तैयार थी बच्चों को रोकने के लिए, और इधर बच्चे भी तैयार अपनी आवाज हुक्मरानों के कानों तक पहुंचाने के लिए। लाठियां चली, रोते हुए बच्चों के आंसुओं को आंसू गैस की गोले से और ज्यादा भिगोया गया। कुछ को गिराया गया, कुछ को उठाया गया, कुछ थाने पहुंचे, कुछ अस्पताल, और कुछ जो वापस घर लौटे तो ये सोच कर लौटे कि अपने सपनों में रंग भरने के लिए वो वापस फिर लौटेंगे इसी जंतर मंतर पर, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन है जिसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। तड़प का न हो, सब कुछ सहन कर जाना। घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का

0: जंतर मंतर से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: आज देर शाम दिल्ली में जंतर मंतर के पास प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच में फिर से झड़प हुई, जिसमें कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। जंतर मंतर के पास टॉलस्टॉय मार्ग पर भारी मात्रा में प्रदर्शनकारी छात्र मौजूद थे, जिनके साथ पुलिस के जवानों में भी झड़प की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा मंजर हिंसक उठा था। तस्वीरों में कई प्रदर्शनकारियों को देखा जा सकता है, जिन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया है। हालांकि फिलहाल इस वक्त हालात पूरी तरह से काबू में बताए जा रहे हैं और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो आज की तस्वीर
3: आज सवेरे 7 बजे से ही मेरी ड्यूटी धरना स्थल पे जंतर मंतर पे थी। पूरा दिन प्रोटेस्टर जो नारेबाजी और रोडदंगबाजी करते रहे। 3:30 बजे के आसपास करीब 5-6 हज़ार की भीड़ हो गई थी। उनमें से 500-700 प्रोटेस्टर बाहर आके जंतर मंतर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। उनको संसद मार्ग पे बैरिकेडिंग करके और ह्यूमन चेन बना के रोकने की और समझाने की कोशिश करी, और अचानक से ही उनमें से प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर आगे अभी मेरे माथे में लगा था।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcasts, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: छात्रों के मुद्दे पर संसद में चर्चा को तैयार है सरकार। नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाया सियासी रोटियां सेकने का आरोप, कहा वांगचुक के पत्र का देंगे जवाब। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी। जंतर मंतर के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों में फिर झड़प। वीडियो संदेश में सोनू वांगचुक ने अनशन खत्म करने की बताई शर्त, का किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्रवाई। अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद रोके गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार। सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। और ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी, कहा अगर हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हुआ हमला तो हर वार पर एक पुल या पावर प्लांट को कर दिया जाएगा तबाह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: प्रधानमंत्री मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सुरे, एनडीए के साथ जाने की अटकलों को फिर से मिली हवा। तस्वीरों में पवार का हाथ पकड़े हुए नजर आए प्रधानमंत्री, नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मुंबई में गांधी भवन के बाहर महाराष्ट्र सरकार का प्रदर्शन, राहुल गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में सरकार के खिलाफ नारे। मुंबई के आजाद मैदान में एमएनएस का प्रदर्शन, नीट विवाद और पेड़ों की कटाई को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुंबई में छात्र प्रदर्शन को समर्थन देने चेंबूर पहुंचे स्टेशन आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे, सरकार पर युवाओं की आवाज को दबाने के आरोप लगाए। आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी 16 साल के बाद लौटेंगे भारत, फेमा केस में राहत न मिलने के बाद किया ऐलान, बोले साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में करूंगा वापसी। सूरत की डायमंड ज्वेलरी ने रचा इतिहास, विक्रम 1 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजी गई विशेष कमल के आकार की ज्वेलरी। महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, पालघर में कल स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, प्रशासन ने जारी किए निर्देश। गुजरात के वलसाड में लगातार हो रही है बारिश, जनजीवन बेहाल है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में रेस्क्यू का काम जारी। भारी बारिश के चलते वलसाड में स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, जिन्हें जिले की 325 से ज्यादा सड़कें भी बंद हो गई हैं। वलसाड में भारी बारिश का असर, रेलवे ट्रैक के किनारे भी जमीन धंसी, रेल सेवा प्रभावित। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। नवसारी में भयंकर बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए, रौद्र रूप दिखा रही है अंबिका नदी, खतरे के ऊपर से बह रही है कावेरी। सूरत में मूसलाधार बारिश से बिगड़ गए हालात, खाड़ियों का जलस्तर बढ़ गया है, प्रशासन के निचले इलाकों के लोगों से घर खाली करने की अपील। पंपों से पानी निकासी में जुटे नगर निगम के कर्मचारी, एहतियात के तौर पर रेस्क्यू के लिए खड़ी फायर डिपार्टमेंट की बोट। ठाणे जिले के बदलापुर इलाके में साड़ी नहीं लाने पर पत्नी ने पति को मार डाला, प्रेशर कुकर के ढक्कन से पीटने के बाद गला घोटा। नागपुर में छत तोड़कर मोबाइल दुकान में घुस गए थे चोर, लाखों के मोबाइल और नकदी लेकर फरार हुए। वडोदरा में जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकवादियों का खुलासा, होटल सर्विन क्वार्टर में छुपे हुए थे दो आरोपी, एटीएस टीम जांच में जुटी। गुजरात के भावनगर में अवैध मदरसे चलाने के आरोप में मौलाना गिरफ्तार, पुलिस का कट्टरपंथी विचारधारा वाली किताबें बरामद करने का दावा। तमिलनाडु के तिरुपुर में जननायकन की टी शर्ट की भारी मांग, एक्टर और मुख्यमंत्री विजय के फैंस में जबरदस्त क्रेज। कल रिलीज हो रही है फिल्म जननायकन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की सुपरस्टार की आखिरी फिल्म। विजय की फिल्म ने रिलीज होने से पहले शानदार कमाई कर डाली है, फिल्म ने अब तक 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, बिके 6 लाख से ज्यादा टिकट। बिग बॉस 20 का नया आई लोगो आउट हुआ, बिग बॉस 20 में सलमान खान का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया। फिल्म द इंडिया स्टोरी का नया पोस्टर रिलीज किया गया, फिल्म में काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े का अहम रोल है, शुक्रवार को फिल्म रिलीज होगी। ओटीटी पर दस्तक देगी फूलन की कहानी, अनुराग ठाकुर, विक्रम प्रताप सिंह, आकाश दहिया, प्रतीक पचौरी और देवदत्त बुधोलिया की अहम भूमिकाएं।
2: धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए।
3: पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां से
4: बच्चों के साथ शिवसेना पहले दिन से है।
5: सरकार सुनने वाली नहीं है, डर लग रहा है सरकार को।
6: चाहिए, चाहिए। डंडे बरसाना, टीयर गैस के छोड़ना, सर फोड़ना उनके, ये कौन सी जिम्मेदार सरकार है यार, ये तो आतंकी है।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। 24 जुलाई को मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी बड़ा आंदोलन करने जा रही है। उससे पहले मुंबई में आज कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अलग अलग इलाकों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है और जबरदस्त प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था और खास बात यह रही कि कई जगहों पर कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए।
7: मोदी सरकार में बहुत कम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें विपक्ष एक साथ सरकार को घेरता नजर आया। देखिए कैसे उद्धव ठाकरे जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर समर्थन देने मुंबई से दिल्ली पहुंचे।
4: अभी जी थे, सोनम जी तो मेरे घर आए थे और इन बच्चों के साथ शिवसेना पहले मिल से है। कल मैं सबको मिलने के लिए आया था और संतोष की बात है या पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन कल ही राहुल जी ने भी आंदोलन किया। अगर हम देखें तो जिस बेरहमी के साथ सरकार इसके साथ पेश आ रही है या शुरू कर रही है, कोई प्रजातंत्र का लक्ष्य नहीं। ये तो अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे।
7: वहीं आज मुंबई में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने चेंबूर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद दोनों भाइयों ने सरकार पर साझा प्रहार किया।
8: मुझे लगता है किसी ने इन्हीं युवाओं को कॉकरोच कहा था, उन्हीं ने आज पूछा है कि क्या अर्जेंसी है। देश के हालात खराब होते जा रहे हैं, देश के हालात बदतर होते जा रहे हैं। संविधान आप देख रहे हो, भाजपा बदलना चाहती है। जो देश बदलने के मैंडेट पे आए थे, अभी संविधान बदलने चले हैं और देश के जो बहुत ही आदरपूर्वक मैं कहता हूँ, जिनके हाथों में न्याय देने की व्यवस्था है, वो कह रहे क्या अर्जेंसी है। हमारी यही प्रार्थना रहेंगी, क्योंकि वो तो मिलोड रहते हैं, कि अभी जमीन पे क्या हो रहा है वो देखो और देश को जो अपेक्षित है वो न्याय हमें दीजिए।
7: शरद पवार, सुप्रिया सुले, संजय राउत भी दिल्ली में छात्रों के हक में आवाज उठा रहे हैं। इधर आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में जोरदार प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। इस प्रदर्शन में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की अगुवाई में आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के धरने का समर्थन किया और मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला, जिसके बाद पुलिस ने सपकाल, विजय वेडेट्टीवार, नसीम खान और तुषार गांधी जैसे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया।
9: जब सब पेपर फूट रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और क्या मांगा था एक मिनिस्टर जो बार बार गलतियां कर रहा है, शिक्षण प्रणाली को ध्वस्त कर रहा है, तो उसके रिजाइन के लिए इतना प्रेशर इशू करके 20 दिन तक कोई डायलॉग नहीं किया। जब लेक्चर सब उतरे तो उनके साथ में उनको बहुत बेतरह से मारा पीटा और उनको जख्मी किया। इसके समर्थन में राहुल जी उतरे, राहुल जी डटे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये युवा राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में परिवर्तन।
10: राजीनामा तो नहीं दे रहे लेकिन आरोप लगा रहे कि लोग पत्थर लेकर के जो है
9: इनका हिसाब जनता मांगेगी, हिसाब चुकाएगी।
11: लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की। आज इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से आपने देखा कि किस तरह से देश के छात्रों ने, देश के युवाओं ने, लाखों लोगों ने अपनी नीट पेपर लीक को लेकर, अपनी मांगों को लेकर मोर्चा निकाला जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक। उनके ऊपर किस तरह से पुलिस ने पथराव किया है, मारा है, छोटी छोटी बच्चियों को मारा है, ये कहां का इंसाफ है, कहां का लोकतंत्र है।
7: प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प भी हुई। कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंच गए, जिसके बाद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई।
12: प्रोटेस्ट मार्च जो है वो अब गांधी भवन यानी कांग्रेस कार्यालय से लेकर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय तक जाने वाला है और हम देख रहे हैं कि यही पर पुलिस ने जो है वो पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखी है। कुछ 100 मीटर के दूरी पर ही यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और भारी तादाद में यहाँ पर जो है पुलिस दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर संघर्ष हो रहा है और मुंबई महाराष्ट्र के कई इलाकों में इसी तरह आंदोलन किए जा रहे हैं, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, अब कांग्रेस के जो नेतागण है और जो कार्यकर्ता है वो भी सड़क पर उतरे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी ने कल दिल्ली में आंदोलन किया था और उन्हें हिरासत में लिया गया था उसका विरोध करते हुए, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और सभी छात्राओं पर जिस तरह से FIR दर्ज की गई है वो भी खारिज की जाए।
7: हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि अहंकार में चूर सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही होगा।
13: भारतीय जनता पार्टी का जो मुंबई महाराष्ट्र की जो इकाई है उस इकाई को उनके दफ्तर जा रही है प्रेम पूर्वक, और उनको भारत का संविधान जो है वो संविधान हमने भेंट देने जा रहे हैं, और हर हाल में इसका संरक्षण और संवर्धन इस देशवासी करते रहेंगे, ये पैगाम भी उसके साथ हमारा है।
7: माहौल बिगड़ता देख मुंबई में सेंट्रल जोन 3 के DCP महेंद्र पंडित ने BJP नेताओं से मुलाकात की, तो कांग्रेस नेता भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग करने पुलिस अधिकारी के पास पहुंचे। वहीं मुंबई में BJP कार्यकर्ता अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए, जहां उन्हें हटाने में पुलिस को पसीना बहाना पड़ा। शिवाजी पार्क में शिवसेना UBT और MNS कार्यकर्ता कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे। यहां मशहूर रैपर रफ्तार ने भी शिवाजी पार्क में चल रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया।
14: मुंबई में दिन भर प्रदर्शन देखने के लिए मिला। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर राहुल गांधी के विरोध में BJP ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद कांग्रेस ने भी एक अपना मोर्चा निकाला और स्टूडेंट्स की जो गिरफ्तारी हो रही है उसका विरोध किया। इस वक्त हम मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में हैं। यहाँ पर एक बार शिवसेना UBT कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर चुकी है। अब ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है हर्षवर्धन सपकाल और शिवसेना UBT चीफ उद्धव ठाकरे के बीच में बातचीत हुई है, 24 तारीख को एक जॉइंट प्रोटेस्ट जो है वो हो सकता है। दोनों ही दल के नेता एक दूसरे से मिलेंगे। आने वाले समय में महाराष्ट्र के DGP से मुलाकात की जाएगी। जिस तरह से बच्चों को अरेस्ट किया जा रहा है उस बारे में कांग्रेस और शिवसेना UBT आगे बात करेगी, और कहीं ना कहीं अब आप कह सकते हैं कि इस जो आंदोलन में अपोजिशन पार्टी सभी तौर पर और स्टेट वाइड और अलग अलग राज्यों में ये यूनिटी बनती हुई दिख रही है।
7: आंदोलनकारी छात्र बड़ी संख्या में MNS चीफ राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ भी पहुंच गए, जिसके बाद राज ठाकरे ने छात्रों को समर्थन देने और पीछे नहीं हटने की अपील की। इस बीच फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भी पेपर लीक के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल छात्रों से कहा कि आंदोलन को हाईजेक ना होने दें।
15: एक दो दिन पहले आपके प्रदर्शन की तस्वीरें देखकर मन व्याकुल भी हुआ और दुखी भी। किसी भी छात्र को अपनी बात कहने के लिए ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहिए। मैं भी कभी छात्र था, मैंने भी सपने देखे, सवाल पूछे, व्यवस्था से असहमति जताई। आज भी मेरे संस्थान में सैकड़ों विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं आपकी बेचैनी, आपका गुस्सा और आपकी उम्मीदें तीनों को समझ सकता हूं।
7: वहीं समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली में हुई हिंसा पर चिंता जताई है। एक बात तो है कि नीट पेपर लीक केस से देश भर में उपजे आक्रोश से विपक्षी इंडिया गठबंधन को संजीवनी मिलती दिख रही है। ऋत्विक भालेकर, मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
0: नीट पेपर लीक केस में छात्र आंदोलन पर फिल्म अभिनेता सलमान खान का भी बयान आया है। बड़ी और अहम खबर यह कि सलमान खान ने कहा है कि आंदोलन के हिंसक होने पर उन्हें दुख है। सलमान खान ने कहा कि उनकी संवेदना घायलों के साथ है। साथ ही साथ सलमान खान ने कहा है कि पेपर लीक बहुत गंभीर मुद्दा है। तमाम बातें एक्सपर्ट उनकी तरफ से लिखेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था लेकिन हिंसक हो उठा, ये वाकई में गंभीर मुद्दा है और आंदोलन के हिंसक होने पर उन्हें दुख पहुंचा है। और एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है नागपुर से। खबर यह है कि नागपुर के संविधान स्क्वायर में नीट पे पल्ली केस में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई है। आक्रोशित छात्र यहां इकट्ठा हुए थे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने जब उन्हें रोका तो लोग ज्यादा हिंसक हो उठे। आखिरकार पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया है और अभी भी इलाके में जबरदस्त तनाव की जानकारी है। तो नागपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि ये जगह है नागपुर के संविधान स्क्वायर की तस्वीरें हैं। नीट पेपर लीक को लेकर ये तमाम छात्र यहाँ एकजुट हुए थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। जोरदार प्रदर्शन उनकी तरफ से जारी था और हिंसक होते हुए देखकर यहां से छात्रों को हटाने का काम जारी है। अभी भी माहौल तनावपूर्ण बताया जा रहा है। पेपरली केस में वंचित बहुजन अघाड़ी ने कल महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ कोचिंग क्लासेस और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से भी बंद का समर्थन करने की मांग की है।
16: मनसे कार्यकर्ता जो जाने जाते हैं अपने आक्रामक रूप पे कहीं पे भी कहीं भी कितनी बार प्रोटेस्ट किया है, लेकिन आज वो आजाद मैदान के अंदर जो एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है प्रोटेस्ट का, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप लोग तो हर जगह कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर लेते हैं, कितने केसेस आप लोग के ऊपर हुए हैं इसकी वजह से?
17: नहीं, कहीं पे भी कर सकते हैं और कहीं पे भी करेंगे। ये तो शुरुआत है। देखिए, जो पत्थर रहता है उसको तोड़ने के लिए आपको एक कम से कम 100 घाव डालने पड़ते हैं, तब पत्थर टूटता है। और पहला घाव हमने आजाद मैदान से डाल दिया।
16: तो और ये आपका टी शर्ट और यहाँ पे लिखा है चला व्यवस्थेला प्रश्न विचारुया, यानी कि आप सवाल पूछना चाहते हैं प्रशासन से। कौन सी प्रशासन?
17: नहीं, प्रशासन से नहीं, व्यवस्था का मतलब है सिस्टम, चाहे वह केंद्र की सिस्टम हो, चाहे राज्य की सिस्टम हो, या चाहे महानगर पालिका की सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज नीट जैसे एग्जाम में पेपर लीक हो गया, सिस्टम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान अपनी जगह पे चिपक के बैठा हुआ है। यहाँ पे मुंबई में पेड़ गिर जाता है स्कूल बस के ऊपर, बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं, एक छोटे से बच्चे की मौत हो जाती है उसमें। सिस्टम में कोई किसी का कोई रिजिग्नेशन नहीं ले रहा है, किसी को कोई सस्पेंड नहीं कर रहे, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। चलते चलते आदमी गटर में गिर जाता है, उसको मालूम ही नहीं गटर ओपन है, सिस्टम में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। इसीलिए सिस्टम को क्वेश्चन करने के लिए आज का ये आंदोलन हमने किया।
16: सिस्टम की अगर हम बात करें तो जहां तक केंद्र में नीट का सवाल है, इन लोग का कहना है, प्रशासन का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि उन्होंने अपनी तरफ से सिस्टम को सुधारने की कोशिश की है, ये पूरा पॉलिटिकल है और इसकी वजह से वो इसको रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहते।
17: देखिए, एक बार गलती होती है, मैं समझ सकता हूँ, ये बार बार गलती हो रही है। पेपर आज पहली बार अगर लीक हुआ रहता तो मैं समझ जाता था, बार बार लीक हो रहा है ना, इसका मतलब सिस्टम में कोई गलत चीज है। ये ईगो है, ये बीजेपी का ईगो है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन नहीं ले रहे, और कुछ नहीं।
16: उनका तो ये भी कहना है कि हमने ऑलरेडी लोगों की गिरफ्तारियां की हैं, हो रही हैं गिरफ्तारियां, पूरा असेसमेंट किया है।
17: आप चर्चा कर सकते थे वो बच्चों के साथ? अभी हमारे घर में अगर कोई बच्चा नाराज हो जाता है, हम पर गुस्सा हो जाता है, तो हम उसको घर में डंडे से पीटते हैं क्या? हम उसके साथ बात करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, वी गिव हिम ए हियरिंग कि क्या बात है। ये बच्चों की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। इतने साल हो गए, हम बोर हो गए मन की बात सुनते सुनते इनकी, फिर भी सुन रहे, तो कभी तो हमारे मन की भी बात सुनो। डेमोक्रेटिकली हम हमारी बात रख रहे हैं, उससे अगर कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तरीके से काम करना पड़ेगा।
16: क्या होगा अंदाज
17: आपको तो मालूम है।
16: तो जिस तरीके से आपने सुना, यहाँ पर एक तरीके से आप कह लीजिए विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर।
0: तो पेपरली केस में वंचित बहुजन अघाड़ी ने कल महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। और आपको ये भी बता दें कि प्रकाश अंबेडकर की तरफ से कहा गया है कि किस तरीके से वो बहुत ही जल्द कोचिंग क्लासेस के साथ साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से भी बंद का समर्थन कर चुके हैं।
18: दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का विरोध आंदोलन चल रहा है, इसी को समर्थन देने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी भी अब मैदान में उतर चुकी है और इसी के तहत कल महाराष्ट्र में बंद वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से पुकारा गया है। हमारे साथ है वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता और सर्वेसर्वा बाला साहेब आम्बेडकर जी। सर, कल आपकी तरफ से भी बंद पुकारा गया है, किस तरीके से बंद होगा और कौन कौन इसमें शामिल होगा?
19: देखिए, विद्यार्थियों का दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, विद्यार्थी कोई आम एमिनेशन लेके नहीं आया है, लेकिन ये सरकार ने जो है टेरिटोरियल आर्मी जो है वो हाई अलर्ट पे रखी हुई है। जम्मू एंड कश्मीर के जो रिजर्व पुलिस फोर्स है उनको एयरलिफ्टिंग करने की बात यहाँ पर हो रही है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सरकार पूरा जो है विद्यार्थियों से डर चुका है। ये डरा हुआ सरकार जो है वो कुछ भी कर सकता है, और इसलिए आम जनता का विद्यार्थियों के साथ में है ये दिखाने के लिए 23 का बंद का कॉल दिया है। महाराष्ट्र की जनता से मैं अपील करता हूं कि ये टेरिटोरियल आर्मी अलर्ट करना या रिजर्व पुलिस फोर्स जम्मू एंड कश्मीर से अलर्ट करना, इसका मतलब यही हुआ कि वो फायरिंग भी वहां पर आदेश दे सकते हैं, और कई बच्चों की जो है विद्यार्थियों की जो है वो जान जोखिम भी जा सकते, ऐसी एक परिस्थिति है। सरकार पर दबाव डालने के लिए कि सरकार के इस रवैये के साथ आम जनता नहीं है ये दिखाने के लिए हम लोग ने जो है बंद पुकारा है। मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र की जनता पूरी तौर से इन विद्यार्थियों के साथ रहेंगे और बंद में पूरी ताकत के साथ शामिल होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।
0: और अब बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात के बारे में, क्योंकि शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से आज मुलाकात की, जिसके बाद इंडिया गठबंधन असहज नजर आया। क्या है पवार का पावर गेम? क्या पवार पाला बदलने की तैयारी में? स्पॉट के जरिए जानें।
20: कई दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में रहे शरद पवार के मन की बात समझना आसान नहीं है। पहले चर्चा आई कि परिसीमन बिल पर एनडीए के समर्थन का संकेत देने वाले पवार सत्ताधारी गठबंधन के पाले में आने वाले हैं। उसके बाद अचानक पवार 21 जुलाई को विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली पहुंच गए। विपक्ष ने राहत की सांस ली ही थी कि आज पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए। कहते हैं कि एक तस्वीर हजारों शब्द से ज्यादा ताकतवर होती है। पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात की ये तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री कैसे शरद पवार का हाथ पकड़कर कमरे में ला रहे हैं। इस दौरान जितनी भी तस्वीरें हैं दोनों लोगों की केमिस्ट्री कुछ खास संकेत दे रही है। इस मुलाकात के दौरान उनकी सांसद बेटी सुप्रिया सुले भी मौजूद रही। जिस वक्त पूरा विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को घेर रहा है, उसी वक्त पीएम और शरद पवार की ये गर्मजोशी वाली मुलाकात विपक्षी गठबंधन को रास नहीं आया।
21: पंतप्रधान ने और गृहमंत्री ने जो देश के युवाओं के साथ दुर्भाग्यपूर्ण जो व्यवहार हुआ है, जिसमें काफी लंबी संख्या में लड़कियों को और महिला को भी बख्शा गया नहीं, उसको लेकर वो माफी मांगे, और उसके साथ ही जो विद्यार्थी है उन पर जो FIR दर्ज है उस सब सिरे से वो खारिज कर दे, ये हमारी दूसरी मांग है। और तीसरी जो है पार्लियामेंट में सच्चाई के साथ तथ्यों के साथ नीट की पेपर की जो लीकेजेस है उसको लेकर चर्चा करें, और इसका जो लीकेज जानबूझ के किया उसको कड़ी से कड़ी सजा देते हुए फुल प्रूफ व्यवस्था बनाने के लिए संसद में चर्चा करें।
20: हालांकि शरद पवार ने दावा किया है कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उनकी चर्चा नीट और छात्रों के मुद्दे को लेकर हुई। पवार ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी के सामने छात्रों का पक्ष रखा, जिसके बाद पीएम मोदी ने इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक और ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया।
12: एक तरफ सड़कों पर विपक्ष का हल्ला बोल, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शरद पवार की मुलाकात। क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाले एक नए भूचाल की आहट? पवार की इस दोहरे रुख की वजह से न सिर्फ इंडिया अलायंस की चिंता बढ़ गई है, बल्कि सियासी अटकलें भी नया मोड़ लेते नजर आ रही है और उन्हें नई हवा भी मिल रही है। अब ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पवार की इस दोहरी नीति के वजह से विपक्ष एकता कमजोर होगी? इसी पर हमारी नजरें टिकी हुई है।
20: जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना UBT और आप समेत कई विपक्षी पार्टियां छात्रों के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हैं, वहीं पीएम मोदी के साथ पवार की अचानक हुई मीटिंग ने इंडिया गठबंधन में बढ़ती दरार के बारे में अटकलें तेज कर दी।
22: क्या आप एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में डंडा था?
6: क्या आप एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसमें जिसके हाथ में पत्थर था या कोई आर्म्स थे? ऐसे निहत्थे अच्छे अच्छे घरों के बच्चों के ऊपर, निहत्थे बच्चों के ऊपर डंडे बरसाना, टीयर गैस के छोड़ना, सर फोड़ना उनके, ये कौन सी जिम्मेदार सरकार है यार? ये तो आतंकी है।
20: जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के हिरासत में लेने के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने भी जंतर मंतर पर पहुंच एकजुटता का संदेश दिया।
4: बच्चों के साथ शिवसेना पहले दिन से है, कल मैं सबको मिलने के लिए आया था और संतोष की बात है या पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन कल ही राहुल जी ने भी आंदोलन किया। अगर हम देखें तो जिस बेरहमी के साथ सरकार इसके साथ पेश आ रही या शुरू कर रही है, कोई प्रजातंत्र का एक्शन नहीं। ये तो अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे।
20: लेकिन नीट, पेपर लीक और राम मंदिर विवाद जैसे मुद्दों पर इस एकजुट मोर्चे के बावजूद शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी केंद्र के आने वाले डीलिमिटेशन बिल का समर्थन करने के लिए तैयार दिख रही है, जिससे प्रकाश अंबेडकर के महाराष्ट्र बंद के आह्वान से पहले विपक्ष की फूट और सामने आ गई।
18: सर, आपके साथ कोई अन्य पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां, वो भी शामिल होंगी? किसी से बात हुई आपकी?
19: नहीं, हमने तो सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी भेजी है और कहा है कि आप इसमें शामिल हो जाइए। जहां तक कल रात को जो है वामपंथी दलों की मीटिंग हुई और उन्होंने कम्युनिकेट किया कि हम आपके साथ में हैं, लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल संगठन है, शिक्षा के अंदर जो ग्रैंटिनेट स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ग्रैंटिनेट स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोचिंग क्लासेस वाले हैं, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन जो है, फिर फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट है, बेस का ट्रांसपोर्ट जो है, ओला उबेर है, टैक्सी है, इन सभी से हम लोग ने बात की और कहा है कि भैया ये जो टेरिटोरियल आर्मी अलर्ट पे जो रखा है उससे दिल्ली में कुछ भी हो सकता है।
0: और चलिए इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: आज देर शाम दिल्ली में जंतर मंतर के पास प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच में फिर से झड़प हुई, जिसमें कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। जंतर मंतर के पास टॉलस्टॉय मार्ग पर भारी मात्रा में प्रदर्शनकारी छात्र मौजूद थे, जिनके साथ पुलिस के जवानों में भी झड़प की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा मंजर हिंसक हो उठा था। तस्वीरों में कई प्रदर्शनकारियों को देखा जा सकता है जिन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया है। हालांकि फिलहाल इस वक्त हालात पूरी तरह से काबू में बताए जा रहे हैं और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो आज की तस्वीर और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बातों के मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है सरकार। नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाया सियासी रोटियां सेकने का आरोप, कावांचों के पत्र का देंगे जवाब। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी, जंतर मंतर के पास पुलिस तो प्रदर्शनकारियों में फिर झड़प। यह संदेश में पूनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की बताई शर्त, का किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्रवाई, अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद रोके गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। और ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी, का अगर हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हुआ हमला तो हम हर वार का एक पुल या पावर प्लांट कर देंगे तबाह।

विरोधी प्रदर्शन को लेकर भारी बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले छात्रों के मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है सरकार, वांगचुक की चिट्ठी का देंगे जवाब। जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, कहा छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा सीजेपी के लोगों ने अपनी बातें लिख कर दी, जब हम कहेंगे चर्चा करने को तैयार। अन्ना हजारे का प्रधानमंत्री को पत्र, कहा छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस की कार्रवाई बेहद ही निंदनीय, मंत्री के इस्तीफे के सरकार नहीं कमजोर होने वाली। सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, अनशन खत्म करने की शर्त रखी, कहा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर संसद में विचार पर आश्वस्त करे केंद्र। गुरुग्राम में सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोका, मेदांता अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे नेता। सोनम वांगचुक का वीडियो संदेश, कहा मैं अभी भी जिंदा हूं, सरकार से बच्चों पर FIR और बल प्रयोग न करने की अपील। वांगचुक ने वीडियो संदेश में कहा यदि सरकार भरोसा जताए तो अनशन आज ही खत्म कर दूंगा। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करके कहा नीट समेत शिक्षा मुद्दों पर चर्चा को सरकार तैयार है, युवाओं की हर जायज चिंता का ध्यान रखा जाएगा। पेपर लीक और राहुल गांधी के धरने के विरोध में कई शहरों में बवाल, दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना, जयपुर तक प्रदर्शन, कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में टॉलस्टॉय मार्ग पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई, सीजेपी समर्थकों से की पत्थरबाजी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, मौके पर हालात काबू में। पटना में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र लाठीचार्ज से भड़के, जमकर पत्थरबाजी, गाड़ियां तोड़ी गई, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नीट प्रोटेस्ट के बीच विजयवाड़ा में भी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। नीट के मुद्दे पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत चार मांगों को लेकर सरकार पर दबाव। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच सीजेपी का बड़ा बयान, का सरकार से बातचीत को हम तैयार हैं लेकिन बातचीत के लिए न्यूट्रल जगह तय होनी चाहिए। राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, काली पट्टी बांधकर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, 21 जुलाई को हुए प्रदर्शन का वीडियो जारी किया गया। राहुल गांधी ने छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, कहा लेकिन सुरक्षा बलों ने बुरी तरह से छात्रों को पीटा। राहुल गांधी बोले पिछले 10 सालों में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हुई, 152 पेपर लीक में कोई सजा नहीं हुई। राहुल बोले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर हुए पूरी तरह से फेल, शिक्षा बजट से ज्यादा नीट पर खर्च करते हैं देशवासी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जायज। सरकार के सामने राहुल गांधी की तीन मांगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, दूसरी मांग छात्रों से बर्बरता करने वालों पर सख्ती होनी चाहिए, बोले छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी से मिले शरद पवार, सुप्रिया सुले एनडीए के साथ जाने की अटकलों को फिर से मिली हवा, तस्वीरों में पवार का हाथ पकड़े हुए नजर आए प्रधानमंत्री, नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर बात। मुंबई में गांधी भवन के बाहर महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में सरकार के खिलाफ लगाए गए नारे। मुंबई के आजाद मैदान में एमएनएस का प्रदर्शन, नीट विवाद में पेड़ों की कटाई को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुंबई में छात्र प्रदर्शन को समर्थन देने चेंबूर पहुंचे पुलिस आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे भी सरकार पर युवाओं की आवाज को दबाने के आरोप लगाए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई फैसले, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। फिलहाल अंतरिम महासचिव बने रहेंगे कृष्ण मोहन, भविष्य में श्रद्धालुओं की संभावित बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सचिव की नियुक्ति को मंजूरी। अयोध्या के पास संतों को सौंपा जाएगा राम मंदिर का पूरा धार्मिक कार्यभार, उनके निर्देशन में ही राम मंदिर का काम पूरा होगा। सोने चांदी के चढ़ावे की मात्रा और शुद्धता जांचने की व्यवस्था लगातार जारी रखने का फैसला, सुरक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी चढ़ावा गिनती कक्ष समेत सभी सीसीटीवी कैमरों की पहुंच। गोरखपुर बूथ सम्मेलन में सीएम योगी पर विपक्ष का हमला, बोले छात्रों को बदनाम करने के लिए एसपी कांग्रेस के गुंडों ने संसद घेरने की कोशिश की। सीएम योगी बोले विपक्ष को ये बदलाव स्वीकार नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी सरकार में प्रदेश में दंगे, कर्फ्यू, लूट खसोट और अराजकता का माहौल था। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी गोरखपुर के पहले 6-लेन फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। कुल 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ 2.65 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, कुल 430 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है यह निर्माण। नोएडा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसेगा एक और नया शहर, यमुना अथॉरिटी ने अपने प्लान में किया है बड़ा बदलाव, करीब 8,000 हेक्टेयर जमीन पर बसाया जाएगा आधुनिक सुविधाओं वाला शहर। प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच जेपीएससी मुख्य परीक्षा की गई स्थगित, 25 से 27 जुलाई तक दो पाली में होनी थी परीक्षा। सूरत की डायमंड ज्वेलरी ने रचा इतिहास, विक्रमन रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजी गई विशेष कमल के आकार की ज्वेलरी। प्रेमानंद महाराज से मिले वृंदावन पहुंचे विराट और अनुष्का, करीब एक घंटे तक एकांत वार्ता, कीचड़ भरे रास्ते पर दोनों ही नंगे पैर चलते हुए नजर आए। पैदल यात्रा मार्ग के जरिए जारी है केदारनाथ यात्रा, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में भक्तों को धाम के लिए रवाना किया गया।
यात्रियों की सुरक्षा के लिए भूस्खलन वाले स्थान पर सुरक्षा जवान तैनात हैं। देर रात से पहाड़ी टूटने के कारण बंद कर दिया गया था मार्ग। अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही है भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे के कारण लिया गया फैसला। जम्मू में लगातार बारिश के चलते चार दिन से वैष्णो देवी यात्रा बंद है, कई यात्री कटरा में फंसे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश, पठानकोट मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ, सड़कों पर पहुंच रहा है पहाड़ी का मलबा। चंबा में भारी बारिश से रावी नदी का उफान, नदी के बीच में फंस गया युवक, रेस्क्यू ऑपरेशन में सीढ़ी के सहारे इस युवक को बचाया गया। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही है बारिश, बीच में दारमा घाटी में भारी भूस्खलन भी हुआ, लाइव वीडियो सामने आया। गुजरात के वलसाड में लगातार हो रही है बारिश, जनजीवन बेहाल, अब तक 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया। भारी बारिश के चलते वलसाड में स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, जिस जिले की 325 से ज्यादा सड़कें भी बंद की गई। वलसाड में भारी बारिश का असर, रेलवे ट्रैक के किनारे जमीन धंसी, रेल सेवा प्रभावित। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। नवसारी में भयंकर बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए, रौद्र रूप नजर आ रही है नदियों के, खतरे के ऊपर बह रही है कावेरी। सूरत में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़ गए हालात, खाड़िया जिले का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन के निचले इलाकों में रह रहे लोगों से घर खाली करने की अपील। दिल्ली के करोल बाग में चार मंजिला इमारत में आग लगी, गोदाम के ऊपर बने हुए अवैध पीजी में फंसी लड़कियों ने छलांग लगाकर जान बचाई, फायर सेफ्टी पर गंभीर सवाल। मसूरी में टला बड़ा हादसा, खाई के ऊपर हवा में लटक गई थी जीप, चालक की सूझबूझ से बची जान। देहरादून के विकास नगर में प्रेम प्रसंग के चलते दिनदहाड़े गोलीबारी, युवक ने कमरे में घुसकर महिला को मारी थी गोली, फिर खुद को भी मार डाला। देहरादून में नर्सिंग भर्ती आंदोलन उग्र, चार आउटसोर्स नर्सों ने पिया फिनाइल, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। लुधियाना में 9वीं के छात्र के टीचर ने पिटाई कर डाली, हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, आरोपी शिक्षक पर केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सर्पदंश मुआवजा घोटाले का खुलासा, 431 मौतों के नाम पर 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की फर्जी पीएम रिपोर्ट बनवाने के मामले में 19 की गिरफ्तारी। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़, एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीन को हैक करके नकदी उड़ाने वाले चार की गिरफ्तारी। सोनीपत में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण बनाया मौत का कारण, गड्ढे में गिरने से ड्यूटी से लौट रहे युवक की मौत हुई। पंजाब के फजिलका में दो पक्षों में जमीनी विवाद में दो लोगों की हत्या हुई, कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने शव को रखकर किया धरना प्रदर्शन। यूपी में नकली दवाओं के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ, अलवर से कई राज्यों में किया जाता था सप्लाई, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेलंगाना में शराबी ने चुराई थी सरकार की बस, 18 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयपुर में तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर, एक्टिवा सवार युवक को टक्कर मारी, मौके पर मौत हुई, हिट एंड रन की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जयपुर में आरटीए की कार्रवाई से नाराज बस मालिक ने खुद को पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की, समय रहते लोगों ने बचाया। अमृतसर में चादर में लिपटा हुआ मिला युवक का शव, सीसीटीवी से खुला राज, नशे की ओवरडोज से मौत के बाद दोस्त ने फेंका शव। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में गार्ड ने किशोर संघ के मारपीट की, पुलिस मेडिकल के लिए लाई थी हॉस्पिटल, डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक ने दिए हैं जांच के आदेश। थाड़े जिले के बदलापुर इलाके में साड़ी नहीं लाने पर पत्नी ने पति की हत्या कर डाली, प्रेशर कुकर के ढक्कन से पीटने के बाद गला घोटा। नागपुर में छत तोड़कर मोबाइल दुकान में घुस गए थे चोर, लाखों के मोबाइल और नकदी को लेकर फरार हुए। वडोदरा में जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकवादियों का खुलासा, होटल सेवेंट क्वार्टर में छुपे हुए थे दो आरोपी, एटीएस टीम ने जांच में जुटी। गुजरात के भावनगर में अवैध मदरसा चलाने के आरोप में मौलाना गिरफ्तार, पुलिस की कट्टरपंथी विचारधारा वाली किताबें बरामद करने का भी दावा। तमिलनाडु के तिरुपुर में जननायकन की टी शर्ट की भारी डिमांड है, एक्टर और मुख्यमंत्री विजय के फैंस में जबरदस्त क्रेज। आज रिलीज हो रही है फिल्म जननायकन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार सी जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म है। विजय की फिल्म ने रिलीज होने से पहले शानदार कमाई की, फिल्म ने अब तक 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, बिके 6 लाख से ज्यादा टिकट। बिग बॉस 20 का नया आई लोगो आउट हुआ है, बिग बॉस 20 में सलमान खान का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया।

ओटीटी पर दस्तक देगी फूलन की कहानी। अनुराग ठाकुर, विक्रम प्रताप सिंह, आकाश दहिया, प्रतीक पचौरी और देवदत्त बुधोलिया भी अहम किरदार में नजर आएंगे। आज से शुरू होगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज। आयरलैंड और इंग्लैंड से टी20 सीरीज हारने के बाद अहम सीरीज है। जिम्बाब्वे से हरारे में खेला जाएगा पहला मुकाबला। भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा मैच। आईसीसी ने टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग का किया ऐलान। ईशान किशन नंबर 1 के पायदान पर बरकरार हैं। ईशान के अलावा अभिषेक और तिलक वर्मा भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं। अभिषेक नंबर 2 पर, तिलक नंबर 8 की पोजीशन पर। पहली बार काउंटी क्रिकेट खेलते हुए नजर आए भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप ने यॉर्कशायर के साथ किया है करार। कम सप्लाई, फेस्टिव डिमांड और रुपए की कमजोरी से एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस में 15 रुपए प्रति किलो तक की तेजी आई है। मूंगफली, सोयाबीन और सरसों तेल सबसे ज्यादा महंगे। गोल्डन सेक्स ने यूएस ईरान टेंशन बढ़ने पर कच्चे तेल के दाम $120 पर बैरल तक जाने की चेतावनी दी है। क्रूड महंगा होने पर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लिए करीब 74,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिलहाल 20% से ज्यादा एथेनॉल मिलाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया। मई के मुकाबले जून में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स की संख्या में 12% की कमी आई है। बीते महीने मार्केट शेयर के मामले में इंडिगो और अकासा की हिस्सेदारी बढ़ी। मारुति सुजुकी ने अपने सभी मॉडल्स के प्राइसेस अगस्त में 30,000 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से 2 महीने में दूसरी बार प्राइसेस बढ़ाए गए। ईरानी सेना ने पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर किया बड़ा हमला। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बनाया गया निशाना। IRGC ने कहा अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, रडार फैसिलिटी, कमांड सेंटर्स पर हमला किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी का। हॉर्मुज में ईरान ने किसी जहाज पर हमला किया तो अमेरिका एक पुल या बिजली संयंत्र को कर देगा नष्ट। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। कहा ईरान की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता हुई है कमजोर। अमेरिका हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों की जारी रखेगा सुरक्षा। पाकिस्तानी सरकार ने फिर से फैसला फैलाया अमेरिका के सामने हाथ। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन से मांगे $10 अरब। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। कहा तेल संकट के बावजूद रूसी अर्थव्यवस्था स्थिर है। गुरुवार को भी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच मुलाकात। लावरोव ने कहा बैठक पर बनी है सहमति। दक्षिणी चीन सागर में चीन की बढ़ती हुई दादागिरी पर बोली ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग। का दक्षिण चीन सागर में कुछ गतिविधियां अस्थिरता और जोखिम बढ़ा रही हैं। रूस के स्वावरोपोल क्षेत्र में मौजूद ऑनलाइन कंपनी वाइल्ड बेरीज के एक गोदाम में यूक्रेनी सेना पर का भीषण हमला, कई लोगों के घायल होने की खबर। दक्षिणी पूर्वी फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग, कई इलाके तबाह हुए। 2,500 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर खाक हुए। 300 से 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपेज में तेज तूफान और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। तेज हवाओं की वजह से घरों से निकलना मुश्किल है।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम बागचू के बारे में भी बताएंगे, जिन्होंने सरकार से आश्वासन मिलने पर भूख हड़ताल खत्म करने के संकेत दिए हैं। फिलहाल वो मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां दिन भर गहमा गहमी बनी रही। आज शाम आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता सोनम बागचू से मिलने मेदांता पहुंचे, लेकिन पुलिस ने अनुमति न होने के कारण उन्हें रोक दिया। इससे पहले सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अस्पताल जाकर उनसे करीब एक घंटे तक मुलाकात की। सोनम बागचू की तरफ से जारी वीडियो संदेश में उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार युवाओं के खिलाफ कार्रवाई ना करने का आश्वासन देती है तो वो अपना अनशन समाप्त कर सकते हैं। आज आपको दिल्ली की सड़कों से आई दो तस्वीरों के बारे में भी बताएंगे, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन का रुख बदल दिया। एक तस्वीर 21 जुलाई की है, जब संसद मार्ग और कनॉट प्लेस के पास भीड़ ने आरएएफ की गाड़ी पर पथराव किया और जवानों के साथ धक्का मुक्की हुई। दूसरी

0: कश्मीर को लेकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारा। आपने देखा होगा हमारे समाज में भी अलग अलग लोग अपनी अपनी राय सोशल मीडिया के जरिए हर प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं, तो इसीलिए आज ये जरूरी है कि दोनों पक्षों की तस्वीर को देखा जाए और हम यही करेंगे। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जबकि सीजेपी का कहना है कि हिंसक घटनाओं में शामिल लोग प्रदर्शनकारी नहीं थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज की सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आई। जंतर मंतर पर आंदोलन का समर्थन करने के ठीक एक दिन बाद शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंच गए। आज आपको बताएंगे कि क्या सोनम वांगचुक की शर्तें मानकर सरकार इस अनशन को समाप्त कराएगी या दिल्ली की सड़कों पर यह गतिरोध यूं ही बना रहेगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अपना एक नया वीडियो जारी किया है और 25 दिनों से जारी अपनी भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए सरकार के सामने उन्होंने एक बड़ी शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि वो इसी शर्त पर अपने अनशन को खत्म करेंगे जब सरकार उन्हें यह आश्वासन दे कि वो प्रदर्शनकारी छात्रों पर ताकत और बल का इस्तेमाल नहीं करेगी और 20 और 21 जुलाई को हुए उपद्रव के मामलों में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई या बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो पहले उनका ये वीडियो संदेश सुनिए।
1: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
0: तो याद रखिए, सोनम वांगचुक अब भी अपना अनशन जारी रखे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ संकेत इस वीडियो के जरिए जरूर दिए हैं। एक ओपन लेटर भी उन्होंने लिखी है और उसमें ये साफ लिखा है कि एक तो जो परिवारों को क्षति पहुंची है उनको मुआवजा मिले, दूसरा कोई भी बल और ताकत का प्रयोग प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ ना किया जाए, वहीं तीसरी तरफ वो इस पूरी व्यवस्था में देश की संसद में चर्चा हो कि क्या किया जाएगा, ये शर्त भी रख रहे हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये कहा है कि सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने जो बात रखी उसका जल्द जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी गंभीर हैं और सरकार इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार है।
2: तो उनका हालचाल पूछने गए, उनका वो उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से हम वो मेदांता में पहुंचे, तो एक तो वो ICU में थे तो वहां पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है, लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के बच्चों को सही डायरेक्शन की तरफ आप ले जाए, हमारे सरकार सारी विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए खुली है और वो हमेशा उसको एड्रेस करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे और जवाब देकर के वार्ता आगे बढ़े इसकी हम चिंता करें। आप स्टूडेंट्स के विषयों को डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इस मोड़ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यह समय यह नहीं है कि हम हमारी सरकारें, आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीजों को विभाजित करें। यह गंभीर मसला है और जैसा मैंने आपके सामने कुछ नाम गिनाए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें UPA की सरकारें इन्वॉल्व हैं जहां पेपर लीक हुआ है, लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय ना हो। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है।
0: और इससे पहले आज सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मेदांता हॉस्पिटल जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी। और हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा के मुताबिक ये मुलाकात करीब एक घंटे चली, जिसके बाद सोनम वांगचुक की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई और इसमें जो बातें लिखी हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। और यहां आपको यह भी देखना होगा कि क्यों सरकार के लिए सोनम वांगचुक के साथ बातचीत का रास्ता खोलना जरूरी है। तो इस चिट्ठी में सोनम वांगचुक ने क्या क्या लिखा है, सबसे पहले ये चिट्ठी आपको दिखा देते हैं जो ओपन लेटर उनका है। उन्होंने सीधे इस लेटर को एड्रेस किया है न सिर्फ जेपी नड्डा को, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ये चिट्ठी एड्रेस किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। दोनों मंत्री उनसे मिलने गए थे और नीचे उनका हस्ताक्षर है। और जो बड़ी मांगे वो रख रहे हैं वो आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग रात में हॉस्पिटल मिलने आए, आपने जो अपील की है कि मैं अपना अनशन तोड़ूं उसके लिए मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन हमारे डिस्कशन के दौरान आपने मुझे ये आश्वासन दिया है कि आप दो बातों को पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे, यानी आप सकारात्मक रूप से इन दो बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले जो जरूरी हो ऐसा कॉम्पनसेशन दिया जाए, यानी मुआवजे की बात वो कर रहे हैं ऐसे परिवारों को, ऐसे जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है, इनमें आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देना, नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा करना, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार करने की मांग शामिल है। तो ये पूरी उनकी चिट्ठी है। फिर उन्होंने चलो संसद ये जो पूरा मार्च हुआ है इसी चिट्ठी में ये भी लिखा है कि सोनम वांगचुक इसी शर्त पर अपने अनशन को समाप्त कर सकते हैं जब सरकार ईमानदारी से उन्हें यह आश्वासन दे कि इस आंदोलन में शामिल किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई भी कानूनी या बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अपने वीडियो में भी उन्होंने यही बात कही है, तो मैंने आपको पढ़कर पूरी ये चिट्ठी सुना दी है जिसमें वो साफ साफ लिख रहे हैं कि चलो संसद मार्च जो हुआ है 2026-20 जुलाई को वो शांतिपूर्ण था, लेकिन कई बार पुलिस ने ज्यादतियां की हैं प्रदर्शनकारियों पर। वो लिख रहे हैं कि बहुत सारी उन पर हमला हुआ है। इसी के साथ वो लिख रहे हैं कि पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से एक लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट हुआ है और उस पर अट्रोसिटीज यानी उस पर आघात हुआ है। इसी के साथ वो लिख रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर विश्वास है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास है वो अडिग रहे। लीगल केस, हैरेसमेंट और इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई, इन सब से सरकार बचेगी। कुल मिलाकर इस पूरी चिट्ठी के जरिए सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र का भविष्य और जो आने वाले दिनों में किस तरह से ये पूरा मुद्दा ये मामला आगे बढ़ता है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार क्या रुख अपनाती है और क्या वो उनकी शर्तों को मानती है। यहां आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये पूरा विरोध प्रदर्शन इसलिए ज्यादा छात्रों और युवाओं तक पहुंचा क्योंकि इसमें सोनम वांगचुक जुड़े हुए थे। और इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि जब सोनम वांगचुक लगातार अपने अनशन पर बैठे रहे, 28 जून से लगातार अपने अनशन को जारी रखा, तब लोगों ने उनके संघर्ष को देखा और फिर पूरे देश में लोगों ने उनका समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों की धीरे धीरे वहां पर भीड़ बढ़ने लगी और एक बहुत बड़े हिस्से ने सोशल मीडिया के जरिए सोनम वांगचुक के समर्थन में वीडियोस बनाए और इस सब का असर हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। सोनम वांगचुक अपने अनशन के साथ इस आंदोलन को खत्म करने का आग्रह कर देते हैं तो ये विरोध प्रदर्शन खत्म होने का भी आसार बन सकता है, क्योंकि उनकी बात पर लोग भरोसा कर रहे हैं, खास तौर पर जो प्रदर्शनकारी या फिर जो समर्थक हैं इस आंदोलन के। इसके अलावा आज शाम को आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के 5 सांसद सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन अनुमति ना होने के कारण पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी और इसके बाद वहां काफी हंगामा हुआ। इन विपक्षी नेताओं ने धरना देने की भी कोशिश की, लेकिन आखिर में इन्हें सोनम वांगचुक से बिना मिले ही वापस गुरुग्राम से दिल्ली लौटना पड़ा। हालांकि दावा है कि इन विपक्षी सांसदों ने अपनी चिट्ठी सोनम वांगचुक की पत्नी को, जो कि उनसे मिलने बाहर आई, उनको सौंप दी। और ये वही चिट्ठी है जिस पर विपक्ष के कुल 55 सांसदों ने हस्ताक्षर करके ये अपील की थी कि सोनम बांगचुक को अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन ये चिट्ठी अभी सोनम बांगचुक तक क्या पहुंच पाई है, देखिए।
3: सुनो, आप एमपी हो गए, खा भी नहीं होंगे। हाँ, मैं भी एमपी हूँ। पता है क्या नतीजा होगा इसका? पता है नहीं पता है?
4: भाई हमारी रिक्वेस्ट इज यू प्लीज टॉक टू द एमएस। एमएस ने कहा है अमित जी प्रायोरिटी क्या मेडिकल वाइज को पैसे नहीं चाहिए। हां जी पहचानते हैं आप, कर रहे थे नहीं थे। अपना प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं लेकिन अपना आमरण अनशन समाप्त कर लें क्योंकि उनका जीवन इस देश के लिए, युवाओं के लिए, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
5: अरे भाई आप नोबडी कैन डिपेंड अस।
4: क्या दिक्कत क्या? नहीं अभी आप लोगों को परमिशन
5: नहीं है। आप पार्टी में लिखित में किस बात की परमिशन?
6: एक बार आप होल्ड कीजिए, आप रुकिए।
5: वी डोंट गो बैक। सीपीएल
7: पचपन एमपीज ने साइन किया है, 55 सांसदों ने साइन किया है ये पत्र। और ये साइन करके हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम बांगचुक जी को?
0: और अब इन दो तस्वीरों की बात करना चाहते हैं जिनमें पहली तस्वीर 21 जुलाई यानी कल रात की है। आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर हमला किया और सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर पत्थर फेंके। यह घटना 20 जुलाई की हिंसा से अलग है और दिल्ली पुलिस का यह आरोप है उसने इस हिंसा के खिलाफ भी एक नई एफआईआर दर्ज की है। दूसरी तस्वीर 20 जुलाई की है जब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने संसद तक मार्च निकालने की कोशिश की थी और पार्टी का आरोप है कि उस दिन कई छात्रों के साथ पुलिस ने मारपीट की। और आरोप के साथ साथ तस्वीरें भी है, तस्वीरें भी हर कोई देख रहा है। इनमें भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला प्रदर्शनकारी को बिना किसी कारण के थप्पड़ मारा। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने इसका एक वीडियो भी जारी किया जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं और अब यह मामला इन दो तस्वीरों में बटा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जंतर मंतर या उसके आसपास के इलाकों में पहुंच रहे हैं वो पुलिस पर हमले कर रहे हैं, उनकी तरफ से हिंसा की जा रही है। जबकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मारपीट और हिंसा दिल्ली पुलिस की तरफ से हो रही है और जो छात्र अपनी वाजिब मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना भी चाहते हैं उन्हें पुलिस की तरफ से जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यहां सबसे अहम यह है कि जो उपद्रव 20 जुलाई को थमता हुआ दिख रहा था वो दिल्ली पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई यानी कल रात को भी जारी रहा। क्या हुआ? आज सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि कल रात को दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स पर हमला क्यों हुआ और क्या हमला करने वाले लोगों को बिना जांच के प्रदर्शनकारी मान लेना सही होगा? क्योंकि यहां पर मामला समझिए, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन कहां चल रहा है? जंतर मंतर पर। हिंसा और उपद्रव की घटनाएं कहां हो रही हैं? दूसरे इलाके में। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी शुरुआत कल शाम 6 बजे से हुई। पुलिस का कहना है कि संसद मार्ग और कनॉट प्लेस में शाम से ही लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। शुरुआत में पुलिस ने यही माना कि ये लोग कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में इकट्ठा हो रहे हैं लेकिन पुलिस का आरोप है कि धीरे धीरे ये भीड़ संसद मार्ग से संवेदनशील इलाकों खासकर संसद भवन की तरफ बढ़ने लगी। ये भी आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके जिनकी उस वक्त पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा गया कि भीड़ संसद मार्ग के इलाके से पीछे हट जाए लेकिन ये भीड़ ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई। हमारे पास उस वक्त का एक वीडियो है जिससे आप इस पूरी स्थिति को समझ पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने जब तक उपद्रव करने वाले इन लोगों को प्रदर्शनकारी अभी तक नहीं माना है। पुलिस यही कह रही है कि वो इन लोगों की जांच करेगी कि आखिर ये कौन थे और कहां से आए थे। इसका एक कारण यह भी है कि कल कॉकरोच जनता पार्टी ने इस तरह के किसी विरोध प्रदर्शन का कोई ऐलान किया नहीं था, लेकिन फिर भी जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन से अलग संसद मार्ग और कनॉट प्लेस के इलाकों में लगातार भीड़ बढ़ रही थी। इनमें भी कई लोगों को यह कहते हुए सुना गया कि 20 जुलाई को पुलिस ने उन्हें पीटा था, अब इन लोगों की बारी। इन्हीं नारों के बीच जब रैपिड एक्शन फोर्स की एक गाड़ी खाना और दूसरा सामान लेकर वहां से गुजर रही थी, तब सबसे पहला हमला आरोपों के मुताबिक उसी पर हुआ। इसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान इस गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे, उन्हें भीड़ ने घेर कर जमीन पर गिरा दिया। और हम आपको इस वक्त जितनी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं उनकी पुष्टि हो चुकी है, आप खुद देख सकते हैं कि कल रात क्या हुआ है। एक बार फिर ये बात कहनी जरूरी है कि ना पुलिस ने ना किसी ने ये दावा किया है कि वही प्रदर्शनकारी हैं जो अपना आंदोलन जंतर मंतर पर कर रहे हैं, और अभी भी इनकी पहचान होनी जरूरी है कि आखिर ये लोग अचानक से जो यहां पर आए और जिन्होंने हमला किया वो कौन से लोग थे। रैपिड एक्शन फोर्स के जिन जवानों पर यह हमला हुआ वो फोर्स केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और इस पर हुए हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक नई FIR अब दर्ज की है। यहां हम आपको ये बात भी याद दिलाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये उपद्रव हमला किया उन्हें प्रदर्शनकारी छात्र मानना बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर आप देखें तो ये छात्र नीट के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जंतर मंतर पर बैठे हैं, जबकि ये घटनाएं कनॉट प्लेस, संसद मार्ग, इनके आसपास हुई है। अभी पुलिस जांच कर रही है और मुमकिन है कि पहचान हो जाए। आप कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को भी सुन सकते हैं, जिन्होंने कल रात खुद बताया कि जो लोग जंतर मंतर के बाहर जाकर उपद्रव कर रहे हैं उनका इस विरोध प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए।
8: हेलो एवरीवन, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहा है, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ अगर आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना है तो जंतर मंतर आइए। यहाँ पर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और हम कहीं से भी कोई गलत चीज या गलत नारे नहीं करेंगे, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं और इसका उदाहरण कल हमने दे दिया है। कल हमने लाठियां खाली सर फुड़वा लिया हमारे सपोर्टर्स ने, लेकिन कहीं से भी अपने तरफ से कोई गलत हरकत नहीं करी है, और जो लोग ऐसी हरकत करेंगे वो कभी भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। हमारा और उनका कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर से भेजे गए गुंडे हैं इस मूवमेंट को डीरेल करने। थैंक यू।
0: अभिजीत दीपके के इस बयान से ये स्पष्ट है कि कॉकरोच जनता पार्टी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर हमला करने वाले लोगों को प्रदर्शनकारी छात्र नहीं मान रही है, और खुद पुलिस ने भी ऐसा नहीं कहा है। कई हिंसक घटनाओं में ऐसा हुआ है जब बाहरी लोगों ने शामिल होकर शांति को भंग करने की कोशिश की है। अभी इंतजार करना होगा। और यहां भी अगर आप इस आंदोलन को देखेंगे तो इसमें कल जो हमले हुए उनमें लगातार पुलिसकर्मियों जवानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे। कुछ लोग इस उपद्रव के वक्त ये कहते हुए भी देखे गए कि दिल्ली में नेपाल ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। देखिए
9: तो भाई, कल पुलिस वालों ने हम पे लाठी चार्ज की, आज हम पुलिस वाले को चार्ज कर रहे हैं, और ये देखो पुलिस वाले सब वैन में बैठ बैठ के भाग रहे हैं यहाँ से, और कई वैन यहाँ से भगा दिए मार मार के सबने। तो स्थिति का मैं दिखा रहा हूँ आपको, भाई नेपाल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है,
10: सब भागे पुलिस वाले भागे।
9: भाई ये स्थिति में देख सकते हो आप किस तरीके से क्या हो रहा है, पूरी पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में।
10: भाई मैं हूँ अभी सीपी में और यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक लोग ने पुलिस वाले को मार मार के भगा दिया यहाँ से मार मार के। गाइस
9: ये देखो भाई, ये देखो पूरा रोड जाम कर दिया गया बैरिकेड से, यहाँ पे पूरा बैरिकेड से घेरे हुआ था, एंड अभी यहाँ पे सब देख सकते हो कैसे किस तरीके से जाम कर रहे हैं, पूरा गेट बैरिकेड हटा रहे यहाँ से। देख सकते हो पुलिस तैयारी कर रही है मारने के लिए, यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी।
0: बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी है कि जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स को क्यों तैनात किया गया और ये रैपिड एक्शन फोर्स होती क्या है। रैपिड एक्शन फोर्स दिल्ली पुलिस की नहीं बल्कि सीआरपीएफ की एक विशेष टुकड़ी है। सीआरपीएफ का मतलब है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल। इसकी जो स्थापना अक्टूबर 1992 में हुई थी और इस फोर्स का काम है दंगे हो, सांप्रदायिक हिंसा हो, उसको रोकना, वहीं पर इनकी तैनाती होती है। बड़े विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी होती है। इसे जीरो रिस्पांस फोर्स भी कहा जाता है क्योंकि इसे किसी भी संकट की स्थिति में बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है, तो बहुत कम टाइम में उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। अभी इस फोर्स में कुल 15 बटालियन है। इनका नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल स्तर के अधिकारी करते हैं और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अब तक दिल्ली में जब भी कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है, 2020 में जब दिल्ली के दंगे हुए, जब जब आतंकी हमलों का अलर्ट आया, इसी फोर्स को हमेशा सड़कों पर पुलिस के साथ उतारा गया। और ये रैपिड एक्शन फोर्स तीन प्रमुख हिस्सों में बटी होती है। इनमें पहला है रायट कंट्रोल, यानी भीड़ और दंगों को नियंत्रित करना। दूसरा है टियर स्मोक एलिमेंट, यानी आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल कर हिंसक भीड़ को तितर बितर करना। और तीसरा है फायर एलिमेंट, यानी आगजनी जैसी घटनाओं से तुरंत निपटना और उन्हें काबू करना। अब तक रैपिड एक्शन फोर्स का लगभग सभी सरकारों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी इस फोर्स की तैनाती को लेकर कई सवाल उठा रही है। प्रदर्शनकारी भी इस पर नाराजगी जता रहे हैं। अभिजीत तिपके ने रैपिड एक्शन फोर्स का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला है जिसमें कुछ जवान 19 जुलाई को टियर गैस की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए,
11: तैयारी चल रही है।
0: कॉकरोच जनता पार्टी दो और गंभीर आरोप लगा रही है। पहला आरोप यह है कि जिन प्रदर्शनकारियों का दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज हुआ, उनके बारे में अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि अस्पताल पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए जो प्रदर्शनकारी है उनकी संख्या को आखिर क्यों छिपाना चाहता है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक और आरोप है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने 20 जुलाई के प्रदर्शन में एक महिला को बिना किसी कारण के थप्पड़ मारा था और प्रदर्शनकारियों ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। यह इसलिए अहम है क्योंकि अब तक दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि इस उपद्रव में एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा खुद पथराव में घायल हुए, लेकिन अब इस वीडियो के आधार पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की थी।
12: कोशिश कर रहे थे कि बैरिकेड को पुलिस के जो को तोड़ कागज रहे थे, तो वो जा नहीं पा रहे थे, पीछे से पथरा हुआ और उनमें से एक बड़ा था साइड में था, पुल था और कीचड़ का भरा हुआ था, वो मुझे घुटने में लगा और घुटने में लगने से कुछ मेरी पैंट भी फट गई, कुछ हिस्से में हिस्से में पूरा साइड था और काफी चोट और क्रैक आया।
0: तो आगे बढ़ते हैं और आपको अगली खबर दिखाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि एक और खबर जो बीते दिन से काफी चर्चा हुई, पार्थ गोयल नाम के यूट्यूबर की। तो ये पूरा जो मामला है यूट्यूबर पार्थ गोयल का है, उनके आरोप भी शामिल हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस के जवान 20 जुलाई की घटना में लाठियों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने नया वीडियो जारी करके ये बताया है कि इस यूट्यूबर ने पहले उन पर पेपर स्प्रे छिड़का और बाद में ये कार्रवाई हुई। दोनों का अपना अपना पक्ष है, देखिए।
11: विजय जी ये क्या हुआ, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें
13: अरविंद जी की क्या हुआ था, मैं टिकट पे था जो पटेल चौक से संसद मार गए ना, तो उस पे स्टाफ जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का मेरी पोस्टिंग आज में है, तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ जो है तो वहाँ पहले टिकट थी हमारी, काफी देर तो उनको रोकते रहे फिर पीछे से कुछ लोग और आ गए, तो उसके बाद इन्होंने भी धक्का मुक्की शुरू कर दी, बैरिकेड गिरा दिए, हमारी लेडी कांस्टेबल और एक एएसआई को भी चोट लगी उसमें। तो एक जब मैं उधर से पीछे से थोड़ा सा आगे आके उनको समझा रहा हूँ, बैरिकेड गिरा रहे थे वो आगे पीछे गिराने के लिए, तो मैं उनको समझाया भाई आप डंडे से इशारा करके, मैंने कहा आप पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो, इस तरह कर रहा था। ऑल ऑफ सडन एक आदमी ने स्प्रे मुझे मेरे पर फेंका, मतलब स्पेशली पहले एक हेड कांस्टेबल था मेरे बगल में उनकी तरफ फेंका, फिर जो ही मैं पहुंचा हूँ तो स्पेशली मुझे टारगेट करके स्प्रे फेंका, वो लकीली थोड़ा सा गर्दन पे रह गया, गर्दन पे ना जलन हुई काफी देर, चेहरे पे जलन हुई, लकीली आंखें बच गई उसकी मेरी, अदरवाइज ज्यादा नुकसान हो जाता, तो आंखें बच गई, तो फिर काफी देर जलन होती रही, फिर कुछ लड़कों ने उसको जो है उठा लिया था वहां।
0: इधर दिल्ली पुलिस ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें 20 जुलाई के उपद्रव में भीड़ ने एक पुलिसकर्मी पर हमला किया था। जुलाई को हुए उपद्रव के बाद दिल्ली पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है। आज सुबह दिल्ली मेट्रो ने यह बताया कि उसने जंतर मंतर के आसपास अपने सभी 16 स्टेशन्स को बंद कर दिया था। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो ये सारे मेट्रो स्टेशन जंतर मंतर के 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में हैं। इनमें भी लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, इंडिया गेट और आईटीओ का मेट्रो स्टेशन प्रमुख है। दिल्ली मेट्रो ने अब तक ये नहीं बताया था कि उसने इन मेट्रो स्टेशन को क्यों बंद किया, लेकिन इसके पीछे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हुए उपद्रव को बड़ी वजह माना जा रहा था। कुछ लोगों ने मेट्रो स्टेशन के बाहर जमा होकर इसके खिलाफ नाराजगी भी आज जताई, और इसी के बाद आज शाम को ये सभी मेट्रो स्टेशन वापस खोल दिए गए। और इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी ने यह दावा भी किया कि 20 और 21 जुलाई के मुकाबले आज जंतर मंतर पर ज्यादा भीड़ थी। देखिए

0: hacerlo.
1: इस भीड़ को देखते हुए पश्चिम बंगाल में तैनात सीआरपीएफ की अतिरिक्त 20 टुकड़ियों को दिल्ली भेजा जा रहा है और ये सुरक्षा कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और संसद के मानसून सत्र को लेकर बढ़ाई जा रही है। इस सबके बीच कॉकरोच जनता पार्टी ये दावा भी कर रही है कि केंद्र सरकार ने आज बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा था जिसे उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि अब उनकी पार्टी अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत तभी करेगी जब सरकार खुद जंतर मंतर पर आएगी और इस बातचीत के लिए गंभीर होगी। सुनिए,
2: आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया, उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी, लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं।
1: अब इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर सरकार को क्यों बुलाना चाहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि 20 जुलाई को ही बातचीत में सरकार ने उनके नेताओं का जानबूझकर समय बर्बाद किया। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है कि 20 जुलाई को सुबह 11:45 पर पहली बार यह सहमति बनी कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने जाएंगे। 12 बजे सौरभ दास, आशुतोष रांका जेपी नड्डा के सरकारी आवास पर पहुंच चुके थे। हालांकि इस दौरान खुद जेपी नड्डा संसद में मौजूद थे। वो दोपहर 12:30 पहली बार संसद से अपने सरकारी आवास के लिए रवाना हुए और दोपहर 2 उनकी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से मुलाकात हुई। ये पहली मुलाकात थी जिसमें दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों नेता अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन लेकर आए नहीं थे। इसके बाद दूसरी मुलाकात 4:15 पर हुई और इस मुलाकात में उन्होंने जेपी नड्डा को बाकायदा एक लिखित ज्ञापन सौंपा। और जब यह मुलाकात हो गई तब इसके अगले दिन अभिजीत दीपके ने यह आरोप लगाया कि जेपी नड्डा ने जानबूझकर नेताओं का समय बर्बाद किया और उन्हें बाहर बैठा कर रखा गया ताकि उनके नेता संसद जो मार्च है उसमें शामिल ना हो सके। और इसी वजह से अब अभिजीत दीपके ये शर्त रख रहे हैं कि अगर सरकार को बातचीत करनी है तो सरकार को यानी किसी मंत्री को खुद जंतर मंतर आना होगा। हालांकि सरकार इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है और यह भी औपचारिक रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है कि आज सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा था या नहीं भेजा था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी यह दावा जरूर कर रही है। दूसरी बड़ी खबर शरद पवार को लेकर है और हम चाहेंगे कि इस खबर को भी आप बहुत ध्यान से देखें। आज शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की जिसमें पार्टी सांसद सुप्रिया सुले भी शामिल। ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे कुछ घंटे पहले 21 जुलाई को यही शरद पवार जंतर मंतर पहुंचे थे और वहां उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का समर्थन किया था और अभिजीत दीपके से मुलाकात की थी। अगर आप इन दोनों तस्वीरों को साथ देखेंगे तो आपके मन में भी यह सवाल आएगा कि क्या शरद पवार कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार दोनों से मिल रहे हैं, तो क्या वो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। आज तक के लिए इस पर स्टोरी लिखने वाले हमारे रिपोर्टर ऋत्विक अरुण भालेकर का यह कहना है कि परिसीमन बिल के मुद्दे पर सरकार के पक्ष में दिखने वाले शरद पवार इस विरोध प्रदर्शन में क्या मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकते हैं, ऐसा हमारे सहयोगी हमारे रिपोर्टर ऋत्विक भालेकर का दावा है। ये बात अहम होगा क्योंकि शरद पवार अब तक विपक्षी खेमा के नेता माने गए हैं, लेकिन अब सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के साथ आज उनकी शिष्टाचार मुलाकात ने एक नई चर्चा छेड़ दी है। हालांकि इसमें एक बड़ा तर्क यह भी है कि जब जेपी नड्डा लगातार खुद ही कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं तो क्या सरकार को वाकई किसी अन्य मध्यस्थ की जरूरत है, ऐसा प्रतीत बिल्कुल नहीं होता है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 86 साल के शरद पवार संतुलित राजनीति के लिए जाने जाते हैं। जब साल 2017 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, वहां किसान आंदोलन चल रहा था, तब विपक्ष में रहते हुए शरद पवार ने पर्दे के पीछे से आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच में कोशिश की थी कि एक बातचीत हो, सुलह निकले और माना जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। खैर, ये तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन आज हम अपने छात्रों की बात भी करना चाहते हैं, उन लाखों करोड़ों छात्रों की जिन्होंने पेपर लीक की बेईमानी पर एक बड़ा मानसिक आघात झेला है। क्या आप जानते हैं कि पेपर लीक की बेईमानी रुकती क्यों नहीं है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ऐसे मामलों में पेपर लीक के ज्यादातर आरोपी जमानत पर बाहर आ जाते हैं और अदालतों में कई सालों के बाद भी इन मामलों पर अंतिम फैसला आ ही नहीं पाता। उदाहरण के लिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि साल 2002 से 2025 के बीच ऐसी 45 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए जिनमें हर परीक्षा में कम से कम 1,00,000 छात्र शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि इन 45 मामलों में सिर्फ 2 मामलों में दोषियों को सजा मिली है, वरना बाकी सारे के सारे छूट गए। यानी बाकी मामलों में या तो सालों से अदालतों में ये केसेस लंबित हैं या जांच ठंडे बस्ते में चली गई है। आपको याद होगा एक वक्त वो था जब निर्भया कांड के बाद जनता सड़कों पर निकली थी और सबने यही महसूस किया कि जो दोषी होते हैं उनको सजा ही नहीं मिलती, कन्विक्शन रेट इतना लो है रेप केसेस में। और उसके बाद यह फैसला किया गया कि कानून को सख्त करना होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हियरिंग करनी होगी और जल्द से जल्द अंजाम तक ऐसे केसेस को पहुंचाना होगा, कन्विक्शन करना होगा, जो दोषी हैं उन्हें दोषी करार देकर सजा मिलनी चाहिए। और आज एक बार फिर वही मामला उठ रहा है, इसीलिए हमें लगा कि इस कानूनी एंगल को उठाना बहुत जरूरी है। आखिर ये जो पेपर लीक करने वाला पूरा माफिया है ये कैसे छूट जाता है? और ये भी तब हुआ है जब पेपर लीक की इन घटनाओं से 3,46,00,000 छात्र प्रभावित हुए। और ये कोई छोटा आंकड़ा है, ये संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन सोचिए फिर भी पेपर लीक के मामलों में गिरफ्तार हुए 1,678 लोगों में से सिर्फ 18 यानी बहुत कम लोगों को दोषी मानकर सजा दी गई है। बाकी आरोपी जमानत पर छूट गए, उनके खिलाफ सही से जांच नहीं हुई। सोचिए इन परीक्षाओं के पेपर लीक के कारण कई छात्रों की नौकरी, कॉलेज में प्रवेश और करियर सालों तक प्रभावित रहा। और जिन बेईमानों ने ये पेपर लीक कराया उनमें 90% से ज्यादा आसानी से बाहर घूमते रहे। आखिर क्या सिस्टम है ये? और ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जो आरोपी पेपर लीक के मामलों में जेल से छूटकर बाहर आए उन्होंने फिर से दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक कराए। आपने सही सुना है, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे लोगों में 2 आरोपी तो आज विधायक बनकर बैठे हैं। इनमें पहले विधायक का नाम बेदी राम, ये उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं जो अभी बीजेपी सरकार का समर्थन करती है। बेदी राम के चुनावी हलफनामे में लिखा है कि उनके खिलाफ कुल 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 8 आपराधिक मामले पेपर लीक के हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पेपर लीक के ये मामले एक ही राज्य के हैं। विधायक बेदी राम पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, आरोपों के मुताबिक इन 2 राज्यों में पेपर लीक कराए। और बड़ी बात यह है कि विधायक साहब जब एक बार पेपर लीक के मामले में जमानत पर छूट कर बाहर आ गए तो उन पर फिर से दूसरी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने का फिर से आरोप लगा। 2006, फिर 2008, फिर 2009, फिर 2010 और फिर 2014 में कुल 8 परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले बेदी राम के खिलाफ दर्ज हुए। लेकिन आज यही बेदी राम उत्तर प्रदेश के लॉ मेकर यानी माननीय विधायक हैं। दूसरे विधायक हैं विपुल दुबे, जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक हैं। आरोप है कि इन विधायक साहब ने भी 2006 में रेलवे भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराया था, जिसके लिए उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा। लेकिन आप सोचिए पेपर लीक के यही आरोपी विधायक लॉ मेकर बने हुए, कानून बनाने वाले। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि विपुल दुबे ने 2006 में पेपर लीक कराया था, लेकिन जो आरोप है उनके मुताबिक, लेकिन आज भी उनके मामले में अदालत का फैसला आया नहीं है। तो आरोप ये कहता है कि कब उन्होंने आरोपों के मुताबिक पेपर लीक कराया, लेकिन आज तक फैसला नहीं आया। और 2024 में तो इनके खिलाफ सिर्फ आरोप ही दर्ज किए गए हैं। वैसे ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। महाराष्ट्र में पेपर लीक के आरोपी विजेंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के आरोपी राजीव नयन मिश्रा, रवि अत्री और बिहार में पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया कई बार पेपर लीक के आरोपों में गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर जमानत पर बाहर आए और बाद में कई और पेपर लीक को अंजाम देने का आरोप लग गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, बात हमारी सरकारों, हमारे सिस्टम, हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी इन्वेस्टिगेशन सब पर है। अगर पेपर लीक के मामलों में इंसाफ नहीं होगा, गिरफ्तार किए गए आरोपी जमानत पर बाहर आएंगे और बाहर आकर दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक कराते रहेंगे, तो ये समस्या खत्म होने के संकेत है। हमारे देश में ऐसे मुद्दों को लेकर हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि पेपर लीक सभी पार्टियों की सरकारों में हुए और कोई पार्टी रोक नहीं पाई। अगर केंद्र स्तर पर बात करें तो बीजेपी और एनडीए की सरकारों में 67% पेपर लीक हुए, यूपीए की सरकारों में 20% पेपर लीक के मामले आए, 13% बाकी सरकारों में। यानी ये समस्या मौजूदा सरकार में बढ़ी है और इसीलिए सरकार को यह सोचना ही होगा कि वो कैसे बच्चों को पेपर लीक के इस कैंसर से बचाएगी। हम इसे कैंसर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक ये बीमारी हमारी सरकारों और सिस्टम ने लाइलाज बनाकर रखी हुई है। खैर, पेपर लीक, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों के वीडियो चलाए और कहा कि सुरक्षा बलों ने छात्रों को बुरी तरह पीटा। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भ्रष्ट, पूरी तरह फेल बताया, उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए ऐसा कहा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामने आने, परेशान छात्रों से माफी मांगने, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने के दौरान हुए हंगामे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले उन्हें थोड़ा घसीट कर ले गए, लेकिन वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाओ।
0: सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में वो कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए, हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो कर रहे हैं, बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए, और तारीफ अगर हद से ज्यादा हो रही हो तो समझ लेना कि छुरी में धार लगाई जा रही है। नमस्कार।

0: छात्रों के प्रदर्शन और मांग पर एक तरफ सरकार की दलील तो दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क, सियासत पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस अड़ चुकी है। राहुल गांधी ने मौजूदा समय में देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार के सामने तीन मांगे रखी हैं, जिन्हें वो छात्रों की मांगे बता रहे हैं और शिक्षा मंत्री से लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं।
1: छात्रों पर लाठीचार्ज, विपक्ष और सरकार में सीधा टकराव, सड़क से संसद तक पेपर लीक और शिक्षा मंत्री पर संग्राम, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष सरकार पर सवार। पहले पीएम आवास के पास धरना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से घेराव, शिक्षा व्यवस्था पर राहुल के सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। मॉनसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से उठे तूफान ने सियासत में बड़ा उफान ला दिया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन पर लाठीचार्ज हुआ, अब पूरी सियासत इसी पर घूम गई है। पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद संसद में चर्चा।
2: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन।
3: ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं।
4: क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
5: चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।
6: इससे क्या हो सकता है?
1: संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की भेंट चढ़ जाता है। और फिर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले वो अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद राहुल गांधी पेपर लीक और इस वक्त देश की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं। पिछले 10 सालों में पेपर लीक का आंकड़ा पेश करते हैं।
7: कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। 152 बार पिछले 10 साल में भी ये बताया गया है। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है।
1: और फिर राहुल गांधी देश में शिक्षा का बजट बताते हैं और नीट के एग्जाम पर खर्च से उसकी तुलना करते हैं। साथ ही ये भी पूछते हैं कि पेपर लीक के मामले में किसी को सजा क्यों नहीं मिली।
7: स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, यह अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं सरकार, पूरे देश से टैक्स लेती है और फिर कहती है, देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे, और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। This is an insult to every single student in this country. This is an insult to every single family in this country.
1: राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों की तीन मांगों का दावा किया और वो तीन मांगे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो, पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे।
7: धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए, स्टूडेंट्स की पहली मांग है इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इंटरेक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
1: राहुल गांधी ने तीन शर्तों में सबसे ऊपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को रखा तो उनसे सवाल हुआ कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारे मामले का हल निकल जाएगा। साथ ही राहुल गांधी से ये सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन क्यों किया। राहुल गांधी ने जवाब में जो कहा वो आप भी सुनिए।
7: इसके दो कारण है, हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और हमने स्पीकर से कहा देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, कोई डिस्कशन नहीं। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड, दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड एंड दैट इज व्हाई वी वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस यस्टरडे टू सपोर्ट दिस डिमांड।
1: आपको बता दें कि 21 जुलाई को कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर पीएम आवास के पास धरना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को धरने से उठाकर हिरासत में ले लिया गया।
8: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलेट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए।
1: और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरने को लेकर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच खींचतान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने एक तंज वाले अंदाज में इसका जवाब दिया।
7: सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए।
1: राहुल गांधी की पावर पॉइंट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को रोजगार और एजुकेशन सिस्टम पर घेरा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा आधार यही रहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो उसके बाद कोई चर्चा, और छात्रों पर लाठी चार्ज क्यों हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी के इन आरोपों और प्रहारों पर सरकार ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक छात्रों को लेकर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सरकार चाहती है कि पेपर लीक पर संसद में चर्चा हो।
9: व्हाई आर यू सो सिलेक्टिव, आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की, क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा। यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए।
0: पिछले 25 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया है। सोनम ने कहा है कि अनशन को 25 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक जिंदा हूं। कुछ सांसद मुझसे मिलने आए, उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने की उन्होंने अपील की। वांगचुक ने कहा कि मुझे अगर सरकार की तरफ से भरोसा मिले तो मैं आज ही अनशन खत्म करने के लिए तैयार हूं, बस सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करे।
1: सोनम वांगचुक की नई चिट्ठी में क्या क्या मांगे की गई? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वांगचुक ने स्टैंड क्लियर कर दिया। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच क्या कोई बातचीत हुई है? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सोनम वांगचुक का क्या संदेश है? 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक अनशन कब तोड़ेंगे?
10: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
1: नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की कड़ी 3 जगह से जुड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या मांग कर रहा है? सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड ही क्लियर करते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत वहीं से हुई है। ऐसे में जंतर मंतर पर धरना दे रही CJP ने फिर से वही बात दोहराई है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक जंतर मंतर खाली नहीं होगा।
11: सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती हमें जंतर मंतर से हिलना है,
1: क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक हैं और 25 दिन से उनका अनशन जारी।

0: के मुताबिक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी विचार का आश्वासन मिला है। ये सब तो विचार की बात है, पर चिट्ठी में नीचे वांगचुक लिखते हैं, बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन ना हो, सरकार भरोसा दे तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं।
1: सारे MPs ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं। ये सारे MPs के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े? और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है कि जब तक वो फास्ट MPs के कहने पर और भारत सरकार के उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली, ना फिजिकली, ना FIR, ना कुछ भी। उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो चुकी हैं और उन्होंने फिर भी इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और जो कह रहे हैं कि बच्चों ने स्टोन फेंके, ये फेंके, ये उन्हीं के लोग थे जो इन्होंने अंदर डाले हुए थे, जो ये सब इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे।
0: अब सवाल है कि अगर छात्रों पर एक्शन न होने देने का भरोसा सरकार दे दे तो क्या वांछु का अनशन खत्म हो सकता है? आपको बता दें कि विपक्ष के नेता भी 60 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी लेकर सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोनम अनशन खत्म करें।
2: समाजवादी पार्टी इस पक्ष में तभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए। और ये सरकार तो ऐसी है कि अब बताओ, मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो? बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप?
3: हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को?
4: साजिश कर रहे हैं।
3: ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू ना कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहाँ ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं, इस प्रकार की तानाशाही है।
0: CJP ने भी कहा है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दें, बाकी वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक धरने पर डटे रहेंगे।
5: मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये अश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो।
0: इस बीच सरकार कह रही है कि देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थ का हथियार नहीं बनना चाहिए, जबकि CJP के प्रवक्ता अपनी मांगों का ज्ञापन JP नड्डा को पहले ही सौंप चुके हैं। सरकार ने हल निकालने का भरोसा दिया है। आज तक ब्यूरो।
6: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे CJP के प्रदर्शन को लेकर संसद में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है।
7: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन।
8: पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।
9: ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, BJP का नहीं है।
0: जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्र डटे हुए हैं। मांग यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और एजुकेशन सिस्टम में जरूरी बदलाव किए जाएं। जब तक सरकार CJP की मांगे पूरी नहीं करती तब तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र अब तक हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस इन्हीं मांगों को मुद्दा बनाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है।
10: सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है।

0: फैसला करने वाली सरकार है और यह जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है, ये इनका रवैया है।
1: विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्ष पात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्ष पात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए।
3: कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की शर्त यही है कि इस मुद्दे पर चर्चा तभी होगी जब केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देंगे, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष से पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा शुरू करने की अपील की।
4: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है।
3: सीजेपी के धरना प्रदर्शन को लेकर संसद सियासी संग्राम का अखाड़ा बनी हुई है। सरकार की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। यही सड़क से संसद तक गतिरोध की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पेपर लीक और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज पर संसद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले चर्चा के लिए तैयार हैं।
5: ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें?
6: आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज।
5: नहीं आपने समझौता क्यों कर लिया फिर?
6: हम लोग का बात भी सुनिए
5: अखिलेश जी। नहीं छात्र नौजवान क्या केवल
6: अखिलेश जी, एक मिनट।
5: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं सुनते, नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?
3: अखिलेश यही चाहते हैं कि देश की संसद से छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान हुए लाठीचार्ज का सच पूरी दुनिया सुने। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री का आरोप है कि छात्रों की आड़ में विपक्ष सियासी रोटियां सेकने में जुटा है। अगर नौजवानों के मुद्दे से विपक्ष का सरोकार होता तो संसद में चर्चा से भागते नहीं।
7: युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे।
3: संसद से सड़क तक प्रदर्शन को लेकर सियासी पारा हाई है तो आरोप प्रत्यारोप में भी कोई पीछे नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में तू-तू मैं-मैं जारी है।
8: प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए, आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे? और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं, फिर हम मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा, आप ही की उद्दंडता से चलेगा?
9: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है।
3: बड़ी बात यह है कि सीजेपी ने लंबे आंदोलन की तैयारी कर रखी है, यानी जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना खत्म नहीं होगा। यही वजह है कि सीजेपी ने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है।
10: वायलेंस का कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है, इस प्रोटेस्ट में भी कोई जगह नहीं है वायलेंस का। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनसे अपील है कि ऐसा ना करें, पुलिस वालों के साथ आप एग्रेशन मत दिखाइए, जो हमारा मुद्दा है उससे मत भटकिए, क्योंकि अगर आप ये वायलेंस वगैरह करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे, तो फिर हमारा नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा, स्टोरी कुछ अलग बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग सब जीते, ये डिमांड्स जीते, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए, ये गांधी का लैंड है। हमेशा याद रखिए कि हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल से ही आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे।
3: अब सवाल यही है कि सरकार, विपक्ष और सीजेपी अपनी अपनी शर्तों पर अडिग हैं, तो संसद में जारी गतिरोध कैसे टूटेगा?
11: लड़ाई युवाओं की जंतर मंतर तक क्यों पहुंची है, क्यों धरना प्रदर्शन आंदोलन की नौबत आ जाती है, इसकी वजह राज्य दर राज्य बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में जहां ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती 4 साल से अटकी है, भर्ती निकलने से लेकर अब तक चरण दर चरण उसे लटकाया जा रहा है।
12: हाथ में बैनर, कंधे पर केवल एक बैग नहीं बल्कि सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद टांगे, ये वो बेरोजगार युवा हैं जो थक चुके हैं प्रदर्शन करते करते। 2023 में निकली भर्ती में 2026 आधा बीत जाने के बाद भी नियुक्ति न मिल पाने के बाद हताश होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर के बाहर गुहार लगाने पहुँचे हैं।
13: ग्राम पंचायत अधिकारी की यह भर्ती, आप अगर पदों की बात करेंगे तो 1468 यानी कि 1450 के ऊपर ये पद हैं, 200-300 के ऊपर ये लड़के लड़कियां यहाँ खड़े हैं। सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको आवाज दिखाई पड़ेगा, डिप्टी सीएम की चौखट पर इसलिए इनको आना पड़ा है क्योंकि पंचायती राज मंत्री के यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है, या जो डिपार्टमेंट है वो इनकी नहीं सुन पाया है। अग्नि सेवा चयन आयोग के दफ्तर भी कई बार जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। थक हार कर डिप्टी सीएम से उनको आस है कि डिप्टी सीएम उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाए और मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर उनकी आवाज पहुंचे।
14: इसमें बच्चे सहारनपुर से, बांदा से, झांसी, कुशीनगर, मतलब पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हुए हैं।
15: हम कई बार आ चुके हैं लेकिन हम लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज कभी नहीं मिलती है। भर्ती तो 2023 में ही आई थी 22 के पेट से, फिर 2 साल तक संघर्ष हुआ एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट के लिए हुआ।
16: 7000 रुपए महीने घर से मांग के और घर से बाहर अपने हाथों से रोटी बना के हम लोग रहते हैं।
12: ये वो बेरोजगार है जिनकी भर्ती ओम प्रकाश राजभर के विभाग से जुड़ी। राजभर तो दिन भर सियासी बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पार्टी में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कराने की चिंता में जुटे रहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी नौकरी के लिए परेशान युवाओं को न्याय नहीं दिला पाते।
17: घर वाले क्या कहते हैं, मतलब आप लोग?
18: घर वालों को कहा हमने कि हमारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल से ज्यादा हो गया। घर वाले कहते कब सिलेक्शन होगा, अब तो पड़ोसी भी विश्वास नहीं करते कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या किया जाए। आयोग से बहुत परेशान है, प्रताड़ित है। अब महोबा से आते पहले ट्रेन बदलो बांदा, बांदा से फिर कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ, 3 बार ट्रेन बदलो जब लखनऊ आ पाओ, अब क्या किया जाएगा।
12: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तभी इन बेरोजगारों से मिलने पहुंचते।
19: मेरे भाई है, मैं अभी बात करूंगा और रिजल्ट बाबू जल्दी घोषित कराएं, घबराओ नहीं, अभी करा दो, अभी अभी
20: सर सर सर।
19: ए बच्चों को मिठाई तो खिलाया।
13: तो ज्ञापन ले लिया है, ये ज्ञापन की कॉपीज हैं, डिप्टी सीएम साथ में हैं और यहाँ पर जो है उनसे समझ रहे हैं कि, और आयोग से बात करने के लिए कहा है। अब उनके प्रतिनिधि जो है वो आयोग को फोन मिला रहे।
12: आज तक के कैमरे के सामने ही उप मुख्यमंत्री ने यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े अफसरों को फोन मिलाकर 2023 की ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी भर्ती पर सवाल किया और आश्वासन दिया है।
19: ग्राम पंचायत अधिकारी वाला रिजल्ट नहीं निकला है और 9 महीना हो गया है, बच्चे हमारे पास आए हैं, बहुत दुखी हैं, इनकी मदद करके जल्दी जल्दी निकाल दो, ये मेरे भाई हैं सर। कब तक निकलेगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, निकाल देना भैया, ये हमारे बच्चे हैं, बहुत दिन से परेशान है, निकाल देना भैया। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा है, अभी 2 रिजल्ट निकल रहे, तीसरे तुम्हारा नंबर है, ये मान चलो 1-1.5 महीने में रिजल्ट निकल जाएगी, और घबराना नहीं तुम।
13: आज तक लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और अगले 1.5 महीने बाद अगर भर्ती पूर्ण नहीं होती है तो आज तक एक बार फिर डिप्टी सीएम की चौखट पर पहुंचेगा, एक बार फिर अभ्यर्थियों की आवाज बनेगा और एक बार फिर इन भर्तियों के खिलाफ खबरदार करेगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
11: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: सरकार नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाया सियासी रोटियां सेकने का आरोप, कावांचो के पत्रकार देंगे जवाब। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी, जंतर मंतर के पास पुलिस तो प्रदर्शनकारियों में फिर झड़प। यह संदेश में सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की बताई शर्त, का किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्रवाई, अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद रोके गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। और ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी, का अगर हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हुआ हमला तो हम हर वार का एक पुल या पावर प्लांट कर देंगे तबाह। छात्रों के प्रदर्शन और मांग पर एक तरफ सरकार की दलील तो दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क, सियासत पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस अड़ चुकी है। राहुल गांधी ने मौजूदा समय में देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार के सामने तीन मांगे रखी है जिन्हें वो छात्रों की मांगे बता रहे हैं और शिक्षा मंत्री से लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं।
1: छात्रों पर लाठीचार्ज, विपक्ष और सरकार में सीधा टकराव, सड़क से संसद तक पेपर लीक और शिक्षा मंत्री पर संग्राम, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष सरकार पर सवाल। पहले पीएम आवास के पास धरना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से घेराव, शिक्षा व्यवस्था पर राहुल के सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। मॉनसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से उठे तूफान ने सियासत में बड़ा उफान ला दिया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन पर लाठीचार्ज हुआ, अब पूरी सियासत इसी पर घूम गई है। पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद संसद में चर्चा।
2: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन।
3: ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं।
4: क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
5: चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।
6: इससे रेस क्या हो सकता है?
1: संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की भेंट चढ़ जाता है। और फिर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले वो अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद राहुल गांधी पेपर लीक और इस वक्त देश की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं। पिछले 10 सालों में पेपर लीक का आंकड़ा पेश करते हैं।
7: कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। 152 बार पिछले 10 साल में भी यह बताया गया है। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है।
1: और फिर राहुल गांधी देश में शिक्षा का बजट बताते हैं और नीट के एग्जाम पर खर्च से उसकी तुलना करते हैं। साथ ही ये भी पूछते हैं कि पेपर लीक के मामले में किसी को सजा क्यों नहीं मिली।
7: ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन दिस कंट्री, दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल फैमिली इन दिस कंट्री।
1: राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों की तीन मांगों का दावा किया और वो तीन मांगे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो, पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे।
7: धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए, स्टूडेंट्स की पहली मांग है इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इंटरैक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
1: राहुल गांधी ने तीन शर्तों में सबसे ऊपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को रखा तो उनसे सवाल हुआ कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारे मामले का हल निकल जाएगा। साथ ही राहुल गांधी से ये सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन क्यों किया। राहुल गांधी ने जवाब में जो कहा वो आप भी सुनिए।
7: इसके दो कारण है, हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और हमने स्पीकर से कहा देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, कोई डिस्कशन नहीं। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड, दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड एंड दैट इज व्हाई वी वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस यस्टरडे टू सपोर्ट दिस डिमांड।
1: आपको बता दें कि 21 जुलाई को कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर पीएम आवास के पास धरना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को धरने से उठाकर हिरासत में ले लिया गया।
8: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए।
1: और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरने को लेकर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच खींचतान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने एक तंज वाले अंदाज में इसका जवाब दिया।
7: सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए।
1: राहुल गांधी की पावर पॉइंट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को रोजगार और एजुकेशन सिस्टम पर घेरा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा आधार यही रहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद कोई चर्चा और छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी के इन आरोपों और प्रहारों पर सरकार ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक छात्रों को लेकर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सरकार चाहती है कि पेपर लीक पर संसद में चर्चा हो।
9: व्हाई आर यू सो सिलेक्टिव आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए।
0: पिछले 25 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया है। सोनम ने कहा है कि अनशन को 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जिंदा हूं। कुछ सांसद मुझसे मिलने आए, उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने की उन्होंने अपील की। वांगचुक ने कहा कि मुझे अगर सरकार की तरफ से भरोसा मिले तो मैं आज ही अनशन खत्म करने के लिए तैयार हूं, बस सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करे।
1: सोनम वांगचुक की नई चिट्ठी में क्या क्या मांगे की गई? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वांगचुक ने स्टैंड क्लियर कर दिया। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच क्या कोई बातचीत हुई है? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सोनम वांगचुक का क्या संदेश है? 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक अनशन कब तोड़ेंगे?
10: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
1: नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की कड़ी 3 जगह से जुड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या मांग कर रहा है? सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड ही क्लियर करते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत वहीं से हुई है। ऐसे में जंतर मंतर पर धरना दे रही CJP ने फिर से वही बात दोहराई है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक जंतर मंतर हारी नहीं होगा।
11: सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती है, जंतर मंतर से हिलना है।
1: क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक हैं और 25 दिन से उनका अनशन जारी है। ऐसे में गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार के 2 मंत्रियों से हुई बातचीत पर वांगचुक ने लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार का आश्वासन उन्हें दिया गया है। वांगचुक के मुताबिक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी विचार का आश्वासन मिला है। ये सब तो विचार की बात है, पर चिट्ठी में नीचे वांगचुक लिखते हैं, बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न हो, सरकार भरोसा दे तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं।
12: सारे एमपी ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं। ये सारे एमपी के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े? और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है कि जब तक वो फास्ट एमपी के कहने पर और भारत सरकार के उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली ना फिजिकली ना एफआईआर ना कुछ भी। उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो चुकी हैं और उन्होंने फिर भी इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और जो कह रहे हैं कि बच्चों ने स्टोन फेंके, ये उन्हीं के लोग थे जो इन्होंने अंदर डाले हुए थे, जो ये सब इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे।
1: अब सवाल है कि अगर छात्रों पर एक्शन न होने देने का भरोसा सरकार दे दे तो क्या बांचू का अनशन खत्म हो सकता है? आपको बता दें कि विपक्ष के नेता भी 60 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी लेकर सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोनम अनशन खत्म करें।
13: समाजवादी पार्टी इस पक्ष में तभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए। और ये सरकार तो ऐसी है कि अब बताओ, मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो?
14: नड्डा जी घर में
13: बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप?
15: हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को?
16: साजिश कर रहे हैं।
15: ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू ना कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहाँ ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं, इस प्रकार की तानाशाही है।
1: सीजेपी ने भी कहा है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दें, बाकी वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक धरने पर डटे रहेंगे।
17: मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये अश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो।
1: इस बीच सरकार कह रही है कि देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थ का हथियार नहीं बनना चाहिए, जबकि सीजेपी के प्रवक्ता अपनी मांगों का ज्ञापन जेपी नड्डा को पहले ही सौंप चुके हैं। सरकार ने हल निकालने का भरोसा दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर संसद में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है।
2: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन।
18: पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।
19: ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है।
1: जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्र डटे हुए हैं। मांग यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और एजुकेशन सिस्टम में जरूरी बदलाव किए जाए। जब तक सरकार सीजेपी की मांगे पूरी नहीं करती तब तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र अब तक हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस इन्हीं मांगों को मुद्दा बनाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है।
20: सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, ना ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है।
14: ये इनका रवैया है।
21: विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए।
14: धन्यवाद।
21: जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्ष पात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्ष पात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाओ।
1: कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की शर्त यही है कि इस मुद्दे पर चर्चा तभी होगी जब केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देंगे, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष से पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा शुरू करने की अपील की।
22: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है।
1: सीजेपी के धरना प्रदर्शन को लेकर संसद सियासी संग्राम का अखाड़ा बनी हुई है। सरकार की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। यही सड़क से संसद तक गतिरोध की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पेपर लीक और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज पर संसद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले चर्चा के लिए तैयार हैं।
23: ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें?
24: आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज।
23: नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर?
24: हम लोग का बात भी सुनिए
23: अखिलेश जी। नहीं छात्र नौजवान क्या केवल?
24: अखिलेश जी एक मिनट।
23: नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाहर ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?
1: अखिलेश यही चाहते हैं कि देश की संसद से छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान हुए लाठीचार्ज का सच पूरी दुनिया सुने। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री का आरोप है कि छात्रों की आड़ में विपक्ष सियासी रोटियां सेकने में जुटा है। अगर नौजवानों के मुद्दे से विपक्ष का सरोकार होता तो संसद में चर्चा से भागते नहीं।
25: युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वो मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे।
1: संसद से सड़क तक प्रदर्शन को लेकर सियासी पारा हाई है तो आरोप प्रत्यारोप में भी कोई पीछे नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में तू-तू मैं-मैं जारी है।
26: प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए, आप इस तरह से करेंगे? जबरदस्ती बैठ जाएंगे? और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर मुकर गए कि मेरी मर्जी, ये क्या देश आप ही कारण चलेगा, आप ही की उद्दंडता से चलेगा?
3: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है।
1: बड़ी बात यह है कि सीजेपी ने लंबे आंदोलन की तैयारी कर रखी है, यानी जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना खत्म नहीं होगा। यही वजह है कि सीजेपी ने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है।
4: वायलेंस का कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है, इस प्रोटेस्ट में भी कोई जगह नहीं है वायलेंस का। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनसे अपील है कि ऐसा ना करें। पुलिस वालों के साथ आप एग्रेशन मत दिखाइए, जो हमारा मुद्दा है उससे मत भटकिए, क्योंकि अगर आप ये वायलेंस वगैरह करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे, तो फिर हमारा नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा, स्टोरी कुछ अलग बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग सब जीते, ये डिमांड्स जीते, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए। ये गांधी का लैंड है, हमेशा याद रखिए कि हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल से ही आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे।
1: अब सवाल यही है कि सरकार, विपक्ष और सीजेपी अपनी अपनी शर्तों पर अडिग हैं, तो संसद में जारी गतिरोध कैसे टूटेगा?
0: लड़ाई युवाओं की जंतर मंतर तक क्यों पहुंची है, क्यों धरना प्रदर्शन आंदोलन की नौबत आ जाती है, इसकी वजह राज्य दर राज्य बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में जहां ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती 4 साल से अटकी है, भर्ती निकलने से लेकर अब तक चरण दर चरण उसे लटकाया जा रहा है।
5: हाथ में बैनर, कंधे पर केवल एक बैग नहीं बल्कि सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद टांगे, ये वो बेरोजगार युवा हैं जो थक चुके हैं प्रदर्शन करते करते। 2023 में निकली भर्ती में 2026 आधा बीत जाने के बाद भी नियुक्ति न मिल पाने के बाद हताश होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर के बाहर गुहार लगाने पहुंचे हैं।
6: ग्राम पंचायत अधिकारी की यह भर्ती, आप अगर पदों की बात करेंगे तो 1468 यानी कि 1450 के ऊपर ये पद हैं, 200-300 के ऊपर ये लड़के लड़कियां यहाँ खड़े हैं। सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको आवाज दिखाई पड़ेगा। डिप्टी सीएम की चौखट पर इसलिए इनको आना पड़ा है क्योंकि पंचायती राज मंत्री के यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है, या जो डिपार्टमेंट है वो इनकी नहीं सुन पाया है। अग्नि सेवा चयन आयोग के दफ्तर भी कई बार जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। थक हार कर डिप्टी सीएम से उनको आस है कि डिप्टी सीएम उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर उनकी आवाज पहुंचे।
7: इसमें बच्चे सहारनपुर से, बांदा से, झांसी, कुशीनगर, मतलब पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हुए हैं।
8: हम कई बार आ चुके हैं लेकिन हम लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज कभी नहीं मिलती है। भर्ती तो 2023 में ही आई थी 22 के पेट से, फिर 2 साल तक संघर्ष हुआ एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट के लिए हुआ।
9: 7,000 रुपए महीने घर से मांग के और घर से बाहर अपने हाथों से रोटी बना के हम लोग रहते हैं।
5: ये वो बेरोजगार हैं जिनकी भर्ती ओम प्रकाश राजभर के विभाग से जुड़ी है। राजभर तो दिन भर सियासी बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पार्टी में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कराने की चिंता में जुटे रहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी नौकरी के लिए परेशान युवाओं को न्याय नहीं दिला पाते।
26: घर वाले क्या कहते हैं, मतलब आप लोग?
27: घर वालों को कहा हमने कि हमारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल से ज्यादा हो गया। घर वाले कहते कब सिलेक्शन होगा, अब तो पड़ोसी भी विश्वास नहीं करते कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या किया जाए। आयोग से बहुत परेशान है, प्रताड़ित है। अब महोबा से आते पहले ट्रेन बदलो बांदा, बांदा से फिर कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ, 3 बार ट्रेन बदलो जब लखनऊ आ पाओ, अब क्या किया जाए।
5: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तभी इन बेरोजगारों से मिलने पहुंचते हैं।
28: मेरे भाई है, मैं अभी बात करूंगा और रिजल्ट बाबू जल्दी घोषित कराएं, घबराओ नहीं, अभी करा अभी
29: अभी सर सर सर
28: ए बच्चों को मिठाई तो खिलाओ यार।
6: तो ज्ञापन ले लिया है, ये ज्ञापन की कॉपीज हैं, डिप्टी सीएम साथ में हैं और यहाँ पर जो है उनसे समझ रहे हैं कि, और आयोग से बात करने के लिए कहा है। अब उनके प्रतिनिधि जो है वो आयोग को फोन मिला रहे।
5: आज तक के कैमरे के सामने ही उप मुख्यमंत्री ने यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े अफसरों को फोन मिलाकर 2023 की ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी भर्ती पर सवाल किया और आश्वासन दिया है।
2: ग्राम पंचायत अधिकारी वाला रिजल्ट नहीं निकला है और 9 महीना हो गया है। बच्चे हमारे पास आए हैं, बहुत दुखी हैं, इनकी मदद करके जल्दी जल्दी निकाल दो। ये मेरे भाई हैं सर। कब तक निकलेगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, निकाल देना भैया, ये हमारे बच्चे हैं, बहुत दिन से परेशान है, निकाल देना भैया। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा है, अभी 2 रिजल्ट निकले, तीसरे तुम्हारा नंबर है, ये मान चलो महीना 1.5 महीने में रिजल्ट निकल जाएगी, और घबराना नहीं तुम।
10: आज तक लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और अगले 1.5 महीने बाद अगर भर्ती पूर्ण नहीं होती है तो आज तक एक बार फिर डिप्टी सीएम के चौखट पर पहुंचेगा, एक बार फिर अभ्यर्थियों की आवाज बनेगा और एक बार फिर इन भर्तियों के खिलाफ खबरदार करेगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: के मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है सरकार। नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाया सियासी रोटियां सेकने का आरोप, कावांचों के पत्रकार देंगे जवाब। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी, जंतर मंतर के पास पुलिस तो प्रदर्शनकारियों में फिर झड़प। यह संदेश में पूनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की बताई शर्त, का किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्रवाई, अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद रोके गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। और ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी का, अगर हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हुआ हमला तो हम हर वार का एक पुल या पावर प्लांट कर देंगे तबाह। छात्रों के प्रदर्शन और मांग पर एक तरफ सरकार की दलील तो दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क, सियासत पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस अड़ चुकी है। राहुल गांधी ने मौजूदा समय में देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार के सामने तीन मांगे रखी है जिन्हें वो छात्रों की मांगे बता रहे हैं और शिक्षा मंत्री से लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं।
1: छात्रों पर लाठीचार्ज, विपक्ष और सरकार में सीधा टकराव, सड़क से संसद तक पेपर लीक और शिक्षा मंत्री पर संग्राम, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष सरकार पर सवाल। पहले पीएम आवास के पास धरना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से घेराव, शिक्षा व्यवस्था पर राहुल के सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। मॉनसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से उठे तूफान ने सियासत में बड़ा उफान ला दिया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन पर लाठीचार्ज हुआ, अब पूरी सियासत इसी पर घूम गई है। पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद संसद में चर्चा।
2: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन।
3: ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं।
4: क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
5: चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।
6: इससे क्या हो सकता है?
1: संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की भेंट चढ़ जाता है। और फिर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले वो अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद राहुल गांधी पेपर लीक और इस वक्त देश की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं, पिछले 10 सालों में पेपर लीक का आंकड़ा पेश करते हैं।
7: कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास है, 50 लाख रुपए जिनके पास है, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। 152 बार पिछले 10 साल में भी यह बताया गया है, 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है।
1: और फिर राहुल गांधी देश में शिक्षा का बजट बताते हैं और नीट के एग्जाम पर खर्च से उसकी तुलना करते हैं, साथ ही ये भी पूछते हैं कि पेपर लीक के मामले में किसी को सजा क्यों नहीं मिली।
7: स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे। और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन दिस कंट्री, दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल फैमिली इन दिस कंट्री।
1: राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों की तीन मांगों का दावा किया और वो तीन मांगे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो, पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे।
7: धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए, स्टूडेंट्स की पहली मांग है इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है यह आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
1: राहुल गांधी ने तीन शर्तों में सबसे ऊपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को रखा तो उससे सवाल हुआ कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारे मामले का हल निकल जाएगा। साथ ही राहुल गांधी से ये सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन क्यों किया। राहुल गांधी ने जवाब में जो कहा वो आप भी सुनिए।
7: इसके दो कारण है, हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और हमने स्पीकर से कहा देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, कोई डिस्कशन नहीं। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड, दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड एंड दैट इज व्हाई वी वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस यस्टरडे टू सपोर्ट दिस डिमांड।
1: आपको बता दें कि 21 जुलाई को कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर पीएम आवास के पास धरना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को धरने से उठाकर हिरासत में ले लिया गया।
8: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए।
1: और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरने को लेकर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच खींचतान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने एक तंज वाले अंदाज में इसका जवाब दिया।
7: सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए।
1: राहुल गांधी की पावर पॉइंट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को रोजगार और एजुकेशन सिस्टम पर घेरा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा आधार यही रहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद कोई चर्चा और छात्रों पर लाठी चार्ज क्यों हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी के इन आरोपों और प्रहारों पर सरकार ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक छात्रों को लेकर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सरकार चाहती है कि पेपर लीक पर संसद में चर्चा हो।
9: Why are you so selective? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए।
0: पिछले 25 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया है। सोनम ने कहा है कि अनशन को 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक

0: सस्पेंशन खत्म करने के लिए तैयार हूं, बस सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करे।
1: सोनम वांगचुक की नई चिट्ठी में क्या क्या मांगे की गई? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वांगचुक ने स्टैंड क्लियर कर दिया। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच क्या कोई बातचीत हुई है? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सोनम वांगचुक का क्या संदेश है? 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक अनशन कब तोड़ेंगे?
2: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए, और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
1: नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की कड़ी 3 जगह से जुड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या मांग कर रहा है? सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड ही क्लियर करते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत वहीं से हुई है। ऐसे में जंतर मंतर पर धरना दे रही CJP ने फिर से वही बात दोहराई है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक जंतर मंतर खाली नहीं होगा।
3: सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती हमें जंतर मंतर से हिलना है,
1: क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक हैं और 25 दिन से उनका अनशन जारी है। ऐसे में गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार के 2 मंत्रियों से हुई बातचीत पर वांगचुक ने लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार का आश्वासन उन्हें दिया गया है। वांगचुक के मुताबिक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी विचार का आश्वासन मिला है। ये सब तो विचार की बात है, पर चिट्ठी में नीचे वांगचुक लिखते हैं, बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न हो, सरकार भरोसा दे तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं।
4: सारे MP ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं। ये सारे MP के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े? और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है कि जब तक वो फास्ट MP के कहने पर और भारत सरकार के उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली ना फिजिकली ना FIR ना कुछ भी। उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो चुकी हैं और उन्होंने फिर भी इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और जो कह रहे हैं कि बच्चों ने स्टोन फेंके ये फेंके, ये उन्हीं के लोग थे जो इन्होंने अंदर डाले हुए थे, जो ये सब इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे।
1: अब सवाल है कि अगर छात्रों पर एक्शन न होने देने का भरोसा सरकार दे दे तो क्या वांगचुक का अनशन खत्म हो सकता है? आपको बता दें कि विपक्ष के नेता भी 60 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी लेकर सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोनम अनशन खत्म करें।
5: समाजवादी पार्टी इस पक्ष में कभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए, और ये सरकार तो ऐसी है कि आप बताओ, मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो। बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप।
6: हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को?
7: साजिश कर रहे हैं।
6: ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन

0: दीजिए, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू ना कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहां ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं, इस प्रकार की तानाशाही है।
1: सीजेपी ने भी कहा है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दें, बाकी वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक धरने पर डटे रहेंगे।
2: मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये अश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो।
1: इस बीच सरकार कह रही है कि देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थ का हथियार नहीं बनना चाहिए, जबकि सीजेपी के प्रवक्ता अपनी मांगों का ज्ञापन जेपी नड्डा को पहले ही सौंप चुके हैं। सरकार ने हल निकालने का भरोसा दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: लड़ाई युवाओं की जंतर मंतर तक क्यों पहुंची है, क्यों धरना प्रदर्शन आंदोलन की नौबत आ जाती है, इसकी वजह राज्य दर राज्य बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में जहां ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती 4 साल से अटकी है, भर्ती निकलने से लेकर अब तक चरण दर चरण उसे लटकाया जा रहा है।
4: हाथ में बैनर, कंधे पर केवल एक बैग नहीं बल्कि सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद टांगे ये वो बेरोजगार युवा हैं जो थक चुके हैं प्रदर्शन करते करते। 2023 में निकली भर्ती में 2026 आधा बीत जाने के बाद भी नियुक्ति न मिल पाने के बाद हताश होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर के बाहर गुहार लगाने पहुंचे हैं।
5: ग्राम पंचायत अधिकारी की यह भर्ती, आप अगर पदों की बात करेंगे तो 146 सीट यानी कि 1450 के ऊपर ये पद हैं, 200-300 के ऊपर ये लड़के लड़कियां यहाँ खड़े हैं। सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको आवाज दिखाई पड़ेगा। डिप्टी सीएम की चौखट पर इसलिए इनको आना पड़ा है क्योंकि पंचायती राज मंत्री के यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है या जो डिपार्टमेंट है वो इनकी नहीं सुन पाया है। अग्नि सेवा चयन आयोग के दफ्तर भी कई बार जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। थक हार कर डिप्टी सीएम से उनको आस है कि डिप्टी सीएम उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर उनकी आवाज पहुंचे।
6: इसमें बच्चे सहारनपुर से, बांदा से, झांसी, कुशीनगर, मतलब पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हुए हैं।
7: हम कई बार आ चुके हैं लेकिन हम लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज कभी नहीं मिलती है। भर्ती तो 2023 में ही आई थी 22 के पेट से, फिर 2 साल तक संघर्ष हुआ एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट के लिए हुआ।
8: 7000 रुपए महीने घर से मांग के और घर से बाहर अपने हाथों से रोटी बना के हम लोग रहते हैं।
4: ये वो बेरोजगार हैं जिनकी भर्ती ओम प्रकाश राजभर के विभाग से जुड़ी है। राजभर तो दिन भर सियासी बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पार्टी में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कराने की चिंता में जुटे रहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी नौकरी के लिए परेशान युवाओं को न्याय नहीं दिला पाते।
5: घर वाले क्या कहते हैं, मतलब आप लोग?
9: घर वालों को कहा हमने कि हमारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल से ज्यादा हो गया। घर वाले कहते कब सिलेक्शन होगा, अब तो पड़ोसी भी विश्वास नहीं करते कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या किया जाए। आयोग से बहुत परेशान है, प्रताड़ित है। अब महोबा से आते पहले ट्रेन बदलो बांदा, बांदा से फिर कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ, 3 बार ट्रेन बदलो जब लखनऊ आ पाओ, अब क्या किया जाएगा।
4: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तभी इन बेरोजगारों से मिलने पहुंचते हैं।
10: मेरे भाई है, मैं अभी बात करूंगा और रिजल्ट बाबू जल्दी घोषित कराएं, घबराओ नहीं, अभी करा अभी
11: अभी सर सर सर
10: ए बच्चों को मिठाई तो खिलाया।
5: तो ज्ञापन ले लिया है, ये ज्ञापन की कॉपीज हैं, डिप्टी सीएम साथ में हैं और यहाँ पर जो है उनसे समझ रहे हैं कि और आयोग से बात करने के लिए कहा है। अब उनके प्रतिनिधि जो है वो आयोग को फोन मिला रहे।
4: आज तक के कैमरे के सामने ही उप मुख्यमंत्री ने यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े अफसरों को फोन मिलाकर 2023 की ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी भर्ती पर सवाल किया और आश्वासन दिया है।
12: ग्राम पंचायत अधिकारी वाला रिजल्ट नहीं निकला है और 9 महीना हो गया है, बच्चे हमारे पास आए हैं, बहुत दुखी हैं, इनकी मदद करके जल्दी से जल्दी निकाल दो, ये मेरे भाई हैं सर। कब तक निकलेगा? अच्छा ठीक है ठीक है, निकाल देना भैया, ये हमारे बच्चे हैं, बहुत दिन से परेशान है, निकाल देना भैया। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा है, अभी दो ही रिजल्ट निकले, तीसरे तुम्हारा नंबर है, ये मान ही चलो महीना डेढ़ महीना में रिजल्ट निकल जाए, और घबराना नहीं तुम।
11: आज तक लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, और अगले डेढ़ महीने बाद अगर भर्ती पूर्ण नहीं होती है तो आज तक एक बार फिर डिप्टी सीएम की चौखट पर पहुंचेगा, एक बार फिर अभ्यर्थियों की आवाज बनेगा, और एक बार फिर इन भर्तियों के खिलाफ खबरदार करेगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: शिक्षा के लिए हर साल करोड़ों छात्र कॉलेज में दाखिला लेते हैं, लेकिन गांव के कई छात्र और छात्राएं कॉलेज दूर होने की वजह से उच्च शिक्षा से दूर रह जाते हैं। बिहार सरकार ने इस समस्या को खत्म करने के लिए छात्रों को अपने जिले और आसपास ही उच्च शिक्षा देने की योजना शुरू की है। 15 तारीख को शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के रियलिटी चेक में हमें ज्यादातर कॉलेजेस में बेहद ही कम शिक्षक मिले। इसके अलावा इस कॉलेजेस में न तो लाइब्रेरी है और ना ही यहां पर है स्थायी भवन।
13: सभी में हम लोगों ने प्रिंसिपल दे दिया है, एक एक बर्सर के रूप में टीचर दे दिया गया है, ताकि वो टीचिंग भी करें और प्रिंसिपल भी टीचिंग, इवन कल भी कहीं कहीं जगह क्लास हुआ है। साथ ही साथ अभी तत्काल यहां से हम लोग बीच बीच में टीचर भेजेंगे और उन्हीं को कहेंगे कि भाई घूम घूम के थोड़ा सा हर जगह पढ़ा लीजिए। लाइब्रेरी के लिए अभी बुक नहीं है, वो भी बहुत जल्द ही हो सकता है कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
14: बिहार में ये उन 211 डिग्री कॉलेज का हाल है जो 15 जुलाई से आनन फानन में शुरू तो कर दिए गए, लेकिन न तो कॉलेज की इमारत का पता है न टीचर का, फिर भी छात्रों को अपने जिले और आसपास ही उच्च शिक्षा दिलाने का सरकारी अभियान ढोल बजाकर शुरू कर दिया गया, क्योंकि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की महत्वाकांक्षी योजना जो ठहरी। आज तक संवाददाता रोहित सिंह इसी योजना की हकीकत जानने के लिए मुजफ्फरपुर के बोचहा में बनाए गए इस डिग्री कॉलेज में पहुंचते हैं, जो एक मिडिल स्कूल में बना दिया गया है।
15: यहीं पर जो है इसके कैंपस में, दरअसल एक दूसरे हिस्से में जहां पर बच्चों की पढ़ाई होती थी, पहले से आठवीं के बच्चे जहां पढ़ाई किया करते थे, जहां क्लासेस चला करती थी, उसी में से बताया जा रहा है कि 6 कमरे जो हैं वो डिग्री कॉलेज के लिए जो है वो लिया गया है, और यहां जो बच्चे पढ़ा करते थे स्कूल के, उनको बाकी के हिस्से में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि एडजस्ट किया गया है।
14: समस्या सिर्फ अपनी बिल्डिंग की नहीं, सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की है। इस डिग्री कॉलेज में हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र की पढ़ाई होनी। 21 छात्र दाखिला भी ले चुके हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए फिलहाल सिर्फ एक हिंदी की टीचर है जो हमें यहाँ गैर हाजिर मिलती है।
16: तो शिक्षक है, उन लोगों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है?
17: अभी तो नहीं है, पर आ जाएंगे।
18: आ जाएंगे,
19: अभी एक ही है हिंदी की जो मैम, वो अभी आज नहीं आई है।
18: आज नहीं आई है।
15: लाइब्रेरी की कोई सुविधा है यहाँ पर?
19: अभी लाइब्रेरी का भी सुविधा नहीं, अभी तो नया ना कॉलेज खुला, तो आगे चल के ना होगा।
14: तो मुजफ्फरपुर के इस डिग्री कॉलेज में न टीचर और न ही लाइब्रेरी, इस तरह छात्रों का और भविष्य क्या यहाँ बर्बाद नहीं हो रहा? जबकि पूरे बिहार में ऐसे डिग्री कॉलेज में 15 तारीख तक 1,35,000 छात्र दाखिले के लिए आवेदन कर चुके हैं।
15: अधिकतर कॉलेज का अपना भवन नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है, और साथ ही साथ कॉलेजेस का संचालन प्रतिनियुक्ति के बदौलत किया जा रहा है।
14: सिवान के इस डिग्री कॉलेज का हाल भी हमें अलग नहीं मिला, जो एक हाई स्कूल में चल रहा है। 12 की जगह 2 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं।
20: 63 हुए,
21: 63 हो चुके हैं।
20: हो चुके हैं।
21: तो टीचर कितने हैं 63 बच्चों के?
20: 2 हम लोग हैं, एक प्रचार के पद पर हूँ मैं, हिंदी का शिक्षक हूँ, और बर्सर के पद पर हैं वो राजनीति विज्ञान के शिक्षक हैं। आपके सामने देखा कि इतिहास के विद्यार्थी आए हुए थे, तो हम लोगों ने अभी अपने जो अतिरिक्त ज्ञान है उसके आधार पर हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा है। कभी कभी बच्चे आते हैं तो हम लोग को अपराध बोध होने लगता है कि प्रचार के पद पर हूँ और बच्चों को संसाधन पढ़ने आए हैं तो शिक्षक नहीं है, तो कहने में शर्म लगती है कि लेकिन आशा दिलाता हूँ कि अगस्त तक आप लोग इंतजार करें, अगस्त तक शिक्षक आ जाएंगे।
14: इस डिग्री कॉलेज के टीचर से ज्यादा यहाँ पढ़ने वाले छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जो पूछते हैं कि जब तैयारी नहीं थी तो कॉलेज ही क्यों शुरू किया गया?
22: चलो नहीं है
21: टीचर, नहीं है। कितने टीचर है पता किया है?
22: अभी तो फिलहाल 3-4, 2 से 3-4 है लोग,
21: 2-3-4 है। तो दो तीन चार बार करके पढ़ाई पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आपको लग रहा है?
22: मुझे तो यही बात है कि नहीं लग रहा है।
21: हिस्ट्री के टीचर भी नहीं? तो कॉलेज तो खुलवाएंगे कि आप लोग पढ़ेंगे तो क्या सुविधा होगा यहाँ पे, क्या मिल रहा है या नहीं है?
0: नहीं मिल रहा है कभी भी,
21: कुछ नहीं,
0: नहीं दो तीन दिन से कोई भी सुविधा नहीं है।
14: तो बिहार में नेता और अफसर स्कूल में नए डिग्री कॉलेज का फीता काट कर फोटो खिंचा कर तो चले गए और अपने पीछे छोड़ गए सारण जैसे डिग्री कॉलेज जहाँ पढ़ाने के लिए दो टीचर हैं और 88 छात्र हैं।
1: हमारे पास अभी संसाधन की कमी है, संसाधन जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट लिस्ट में हमें कुल 122 विद्यार्थियों की सूची मिली जिनका नामांकन होना था, 122 के विरुद्ध कुल 88 नामांकन हुए। पीछे साइड में बाथरूम विद्यार्थियों के लिए जो बन रहा है टॉयलेट, वो निर्माणाधीन है, बरसात के चलते बीच बीच में बाधाएं भी आईं, तो वो निर्माणाधीन है, अब वो जब मिल जाए। कुल 288 सीट 6 विषयों में, कुल हर विषय में 48 सीट निर्धारित की गई।
14: आज तक की टीम ने गोपालगंज और पूर्णिया में भी ऐसे ही डिग्री कॉलेज का रियलिटी चेक किया, लेकिन वहाँ भी बनाए गए नए कॉलेज में न तो स्थायी भवन है, न पर्याप्त शिक्षक और न ही पढ़ाई के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध है। पूर्णिया के डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी है लेकिन किताबें नहीं। अब इन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र पूछते हैं कि जब बिल्डिंग और टीचर तक का इंतजाम सरकार कर नहीं पाई तो फिर उसने ये कॉलेज क्यों शुरू किए? ये सवाल हमने बिहार के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर से पूछा है।
2: ने उसको चिन्हित किया गया है और उसको भी कैसे पूरा किया जाए वो प्रयास हो रहा है और बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसका विज्ञापन भी आ चुका है।
15: जरूर बात आ रही है कि फिर इतनी जल्दबाजी में क्यों फिर कॉलेज वॉलेज खोल दिया गया, अभी शिक्षकों की बहाली पूरी हुई नहीं है?
2: ये जल्दबाजी में नहीं, ये पहले से घोषित था कि जुलाई में हम शुरू करेंगे, सत्र प्रारंभ हो जाएगा, तो जुलाई में हमने शुरू किया। अब जुलाई में कहा था नहीं करते, फिर सवाल खड़ा होता।
14: तो जिम्मेदार मंत्री भी मानते हैं कि उनकी इस योजना में अभी खामियां हैं, लेकिन मंत्री जी को समझना होगा कि सिर्फ 211 नए डिग्री कॉलेज खोल के उद्घाटन करने भर से मुख्यमंत्री की योजना जनता के लिए सफल नहीं होगी। उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षकों की बहाली, तय नियम के मुताबिक बुनियादी साधन छात्रों को देने होंगे, क्योंकि प्रतिनियुक्ति के सहारे उच्च शिक्षा का सपना साकार नहीं हो सकता। मुजफ्फरपुर से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: के मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है सरकार। नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाया सियासी रोटियां सेकने का आरोप, कावांचों के पत्रकार देंगे जवाब। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी, जंतर मंतर के पास पुलिस तो प्रदर्शनकारियों में फिर झड़प। यह संदेश में सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की बताई शर्त, का किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्रवाई, अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद रोके गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। और ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी, का अगर हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हुआ हमला तो हम हर वार का एक पुल या पावर प्लांट कर देंगे तबाह। छात्रों के प्रदर्शन और मांग पर एक तरफ सरकार की दलील तो दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क, सियासत पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस अड़ चुकी है। राहुल गांधी ने मौजूदा समय में देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार के सामने तीन मांगे रखी हैं जिन्हें वो छात्रों की मांगे बता रहे हैं और शिक्षा मंत्री से लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं।
1: छात्रों पर लाठीचार्ज, विपक्ष और सरकार में सीधा टकराव, सड़क से संसद तक पेपर लीक और शिक्षा मंत्री पर संग्राम, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष सरकार पर सवाल। पहले पीएम आवास के पास धरना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से घेराव, शिक्षा व्यवस्था पर राहुल के सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। मॉनसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से उठे तूफान ने सियासत में बड़ा उफान ला दिया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन पर लाठीचार्ज हुआ, अब पूरी सियासत इसी पर घूम गई है। पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद संसद में चर्चा।
2: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन।
3: ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं।
4: क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
5: चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।
6: इससे क्या हो सकता है?
1: संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की भेंट चढ़ जाता है। और फिर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले वो अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद राहुल गांधी पेपर लीक और इस वक्त देश की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं, पिछले 10 सालों में पेपर लीक का आंकड़ा पेश करते हैं।
7: कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजुटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। 152 बार पिछले 10 साल में भी यह बताया गया है। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है।
1: और फिर राहुल गांधी देश में शिक्षा का बजट बताते हैं और नीट के एग्जाम पर खर्च से उसकी तुलना करते हैं। साथ ही ये भी पूछते हैं कि पेपर लीक के मामले में किसी को सजा क्यों नहीं मिली।
7: स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं सरकार, पूरे देश से टैक्स लेती है और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे। और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन दिस कंट्री, दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल फैमिली इन दिस कंट्री।
1: राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों की तीन मांगों का दावा किया और वो तीन मांगे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो, पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे।
7: धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए, स्टूडेंट्स की पहली मांग है इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है, तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
1: राहुल गांधी ने तीन शर्तों में सबसे ऊपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को रखा तो उनसे सवाल हुआ कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारे मामले का हल निकल जाएगा। साथ ही राहुल गांधी से ये सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन क्यों किया। राहुल गांधी ने जवाब में जो कहा वो आप भी सुनिए।
7: इसके दो कारण है, हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और हमने स्पीकर से कहा देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, कोई डिस्कशन नहीं। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड, दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड एंड दैट इज व्हाई वी वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस यस्टरडे टू सपोर्ट दिस डिमांड।
1: आपको बता दें कि 21 जुलाई को कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर पीएम आवास के पास धरना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को धरने से उठाकर हिरासत में ले लिया गया।
8: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए।
1: और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरने को लेकर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच खींचतान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने एक तंज वाले अंदाज में इसका जवाब दिया।
7: सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए।
1: राहुल गांधी की पावर पॉइंट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को रोजगार और एजुकेशन सिस्टम पर घेरा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा आधार यही रहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद कोई चर्चा और छात्रों पर लाठी चार्ज क्यों हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी के इन आरोपों और प्रहारों पर सरकार ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक छात्रों को लेकर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सरकार चाहती है कि पेपर लीक पर संसद में चर्चा हो।
9: Why are you so selective? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए।
0: पिछले 25 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया है। सोनम ने कहा है कि अनशन को 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जिंदा हूं। कुछ सांसद मुझसे मिलने आए, उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने की उन्होंने अपील की। वांगचुक ने कहा कि मुझे अगर सरकार की तरफ से भरोसा मिले तो मैं आज ही अनशन खत्म करने के लिए तैयार हूं, बस सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करे।
1: सोनम वांगचुक की नई चिट्ठी में क्या क्या मांगे की गई? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वांगचुक ने स्टैंड क्लियर कर दिया। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच क्या कोई बातचीत हुई है? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सोनम वांगचुक का क्या संदेश है? 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक अनशन कब तोड़ेंगे?
10: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
1: नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की कड़ी 3 जगह से जुड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या मांग कर रहा है? सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड ही क्लियर करते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत वहीं से हुई है। ऐसे में जंतर मंतर पर धरना दे रही CJP ने फिर से वही बात दोहराई है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक जंतर मंतर खाली नहीं होगा।
11: सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती है, जंतर मंतर से हिलना है।
1: क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक हैं और 25 दिन से उनका अनशन जारी है। ऐसे में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार के 2 मंत्रियों से हुई बातचीत पर वांगचुक ने लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार का आश्वासन उन्हें दिया गया है। वांगचुक के मुताबिक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी विचार का आश्वासन मिला है। ये सब तो विचार की बात है, पर चिट्ठी में नीचे वांगचुक लिखते हैं, बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न हो, सरकार भरोसा दे तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं।
12: सारे एमपी ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं। ये सारे एमपी के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े? और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है कि जब तक वो फास्ट एमपीज के कहने पर और भारत सरकार के उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली ना फिजिकली ना एफआईआर ना कुछ भी। उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो चुकी हैं और उन्होंने फिर भी इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और जो कह रहे हैं कि बच्चों ने स्टोन फेंके, ये उन्हीं के लोग थे जो इन्होंने अंदर डाले हुए थे, जो ये सब इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे।
1: अब सवाल है कि अगर छात्रों पर एक्शन न होने देने का भरोसा सरकार दे दे तो क्या वांछू का अनशन खत्म हो सकता है? आपको बता दें कि विपक्ष के नेता भी 60 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी लेकर सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोनम अनशन खत्म करें।
13: समाजवादी पार्टी इस पक्ष में तभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए। और ये सरकार तो ऐसी है कि अब बताओ, मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो। बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप।
14: हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को?
15: साजिश कर रहे हैं।
14: ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू न कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहाँ ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं, इस प्रकार की तानाशाही है।
1: सीजेपी ने भी कहा है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दें, बाकी वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक धरने पर डटे रहेंगे।
16: मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये अश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो।
1: इस बीच सरकार कह रही है कि देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थ का हथियार नहीं बनना चाहिए, जबकि सीजेपी के प्रवक्ता अपनी मांगों का ज्ञापन जेपी नड्डा को पहले ही सौंप चुके हैं। सरकार ने हल निकालने का भरोसा दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: लड़ाई युवाओं की जंतर मंतर तक क्यों पहुंची है, क्यों धरना प्रदर्शन आंदोलन की नौबत आ जाती है, इसकी वजह राज्य दर राज्य बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में जहां ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती 4 साल से अटकी है, भर्ती निकलने से लेकर अब तक चरण दर चरण उसे लटकाया जा रहा है।
17: हाथ में बैनर, कंधे पर केवल एक बैग नहीं बल्कि सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद टांगे, ये वो बेरोजगार युवा हैं जो थक चुके हैं प्रदर्शन करते करते। 2023 में निकली भर्ती में 2026 आधा बीत जाने के बाद भी नियुक्ति न मिल पाने के बाद हताश होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर के बाहर गुहार लगाने पहुंचे हैं।
18: ग्राम पंचायत अधिकारी की यह भर्ती, आप अगर पदों की बात करेंगे तो 1468 यानी कि 1450 के ऊपर ये पद हैं, 2-300 के ऊपर ये लड़के लड़कियां यहाँ खड़े हैं। सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको आवाज दिखाई पड़ेगा। डिप्टी सीएम की चौखट पर इसलिए इनको आना पड़ा है क्योंकि पंचायती राज मंत्री के यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है, या जो डिपार्टमेंट है वो इनकी नहीं सुन पाया है। अग्नि सेवा चयन आयोग के दफ्तर भी कई बार जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। थक हार कर डिप्टी सीएम से उनको आस है कि डिप्टी सीएम उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाए और मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर उनकी आवाज पहुंचे।
15: इसमें बच्चे सहारनपुर से, बांदा से, झांसी, कुशीनगर, मतलब पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हुए हैं।
19: हम कई बार आ चुके हैं लेकिन हम लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज कभी नहीं मिलती है। भर्ती तो 2023 में ही आई थी 22 के पेट से, फिर 2 साल तक संघर्ष हुआ एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट के लिए हुआ।
20: 7,000 रुपए महीने घर से मांग के और घर से बाहर अपने हाथों से रोटी बना के हम लोग रहते हैं।
17: ये वो बेरोजगार हैं जिनकी भर्ती ओम प्रकाश राजभर के विभाग से जुड़ी। राजभर तो दिन भर सियासी बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पार्टी में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कराने की चिंता में जुटे रहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी नौकरी के लिए परेशान युवाओं को न्याय नहीं दिला पाते।
21: घर वाले क्या कहते हैं, मतलब आप लोग?
22: घर वालों को कहा हमने कि हमारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल से ज्यादा हो गया। घर वाले कहते कब सिलेक्शन होगा, अब तो पड़ोसी भी विश्वास नहीं करते कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या किया जाए। आयोग से बहुत परेशान है, प्रताड़ित है। अब महोबा से आते पहले ट्रेन बदलो बांदा, बांदा से फिर कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ, 3 बार ट्रेन बदलो जब लखनऊ आ पाओ, अब क्या किया जाए।
17: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तभी इन बेरोजगारों से मिलने पहुंचते हैं।
23: मेरे भाई है, मैं अभी बात करूंगा और रिजल्ट बाबू जल्दी घोषित कराएं, घबराओ नहीं, अभी करा दो, अभी अभी
24: सर सर सर सर।
23: ए बच्चों को मिठाई तो खिलाया।
18: तो ज्ञापन ले लिया है, ये ज्ञापन की कॉपीज हैं, डिप्टी सीएम साथ में हैं और यहां पर जो है उनसे समझ रहे हैं कि, और आयोग से बात करने के लिए कहा है। अब उनके प्रतिनिधि जो है वो आयोग को फोन मिला रहे।
17: आज तक के कैमरे के सामने ही उप मुख्यमंत्री ने यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े अफसरों को फोन मिलाकर 2023 की ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी भर्ती पर सवाल किया और आश्वासन दिया है।
25: ग्राम पंचायत अधिकारी वाला रिजल्ट नहीं निकला है और 9 महीना हो गया है, बच्चे हमारे पास आए हैं, बहुत दुखी हैं, इनकी मदद करके जल्दी जल्दी निकाल दो, ये मेरे भाई है सर। कब तक निकलेगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, निकाल देना भैया, ये हमारे बच्चे हैं, बहुत दिन से परेशान है, निकाल देना भैया। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा है अभी 2 रिजल्ट निकल रहे, तीसरे तुम्हारा नंबर है, ये मान चलो महीना डेढ़ महीना में रिजल्ट निकल जाएगी, और घबराना नहीं तुम्हें।
18: आज तक लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और अगले 1.5 महीने बाद अगर भर्ती पूर्ण नहीं होती है तो आज तक एक बार फिर डिप्टी सीएम की चौखट पर पहुंचेगा, एक बार फिर अभ्यर्थियों की आवाज बनेगा और एक बार फिर इन भर्तियों के खिलाफ खबरदार करेगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: शिक्षा के लिए हर साल करोड़ों छात्र कॉलेज में दाखिला लेते हैं लेकिन गांव के कई छात्र और छात्राएं कॉलेज दूर होने की वजह से उच्च शिक्षा से दूर रह जाते हैं। बिहार सरकार ने इस समस्या को खत्म करने के लिए छात्रों को अपने जिले और आसपास ही उच्च शिक्षा देने की योजना शुरू की है। 15 तारीख को शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के रियलिटी चेक में हमें ज्यादातर कॉलेजेस में बेहद ही कम शिक्षक मिले। इसके अलावा इस कॉलेजेस में न तो लाइब्रेरी है और ना ही यहां पर है स्थायी भवन।
26: सभी में हम लोगों ने प्रिंसिपल दे दिया है, एक एक बर्सर के रूप में टीचर दे दिया गया है ताकि वो टीचिंग भी करें और प्रिंसिपल भी टीचिंग, इवन कल भी कहीं कहीं जगह क्लास हुआ है। साथ ही साथ अभी तत्काल यहां से हम लोग बीच बीच में टीचर भेजेंगे और उन्हीं को कहेंगे कि भाई घूम घूम के थोड़ा सा हर जगह पढ़ा लीजिए। लाइब्रेरी के लिए अभी बुक नहीं है, वो भी बहुत जल्द ही हो सकता है कि प्रोवाइड कर दिया जाए।
17: बिहार में ये उन 211 डिग्री कॉलेज का हाल है जो 15 जुलाई से आनन फानन में शुरू तो कर दिए गए लेकिन न तो कॉलेज की इमारत का पता है न टीचर का, फिर भी छात्रों को अपने जिले और आसपास ही उच्च शिक्षा दिलाने का सरकारी अभियान ढोल बजाकर शुरू कर दिया गया क्योंकि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की महत्वाकांक्षी योजना जो ठहरी। आज तक संवाददाता रोहित सिंह इसी योजना की हकीकत जानने के लिए मुजफ्फरपुर के बोचहा में बनाए गए इस डिग्री कॉलेज में पहुंचते हैं जो एक मिडिल स्कूल में बना दिया गया है।
27: यहीं पर जो है इसके कैंपस में दरअसल एक दूसरे हिस्से में जहां पर बच्चों की पढ़ाई होती थी, पहले से 8वीं के बच्चे जहां पढ़ाई किया करते थे, जहां क्लासेस चला करती थी, उसी में से बताया जा रहा है कि 6 कमरे जो हैं वो डिग्री कॉलेज के लिए जो है वो लिया गया है और यहाँ जो बच्चे पढ़ा करते थे स्कूल के उनको बाकी के हिस्से में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि एडजस्ट किया गया है।
17: समस्या सिर्फ अपनी बिल्डिंग की नहीं, सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की है। इस डिग्री कॉलेज में हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र की पढ़ाई होनी 21 छात्र दाखिला भी ले चुके हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए फिलहाल सिर्फ एक हिंदी की टीचर है जो हमें यहाँ गैर हाजिर मिलती है।
2: तो शिक्षक है, उन लोगों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है?
3: अभी तो नहीं है, पर आ जाएंगे।
4: आ जाएंगे,
5: अभी एक ही है हिंदी की जो मैम, वो अभी आज नहीं आई है।
4: आज नहीं आई है? लाइब्रेरी की कोई सुविधा है यहाँ पर?
5: अभी लाइब्रेरी का भी सुविधा नहीं, अभी तो नया ना कॉलेज खुला है, तो आगे चल के ना होगा।
17: तो मुजफ्फरपुर के इस डिग्री कॉलेज में ना टीचर और ना ही लाइब्रेरी, इस तरह छात्रों का और भविष्य क्या यहाँ बर्बाद नहीं हो रहा? जबकि पूरे बिहार में ऐसे डिग्री कॉलेज में 15 तारीख तक 1,35,000 छात्र दाखिले के लिए आवेदन कर चुके हैं।
4: अधिकतर कॉलेज का अपना भवन नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है, और साथ ही साथ कॉलेजेस का संचालन प्रतिनियुक्ति के बदौलत किया जा रहा है।
17: सिवान के इस डिग्री कॉलेज का हाल भी हमें अलग नहीं मिला, जो एक हाई स्कूल में चल रहा है। 12 की जगह 2 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं।
6: 63 हुए हैं।
7: 63
6: हो चुके हैं।
7: तो टीचर कितने हैं? 63 बच्चों के?
6: 2 हम लोग हैं, एक प्रचार के पद पर हूँ, मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, और बरसर के पद पर हैं, वो राजनीति विज्ञान के शिक्षक हैं। आपके सामने देखा कि इतिहास के विद्यार्थी आए हुए थे, तो हम लोगों ने अभी अपने जो अतिरिक्त ज्ञान है उसके आधार पर हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा है। कभी कभी बच्चे आते हैं तो हम लोग को अपराध बोध होने लगता है कि प्रचार के पद पर हूँ और बच्चों को संसाधन पढ़ने आए हैं तो शिक्षक नहीं है, तो कहने में शर्म लगती है कि लेकिन आशा दिलाता हूँ कि अगस्त तक आप लोग इंतजार करें, अगस्त तक शिक्षक आ जाएंगे।
17: इस डिग्री कॉलेज के टीचर से ज्यादा यहाँ पढ़ने वाले छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जो पूछते हैं कि जब तैयारी नहीं थी तो कॉलेज ही क्यों शुरू किया गया?
8: चलो नहीं है
7: टीचर, नहीं है नहीं। कितने टीचर है पता किए?
8: अभी तो फिलहाल 3-4 2 से 3-4 है।
7: 2-3-4 है तो 2-3-4 करके पढ़ाई पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आपको लग रहा है?
8: मुझे तो यही बात है कि नहीं लग रहा है।
7: हिस्ट्री के टीचर भी नहीं है?
8: नहीं।
7: तो कॉलेज तो खुलवाएंगे कि आप लोग पढ़ेंगे, तो क्या सुविधा होगा यहाँ पे, क्या मिल रहा है या नहीं है?
3: नहीं मिल रहा है कभी भी,
7: कुछ नहीं,
3: नहीं 2-3 दिन से कोई भी सुविधा नहीं है।
17: तो बिहार में नेता और अफसर स्कूल में नए डिग्री कॉलेज का फीता काट कर फोटो खिंचा कर तो चले गए, और अपने पीछे छोड़ गए सारण जैसे डिग्री कॉलेज जहाँ पढ़ाने के लिए 2 टीचर हैं और 88 छात्र हैं।
24: हमारे पास अभी संसाधन की कमी है, संसाधन जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट लिस्ट में हमें कुल 122 विद्यार्थियों की सूची मिली जिनका नामांकन होना था, 122 के विरुद्ध कुल 88 नामांकन हुए। पीछे साइड में बाथरूम विद्यार्थियों के लिए जो बन रहा है टॉयलेट, वो निर्माणाधीन है, बरसात के चलते बीच बीच में बाधाएं भी आईं, तो वो निर्माणाधीन है, अब वो जब मिल जाए। कुल 288 सीट 6 विषयों में, कुल हर विषय में 48 सीट निर्धारित की गई।
17: आज तक की टीम ने गोपालगंज और पूर्णिया में भी ऐसे ही डिग्री कॉलेज का रियलिटी चेक किया, लेकिन वहाँ भी बनाए गए नए कॉलेज में न तो स्थायी भवन है, न पर्याप्त शिक्षक, और न ही पढ़ाई के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध है। पूर्णिया के डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी है लेकिन किताबें नहीं। अब इन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र पूछते हैं कि जब बिल्डिंग और टीचर तक का इंतजाम सरकार कर नहीं पाई तो फिर उसने ये कॉलेज क्यों शुरू किए? ये सवाल हमने बिहार के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर से पूछा।
28: ने उसको चिन्हित किया गया है और उसको भी कैसे पूरा किया जाए वो प्रयास हो रहा है, और बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसका विज्ञापन भी आ चुका है।
4: एक जरूर बात आ रही है कि फिर इतनी जल्दबाजी में क्यों फिर कॉलेज वॉलेज खोल दिया गया, अभी शिक्षकों की बहाली पूरी हुई नहीं है?
28: ये जल्दबाजी में नहीं, ये पहले से घोषित था कि जुलाई में हम शुरू करेंगे, सत्र प्रारंभ हो जाएगा, तो जुलाई में हमने शुरू किया। अब जुलाई में कहा था नहीं करते, फिर सवाल खड़ा होता।
17: तो जिम्मेदार मंत्री भी मानते हैं कि उनकी इस योजना में अभी खामियां हैं, लेकिन मंत्री जी को समझना होगा कि सिर्फ 211 नए डिग्री कॉलेज खोल के उद्घाटन करने भर से मुख्यमंत्री की योजना जनता के लिए सफल नहीं होगी। उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षकों की बहाली, तय नियम के मुताबिक बुनियादी साधन छात्रों को देने होंगे, क्योंकि प्रतिनियुक्ति के सहारे उच्च शिक्षा का सपना साकार नहीं हो सकता। मुजफ्फरपुर से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाया सियासी रोटियां सेकने का आरोप, कावांगचो के पत्रकार देंगे जवाब। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी, जंतर मंतर के पास पुलिस तो प्रदर्शनकारियों में फिर झड़प। संदेश में पूनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की बताई शर्त, का किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्रवाई, अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद रोके गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। और ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी, का अगर हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हुआ हमला तो हम हर वार का एक पुल या पावर प्लांट कर देंगे तबाह। छात्रों के प्रदर्शन और मांग पर एक तरफ सरकार की दलील तो दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क, सियासत पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस अड़ चुकी है। राहुल गांधी ने मौजूदा समय में देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार के सामने तीन मांगे रखी है जिन्हें वो छात्रों की मांगे बता रहे हैं और शिक्षा मंत्री से लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं।
1: छात्रों पर लाठीचार्ज, विपक्ष और सरकार में सीधा टकराव, सड़क से संसद तक पेपर लीक और शिक्षा मंत्री पर संग्राम, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष सरकार पर सवाल। पहले पीएम आवास के पास धरना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से घेराव, शिक्षा व्यवस्था पर राहुल के सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। मॉनसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से उठे तूफान ने सियासत में बड़ा उफान ला दिया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन पर लाठीचार्ज हुआ, अब पूरी सियासत इसी पर घूम गई है। पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद संसद में चर्चा।
2: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन।
3: ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सा करते हैं।
4: क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
5: चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, इससे रेस क्या हो सकता है।
1: संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की भेंट चढ़ जाता है। और फिर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले वो अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद राहुल गांधी पेपर लीक और इस वक्त देश की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं। पिछले 10 सालों में पेपर लीक का आंकड़ा पेश करते हैं।
6: कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास है, 50 लाख रुपए जिनके पास है, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। 152 बार पिछले 10 साल में भी ये बताया गया है, 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है।
1: और फिर राहुल गांधी देश में शिक्षा का बजट बताते हैं और नीट के एग्जाम पर खर्च से उसकी तुलना करते हैं। साथ ही ये भी पूछते हैं कि पेपर लीक के मामले में किसी को सजा क्यों नहीं मिली।
6: ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन दिस कंट्री, दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल फैमिली इन दिस कंट्री।
1: राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों की तीन मांगों का दावा किया और वो तीन मांगे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो, पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे।
6: धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए, स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है, तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
1: राहुल गांधी ने तीन शर्तों में सबसे ऊपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को रखा तो उनसे सवाल हुआ कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारे मामले का हल निकल जाएगा। साथ ही राहुल गांधी से ये सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन क्यों किया। राहुल गांधी ने जवाब में जो कहा वो आप भी सुनिए।
6: इसके दो कारण है, हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और हमने स्पीकर से कहा देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, कोई डिस्कशन नहीं। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड, दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड एंड दैट इज व्हाई वी वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस यस्टरडे टू सपोर्ट दिस डिमांड।
1: आपको बता दें कि 21 जुलाई को कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर पीएम आवास के पास धरना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को धरने से उठाकर हिरासत में ले लिया गया।
7: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए।
1: और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरने को लेकर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच खींचतान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने एक तंज वाले अंदाज में इसका जवाब दिया।
6: सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए।
1: राहुल गांधी की पावर पॉइंट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को रोजगार और एजुकेशन सिस्टम पर घेरा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा आधार यही रहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद कोई चर्चा और छात्रों पर लाठी चार्ज क्यों हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी के इन आरोपों और प्रहारों पर सरकार ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक छात्रों को लेकर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सरकार चाहती है कि पेपर लीक पर संसद में चर्चा हो।
8: व्हाई आर यू सो सिलेक्टिव आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप

0: आपको माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए।
1: पिछले 25 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया है। सोनम ने कहा है कि अनशन को 25 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक जिंदा हूं। कुछ सांसद मुझसे मिलने आए, उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने की उन्होंने अपील की। वांगचुक ने कहा कि मुझे अगर सरकार की तरफ से भरोसा मिले तो मैं आज ही अनशन खत्म करने के लिए तैयार हूं, बस सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करे।
2: सोनम वांगचुक की नई चिट्ठी में क्या क्या मांगे की गई? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वांगचुक ने स्टैंड क्लियर कर दिया। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच क्या कोई बातचीत हुई है? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सोनम वांगचुक का क्या संदेश है? 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक अनशन कब तोड़ेंगे?
3: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए, और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
2: नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की कड़ी 3 जगह से जुड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या मांग कर रहा है? सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड ही क्लियर करते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत वहीं से हुई है। ऐसे में जंतर मंतर पर धरना दे रही CJP ने फिर से वही बात दोहराई है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक जंतर मंतर खाली नहीं होगा।
4: सिर्फ जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती हमें जंतर मंतर से हिलना है,
2: क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक हैं और 25 दिन से उनका अनशन जारी है। ऐसे में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार के 2 मंत्रियों से हुई बातचीत पर वांगचुक ने लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार का आश्वासन उन्हें दिया गया है। वांगचुक के मुताबिक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी विचार का आश्वासन मिला है। ये सब तो विचार की बात है, पर चिट्ठी में नीचे वांगचुक लिखते हैं, बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न हो, सरकार भरोसा दे तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं।
5: सारे MP ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं। ये सारे MP के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े? और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है कि जब तक वो फास्ट MP के कहने पर और भारत सरकार के उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली ना फिजिकली ना FIR ना कुछ भी। उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो चुकी हैं और उन्होंने फिर भी इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और जो कह रहे हैं कि बच्चों ने स्टोन फेंके, ये उन्हीं के लोग थे जो इन्होंने अंदर डाले हुए थे, जो ये सब इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे।

0: अब सवाल है कि अगर छात्रों पर एक्शन न होने देने का भरोसा सरकार दे दे तो क्या वांछित का अनशन खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि विपक्ष के नेता भी 60 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी लेकर सोनम वांछित से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोनम अनशन खत्म करें।
1: समाजवादी पार्टी इस पक्ष में कभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए, और ये सरकार तो ऐसी है कि अब बताओ मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो। बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप।
2: हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांछित जी को?
3: साजिश कर रहे हैं।
2: ये सोनम वांछित जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू न कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए यहाँ ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं, इस प्रकार की तानाशाही है।
0: सीजेपी ने भी कहा है कि सोनम वांछित अपना अनशन तोड़ दें, बाकी वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक धरने पर डटे रहेंगे।
4: मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये अश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरी उनसे अपील है आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो।
0: इस बीच सरकार कह रही है कि देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थ का हथियार नहीं बनना चाहिए, जबकि सीजेपी के प्रवक्ता अपनी मांगों का ज्ञापन जेपी नड्डा को पहले ही सौंप चुके हैं। सरकार ने हल निकालने का भरोसा दिया है। आज तक ब्यूरो।
5: लड़ाई युवाओं की जंतर मंतर तक क्यों पहुंची है, क्यों धरना प्रदर्शन आंदोलन की नौबत आ जाती है, इसकी वजह राज्य दर राज्य बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में जहां ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती 4 साल से अटकी है, भर्ती निकलने से लेकर अब तक चरण दर चरण उसे लटकाया जा रहा है।
6: हाथ में बैनर, कंधे पर केवल एक बैग नहीं बल्कि सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद टांगे ये वो बेरोजगार युवा हैं जो थक चुके हैं प्रदर्शन करते करते। 2023 में निकली भर्ती में 2026 आधा बीत जाने के बाद भी नियुक्ति न मिल पाने के बाद हताश होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर के बाहर गुहार लगाने पहुंचे हैं।
7: ग्राम पंचायत अधिकारी की ये भर्ती, आप अगर पदों की बात करेंगे तो 146 सीट यानी कि 1450 के ऊपर ये पद हैं, 200-300 के ऊपर ये लड़के लड़कियां यहाँ खड़े हैं। सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको आवाज दिखाई पड़ेगा। डिप्टी सीएम की चौखट पर इसलिए इनको आना पड़ा है क्योंकि पंचायती राज मंत्री के यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है या जो डिपार्टमेंट है वो इनकी नहीं सुन पाया है। अधिनि सेवा चयन आयोग के दफ्तर भी कई बार जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। थक हार कर डिप्टी सीएम से उनको आस है कि डिप्टी सीएम उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर उनकी आवाज पहुंचे।
8: इसमें बच्चे सहारनपुर से, बांदा से, झांसी, कुशीनगर, मतलब पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हुए हैं।
9: हम कई बार आ चुके हैं लेकिन हम लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज कभी नहीं मिलती है। भर्ती तो 2023 में ही आई थी 22 के पेट से, फिर 2 साल तक संघर्ष हुआ एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट के लिए हुआ।
10: 7,000 रुपए महीने घर से मांग के और घर से बाहर अपने हाथों से रोटी बना के हम लोग रहते हैं।
6: ये वो बेरोजगार हैं जिनकी भर्ती ओम प्रकाश राजभर के विभाग से जुड़ी। राजभर तो दिन भर सियासी बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पार्टी में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कराने की चिंता में जुटे रहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी नौकरी के लिए परेशान युवाओं को न्याय नहीं दिला पाते।
7: घर वाले क्या कहते हैं, मतलब आप लोग?
11: घर वालों को कहा हमने कि हमारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल से ज्यादा हो गया। घर वाले कहते कब सिलेक्शन होगा, अब तो पड़ोसी भी विश्वास नहीं करते कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या किया जाए। आयोग से बहुत परेशान है, प्रताड़ित है। अब महोबा से आते पहले ट्रेन बदलो बांदा, बांदा से फिर कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ, 3 बार ट्रेन बदलो जब लखनऊ आ पाओ, अब क्या किया जाएगा।
6: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तभी इन बेरोजगारों से मिलने पहुंचते हैं।
3: मेरे भाई है, मैं अभी बात करूंगा और रिजल्ट बाबू जल्दी घोषित कराए, घबराओ नहीं, अभी करा था अभी अभी
12: सर सर सर
3: ए बच्चों को मिठाई तो खिलाया।
7: तो ज्ञापन ले लिया है, ये ज्ञापन की कॉपीज हैं, डिप्टी सीएम साथ में हैं और यहाँ पर जो है उनसे समझ रहे हैं कि और आयोग से बात करने के लिए कहा है। अब उनके प्रतिनिधि जो है वो आयोग को फोन मिला रहे।
6: आज तक के कैमरे के सामने ही उप मुख्यमंत्री ने यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े अफसरों को फोन मिलाकर 2023 की ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी भर्ती पर सवाल किया और आश्वासन दिया है।
13: ग्राम पंचायत अधिकारी वाला रिजल्ट नहीं निकला है और 9 महीना हो गया है, बच्चे हमारे पास आए हैं, बहुत दुखी हैं, इनकी मदद करके जल्दी जल्दी निकाल दो, ये मेरे भाई हैं सर। कब तक निकलेगा? अच्छा ठीक है निकाल देना भैया, ये हमारे बच्चे हैं, बहुत दिन से परेशान है, निकाल देना भैया। ठीक है धन्यवाद। ऐसा है अभी दो ही रिजल्ट निकले, तीसरे तुम्हारा नंबर है, ये मान चलो महीना डेढ़ महीने में रिजल्ट निकल जाएगी और घबराना नहीं तुम्हें।
7: आज तक लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और अगले डेढ़ महीने बाद अगर भर्ती पूर्ण नहीं होती है तो आज तक एक बार फिर डिप्टी सीएम की चौखट पर पहुंचेगा, एक बार फिर अभ्यर्थियों की आवाज बनेगा और एक बार फिर इन भर्तियों के खिलाफ खबरदार करेगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: उच्च शिक्षा के लिए हर साल करोड़ों छात्र कॉलेज में दाखिला लेते हैं लेकिन गांव के कई छात्र और छात्राएं कॉलेज दूर होने की वजह से उच्च शिक्षा से दूर रह जाते हैं। बिहार सरकार ने इस समस्या को खत्म करने के लिए छात्रों को अपने जिले और आसपास ही उच्च शिक्षा देने की योजना शुरू की है। 15 तारीख को शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के रियलिटी चेक में हमें ज्यादातर कॉलेजेस में बेहद ही कम शिक्षक मिले। इसके अलावा इस कॉलेजेस में न तो लाइब्रेरी है और ना ही यहाँ पर है स्थायी भवन।
14: सभी में हम लोगों ने प्रिंसिपल दे दिया है, एक एक बर्सर के रूप में टीचर दे दिया गया है ताकि वो टीचिंग भी करें और प्रिंसिपल भी टीचिंग, इवन कल भी कहीं कहीं जगह क्लास हुआ है। साथ ही साथ अभी तत्काल यहाँ से हम लोग बीच बीच में टीचर भेजेंगे और उन्हीं को कहेंगे कि भाई घूम घूम के थोड़ा सा हर जगह पढ़ा लीजिए। लाइब्रेरी के लिए अभी बुक नहीं है, वो भी बहुत जल्द ही हो सकता है कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
6: बिहार में ये उन 211 डिग्री कॉलेज का हाल है जो 15 जुलाई से आनन फानन में शुरू तो कर दिए गए लेकिन न तो कॉलेज की इमारत का पता है न टीचर का, फिर भी छात्रों को अपने जिले और आसपास ही उच्च शिक्षा दिलाने का सरकारी अभियान ढोल बजाकर शुरू कर दिया गया क्योंकि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की महत्वाकांक्षी योजना जो ठहरी। आज तक संवाददाता रोहित सिंह इसी योजना की हकीकत जानने के लिए मुजफ्फरपुर के बोचहा में बनाए गए इस डिग्री कॉलेज में पहुंचते हैं जो एक मिडिल स्कूल में बना दिया गया है।
15: यहीं पर जो है इसके कैंपस में दरअसल एक दूसरे हिस्से में जहां पर बच्चों की पढ़ाई होती थी, पहले से आठवीं के बच्चे जहां पढ़ाई किया करते थे, जहां क्लासेस चला करती थी, उसी में से बताया जा रहा है कि 6 कमरे जो हैं वो डिग्री कॉलेज के लिए जो है वो लिया गया है और यहाँ जो बच्चे पढ़ा करते थे स्कूल के उनको बाकी के हिस्से में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि एडजस्ट किया गया है।
6: समस्या सिर्फ अपनी बिल्डिंग की नहीं, सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की है। इस डिग्री कॉलेज में हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र की पढ़ाई होनी। 21 छात्र दाखिला भी ले चुके हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए फिलहाल सिर्फ एक हिंदी की टीचर है जो हमें यहाँ गैर हाजिर मिलती है।
16: तो शिक्षक है उन लोगों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है?
17: अभी तो नहीं है पर आ जाएंगे।
18: आ जाएंगे
19: अभी एक ही है हिंदी की जो मैम, वो अभी आज नहीं आई है।
18: आज नहीं आई है?
15: लाइब्रेरी की कोई सुविधा है यहाँ पर?
19: अभी लाइब्रेरी का भी सुविधा नहीं, अभी तो नया ना कॉलेज खुला तो आगे चल के ना होगा।
6: तो मुजफ्फरपुर के इस डिग्री कॉलेज में न टीचर और न ही लाइब्रेरी, इस तरह छात्रों का और भविष्य क्या यहाँ बर्बाद नहीं हो रहा? जबकि पूरे बिहार में ऐसे डिग्री कॉलेज में 15 तारीख तक 1,35,000 छात्र दाखिले के लिए आवेदन कर चुके हैं।
15: अधिकतर कॉलेज का अपना भवन नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है और साथ ही साथ कॉलेजेस का संचालन प्रतिनियुक्ति के बदौलत किया जा रहा है।
6: 12 की जगह 2 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं।
20: 63 हुए,
21: 63 हो चुके हैं,
20: हो चुके हैं।
21: तो टीचर कितने हैं? 63 बच्चों के
20: 2 हम लोग हैं। प्रचार के पद पर हूँ मैं, हिंदी का शिक्षक हूँ, बर्सर के पद पर हैं
1: वो राजनीति विज्ञान के शिक्षक हैं। आपके सामने देखा कि इतिहास के विद्यार्थी आए हुए थे, तो हम लोगों ने अभी अपने जो अतिरिक्त ज्ञान है उसके आधार पर हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा है। कभी कभी बच्चे आते हैं तो हम लोग को अपराध बोध होने लगता है कि प्रचार के पद पर हूँ और बच्चों को संसाधन पढ़ने आए हैं तो शिक्षक नहीं है, तो कहने में शर्म लगती है कि लेकिन आशा दिलाता हूं कि अगस्त तक आप लोग इंतजार करें, अगस्त तक शिक्षक आ जाएंगे।
6: इस डिग्री कॉलेज के टीचर से ज्यादा यहां पढ़ने वाले छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जो पूछते हैं कि जब तैयारी नहीं थी तो कॉलेज ही क्यों शुरू किया गया।
12: टीचर नहीं है,
22: टीचर नहीं है, कितने टीचर है पता किया है?
12: अभी तो फिलहाल तीन चार, दो से तीन चार है,
22: दो तीन चार है तो दो तीन चार करके पढ़ाई पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आपको लग रहा है?
12: मुझे तो यही बात है कि नहीं लग रहा है।
22: हिस्ट्री के टीचर भी नहीं है?
12: नहीं।
22: तो कॉलेज तो खुलवाएंगे कि आप लोग पढ़ेंगे तो क्या सुविधा होगा यहाँ पे, क्या मिल रहा है? नहीं है,
23: नहीं मिल रहा है कभी भी,
22: कुछ नहीं,
23: नहीं दो तीन दिन से आया कोई भी सुविधा नहीं है।
6: तो बिहार में नेता और अफसर स्कूल में नए डिग्री कॉलेज का फीता काट कर फोटो खिंचा कर तो चले गए और अपने पीछे छोड़ गए सारण जैसे डिग्री कॉलेज जहाँ पढ़ाने के लिए दो टीचर हैं और 88 छात्र हैं।
24: हमारे पास अभी संसाधन की कमी है, संसाधन जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट लिस्ट में हमें कुल 122 विद्यार्थियों की सूची मिली जिनका नामांकन होना था, 122 के विरुद्ध कुल 88 नामांकन हुए। पीछे साइड में बाथरूम विद्यार्थियों के लिए जो बन रहा है टॉयलेट वो निर्माणाधीन है, बरसात के चलते बीच बीच में बाधाएं भी आईं तो वो निर्माणाधीन है, अब वो जब मिल जाए। कुल 288 सीट 6 विषयों में, कुल हर विषय में 48 सीट निर्धारित की गई।
6: आज तक की टीम ने गोपालगंज और पूर्णिया में भी ऐसे ही डिग्री कॉलेज का रियलिटी चेक किया, लेकिन वहाँ भी बनाए गए नए कॉलेज में न तो स्थायी भवन है, न पर्याप्त शिक्षक और न ही पढ़ाई के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध है। पूर्णिया के डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी है लेकिन किताबें नहीं। अब इन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र पूछते हैं कि जब बिल्डिंग और टीचर तक का इंतजाम सरकार कर नहीं पाई तो फिर उसने ये कॉलेज क्यों शुरू किए? ये सवाल हमने बिहार के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर से पूछा है।
25: ने उसको चिन्हित किया गया है और उसको भी कैसे पूरा किया जाए वो प्रयास हो रहा है और बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसका विज्ञापन भी आ चुका है।
15: जरूर बात आ रही है कि फिर इतनी जल्दबाजी में क्यों फिर कॉलेज वॉलेज खोल दिया गया, अभी शिक्षकों की बहाली पूरी हुई नहीं है?
25: ये जल्दबाजी में नहीं, ये पहले से घोषित था कि जुलाई में हम शुरू करेंगे, सत्र प्रारंभ हो जाएगा तो जुलाई में हमने शुरू किया। अब जुलाई में कहा था नहीं करते फिर सवाल खड़ा होता।
6: तो जिम्मेदार मंत्री भी मानते हैं कि उनकी इस योजना में अभी खामियां हैं, लेकिन मंत्री जी को समझना होगा कि सिर्फ 211 नए डिग्री कॉलेज खोल के उद्घाटन करने भर से मुख्यमंत्री की योजना जनता के लिए सफल नहीं होगी। उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षकों की बहाली, तय नियम के मुताबिक बुनियादी साधन छात्रों को देने होंगे, क्योंकि प्रतिनियुक्ति के सहारे उच्च शिक्षा का सपना साकार नहीं हो सकता। मुजफ्फरपुर से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
5: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाया सियासी रोटियां सेकने का आरोप, आकांक्षों के पत्रकार देंगे जवाब। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी, जंतर मंतर के पास पुलिस तो प्रदर्शनकारियों में फिर झड़प। यह संदेश में पूनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की बताई शर्त, का किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्रवाई, अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद रोके गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। और ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी, का अगर हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हुआ हमला तो हम हर वार का एक पुल या पावर प्लांट कर देंगे तबाह। छात्रों के प्रदर्शन और मांग पर एक तरफ सरकार की दलील तो दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क, सियासत पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस अड़ चुकी है। राहुल गांधी ने मौजूदा समय में देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार के सामने तीन मांगे रखी हैं, जिन्हें वो छात्रों की मांगे बता रहे हैं और शिक्षा मंत्री से लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं।
1: छात्रों पर लाठीचार्ज, विपक्ष और सरकार में सीधा टकराव, सड़क से संसद तक पेपर लीक और शिक्षा मंत्री पर संग्राम, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष सरकार पर सवाल। पहले पीएम आवास के पास धरना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से घेराव, शिक्षा व्यवस्था पर राहुल के सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। मॉनसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से उठे तूफान ने सियासत में बड़ा उफान ला दिया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन पर लाठीचार्ज हुआ, अब पूरी सियासत इसी पर घूम गई है। पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद संसद में चर्चा।
2: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन।
3: ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं।
4: क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
5: चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।
6: इससे क्या हो सकता है?
1: संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की भेंट चढ़ जाता है। और फिर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले वो अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद राहुल गांधी पेपर लीक और इस वक्त देश की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं, पिछले 10 सालों में पेपर लीक का आंकड़ा पेश करते हैं।
7: कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। 152 बार पिछले 10 साल में भी यह बताया गया है। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है।
1: और फिर राहुल गांधी देश में शिक्षा का बजट बताते हैं और नीट के एग्जाम पर खर्च से उसकी तुलना करते हैं। साथ ही ये भी पूछते हैं कि पेपर लीक के मामले में किसी को सजा क्यों नहीं मिली।
7: ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल एक नीट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन दिस कंट्री, दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल फैमिली इन दिस कंट्री।
1: राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों की 3 मांगों का दावा किया और वो 3 मांगे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो, पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे।
7: धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए, स्टूडेंट्स की पहली मांग है इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
1: राहुल गांधी ने 3 शर्तों में सबसे ऊपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को रखा तो उनसे सवाल हुआ कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारे मामले का हल निकल जाएगा। साथ ही राहुल गांधी से ये सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन क्यों किया। राहुल गांधी ने जवाब में जो कहा वो आप भी सुनिए।
7: इसके 2 कारण है, हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और हमने स्पीकर से कहा देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, कोई डिस्कशन नहीं। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड, दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड एंड दैट इज व्हाई वी वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस यस्टरडे टू सपोर्ट दिस डिमांड।
1: आपको बता दें कि 21 जुलाई को कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर पीएम आवास के पास धरना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को धरने से उठाकर हिरासत में ले लिया गया।
8: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए।
1: और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरने को लेकर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच खींचतान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने एक तंज वाले अंदाज में इसका जवाब दिया।
7: सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए।
1: राहुल गांधी की पावर पॉइंट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को रोजगार और एजुकेशन सिस्टम पर घेरा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा आधार यही रहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद कोई चर्चा और छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी के इन आरोपों और प्रहारों पर सरकार ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक छात्रों को लेकर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सरकार चाहती है कि पेपर लीक पर संसद में चर्चा हो।
9: व्हाई आर यू सो सिलेक्टिव आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए।
0: पिछले 25 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया है। सोनम ने कहा है कि अनशन को 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जिंदा हूं। कुछ सांसद मुझसे मिलने आए, उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने की उन्होंने अपील की। वांगचुक ने कहा कि मुझे अगर सरकार की तरफ से भरोसा मिले तो मैं आज ही अनशन खत्म करने के लिए तैयार हूं, बस सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करे।
1: सोनम वांगचुक की नई चिट्ठी में क्या क्या मांगे की गई? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वांगचुक ने स्टैंड क्लियर कर दिया। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच क्या कोई बातचीत हुई है? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सोनम वांगचुक का क्या संदेश है? 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक अनशन कब तोड़ेंगे?
10: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
1: नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की कड़ी 3 जगह से जुड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या मांग कर रहा है? सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड ही क्लियर करते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत वहीं से हुई है। ऐसे में जंतर मंतर पर धरना दे रही CJP ने फिर से वही बात दोहराई है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक जंतर मंतर खाली नहीं होगा।
11: सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती हमें जंतर मंतर से हिलना है।
1: क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक हैं और 25 दिन से उनका अनशन जारी है। ऐसे में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार के 2 मंत्रियों से हुई बातचीत पर वांगचुक ने लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार का आश्वासन उन्हें दिया गया है। वांगचुक के मुताबिक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी विचार का आश्वासन मिला है। ये सब तो विचार की बात है, पर चिट्ठी में नीचे वांगचुक लिखते हैं, बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न हो, सरकार भरोसा दे तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं।
12: सारे एमपी ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं। ये सारे एमपी के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े? और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है कि जब तक वो फास्ट एमपी के कहने पर और भारत सरकार के उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली ना फिजिकली ना एफआईआर ना कुछ भी। उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो चुकी हैं और उन्होंने फिर भी इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और जो कह रहे हैं कि बच्चों ने स्टोन फेंके, ये उन्हीं के लोग थे जो इन्होंने अंदर डाले हुए थे, जो ये सब इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे।
1: अब सवाल है कि अगर छात्रों पर एक्शन न होने देने का भरोसा सरकार दे दे तो क्या वांछित का अनशन खत्म हो सकता है? आपको बता दें कि विपक्ष के नेता भी 60 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी लेकर सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोनम अनशन खत्म करें।
13: समाजवादी पार्टी इस पक्ष में तभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए। और ये सरकार तो ऐसी है कि अब बताओ, मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो। बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप।
14: हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को?
15: साजिश कर रहे हैं।
14: ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू ना कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहाँ ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं, इस प्रकार की तानाशाही है।
1: सीजेपी ने भी कहा है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दें, बाकी वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक धरने पर डटे रहेंगे।
16: मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये अश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो।
1: इस बीच सरकार कह रही है कि देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थ का हथियार नहीं बनना चाहिए, जबकि सीजेपी के प्रवक्ता अपनी मांगों का ज्ञापन जेपी नड्डा को पहले ही सौंप चुके हैं। सरकार ने हल निकालने का भरोसा दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर संसद में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है।
17: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन।
18: पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है।
19: ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है।
1: जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्र डटे हुए हैं। मांग यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और एजुकेशन सिस्टम में जरूरी बदलाव किए जाएं। जब तक सरकार सीजेपी की मांगे पूरी नहीं करती तब तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र अब तक हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस इन्हीं मांगों को मुद्दा बनाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है।
20: सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, ना ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है।
15: ये इनका रवैया है।
21: विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए।
15: धन्यवाद धन्यवाद।
21: जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसी में अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाओ।
1: कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की शर्त यही है कि इस मुद्दे पर चर्चा तभी होगी जब केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देंगे, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नियमों का हवाला देते हुए विपक्ष से पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा शुरू करने की अपील की।
22: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है।
1: सीजेपी के धरना प्रदर्शन को लेकर संसद सियासी संग्राम का अखाड़ा बनी हुई है। सरकार की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। यही सड़क से संसद तक गतिरोध की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पेपर लीक और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज पर संसद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले चर्चा के लिए तैयार हैं।
19: ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें?
21: आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज।
19: नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर?
21: हम लोग का बात भी
19: अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल?
21: अखिलेश जी एक मिनट
19: नहीं, अध्यक्ष महोदय ये पक्ष ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?
1: अखिलेश यही चाहते हैं कि देश की संसद से छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान हुए लाठीचार्ज का सच पूरी दुनिया सुने। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री का आरोप है कि छात्रों की आड़ में विपक्ष सियासी रोटियां सेकने में जुटा है। अगर नौजवानों के मुद्दे से विपक्ष का सरोकार होता तो संसद में चर्चा से भागते नहीं।
23: युवाओं की भावनाओं और उनकी चिंताओं के प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यह संसद का सत्र इस समय चल रहा है। सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, अनुचित प्रयास कर रहा है। और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए यदि विपक्ष गंभीर है तो मौजूदा मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में व्यवधान न उत्पन्न करे और संसद में जिन भी मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है वह मुद्दों पर चर्चा करे और सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करे।
1: संसद से सड़क तक प्रदर्शन को लेकर सियासी पारा हाई है तो आरोप प्रत्यारोप में भी कोई पीछे नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में तू-तू मैं-मैं जारी है।
24: प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए, आप इस तरह से करेंगे? जबरदस्ती बैठ जाएंगे? और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो गए ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं, फिर मुकर गए कि मेरी मर्जी, ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा, आप ही की उद्दंडता से चलेगा?
2: हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते। वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है।
1: बड़ी बात यह है कि सीजेपी ने लंबे आंदोलन की तैयारी कर रखी है, यानी जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना खत्म नहीं होगा। यही वजह है कि सीजेपी ने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है।
3: वायलेंस का कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है, इस प्रोटेस्ट में भी कोई जगह नहीं है वायलेंस का। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनसे अपील है कि ऐसा ना करें। पुलिस वालों के साथ आप एग्रेशन मत दिखाइए, जो हमारा मुद्दा है उससे मत भटकिए, क्योंकि अगर आप ये वायलेंस वगैरह करेंगे, वैंडलिज्म करेंगे, तो फिर हमारा नैरेटिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा, स्टोरी कुछ अलग बन जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग सब जीते, ये डिमांड्स जीते, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए। ये गांधी का लैंड है, हमेशा याद रखिए कि हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल से ही आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे।
1: अब सवाल यही है कि सरकार, विपक्ष और सीजेपी अपनी अपनी शर्तों पर अडिग हैं, तो संसद में जारी गतिरोध कैसे टूटेगा?
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: से चर्चा को तैयार है सरकार। नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाया सियासी रोटियां सेकने का आरोप, कावांगचुक के पत्रकार देंगे जवाब। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी, जंतर मंतर के पास पुलिस तो प्रदर्शनकारियों में फिर झड़प। यह संदेश में सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की बताई शर्त, का किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्रवाई, अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद रोके गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। और ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी, का अगर हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हुआ हमला तो हम हर वार का एक पुल या पावर प्लांट कर देंगे तबाह। छात्रों के प्रदर्शन और मांग पर एक तरफ सरकार की दलील तो दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क, सियासत पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस अड़ चुकी है। राहुल गांधी ने मौजूदा समय में देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार के सामने तीन मांगे रखी हैं जिन्हें वो छात्रों की मांगे बता रहे हैं और शिक्षा मंत्री से लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं।
1: छात्रों पर लाठीचार्ज, विपक्ष और सरकार में सीधा टकराव, सड़क से संसद तक पेपर लीक और शिक्षा मंत्री पर संग्राम, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष सरकार पर सवार। पहले पीएम आवास के पास धरना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से घेराव, शिक्षा व्यवस्था पर राहुल के सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। मॉनसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से उठे तूफान ने सियासत में बड़ा उफान ला दिया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन पर लाठीचार्ज हुआ, अब पूरी सियासत इसी पर घूम गई है। पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद संसद में चर्चा।
2: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन।
3: ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं।
4: क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
5: चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इससे क्या हो सकता है?
1: संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की भेंट चढ़ जाता है। और फिर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले वो अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद राहुल गांधी पेपर लीक और इस वक्त देश की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं, पिछले 10 सालों में पेपर लीक का आंकड़ा पेश करते हैं।
6: कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजुकेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। 152 बार पिछले 10 साल में भी ये बताया गया है। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है।
1: और फिर राहुल गांधी देश में शिक्षा का बजट बताते हैं और नीट के एग्जाम पर खर्च से उसकी तुलना करते हैं। साथ ही ये भी पूछते हैं कि पेपर लीक के मामले में किसी को सजा क्यों नहीं मिली।
6: स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल एक नीट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन दिस कंट्री, दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल फैमिली इन दिस कंट्री।
1: राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों की तीन मांगों का दावा किया और वो तीन मांगे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो, पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे।
6: धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए, स्टूडेंट्स की पहली मांग है इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
1: राहुल गांधी ने तीन शर्तों में सबसे ऊपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को रखा तो उनसे सवाल हुआ कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारे मामले का हल निकल जाएगा। साथ ही राहुल गांधी से ये सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन क्यों किया। राहुल गांधी ने जवाब में जो कहा वो आप भी सुनिए।
6: इसके दो कारण है, हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और हमने स्पीकर से कहा देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, कोई डिस्कशन नहीं। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड, दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड एंड दैट इज व्हाई वी वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस यस्टरडे टू सपोर्ट दिस डिमांड।
1: आपको बता दें कि 21 जुलाई को कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर पीएम आवास के पास धरना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को धरने से उठाकर हिरासत में ले लिया गया।
7: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलेट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए।
1: और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरने को लेकर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच खींचतान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने एक तंज वाले अंदाज में इसका जवाब दिया।
6: सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए।
1: राहुल गांधी की पावर पॉइंट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को रोजगार और एजुकेशन सिस्टम पर घेरा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा आधार यही रहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो उसके बाद कोई चर्चा, और छात्रों पर लाठी चार्ज क्यों हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी के इन आरोपों और प्रहारों पर सरकार ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक छात्रों को लेकर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सरकार चाहती है कि पेपर लीक पर संसद में चर्चा हो।
8: व्हाई आर यू सो सिलेक्टिव आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए।
0: पिछले 25 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया है। सोनम ने कहा है कि अनशन को 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जिंदा हूं। कुछ सांसद मुझसे मिलने आए, उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने की उन्होंने अपील की। वांगचुक ने कहा कि मुझे अगर सरकार की तरफ से भरोसा मिले तो मैं आज ही अनशन खत्म करने के लिए तैयार हूं, बस सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करे।
1: सोनम वांगचुक की नई चिट्ठी में क्या क्या मांगे की गई? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वांगचुक ने स्टैंड क्लियर कर दिया। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच क्या कोई बातचीत हुई है? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सोनम वांगचुक का क्या संदेश है? 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक अनशन कब तोड़ेंगे?
9: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज

0: पड़ेगा। जय हिंद।
1: नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की कड़ी तीन जगह से जुड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या मांग कर रहा है? सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड ही क्लियर करते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत वहीं से हुई है। ऐसे में जंतर मंतर पर धरना दे रही सीजेपी ने फिर से वही बात दोहराई है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक जंतर मंतर खाली नहीं होगा।
2: सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती है, जंतर मंतर से हिलना है।
1: क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक हैं और 25 दिन से उनका अनशन जारी है। ऐसे में गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार के दो मंत्रियों से हुई बातचीत पर वांगचुक ने लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार का आश्वासन उन्हें दिया गया है। वांगचुक के मुताबिक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी विचार का आश्वासन मिला है। ये सब तो विचार की बात है, पर चिट्ठी में नीचे वांगचुक लिखते हैं, बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न हो, सरकार भरोसा दे तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं।
3: सारे MPs ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं। ये सारे MPs के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े? और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है कि जब तक वो फास्ट MPs के कहने पर और भारत सरकार के उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली ना फिजिकली ना FIR ना कुछ भी। उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो चुकी हैं और उन्होंने फिर भी इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और जो कह रहे हैं कि बच्चों ने स्टोन फेंके, ये उन्हीं के लोग थे जो इन्होंने अंदर डाले हुए थे, जो ये सब इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे।
1: अब सवाल है कि अगर छात्रों पर एक्शन न होने देने का भरोसा सरकार दे दे तो क्या वांगचुक का अनशन खत्म हो सकता है? आपको बता दें कि विपक्ष के नेता भी 60 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी लेकर सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोनम अनशन खत्म करें।
4: समाजवादी पार्टी इस पक्ष में तभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए, और ये सरकार तो ऐसी है, क्या बताओ, मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो।
5: नड्डा जी, धर्मेंद्र,
4: बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप।
6: हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को?
7: साजिश कर रहे हैं।
6: ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू न कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहाँ ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं, इस प्रकार की तानाशाही है।
1: सीजेपी ने भी कहा है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दें, बाकी वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक धरने पर डटे रहेंगे।
8: मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये अश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो।
1: इस बीच सरकार कह रही है कि देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थ का हथियार नहीं बनना चाहिए, जबकि सीजेपी के प्रवक्ता अपनी मांगों का ज्ञापन जेपी नड्डा को पहले

0: पहले ही सौंप चुके हैं। सरकार ने हल निकालने का भरोसा दिया है। आज तक ब्यूरो।
1: लड़ाई युवाओं की जंतर मंतर तक क्यों पहुंची है, क्यों धरना प्रदर्शन आंदोलन की नौबत आ जाती है, इसकी वजह राज्य दर राज्य बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में जहां ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती 4 साल से अटकी है, भर्ती निकलने से लेकर अब तक चरण दर चरण उसे लटकाया जा रहा है।
2: हाथ में बैनर, कंधे पर केवल एक बैग नहीं बल्कि सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद टांगे ये वो बेरोजगार युवा हैं जो थक चुके हैं प्रदर्शन करते करते। 2023 में निकली भर्ती में 2026 आधा बीत जाने के बाद भी नियुक्ति न मिल पाने के बाद हताश होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर के बाहर गुहार लगाने पहुंचे हैं।
3: ग्राम पंचायत अधिकारी की यह भर्ती, आप अगर पदों की बात करेंगे तो 1468 यानी कि 1450 के ऊपर ये पद हैं, 200-300 के ऊपर ये लड़के लड़कियां यहाँ खड़े हैं। सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको आवाज दिखाई पड़ेगा। डिप्टी सीएम की चौखट पर इसलिए इनको आना पड़ा है क्योंकि पंचायती राज मंत्री के यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है या जो डिपार्टमेंट है वो इनकी नहीं सुन पाया है। अग्नि सेवा चयन आयोग के दफ्तर भी कई बार जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। थक हार कर डिप्टी सीएम से उनको आस है कि डिप्टी सीएम उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाए और मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर उनकी आवाज पहुंचे।
4: इसमें बच्चे सहारनपुर से, बांदा से, झांसी, कुशीनगर, मतलब पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हुए हैं।
5: हम कई बार आ चुके हैं लेकिन हम लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज कभी नहीं मिलती है। भर्ती तो 2023 में ही आई थी 22 के पेट से, फिर 2 साल तक संघर्ष हुआ एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट के लिए हुआ।
6: 7000 रुपए महीने घर से मांग के और घर से बाहर अपने हाथों से रोटी बना के हम लोग रहते हैं।
2: ये वो बेरोजगार हैं जिनकी भर्ती ओम प्रकाश राजभर के विभाग से जुड़ी है। राजभर तो दिन भर सियासी बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पार्टी में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कराने की चिंता में जुटे रहते हैं लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी नौकरी के लिए परेशान युवाओं को न्याय नहीं दिला पाते।
3: घर वाले क्या कहते हैं, मतलब आप लोग?
7: घर वालों को कहा हमने कि हमारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल से ज्यादा हो गया। घर वाले कहते कब सिलेक्शन होगा, अब तो पड़ोसी भी विश्वास नहीं करते कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या किया जाए। आयोग से बहुत परेशान है, प्रताड़ित है। अब महोबा से आते पहले ट्रेन बदलो बांदा, बांदा से फिर कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ, 3 बार ट्रेन बदलो जब लखनऊ आ पाओ, अब क्या किया जाए।
2: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तभी इन बेरोजगारों से मिलने पहुंचते हैं।
8: मेरे भाई है, मैं अभी बात करूंगा और रिजल्ट बाबू जल्दी घोषित कराएं, घबराओ नहीं, अभी करा अभी
9: सर सर सर
8: ए बच्चों को मिठाई तो खिलाओ यार।
3: तो ज्ञापन ले लिया है, ये ज्ञापन की कॉपीज हैं, डिप्टी सीएम साथ में हैं और यहाँ पर जो है उनसे समझ रहे हैं कि और आयोग से बात करने के लिए कहा है। अब उनके प्रतिनिधि जो है वो आयोग को फोन मिला रहे।
2: आज तक के कैमरे के सामने ही उप मुख्यमंत्री ने यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े अफसरों को फोन मिलाकर 2023 की ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी भर्ती पर सवाल किया और आश्वासन दिया है।
8: ग्राम पंचायत अधिकारी वाला रिजल्ट नहीं निकला है और 9 महीना हो गया है, बच्चे हमारे पास आए हैं, बहुत दुखी हैं, इनकी मदद करके जल्दी जल्दी निकाल दो, ये मेरे भाई है सर। कब तक निकलेगा? अच्छा ठीक है ठीक है, निकाल देना भैया, ये हमारे बच्चे हैं, बहुत दिन से परेशान है, निकाल देना भैया। ठीक है धन्यवाद। ऐसा है अभी 2 रिजल्ट निकले, तीसरे तुम्हारा नंबर है, ये मान चलो महीना 1.5 महीना में रिजल्ट निकल जाएगी और घबराना नहीं तुम्हें।
3: आज तक लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और अगले 1.5 महीने बाद अगर भर्ती पूर्ण नहीं होती है तो आज तक एक बार फिर डिप्टी सीएम की चौखट पर पहुंचेगा, एक बार फिर अभ्यर्थियों की आवाज बनेगा और एक बार फिर इन भर्तियों के खिलाफ खबरदार करेगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: शिक्षा के लिए हर साल करोड़ों छात्र कॉलेज में दाखिला लेते हैं लेकिन गांव के कई छात्र और छात्राएं कॉलेज दूर होने की वजह से उच्च शिक्षा से दूर रह जाते हैं। बिहार सरकार ने इस समस्या को खत्म करने के लिए छात्रों को अपने जिले और आसपास ही उच्च शिक्षा देने की योजना शुरू की है। 15 तारीख को शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के रियलिटी चेक में हमें ज्यादातर कॉलेजेस में बेहद ही कम शिक्षक मिले। इसके अलावा इस कॉलेजेस में न तो लाइब्रेरी है और न ही यहाँ पर है स्थायी भवन।
10: सभी में हम लोगों ने प्रिंसिपल दे दिया है, एक एक बर्सर के रूप में टीचर दे दिया गया है ताकि वो टीचिंग भी करें और प्रिंसिपल भी टीचिंग, इवन कल भी कहीं कहीं जगह क्लास हुआ है, साथ ही साथ अभी तत्काल यहाँ से हम लोग बीच बीच में टीचर भेजेंगे और उन्हीं को कहेंगे कि भाई घूम घूम के थोड़ा सा हर जगह पढ़ा लीजिए। लाइब्रेरी के लिए अभी बुक नहीं है, वो भी बहुत जल्द ही हो सकता है कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
2: बिहार में ये उन 211 डिग्री कॉलेज का हाल है जो 15 जुलाई से आनन फानन में शुरू तो कर दिए गए, लेकिन न तो कॉलेज की इमारत का पता है न टीचर का। फिर भी छात्रों को अपने जिले और आसपास ही उच्च शिक्षा दिलाने का सरकारी अभियान ढोल बजाकर शुरू कर दिया गया, क्योंकि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की महत्वाकांक्षी योजना जो ठहरी। आज तक संवाददाता रोहित सिंह इसी योजना की हकीकत जानने के लिए मुजफ्फरपुर के बोचहा में बनाए गए इस डिग्री कॉलेज में पहुंचते हैं जो एक मिडिल स्कूल में बना दिया गया है।
9: यहीं पर जो है इसके कैंपस में दरअसल एक दूसरे हिस्से में जहां पर बच्चों की पढ़ाई होती थी, पहले से आठवीं के बच्चे जहां पढ़ाई किया करते थे, जहां क्लासेस चला करती थी, उसी में से बताया जा रहा है कि 6 कमरे जो हैं वो डिग्री कॉलेज के लिए जो है वो लिया गया है और यहां जो बच्चे पढ़ा करते थे स्कूल के उनको बाकी के हिस्से में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि एडजस्ट किया गया है।
2: समस्या सिर्फ अपनी बिल्डिंग की नहीं, सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की है। इस डिग्री कॉलेज में हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र की पढ़ाई होनी। 21 छात्र दाखिला भी ले चुके हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए फिलहाल सिर्फ एक हिंदी की टीचर है जो हमें यहाँ गैर हाजिर मिलती है।
11: तो शिक्षक है, उन लोगों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है?
12: अभी तो नहीं है, पर आ जाएंगे।
13: आ जाएंगे,
14: अभी एक ही है हिंदी की जो मैम, वो अभी आज नहीं आई है।
13: आज नहीं आई है।
9: लाइब्रेरी की कोई सुविधा है यहाँ पर?
14: अभी लाइब्रेरी का भी सुविधा नहीं, अभी तो नया ना कॉलेज खुला, तो आगे चल के ना होगा।
2: तो मुजफ्फरपुर के इस डिग्री कॉलेज में न टीचर और न ही लाइब्रेरी, इस तरह छात्रों का और भविष्य क्या यहाँ बर्बाद नहीं हो रहा? जबकि पूरे बिहार में ऐसे डिग्री कॉलेज में 15 तारीख तक 1,35,000 छात्र दाखिले के लिए आवेदन कर चुके हैं।
9: अधिकतर कॉलेज का अपना भवन नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है और साथ ही साथ कॉलेजेस का संचालन प्रतिनियुक्ति के बदौलत किया जा रहा है।
2: सिवान के इस डिग्री कॉलेज का हाल भी हमें अलग नहीं मिला, जो एक हाई स्कूल में चल रहा है। 12 की जगह 2 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं।
15: 63 हुए,
16: 63 हो चुके
15: हैं। हो चुके हैं।
16: तो टीचर कितने हैं 63 बच्चों के?
15: 2 हम लोग हैं, एक प्रचार के पद पर हूँ मैं, हिंदी का शिक्षक हूँ, और बरसर के पद पर है वो राजनीति विज्ञान के शिक्षक है। आपके सामने देखा कि इतिहास के विद्यार्थी आए हुए थे, तो हम लोगों ने अभी अपने जो अतिरिक्त ज्ञान है उसके आधार पर हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा है। कभी कभी बच्चे आते हैं तो हम लोग को अपराध बोध होने लगता है कि प्रचार के पद पर हूँ और बच्चों को संसाधन पढ़ने आए हैं तो शिक्षक नहीं है, तो कहने में शर्म लगती है कि लेकिन आशा दिलाता हूँ कि अगस्त तक आप लोग इंतजार करें, अगस्त तक शिक्षक आ जाएंगे।
2: इस डिग्री कॉलेज के टीचर से ज्यादा यहाँ पढ़ने वाले छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जो पूछते हैं कि जब तैयारी नहीं थी तो कॉलेज ही क्यों शुरू किया गया?
17: चलो नहीं है
16: टीचर, नहीं है नहीं। कितने टीचर है पता किया है?
17: अभी तो फिलहाल 3-4 2 से 3-4 है लोग,
16: 2-3-4 है ना, तो 2-3-4 करके पढ़ाई पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आपको लग रहा है?
17: मुझे तो यही मत है कि नहीं लग रहा है।
16: हिस्ट्री के टीचर भी नहीं है?
17: नहीं।
16: तो कॉलेज तो खुलवाया गया कि आप लोग पढ़ेंगे, तो क्या सुविधा होगा यहाँ पे, क्या मिल रहा है या नहीं है?
12: नहीं मिल रहा है कभी भी,
16: कुछ नहीं,
12: नहीं 2-3 दिन से आया कोई भी सुविधा नहीं है।
2: तो बिहार में नेता और अफसर स्कूल में नए डिग्री कॉलेज का फीता काट कर फोटो खिंचा कर तो चले गए और अपने पीछे छोड़ गए सारण जैसे डिग्री कॉलेज, जहाँ पढ़ाने के लिए 2 टीचर हैं और 88 छात्र हैं।
18: हमारे पास अभी संसाधन की कमी है, संसाधन जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट लिस्ट में हमें कुल 122 विद्यार्थियों की सूची मिली जिनका नामांकन होना था, 122 के विरुद्ध कुल 88 नामांकन हुए। पीछे साइड में बाथरूम विद्यार्थियों के लिए जो बन रहा है टॉयलेट, वो निर्माणाधीन है, बरसात के चलते बीच बीच में बाधाएं भी आईं, तो वो निर्माणाधीन है, अब वो जब मिल जाए। कुल 288 सीट 6 विषयों में, कुल हर विषय में 48 सीट निर्धारित की गई।
2: आज तक की टीम ने गोपालगंज और पूर्णिया में भी ऐसे ही डिग्री कॉलेज का रियलिटी चेक किया, लेकिन वहाँ भी बनाए गए नए कॉलेज में न तो स्थायी भवन है, न पर्याप्त शिक्षक और न ही पढ़ाई के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध है। पूर्णिया के डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी है लेकिन किताबें नहीं। अब इन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र पूछते हैं कि जब बिल्डिंग और टीचर तक का इंतजाम सरकार कर नहीं पाई तो फिर उसने ये कॉलेज क्यों शुरू किए। ये सवाल हमने बिहार के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर से पूछा है।
19: ने उसको चिन्हित किया गया है और उसको भी कैसे पूरा किया जाए वो प्रयास हो रहा है और बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसका विज्ञापन भी आ चुका है।
9: ऐसी जरूर बात आ रही है कि फिर इतनी जल्दबाजी में क्यों फिर कॉलेज वॉलेज खोल दिया गया, अभी शिक्षकों की बहाली पूरी हुई नहीं है?
19: ये जल्दबाजी में नहीं, ये पहले से घोषित था कि जुलाई में हम शुरू करेंगे, सत्र प्रारंभ हो जाएगा तो जुलाई में हमने शुरू किया। अब जुलाई में कहा था नहीं करते, फिर सवाल खड़ा होता।
2: तो जिम्मेदार मंत्री भी मानते हैं कि उनकी इस योजना में अभी खामियां हैं, लेकिन मंत्री जी को समझना होगा कि सिर्फ 211 नए डिग्री कॉलेज खोल के उद्घाटन करने भर से मुख्यमंत्री की योजना जनता के लिए सफल नहीं होगी। उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षकों की बहाली, तय नियम के मुताबिक बुनियादी साधन छात्रों को देने होंगे, क्योंकि प्रतिनियुक्ति के सहारे उच्च शिक्षा का सपना साकार नहीं हो सकता। मुजफ्फरपुर से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: चर्चा को तैयार है सरकार। नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाया सियासी रूठियां। सुनने का आरोप, कावांचों के पत्रकार देंगे जवाब। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी, जंतर मंतर के पास पुलिस तो प्रदर्शनकारियों में फिर झड़प। यह संदेश में सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की बताई शर्त। का किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्रवाई। अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद रोके गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले। संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार। सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। और ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी का, अगर हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हुआ हमला तो हम हर वार का एक पुल या पावर प्लांट कर देंगे तबाह। छात्रों के प्रदर्शन और मांग पर एक तरफ सरकार की दलील तो दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क। सियासत पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस अड़ चुकी है। राहुल गांधी ने मौजूदा समय में देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार के सामने तीन मांगे रखी है जिन्हें वो छात्रों की मांगे बता रहे हैं और शिक्षा मंत्री से लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं।
1: छात्रों पर लाठीचार्ज, विपक्ष और सरकार में सीधा टकराव। सड़क से संसद तक पेपर लीक और शिक्षा मंत्री पर संग्राम। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष सरकार पर सवार। पहले पीएम आवास के पास धरना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से घेराव। शिक्षा व्यवस्था पर राहुल के सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। मॉनसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से उठे तूफान ने सियासत में बड़ा उफान ला दिया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन पर लाठीचार्ज हुआ, अब पूरी सियासत इसी पर घूम गई है। पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद संसद में चर्चा।
2: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन।
3: यह जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सा करते हैं।
4: क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
5: चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।
6: इससे क्या हो सकता है?
1: संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की भेंट चढ़ जाता है। और फिर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले वो अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद राहुल गांधी पेपर लीक और इस वक्त देश की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं। पिछले 10 सालों में पेपर लीक का आंकड़ा पेश करते हैं।
7: कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है 40 लाख रुपए जिनके पास है, 50 लाख रुपए जिनके पास है, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। 152 बार पिछले 10 साल में यह बताया गया है 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है।
1: और फिर राहुल गांधी देश में शिक्षा का बजट बताते हैं और नीट के एग्जाम पर खर्च से उसकी तुलना करते हैं। साथ ही ये भी पूछते हैं कि पेपर लीक के मामले में किसी को सजा क्यों नहीं मिली।
7: ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं सरकार, पूरे देश से टैक्स लेती है और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे। और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन दिस कंट्री, दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल फैमिली इन दिस कंट्री।
1: राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों की तीन मांगों का दावा किया और वो तीन मांगे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो, पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे।
7: धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए, स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है, तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
1: राहुल गांधी ने तीन शर्तों में सबसे ऊपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को रखा तो उनसे सवाल हुआ कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारे मामले का हल निकल जाएगा। साथ ही राहुल गांधी से ये सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन क्यों किया। राहुल गांधी ने जवाब में जो कहा वो आप भी सुनिए।
7: इसके दो कारण है, हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और हमने स्पीकर से कहा देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, कोई डिस्कशन नहीं। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड, दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड एंड दैट इज व्हाई वी वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस यस्टरडे टू सपोर्ट दिस डिमांड।
1: आपको बता दें कि 21 जुलाई को कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर पीएम आवास के पास धरना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को धरने से उठाकर हिरासत में ले लिया गया।
8: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए।
1: और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरने को लेकर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच खींचतान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने एक तंज वाले अंदाज में इसका जवाब दिया।
7: सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए।
1: राहुल गांधी की पावर पॉइंट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को रोजगार और एजुकेशन सिस्टम पर घेरा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा आधार यही रहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद कोई चर्चा और छात्रों पर लाठी चार्ज क्यों हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी के इन आरोपों और प्रहारों पर सरकार ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक छात्रों को लेकर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सरकार चाहती है कि पेपर लीक पर संसद में चर्चा हो।
9: व्हाई आर यू सो सिलेक्टिव आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए।
1: सोनम वांगचुक की नई चिट्ठी में क्या क्या मांगे की गई? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वांगचुक ने स्टैंड क्लियर कर दिया। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच क्या कोई बातचीत हुई है? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सोनम वांगचुक का क्या संदेश है? 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक अनशन कब तोड़ेंगे?
10: मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
1: नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की कड़ी 3 जगह से जुड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या मांग कर रहा है? सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड ही क्लियर करते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत वहीं से हुई है। ऐसे में जंतर मंतर पर धरना दे रही CJP ने फिर से वही बात दोहराई है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक जंतर मंतर खाली नहीं होगा।
11: सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती हमें जंतर मंतर से हिलना है।
1: क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक हैं और 25 दिन से उनका अनशन जारी है। ऐसे में गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार के 2 मंत्रियों से हुई बातचीत पर वांगचुक ने लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार का आश्वासन उन्हें दिया गया है। वांगचुक के मुताबिक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी विचार का आश्वासन मिला है। ये सब तो विचार की बात है, पर चिट्ठी में नीचे वांगचुक लिखते हैं, बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न हो, सरकार भरोसा दे तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं।
12: सारे MP ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं। ये सारे MP के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े? और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है कि जब तक वो फास्ट MP के कहने पर और भारत सरकार के उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली ना फिजिकली, ना एफआईआर ना कुछ भी। उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो चुकी हैं और उन्होंने फिर भी इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और जो कह रहे हैं कि बच्चों ने स्टोन फेंके, ये उन्हीं के लोग थे जो इन्होंने अंदर डाले हुए थे, जो ये सब इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे।
1: अब सवाल है कि अगर छात्रों पर एक्शन न होने देने का भरोसा सरकार दे दे तो क्या वांछों का अनशन खत्म हो सकता है? आपको बता दें कि विपक्ष के नेता भी 60 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी लेकर सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोनम अनशन खत्म करें।
13: समाजवादी पार्टी इस पक्ष में कभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए। और ये सरकार तो ऐसी है कि अब बताओ, मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो। बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप।
14: हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को?
15: साजिश कर रहे हैं।
14: ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू न कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहाँ ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं, इस प्रकार की तानाशाही है।
1: सीजेपी ने भी कहा है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दें, बाकी वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक धरने पर डटे रहेंगे।
16: मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये अश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो।
1: इस बीच सरकार कह रही है कि देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थ का हथियार नहीं बनना चाहिए, जबकि सीजेपी के प्रवक्ता अपनी मांगों का ज्ञापन जेपी नड्डा को पहले ही सौंप चुके हैं। सरकार ने हल निकालने का भरोसा दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: पिछले 25 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया है। सोनम ने कहा है कि अनशन को 25 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक जिंदा हूं। कुछ सांसद मुझसे मिलने आए, उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने की उन्होंने अपील की। वांगचुक ने कहा कि मुझे अगर सरकार की तरफ से भरोसा मिले तो मैं आज ही अनशन खत्म करने के लिए तैयार हूं, बस सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करे। लड़ाई युवाओं की जंतर मंतर तक क्यों पहुंची है, क्यों धरना प्रदर्शन आंदोलन की नौबत आ जाती है, इसकी वजह राज्य दर राज्य बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में जहां ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती 4 साल से अटकी है, भर्ती निकलने से लेकर अब तक चरण दर चरण उसे लटकाया जा रहा है।
17: हाथ में बैनर, कंधे पर केवल एक बैग नहीं बल्कि सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद टांगे, ये वो बेरोजगार युवा हैं जो थक चुके हैं प्रदर्शन करते करते। 2023 में निकली भर्ती में 2026 आधा बीत जाने के बाद भी नियुक्ति न मिल पाने के बाद हताश होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर के बाहर गुहार लगाने पहुंचे हैं।
18: ग्राम पंचायत अधिकारी की यह भर्ती, आप अगर पदों की बात करेंगे तो 146 सीट यानी कि 1450 के ऊपर ये पद हैं, 200-300 के ऊपर ये लड़के लड़कियां यहाँ खड़े हैं। सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको आवाज दिखाई पड़ेगा। डिप्टी सीएम की चौखट पर इसलिए इनको आना पड़ा है क्योंकि पंचायती राज मंत्री के यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है, या जो डिपार्टमेंट है वो इनकी नहीं सुन पाया है। अग्नि सेवा चयन आयोग के दफ्तर भी कई बार जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। थक हार कर डिप्टी सीएम से उनको आस है कि डिप्टी सीएम उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर उनकी आवाज पहुंचे।
19: इसमें बच्चे सहारनपुर से, बांदा से, झांसी, कुशीनगर, मतलब पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हुए हैं।
20: हम कई बार आ चुके हैं लेकिन हम लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज कभी नहीं मिलती है। भर्ती तो 2023 में ही आई थी 22 के पेट से, फिर 2 साल तक संघर्ष हुआ एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट के लिए हुआ।
15: 7,000 रुपए महीने घर से मांग के और घर से बाहर अपने हाथों से रोटी बना के हम लोग रहते हैं।
17: ये वो बेरोजगार हैं जिनकी भर्ती ओम प्रकाश राजभर के विभाग से जुड़ी है। राजभर तो दिन भर सियासी बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पार्टी में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कराने की चिंता में जुटे रहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी नौकरी के लिए परेशान युवाओं को न्याय नहीं दिला पाते।
21: घर वाले क्या कहते हैं, मतलब आप लोग?
22: घर वालों को कहा हमने कि हमारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल से ज्यादा हो गया। घर वाले कहते कब सिलेक्शन होगा, अब तो पड़ोसी भी विश्वास नहीं करते कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या किया जाए। आयोग से बहुत परेशान है, प्रताड़ित है। अब महोबा से आते पहले ट्रेन बदलो बांदा, बांदा से फिर कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ, 3 बार ट्रेन बदलो जब लखनऊ आ पाओ, अब क्या किया जाएगा।
17: डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक तभी इन बेरोजगारों से मिलने पहुंचते हैं।
23: मेरे भाई है, मैं अभी बात करूंगा और रिजल्ट बाबू जल्दी घोषित कराएं, घबराओ नहीं, अभी करा अभी
24: सर सर सर सर
23: ए बच्चों को मिठाई तो खिला यार।
24: तो ज्ञापन ले लिया है, ये ज्ञापन की कॉपीज हैं, डिप्टी सीएम साथ में हैं और यहाँ पर जो है उनसे समझ रहे हैं कि और आयोग से बात करने के लिए कहा है। अब उनके प्रतिनिधि जो है वो आयोग को फोन मिला रहे।
17: आज तक के कैमरे के सामने ही उप मुख्यमंत्री ने यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े अफसरों को फोन मिलाकर 2023 की ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी भर्ती पर सवाल किया और आश्वासन दिया है।
25: ग्राम पंचायत अधिकारी वाला रिजल्ट नहीं निकला है और 9 महीना हो गया है, बच्चे हमारे पास आए हैं, बहुत दुखी हैं, इनकी मदद करके जल्दी जल्दी निकाल दो, ये मेरे भाई हैं सर। कब तक निकलेगा? अच्छा ठीक है ठीक है, निकाल देना भैया, ये हमारे बच्चे हैं, बहुत दिन से परेशान है, निकाल देना भैया। ठीक है धन्यवाद। ऐसा है अभी 2 रिजल्ट निकले, तीसरे तुम्हारा नंबर है, ये मान चलो 1-1.5 महीने में रिजल्ट निकल जाएगी और घबराना नहीं तुम।
24: आज तक लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और अगले 1.5 महीने बाद अगर भर्ती पूर्ण नहीं होती है तो आज तक एक बार फिर डिप्टी सीएम की चौखट पर पहुंचेगा, एक बार फिर अभ्यर्थियों की आवाज बनेगा और एक बार फिर इन भर्तियों के खिलाफ खबरदार करेगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: शिक्षा के लिए हर साल करोड़ों छात्र कॉलेज में दाखिला लेते हैं, लेकिन गांव के कई छात्र और छात्राएं कॉलेज दूर होने की वजह से उच्च शिक्षा से दूर रह जाते हैं। बिहार सरकार ने इस समस्या को खत्म करने के लिए छात्रों को अपने जिले और आसपास ही उच्च शिक्षा देने की योजना शुरू की है। 15 तारीख को शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के रियलिटी चेक में हमें ज्यादातर कॉलेजेस में बेहद ही कम शिक्षक मिले। इसके अलावा इस कॉलेजेस में न तो लाइब्रेरी है और ना ही यहां पर है स्थायी भवन।
26: सभी में हम लोगों ने प्रिंसिपल दे दिया है, एक एक बर्सर के रूप में टीचर दे दिया गया है ताकि वो टीचिंग भी करें और प्रिंसिपल भी टीचिंग, इवन कल भी कहीं कहीं जगह क्लास हुआ है। साथ ही साथ अभी तत्काल यहां से हम लोग बीच बीच में टीचर भेजेंगे और उन्हीं को कहेंगे कि भाई घूम घूम के थोड़ा सा हर जगह पढ़ा लीजिए। लाइब्रेरी के लिए अभी बुक नहीं है, वो भी बहुत जल्द ही हो सकता है कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
17: बिहार में ये उन 211 डिग्री कॉलेज का हाल है जो 15 जुलाई से आनन फानन में शुरू तो कर दिए गए, लेकिन न तो कॉलेज की इमारत का पता है न टीचर का, फिर भी छात्रों को अपने जिले और आसपास ही उच्च शिक्षा दिलाने का सरकारी अभियान ढोल बजाकर शुरू कर दिया गया, क्योंकि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की महत्वाकांक्षी योजना जो ठहरी। आज तक संवाददाता रोहित से इसी योजना की हकीकत जानने के लिए मुजफ्फरपुर के बोचहा में बनाए गए इस डिग्री कॉलेज में पहुंचते हैं जो एक मिडिल स्कूल में बना दिया गया है।
27: यहीं पर जो है इसके कैंपस में दरअसल एक दूसरे हिस्से में जहां पर बच्चों की पढ़ाई होती थी, पहले से 8वीं के बच्चे जहां पढ़ाई किया करते थे, जहां क्लासेस चला करती थी, उसी में से बताया जा रहा है कि 6 कमरे जो हैं वो डिग्री कॉलेज के लिए जो है वो लिया गया है और यहां जो बच्चे पढ़ा करते थे स्कूल के उनको बाकी के हिस्से में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि एडजस्ट किया गया है।
17: समस्या सिर्फ अपनी बिल्डिंग की नहीं, सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की है। इस डिग्री कॉलेज में हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र की पढ़ाई होनी। 21 छात्र दाखिला भी ले चुके हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए फिलहाल सिर्फ एक हिंदी की टीचर है जो हमें यहाँ गैर हाजिर मिलती है।
28: तो शिक्षक है उन लोगों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है,
2: अभी तो नहीं है पर आ जाएंगे।
3: आ जाएंगे।
4: अभी एक ही है हिंदी की जो मैम, वो अभी आज नहीं आई है।
3: आज नहीं आई है। लाइब्रेरी की कोई सुविधा है यहाँ पर?
4: अभी लाइब्रेरी का भी सुविधा नहीं, अभी तो नया ना कॉलेज खुला तो आगे चल के ना होगा।
17: तो मुजफ्फरपुर के इस डिग्री कॉलेज में न टीचर है और न ही लाइब्रेरी। इस तरह छात्रों का और भविष्य क्या यहाँ बर्बाद नहीं हो रहा, जबकि पूरे बिहार में ऐसे डिग्री कॉलेज में 15 तारीख तक 1,35,000 छात्र दाखिले के लिए आवेदन कर चुके हैं।
3: अधिकतर कॉलेज का अपना भवन नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है और साथ ही साथ कॉलेजेस का संचालन प्रतिनियुक्ति के बदौलत किया जा रहा है।
17: सिवान के इस डिग्री कॉलेज का हाल भी हमें अलग नहीं मिला, जो एक हाई स्कूल में चल रहा है। 12 की जगह 2 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं।
5: 63 हुए।
6: 63 हो चुके
5: हैं। हो चुके हैं।
6: तो टीचर कितने हैं? 63 बच्चे होते हैं।
5: 2 हम लोग हैं, एक प्रचार के पद पर हूँ मैं, हिंदी का शिक्षक हूँ, और बरसर के पद पर है वो राजनीति विज्ञान के शिक्षक है। आपके सामने देखा कि इतिहास के विद्यार्थी आए हुए थे, तो हम लोगों ने अभी अपने जो अतिरिक्त ज्ञान है उसके आधार पर हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा है। कभी कभी बच्चे आते हैं तो हम लोग को अपराध बोध होने लगता है कि प्रचार के पद पर हूँ और बच्चों को संसाधन पढ़ने आए हैं तो शिक्षक नहीं है, तो कहने में शर्म लगती है कि लेकिन आशा दिलाता हूँ कि अगस्त तक आप लोग इंतजार करें, अगस्त तक शिक्षक आ जाएंगे।
17: इस डिग्री कॉलेज के टीचर से ज्यादा यहाँ पढ़ने वाले छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जो पूछते हैं कि जब तैयारी नहीं थी तो कॉलेज ही क्यों शुरू किया गया?
7: चलो नहीं है
6: टीचर, नहीं है नहीं। कितने टीचर है पता किया है?
7: अभी तो फिलहाल 3-4 2 से 3-4 है।
6: 2-3-4 है। हाँ। तो 2-3-4 करके पढ़ाई पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आपको लग रहा है?
7: मुझे तो यही उम्मीद है कि नहीं लग रहा है।
6: हिस्ट्री के टीचर भी नहीं
7: है? नहीं।
6: तो कॉलेज तो खुलवाएंगे कि आप लोग पढ़ेंगे तो क्या सुविधा होगा यहाँ पे, क्या मिल रहा है? नहीं है,
2: नहीं मिल रहा है कभी भी
6: कुछ नहीं,
2: नहीं 2-3 दिन से कोई भी सुविधा नहीं है।
17: तो बिहार में नेता और अफसर स्कूल में नए डिग्री कॉलेज का फीता काट कर फोटो खिंचा कर तो चले गए और अपने पीछे छोड़ गए सारण जैसे डिग्री कॉलेज, जहां पढ़ाने के लिए 2 टीचर हैं और 88 छात्र हैं।
8: हमारे पास अभी संसाधन की कमी है, संसाधन जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम और आगे बढ़ेगा। तो फर्स्ट लिस्ट में हमें कुल 122 विद्यार्थियों की सूची मिली जिनका नामांकन होना था, 122 के विरुद्ध कुल 88 नामांकन हुए। पीछे साइड में बाथरूम विद्यार्थियों के लिए जो बन रहा है टॉयलेट, वो निर्माणाधीन है, बरसात के चलते बीच बीच में बाधाएं भी आईं, तो वो निर्माणाधीन है, अब वो जब मिल जाए। कुल 288 सीट 6 विषयों में, कुल हर विषय में 48 सीट निर्धारित की गई।
17: आज तक की टीम ने गोपालगंज और पूर्णिया में भी ऐसे ही डिग्री कॉलेज का रियलिटी चेक किया, लेकिन वहाँ भी बनाए गए नए कॉलेज में न तो स्थायी भवन है, न पर्याप्त शिक्षक और न ही पढ़ाई के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध है। पूर्णिया के डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी है लेकिन किताबें नहीं। अब इन कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र पूछते हैं कि जब बिल्डिंग और टीचर तक का इंतजाम सरकार कर नहीं पाई तो फिर उसने ये कॉलेज क्यों शुरू किए? ये सवाल हमने बिहार के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर से पूछा है।
9: ने उसको चिन्हित किया गया है और उसको भी कैसे पूरा किया जाए वो प्रयास हो रहा है और बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसका विज्ञापन भी आ चुका है।
3: जरूर बात आ रही है कि फिर इतनी जल्दबाजी में क्यों फिर कॉलेज वॉलेज खोल दिया गया, अभी शिक्षकों की बहाली पूरी हुई नहीं है?
9: ये जल्दबाजी में नहीं, ये पहले से घोषित था कि जुलाई में हम शुरू करेंगे, सत्र प्रारंभ हो जाएगा, तो जुलाई में हमने शुरू किया। अब जुलाई में कहा था नहीं करते, फिर सवाल खड़ा होता।
17: तो जिम्मेदार मंत्री भी मानते हैं कि उनकी इस योजना में अभी खामियां हैं, लेकिन मंत्री जी को समझना होगा कि सिर्फ 211 नए डिग्री कॉलेज खोल के उद्घाटन करने भर से मुख्यमंत्री की योजना जनता के लिए सफल नहीं होगी। उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षकों की बहाली, तय नियम के मुताबिक बुनियादी साधन छात्रों को देने होंगे, क्योंकि प्रतिनियुक्ति के सहारे उच्च शिक्षा का सपना साकार नहीं हो सकता। मुजफ्फरपुर से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाया सियासी रोटियां सेकने का आरोप, कावांचों के पत्रकार देंगे जवाब। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी, जंतर मंतर के पास पुलिस तो प्रदर्शनकारियों में फिर झड़प। संदेश में पूनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की बताई शर्त, का किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्रवाई, अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद रोके गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। और ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी, का अगर हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हुआ हमला तो हम हर वार का एक पुल या पावर प्लांट कर देंगे तबाह। छात्रों के प्रदर्शन और मांग पर एक तरफ सरकार की दलील तो दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क, सियासत पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस अड़ चुकी है। राहुल गांधी ने मौजूदा समय में देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार के सामने तीन मांगे रखी है जिन्हें वो छात्रों की मांगे बता रहे हैं और शिक्षा मंत्री से लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं।
1: छात्रों पर लाठीचार्ज, विपक्ष और सरकार में सीधा टकराव, सड़क से संसद तक पेपर लीक और शिक्षा मंत्री पर संग्राम, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष सरकार पर सवाल। पहले पीएम आवास के पास धरना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से घेराव, शिक्षा व्यवस्था पर राहुल के सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। मॉनसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से उठे तूफान ने सियासत में बड़ा उफान ला दिया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन पर लाठीचार्ज हुआ, अब पूरी सियासत इसी पर घूम गई है। पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद संसद में चर्चा।
2: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन।
3: ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सना करते हैं।
4: क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
5: चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।
6: इससे क्या हो सकता है?
1: संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की भेंट चढ़ जाता है। और फिर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले वो अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद राहुल गांधी पेपर लीक और इस वक्त देश की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं। पिछले 10 सालों में पेपर लीक का आंकड़ा पेश करते हैं।
7: कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास है, 50 लाख रुपए जिनके पास है, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। 152 बार पिछले 10 साल में भी यह बताया गया है। 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है।
1: और फिर राहुल गांधी देश में शिक्षा का बजट बताते हैं और नीट के एग्जाम पर खर्च से उसकी तुलना करते हैं। साथ ही ये भी पूछते हैं कि पेपर लीक के मामले में किसी को सजा क्यों नहीं मिली।
7: ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन दिस कंट्री, दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल फैमिली इन दिस कंट्री।
1: राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों की तीन मांगों का दावा किया और वो तीन मांगे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो, पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे।
7: धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए, स्टूडेंट्स की पहली मांग है इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
1: राहुल गांधी ने तीन शर्तों में सबसे ऊपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को रखा तो उनसे सवाल हुआ कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारे मामले का हल निकल जाएगा। साथ ही राहुल गांधी से ये सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन क्यों किया। राहुल गांधी ने जवाब में जो कहा वो आप भी सुनिए।
7: इसके दो कारण है, हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और हमने स्पीकर से कहा देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, कोई डिस्कशन नहीं। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड, दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड एंड दैट इज व्हाई वी वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस यस्टरडे टू सपोर्ट दिस डिमांड।
1: आपको बता दें कि 21 जुलाई को कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर पीएम आवास के पास धरना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं को धरने से उठाकर हिरासत में ले लिया गया।
8: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए।
1: और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरने को लेकर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच खींचतान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने एक तंज वाले अंदाज में इसका जवाब दिया।
7: सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए।
1: राहुल गांधी की पावर पॉइंट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार को रोजगार और एजुकेशन सिस्टम पर घेरा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा आधार यही रहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद कोई चर्चा और छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी के इन आरोपों और प्रहारों पर सरकार ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक छात्रों को लेकर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सरकार चाहती है कि पेपर लीक पर संसद में चर्चा हो।
9: व्हाई आर यू सो सिलेक्टिव आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए।
0: पिछले 25 दिनों से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक ने मेदांता अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया है। सोनम ने कहा है कि अनशन को 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जिंदा हूं। कुछ सांसद मुझसे मिलने आए, उन्हें भूख हड़ताल खत्म करने की उन्होंने अपील की। वांगचुक ने कहा कि मुझे अगर सरकार की तरफ से भरोसा मिले तो मैं आज ही अनशन खत्म करने के लिए तैयार हूं, बस सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करे।
1: सोनम वांगचुक की नई चिट्ठी में क्या क्या मांगे की गई? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर वांगचुक ने स्टैंड क्लियर कर दिया। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच क्या कोई बातचीत हुई है? कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सोनम वांगचुक का क्या संदेश है?

0: और ऐसे ताकत बल का प्रयोग ना करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद।
1: नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की कड़ी तीन जगह से जुड़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं और विपक्ष क्या मांग कर रहा है? सबसे पहले आपको कॉकरोच जनता पार्टी का स्टैंड ही क्लियर करते हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत वहीं से हुई है। ऐसे में जंतर मंतर पर धरना दे रही CJP ने फिर से वही बात दोहराई है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक जंतर मंतर खाली नहीं होगा।
2: सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती है, जंतर मंतर से हिलना है।
1: क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे आंदोलन के सूत्रधार सोनम वांगचुक हैं और 25 दिन से उनका अनशन जारी है। ऐसे में गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सरकार के दो मंत्रियों से हुई बातचीत पर वांगचुक ने लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार का आश्वासन उन्हें दिया गया है। वांगचुक के मुताबिक आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी विचार का आश्वासन मिला है। ये सब तो विचार की बात है, पर चिट्ठी में नीचे वांगचुक लिखते हैं, बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न हो, सरकार भरोसा दे तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं।
3: सारे MPs ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं। ये सारे MPs के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े? और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है कि जब तक वो फास्ट MPs के कहने पर और भारत सरकार के उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली ना फिजिकली ना FIR ना कुछ भी। उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो चुकी हैं और उन्होंने फिर भी इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और जो कह रहे हैं कि बच्चों ने स्टोन फेंके, ये फेंके, ये उन्हीं के लोग थे जो इन्होंने अंदर डाले हुए थे, जो ये सब इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे।
1: अब सवाल है कि अगर छात्रों पर एक्शन न होने देने का भरोसा सरकार दे दे तो क्या वांगचुक का अनशन खत्म हो सकता है? आपको बता दें कि विपक्ष के नेता भी 60 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी लेकर सोनम वांगचुक से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सोनम अनशन खत्म करें।
4: समाजवादी पार्टी इस पक्ष में कभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए, और ये सरकार तो ऐसी है कि अब बताओ, मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो?
5: नड्डा जी,
4: बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप?
6: हम चिट्ठी लेके आए हैं कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। ये लोग क्या मारना चाहते हैं सोनम वांगचुक जी को?
7: साजिश कर रहे हैं।
6: ये सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते हैं क्या? इस पत्र में लिखा हुआ है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके जीवन को के महत्व की दृष्टि से अब आप अपना अनशन कंटिन्यू न कीजिए। और ये उनकी रिक्वेस्ट, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर देश के सांसद हमें भरोसा दिलाएंगे तो हम अपना अनशन तोड़ सकते हैं। आप देखिए, यहाँ ये चिट्ठी देने की इजाजत नहीं, मिलने की इजाजत नहीं, इस प्रकार की तानाशाही है।
1: CJP ने भी कहा है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दें, बाकी वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक धरने पर डटे रहेंगे।

0: मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये अश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है मेरी उनसे अपील है आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो।
1: इस बीच सरकार कह रही है कि देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक स्वार्थ का हथियार नहीं बनना चाहिए, जबकि सीजेपी के प्रवक्ता अपनी मांगों का ज्ञापन जेपी नड्डा को पहले ही सौंप चुके हैं। सरकार ने हल निकालने का भरोसा दिया है। आज तक ब्यूरो।
2: लड़ाई युवाओं की जंतर मंतर तक क्यों पहुंची है, क्यों धरना प्रदर्शन आंदोलन की नौबत आ जाती है, इसकी वजह राज्य दर राज्य बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में जहां ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती 4 साल से अटकी है, भर्ती निकलने से लेकर अब तक चरण दर चरण उसे लटकाया जा रहा है।
3: हाथ में बैनर, कंधे पर केवल एक बैग नहीं बल्कि सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद टांगे, ये वो बेरोजगार युवा हैं जो थक चुके हैं प्रदर्शन करते करते। 2023 में निकली भर्ती में 2026 आधा बीत जाने के बाद भी नियुक्ति न मिल पाने के बाद हताश होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर के बाहर गुहार लगाने पहुंचे हैं।
4: ग्राम पंचायत अधिकारी की यह भर्ती, आप अगर पदों की बात करेंगे तो 1468 यानी कि 1450 के ऊपर ये पद हैं, 200-300 के ऊपर ये लड़के लड़कियां यहाँ खड़े हैं। सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको आवाज दिखाई पड़ेगा। डिप्टी सीएम की चौखट पर इसलिए इनको आना पड़ा है क्योंकि पंचायती राज मंत्री के यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है, या जो डिपार्टमेंट है वो इनकी नहीं सुन पाया है। अग्नि सेवा चयन आयोग के दफ्तर भी कई बार जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। थक हार कर डिप्टी सीएम से उनको आस है कि डिप्टी सीएम उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर उनकी आवाज पहुंचे।
5: इसमें बच्चे सहारनपुर से, बांदा से, झांसी, कुशीनगर, मतलब पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हुए हैं।
6: हम कई बार आ चुके हैं लेकिन हम लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज कभी नहीं मिलती है। भर्ती तो 2023 में ही आई थी 22 के पेट से, फिर 2 साल तक संघर्ष हुआ एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट के लिए हुआ।
7: 7000 रुपए महीने घर से मांग के और घर से बाहर अपने हाथों से रोटी बना के हम लोग रहते हैं।
3: ये वो बेरोजगार हैं जिनकी भर्ती ओम प्रकाश राजभर के विभाग से जुड़ी है। राजभर तो दिन भर सियासी बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पार्टी में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कराने की चिंता में जुटे रहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी नौकरी के लिए परेशान युवाओं को न्याय नहीं दिला पाते।
4: घर वाले क्या कहते हैं, मतलब आप लोग?
8: घर वालों को कहा हमने कि हमारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल से ज्यादा हो गया। घर वाले कहते कब सिलेक्शन होगा, अब तो पड़ोसी भी विश्वास नहीं करते कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या किया जाए। आयोग से बहुत परेशान है, प्रताड़ित है। अब महोबा से आते पहले ट्रेन बदलो बांदा, बांदा से फिर कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ, 3 बार ट्रेन बदलो जब लखनऊ आ पाओ, अब क्या किया जाए।
3: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तभी इन बेरोजगारों से मिलने पहुंचते हैं।
9: मेरे भाई हैं, मैं अभी बात करूंगा और रिजल्ट बाबू जल्दी घोषित कराएं, घबराओ नहीं, अभी करा अभी अभी
10: सर सर सर सर
9: ए बच्चों को मिठाई तो खिलाओ यार।
4: तो ज्ञापन ले लिया है, ये ज्ञापन की कॉपीज हैं, डिप्टी सीएम साथ में हैं और यहां पर जो है उनसे समझ रहे हैं कि और आयोग से बात करने के लिए कहा है। अब उनके प्रतिनिधि जो है वो आयोग को फोन मिला रहे।
3: आज तक के कैमरे के सामने ही उप मुख्यमंत्री ने यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े अफसरों को फोन मिलाकर 2023 की ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी भर्ती पर सवाल किया और आश्वासन दिया है।
9: ग्राम पंचायत अधिकारी वाला रिजल्ट नहीं निकला है और 9 महीना हो गया है, बच्चे हमारे पास आए हैं, बहुत दुखी हैं, इनकी मदद करके जल्दी जल्दी निकाल दो, ये मेरे भाई हैं सर। कब तक निकलेगा? अच्छा ठीक है ठीक है, निकाल देना भैया, ये हमारे बच्चे हैं, बहुत दिन से परेशान है, निकाल देना भैया। ठीक है धन्यवाद। ऐसा है अभी 2 रिजल्ट निकले, तीसरे तुम्हारा नंबर है, ये मान ही चलो महीना डेढ़ महीना में रिजल्ट निकल जाएगी, और घबराना नहीं तुम।
4: आज तक लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और अगले 1.5 महीने बाद अगर भर्ती पूर्ण नहीं होती है तो आज तक एक बार फिर डिप्टी सीएम की चौखट पर पहुंचेगा, एक बार फिर अभ्यर्थियों की आवाज बनेगा और एक बार फिर इन भर्तियों के खिलाफ खबरदार करेगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
10: कौन से ग्रह से प्रभावित लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं? कौन से ग्रह से प्रभावित लोग ज्यादातर व्रत और उपवास रखते हैं? और कौन से ग्रह से प्रभावित लोग पूजा उपासना का खूब दिखावा करते हैं? कौन सा ग्रह कैसी करवाता है पूजा उपासना, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

0: अपने चर्चा को तैयार है। सरकार नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाया सियासी रोटियां सेकने का आरोप, कावांचों के पत्रकार देंगे जवाब। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा, मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कहा छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी, जंतर मंतर के पास पुलिस तो प्रदर्शनकारियों में फिर झड़प। यह संदेश में सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने की बताई शर्त, का किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न हो कार्रवाई, अस्पताल में मिलने पहुंचे विपक्षी सांसद रोके गए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में एक महीने का और लगेगा वक्त। और ईरान को ट्रंप की बड़ी धमकी, का अगर हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हुआ हमला तो हम हर वार का एक पुल या पावर प्लांट कर देंगे तबाह। छात्रों के प्रदर्शन और मांग पर एक तरफ सरकार की दलील तो दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क, सियासत पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस अड़ चुकी है। राहुल गांधी ने मौजूदा समय में देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार के सामने तीन मांगे रखी है, जिन्हें वो छात्रों की मांगे बता रहे हैं और शिक्षा मंत्री से लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं।
1: छात्रों पर लाठीचार्ज, विपक्ष और सरकार में सीधा टकराव, सड़क से संसद तक पेपर लीक और शिक्षा मंत्री पर संग्राम, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब विपक्ष सरकार पर सवाल। पहले पीएम आवास के पास धरना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से घेराव, शिक्षा व्यवस्था पर राहुल के सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। मॉनसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर से उठे तूफान ने सियासत में बड़ा उफान ला दिया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उन पर लाठीचार्ज हुआ, अब पूरी सियासत इसी पर घूम गई है। पहले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद संसद में चर्चा।
2: एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन।
3: ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भत्सा करते हैं।
4: क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
5: चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।
6: इससे क्या हो सकता है?
1: संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की भेंट चढ़ जाता है। और फिर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबसे पहले वो अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद राहुल गांधी पेपर लीक और इस वक्त देश की शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हैं, पिछले 10 सालों में पेपर लीक का आंकड़ा पेश करते हैं।
7: कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजुटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। 152 बार पिछले 10 साल में भी यह बताया गया है, 7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है।
1: और फिर राहुल गांधी देश में शिक्षा का बजट बताते हैं और नीट के एग्जाम पर खर्च से उसकी तुलना करते हैं, साथ ही ये भी पूछते हैं कि पेपर लीक के मामले में किसी को सजा क्यों नहीं मिली।
7: स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन दिस कंट्री, दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल फैमिली इन दिस कंट्री।
1: राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों की तीन मांगों का दावा किया और वो तीन मांगे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, छात्रों को पीटने वालों पर कार्रवाई हो, पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे।
7: धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए, स्टूडेंट्स की पहली मांग है इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है, तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
1: राहुल गांधी ने तीन शर्तों में सबसे ऊपर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को रखा तो उनसे सवाल हुआ कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सारे मामले का हल निकल जाएगा। साथ ही राहुल गांधी से ये सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन क्यों किया। राहुल गांधी ने जवाब में जो कहा वो आप भी सुनिए।
7: इसके दो कारण है, हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और हमने स्पीकर से कहा देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, कोई डिस्कशन नहीं। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड, दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड and that is why we went to the prime minister's house yesterday to support this demand.
1: आपको बता दें कि 21 जुलाई को कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर